0: इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम।
2: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
3: गणेश उत्सव के 10वें दिन भारी उल्लास, मुंबई में भक्तों को भाया इको फ्रेंडली AI गणेश पंडाल, तो अकोला में 80 के दौर की थीम पर सजा बप्पा का दरबार। उज्जैन में जल झूलनी एकादशी पर निकली बाबा काल भैरव की शाही सवारी, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ 4 किलोमीटर लंबा भक्तों का कारवा। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संयुक्त सैन्य अभ्यास में दिखा भारत अमेरिकी सैनिकों के शौर्य का जलवा, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का भी दिखा दम। नेपाल बाढ़ पीड़ितों के लिए अमेरिका की बड़ी मदद, 250 करोड़ की सहायता राशि का और ऐलान। वर्ल्ड स्किल्स शांघाई समारोह की ओपनिंग सेरेमनी में बिखरे रंग, दुनिया भर से युवा पेशेवर ले रहे हिस्सा, 27 तारीख तक चलेगा दुनिया का सबसे बड़ा कौशल मेला। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। और चलिए अब देख लेते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ।
4: हमारी जिंदगी का यही उत्तर है अब तक का, हमारे जीवन का अब तक का यही निचोड़ है कि हमने अपने हर पहलू को, हर क्षण को, हर मुसीबत को, हर झंझट को खुद पे ना रखा, सब अपने गुरु पर और अपने बालाजी पर छोड़ रखा। उसका परिणाम इतना बेहतर है कि पूरी दुनिया की ताकतें हमारे गिराने में लगी रहती और हम उन्हें शायरी सुनाते। अभी नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद वापस लौट आऊंगा, पहले मुझे नाकाम होने दो। बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, पहले मेरा नाम होने दो। और जो हमसे जलते हम उन्हें इतना जलाते, पूछो मत। कई लोग हमारे चश्मों पर सवाल उठाए, हमने इतने चश्मे पहने कि उन्होंने पोस्ट डालना बंद कर दिया। कुछ लोगों ने हमारी जैकेट पर सवाल उठाए कि बाबा ने नॉर्थ फेस की 60,000 की जैकेट पहनी, बल्कि अपने बाप ने ना खरीदी थी, किसी चेला ने दी, हमने पहन लिया, हमें पता भी नहीं था कि वो महंगी है। बाद में पता लगा कि अपन महंगी पहने, कम से कम उन लोगों के पोस्ट डालने से हमें महंगी सस्ती का पता चल गया। उसके बाद तो फिर पूछो मत, हमने जो उनके मिर्ची लगाई, जैकेट तो पहनी ही पहनी, फिर हमने उसी कंपनी का बैग खरीदा। हम कहा लो बेटे जलो, अब हम बताते तुम्हें, आग ना लगाई तो हमारा नाम गुरु नहीं। कोई हमारे खिलाफ बोलता, एक कोई व्यक्ति है वो कहता कि बाबा ठटरी क्यों बारता, अच्छा नहीं है, और वो जब भी हमें दिखता तब हम जरूर ठटरी बारते। हाँ, और एक दिन हमने अपनी टीम को लगाया फोन, उसने मीडिया पे बयान दिया कि हमें इसकी ठटरी बारने से बहुत दिक्कत है। हमने अपनी मीडिया को कहा जितने ठटरी बारने वाले वीडियो हों वो 5 दिन लगातार पोस्ट किए जाएं, हाँ बाकी वीडियो बंद कर दिए जाएं, सिर्फ ठटरी वाले जारी रखें, जो जलते हैं उन्हें जलाओ। तुम हमारे पास आए हो, कुछ लोग विरोध करेंगे और करना भी चाहिए, जो अपना सामना नहीं कर सकते वो विरोध करेंगे। अपन आदमी ही ऐसे हैं कि या तो कोई हमारी तारीफ करेगा या गाली बकेगा, छोड़ तो सकता नहीं है अपन को, दो में से कुछ एक करेगा। और जिसने हमें जाना नहीं वो विरोध करेगा, जो जान लेगा वो विरोध थोड़ी करेगा, यहीं का होकर के रह जाएगा। इसलिए मेरे पागलो, हम तुमसे भी कहेंगे कि जीना सीखना है तो आ बैठ मेरे पास, मैं तुझे जीना सिखाता हूं, कुछ पल तो मेरे साथ गुजार, मैं तुझे दुख दर्द पीना सिखाता हूं, क्योंकि मैं बातों से नहीं रातों से हूं लड़ा, हर पल मुसीबत में रहा हूं खड़ा, मेरे पीछे जिसका हाथ है वो बजरंग मली मेरे साथ है, मैं कभी झुका नहीं, मैं कभी मुड़ा नहीं, मैं कभी रुका नहीं, इसलिए आ बैठ मेरे पास, मैं तुझे जीना सिखाता हूं, कुछ पल तो मेरे साथ गुजार, दुख दर्द पीना सिखाता हूं। हमने इतनी मुसीबतें झेल ली कि अब मुसीबत आती है तो लगता है खुजली हो रही, और तुम्हें मुसीबत आती है तो हाय दैया, छाती फट गई, हाय दैया, मरे राम, हाय दैया, अरे बाप रे मर गए, तुम छाती पीटने लगते हो, बस हम में और तुम में इतना ही अंतर है, तुम पर विपत्ति आती है तो तुम हाय दैया करके छाती पीटते हो, हम पे विपत्ति आते तो हम भीतर कहते चाय बनाओ रे। देखा जाएगा, और कर भी क्या सकते भैया, अब आ गई मुसीबत तो आ गई, बुलाने थोड़ी गए थे हम मुसीबत को, आ गई है तो देखा जाएगा और अपन को ही तो झेलना है। तुम चाहे रो चाहे गाओ, मुसीबत तो रहनी ही है। अब मान लो तुम्हें फोड़ा हो गया, अब क्या करोगे, चाहे रो चाहे गाओ, हमें जुखाम हो गया, अब चाहे हम जो करें, अब हो गया सो हो गया, बाहर में गया, जुखाम के भी मजे ले रहे, हम बीच बीच में नाक बंद कर लेते हैं तो शरीर ही फड़फड़ाता, तो भीतर से आवाज आती है तो सांस तो छोड़ो, हम कहते तुम पहले जुखाम छोड़ो। लो चल रही लड़ाई, अब जुखाम खुद कंफ्यूज है कि इसके शरीर में रहे कि छोड़े, इसी को कॉन्फिडेंस कहते हैं। खैर घर पे तुम ट्राई मत करना हमारी आदतें, वरना सांस ना छोड़ी तो तुम्हें छूट गए। राम नाम सत्य है, ना जुखाम रहेगा ना जुखाम वाला। हम बता रहे हैं अपने अपने तरीके हैं जीने के मुसीबतों से, हम पे भी मुसीबत आती है, हम पे भी झंझट आते हैं, कुछ लोग हमारे लिए भी लगे रहते हैं, विपत्तियां आती हैं, क्या नहीं, आज दरबार वहां मैदान में लगाना था, यहां वहां बारिश हो गई, साउंड वहां गया नहीं, तो हमने हाय दैया थोड़ी किया, छाती थोड़ी पीटी, ना ना ना, दो घंटा लेट से ही यहाँ टीन सेट में लगा लेंगे, लो बढ़िया, पानी भी कल बरसता रहे नो प्रॉब्लम, आज बरसता रहे नो प्रॉब्लम, यहाँ दरबार लग रहा है आनंद है। अब मान लो वहां दरबार ना लगता, फिर छाती पीटते, लो हद हो गई, हमारे चेले सुनते नहीं, ये नहीं करते, अब हाड़ में गया, कौन किसकी सुनता, और चेले कहाँ हमारी सुनेंगे, ये अपने बाप की नहीं सुनते थे, आओ हमारी कहाँ सुनेंगे, हलवा में सुनेंगे, और जो अपने बाप की सुनते होते तो यहाँ होते ही, जब इनने अपने बाप की नहीं मानी हमारी क्या मानेंगे, खाक, जब हमारी नहीं माननी है तो हम पहले ही माइंड सेट में बाहर में जाओ, तुम अपनी ठठरी भराओ, जब तुम्हें मानना हो सो मानना, हम ना तुम्हें कहेंगे। एक आदमी हमसे बोला, बोला कि यदि आप ऐसा करोगे हम अनशन पे बैठ जाएंगे, हमका तुम्हें बाप की कसम है अनशन पे बैठ जाना, हम कोई गुरुजी होंगे तुम्हें अनशन से उठने नहीं देंगे, तुम उठोगे भी तब भी हम कहेंगे कि नहीं बिल्कुल नहीं उठना चाहिए इस आदमी को अनशन से। बोला हम भोजन छोड़ देंगे, हमका तुम भोजन की बात करते, हम तुमसे पानी छोड़वाएंगे, जल्दी निपटो। और आदमी होंगे कोई जो डर जाए तुम्हारी धमकियों से, तुम्हारी भपकियों से कि हम तुम्हारा, एक व्यक्ति अभी कुछ दिन पहले धमकी दे रहा था कि बाबा बागेश्वर का हम घेराव करेंगे, हमका चेले वैसे ही घेरे रहते हैं, तुम और आ जाओ, हम सेल्फी तुम्हें भी देंगे बेटा, भभूति देंगे, हमारा तुम घेराव करने आओ, तुम्हें ये भरोसा हो कि हम डर जाएं तो तुम ऐसे गुरु ना समझना कोई, हम तो थोड़ा उल्टे ही गुरु है, तो हमारे पास आओगे घेराव करने, हम तुम्हें भभूति बांट देंगे और दो चार को भूत और खिलवा देंगे, लो करो घेराव। पता लगा कि तुम आए थे विनती करने, फिर जो है खाज लग गई सो छुटाते फिर रहे हो, हाँ हमारा घेराव करने आया हो, दो चार चिल्लाने लगे तुम्हारे बीच में, मुर्दाबाद के नारे बंद, भूत भगाओ प्रोग्राम चालू हो जाएगा, झंझट खत्म। तो तुम्हें लग रहा होगा कि कोई और गुरु है तो डर जाएंगे, अपन तो बहुत उल्टे आदमी है, हम हर चीज उल्टी ही सोचते हैं, उल्टी ही चलते, पर तुमसे हम यही कहेंगे मेरे पागलो हर परिस्थिति में मुस्कुराओ, हर बात पर मुस्कुराओ, बालाजी के चरण शरण को पकड़ लो, हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं कितनी भी जिंदगी में मुसीबत संकट तो आएंगे, पर संकट मोचन यदि जीवन में रहेंगे तो तुम घबरा ना पाओगे, और हम तुम्हें संकट मोचन देना चाहते हैं, हम तुम्हारी बाह को बालाजी के चरणों में पकड़ना चाहते, और सुनो एक दिन के लिए नहीं सदा सदा के लिए, क्योंकि तुम पे मुसीबतें तो आनी ही आनी है भैया, हमसे दोस्ती कर लो, काम आएंगे हम, बड़े काम आएंगे, ऐसा आदमी तुम्हें मिलेगा भी नहीं, कर लो दोस्ती बड़े काम आएंगे, सब लुट जाएगा तब भी तुम हमारी तरह मुस्कुराओगे, भाड़ में गया लुट गया, कौन सा अपने बाप का गया, यहीं से मिला था यहीं लुट गया, जय बजरंग बली की, चलो भैया भंडारा खाएंगे अपन, आओ। कुछ साल पहले हमको एक अधिकारी ने धमकी दी कि बाबा तुम बहुत बोलते हो, एक आध दिन जेसीबी चलवा दी जाए, हमका कल चलाते हो आज चला दो, बड़ा चौंक गया अधिकारी, सामने ही बैठा था, चौंक गया, बोले कैसी बातें करते हो, बहकी बहकी, हमका ये तुम भपकियां किसी और को देना, हम तो डरने वाले नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये आश्रम हमने नहीं बनाया, जनता के पैसे से बना, जनता के लिए बना। हमारे बाप पे तो मकान भी नहीं था, जनता ने चंदा दिया, दान दिया, हमने जनता के लिए बनवा दिया। और गिरेगा भी तो जनता का गिरेगा, अपने बाप का हलवा गिरेगा। वो भी चौंक गया, बोले बहुत खतरनाक आदमी हो तुम। हमका तुम फंसे नहीं हो अभी हम, और तुम कभी हवेली पे आ मत जाना, वरना इतना छीलेंगे हम तुम्हें, इतना छीलेंगे कि तुम हमारा मकान गिराओगे बेटा, हमारा आश्रम गिराओगे, हम तुम्हारा घर ऐसा गिरवाएंगे, तुम्हारे घरवाली के बारे में बताएंगे, घरवाली के साथ ना बैठ पाओगे तुम। हाँ, इतनी टेंशनें भर देंगे तुम्हारे दिमाग में। फिर चुप हो गया। उस दिन के बाद आज भी हमारी दीक्षा लिए चेला बन गया है आजकल हमारा, बना एक साल बाद, और अपन ने दीक्षा दे रखी है, रोज ओम बागेश्वराय नमः जप रहा है। हमका बने रहो चेला, खुश रहो। अब वो जब भी हमारे पास आता है, हम पूछ रहे थे कहो जेसीबी आएगी क्या, तो तुरंत दूर से ही हाथ जोड़ता कि कृपा करो, बहुत पुरानी बात हो गई, अब नई बातें करो गुरु जी, अब छोड़ दो, तब अनजाने में हम बोल गए, अब थोड़ी बोलेंगे। कोई बात नहीं, खुश बने रहो, यही हम तुमको सिखाना चाहते। हम तो सिर्फ गुरु हैं, जीना सिखा सकते तुम्हें, आओ तुम्हें पागल बनाए। और पागल बनने का मतलब मेंटल नहीं होता, पागल होने का मतलब तुम आज से घर जाना और ऐसी हरकतें करना हंस के कि घर वाले भी टेंशन में हो जाएं कि कहां से आए। हाँ, और वो पड़ोसी तो टेंशन में हो ही जाए जो तुम्हारे रोने का इंतजार कर रहा था, वो पूछे जरा इसका पता करो कौन से दरबार में जा रहा है, तब बता देना। लगा के आग सोहरत में हमने ये शौक पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले। बागेश्वर धाम की, बाकी तुम्हारी जिंदगी तुम्हें काटनी है, हमारी हम काट रहे हैं। आज और कल और हैं, परसों जा रहे हैं वहां। हाँ देखो, जलवा देखो अपने, जिस कोलकाता में कल परमिशन नहीं दी गई थी हमारी कथा को सरकार ने, अब वही कोलकाता में सरकार हमें परमिशन दे के बुला रही है। समय का खेल है भैया, साफ समय का खेल है, ये टाइम कब बदल जाए कोई ठिकाना, इसलिए घमंड में ना रहो। और वो तो मुंह से धोखे से निकल गया था, बदनाम मत करो भैया। हमने नहीं कहा था कि दीदी जाएगी दादा आएगा, ऐसा हमने नहीं कहा था। ना ना भैया, काय को बदनाम करते हो, हम नेताओं पे बोलते ही नहीं, तुम आग लगवा के मानोगे का, कल के दिन दूसरे प्रदेश में दूसरे कहलवा देंगे कि अब चलो दादा को हटाओ, हम ये झंझट पालते नहीं। एक बार मुंह से गलती हो गई, अब चूक ना करेंगे भैया, लौट के ऐसी श्राप देने में बड़ी इज्जत दांव पे लग जाती है। मान लो दीदी ना जाती तो तुम लोग तो खा जाते प्राण, मीडिया वाले इतने ट्रोल करते, इतनी मीम्स बनती। एक बार धोखे से निकल गई, अब अपने जीप को अपन ने लगाम लगा लिया, अपन को किसी को श्राप भ्राप देना ही नहीं, सबका भला हो, गुरु आदमी अपन किसका बुरा चाहे, अपने मुंह से जो निकलता है वो हो जाता है, तो काहे को भैया सब सब बोलो, सबका भला हो, सुखी रहे संसार, भगवान सबका भला करें, हनुमान जी सबका भला करें भैया। तो वो धोखे से निकल गया था, पुरानी बात को उठाना भी नहीं है। गंगा में बहुत पानी बह गया भैया, अब तुम देख नहीं रहे हम कितने समझदार हो गए, तब बच्चे थे भाई, नादानी में कहानी बन जाती, अब समझदार हो गए, दूसरे घर जाने लायक हो गए हैं। अब छोड़ो भैया, वो पुरानी बातें थी। मुस्कुराओ, क्या गम है, मुस्कुराओ, क्या गम है, यहां गम किसको कम है, मुस्कुराओ, क्या गम है, यहां गम किसको कम है, मुस्कुराओ हम हैं। पागलो, सीताराम, जोर से बोलो जरा, साधु जी, साधु जी। अब आज का दरबार चालू करते हैं, ज्ञान खत्म। भगवान के बारे में बता दिया, कहाँ है भगवान पता चल गया आज? दादाजी पता चल गया कहाँ है? लाजपत नगर में है?
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर जीएनटी में भी गणपति पधारे और हमें यकीन है कि हमारे दर्शकों के घर भी गणपति बप्पा जरूर पधारे होंगे। हम चाहते हैं कि आप भी जीएनटी के गणपति उत्सव का हिस्सा बने। आप अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें अपने वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा नंबर है 7303409922। ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है, ये नंबर सिर्फ वीडियो या तस्वीरें भेजने के लिए है। जब भी आप अपना वीडियो या फोटो भेजें तो साथ में अपना नाम और अपने शहर, गांव या कस्बे का नाम जरूर लिखें। गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे गणेश उत्सव से जुड़िए। इसके लिए आपको बस करना इतना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजना है, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक अपने वीडियोस भेज रहे हैं। जी हाँ, अपने टीवी स्क्रीन पर आप 2 तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर हमें महाराष्ट्र के नागपुर से डॉक्टर मोहन बैतुले ने भेजी है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितनी भक्तिभाव से बप्पा की आराधना हो रही है। बप्पा की पगड़ी हो या शानदार सजावट, बड़े ही शानदार तरीके से बप्पा का श्रृंगार किया गया है। तो वहीं दूसरी तस्वीर हमें महाराष्ट्र के नागपुर से सनी सिंह परिहार ने भेजी है। यहां बड़े ही उत्साह के साथ विघ्नहर्ता की पूजा अर्चना हो रही है। बप्पा की मनमोहक प्रतिमा हर किसी को आकर्षित कर रही है। बप्पा का श्रृंगार हो या उनका आसन, श्रद्धालु ने बड़ी ही भक्तिभाव से इसे सजाया है। देखिए दोनों तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, बेहद खूबसूरत लग रहे हैं बप्पा।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
3: गणेश उत्सव के 10वें दिन भारी उल्लास, मुंबई में भक्तों को भाया इको फ्रेंडली AI गणेश पंडाल, तो अकोला में 80 के दौर की थीम पर सजा बप्पा का दरबार। उज्जैन में जल झूलनी एकादशी पर निकली बाबा काल भैरव की शाही सवारी, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ 4 किलोमीटर लंबा भक्तों का कारवां। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संयुक्त सैन्य अभ्यास में दिखा भारत अमेरिकी सैनिकों के शौर्य का जलवा, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का भी दिखा दम। नेपाल बाढ़ पीड़ितों के लिए अमेरिका के लिए बड़ी मदद, 250 करोड़ की सहायता राशि का ऐलान। वर्ल्ड स्किल शंघाई समारोह की ओपनिंग सेरेमनी में बिखरे रंग, दुनिया भर से युवा पेशेवर ले रहे हिस्सा, 27 तारीख तक चलेगा दुनिया का सबसे बड़ा कौशल मेला।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: सूरत में कल्पवृक्ष की थीम पर गणेश पंडाल सजाया गया, यहाँ भगवान गणेश के दर्शन के साथ लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश भी दिया जा रहा है। पंडाल की डालियों पर ड्रग, शराब, सिगरेट और तंबाकू छोड़ने के स्लोगन लगाए गए हैं। आजुका का कहना है कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए जागरूक करना जरूरी। गणेश पंडाल में पूजा के साथ सेवा, शिक्षा, अन्नदान और स्वच्छता का संदेश भी दिया गया। कल्पवृक्ष की थीम के जरिए लोगों को स्वस्थ और बेहतर जीवन जीने की अपील। पंडाल में लगे कटआउट्स और संदेश बच्चों और युवाओं का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। आजकुक का मकसद कम उम्र से ही नशे के नुकसान के बारे में जागरूकता फैलाना है। आयोजक पीयूष चावला के मुताबिक पिछले साल ऑपरेशन से दूर थीम पर मनाया गया था गणेश उत्सव, इस बार कल्प वृक्ष थीम के जरिए समाज को सकारात्मक और नशामुक्त जीवन का संदेश। कराड़ के आजाद चौक में इस बार नरसिंह अवतार की खास झांकी बनाई गई, झांकी देखने के लिए शहर के साथ आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। नवजवान गणेश मंडल की गणेशोत्सव परंपरा कई दशकों पुरानी है। मंडल की स्थापना 1952 में हुई थी और 1970 से यहां विशेष शैली की गणेश प्रतिमा की जा रही है स्थापित। नवजवान गणेश पंडाल ने 2009 से पर्यावरण अनुकूल गणेशोत्सव की शुरुआत की, इसके बाद शहर के दूसरे मंडलों ने भी पर्यावरण अनुकूल प्रतिमा की ओर कदम बढ़ाया। इस बार झांकी में प्रहलाद, हिरण्यकश्यप और नरसिंह अवतार की कहानी दिखाई गई। मंडल का उद्देश्य बच्चों को मनोरंजन के साथ अपनी पौराणिक कथाओं और संस्कृति की जानकारी भी मिले इसका है। नरसिंह अवतार की झांकी देखने के लिए आजाद चौक में जुटी भीड़, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक झांकी देखने पहुंच रहे हैं लोग। नासिक के सोनार भगवान दास खरोटे ने सोने के गणेश की बेहद छोटी मूर्ति बनाई। सबसे छोटी मूर्ति सिर्फ 3 मिलीमीटर की है, जिसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। भगवान दास खरोटे ने अलग अलग आकार और रूपों में 291 सूक्ष्म गणेश मूर्तियां बनाई हैं। इनमें चाय वाले बप्पा से लेकर तबला, हारमोनियम और सितार बजाते गणेश तक शामिल है। पिछले 32 साल से इस कला पर हो रहा है काम। इन मूर्तियों को बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हाथों से किया गया है तैयार। चाय की केतली और कप पकड़े गणेश के साथ प्रधानमंत्री मोदी की भी आकृति। एक कलाकृति में मोदी समेत दुनिया के नेताओं को चाय पीते हुए दिखाया गया है। भगवान दास खरोटे की सूक्ष्म कलाकारी के नाम अब तक 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज। उनकी प्रदर्शनी में अलग अलग देशों और परंपराओं से जुड़े गणेश के कई अनोखे रूप भी देखने को मिल रहे हैं। गणेश उत्सव के 9वें दिन भी लालबाग चौराजा के दरबार में भक्तों की भीड़, बप्पा का मनमोहक श्रृंगार देखने के लिए श्रद्धालुओं की कतार। मुंबई के अंधेरी इलाके में अंधेरी चौराजा के दरबार में दिखी अयोध्या की भव्यता। इस वर्ष राम मंदिर पर आधारित है पंडाल की थीम। पंडाल में प्रवेश करते ही अयोध्या के राम मंदिर की वास्तुकला और भव्यता के होते हैं दर्शन। राम मंदिर की प्रतिकृति वाले इस पंडाल में विराजमान है गणपति बप्पा। इस पंडाल के निर्माण के लिए खासतौर पर अयोध्या गई थी आयोजकों की टीम। राम मंदिर की हर बारीकी और भव्यता को पंडाल में दिखाने के लिए किया गया अध्ययन। अंधेरी चौराजा पंडाल में स्थापित गणपति प्रतिमा और आभूषणों सहित कुल 23.5 करोड़ रुपए का बीमा। दूर दूर से देखने आ रहे हैं आम भक्त। मुंबई में गणेशोत्सव के दौरान दिख रहे हैं अलग अलग थीम के पंडाल। भटवाड़ी का राजा के दरबार में AI थीम पर तैयार किया गया भव्य पंडाल। आशा के साथ टेक्निक की मदद से गणपति के दरबार की सुंदर सजावट की गई। AI से मिल रही है सफलता और देश विकास में AI के योगदान पर प्रकाश डालती थीम पर फोकस। LED के जरिए श्रद्धालुओं को दिखाई जाती है AI की कहानी। भक्तों के बीच भटवाड़ी का राजा पंडाल बना आकर्षण का केंद्र। पूरी तरह कागज के बनाए गए हैं इको फ्रेंडली भटवाड़ी के राजा के गणपति। इस बार पास के ही BMC कृत्रिम तालाब में किया जाएगा प्रतिमा का विसर्जन। इस साल अपना 58वां साल मना रहा है ये मंडल। बप्पा के दर्शन और देश के विकास की कहानी देखने दूर दूर से यहां आ रहे हैं भक्त। जालना में 65 किलो चांदी की गणपति बप्पा की मूर्ति बनी विशेष आकर्षण। दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। गणपति बप्पा को पहनाया गया है 11 तोले का सोने का मुकुट। मान के पहले गणपति के तौर पर मशहूर इस पंडाल में से ये 69वां वर्ष है। बप्पा के साथ रिद्धि सिद्धि की मूर्तियां भी बनी है हुई है स्थापित। पिछले करीब 17 वर्षों से मंडल की ओर से की जा रही है 65 किलो चांदी की गणपति मूर्ति की स्थापना। जालना में 25 फीट ऊंची भव्य गणेश मूर्तियां बनी आकर्षण का केंद्र और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। बप्पा के अलग अलग स्वरूपों ने जीता भक्तों का दिल। जालना के बड़ी सड़क इलाके में अलग अलग पंडालों में विराजमान गजानन के अनेक स्वरूप पूरे परिसर में गूंज रहा है गणपति बप्पा मोरया का जयघोष। चंद्रपुर में किसान के रूप में बप्पा के दर्शन। खेल में हल चलाते हुए बप्पा की प्रतिमा ने खींचा सबका ध्यान। किसानों को समर्पित है ये सुंदर झांकी। बप्पा से किसानों के दुख हरने और अच्छी फसल की कामना। चंद्रपुर में बप्पा के दरबार में भक्ति और आस्था का अनोखा संगम। भगवान गणेश के साथ भक्तों को खाटू श्याम जी और सावरिया सेठ के हो रहे हैं दिव्य दर्शन। खाटू श्याम जी का चेहरा और सांवरिया सेठ का स्वरूप एक ही मूर्ति में किया गया है। दोनों का स्वरूपों का अद्भुत समन्वय भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी सुंदर झांकी। चंद्रपुर के श्री अष्टविनायक गणेश मंडल की ओर से साकार की गई है भव्य झांकी, बप्पा के साथ की गई स्थापित। अनोखे गणपति पंडालों की लिस्ट में अमरावती का एक वीरा गणेश पंडाल भी है शामिल। भक्ति के साथ पढ़ाई के महत्व पर फोकस है पंडाल की थीम। पंडाल में पारंपरिक मराठी स्कूल का दृश्य किया गया तैयार, बच्चों की कक्षा में पढ़ते हुए बनाई गई भव्य झांकी। इस वर्ष पर्यावरण के अनुकूल छोटी गणेश प्रतिमा की गई है स्थापित, प्रकृति के संरक्षण का सामाजिक संदेश देने की कोशिश। कोटा की रेलवे कॉलोनी में अनोखा गणेशोत्सव, 9 फीट के मूषक पर विराजे 7 फीट के गणपति। करीब 10 वर्षों से बालाजी नवयुवक मंडल की ओर से मिट्टी की प्रतिमा स्थापित कर मनाया जा रहा है गणेशोत्सव, गणपति दर्शन के लिए उमड़ रही है भक्तों की भीड़। अकोला के विप्र युवा वाहिनी गणेश मंडल में अनोखी थीम खींच रही है भक्तों का ध्यान, घटते जंगल और बढ़ते शहरीकरण की तर्ज पर तैयार की गई झांकी। पंडाल के अंदर बनाई गई है सुंदर गुफा और जंगली जानवरों के कई जीवंत स्टैचू, झांकी के जरिए पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण का दिया जा रहा है संदेश। आस्था के साथ भविष्य के लिए भी पृथ्वी की रक्षा करने के लिए लोगों को किया जा रहा है प्रेरित, रोज हजारों लोग कर रहे हैं बप्पा के इस अनोखे दरबार के दीदार। भारतीय और अमेरिकी सेना के जवानों ने बीकानेर के ऐतिहासिक जूनागढ़ किले और उत्तराखंड के पवित्र बद्रीनाथ मंदिर का किया दौरा, औली में हुए संयुक्त युद्धाभ्यास का हिस्सा है ये दौरा। अमेरिकी जवानों को भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को जानने का मिला मौका, आपसी भाईचारे और सम्मान को मजबूत करना इस सांस्कृतिक दौरे का मकसद। रायसेन के उदयपुरा में डोल 11 का भगवान श्रीकृष्ण की विमान यात्रा निकली, सैकड़ों साल पुरानी इस परंपरा में भगवान नगर भ्रमण कर भक्तों को देते हैं दर्शन। श्रीकृष्ण के साथ बलराम, माता यशोदा और रुक्मणी भी पालकी में सवार हुई, भक्तों ने रास्ते भर पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया। महिला पुरुष और बच्चे भगवान के विमान के नीचे से निकले, श्रद्धालुओं की मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है और कष्ट दूर होते हैं। विमान यात्रा में भजन मंडलियां भगवान के भजन गाती रही, वहीं नृत्यांगनाओं ने नृत्य करते हुए यात्रा में हिस्सा लिया। नगर भ्रमण के दौरान अखाड़े भी निकाले गए जहां कलाकारों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। यात्रा दशहरा मैदान लोधीपुरा पहुंची जहां भगवान का जल विहार कराया गया। हिंदी फिल्म श्रीकांत को 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला, दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को दादा साहेब फाल्के अवार्ड प्रदान किया गया। कार्तिक आर्यन को फिल्म चंदू चैंपियन और ममूटी को ब्रह्मायुग के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला, वहीं फिल्म आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। तमिल स्टार धनुष को मिले 2 नेशनल अवार्ड्स, तमिल फिल्म रायन को बेस्ट तमिल फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला, वहीं तमिल फिल्म कैप्टन मिलर में अभिनय के लिए स्पेशल मेंशन का सम्मान मिला। हिंदी फिल्म 3-2 के गाने आज की रात के लिए विजय गांगुली को 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड के बेस्ट कोरियोग्राफी का पुरस्कार मिला, गाने में तमन्ना भाटिया नजर आई थी। तेलुगु फिल्म पुष्पा 2 द रूल को मिले 2 नेशनल अवार्ड, फिल्म को बेस्ट स्क्रीन प्ले ओरिजिनल और बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड। एशियन गेम्स में भारत की बेटियों का ऐतिहासिक प्रदर्शन, क्रिकेट फाइनल में श्रीलंका को बड़े अंतर से पटकनी देकर जीता गोल्ड मेडल। फाइनल में श्रीलंका को 147 रनों से दी करारी शिकस्त, 16वें ओवर में ही पूरी टीम महज 69 के स्कोर पर हुई ऑल आउट। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाया था 216 रनों का विशाल स्कोर, स्मृति बंधाना ने खेली 79 रनों की पारी, श्रीलंका के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे के 11,000 रन। शेफाली वर्मा ने गेंद और बल्ले दोनों से दिखाया कमाल, 48 रनों की शानदार पारी खेली, पावर प्ले में झटके श्रीलंका के 2 विकेट। टी20 इंटरनेशनल में रनों के लिहाज से भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सबसे बड़ी जीत, इससे पहले टीम इंडिया ने एशिया कप 2018 में मलेशिया को 142 रनों से हराया था। एशियन गेम्स से भारतीय तैराकी टीम के लिए शानदार खबर, भारतीय टीम ने 4x100 मीटर मेडली रिले के फाइनल के लिए किया क्वालिफाई। ऋषभ दास, धनु सुरेश, बेनेडिक्टन रोहित और आकाश मणि ने हीट्स में 3:40:41 का समय लेकर हासिल किया 7वां फाइनल में मारी एंट्री। कबड्डी में डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय पुरुष कबड्डी टीम का शानदार प्रदर्शन, अपने दूसरे ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया को 63-31 से दी करारी शिकस्त। एशियन गेम 2026 में भारत हॉकी टीम की बड़ी जीत, श्रीलंका को 16-1 से हराया। भारत का प्रदर्शन अब तक रहा बहुत जबरदस्त, दोनों मैचों में 8-8 खिलाड़ियों ने किए गोल। भोली बोगी गांव में महिलाएं गंगू पत्ते से बना रही हैं टोपी, पद्मश्री जमुना टुडू को देखरेख में महिलाओं को इससे मिल रहा है रोजगार। महिलाएं जंगल से गंगू पत्ता लाकर टोपी करती हैं तैयार, इस कला की उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, ये पुरखों से चली आ रही है परंपरा। खेतों में काम करते समय पहनती हैं महिलाएं गंगू पत्ते की टोपी, महिलाओं के मुताबिक ये धूप और बारिश से बचाने में करती है मदद।
0: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा

0: कम से कम लोगों
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जेएनटी पर मनाए जा रहे गणेश उत्सव से जुड़िए। इसके लिए आपको बस करना इतना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजना है, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक अपने वीडियोस भेज रहे हैं। पहली तस्वीर हमें महाराष्ट्र के मिराज से अदिति शंकर ने भेजी है, जिन्होंने भगवान विघ्नहर्ता की इस भव्य मूर्ति को बेहद शानदार तरीके से विराजित किया है। अदिति शंकर ने अपने बप्पा को रंग बिरंगी रोशनी की छटा के साथ चौकी पर स्थापित किया है। इस डेकोरेशन के बीच उनके बप्पा बेहद प्यारे और शानदार लग रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर आगरा के फतेहाबाद से हमारी एक और दर्शक अर्चना गुप्ता जी ने भेजी है। उन्होंने भी अपने छोटे से गणपति को फूलमाला पहनाकर बहुत ही आस्था और भक्ति के साथ घर में विराजित किया, जिसकी तस्वीर अर्चना गुप्ता जी ने जीएनटी के साथ साझा की है।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है।

0: तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे मुकदमेबाजी की और इसके समाधान की। दिनांक 23 सितंबर 2026 दिन बुधवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, रात के 10:50 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, प्रातः 9:09 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, रात के 9:57 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं मुकदमेबाजी के बारे में। कभी कभी परिवार में मुकदमा होता है, पति पत्नी के बीच में वैवाहिक मुकदमा होता है, प्रॉपर्टी का मुकदमा, नौकरी का मुकदमा, अलग अलग तरह के डिस्प्यूट जीवन में पैदा हो जाते हैं। ज्योतिष में ये मुकदमेबाजी होती कैसे है, आती कैसे है? देखिए, मंगल को ज्योतिष में वाद विवाद, तर्क और उग्रता का ग्रह माना जाता है और सामान्यतः मंगल हर तरह के विवाद और मुकदमेबाजी के लिए जिम्मेदार होता है। मंगल के खराब होने से अपराध होते हैं, जेल जा सकता है आदमी, जीवन में बहुत सारी मुकदमेबाजी की नौबत आ जाती है। मंगल भी खराब हो, शनि भी खराब हो, तो जिंदगी जेल में कट जाती है। अगर मंगल राहु के साथ प्रभावित हो जाए, राहु का इंपैक्ट पड़ जाए मंगल के ऊपर, तो झूठी मुकदमेबाजी होती है, क्योंकि राहु काल्पनिक समस्याएं या काल्पनिक मुकदमे जीवन में पैदा कर देता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि अगर बृहस्पति केंद्र में बैठा हो, पाप प्रभाव में ना हो, थोड़ा बेहतर हो, मजबूत हो, तो व्यक्ति की रक्षा होती है। मंगल का निगेटिव होना दो चीजों में आदमी को फंसाता है। पहला, कर्जा। कर्जा लेने में हर्ज नहीं है, लेकिन लोगों की जिंदगी में कर्जा इतना बढ़ जाता है कि निकल ही नहीं पाते, वहां मंगल खराब है। बेवजह के मुकदमे में फंस गए, पुलिस कचहरी कोर्ट के चक्कर में दौड़ रहे हैं, वहां भी मंगल खराब है। तो मंगल का खराब होना कर्ज और मुकदमेबाजी का कारण आपके जीवन में बन सकता है। देखिए, अगर भाई भाई के बीच में, परिवार में चाचा ताऊ, इन सब लोगों के बीच में आपस में मुकदमेबाजी चल रही है, तो क्या करेंगे? मंगलवार को प्रातः स्नान करके हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनके सामने खड़े होकर या बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए और इसके बाद मंदिर में लोगों में हलवा पूड़ी बांटिए,
हलवा पूड़ी ना बांट सके तो गुड़ बांटिए। ये प्रयोग मंगलवार से शुरू करके 9 मंगलवार को करिएगा। भाई भाई के बीच में, परिवार के बीच में जो मुकदमा है उसका हल निकल आएगा। अगर नौकरी के संबंध में कोई मुकदमा हो, आप सस्पेंड

0: यानी नौकरी का कोई भी मुकदमा लड़ रहे हों तो क्या करें, मंगलवार को शाम को हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनको चमेली का तेल और सिंदूर लगाइए, अगर महिला हैं तो आप केवल लाल फूल या लाल फूल की माला चढ़ाइएगा, इसके बाद उनको तुलसी के पत्तों की माला अर्पित करिए और फिर मंदिर में ही या मंदिर से घर आकर एक मंत्र का 108 बार जप करिएगा, ओम नमो भगवते राम दूताय, ओम नमो भगवते राम दूताय, इस मंत्र का जप करिएगा, एक माला तीन माला या 11 माला, ये प्रयोग मंगलवार को शुरू करके लगातार 9 मंगलवार को करिए, नौकरी के संबंध का जो मुकदमा है वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। देखिए आज के समय में मैरिटल मुकदमे सबसे ज्यादा हो रहे हैं, तो अगर विवाह का कोई मुकदमा है या पति पत्नी के बीच में कोई मुकदमा चल रहा है डिवोर्स को लेके, मेंटेनेंस को लेके, कस्टडी को लेके, तो क्या करें कि मामला हल हो जाए, लाल वस्त्र धारण करके हनुमान जी के सामने बैठिए, उनके सामने घी का 2 मुखी दीपक जलाइए, एक सिरा हनुमान जी की तरफ होगा और दूसरा अपनी तरफ रखिए, इसके बाद ओम हं हनुमते नमः इस मंत्र का कम से कम 3 माला 108 × 3 बार जप करिएगा, ये प्रयोग बैक टू बैक 3 मंगलवार की रात को करें और प्रार्थना करें वैवाहिक मुकदमे का समाधान निकल आएगा। जैसा आपको पहले बताया कि अगर मुकदमेबाजी में राहु का प्रभाव हो तो आदमी झूठे आरोप में, झूठे मुकदमे में फंस जाता है। अगर आपके ऊपर झूठा आरोप लग गया, झूठे मुकदमे में फंस गए, तो कैसे इससे बाहर निकलें? सुबह के समय जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, इसके बाद सूर्य की रोशनी में या सूर्य के सामने बैठकर एक विशेष चौपाई का 3 माला जप करिए, चौपाई होगी, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते, 3 माला जप करिए, ये प्रयोग मंगलवार से शुरू करके लगातार 27 दिनों तक करिएगा और मंगलवार को गाय को गुड़ और रोटी खिलाइएगा। जैसे ही ये प्रयोग करेंगे 1 से 3 महीने के अंदर झूठे आरोप से, झूठे मुकदमे से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप मुकदमे में हार गए, आपको सजा हो गई, फिर आपने आगे अपील की और अभी बाहर हैं, लेकिन मुकदमे में हारने की वजह से सजा हो गई है, या परिवार में कोई मुकदमा हार गया उसको सजा हो गई है, तो क्या उपाय करेंगे? मंगलवार को प्रातः काल स्नान करके उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके बैठिए। मंगलवार को सुबह ही बैठ जाइएगा और धीरे धीरे करके रुक रुक करके 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। अगर आप चाहें तो एक ही दिन में 100 बार पढ़ लें, या अगर आप एक दिन में नहीं पढ़ पाते तो 11 दिनों में 10-10 करके या 9-9 करके 11 दिनों में 100 बार पढ़ लीजिए और रोज हनुमान जी से मुक्ति की प्रार्थना करिएगा। जितने दिन ये प्रयोग करेंगे उतने दिन प्याज लहसुन मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे और जैसे ही ये प्रयोग समाप्त करेंगे मुकदमे से सजा से मुक्ति मिलने के योग बन जाएंगे। फिर बता दूं, जितने दिन ये प्रयोग करेंगे प्याज लहसुन मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर्ज आपका नहीं चुक पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइए, हनुमान जी से प्रार्थना करिए और गुड़ का भोग लगाकर लोगों में बांटिए। साथ ही साथ अपना ईमानदार प्रयास जारी रखिए, आपको कर्ज से मुक्ति जल्दी मिलेगी। कभी मुकदमे जेल की नौबत ना आए इसके लिए क्या करें, हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। मंगलवार को मांस मदिरा प्याज लहसुन ना खाएं और मंगलवार के शाम को गुड़ या हलवा पूरी का दान करें, अच्छा रहेगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
4: गणेश उत्सव के 10वें दिन भारी उल्लास, मुंबई में भक्तों को भाया इको फ्रेंडली एआई गणेश पंडाल, तो अकोला में 80 के दौर की थीम पर सजा बप्पा का दरबार। उज्जैन में जल झूलनी एकादशी पर निकली बाबा काल भैरव की शाही सवारी, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ 4 किलोमीटर लंबा भक्तों का कारवां। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संयुक्त सैन्य अभ्यास में दिखा भारत अमेरिकी सैनिकों के शौर्य का जलवा, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का भी दिखा दम। नेपाल बाढ़ पीड़ितों के लिए अमेरिका की बड़ी मदद, 250 करोड़ की सहायता राशि का और ऐलान। वर्ल्ड स्किल्स शांघाई समारोह की ओपनिंग सेरेमनी में बिखरे रंग, दुनिया भर से युवा पेशेवर ले रहे हिस्सा, 27 तारीख तक चलेगा दुनिया का सबसे बड़ा कौशल मेला।
3: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
5: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका।
0: नमस्कार।
5: तो आज के इस खास शो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं तो उसके कारण क्या कुछ होते हैं और उससे कैसे मुक्ति पाई जा सकती है, इसके लिए क्या कुछ उपाय होते हैं। लेकिन सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
0: आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर्ज आपका नहीं चुक पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइए, हनुमान जी से प्रार्थना करिए और गुड़ का भोग लगाकर लोगों में बांटिए। साथ ही साथ अपना ईमानदार प्रयास जारी रखिए, आपको कर्ज से मुक्ति जल्दी मिलेगी।
5: तो चलिए सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि 23 सितंबर 2026 यानी कि बुधवार का पंचांग क्या है।
0: दिनांक 23 सितंबर 2026 दिन बुधवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, रात के 10:50 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, प्रातः 9:09 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, रात के 9:57 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
5: और चलिए कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले अपने विषय से जुड़ी हुई बात करते हैं। पंडित जी से ये जान लेते हैं कि मुकदमेबाजी का ज्योतिष में किन ग्रहों से संबंध होता है।
0: देखिए, आज हम बात कर रहे हैं मुकदमेबाजी के बारे में। कभी कभी परिवार में मुकदमा होता है, पति पत्नी के बीच में वैवाहिक मुकदमा होता है, प्रॉपर्टी का मुकदमा, नौकरी का मुकदमा, अलग अलग तरह के डिस्प्यूट जीवन में पैदा हो जाते हैं। ज्योतिष में ये मुकदमेबाजी होती कैसे है, आती कैसे है? देखिए, मंगल को ज्योतिष में वाद विवाद, तर्क और उग्रता का ग्रह माना जाता है और सामान्यतः मंगल हर तरह के विवाद और मुकदमेबाजी के लिए जिम्मेदार होता है। मंगल के खराब होने से अपराध होते हैं, जेल जा सकता है आदमी, जीवन में बहुत सारी मुकदमेबाजी की नौबत आ जाती है। मंगल भी खराब हो, शनि भी खराब हो, तो जिंदगी जेल में कट जाती है। अगर मंगल राहु के साथ प्रभावित हो जाए, राहु का इंपैक्ट पड़ जाए मंगल के ऊपर, तो झूठी मुकदमेबाजी होती है, क्योंकि राहु काल्पनिक समस्याएं या काल्पनिक मुकदमे जीवन में पैदा कर देता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि अगर बृहस्पति केंद्र में बैठा हो, पाप प्रभाव में ना हो, थोड़ा बेहतर हो, मजबूत हो, तो व्यक्ति की रक्षा होती है। मंगल का निगेटिव होना दो चीजों में आदमी को फंसाता है। पहला, कर्जा। कर्जा लेने में हर्ज नहीं है, लेकिन लोगों की जिंदगी में कर्जा इतना बढ़ जाता है कि निकल ही नहीं पाते, वहां मंगल खराब है। बेवजह के मुकदमे में फंस गए, पुलिस कचहरी कोर्ट के चक्कर में दौड़ रहे हैं, वहां भी मंगल खराब है। तो मंगल का खराब होना कर्ज और मुकदमेबाजी का कारण आपके जीवन में बन सकता है।
5: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दैनिक राशिफल के बारे में जान लेते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि वाले जातकों का दैनिक राशिफल क्या है?
0: मेष राशि, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, यात्रा में सावधानी रखें, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
5: और चलिए अब पंडित जी से ये जानेंगे कि अगर भाई भाई या परिवार के लोगों में मुकदमेबाजी चल रही है तो उसका समाधान कैसे किया जाए, क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं?
0: देखिए, अगर भाई भाई के बीच में, परिवार में चाचा ताऊ, इन सब लोगों के बीच में आपस में मुकदमेबाजी चल रही है तो क्या करेंगे, मंगलवार को प्रातः स्नान करके हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनके सामने खड़े होकर या बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए और इसके बाद मंदिर में लोगों में हलवा पूड़ी बांटिए। हलवा पूड़ी ना बांट सके तो गुड़ बांटिए। ये प्रयोग मंगलवार से शुरू करके 9 मंगलवार को करिएगा। भाई भाई के बीच में, परिवार के बीच में जो मुकदमा है उसका हल निकल आएगा।
5: और अब जान लेते हैं पंडित जी से कि अगर नौकरी के संबंध में मुकदमेबाजी चल रही है तो इसका समाधान करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए?
0: अगर नौकरी के संबंध में कोई मुकदमा हो, आप

0: मुकदमा लड़ रहे हों, यानी नौकरी का कोई भी मुकदमा लड़ रहे हों, तो क्या करें? मंगलवार को शाम को हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनको चमेली का तेल और सिंदूर लगाइए। अगर महिला हैं तो आप केवल लाल फूल या लाल फूल की माला चढ़ाइएगा। इसके बाद उनको तुलसी के पत्तों की माला अर्पित करिए और फिर मंदिर में ही या मंदिर से घर आकर एक मंत्र का 108 बार जप करिएगा। ओम नमो भगवते राम दूताय, ओम नमो भगवते राम दूताय, इस मंत्र का जप करिएगा। एक माला, तीन माला या 11 माला, ये प्रयोग मंगलवार को शुरू करके लगातार 9 मंगलवार को करिए। नौकरी के संबंध का जो मुकदमा है वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
1: और अब वक्त हो चला है कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जान लेने का।
0: कर्क राशि, धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, धन लाभ के योग हैं, परिवार की समस्या हल होगी, करियर में लाभ के योग हैं, गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, काम की रुकावट दूर होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, काम का दबाव कम होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: सुधार होगा, चिंताएं समाप्त होंगी, करियर में व्यस्तता बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका सबसे पहला सवाल लेने का। पंडित जी आपसे जानना चाहूंगी आज आप सबसे पहला सवाल किसका लेंगे?
0: जी आज का पहला प्रश्न अलका जी ने हमें लिखा है और अलका जी हमें गुजरात से मेल लिखती हैं, अहमदाबाद से। 16 जुलाई 1988 का जन्म है। शाम के 3:55 जन्म स्थान है जामनगर गुजरात। अलका कह रही हैं कि मेरा एक विवाह टूट चुका है, क्या आगे मेरी दूसरी शादी होगी और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? अलका जी आपकी कुंडली के हिसाब से दूसरे विवाह की संभावना प्रबल है। कुंडली में साल 2027 के अप्रैल से दिसंबर के बीच में आपकी दूसरी शादी होगी, आपकी अपनी इच्छा से, और आपका वैवाहिक जीवन कुल मिला जुलाकर बेहतर रहेगा। ऐसा लग रहा है कि विवाह के बाद आप अहमदाबाद से दूर जाएंगी, आपका चेंज ऑफ प्लेस भी होगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा करके पहने, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें और हर रविवार को दिन के समय में पार्वती मंगल का अगर पाठ करें तो आपके लिए बेहतर होगा।
1: और चलिए आगे बढ़ते हैं आज के आपके दूसरे सवाल की ओर। पंडित जी दूसरा सवाल किसका रहेगा?
0: जी अगला प्रश्न रानी चौहान ने हमें लिखा है, मुजफ्फरनगर से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 10 अक्टूबर 1975, जन्म का समय रात में 9 बजे, जन्म का स्थान है मुजफ्फरनगर। रानी कह रही हैं कि मेरे 2 ऑपरेशन पहले हो चुके हैं और अभी मुझे हड्डियों में काफी समस्या है, तो क्या मेरा आगे भी ऑपरेशन होगा और अगर मैं अपनी हड्डियों की सर्जरी कराऊं तो क्या उससे सुधार होगा मेरे लिए? रानी जी आपकी कुंडली के हिसाब से आपको आगे चल करके अपने ज्वाइंट का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। आपकी कुंडली में ये संभावना बन रही है। अगले साल के मध्य में 2027 के मध्य में आपके ज्वाइंट का ऑपरेशन होगा और ये ऑपरेशन आपके लिए कुल मिला के सफल रहने वाला है, तो आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं है। एक माणिक्य बनवा के पहन लें, 8-10 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बेहतर होगा।
1: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि अगर विवाह का या फिर पति पत्नी का कोई मुकदमा चल रहा हो तो क्या कुछ करना चाहिए?
0: देखिए आज के समय में मैरिटल मुकदमे सबसे ज्यादा हो रहे हैं। तो अगर विवाह का कोई मुकदमा है या पति पत्नी के बीच में कोई मुकदमा चल रहा है डिवोर्स को लेके, मेंटेनेंस को लेके, कस्टडी को लेके, तो क्या करें कि मामला हल हो जाए? लाल वस्त्र धारण करके हनुमान जी के सामने बैठिए, उनके सामने घी का दो मुखी दीपक जलाइए, एक सिरा हनुमान जी की तरफ होगा और दूसरा अपनी तरफ रखिए। इसके बाद ओम हं हनुमते नमः इस मंत्र का कम से कम 3 माला 108 × 3 बार जप करिएगा। ये प्रयोग बैक टू बैक 3 मंगलवार की रात को करें और प्रार्थना करें वैवाहिक मुकदमे का समाधान निकल आएगा।
1: और इसी के साथ पंडित जी से ये भी जान लेंगे कि अगर आप किसी झूठे मुकदमे में फंस गए हैं तो इसका उपाय क्या है।
0: जैसा आपको पहले बताया कि अगर मुकदमेबाजी में राहु का प्रभाव हो तो आदमी झूठे आरोप में, झूठे मुकदमे में फंस जाता है। अगर आपके ऊपर झूठा आरोप लग गया, झूठे मुकदमे में फंस गए, तो कैसे इससे बाहर निकलें? सुबह के समय जल में रोली मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। इसके बाद सूर्य की रोशनी में या सूर्य के सामने बैठकर एक विशेष चौपाई का 3 माला जप करिए। चौपाई होगी दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते, 3 माला जप करिए। ये प्रयोग मंगलवार से शुरू करके लगातार 27 दिनों तक करिएगा और मंगलवार को गाय को गुड़ और रोटी खिलाइएगा। जैसे ही ये प्रयोग करेंगे 1 से 3 महीने के अंदर झूठे आरोप से, झूठे मुकदमे से छुटकारा मिल जाएगा।
1: और अब वक्त हो चला है तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जानने का।
0: तुला राशि, जिम्मेदारियां बढ़ी रहेंगी, व्यर्थ की दौड़ भाग होगी, चोट चपेट से बचाव करें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, नौकरी में कुछ परिवर्तन होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। निर्णयों में सावधानी रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से कि अगर मुकदमे में हार की वजह से सजा हो गई हो तो क्या कुछ करना चाहिए।
0: अगर आप मुकदमे में हार गए, आपको सजा हो गई, फिर आपने आगे अपील की और अभी बाहर हैं, लेकिन मुकदमे में हारने की वजह से सजा हो गई है, या परिवार में कोई मुकदमा हार गया उसको सजा हो गई है, तो क्या उपाय करेंगे। मंगलवार को प्रातः काल स्नान करके उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके बैठिए। मंगलवार को सुबह ही बैठ जाइएगा और धीरे धीरे करके रुक रुक करके 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। अगर आप चाहें तो एक ही दिन में 100 बार पढ़ लें, या अगर आप एक दिन में नहीं पढ़ पाते तो 11 दिनों में 10-10 करके या 9-9 करके 11 दिनों में 100 बार पढ़ लीजिए और रोज हनुमान जी से मुक्ति की प्रार्थना करिएगा। जितने दिन ये प्रयोग करेंगे उतने दिन प्याज लहसुन मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, और जैसे ही ये प्रयोग समाप्त करेंगे मुकदमे से सजा से मुक्ति मिलने के योग बन जाएंगे। फिर बता दूं, जितने दिन ये प्रयोग करेंगे प्याज लहसुन मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे।
1: और अब वक्त हो चला है मकर कुंभ और मीन राशि वाले जातकों के दैनिक राशिफल के बारे में जानने का।
0: मकर राशि, रुके हुए काम इस समय आपके पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सिल्वर और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। पारिवारिक समस्या हल होगी। गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका तीसरा सवाल लेने का। पंडित जी से जान लेंगे कि तीसरा सवाल पंडित जी किसका लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारी मेल आईडी दी गई है जिस पे आप मेल करके पंडित जी तक अपना प्रश्न पहुंचा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पंडित जी से जान लेते हैं पंडित जी तीसरा सवाल किसका लेने वाले हैं।
0: जी अगला प्रश्न हमें अर्चना जी ने लिखा है और अर्चना जी हमें पुणे महाराष्ट्र से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 28 अप्रैल 1993, जन्म का समय रात में 1:35, जन्म का स्थान है धूलिया महाराष्ट्र। ये कह रही हैं कि मेरी मानसिक स्थिति पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं है और मेरी नींद भी डिस्टर्ब हो गई है, नींद नहीं आती है, मैं बहुत परेशान हूं, क्या करूं। देखिए अर्चना, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी समस्या टोटल साइकोलॉजिकल है, पूरी तरह से मानसिक है, चंद्रमा से कंट्रोल हो रही है, इसलिए सबसे पहले किसी मनोचिकित्सक से संपर्क करें ताकि वो आपके मन और नींद के साइकिल को बेहतर करे। ज्योतिष के हिसाब से आप अभी नवंबर के महीने से बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 8-9 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें, रोज सुबह और शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज के आपके चौथे और अंतिम सवाल का। पंडित जी चौथा सवाल किसका रहेगा?
0: जी

0: धीरेन्द्र त्यागी ने हमें लिखा है और धीरेन्द्र जी हमें गुड़गांव से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 31 अगस्त 1970, जन्म का समय सुबह के 9 बजे, जन्म का स्थान है मेरठ। धीरेन्द्र जी कह रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़ करके पिछले 1 वर्ष से व्यवसाय कर रहा हूं, लेकिन व्यवसाय में उन्नति नहीं हो पा रही है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा व्यापार बेहतर चले। धीरेन्द्र जी, सबसे पहले थोड़ा सब्र करिए, आपका व्यापार आपने थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया है, आपका व्यापार बेहतर होगा जून 2027 के बाद, और इसके बाद आपकी स्थितियां ज्यादा अच्छी हो जाएंगी। दो उपाय करिए, पहले तो एक ओपल बनवा के पहनिए, 14-15 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें, रोज शाम को कम से कम 3 माला शनि मंत्र का जप करें, लाभ होगा।
1: और चलिए अब बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन 23 सितंबर को है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जान लेते हैं पंडित जी से कि आपका आने वाला साल कैसा रहेगा।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 23 सितंबर को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में स्थिरता बनी रहेगी, आर्थिक स्थिति भी ठीक रहेगी, हालांकि विवाह और संतान के मामलों में विलंब होगा। क्या करेंगे, पूरे साल भर गणेश जी की उपासना करें तो आपके लिए बेहतर होगा।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है पंडित जी से आज की जिज्ञासा के बारे में जान लेने का।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या गुरु भी किसी व्यक्ति को संस्कार के अनुसार मिलते हैं। देखिए, व्यक्ति के संस्कार उसके कर्मों से निर्मित होते हैं। जिस तरह के कर्मों का जीवन पर प्रभाव होता है उसी के संस्कार भोगने के लिए वैसे ही गुरु मिलते हैं। वास्तविक गुरु, सद्गुरु जन्म जन्मांतर के शुभ कर्मों और संस्कारों के बाद मिलते हैं।
1: और चलिए अब जान लेते हैं कि 23 सितंबर 2026 यानी कि बुधवार का शुभ पहर क्या होगा।
0: दिनांक 23 सितंबर 2026 दिन बुधवार, शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में गणपति मंत्र का अधिक से अधिक जप करें, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 23 सितंबर बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में।
1: और अब वक्त हो चला है आज की गुडलक राशि के बारे में जान लेने का। जान लेते हैं कि आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग पूजा में क्या करें। आज की गुडलक राशि है कन्या, इनको पूजा में शंख जरूर बजाना चाहिए। ऐसा करने से इनका स्वास्थ्य और इनकी मानसिक स्थिति ठीक रहेगी।
1: और चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर और सबसे जरूरी पड़ाव की ओर। जानेंगे पंडित जी से कि आज का महा उपाय क्या है जिसका पालन करने से लोगों के जीवन की समस्याएं दूर हो सकती है।
0: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि कभी मुकदमे जेल की नौबत ना आए इसके लिए क्या करें। हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। मंगलवार को मांस मदिरा प्याज लहसुन ना खाएं और मंगलवार की शाम को गुड़ या हलवा पूड़ी का दान करें, अच्छा रहेगा।
1: तो पंडित जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
0: धन्यवाद।
1: और इसी के साथ गुड लक टुडे के इस खास शो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर जीएनटी में भी गणपति पधारे और हमें यकीन है कि हमारे दर्शकों के घर भी गणपति बप्पा जरूर पधारे होंगे। हम चाहते हैं कि आप भी जीएनटी के गणपति उत्सव का हिस्सा बने। आप अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें अपने वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा नंबर है 7303409922। ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है, ये नंबर सिर्फ वीडियो या तस्वीरें भेजने के लिए है। जब भी आप अपना वीडियो या फोटो भेजें तो साथ में अपना नाम और अपने शहर, गांव या कस्बे का नाम जरूर लिखें। गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे गणेश उत्सव से जुड़िए। इसके लिए आपको बस करना इतना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजना है, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक अपने वीडियोस भेज रहे हैं। जी हाँ, अपने टीवी स्क्रीन पर आप दो तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर हमें महाराष्ट्र के नागपुर से डॉक्टर मोहन बैतुले ने भेजी है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितनी भक्तिभाव से बप्पा की आराधना हो रही है। बप्पा की पगड़ी हो या शानदार सजावट, बड़े ही शानदार तरीके से बप्पा का श्रृंगार किया गया है। तो वहीं दूसरी तस्वीर हमें महाराष्ट्र के नागपुर से सनी सिंह परिहार ने भेजी है। यहाँ बड़े ही उत्साह के साथ विघ्नहर्ता की पूजा अर्चना हो रही है। बप्पा की मनमोहक प्रतिमा हर किसी को आकर्षित कर रही है। बप्पा का श्रृंगार हो या उनका आसन, श्रद्धालु ने बड़ी ही भक्तिभाव से इसे सजाया है। देखिए दोनों तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, बेहद खूबसूरत लग रहे हैं बप्पा।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जेएनटी पर मनाए जा रहे गणेश उत्सव से जुड़िए। इसके लिए आपको बस करना इतना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजना है, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक अपने वीडियोस भेज रहे हैं, तो आपके स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर हमें मध्य प्रदेश के महेश्वर के विनायक कानुनगो ने भेजी है। विनायक ने अपने बप्पा को लाल रंग की सुंदर पगड़ी पहनाई है, पीले रंग की धोती में बप्पा खूब जच रहे हैं, फूलों से श्री गणेश का श्रृंगार भी किया गया है। तो वहीं दूसरी तस्वीर हमें महाराष्ट्र के भंडारा से राकेश मेश्राम ने भेजी है। राकेश के बप्पा के सर पर लाल रंग की पगड़ी सजी है जिस पर सफेद मोती जड़े हैं। बप्पा के आसन ऐसे सजाया गया है जैसे बप्पा बादलों के बीच हो। वाकई ये तस्वीर बेहद खूबसूरत है। तो दोनों तस्वीरें गणपति बप्पा की आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां बप्पा का भव्य श्रृंगार किया गया है। और अब बात एक कुशल और कौशल ट्रेनिंग की। गुरुग्राम में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां युवा न सिर्फ किताबी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं बल्कि ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की प्रैक्टिकल नॉलेज भी बेहतर तरीके से हासिल कर रहे हैं।

0: ये तस्वीर ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बदलाव को दिखा रही है, जहां मशीनों के साथ साथ उन्हें चलाने वाले भी स्मार्ट हो रहे हैं। तकनीक के इस दौर में इस इंडस्ट्री को ऐसे युवाओं की जरूरत है जिनके पास सिर्फ डिग्री ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स भी हो। इसी के चलते भारत और जापान के सहयोग और युवाओं को एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। हरियाणा के गुरुग्राम जिले के पटौदी में इस जापान इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मैन्युफैक्चरिंग में युवाओं को क्लासरूम ट्रेनिंग के साथ इंडस्ट्री एक्सपोजर भी दिया जा रहा है, जिसमें आधुनिक तकनीकों पर खास फोकस किया जा रहा है।
1: टेक्नोलॉजी जिस तेजी के साथ अब आगे बढ़ रही है, उसका असर पढ़ाई से लेकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तक जो है वो देखने को मिल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग तक जो है टेक्नोलॉजी अब नहीं रही है, सिर्फ मशीनों पर ही जो लोग हैं वो काम करते हुए जो है आपको नजर आए, बल्कि उसके अलावा AI का सबसे बड़ा रोल जो है अब देखा जा रहा है। उसके साथ ऑटोमेशन की बात करें हम, रोबोटिक्स की बात करें या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें, इन सभी के साथ जो दायरा है टेक्नोलॉजीज का, एडवांस टेक्नोलॉजीज की हम बात कर रहे हैं, उसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में युवाओं को भी अब इन सभी टेक्नोलॉजी के साथ जो है काम करने का जो है एक अच्छी ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है। क्लासरूम जो पढ़ाया जाता है वो यहाँ पर प्रैक्टिकली जो है वो बच्चों को देखने को मिल रहा है, और पेड इंटर्नशिप इनके लिए खासतौर पर रखी जाती है कि 7 months की इनको पेड इंटर्नशिप दी जाती है, 5 months के इनका जो है थ्योरी क्लासरूम स्टडी होती है, ताकि दोनों ही जो है बच्चे पढ़ सके समझ सके।
0: इस पहल का मकसद युवाओं को ऐसी टेक्निकल और प्रैक्टिकल स्किल्स देना है जिनकी जरूरत मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगातार बढ़ रही है। यहाँ स्टूडेंट्स को मिनी व्हीकल असेंबली लाइन, इंजन असेंबली लाइन, वेल्डिंग और पेंटिंग सिमुलेटर्स, रोबोटिक इनेबल सिस्टम और बॉडी रिपेयर जैसी सुविधाओं के जरिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है।
2: जिन बच्चों को आप स्किल कर रहे हैं वो फिर 10, 20, 30, 40 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पे ना ट्रेन करके आज और कल की टेक्नोलॉजी पे ट्रेन करें। जो इक्विपमेंट आप यहाँ पर देखेंगे इस स्किलिंग इंस्टीट्यूट में, वो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा आप मारुति सुजुकी के कार मैन्युफैक्चरिंग, मॉडर्न कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में पाएंगे। जैसे ये कन्वेयर बेल्ट हो गई, रोबोटिक आर्म हो गई, CNC मशीन्स हैं, सिमुलेटर्स हैं, ये पेंट शॉप बूथ है मॉडर्न, तो ये सारे मॉडर्न इक्विपमेंट पे।
0: ट्रेनिंग में जापानीज मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल्स पर जोर दिया जाता है, साथ ही टेक्नोलॉजी में हो रहे बदलाव को देखते हुए ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपग्रेड करने पर ध्यान दिया जाता है।
3: सबसे पहले हमें इसी चीज के बारे, सेफ्टी के बारे में बताया जाता है, और हमारी ड्रेसिंग कोड वगैरह, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में, सॉफ्ट स्किल्स जो है हमारी वो डेवलप करी जाती है। मैम बोला जाए तो कम्प्लीटली फ़ायदा मिल रहा है। मैम जब हम OGT के लिए गए तो मैम वहाँ भी कोई चीज़ हमें नई अनजानी नहीं लगी, क्योंकि हमें पहले से ही 5S और 3S, 3R और 3K वगैरह सभी के चीज़ों के बारे में, जापानीज वर्ल्ड के बारे में, सभी के बारे में बता दिया गया था। और जैसे मैम एडवांस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में और ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक टूल वगैरह के बारे में हमें यहाँ पहले से एडवांस ट्रेनिंग दे दी जाती है मैडम।
0: एक खास बात यह है कि अब मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर में लड़कियां भी दिलचस्पी दिखा रही है, यही वजह है कि वो भी यहां पूरी शिद्दत से ट्रेनिंग लेती नजर आ रही है और इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्किल सीख रही है।
1: अगर आप इस पूरे ट्रेनिंग सेंटर को देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक अलग से तस्वीर भी नज़र आएगी। अमूमन देखा जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है लड़कों की अच्छी खासी भीड़ नज़र आती है, लेकिन अब आपको लड़कियाँ भी जो है अपनी जगह बनाते हुए जो है यहाँ पर नज़र आ जाएगा। यानी आने वाले समय में ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो हमारे दिमाग में जिस तरीके से सिर्फ पुरुषों का ही जो है ध्यान आता था, उनकी तस्वीर सामने आती थी, लेकिन यहाँ लड़कियाँ भी आपको मशीन ऑपरेशन टेक्नोलॉजी, जितनी भी टेक्निकल स्किल्स होती है वो सब ट्रेनिंग लेते हुए जो है वो नजर आ जाएगी।
4: सब बोलते हैं कि लड़कियों के लिए ये काम नहीं है, इसमें बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत है, लेकिन मुझे उन सबको अलग प्रूफ करना था, मुझे दिखाना था कि नहीं, लड़कियां भी सब कुछ कर सकती हैं, लड़कियां चाहे तो किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर में काम कर सकती हैं। तो उसी को देखते हुए मैंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सेलेक्ट करा।
1: कितना अच्छा लग रहा है कि एक भारतीय युवा होने के नाते मैं जापानी टेक्नोलॉजी जो है वो सीख पा रही हूँ।
4: बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं लड़की होकर और ये सब बहुत आसानी से सीख रही हूँ, और सब लोग सपोर्ट से मैंने बहुत अच्छे से सीख लिया है।
0: साफ है कि टेक्निकल एजुकेशन और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के जरिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में महिलाओं के लिए भी नए अवसर तैयार हो रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते तैयार करने पर पूरा जोर नजर आ रहा है। गुरुग्राम के पटौदी से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: चल रहे एशियन गेम्स के चौथे दिन भारत की अच्छी शुरुआत हुई। महिला स्किट टीम इवेंट में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। रजिया ढिलो, महेश्वरी चौहान और परिनाज धालीवाल की तिकड़ी ने कुल 331 अंक हासिल किए। भारत ने महिला स्किट टीम इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता। तो इस वक्त की शानदार खबर, भारत के पास अब तक कुल 8 मेडल, 1 गोल्ड, 4 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज। और अब बात एक ऐसे कैफे की जो आपको स्कूल के बीते दिनों की याद करवा देगा। यहाँ ग्राहकों की फीडबैक के लिए नोटिस बोर्ड है, क्वेश्चन पेपर यानी प्रश्न पत्र के अंदाज में फूड मेन्यू है, टेबल नंबर की जगह रोल नंबर बताने पर ही ऑर्डर सर्व किया जाता है।

0: जिंदगी की भागदौड़ और उम्मीदों के बोझ के बीच अक्सर हमें अपने स्कूली दिनों की याद आ ही जाती है। जीवन के उस खूबसूरत दौर में जहां ना कोई डर था ना ही कोई चिंता, आने वाले कल को लेकर जब बेफिक्री थी और आंखों में बेहिसाब सपने थे। खैर, गुजरा जमाना तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन नोएडा में एक ऐसा कैफे जरूर है जो शर्तिया आपको अपने स्कूल के दिनों की याद दिलाएगा। नोएडा का यह अनोखा कैफे आपको स्कूल के दिनों की यादों को जीने का मौका दोबारा देगा, जिससे जुड़ी स्मृतियां आपके चेहरे पर मुस्कान और मन में एक मीठा एहसास कराएगी। खाने पीने के आइटम से पहले कैफे की थीम और कॉन्सेप्ट ग्राहकों को प्रभावित करती है। यहाँ पैर रखते ही क्लासरूम, रोल नंबर, अटेंडेंस शीट, मार्कशीट और बहुत कुछ पलक झपकते याद आने लगते हैं। बचपन भले ही लौट कर न आए, लेकिन उससे जुड़ी यादें चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान जरूर लाती है।
1: जब हम स्कूल में होते हैं तो कितनी जल्दी में होते हैं ना, कि कितनी जल्दी बड़े हो जाएं, कितनी जल्दी ढेर सारे पैसे कमाएं, कितनी जल्दी अपने डिसीजन हम खुद ले लें। लेकिन अब जब बड़े हो गए हैं तो स्कूल से तो बाहर आ गए हैं, लेकिन स्कूल हमसे बाहर कभी आ ही नहीं पाया। वो स्कूल हमेशा हमारे भीतर रहता है। आज हम आपको एक ऐसी ही जगह पर लेकर आए हैं जहाँ जब आप पहुँचेंगे तो ना सिर्फ आपको अपना स्कूल याद आएगा, बल्कि अपना क्लासरूम, अपना रोल नंबर, अपनी अटेंडेंस शीट, अपनी मार्कशीट, सब कुछ याद आने वाली है। हम मौजूद हैं नोएडा में और इस जगह का नाम है अटेंडेंस शीट कैफे।
0: कैफे में लटकी स्कूल की घंटी ग्राहकों के लिए टाइम कीपर की तरह काम करती है। समय के बदलाव, अनुशासन और बचपन की अनमोल यादों की याद दिलाने के साथ ये घंटी पीरियड की शुरुआत या अंत होने का भी प्रतीकात्मक संकेत देती है। हालांकि कैफे में लगी घंटी बजने के बाद वहां लगे ब्लैक बोर्ड पर आपको ग्राहकों को अपना रोल नंबर, नाम और फेवरेट स्नैक के बारे में लिखना होता है।
1: तो स्कूल की घंटी बज चुकी है, पीरियड्स आपके शुरू हो चुके हैं, तो आइए अंदर। और सबसे पहले क्या करना है स्कूल में आने के बाद, कि आप अपना नाम लिखेंगे और याद करेंगे कि आपका स्कूल में रोल नंबर क्या हुआ करता था, उसे याद करिए और फिर उसे यहाँ पर आप डालते जाइए। देखिए कितने सारे लोगों ने यहाँ पर अपने नाम लिखे हैं, अपने रोल नंबर लिखे हैं और क्या उनको पसंद है स्नैक में, वो भी यहाँ पर लोगों ने लिखा है।
0: इसके अलावा कैफे की दीवारें आपको पीरियड के दौरान टीचर्स की तरफ से बच्चों का ध्यान आकर्षित करने और अनुशासन बनाए रखने के लिए कुछ आम वाक्यों की भी याद दिला देंगी। कैफे में कन्फेशन बोर्ड भी मौजूद है, जिस पर स्कूल के दिनों में छिपे हुए विचार, भावनाएं, गलतियां या अपना कोई राज बताने की छूट है। साइंस लैब तो स्कूल के दिनों में किए गए प्रोजेक्ट्स की याद दिलाने की गारंटी की तरह है।
1: कुछ चीजें आपको याद नहीं करनी पड़ती, कुछ चीजें आपके जहन में हमेशा रजिस्टर होती हैं, जैसे कि स्कूल टाइम्स के ये डायलॉग्स, मैं आई कम इन सर, किसने फेंका ये कागज, हु थ्रू दिस पेपर, स्टैंड अप ऑन द बेंच जब सजा मिलती थी, साइलेंस इन द क्लास जब टीचर गुस्सा होते थे, और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। और ये अगर स्कूल की हम बात करें और ब्लैक बोर्ड ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहाँ आपको एक ब्लैक बोर्ड मिलेगा जिस पर पहले से ही लिखा हुआ है कि आपने बेसिकली एक ब्लैक बोर्ड है और साथ साथ एक कन्फेशन बोर्ड भी है। मतलब आपको यहाँ पर वो कन्फेस करना है जो कभी आपने अपने क्लासरूम में किया हो, स्कूल में किया हो। उसके बाद आप देखिए कि जो यहाँ के ओनर हैं, जिन्होंने इसको शुरू किया है, उन्होंने अपनी रियल स्कूल डेज की फ़ोटोज़ यहाँ पर लगाई हुई हैं। अभी तो ये फोटोज़ ऐसे टंगी हुई हैं, लेकिन अपने घरों में हमने अपने स्कूल डेज की फ़ोटो को फ्रेम करके रखा है।
0: आज की भागदौड़ में जब हम थक जाते हैं तो हमारा मन सुरक्षित और सुकून भरे कोने को खोजता है, तब बचपन की यादों से जुड़ा ये कैफे एक सहारा बन सकता है।
2: जो ये आप टाई बेल्ट देख रहे हैं, हमारे स्कूल टाइम पे इसी तरीके की टाई बेल्ट होते थे, तो वही हमने कोशिश करा है यहाँ पे प्लेस करने के लिए। ये पूरी वॉल जो है, ये स्कूल की एक्सेसरी वॉल्स है, वॉल है जो हमारे स्कूल में वाटर बॉटल हम यूज करते थे वो हमने यहाँ पे प्लेस किया। आप देख रहे हैं टिफिन बॉक्स हो गया, टाई बेल्ट्स और पेंसिल बॉक्स, ये सब आपको याद दिलाते हैं आपके स्कूल टाइम के जो एक्सेसरीज होते थे उन सब चीजों।
0: इस कैफे की सबसे खास चीज है इसका मेन्यू कार्ड। यहाँ मेन्यू किसी रेस्टोरेंट के कार्ड की तरह नहीं, बल्कि क्वेश्चन पेपर यानी प्रश्न पत्र की तरह डिजाइन किया गया है। ग्राहक को इसी मार्कशीट में अपनी पसंद की डिश पर टिक लगाना होता है और फिर इसे स्टाफ को दे देना होता है, और खाने के नाम भी पूरे स्कूल वाले अंदाज में रखे गए हैं। मेन्यू में शामिल खाने की चीजों का नाम भी स्कूल के दिनों से जुड़ी है।
2: ये आपके जो उस क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड होता है जिसमें टीचर लिखती थी, ये वो है। तो पूरा मेन्यू भी हमने उसी तरीके से डिजाइन किया गया है, हमने डिजाइन किया है।
1: केमिस्ट्री लैब मॉकटेल्स, क्या नाम रखे हैं हमने, गजब।
2: मॉकटेल्स केमिस्ट्री में, क्योंकि आप देखते हो काफी सॉल्यूशन लिक्विड्स मिलते हैं, तो उसे हमने मॉकटेल को केमिस्ट्री लैब से जोड़ा है।
1: और गॉसिप पीरियड मोमोज,
2: जी बिल्कुल। तो ये सारा मेन्यू उस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको अपने स्कूल डेज की याद आ सके।
0: कैफे में विजिट करने वाले ग्राहकों के लिए खाने की गुणवत्ता, सर्विस और माहौल जानने के लिए नोटिस बोर्ड लगाया गया है, जहां वो अपनी राय बिना लाग लपेट के चिपका देते हैं, ताकि ग्राहकों को किसी तरह की शिकायत होने पर उसे तुरंत दूर करने के लिए कदम उठाया जा सके। साफ है कि नोएडा का ये कैफे सिर्फ खाने पीने की जगह नहीं, बल्कि बचपन और स्कूल से जुड़ी यादों को फिर से जीने का एक मौका देता है।
1: स्कूल छूट गया है, लेकिन एक बार आप यहाँ जरूर आइए, हो सकता है आपके स्कूल के छूटे हुए दोस्त शायद यहाँ मिल जाए, जैसे आशीष को मिले। ये वॉल आप देखिए कितने अच्छे से बनाई गई है, और इसमें लिखा हुआ है वो लास्ट बेंच, वो लास्ट बेल, वो लास्ट बाइट, सब कुछ। रोल नंबर बदल गया, दोस्ती नहीं। ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ेंगे देखेंगे तो ज़रूर आप उन दिनों में लौट जाएंगे जिन दिनों में आप बहुत छोटे थे, और शायद आप यही सोचते थे कि कितनी जल्दी हम स्कूल से निकल पाए, लेकिन वो स्कूल हमसे कभी निकल नहीं पाया। अगर आप फिर से उन्हीं स्कूल के दिनों को जीना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, नोएडा।
3: और अब चलते चलते आपको उन वायरल वीडियोस के साथ छोड़े जाते हैं जो आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे, और कुछ ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर जाएंगे।
4: छोटे से गणपति, छोटा सा मंदिर, लेकिन रौनक ऐसी कि सारी भव्यताएं फीकी पड़ जाएं। इन नन्हे भक्तों की आस्था से जगमग है गणपति का ये खुला दरबार, जो बन पड़ा उसी से सजा लिया मंदिर। चाहत ही सुसाजो सामान का जुगाड़ भी हो गया। संगीत तो मन में है, बस इसे भक्तिभाव से सजाना था, उसमें कहीं कोई कमी नहीं। मन भगवान के प्रेम में डूबा है, मासूम दिलों का विघ्नहर्ता को बुलावा है। बच्चे मासूम होते हैं, बेफिक्र बेपरवाह, उन्हें बस प्यार करना आता है। देखिए इस छोटी बच्ची को, कैसे बछड़े को रोटी खिलाकर खुश है। बछड़ा भी उससे रोटी झपट नहीं रहा, बल्कि सावधानी से रोटी ले रहा है, ताकि बच्चे डरे नहीं और उसे नन्हे हाथों से आहार मिलता रहे। रोटी लेते हुए जब बछड़े की जीभ बच्चे के हाथों को छू जाती है तो बच्चे की खिलखिलाहट देखने लायक है। दो मासूमों का ये अनकहा जुड़ाव देखकर लोग मुस्कुरा रहे हैं।
5: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है
2: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
3: एशियन गेम्स के चौथे दिन भारत की अच्छी शुरुआत, महिला स्किट टीम इवेंट में आया ब्रॉन्ज मेडल, सॉफ्ट टेनिस में भी पहला एशियन गेम्स मेडल पक्का। गणेश उत्सव के दसवें दिन भारी उल्लास, लालबाग चौराहे दरबार में भक्तों की कतार, गुजरात के अमरेली में रुपया और डॉलर से बप्पा का श्रृंगार। उत्तर प्रदेश में आज भारत टैक्सी योजना का होगा शुभारंभ, मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के ई पोर्टल की भी लॉन्चिंग, 5 साल में 5 लाख किसानों को लाभ देने का लक्ष्य। देश के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में अलर्ट मोड में प्रशासन, यूपी और उत्तराखंड में भी बारिश की चेतावनी। शंघाई में 48वें वर्ल्ड स्किल कंपटीशन का आगाज, उद्घाटन समारोह में इंसानों के साथ रोबोट्स का डांस, 68 देशों के आए प्रतिभागी करेंगे हुनर का प्रदर्शन।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख।
3: उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत, सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत, नई सुबह नई आशा, गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
4: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा शर्मा, बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की उन 5 खबरों पर जिनमें इंडिया के लिए शुभ समाचार।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
3: शुभ समाचार की शुरुआत गणेशोत्सव के साथ करेंगे, मुंबई समेत देशभर में बप्पा की भक्ति के अनोखे रंग दिखाई दे रहे हैं, हर पंडाल में विराजित किए गए बप्पा की आभा जितनी विशाल है उतनी ही प्रभावी पंडाल की थीम भी है, इन गणेश पंडालों की भव्यता देखने लायक है, तो इन पंडालों में भी आपको लिए चलेंगे।
4: महाराष्ट्र के नासिक में भगवान गणेश की एक अनोखी प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जहां पर लोगों को विघ्नहर्ता गणेश की सोने से बनी बेहद ही छोटी मूर्तियां देखने को मिली है। इन मूर्तियों को नासिक के सुनार भगवान दास खरोटे ने बनाया है, उन्होंने अलग अलग साइज की 291 सूक्ष्म सोने की गणेश मूर्तियां बनाई है, इसमें और क्या है खास बताएंगे आगे।
3: तो साथ ही आपको लिए चलेंगे राजस्थान की महाराज फील्ड फायरिंग रेंज में, जहां इन दिनों जमीन से लेकर आसमान तक हिंदुस्तान की सेना का दम दिख रहा है, भारत और अमेरिका की सेना मिलकर यहां युद्धाभ्यास कर रही हैं, इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में आधुनिक हथियारों का शक्ति प्रदर्शन भी किया जा रहा है, तो दोनों सेनाओं ने कैसे दिखाया अपना दमखम आगे आपको दिखाएंगे।
4: इधर उज्जैन में बाबा काल भैरव की शाही सवारी निकाली गई और इस दौरान गार्ड ऑफ ऑनर के साथ 4 किलोमीटर का लंबा भक्तों का कारवां भी नजर आया, तो ये तस्वीरें आगे आपको दिखाएंगे।
3: इसके अलावा आपको चीन की शंघाई भी लिए चलेंगे, जहां वर्ल्ड स्किल शंघाई समारोह की ओपनिंग सेरेमनी में शानदार रंग बिखरे हुए हैं, इसमें दुनिया भर से युवा पेशेवर हिस्सा ले रहे हैं, तो दुनिया के सबसे बड़े कौशल मेले में और क्या खास है आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है सुबह 9 बजे की 9 गुड न्यूज का।
4: सूरत में कल्पवृक्ष की थीम पर गणेश पंडाल सजाया गया, यहां भगवान गणेश के दर्शन के साथ लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया जा रहा है, पंडाल की डालियों पर ड्रग्स शराब सिगरेट और तंबाकू छोड़ने के स्लोगन लगाए गए हैं, गणेश पंडाल में पूजा के साथ सेवा शिक्षा अन्नदान और स्वच्छता का संदेश भी दिया गया, कल्पवृक्ष की थीम के जरिए लोगों को स्वास्थ्य के बेहतर जीवन जीने की अपील की गई है।
3: कराड़ के आजाद चौक में इस बार नरसिंह अवतार की खास झांकी बनाई गई, मंडल की स्थापना 1952 में हुई थी और 1970 से यहां विशेष शैली की गणेश प्रतिमा स्थापित की जा रही है, इस बार झांकी में प्रहलाद हिरण्यकश्यप और नरसिंह अवतार की कहानी दिखाई गई, मंडल का उद्देश्य बच्चों को मनोरंजन के साथ अपनी पौराणिक कथाओं और संस्कृति की जानकारी भी मिले ये है।
4: नासिक के सुनार भगवान दास खरोटे ने सोने की गणेश की बेहद ही छोटी मूर्तियां बनाई और सबसे छोटी मूर्ति सिर्फ 3 मिलीमीटर जिसकी जिसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, भगवान दास खरोटे ने अलग अलग आकार और रूप में 291 सूक्ष्म गणेश मूर्तियां बनाई हैं, इनमें चाय वाले बापा से लेकर तबला हारमोनियम और सितार बजाते गणेश तक शामिल है।
3: रायसेन के उदयपुरा में डोल ग्यारस पर भगवान श्री कृष्ण की विमान यात्रा निकाली गई। सैकड़ों साल पुरानी इस परंपरा में भगवान नगर भ्रमण कर भक्तों को दर्शन देते हैं। श्री कृष्ण के साथ बलराम, माता यशोदा और रुक्मणी भी पालकी में सवार हुए। भक्तों ने रास्ते भर पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है और सारे कष्ट दूर होते हैं।
4: जमशेदपुर के भोली बोगी गांव में महिलाएं गूंगे पत्ते से टोपी बना रही हैं। पद्मश्री जमुना टूडू की देखरेख में महिलाओं को इससे रोजगार मिल रहा है। महिलाएं जंगल से गूंग पत्ता लेकर टोपी तैयार करती हैं और इस कला की उन्होंने कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली है। ये परंपरा पुरखों से चली आ रही है।
3: एपिक फिल्म महावीर कर्ण का पहला पोस्टर जारी किया गया है। निर्देशक रमेश वर्मा के निर्देशन में बन रही ये भव्य फिल्म राघव लॉरेंस महाभारत के सबसे महान दानवीर और पराक्रमी योद्धा कर्ण की कालजयी भूमिका में नजर आएगी। लगभग 150 करोड़ रुपए के बजट में बन रही ये फिल्म अगले साल हिंदी समेत 5 भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी।
4: एशियन गेम्स में बैडमिंटन से भी अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल भारतीय पुरुष टीम मेजबान जापान को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही भारत का कम से कम ब्रॉन्ज मेडल पक्का हो गया है। पिछले एशियाड में भारत ने सिल्वर जीता था।
3: एशियन गेम्स में वुशू खिलाड़ी रोशबिना देवी ने भारत का एक मेडल पक्का कर लिया। उन्होंने महिलाओं के 60 किग्रा वर्ग के क्वार्टर फाइनल में मकाओ चीन की चू मेनसिन को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल्स में जगह बना ली। रोशबिना इससे पहले हांगझो एशियाड में सिल्वर मेडल जीत चुके हैं।
4: चीन में मिड ऑटम फेस्टिवल और नेशनल डे की छुट्टियां आ रही हैं, जिसके जश्न के लिए देशभर में 20,000 से ज्यादा रंग बिरंगे इवेंट्स आयोजित किए जा रहे हैं। त्योहार पर खाई जाने वाली पारंपरिक मून केक मिठाई बनाने के लिए कारीगर रात दिन जुटे हैं और दुकानों पर इन्हें खरीदने वालों की भारी भीड़ उमड़ रही है। त्योहार के इस खास मौके पर लोग अपने घरों को सजाने के लिए खुशहाली लाने वाले ताजा और खूबसूरत फूल पौधे जमकर खरीद रहे हैं।

0: शुभ समाचार की शुभ शुरुआत विघ्नहर्ता के साथ। देशभर में आस्था और विश्वास की एक खूबसूरत तस्वीर देखने को मिल रही है। भक्त पूरी श्रद्धा के साथ बप्पा की भक्ति में लीन है। अब बप्पा की विदाई में महज 2 दिन बाकी हैं। ऐसे में हर कोई बप्पा का आशीर्वाद लेने और उनके दर्शन करने के लिए पंडालों का रुख कर रहा है। और खास बात यह है कि शहर शहर बप्पा के भव्य और दिव्य पंडाल सजाए गए हैं, जहां गणपति के एक से बढ़कर एक स्वरूप भक्तों को आकर्षित कर रहे हैं। कहीं किसान के रूप में बप्पा के दर्शन हो रहे हैं, तो कहीं एआई वाले बप्पा भक्तों को अपने अनोखे स्वरूप से आकर्षित कर रहे हैं। वहीं कई पंडालों में सामाजिक संदेशों को भी खासा जगह दी गई है। इन अनूठे और आकर्षक झांकियों के जरिए न केवल आस्था का रंग देखने को मिल रहा है, बल्कि समाज को जागरूक करने का संदेश भी दिया जा रहा है।
1: चलिए अब आपको भव्य दिव्य पंडालों में लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लेकर चलते हैं लालबाग के राजा के दरबार में, जहां दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, हर वक्त बापा के दर्शन पूजन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। और खास बात यह है कि इस भीड़ में आम से लेकर खास हर कोई शामिल है, क्योंकि अब बापा की विदाई होने वाली है, तो हर कोई बापा के दर्शन के लिए यहां पर पहुंच रहा है। लालबाग के राजा की दरबार की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिन रात हर कोई बापा के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंच रहा है। वीवीआईपी हो या आम लोग, काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर श्रद्धालुओं की नजर आ रही है।
0: आस्था और भक्ति की भव्य तस्वीर लालबाग के राजा के दरबार में देखने को मिल रही है। भक्त बप्पा के दर्शन के लिए, उनसे मिलने के लिए, अपना दुख सुख बताने के लिए बप्पा के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। नेता से लेकर अभिनेता तक बप्पा के दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए हैं। बिजनेसमैन अनंत अंबानी पिछले कई दिनों से बप्पा के दर पर अरदास लगाने पहुंच रहे हैं। हाथ जोड़कर, घुटने पर बैठकर बप्पा की आराधना कर रहे हैं। और इस लिस्ट में गोविंदा से लेकर संजय दत्त का नाम भी शामिल है। हर कोई लालबाग के राजा के दरबार में एक बार दर्शन कर लेना चाहता है, और वजह है लालबाग के राजा की महिमा अपरंपार है। मान्यता है कि बप्पा के दरबार में अगर कोई आता है तो वो खाली हाथ नहीं जाता।
1: तो यूं तो इस गणेश उत्सव में मुंबई के सभी पंडाल दर्शनीय हैं। यहां पर हर पंडाल में विराजित किए गए बप्पा की आभा जितनी विशाल है, उतनी ही प्रभावी पंडाल की थीम भी है। इनमें अंधेरी ईस्ट के पारसीवाड़चा राजा और घाटकोपर का भी एक पंडाल शामिल है। दोनों ही गणेश पंडालों की भव्यता देखने लायक है, लेकिन इन दोनों ही पंडालों की थीम क्यों सुर्खियां बटोर रही है, चलिए आपको इसकी वजह भी बताते हैं।

0: गणेशोत्सव के दौरान मुंबई में भटवाड़ी के राजा भी आस्थावानों को शुभाशीष दे रहे हैं। गणेश जी की सुंदर प्रतिमा की विशेषता इनका इको फ्रेंडली होना रहा है, यानी इनको कागज से तैयार किया जाता है, जो पर्यावरण अनुकूल एक सराहनीय मिसाल है।
1: आपको बताया कि गणपति बप्पा को लगातार 4 साल से कागज से बना करके यहाँ लाया जाता है और पास के ही कृत्रिम तालाब में, जो ब्रहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से बनाई गई है, वहाँ इनका विसर्जन कर दिया जाता है। पूरी तरह से इको फ्रेंडली है
0: ये गणेश मंडल। इस साल अपना 58वां साल मना रहा है, तो वही पर्यावरण स्वच्छ रहे, आबाद रहे, लोग अपनी आबो हवा साफ सुथरी रखने को लेकर जागरूक बने, इसी उद्देश्य के साथ पिछले 4 साल से भटवाड़ी चा राजा की मूर्ति को कागज से ही तैयार किया जा रहा है।
2: हम 4 साल से, क्योंकि यहाँ पे जो पर्यावरण है वो संभालना बहुत जरूरी है, और अपन मंडल ही करेंगे तो फिर छोटे छोटे लोग भी करेंगे, इसलिए अब सब यंग जनरेशन हमारे जो है वो बोले नहीं, अपन खुद से खुद अपन ये करके करें, पहल करके करेंगे तो आगे सब करेंगे। इसके लिए हमने 4 साल से कागज से गणेश जी लेके आते हैं।
0: लेकिन इस बार भटवाड़ी चा राजा अपने इको फ्रेंडली स्वरूप के साथ ही अपनी एक बेहद निराली और तकनीकी थीम को लेकर भी सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल इस बार भटवाड़ी चा गणेश पंडाल को AI थीम पर तैयार किया गया है।
1: इस बार भटवाड़ी के राजा की जो थीम है वो AI पे रखी गई है, जैसे कि किस तरीके से AI की हेल्प से मिसाइल अपने आप में एक बहुत बड़ा काम कर रही है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने क्या कुछ कहा है, कैसे उन्हें लोग फॉलो कर रहे हैं, और इसके अलावा विज्ञान में AI कितने अंदर तक डीप तक जा चुकी है,
0: यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का देश की तरक्की में कितना योगदान है, इससे क्या फायदा है क्या नुकसान है, इसकी कहानी बयां कर रहे हैं भटवाड़ी चा राजा पंडाल में लगे ये पोस्टर बैनर और एक विशेष चलचित्र भी, जिसको LED के माध्यम से श्रद्धालुओं को दिखाया जा रहा है।
1: AI सुरक्षित है या नहीं, इन सारी चीजों की जो कहानी है, इन सारी चीजों की जो अपडेट है, वो यहाँ पोस्टर बैनर के माध्यम से लगाई गई है। खासतौर से बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खूबसूरत यहाँ पर चलचित्र बनाया गया है।
0: आज जहाँ AI सिर्फ तकनीक नहीं, हमारे देश की हर क्षेत्र में तरक्की की नई रफ्तार है, AI देश की क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है, ऐसे में तकनीक की इस नई दुनिया में अब धीरे धीरे भक्ति और अध्यात्म की भी एंट्री हो रही है, जिसकी ताजा मिसाल भटवाड़ी चा राजा का ये पंडाल भी है।
3: हमारा मंडल का स्पेशलिटी है, हम लोग हर साल कुछ ना कुछ सोशल मैसेज देते हैं, तो इस साल हमने सोचा कि गणेशोत्सव के थ्रू हम लोग कुछ ना कुछ सोशल मैसेज दे सकते हैं, तो हमने AI कैसा यूज करना है, AI के फायदे क्या है, AI अपने दिन ब दिन के काम में हम लोग AI कैसे प्रॉम्प्ट के जरिए यूज कर सकते हैं, ऐसा हमने डेकोरेशन में मेंशन किया है। साथ ही ये डेकोरेशन के साथ हमने AI के जो वर्कशॉप्स रखे हैं, ताकि सोसाइटी के लोग आए, प्रोफेशनल्स आए, वो AI का यूज कैसे कर सकते हैं वो देख सकते हैं, और लोगों को AI के बारे में अच्छी जानकारी पहुंचाना हमारा काम है, इसके लिए हमने वो AI का डेकोरेशन किया।
0: अहम पहलू ये भी कि AI पंडाल थीम को मंडल के ही सदस्यों ने महीने भर के अंदर ही तैयार कर दिया, तभी तो इको फ्रेंडली भटवाड़ी चा राजा और उनका AI थीम पंडाल यहाँ आने वाले लोगों को आकर्षित कर रहा है। गणेशोत्सव में एक से बढ़कर एक खूबसूरत डेकोरेशन की जा रही है, इनको बनाने में कितनी मेहनत और कितने कारीगर लगते हैं, इसकी मिसाल मुंबई में ही इन दिनों पारसीवाड़ा राजा का पंडाल पेश कर रहा है, जिसकी चमक दमक किसी शाही महल से कम नहीं।
1: ये मैं किसी राजमहल की एंट्री गेट आपको नहीं दिखा रहा, बल्कि एक ऐसा गणेश उत्सव पंडाल दिखा रहा हूँ, जो इस तरीके से सजाया गया है। श्रद्धालु इस रास्ते से होते हुए सीधे भीतर की तरफ चलते हैं, दीवारें देखें इस तरह से बनाई गई हैं, जैसे पौराणिक कथाओं की गान गा रही हो, और यहाँ से लोग आते हुए सीधे सबसे पहले श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं, जिनका बाल स्वरूप यहाँ पर झूले में रखा गया है, तो इसी से ये बात मालूम पड़ रही है कि कहीं न कहीं थीम भी इनके आसपास ही है।
0: पारसीवाड़ा चा राजा का पंडाल अपने 63वें साल में है, ऐसे में इस पंडाल को भगवान कृष्ण की दिव्य कथाओं यानी श्री कृष्ण लीला थीम पर तैयार किया गया है, जहां पंडाल के चारों तरफ लगी LED अपने आने वाले लोगों को कान्हा के जन्म से लेकर महाभारत तक के वाक्यों से रूबरू करा रही है। दरअसल ये विजुअल प्रेजेंटेशन ही विशेषकर बच्चों को समझाने के लिए रखी गई है।
4: अभी तक बच्चों लोगों को ये मालूम नहीं ये चित्र क्या है, क्या वो चित्र क्या है, तो उनको ये समझ देना जरूरी है कि भाई ये उस टाइम में भीष्म जो प्रतिज्ञा की थी, ये जो आपने बताया, तो वो भीष्म की प्रतिज्ञा जो श्री कृष्ण ने बोला मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो उस टाइम में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो भीष्म ने बोले थे मैं तुम्हें शस्त्र उठाने के लिए जरूर करूंगा, तो उनकी प्रतिज्ञा सच होना चाहिए, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने शस्त्र उठाया।
0: तो अगर आपको इस गणेशोत्सव भगवान कृष्ण की दिव्य कथाओं का अनुभव करना है, खासकर अपने बच्चों को कान्हा की कथाओं से विजुअली परिचित करवाना है, तो पारसीवाड़ा राजा का ये शाही पंडाल आपके स्वागत के लिए तैयार है।
1: गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति। पारसीवाड़ा के महाराजा के दरबार में हम इस समय मौजूद हैं और वाकई में श्री कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं, उनकी पौराणिक कथा यहां पर दीवारों में उनके कटआउट पोस्टर्स एलईडी के जरिए दिखाने की कोशिश की जा रही है। और आज के जो भी युवा पीढ़ी हैं, उन्हें ये बातें पता चल पाए, बच्चों को ये बातें पता चल पाए कि श्री कृष्ण आखिर क्यों जन्मे थे और उनका उद्देश्य क्या था जन्म लेने का। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष डी के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई।
5: आजकल सोशल मीडिया पर 80 के दशक की तस्वीरों को एआई के जरिए दोबारा बनाने का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन अकोला में गणेश पंडाल मंडल ने 80 के दौर के गांव देहात के जीवन को मानो फिर से जीवंत कर दिया है। साथ ही अकोला में एक ऐसा गणेश पंडाल भी बनाया गया है जहां जंगल की छांव में एक गुफानुमा पंडाल में बप्पा विराजे हैं। देखिए,
6: अकोला के इस गणेश पंडाल में आस्था भक्ति के साथ ही प्रकृति की छांव को भी सजोया गया है। गजानन की प्रतिमा के इर्द गिर्द जंगल की सुंदर तस्वीर पेश की गई है। ये हरा भरा गणेश पंडाल इस थीम पर बेस्ड है कि प्रकृति से सनातन संस्कृति का हमेशा से गहरा संबंध रहा है। आज से नहीं, सदियों से साधु संत प्रकृति को पूजते आए हैं, धर्म अध्यात्म के जरिए समाज को पर्यावरण के संरक्षण का महत्व बताते आए हैं। अकोला के विप्र युवा वाहिनी गणेश मंडल ने इस बार घटते जंगल और बढ़ते शहरीकरण को अपनी झांकी का विषय बनाया है।
7: आप यदि हमारे गणेश मूर्ति की तरफ ध्यान से देखेंगे तो आपके ये समझ में आएगा कि दोनों तरफ नंदी का मुंह है, और नंदी का मुंह होना यानी नंदीश्वर, और जहाँ नंदी का वास है वहाँ जंगल का वास है, पर्यावरण का वास है। और जंगल को ही अगर हम संजोएंगे तो हमारी पानी की, जल की, जीवन की व्यवस्थाएं पूरी होंगी। ये संदेश विप्र युवा वाहिनी इस 10वें वर्ष में सभी गणेश भक्तों को देना चाहती है।
6: इस अनोखे गणेश पंडाल के अंदर बनाई गई गुफा और जंगली जानवरों के स्टैचू के जरिए पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है।
8: यहाँ पर जंगल की थीम जो है वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर की गई है, और जंगल के हिसाब से ही जो है यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर जो है झरने हो या नेचुरल जो पशु पक्षी है वो भी लगाए हैं। और साथ ही देखिए, आप यहाँ पर जंगल में जिस तरीके से बंदर होते हैं, बाकी खरगोश होते हैं।
6: अब जरा इस तस्वीर पर गौर कीजिए। आजकल सोशल मीडिया पर 80 के दशक का ट्रेंड चल रहा है, लिहाजा इस गणेश पंडाल ने इसी थीम की झलक दिखाने की कोशिश की है। सिंधी कैम के रोज परिवर्तन गणेश पंडाल में 80 के दशक के गांव देहात की सुंदर तस्वीर उकेरने की कोशिश की है।
9: ये बताने की कोशिश की है कि हम जो वो जज्बे से गुजरे है आज के दौर को, जो नवी पीढ़ी की, उनको बताना चाहते हैं कि हम पुराने जमाने में ऐसे से ये पानी भी निकालते थे, कलपत्ते से आई बनाते थे, चक्की का आटा हाथ से बनाते थे, कोई भी चीज़ यानी मोबाइल का दौर नहीं था वो टाइम पे, हाथ के गेम थे जैसे कबड्डी वगैरह वैसे गेम थे।
6: यहाँ गणपति दर्शन को आ रहे श्रद्धालुओं को 80 के उस बीते दौर की याद ताजा हो रही है, जब मिक्सी नहीं थी, सिलबट्टे पर मसाला पीसा जाता था, जब कुएं से पानी भरा जाता था।
8: अलग ही दौर था, क्योंकि उस जमाने में जो है मोबाइल नहीं हुआ करते, खेल कूद हुआ करती थी। जिस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पर टायर से खेलना है, ये बायोस्कोप से इस तरीके के हम पिक्चर देखा करते थे, और स्कूल में जो है वो हम इस तरह से जो आपको डेस्क बेंच रहते थे, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। हम उस जमाने में 1980 के दशक में इस तरह से हम स्कूल में पढ़ते थे, और साथ ही जो है महिलाएं जो है वो कुएं से इस कदर पानी निकालती थी, कपड़े धोते थे, कपड़े धोने के लिए मानो 1980 के दशक में जो है किस तरह की पूरी गांव या पंचायत रहती थी।
6: ये वो दौर था जब पेड़ के नीचे कुर्सी पर बैठकर मास्टर जी पढ़ाया करते थे, और जब एक ही टीवी से पूरा मोहल्ला रामायण देखा करता था। जब मोबाइल इंटरनेट का दौर नहीं था तब डाकिया घर घर खत पहुंचाया करता था।
10: हमने 1980 के गणपति देखे, पुरानी यादें बहुत अच्छे से ताजा हुई और आज फिर वो 1980 के रील्स बनाने का ट्रेंड शुरू है सबका।
8: क्या क्या देखा आपने
10: या इसमें? यहाँ पे पुराना जो उनका बायोस्कोप से देखना, एक सरपंच के घर में रामायण चल रहा है, दैट इज एक एक ही टीवी होता था और सारा गांव बैठ के देखता था।
11: फिर से वही सब बचपन हमारा, जैसे हम पढ़े थे जहाँ पर हमने खेला था, वो टायर्स के साथ खेलना, अपने दोस्तों के साथ में नदी में घूमने जाना, कुएं से पानी निकालना, धोना धोना, मम्मी जो हमारी एक चूल्हे पे टिपिकल खाना बनाती थी, वो टाइम का वो दौर बहुत सुंदर था, बहुत खास था। और शाम को जब लाइट्स ऑफ होते थे या फिर लाइट जाती थी तो हम सब लोग बैठ के बकायदा बातें बातें करते थे, बहुत अच्छा लगता था।
6: जाहिर इस पहल के जरिए आज की पीढ़ी को बीते वक्त की खुशनुमा यादों से जोड़ने की कोशिश की गई है। यहाँ आ रहे श्रद्धालु इसे काफी पसंद भी कर रहे हैं। अकोला से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: तो वही महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भक्तों को बप्पा के अद्भुत रूप के दर्शन हो रहे हैं। यहां पर सावलिया सेठ की थीम पर गणेश पंडाल सजाया गया, लिहाजा बड़ी संख्या में भक्त यहां कामना पूर्ति की इच्छा के लिए दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।

0: खाटू श्याम जी का चेहरा, सावलिया सेठ का रूप, बाप्पा का ये अद्भुत दरबार सजा है महाराष्ट्र के चंद्रपुर में। यहाँ के श्री सिद्धि विनायक गणेश मंडल ने सावलिया सेठ की थीम पर ये गणेश पंडाल सजाया है। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं और अपनी अर्जियाँ लगा रहे हैं।
1: जो हारे के सहारे हैं, उनके पास अपनी अर्जी लगाई है और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पूरा विश्वास है उन पे कि मेरी जो लगाई हुई अर्जी है वो पूरी होगी और इन्होंने इस बार यहाँ पे बहुत अच्छा सेटअप किया है।
2: अर्जी लगाई है, अच्छा लगता है, बाबा शाम पर्जी पूरी करेंगे हमारी, यही भावना से आए हैं।
0: खास बात यह है कि इस प्रतिमा में खाटू श्याम जी का चेहरा और सावलिया सेठ रूप भक्तों को देखने को मिल रहा है। एक ही प्रतिमा में दोनों छवियों का समावेश इसे बेहद खास बना रहा है। साथ में भक्तों को बाप्पा के भी अद्भुत रूप के दर्शन हो रहे हैं।
3: बेहद ही आकर्षक मूर्ति यहाँ पर आपको नजर आएगी और खास बात यह है कि यहाँ पर जो भक्त यहाँ अर्जी लगाता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे यहाँ अर्जी लगाई गई है, नारियल है, नारियल के साथ में मोरपंख है और साथ में लोगों ने यहाँ पे अर्जी लगाई गई है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि जो भी यहाँ पर सच्चे दिल से अर्जी लगाता है उसकी जो मनोकामना है वो पूरी होती है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ इस मूर्ति के बाजू में ठीक यहाँ पर भगवान गणेश भी यहाँ पर आपको नजर आएंगे। बेहद आकर्षक भगवान गणेश की मूर्ति यहाँ पर आपको नजर आएगी। यहाँ पर बप्पा भी अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं।
0: बड़ी संख्या में भक्त अपनी मनोकामना लेकर बप्पा के इस दरबार में पहुंच रहे हैं और लाल कपड़े में नारियल बांधकर मोरपंख के साथ अपनी अर्जी लगा रहे हैं।
4: जैसे कि आप देख सकते हैं सावरिया सेठ जी को, पिछली बार श्याम बाबा हमारे नगरी में विराजमान हुए थे। हमारा मंडल 3 साल से है, ये हमारा 3रा साल है। पिछले साल बाबा को हमने श्याम बाबा के रूप में लाए थे, इस बार श्याम बाबा को हमने सावरिया स्वीट के रूप में लेके आए हैं।
0: इस पंडाल में खूबसूरत रोशनी और सजावट के बीच राजस्थान के प्रसिद्ध सावलिया सेठ मंदिर की बारीकियों को बेहद खूबसूरती से उकेरा गया है और भक्त भी उसी भाव के साथ यहां दर्शन को पहुंच रहे हैं, मानो चंद्रपुर में उन्हें सावलिया सेठ के दर्शन हो रहे हैं और बाप्पा के दर्शन के साथ ही उन्हें मनोकामना पूर्ति का भी वरदान मिल रहा है। विकास राजूरकर, चंद्रपुर, गुड न्यूज टुडे। गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर जीएनटी में भी गणपति पधारे और हमारे यकीन है कि हमारे दर्शकों के घर भी गणपति बप्पा जरूर पधारे होंगे। हम चाहते हैं कि आप भी जीएनटी के गणपति उत्सव का हिस्सा बने। आप अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें अपने वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7303409922। ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है, ये नंबर सिर्फ वीडियो या तस्वीरें भेजने के लिए है। जब भी आप अपना वीडियो या फोटोज भेजें तो साथ में अपना नाम और अपने शहर, गांव या कस्बे का नाम जरूर लिखें। ठीक है, गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे इस उत्सव से जुड़िए। इसके लिए आपको बस करना इतना है, अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजिए, हम उन वीडियो को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक वीडियो भेज भी रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर हमें नागपुर के मोहित साहू ने भेजी है। मोहित ने अपने पापा को गेंदे की माला पहनाई है, गजानन को फलों का भोग लगाया गया है, साथ ही उनका सुंदर श्रृंगार भी किया गया। तो दूसरी तस्वीर हमें ग्रेटर नोएडा के वर्षा महेश शर्मा ने भेजी है। पीली सफेद पगड़ी में बप्पा खूब जच रहे हैं, फूलों की माला बप्पा को पहनाई गई है और रंग बिरंगी झालर से उनकी सजावट की गई है।
5: और इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पराक्रम का प्रदर्शन।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
5: एशियन गेम्स के चौथे दिन महिला स्किट टीम इवेंट में आया ब्रॉन्ज मेडल। सॉफ्ट टेनिस में भी पहला एशियन गेम्स मेडल पक्का, मनु भाकर और मीराबाई चानू से भी मेडल की उम्मीद।
0: गणेश उत्सव के दसवें दिन भारी उल्लास, लालबाग चौराहा दरबार में भक्तों की कतार, गुजरात के अमरेली में रुपये और डॉलर से बप्पा का श्रृंगार।
5: उत्तर प्रदेश में आज भारत टैक्सी योजना का होगा शुभारंभ, मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के ई पोर्टल की भी लॉन्चिंग, 5 साल में 5 लाख किसानों को लाभ देने का लक्ष्य।
0: देश के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में अलर्ट मोड में प्रशासन, यूपी और उत्तराखंड में भी बारिश की चेतावनी।
5: शंघाई के 48वें वर्ल्ड स्किल्स चैंपियन कंपटीशन का आगाज, उद्घाटन समारोह में इंसानों के साथ रोबोट्स का भी डांस, 68 देशों से आए प्रतिभागी करेंगे हुनर का प्रदर्शन।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आती हैं।

0: चलिए अब आपको ले चलते हैं राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, जहां पर इन दिनों जमीन से लेकर आसमान तक हिंदुस्तान की सेना का दम दिख रहा है। भारत और अमेरिका की सेना मिलकर यहां पर युद्ध अभ्यास कर रही है। इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में आधुनिक हथियारों का शक्ति प्रदर्शन भी किया जा रहा है। अभ्यास के दौरान होवित्जर तोप, धनुष और पिनाका रॉकेट लॉन्चर से जबरदस्त आर्टिलरी फायरिंग की गई। इसके साथ ही अटैक हेलीकॉप्टर्स ने आसमान में अपना दम दिखाया। एयर डिफेंस सिस्टम और एयर सर्विलांस सिस्टम भी इस युद्ध अभ्यास का अहम हिस्सा है। L-70 एयर डिफेंस सिस्टम ने अभ्यास के दौरान अपने सटीक निशाना लगाने की क्षमता दिखाई, तो वहीं आसमान से आने वाले दुश्मनों को पहचानने वाले सर्विलांस सिस्टम ने सेना में अपनी अहमियत का प्रदर्शन किया। दोनों सेनाओं के जवानों ने आधुनिक फायरिंग, आधुनिक हथियारों, सर्विलांस ड्रोन्स और सटीक टारगेट पहचान का अभ्यास करते हुए अपनी युद्ध क्षमताओं और आपसी तालमेल का शानदार प्रदर्शन किया है।
1: एक साथ गरजती M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोपें, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से धुआंधार फायरिंग और आसमान में गरजता सेना का अटैक हेलीकॉप्टर। ये तस्वीरें किसी स्पेशल ऑपरेशन या फिर जंग के मोर्चे की नहीं हैं, बल्कि एक्शन से भरपूर ये तस्वीरें आई हैं राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से, जहां इन दिनों भारत और अमेरिका की सेना मिलकर युद्ध अभ्यास कर रही है। युद्धाभ्यास 2026 के दौरान M777 अल्ट्रालाइट होवित्जर तोप, धनुष आर्टिलरी गन और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ही नहीं, बल्कि प्रैक्टिस सेशन के दौरान L-70 एयर डिफेंस गन और एमलेट सिस्टम का भी एक्शन देखने को मिला। इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी तालमेल को मजबूत करना और आधुनिक युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी ताकत को परखना है। अपने इसी मकसद के तहत दोनों देशों के जवानों ने इन घातक हथियारों का इस्तेमाल कर अपनी मारक क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया। अभ्यास के दौरान दोनों देशों के जवानों ने ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर बैठकर दुश्मन के ठिकानों और लक्ष्यों की बारीकी से पहचान की। सैनिकों ने आपस में खुफिया जानकारी साझा करने और तुरंत फायर ऑर्डर देने और फायरिंग के दौरान जरूरी सुधार करने की जटिल प्रक्रियाओं का मिलकर अभ्यास किया, ताकि युद्ध के मैदान में चूक की कोई गुंजाइश न रह जाए। इस बार के इस अभ्यास में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है, इसीलिए ट्रेनिंग के दौरान सर्विलांस और टोही अभियानों के लिए विशेष रूप से ड्रोन्स और ऑटोनोमस सिस्टम का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच ये संयुक्त सैन्य अभ्यास का 22वां एडिशन है। 2 सप्ताह तक चलने वाला अभ्यास 15 सितंबर को शुरू हुआ था। इसका आयोजन उत्तराखंड के औली फॉरन ट्रेनिंग नोड और राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक साथ किया जा रहा है, जिसमें दोनों देशों की ओर से 600-600 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: चीन में इन दिनों वर्ल्ड स्किल शंघाई 2026 प्रतियोगिता चल रही है। इस कार्यक्रम में 70 से ज्यादा देश अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। कल इस कार्यक्रम की बेहद शानदार ओपनिंग सेरेमनी हुई। इस कार्यक्रम के दौरान 1400 से ज्यादा युवा अलग अलग क्षेत्रों में अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी पर सबसे ज्यादा चर्चा होगी। भारत इस साल 60 से ज्यादा कैटेगरीज में अपने कौशल का प्रदर्शन करेगा। 27 सितंबर को शंघाई वर्ल्ड एक्सपो कल्चर सेंटर में इस समारोह का भव्य समापन होगा। चलिए उज्जैन की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर जल झूलनी एकादशी का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। भगवान विष्णु की आराधना

और अब बात मुंबई की कर लेते हैं। मुंबई आतंकी हमले को शायद ही देश कभी भूल पाए। उस वक्त आतंकियों से मुकाबला करते हुए देश के कई वीर जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए ही भारतीय सेना के एक पूर्व जवान दीपक कुमार बीते 15 अगस्त को पर्वतारोहण पर निकले, जिसे नाम दिया गया प्रोजेक्ट 26/11 हिमालयंस ब्लिट्स, जिसके तहत 26 चोटियों तक महज 11 दिन में पहुंचने की नई कहानी लिखी गई। तो कैसे दीपक कुमार ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस चुनौतीपूर्ण अभियान को अंजाम तक पहुंचाया, इसकी साहसिक कहानी खुद पर्वतारोही दीपक कुमार ने सुनाई। सुनिए।

0: कहते हैं जहां रास्ते खत्म होते हैं वहीं से अदम्य और अनूठे साहस की शुरुआत होती है। भारतीय सेना के पूर्व सैनिक और मौजूदा पर्वतारोही दीपक कुमार ने इसी लाइन को सच साबित कर दिखाया है। गाजियाबाद में मुरादनगर से ताल्लुक रखने वाले दीपक कुमार ने लद्दाख में एक अनोखे पर्वतारोहण की कमान संभाली और 11 दिनों में 26 चोटियों पर चढ़ने के लिए स्पीड क्लाइंबिंग अभियान का नेतृत्व कर कामयाबी का झंडा गाड़ा।
1: आज हम आपको भारतीय सेना के एक ऐसे रिटायर्ड सैनिक के घर लेकर आए हैं जिसकी दीवारें ऐसे तमाम रिकॉर्ड से भरी पड़ी हैं, पटी पड़ी हैं। लेकिन इन रिकॉर्ड से परे इस सैनिक ने एक नया मिशन अपनाया। उन्होंने कहा कि वो 26/11 के हमले में शहीद हुए तमाम बलिदानों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके लिए उन्होंने रास्ता चुना पहाड़ का। 11 दिन के भीतर 26 ऊंची पर्वत की चोटियों की इन्होंने चढ़ाई की, जिसमें से हर चोटी की ऊंचाई 6000 मीटर से ज्यादा की थी।
0: भारतीय सेना के ये पूर्व जवान 31 जुलाई को सेना से रिटायर हुए, लेकिन इसके बाद जिस तरह अपने एक कठिन और चुनौतीपूर्ण पर्वतारोहण को मुंबई के 26/11 आतंकी हमले के शहीदों को समर्पित किया, उसकी हर तरफ सराहना हो रही है।
2: ये मैंने सोचा एज आर्मी पर्सन कि मैं रिटायरमेंट होने के बाद मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो एक शहीदों के लिए कुछ हो। तब एज ए माउंटेनियर मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूँगा जो बिल्कुल अलग हो, ठीक है। तो जैसे एकदम मेरे दिमाग में ये चीज़ें आई सडन कि 26/11 मुंबई अटैक्स हुआ था, तो मैं उन शहीदों को ट्रिब्यूट करता हूँ।
0: दीपक के लिए 26/11 का मतलब रहा 26 चोटियों को 11 दिन के अंदर हर हाल में फतेह करना। ये सभी पीक्स 6000 मीटर से ऊंची थी। ऐसे में उनका ये अभियान शहीदों के परिवारों को ये एहसास दिलाना भी था कि आज भी हमले के दौरान उनके पति, भाई या बेटे की शहादत देश भूला नहीं है। तभी इस साल दीपक कुमार ने 26 नवंबर से पहले किसी भी तारीख पर इस अभियान को करने का मकसद बनाया ताकि देश उन शहीदों को 26/11 के अलावा भी दूसरी तारीखों में याद रखे। दीपक और उनके साथियों ने लद्दाख में इस साल 15 अगस्त को इस अभियान को शुरू किया। प्रोजेक्ट 26/11 हिमालयन ब्लिट्स के तहत दीपक ने 6 सदस्यों की टीम का नेतृत्व किया और 11 दिनों में 6000 मीटर से ज्यादा ऊंची 26 चोटियों पर तिरंगा फहराया। साल 2006 में भारतीय सेना ज्वाइन करने वाले दीपक कुमार ने 2011 में पहली बार पर्वतारोहण किया। उन्होंने आर्मी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट सियाचिन से बेसिक और एडवांस पर्वतारोहण का कोर्स और दार्जिलिंग स्थित हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट से मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन कोर्स किया। इसी अनुभव के दम पर दीपक कई चोटियों को फतह कर चुके हैं।
2: इसकी बात करूं तो माउंट एवरेस्ट मैंने 2025 में किया था सर। उससे पहले माउंट मकालू मैंने 2019, जो दुनिया की पांचवी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मकालू, मैंने वो 2019 में किया था। और माउंट कॉमेट 7756 वो मैंने 2022 में किया था। माउंट नून मैंने 2023 में किया था और माउंट थैलियासागर मैंने 2016 में किया था।
0: दीपक का सफर पहाड़ की ऊंचाइयों को लगातार छूता गया और उनके अनुभवों को कई बड़े सम्मानों से नवाजा भी गया।
2: ये इसमें वो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड है और ऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करूँ तो ऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड में 3 दिन में हमने 11 पिक सबमिट की थी, जिसमें 3 वर्जन पिक थी, जो मतलब किसी ने अभी तक क्लाइम भी नहीं की थी, वो फर्स्ट टाइम क्लाइम हुई थी। तो ये रिकॉर्ड्स थे। फर्स्ट टाइम मैंने जो 2019 में रिकॉर्ड्स बनाया था वो मैंने 9 दिन में 15 पिक सबमिट की थी।
0: पर्वतों की चोटियां ऊंचाई नहीं हौसला देती हैं, पहाड़ चुनौती नहीं वो हमारे भीतर के साहस को पुकारते हैं। और इसी साहस के दम पर दीपक और उनके साथियों ने पर्वतारोहण की सबसे यादगार कहानी लिखी। 11 दिनों में 26 चोटियों पर चढ़ाई दीपक की कोई पर्वत पहाड़ जीतने की नहीं बल्कि अपने साहस की सीमाओं को तोड़ने की ही शुरुआत है। अब भारतीय सेना के इस पूर्व जवान का अगला टारगेट 7000 मीटर से ज्यादा ऊंची उत्तराखंड की सतोपंथ पीक है। इस अभियान को उन्होंने अपने एक साथी जवान की सतोपंथ में ही हुई शहादत को समर्पित किया है।

0: एक सैनिक से ज्यादा और कोई इस बात को नहीं समझ सकता कि एक शहीद की शहादत कितनी बड़ी होती है। हम सलाम आज दीपक सर को भी कर रहे हैं, उन्होंने इतना बड़ा काम किया और उम्मीद करते हैं कि आगे बहुत सारी चोटियां वो ऐसे ही बिना किसी रुकावट के चढ़ते जाएंगे। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, गाजियाबाद।
1: चलिए अब बात करते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड्स की। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में आयोजित किया गया। इसमें शिरकत करने के लिए तमाम फिल्मी सितारे गुजरात पहुंचे। ये अवार्ड 2024 में रिलीज हुई फिल्मों के लिए दिए गए हैं। कार्तिक आर्यन को फिल्म चंदू चैंपियन के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड और यामी गौतम को फिल्म आर्टिकल 370 के लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से नवाजा गया है। तो इतिहास में पहली बार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर नेशनल फिल्म अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। अब तक ये आयोजन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होता रहा है। रिपोर्ट देखिए।
2: ये तस्वीरें गुजरात के केवड़िया की हैं, जहां रेड कारपेट पर फिल्मी दुनिया के कई दिग्गज सितारों और कलाकारों ने 72वीं नेशनल फिल्म अवार्ड्स में शिरकत की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को अवार्ड देकर सम्मानित किया। इस मौके पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। इनके अलावा गुजरात और केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी भी मौजूद थे। फिल्म अवार्ड से सम्मानित होने वाले बड़े नामों में कार्तिक आर्यन भी शामिल हैं, जिन्हें मलयालम स्टार ममूटी के साथ बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। फिल्म चंदू चैंपियन में मुरलीकांत पेटकर का किरदार निभाने वाले कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है।
3: सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार श्री कार्तिक आर्यन को हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए प्रदान किया जा रहा है,
2: जबकि मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता ममूटी को फिल्म ब्रह्मयुगम में शानदार एक्टिंग के लिए यह अवार्ड दिया गया। वहीं बेस्ट फीचर फिल्म की कैटेगरी में आर्टिकल 370 और राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत को सम्मान मिला है। फिल्म आर्टिकल 370 में यामी गौतम ने खुफिया अधिकारी का किरदार निभाया था।
4: Ladies and gentlemen, best actress in leading role goes to Miss Yami Gautam Dhar in Hindi film Article 370.
2: जबकि रणदीप हुड्डा को स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर के तौर पर सम्मानित किया गया और भांगर को बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। म्यूजिक कैटेगरी में तमिल फिल्म अमरण के लिए जीवी प्रकाश कुमार को बेस्ट संगीत निर्देशक का अवार्ड मिला। वहीं आर्टिकल 370 के लिए शाश्वत सचदेव को हिंदी सिनेमा में बेस्ट म्यूजिक के अवार्ड से नवाजा गया।
3: उत्कृष्ट संगीत निर्देशन के लिए संगीत निर्देशक श्री शाश्वत सचदेव को प्रदान किया जा रहा है।
2: 72वीं नेशनल फिल्म अवार्ड समारोह में कल्कि 2898 एडी को बेस्ट पॉपुलर फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड पिपलांत्री अ टेल ऑफ इको फेमिनिज्म को मिला। राम नामी को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार दिया गया। अमरन फिल्म के लिए राजकुमार पेरियासामी को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। इससे पहले दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास कई सेलेब्स वहां पहुंचकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के पास तस्वीरें क्लिक कर सोशल मीडिया पर शेयर की, जिनके फैंस तारीफ कर रहे हैं। वहीं भारतीय सिनेमा में अपने शानदार योगदान के लिए दिग्गज एक्टर अनंत नाग को वर्ष 2024 के सबसे बड़े सिनेमाई सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया।
5: आज दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 के विजेता श्री अनंत नाग जी भी हैं।
2: दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले अनंतनाग कन्नड़ सिनेमा के दूसरे एक्टर हैं। इससे पहले कन्नड़ एक्टर राजकुमार को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा जा चुका है। दिग्गज अभिनेता अनंतनाग का फिल्मों में बड़ा योगदान रहा है। अनंतनाग को देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा जा चुका है। अनंतनाग को उनके अभिनय के लिए 5 फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिले हैं। अनंतनाग ने अपने 50 साल के लंबे फिल्मी करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। इनमें 250 से अधिक कन्नड़ फिल्मों के साथ साथ हिंदी, तेलुगु, तमिल, मराठी, मलयालम और अंग्रेजी भाषा के फिल्में शामिल हैं। अनंतनाग ने अपने अभिनय की शुरुआत कन्नड़ फिल्म संकल्प से की थी। श्याम बेनेगल की प्रसिद्ध फिल्म अंकुर से उन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा। ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF चैप्टर 1 में पत्रकार आनंद इंगलागी की भूमिका निभाई थी। दूरदर्शन के लोकप्रिय सीरियल मालगुडी डेज में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। सिनेमा के साथ साथ अनंतनाग राजनीति में भी सक्रिय रहे। वे बेंगलुरु के बसवनगुड़ी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए थे और कर्नाटक सरकार में मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड्स की शुरुआत साल 1954 में हुई थी। बीते 71 सालों से ये पुरस्कार समारोह देश के राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होता रहा है, लेकिन 72वें साल में ऐसा पहली बार है जब नेशनल फिल्म अवार्ड्स का आयोजन दिल्ली से बाहर किया गया। सरकार ने संकेत दिया है कि आने वाले वर्षों में भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह को देश के अलग अलग राज्यों और शहरों में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य नेशनल फिल्म अवार्ड्स को देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाना और भारतीय सिनेमा की क्षेत्रीय विविधता को सामने लाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: और अब आपको एक शानदार खबर दिखाते हैं। एशियन गेम्स में आज के दिन की शुरुआत भारत के लिए शानदार रही। भारतीय शूटर्स ने आज भारत को एक और पदक दिला दिया। महिला स्केट टीम को आज ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ। राइजा ढिल्लन, महेश्वरी चौहान और परिनाजा धालीवाल की तिकड़ी ने यह कामयाबी हासिल की। एशियन गेम्स में शूटिंग प्रतियोगिता में भारत का छठा मेडल है। इससे पहले 5 मेडल राइफल शूटिंग में हासिल हुए हैं। इसी के साथ ही भारत को एशियन गेम्स में 8 मेडल मिल चुके हैं। इनमें से कल महिला क्रिकेट टीम ने पहला गोल्ड मेडल हासिल किया था। इसके साथ ही 4 सिल्वर मेडल भी भारत को हासिल हुए हैं।
1: देखिए, गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप जीएनटी पर मनाए जा रहे गणेश उत्सव से जुड़िए। इसके लिए आपको बस करना इतना है, अपने घर पधारे गजानन का वीडियो आप हमें भेजें और हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक वीडियो भेज भी रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर हमें यूपी के हरदोई से अजनेश सक्सेना ने भेजी है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितने भक्तिभाव से बप्पा की आराधना हो रही है। बप्पा की पगड़ी हो या शानदार सजावट, बड़े ही शानदार तरीके से बप्पा का श्रृंगार किया गया। वहीं दूसरी तस्वीर हमें बिहार समस्तीपुर से आयुष रंजन ने भेजी है। यहाँ बड़े ही उत्साह के साथ विघ्नहर्ता की पूजा अर्चना हो रही है। बप्पा की मनमोहक प्रतिमा हर किसी को आकर्षित कर रही है। बप्पा का श्रृंगार हो या उनका आसन, श्रद्धालु ने बड़े ही भक्तिभाव से इसे सजाया हुआ है। चलिए अब आपको इंस्टा स्टोरी में उस कलाकार की इंस्टा रील दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसा रहे हैं। देखिए तनिष्का मुखर्जी की फनी इंस्टा स्टोरी।
7: का काम करती हूँ, घर में ही रहती हूँ, घर से बाहर भी नहीं निकलती। कहीं मैं सिंड्रेला तो नहीं?
8: गणेश जी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा।
7: एक बात बता, जब मैं अकल बांट रहा था तो तुझे सकल के लाइन में कौन लगने बोला था?
1: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही।
6: बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
11: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
3: एशियन गेम्स के चौथे दिन महिला स्किट टीम इवेंट में आया ब्रॉन्ज मेडल। सॉफ्ट टेनिस में भी पहला एशियन गेम्स मेडल पक्का, मीराबाई चानू से मेडल की आस। गणेश उत्सव के दसवें दिन भारी उल्लास, लालबाग चौराहा दरबार में भक्तों की कतार। गुजरात के अमरेली में रुपए और डॉलर से बप्पा का श्रृंगार। सैलानियों से गुलजार हुआ जम्मू कश्मीर, सुहाने मौसम में शिकारा राइड का ले रहे हैं आनंद। श्रीनगर की डल लेक किनारे पर्यटकों का हुजूम। देश के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में अलर्ट मोड में प्रशासन। यूपी और उत्तराखंड में भी बारिश की चेतावनी। शंघाई में 48वें वर्ल्ड स्किल्स कॉम्पिटिशन का आगाज, उद्घाटन समारोह में इंसानों के साथ रोबोट्स का डांस। 68 देशों से आए प्रतिभागी करेंगे हुनर का प्रदर्शन।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे मुकदमेबाजी की और इसके समाधान की। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 23 सितंबर 2026 दिन बुधवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, रात के 10:50 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, प्रातः 9:09 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 9:57 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं मुकदमेबाजी के बारे में। कभी कभी परिवार में मुकदमा होता है, पति पत्नी के बीच में वैवाहिक मुकदमा होता है, प्रॉपर्टी का मुकदमा, नौकरी का मुकदमा, अलग अलग तरह के डिस्प्यूट जीवन में पैदा हो जाते हैं। ज्योतिष में ये मुकदमेबाजी होती कैसे है, आती कैसे है? देखिए, मंगल को ज्योतिष में वाद विवाद, तर्क और उग्रता का ग्रह माना जाता है और सामान्यतः मंगल हर तरह के विवाद और मुकदमेबाजी के लिए जिम्मेदार होता है। मंगल के खराब होने से अपराध होते हैं, जेल जा सकता है आदमी, जीवन में बहुत सारी मुकदमेबाजी की नौबत आ जाती है। मंगल भी खराब हो, शनि भी खराब हो, तो जिंदगी जेल में कट जाती है। अगर मंगल राहु के साथ प्रभावित हो जाए, राहु का इंपैक्ट पड़ जाए मंगल के ऊपर, तो झूठी मुकदमेबाजी होती है, क्योंकि राहु काल्पनिक समस्याएं या काल्पनिक मुकदमे जीवन में पैदा कर देता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि अगर बृहस्पति केंद्र में बैठा हो, पाप प्रभाव में ना हो, थोड़ा बेहतर हो, मजबूत हो, तो व्यक्ति की रक्षा होती है। मंगल का निगेटिव होना दो चीजों में आदमी को फंसाता है। पहला, कर्जा। कर्जा लेने में हर्ज नहीं है, लेकिन लोगों की जिंदगी में कर्जा इतना बढ़ जाता है कि निकल ही नहीं पाते, वहां मंगल खराब है। बेवजह के मुकदमे में फंस गए, पुलिस कचहरी कोर्ट के चक्कर में दौड़ रहे हैं, वहां भी मंगल खराब है। तो मंगल का खराब होना कर्ज और मुकदमेबाजी का कारण आपके जीवन में बन सकता है। मेष राशि, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। नौकरी में परिवर्तन के योग हैं। स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा।
वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, यात्रा में सावधानी रखें, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, धन लाभ के योग हैं, परिवार की समस्या हल होगी, करियर में लाभ के योग हैं, गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, अगर भाई भाई के बीच में, परिवार में चाचा ताऊ, इन सब लोगों के बीच में आपस में मुकदमेबाजी चल रही है तो क्या करेंगे, मंगलवार को प्रातः स्नान करके हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनके सामने खड़े होकर या बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए और इसके बाद मंदिर में लोगों में हलवा पूड़ी बांटिए, हलवा पूड़ी ना बांट सकें तो गुड़ बांटिए। ये प्रयोग मंगलवार से शुरू करके 9 मंगलवार को करिएगा। भाई भाई के बीच में, परिवार के बीच में जो मुकदमा है उसका हल निकल आएगा। अगर नौकरी के संबंध में कोई मुकदमा हो, आप सस्पेंड हो गए हों,

यानी नौकरी का कोई भी मुकदमा लड़ रहे हों तो क्या करें, मंगलवार को शाम को हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनको चमेली का तेल और सिंदूर लगाइए। अगर महिला हैं तो आप केवल लाल फूल या लाल फूल की माला चढ़ाइएगा। इसके बाद उनको तुलसी के पत्तों की माला अर्पित करिए और फिर मंदिर में ही या मंदिर से घर आकर एक मंत्र का 108 बार जप करिएगा, ओम नमो भगवते राम दूताय, ओम नमो भगवते राम दूताय, इस मंत्र का जप करिएगा, एक माला तीन माला या 11 माला। ये प्रयोग मंगलवार को शुरू करके लगातार 9 मंगलवार को करिए, नौकरी के संबंध का जो मुकदमा है वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सिंह राशि, काम की रुकावट दूर होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, काम का दबाव कम होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, चिंताएं समाप्त होंगी, करियर में व्यस्तता बढ़ी रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, जिम्मेदारियां बढ़ी रहेंगी, व्यर्थ की दौड़ भाग होगी, चोट चपेट से बचाव करें, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, आज के समय में मैरिटल मुकदमे सबसे ज्यादा हो रहे हैं, तो अगर विवाह का कोई मुकदमा है या पति पत्नी के बीच में कोई मुकदमा चल रहा है, डिवोर्स को लेके, मेंटेनेंस को लेके, कस्टडी को लेके, तो क्या करें कि मामला हल हो जाए? लाल वस्त्र धारण करके हनुमान जी के सामने बैठिए, उनके सामने घी का 2 मुखी दीपक जलाइए, एक सिरा हनुमान जी की तरफ होगा और दूसरा अपनी तरफ रखिए। इसके बाद ओम हं हनुमते नमः इस मंत्र का कम से कम 3 माला 108 × 3 बार जप करिएगा। ये प्रयोग बैक टू बैक 3 मंगलवार की रात को करें और प्रार्थना करें वैवाहिक मुकदमे का समाधान निकल आएगा। जैसा आपको पहले बताया कि अगर मुकदमेबाजी में राहु का प्रभाव हो तो आदमी झूठे आरोप में, झूठे मुकदमे में फंस जाता है। अगर आपके ऊपर झूठा आरोप लग गया, झूठे मुकदमे में फंस गए, तो कैसे इससे बाहर निकलें? सुबह के समय जल में रोली मिला करके
सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। इसके बाद सूर्य की रोशनी में या सूर्य के सामने बैठकर एक विशेष चौपाई का 3 माला जप करिए। चौपाई होगी दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते, 3 माला जप करिए। ये प्रयोग मंगलवार से शुरू करके लगातार 17 मिल जाएगा। धनु राशि, नौकरी में कुछ परिवर्तन होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, निर्णयों में सावधानी रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, रुके हुए काम इस समय आपके पूरे होते दिखाई दे रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, पारिवारिक समस्या हल होगी, गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। अगर आप मुकदमे में हार गए, आपको सजा हो गई, फिर आपने आगे अपील की और अभी बाहर हैं, लेकिन मुकदमे में हारने की वजह से सजा हो गई है, या परिवार में कोई मुकदमा हार गया उसको सजा हो गई है, तो क्या उपाय करेंगे? मंगलवार को प्रातः काल स्नान करके उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके बैठिए। मंगलवार को सुबह ही बैठ जाइएगा और धीरे धीरे करके, रुक रुक करके 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। अगर आप चाहें तो एक ही दिन में 100 बार पढ़ लें, या अगर आप एक दिन में नहीं पढ़ पाते

तो 11 दिनों में 10-10 करके या 9-9 करके 11 दिनों में 100 बार पढ़ लीजिए और रोज हनुमान जी से मुक्ति की प्रार्थना करिएगा। जितने दिन ये प्रयोग करेंगे उतने दिन प्याज लहसुन मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे और जैसे ही ये प्रयोग समाप्त करेंगे मुकदमे से सजा से मुक्ति मिलने के योग बन जाएंगे। फिर बता दूं जितने दिन ये प्रयोग करेंगे प्याज लहसुन मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर्ज आपका नहीं चुक पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइए, हनुमान जी से प्रार्थना करिए और गुड़ का भोग लगाकर लोगों में बांटिए। साथ ही साथ अपना ईमानदार प्रयास जारी रखिए, आपको कर्ज से मुक्ति जल्दी मिलेगी। कभी मुकदमे जेल की नौबत ना आए इसके लिए क्या करें, हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, मंगलवार को मांस मदिरा प्याज लहसुन ना खाएं और मंगलवार के शाम को गुड़ या हलवा पूरी का दान करें, अच्छा रहेगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए

0: पत्रकारिता करते हैं, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे गणेश उत्सव से जुड़िए। इसके लिए आपको बस करना इतना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजना है, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक अपने वीडियोस भेज रहे हैं। आपके स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं, पहली तस्वीर हमें मध्य प्रदेश के पीथमपुर से भागीरथ सेन ने भेजी है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितने भक्तिभाव से बप्पा की आराधना हो रही है। बप्पा की पगड़ी हो या शानदार सजावट, बड़े ही शानदार तरीके से बप्पा का श्रृंगार किया गया है। तो वहीं दूसरी तस्वीर हमें महाराष्ट्र के नागपुर से मंजूषा बैथुले ने भेजी है। यहां बड़े ही उत्साह के साथ विघ्नहर्ता की पूजा अर्चना हो रही है। बप्पा की मनमोहक प्रतिमा हर किसी को आकर्षित कर रही है। आप देखिए किस तरह से बप्पा की सजावट की गई है, किस तरह से दूर्वा की माला पहनाई गई है, गेंदे के फूलों से बप्पा का भव्य जो है वो मंदिर सजाया गया है। बप्पा के साथ साथ यहाँ देवी लक्ष्मी की भी आराधना की जा रही है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
4: हमारी जिंदगी का यही उत्तर है अब तक का, हमारे जीवन का अब तक का यही निचोड़ है कि हमने अपने हर पहलू को, हर क्षण को, हर मुसीबत को, हर झंझट को खुद पे ना रखा, सब अपने गुरु पर और अपने बालाजी पर छोड़ रखा। उसका परिणाम इतना बेहतर है कि पूरी दुनिया की ताकतें हमारे गिराने में लगी रहती और हम उन्हें शायरी सुनाते। अभी नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद वापस लौट आऊंगा, पहले मुझे नाकाम होने दो। बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, पहले मेरा नाम होने दो। और जो हमसे जलते हम उन्हें इतना जलाते, पूछो मत। कई लोग हमारे चश्मों पर सवाल उठाए, हमने इतने चश्मे पहने कि उन्होंने पोस्ट डालना बंद कर दिया। कुछ लोगों ने हमारी जैकेट पर सवाल उठाए कि बाबा ने नॉर्थ फेस की 60,000 की जैकेट पहनी, बल्कि अपने बाप ने ना खरीदी थी, किसी चेला ने दी, हमने पहन ली, हमें पता भी नहीं था कि वो महंगी है। बाद में पता लगा कि अपन महंगी पहने, कम से कम उन लोगों के पोस्ट डालने से हमें महंगी सस्ती का पता चल गया। उसके बाद तो फिर पूछो मत, हमने जो उनके मिर्ची लगाई, जैकेट तो पहनी ही पहनी, फिर हमने उसी कंपनी का बैग खरीदा। हम कहा लो बेटे जलो, अब हम बताते तुम्हें, आग ना लगाई तो हमारा नाम गुरु नहीं। कोई हमारे खिलाफ बोलता, एक कोई व्यक्ति है वो कहता कि बाबा ठटरी क्यों मारता, अच्छा नहीं है, और वो जब भी हमें दिखता तब हम जरूर ठटरी बार थी। हाँ, और एक दिन हमने अपनी टीम को लगाया फोन, उसने मीडिया पे बयान दिया कि हमें इसकी ठटरी बारने से बहुत दिक्कत है। हमने अपनी मीडिया को कहा जितने ठटरी बारने वाले वीडियो हों वो 5 दिन

पोस्ट किए जाएं। हां, बाकी वीडियो बंद कर दिए जाएं, सिर्फ ठटरी वाले जारी रखें। जो जलते हैं उन्हें जलाओ। तुम हमारे पास आए हो, कुछ लोग विरोध करेंगे और करना भी चाहिए। जो अपना सामना नहीं कर सकते वो विरोध करेंगे। अपन आदमी ही ऐसे हैं कि या तो कोई हमारी तारीफ करेगा या गाली बकेगा। छोड़ तो सकता नहीं है अपन को, दो में से कुछ एक करेगा। और जिसने हमें जाना नहीं वो विरोध करेगा, जो जान लेगा वो विरोध थोड़ी करेगा, यहीं का होकर के रह जाएगा। इसलिए मेरे पागलों, हम तुमसे भी कहेंगे कि जीना सीखना है तो आ बैठ मेरे पास, मैं तुझे जीना सिखाता हूं। कुछ पल तो मेरे साथ गुजार, मैं तुझे दुख दर्द पीना सिखाता हूं। क्योंकि मैं बातों से नहीं रातों से हूं लड़ा, हर पल मुसीबत में रहा हूं खड़ा। मेरे पीछे जिसका हाथ है वो बजरंग मली मेरे साथ है। मैं कभी झुका नहीं, मैं कभी मुड़ा नहीं, मैं कभी रुका नहीं। इसलिए आ बैठ मेरे पास, मैं तुझे जीना सिखाता हूं। कुछ पल तो मेरे साथ गुजार, दुख दर्द पीना सिखाता हूं। हमने इतनी मुसीबतें झेल ली कि अब मुसीबत आती है तो लगता है खुजली हो रही, और तुम्हें मुसीबत आती है तो हाय दैया, छाती फट गई, हाय दैया, मरे राम, हाय दैया, अरे बाप रे मर गए। तुम छाती पीटने लगते हो। बस हम में और तुम में इतना ही अंतर है, तुम पर विपत्ति आती है तो तुम हाय दैया करके छाती पीटते हो, हम पे विपत्ति आते तो हम भीतर कहते चाय बनाओ रे। देखा जाएगा, और कर भी क्या सकते भैया, अब आ गई मुसीबत तो आ गई, बुलाने थोड़ी गए थे हम मुसीबत को, आ गई है तो देखा जाएगा। और अपन को ही तो झेलना है, तुम चाहे रो चाहे गाओ, मुसीबत तो रहनी है। अब मान लो तुम्हें फोड़ा हो गया, अब क्या करोगे, चाहे रो चाहे गाओ, हमें जुखाम हो गया, अब चाहे हम जो करें, अब हो गया सो हो गया, बाहर में गया, जुखाम के भी मजे ले रहे। हम बीच बीच में नाक बंद कर लेते हैं तो शरीर ही फड़फड़ाता, तो भीतर से आवाज आती है तो सांस तो छोड़ो। हम कहते तुम पहले जुखाम छोड़ो, लो चल रही लड़ाई। अब जुखाम खुद कंफ्यूज है कि इसके शरीर में रहे कि छोड़े, इसी को कॉन्फिडेंस कहते हैं। खैर घर पे तुम ट्राई मत करना हमारी आदतें, वरना सांस ना छोड़ी तो तुम्हें छूट गए। राम नाम सत्य है, न जुखाम रहेगा न जुखाम वाला। हम बता रहे हैं, अपने अपने तरीके हैं जीने के मुसीबतों से। हम पे भी मुसीबत आती है, हम पे भी झंझट आते हैं, कुछ लोग हमारे लिए भी लगे रहते, विपत्तियां आती हैं। क्या नहीं, आज दरबार वहां मैदान में लगाना था, यहां वहां बारिश हो गई, साउंड वहां गया नहीं, तो हमने हाय दैया थोड़ी किया, छाती थोड़ी पीटी, ना ना ना, दो घंटा लेट से ही यहां टीन सेट में लगा लेंगे, लो बढ़िया, पानी भी कल बरसता रहे नो प्रॉब्लम, आज बरसता रहे नो प्रॉब्लम, यहां दरबार लग रहा है आनंद है। अब मान लो वहां दरबार ना लगता, फिर छाती पीटते, लो हद हो गई, हमारे चेले सुनते नहीं, ये नहीं करते। अब भाड़ में गया, कौन किसकी सुनता, और चेले कहां हमारी सुनेंगे, ये अपने बाप की नहीं सुनते थे, आओ हमारी कहां सुनेंगे, हलवा में सुनेंगे। और जो अपने बाप की सुनते होते तो यहां होते ही, जब इनने अपने बाप की नहीं मानी हमारी क्या मानेंगे, खाक। जब हमारी नहीं माननी है तो हम पहले ही माइंड सेट में बाहर में जाओ, तुम अपनी ठटरी पर आओ, जब तुम्हें मानना हो सो मानना, हम ना तुम्हें कहेंगे। एक आदमी हमसे बोला कि यदि आप ऐसा करोगे हम अनशन पे बैठ जाएंगे। हमका तुम्हें बाप की कसम है अनशन पे बैठ जाना, हम कोई गुरुजी होंगे तुम्हें अनशन से उठने नहीं देंगे। तुम उठोगे भी तब भी हम कहेंगे कि नहीं, बिल्कुल नहीं उठना चाहिए इस आदमी को अनशन से। बोला हम भोजन छोड़ देंगे, हमका तुम भोजन की बात करते, हम तुमसे पानी छोड़वाएंगे, जल्दी निपटो। और आदमी होंगे कोई जो डर जाए तुम्हारी धमकियों से, तुम्हारी भपकियों से, कि हम तुम्हारा, एक व्यक्ति अभी कुछ दिन पहले धमकी दे रहा था कि बाबा बागेश्वर का हम घेराव करेंगे। हमका चेले वैसे ही घेरे रहते हैं, तुम और आ जाओ, हम सेल्फी तुम्हें भी देंगे।

बेटा, भभूति देंगे। हमारा तुम घेराव करने आओ, तुम्हें ये भरोसा हो कि हम डर जाएं, तो तुम ऐसे गुरु ना समझना कोई। हम तो थोड़ा उल्टे ही गुरु हैं, तो हमारे पास आओगे घेराव करने, हम तुम्हें भभूति बांट देंगे और दो चार को भूत और खिलवा देंगे। लो करो घेराव। पता लगा कि तुम आए थे विनती करने, फिर जो है खाज लग गई सो छुटाते फिर रहे हो। हाँ, हमारा घेराव करने आया हो, दो चार चिल्लाने लगे तुम्हारे बीच में, मुर्दाबाद के नारे बंद, भूत भगाओ प्रोग्राम चालू हो जाएगा, झंझट खत्म। तो तुम्हें लग रहा होगा कि कोई और गुरु है तो डर जाएंगे, अपन तो बहुत उल्टे आदमी है, हम हर चीज उल्टी ही सोचते हैं, उल्टी ही चलते। पर तुमसे हम यही कहेंगे, मेरे पागलो, हर परिस्थिति में मुस्कुराओ, हर बात पर मुस्कुराओ, बालाजी के चरण शरण को पकड़ लो। हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं, कितनी भी जिंदगी में मुसीबत संकट तो आएंगे, पर संकट मोचन यदि जीवन में रहेंगे तो तुम घबरा ना पाओगे। और हम तुम्हें संकट मोचन देना चाहते हैं, हम तुम्हारी बाह को बालाजी के चरणों में पकड़ना चाहते हैं। और सुनो, एक दिन के लिए नहीं, सदा सदा के लिए, क्योंकि तुम पे मुसीबतें तो आनी ही आनी है भैया। हमसे दोस्ती कर लो, काम आएंगे, हम बड़े काम आएंगे। ऐसा आदमी तुम्हें मिलेगा भी नहीं, कर लो दोस्ती, बड़े काम आएंगे। सब लुट जाएगा तब भी तुम हमारी तरह मुस्कुराओगे, भाड़ में गया, लुट गया कौन सा, अपने बाप का गया, यहीं से मिला था यहीं लुट गया, जय बजरंग बली की। चलो भैया, भंडारा खाएंगे अपन, आओ। हाँ, कुछ साल पहले हमको एक अधिकारी ने धमकी दी कि बाबा तुम बहुत बोलते हो, एक आध दिन जेसीबी चलवा दी जाए। हम कहा कल चलाते हो आज चला दो। बड़ा चौंक गया अधिकारी, सामने ही बैठा था, चौंक गया, बोले कैसी बातें करते हो, बहकी बहकी। हमका ये तुम भपकियां किसी और को देना, हम तो डरने वाले नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये आश्रम हमने नहीं बनाया, जनता के पैसे से बना, जनता के लिए बना। हमारे बाप पे तो मकान भी नहीं था, जनता ने चंदा दिया, दान दिया, हमने जनता के लिए बनवा दिया। और गिरेगा भी तो जनता का गिरेगा, अपने बाप का हलवा गिरेगा। वो भी चौंक गया, बोले बहुत खतरनाक आदमी हो तुम। हमका तुम फंसे नहीं हो अभी हम, और तुम कभी हवेली पे आ मत जाना, वरना इतना छीलेंगे हम तुम्हें, इतना छीलेंगे कि तुम हमारा मकान गिराओगे बेटा, हमारा आश्रम गिराओगे, हम तुम्हारा घर ऐसा गिरवाएंगे, तुम्हारे घरवाली के बारे में बताएंगे, घरवाली के साथ ना बैठ पाओगे तुम। हाँ, इतनी टेंशनें भर देंगे तुम्हारे दिमाग में। फिर चुप हो गया। उस दिन के बाद आज भी हमारी दीक्षा लिए चेला बन गया है आजकल हमारा, बना एक साल बाद, पर अपन लोगों ने दीक्षा दे रखी है, रोज ओम बागेश्वराय नमः जप रहा है। हमका बने रहो चेला, खुश रहो। अब वो जब भी हमारे पास आता है, हम पूछ रहे थे कहो जेसीबी आएगी क्या, तो तुरंत दूर से ही हाथ जोड़ता कि कृपा करो, बहुत पुरानी बात हो गई, अब नई बातें करो गुरु जी, अब छोड़ दो, तब अनजाने में हम बोल गए, अब थोड़ी बोलेंगे। कोई बात नहीं, खुश बने रहो, यही हम तुमको सिखाना चाहते। हम तो सिर्फ गुरु हैं, जीना सिखा सकते तुम्हें, आओ तुम्हें पागल बनाए। और पागल बनने का मंत्र मतलब मेंटल नहीं होता, पागल होने का मतलब तुम आज से घर जाना और ऐसी हरकतें करना हंस के कि घर वाले भी टेंशन में हो जाएं कि कहां से आए। हाँ, और वो पड़ोसी तो टेंशन में हो ही जाए जो तुम्हारे रोने का इंतजार कर रहा था, वो पूछे जरा इसका पता करो कौन से दरबार में जा रहा है, तब बता देना। लगा के आग सोहरत में, हमने ये शौक पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले। बागेश्वर धाम की, बाकी तुम्हारी जिंदगी तुम्हें काटनी है, हमारी हम काट रहे हैं। आज और कल और हैं, परसों जा रहे हैं वहां। हाँ देखो, जलवा देखो अपने, जिस कोलकाता में कल परमिशन नहीं दी गई थी हमारी कथा को सरकार ने, अब वही कोलकाता में सरकार हमें परमिशन दे के बुला रही है। समय का खेल है भैया, साफ समय का खेल है, ये टाइम कब बदल जाए कोई ठिकाना, इसलिए घमंड में ना रहो। ओ, वो तो मुंह

से धोखे से निकल गया था, बदनाम मत करो भैया। हमने नहीं कहा था कि दीदी जाएगी दादा आएगा, ऐसा हमने नहीं कहा था। ना ना भैया, काय को बदनाम करते हो, हम नेताओं पे बोलते ही नहीं, तुम आग लगवा के मानोगे का? कल के दिन दूसरे प्रदेश में दूसरे कहलवा देंगे कि अब चलो दादा को हटाओ। हम ये झंझट पालते नहीं, एक बार मुंह से गलती हो गई अब चूक ना करेंगे भैया। लौट के ऐसी श्राप देने में बड़ी इज्जत दाव पे लग जाती है, मान लो दीदी ना जाती तो तुम लोग तो खा जाते प्राण। मीडिया वाले इतने ट्रोल करते, इतनी मीम्स बनती, एक बार धोखे से निकल गई, अब अपने जीप को अपन ने लगाम लगा लिया। अपन को किसी को श्राप भ्राप देना ही नहीं, सबका भला हो, गुरु आदमी अपन किसका बुरा चाहे, अपने मुंह से जो निकलता है वो हो जाता है, तो काहे को भैया सब सब बोलो, सबका भला हो, सुखी रहे संसार, भगवान सबका भला करें, हनुमान जी सबका भला करें भैया। तो वो धोखे से निकल गया था, पुरानी बात को उठाना भी नहीं है। गंगा में बहुत पानी बह गया भैया, अब तुम देख नहीं रहे हम कितने समझदार हो गए? तब बच्चे थे भाई, नादानी में कहानी बन जाती, अब समझदार हो गए, दूसरे घर जाने लायक हो गए हैं। अब छोड़ो भैया, वो पुरानी बातें थी। मुस्कुराओ, क्या गम है, मुस्कुराओ, क्या गम है, यहां गम किसको कम है, मुस्कुराओ, क्या गम है, यहां गम किसको कम है, मुस्कुराओ हम हैं। पागलो सीताराम, जोर से बोलो जरा, साधु जी, साधु जी। अब आज का दरबार चालू करते हैं, ज्ञान खत्म। भगवान के बारे में बता दिया, कहाँ है भगवान पता चल गया आज? दादाजी पता चल गया कहाँ है? लाजपत नगर में है, आसनसोल में। बोलो बोलो कहाँ? अपने बालाजी सब पर दया करें। अच्छा, आप धाम कैसा लगता है? बारिश में तो और प्यारा लगता ना, अच्छा लगता ना? हमें तो बड़ा प्यारा लगता धाम। वाह, फिर कर लेना दर्शन। कन्या विवाह है 6 मार्च को, सबको आना है कन्या विवाह में, हमारी आज्ञा है। एक आज्ञा और, दो दो पांच पांच ईंट की सेवा कैंसर हॉस्पिटल में आप सबको करनी है। ऐसे नहीं आना है, ऐसे नहीं आना है, ऐसे नहीं आना है, नीचे पहुंचो, नीचे पहुंचो, ऐसे नहीं आना, ऐसे नहीं आते कोई, ऐसे तो सब आ जाएंगे, तो एक दिन जो है पता लगे कि हम ही लुट जाएंगे। हाँ सुनो, यहां पर लगा कौन थे? बड़े कमजोर थे भैया। खैर, हमारी सिक्योरिटी बहुत हाई फाई है। क्या सुना रहे थे हम? सबको एक एक दो दो ईंट की सेवा करनी है अस्पताल में, एकाध कमरे की कर सको तो कोई बड़ी बात नहीं। पूछो क्यों? अरे पूछो। प्रार्थना की दो जगह है, एक मंदिर, एक अस्पताल। मंदिर में प्रार्थना कई बार झूठी होती है, अस्पताल में जब कोई अपना मृत्यु के बीच में लड़ रहा होता तो जो प्रार्थना होती वो दिल से होती है। तो भैया, तुम्हारी ईंट लगेगी, कमरा बनेगा, वहां किसी के प्राण बचेंगे, तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों

0: रख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
7: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
8: मैं पिछले 1 साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
9: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
10: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
7: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
11: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
12: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
7: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90

0: साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
1: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
0: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
2: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
0: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
3: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
4: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
3: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना क्या मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
1: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अगना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है, मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
0: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
6: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल वो स्प्रे सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
5: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
7: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवाने इस उम्र में। फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
8: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
0: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
9: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
0: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
10: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है फौजी 360, आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
0: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
2: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूं कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूं। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
11: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
12: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
13: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
14: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
15: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दमो आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
12: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है, अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
16: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
1: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
17: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
18: गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी GNT पर मनाए जा रहे गणेश उत्सव से जुड़िए। इसके लिए आपको बस करना इतना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजना है। हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक अपने वीडियोस भेज रहे हैं, तो आपके स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर हमें मुंबई के गोरेगांव से ज्योति वाल्मीकि ने भेजी है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितने भक्तिभाव से बप्पा की आराधना हो रही है। बप्पा की पगड़ी हो या फिर शानदार सजावट, आप देखिए किस तरह से मंदिर को सजाया गया है। बड़े ही शानदार तरीके से बप्पा का श्रृंगार भी किया गया है। तो वहीं दूसरी तस्वीर हमें मध्य प्रदेश के अशोकनगर से ममता झा ने भेजी है। यहाँ बड़े ही उत्साह के साथ विघ्नहर्ता की पूजा अर्चना हो रही है। बप्पा की मनमोहक प्रतिमा हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। बप्पा के साथ साथ यहाँ देवी लक्ष्मी की भी आराधना की जा रही है।
17: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
3: एशियन गेम्स में सॉफ्ट टेनिस में भारत का पहला मेडल जेमीना ने दिलाया ब्रॉन्ज। शॉटगन शूटिंग में महिला के बाद पुरुष टीम ने जीता ब्रॉन्ज। गणेश उत्सव के 10वें दिन भारी उल्लास, लालबाग चौराहे दरबार में भक्तों की कतार। गुजरात के अमरेली में रुपए और डॉलर से बप्पा का श्रृंगार। सैलानियों से गुलजार हुआ जम्मू कश्मीर, सुहाने मौसम में शिकारा राइड का ले रहे हैं आनंद। श्रीनगर की डल लेक किनारे पर्यटकों का हुजूम। देश के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में अलर्ट मोड में प्रशासन। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश की चेतावनी। शंघाई में 48वें वर्ल्ड स्केल कॉम्पिटिशन का आगाज, उद्घाटन समारोह में इंसानों के साथ रोबोट का डांस। 68 देशों से आए प्रतिभागी करेंगे हुनर का प्रदर्शन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंचवास्तव और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की शानदार खबर के साथ। तो एशियन गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। आपको बता दें कि जापान में जारी एशियन गेम्स में चौथे दिन भारत की शानदार शुरुआत रही। सॉफ्ट टेनिस में देश को पहला मेडल मिला है, जय मीणा ने भारत की झोली में ब्रॉन्ज मेडल डाला है। तो वहीं भारतीय शूटरों ने अब तक कुल 2 मेडल दिलाए हैं महिला स्की टीम के बाद। पुरुषों के स्कीट इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल मिला है, जो आज का दूसरा मेडल रहा। तो शानदार खबर इस वक्त की यही है। आपको यह भी बना दें कि अनंतजीत सिंह नारुका, मेराज अहमद खान और भावतेज सिंह गिल ने स्कीट पुरुष टीम इवेंट में मेडल अपने नाम किया है। तो अगर मेडल टैली की बात करें, अब तक एशियन गेम्स में भारत ने कुल 10 मेडल जीते हैं। तो इस वक्त की शानदार खबर, एशियन गेम्स 2026 में लगातार भारत बेहतरीन प्रदर्शन करता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं जीएनटी एक्सप्रेस।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
3: एशियन गेम्स से भारत के लिए खुशखबरी, भारत को सॉफ्ट टेनिस में मिला पहला मेडल। पुरुष सिंगल्स में जेमीडा ने जीता ब्रॉन्ज। भारत ने महिला स्कीट इवेंट में भी जीता ब्रॉन्ज मेडल। रजिया ढिल्लो, महेश्वरी चौहान और परिनाज धालीवाल की तिकड़ी ने किया 331 का स्कोर। भारत की पुरुष की टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल किया अपने नाम। नारुका इंडिविजुअल फाइनल में अनंतजीत सिंह नारुका, मेराज अहमद खान और भवतेज सिंह गिल की जीत। भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू से मेडल की आस। अगर मीराबाई चानू स्वर्ण पदक जीतती है तो ये एशियन गेम्स के इतिहास में वेट लिफ्टिंग में भारत का पहला गोल्ड होगा। भारत दौरे के लिए तिरुवनंतपुरम पहुंची वेस्टइंडीज की टीम। 27 सितंबर से 3 वनडे मैचों की शुरुआत, उसके बाद खेली जाएगी 5 T20 मैचों की सीरीज। देशभर में अलग अलग थीम पे सजे हैं गणपति पंडाल। अकोला के गणेश पंडाल में लौटा 80 का दशक, दिखी बीते दौर की पूरी तस्वीर। सिंधी कैंप के रोज परिवर्तन गणेश पंडाल में जीवंत किया गया मिट्टी का चूल्हा। स्कूल में जमीन पर बैठकर पढ़ाई और साइकिल के टायर जैसा खेल, इस अनोखी झांकी को देख लोग भावुक हो गए। आज के जयंती जैन अल्फा को उनके माता पिता और दादा दादी की बताई जिंदगी से जोड़ना है इसका मकसद। लोगों के लिए पंडाल बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। अमरेली के सावर कुंडला में गणपति महोत्सव का अनोखा नजारा। 25 लाख रुपए की भारतीय करेंसी और अमेरिकी डॉलर से गजानन का हुआ भव्य श्रृंगार। 500 रुपए के नोटों से तैयार किया गया गणपति बप्पा का मुकुट, जबकि 200 रुपए के नोटों से बनाया गया है गणेश जी का हार। हाथों और पैरों को भी करेंसी नोटों की सजावट। सूरत में कल्प वृक्ष की थीम पे गणेश पंडाल सजाया गया है। यहाँ पे भगवान गणेश के दर्शन के साथ लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश भी दिया जा रहा है। पंडाल की डालियों पे ड्रग्स, शराब, सिगरेट और तंबाकू छोड़ने के स्लोगन्स लगाए गए हैं। आयोजकों का कहना है कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए जागरूक करना बेहद जरूरी है। गणेश पंडाल में पूजा के साथ सेवा, शिक्षा, अन्नदान और स्वच्छता का संदेश भी दिया जा रहा है। कल्प वृक्ष की थीम के जरिए लोगों को स्वस्थ और बेहतर जीवन जीने की अपील की जा रही है। पंडाल में लगे कटआउट और संदेश बच्चों और युवाओं का खींच रहे हैं ध्यान। आयोजकों का मकसद कम उम्र से ही नशे से नुकसान के बारे में जागरूकता फैलाना। आयोजकों के मुताबिक पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर थीम पे मनाया गया था गणेश उत्सव, इस बार कल्प वृक्ष थीम के जरिए समाज को सकारात्मक और नशा मुक्त जीवन जीने का संदेश दिया जा रहा है। कराड़ के आजाद चौक में इस बार नरसिंह अवतार की खास झांकी बनाई गई। झांकी देखने शहर के साथ आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। नवजवान गणेश मंडल की गणेश उत्सव परंपरा कई दशकों पुरानी है। मंडल की स्थापना 1952 में हुई थी और 1970 से यहां पर विशेष शैली की गणेश प्रतिमा स्थापित की जा रही है। नवजवान गणेश मंडल ने साल 2009 से पर्यावरण अनुकूल गणेश उत्सव की शुरुआत की। इसके बाद शहर के दूसरे मंडलों ने भी पर्यावरण अनुकूल प्रतिमा की ओर कदम बढ़ाया। इस बार झांकी में प्रहलाद, हिरण्यकश्यप और नरसिंह अवतार की कहानी दिखाई गई है। मंडल का उद्देश्य बच्चों को मनोरंजन के साथ अपनी पौराणिक कथाओं और संस्कृति की जानकारी भी मिले। नरसिंह अवतार की झांकी देखने के लिए आजाद चौक में जुटी भीड़, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक झांकी देखने पहुंच रहे हैं लोग। नासिक के सुनार भगवान दास खरोटे ने सोने के गणेश की बेहद छोटी मूर्तियां बनाई। सबसे छोटी मूर्ति सिर्फ 3 मिलीमीटर की, जैसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। भगवान दास खरोटे ने अलग अलग आकार और रूपों में 291 सूक्ष्म गणेश मूर्तियां बनाई हैं। इसमें चाय वाले बप्पा से लेकर तबला, हारमोनियम और सितार बजाते गणेश तक शामिल है। पिछले 32 साल से इस कला पर हो रहा है काम। इन मूर्तियों को बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हाथों से ही तैयार किया जा रहा है। चाय की केतली और कप पकड़े गणेश के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आकृति। एक कलाकृति में मोदी समेत दुनिया के नेताओं को चाय पीते हुए दिखाया गया है। भगवान दास खरोटे की सूक्ष्म कलाकारी के नाम अब तक 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज। उनकी प्रदर्शनी में अलग अलग देशों और परंपराओं से जुड़े गणेश के कई अनोखे रूप भी देखने को मिल रहे हैं। राजगढ़ में उमड़ा आस्था का सैलाब। कालगंगा नदी तट पहुंचे 200 मंदिरों से सजे धजे भगवान के विमान, हजारों श्रद्धालुओं ने किए दर्शन।

0: बड़ा आस्था का सैलाब। खिलचपुर शहर में पारंपरिक आस्था और भक्ति के साथ मनाया गया जल झूलने ग्यारस का पर्व। गाढ़ गंगा नदी पर माझी समाज की ओर से नाम में भगवान राधा कृष्ण की सुंदर झांकी सजाई गई, जो श्रद्धालुओं के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र रही। भजनों पर झाल मंजीरे बजाते और नाचते श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना, श्रद्धालुओं ने झांकी और भगवान के विमानों के दर्शन किए। पूजा अर्चना और महाआरती के बाद भगवान के विमानों को गाजे बाजे और भजन कीर्तन के साथ मंदिरों की ओर ले जाया गया। भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस बल तैनात रही। रायसेन के उदयपुरा में ढोल ग्यारस पर भगवान श्री कृष्ण की विमान यात्रा निकली। सैकड़ों साल पुरानी इस परंपरा में भगवान नगर भ्रमण कर भक्तों को दर्शन देते हैं। श्री कृष्ण के साथ बलराम, माता यशोदा और रुक्मणी भी पालकी में सवार होते हैं। भक्तों ने रास्ते भर पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया। महिला, पुरुष और बच्चे भगवान के विमान के नीचे से निकले। श्रद्धालु की मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। विमान यात्रा में भजन मंडलियां भगवान के भजन गाती रही, वहीं नृत्य करते हुए यात्रा में नृत्य करने वालों ने भी हिस्सा लिया। नगर भ्रमण के दौरान अखाड़े भी निकाले गए, जहां कलाकारों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। यात्रा दशहरा मैदान लोधीपुर पहुंची, जहां भगवान का जल विहार कराया गया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत टैक्सी योजना का किया शुभारंभ। योजना के तहत टैक्सी चालकों और यात्रियों के लिए भी विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कृषक समृद्धि योजना की पोर्टल की भी हुई लॉन्चिंग। योजना के तहत किसानों को 6% प्रभावी ब्याज दर पर 6,00,000 रुपए तक का ऋण देने का प्रावधान। समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा ब्याज अनुदान। 5 वर्षों में 5,00,000 किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य। आज गोरखपुर दौरे पे सीएम योगी आदित्यनाथ राज्य के महिला शरणालय का करेंगे लोकार्पण। सीएम योगी आदित्यनाथ कोविड प्रभावित बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत लाभार्थियों को बांटेंगे लैपटॉप। उत्तराखंड के लैंसडाउन में एनएसए अजीत डोभाल गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट सेंटर का किया दौरा। गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर में अग्निवीरों से की बातचीत, ट्रेनिंग, ऑपरेशनल क्षमता और सुविधाओं को लेकर की चर्चा। दौरे के दौरान अजीत डोभाल ने रेजिमेंट गीत बड़े चलो गढ़वालियों बड़े चलो भी गाया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजासुब्रमण्य भी इस दौरान मौजूद रहे। एनएसए ने अग्निवीरों को बढ़ाया मनोबल, बोले पूरा विश्वास है हमारे अग्निवीर अपनी वीरता, अपने त्याग और अपने पराक्रम से गढ़वाल राइफल्स का नाम और ऊंचा करेंगे। दिसंबर के महीने में अमेरिका जा सकते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G20 में हो सकती है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सीधी मुलाकात, क्वाड समिट की भी तैयारियां तेज।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्यकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हड़के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हर्ड। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद, यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
2: तो गुड न्यूज टुडे लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे गणेश उत्सव के साथ जुड़िए। और इसके लिए आपको करना बस इतना है कि आपके घर पधारे गजानन का वीडियो आपको बनाना है, उसे बना करके हमें भेजना है। हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। और देखिए, हमारे पास लगातार जो दर्शक हैं वो अपने वीडियोस भी भेज रहे हैं और हम उन्हें जीएनटी पर लगातार दिखा भी रहे हैं। इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें देख सकते हैं जो हमारे दर्शकों द्वारा ही भेजी गई है। पहली तस्वीर हमें गुरुग्राम से रागिनी खन्ना ने भेजी है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कितनी भक्तिभाव से बप्पा की आराधना हो रही है। बप्पा की पगड़ी हो या शानदार सजावट, बड़े ही शानदार तरीके से बप्पा का श्रृंगार यहां पर किया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के खंडवा से रंजना हर्षु ने हमें खास तौर पर भेजी है। यहां बड़े ही उत्साह के साथ विघ्नहर्ता की पूजा अर्चना हो रही है और बड़ी ही सुंदर तरीके से फूलों से बप्पा का श्रृंगार किया गया है, साथ ही लाइटिंग का भी यहां पर इस्तेमाल किया गया है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: प्रिंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: एशियन गेम्स में सॉफ्ट टेनिस में भारत का पहला मेडल, जयमीडा ने दिलाया ब्रॉन्ज। शॉटगन शूटिंग में महिला के बाद पुरुष टीम ने भी जीता ब्रॉन्ज। गणेश उत्सव के 10वें दिन भारी उल्लास, लालबाग चौराहा दरबार में भक्तों की कतार, गुजरात के अमरेली में रुपए और डॉलर से बप्पा का श्रृंगार। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर होगा हाईटेक, पहली बार होगा मूवेबल क्रॉसिंग का इस्तेमाल, 320 की रफ्तार पर भी सुरक्षित मोड़ की तैयारी। युद्धाभ्यास 2026 में दिखा अपाचे हेलीकॉप्टर का दम, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में अमेरिकी सेना के साथ दिखा जबरदस्त कोऑर्डिनेशन, ग्राउंड फोर्स के साथ अटैक एविएशन का तालमेल। सैलानियों से गुलजार हुआ जम्मू कश्मीर, सुहाने मौसम में शिकारा राइड का ले रहे आनंद, श्रीनगर के डल लेक किनारे पर्यटकों का हुजूम।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विघ्नहर्ता गणपति जो प्रथम पूज्य हैं, जिनके स्मरण से हर शुभ कार्य की शुरुआत होती है, जिनके नाम जब तब से भगवान कष्ट हर लेते हैं, उनके विवाह कथा की आज हम स्पेशल शो में बात करेंगे, क्योंकि गजानन के विवाह की कथा भी अपने आप में बेहद रोचक और मंगलकारी है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान गणेश का विवाह रिद्धि और सिद्धि से हुआ। विवाह के बाद उन्हें दो पुत्रों की प्राप्ति भी हुई, शुभ और लाभ। यानी गणपति परिवार की इस कथा में समाया है समृद्धि, सिद्धि और मंगल का संदेश। क्या है ये संदेश, कैसे हुई गजानन की शादी, अगले आधे घंटे में हम आपको हर पहलू से रूबरू कराने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पौराणिक कथाओं में भगवान गणेश के विवाह को लेकर अलग अलग परंपराएं और अलग अलग मान्यताएं मिलती हैं। एक प्रसिद्ध मान्यता के मुताबिक गणेश जी का विवाह ब्रह्मा विजय की पुत्रियों यानी कि रिद्धि और सिद्धि से हुआ। रिद्धि का संबंध समृद्धि और उन्नति से, जबकि सिद्धि का संबंध सफलता और आध्यात्मिक उपलब्धि से जोड़ा जाता है।

प्रथम पूज्य भगवान गणेश बुद्धि और ज्ञान के देवता माने जाते हैं, जिन भगवान गणेश का आवाहन किए बगैर विवाह आदि कोई भी शुभ कार्य या अनुष्ठान संपन्न नहीं होता। उनके स्वयं के विवाह की कथा अत्यंत रोचक और प्रेरणादायी है। सनातन के पौराणिक ग्रंथों में इस बात का जिक्र मिलता है कि गणेश और कार्तिकेय जब प्रौढ़ावस्था को प्राप्त करने लगे तो उनके पूज्य माता पिता देवी पार्वती और भगवान शिव के मन में अपने दोनों तेजस्वी पुत्रों के विवाह की कामना उत्पन्न हुई। दिव्य अलौकिक गुणों से संपन्न गणेश और कार्तिकेय ने माँ पार्वती और भगवान शिव के मन में उत्पन्न इस इच्छा को जान लिया और दोनों ने माता पिता से अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। अब माता पिता दोनों में से पहले किसका विवाह संपन्न कराए, इसे लेकर गणेश और कार्तिकेय में विवाद हो गया। गणेश और कार्तिकेय इस बात पर अड़ गए कि पहले मेरा विवाह होना चाहिए। पहले विवाह को लेकर दोनों तेजस्वी पुत्रों के बीच पैदा हुए विवाद के निपटारे के लिए सर्व अंतर्यामी भगवान शिव और माँ पार्वती ने एक अद्भुत समाधान पेश किया। शिव पुराण के रुद्र संहिता के कुमार खंड में भगवान शिव और माँ पार्वती द्वारा प्रस्तुत समाधान का विशद वर्णन मिलता है। भगवान शिव अपने दोनों तेजस्वी पुत्रों को पास बुलाकर कहते हैं, प्रिय पुत्रों, तुम दोनों मेरे लिए एक समान प्रिय हो। किसी एक से विशेष प्रेम हो ऐसा कदापि नहीं है। अतः तुम दोनों के विवाह के विषय में हमने एक ऐसी शर्त बनाई है जो तुम दोनों के लिए कल्याणकारी है। शर्त ये है कि जो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा पहले कर लौट आएगा उसी का शुभ विवाह पहले संपन्न कराया जाएगा। माता पिता की ये शर्त सुनकर महाबली कार्तिकेय अविलंब ही अपने स्थान से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े, लेकिन अगाध बुद्धि संपन्न गणेश जी वहीं खड़े रहे। गणेश जी ने मन ही मन विचार किया कि माता पिता की शर्त के मुताबिक अगर मैं पृथ्वी की परिक्रमा निकल भी जाऊं, तो भी कार्तिकेय से पहले वापस नहीं लौट पाऊंगा। गणेश ने अपनी बुद्धि से एक युक्ति तैयार की। पृथ्वी की परिक्रमा पे निकलने के बजाय वो पवित्र सरोवर में गए और वहाँ विधि पूर्वक स्नान किया और वापस लौटकर अपने माता पिता की विधिवत पूजा के लिए दो आसन तैयार किए। शिव पुराण के रुद्र संहिता के कुमार खंड के मुताबिक आसन तैयार करने के बाद गणेश जी अपने माता पिता से कहते हैं कि श्रद्धेय माता जी और पिताजी, मैंने आप लोगों की पूजा के लिए यहाँ दो आसन स्थापित किए हैं। आप दोनों इस पर विराजिए और मेरे मनोरथ पूर्ण कीजिए। शिव और पार्वती जब गणेश जी के बनाए आसन पर बैठ गए तब उन्होंने माता पिता की विधि पूर्वक पूजा की और उसके बाद सात बार उनकी प्रदक्षिणा की। प्रदक्षिणा करने के बाद वो शिव और पार्वती के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विनय किया कि आप शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह करा दीजिए। गणेश जी की इस लीला को देखकर भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा कि शर्त तो पृथ्वी की परिक्रमा की थी, कार्तिकेय इसके लिए निकल भी गए हैं। इसके बाद गणेश जी ने जो कहा वही संसार में उनके प्रथम पूज्य होने का कारण बना। शिव पुराण के रुद्र संहिता के कुमार खंड के मुताबिक गणेश जी ने कहा कि पूज्य माताजी पिताजी, मैंने आप दोनों की पूजा करके सात बार प्रदक्षिणा कर ली है, अतः मेरी समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई। वेद और शास्त्रों के मुताबिक जो पुत्र माता पिता की प्रदक्षिणा करता है उसे पृथ्वी का

0: है। गणेश जी के इस बुद्धि चतुर्य से माता पार्वती और भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और अलौकिक बुद्धि संपन्न अपने पुत्र से कहा कि पुत्र तुम महान आत्मबल से संपन्न हो, इसी से तुम निर्बल बुद्धि के अधिष्ठाता हो। तुमने जो बात कही वो वेद संपन्न है और पूर्णतः सत्य है। चुनौती आने पर या विपरीत स्थिति में जिसकी बुद्धि विशिष्ट हो जाती है उसकी समस्या का निदान वैसे ही हो जाता है जैसे सूर्य के उदय से अंधकार का निदान हो जाता है। जिसके पास बुद्धि है वही असली बलवान है, बुद्धिहीन के पास बल नहीं हो सकता। भगवान शिव और माँ पार्वती अपने कुशाग्र बुद्धि वाले पुत्र गणेश के द्वारा की गई अपनी प्रदीक्षिणा को पूरी पृथ्वी की परिक्रमा स्वीकार करते हुए उनके विवाह का विचार शुरू कर दिया। प्रजापति ब्रह्मा को जब शिव पार्वती के इस विचार का पता चला तो वो अपनी सुदर्शना पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि के साथ गणेश जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर उनके पास पहुंच गए और इस तरह रिद्धि और सिद्धि के साथ गणेश जी का विवाह संपन्न हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: चलिए अब आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़ के भिलाई, जहां हर साल भगवान गणेश का अनूठा विवाह संस्कार होता है। लगभग 70 साल पहले तमिल भाषी परिवारों द्वारा बनवाए गए गणेश मंदिर में दक्षिण भारतीय तमिल मंदिर की वास्तुकला जितनी अनूठी है उतना ही अनोखा है यहां हर साल आयोजित होने वाला बप्पा का विवाह समारोह भी। दरअसल यहां पर तमिल समुदाय की मान्यता है कि यहां गणेश विवाह परंपरा दशकों पुरानी है और बप्पा के इस कल्याणकारी रूप ने अब तक हजारों परिवारों के घरों में शहनाई गूंजने का रास्ता खोला है।

0: कुछ ऐसी वैदिक रीति और परंपरा का निर्वहन करते हुए भगवान गणेश का रिद्धि और सिद्धि के साथ विवाह संस्कार संपन्न हुआ। छत्तीसगढ़ के भिलाई में तमिल समुदाय की सांस्कृतिक विरासत जब अध्यात्म और भक्ति के साथ जुड़ी तो जन आस्था और उत्सव की भव्यता का यह अनोखा रूप वहाँ मौजूद हर किसी को खुशियों भरी जिंदगी की उम्मीदें दे गया। भगवान गणेश का यह अनूठा विवाह उत्सव भिलाई के करीब 70 साल पुराने मंदिर में हुआ। प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय गणेश मंदिर में इस विवाह को नाम मिला विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का भव्य कल्याणम। हर साल ये वार्षिक समारोह इस मंदिर में गणेश चतुर्थी के सातवें दिन होता है। मान्यता है कि भगवान गणेश से रिद्धि का मिलन होने पर सिद्धि खुद ही मिल जाती है, जिससे भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि और ज्ञान का संचार होता है। तो जैसे भारतीय हिंदू समाज में शादी की परंपरा निभाई जाती है, ठीक वैसे ही भगवान गणेश के इस विवाह समारोह में हल्दी, मेहंदी, हवन, वरमाला और मंगलसूत्र पहनाने जैसी रस्मों को निभाया गया। इस दौरान भगवान को उनको दुल्हन बनी उनकी पत्नी से भी मिलाया गया। वहीं इन विवाह संस्कारों के बीच गणपति बाप्पा मोरिया जैसे जयकारों के साथ ढोल नगाड़ों, पारंपरिक वाद्य यंत्रों और दक्षिण भारतीय रीति से सजी बारात भी सड़क पर निकाली गई। इस अनोखी दक्षिण भारतीय परंपरा से जुड़े लोग मानते हैं कि कहने को जीवात्मा और परमात्मा के मिलने का ये एक छोटा सा आयोजन है, लेकिन जैसे धरती पर जीवात्मा शादी परंपरा को निभाती आई है, उसी रूप में परमात्मा का भी ये पारंपरिक विवाह संस्कार कराया जाता है।
1: डीपली अगर देखा जाएगा ये जीवात्मा परमात्मा का साथ मिलने का एक एक एक छोटा से एक कार्यक्रम है। जीवात्मा, हम लोग जीवात्मा है, अपन जैसे शादी करते हैं क्या करते हैं, वैसे परमात्मा का भी जो उस रूप में लेके आके तो शादी विवाह जो करते हैं, ये बिल्कुल साउथ इंडियन पद्धति में शादी जो हुआ आप देखे होंगे आज, तो ये जो है आज के दिन में आप तो जानते हैं, सभी मानते हैं, सिद्धि रिद्धि को तो मानते हैं, तो कई जहाँ में गणेश भगवान का जो है वो ब्रह्मचारी मानते हैं, लेकिन सिद्धि रिद्धि भी उनको दोनों बीवी है, तो इससे शादी विवाह सिर्फ यहाँ कल्चर, साउथ इंडिया कल्चर के अनुसार ये जो होता है। दरअसल

0: लोक मान्यता ही उन युवक युवतियों से जुड़ी है जिनकी शादी में लगातार अड़चने आ रही हैं या विवाह के योग नहीं बन पा रहे, लेकिन अगर इस पुण्यकारी विवाह समारोह में वो भाग लें तो उनका विवाह जल्द से जल्द हो सकता है।
1: विवाह उत्सव साल में एक बार मनाया जाता है प्रतिवर्ष, और ये गणेश पक्ष के सातवें दिन को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस विवाह पक्ष में और उत्सव में जो कोई भी व्यक्ति यहाँ सम्मिलित होता है वो मन से जो भी मनोकामना वांछित मतलब वैध होना चाहिए, तो वो मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूर्ण होती है, चाहे वो कन्या के लिए वर हो या वर के लिए कन्या की प्राप्ति हो, चाहे विद्या अध्ययन हो, चाहे व्यापार नौकरी हेतु किसी भी तरह की बात हो या संतान भाग्य की बात हो।
0: कुल मिलाकर भिलाई का ये गणेश मंदिर आज तमिल समाज से जुड़े लोगों की उम्मीद और भक्ति का वो केंद्र बना हुआ है जहां बाप्पा न सिर्फ विघ्न हर रहे हैं बल्कि अपने भक्तों के विवाह का शुभाशीष भी दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई से रघुनंदन पंडा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गणपति बप्पा यानी गणेश जी अनादि काल से ही प्रथम पूज्य हैं। आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि शिव पार्वती विवाह में भी गणेश जी की विधिवत पूजा की गई थी। ये बात आपको थोड़ी सी अटपटी लग सकती है लेकिन पुराणों में सनातन धर्म के अनमोल ग्रंथों में इसके प्रमाण मिलते हैं। ये एक ऐसा रहस्य है जिस पर से आज पर्दा उठेगा। साथ ही आपको हम ये भी बताएंगे कि भगवान गणेश का जो अलौकिक स्वरूप है उसके अलौकिक मायने आखिर क्या है और वो हमारे जीवन में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं।

0: सनातन संस्कृति में अनादिकाल से ही गणपति बप्पा प्रथम पूज्य हैं। विवाह हो, यज्ञोपवीत हो, यज्ञ अनुष्ठान हो या सनातन का कोई भी संस्कार, गणपति के आह्वान और उनकी पूजा किए बगैर सारे अनुष्ठान अधूरे माने जाते हैं। गणेश जी के प्रथम पूज्य होने के पीछे लौकिक धारणा ये है कि वो विघ्नहर्ता माने जाते हैं, इसलिए किसी भी अनुष्ठान से पहले उनका आह्वान कर विघ्न रहित अनुष्ठान सिद्धि की कामना की जाती है। लेकिन गणपति के प्रथम पूज्य होने के पीछे का पारलौकिक रहस्य अत्यंत गूढ़ और विस्मयकारी है। लौकिक दृष्टि से गणेश जी माँ पार्वती और भगवान शिव के पुत्र हैं, लेकिन हमारे कालातीत ग्रंथों में इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह में भी विधिवत गणेश पूजा संपन्न हुई थी। ये जानकर आपके मन में सहज सवाल उठेगा कि संतानोत्पत्ति तो विवाह के बाद ही संभव है, फिर शिव पार्वती विवाह में गणेश पूजा का क्या लॉजिक है? इस सवाल का बहुत अद्भुत समाधान गोस्वामी तुलसीदास ने अपने युगातीत महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड के एक दोहे में दिया है। बालकांड के इस दोहे में गोस्वामी जी ने लिखा है, मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे उ शंभु भवानी को सुनि संशय करे जनी सुर अनादि जिय जानी। इसका भावार्थ ये है कि मुनियों की आज्ञा से शिव और पार्वती ने अपने विवाह में गणेश जी का पूजन किया, लेकिन आप ये समझकर मन में संशय न उपजने दे कि देवता यानी गणेश जी अनादि हैं, यानी भगवान शिव की ही तरह उनका भी आदि और अंत नहीं है। शिव पार्वती विवाह हो या फिर स्वयं पर ब्रह्म परमेश्वर के मनुज अवतार भगवान राम का सीता के साथ विवाह या फिर अनादिकाल से चले आ रहे कोई भी यज्ञ अनुष्ठान, सब में प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ तक कि अपने इष्ट राम कृष्ण शिव शक्ति या सूर्य नारायण की पूजा से पहले भी गणेश जी का आह्वान अनिवार्य माना गया है, क्योंकि गणेश जी न सिर्फ विघ्नहर्ता हैं, बल्कि बुद्धि और विवेक के अधिष्ठाता देव भी हैं।
1: किसी भी पूजा पाठ यज्ञ हवन में, चाहे वह माता लक्ष्मी की पूजा हो अथवा माता सरस्वती की पूजा हो अथवा किसी शक्ति की आराधना हो, सभी की पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश की आराधना होती है, जो इस बात का संकेत है कि लक्ष्मी जी अर्थात धन अर्थात वैभव, सरस्वती जी यानी ज्ञान, इन सबसे पहले है विचार, कर्तव्य, सरलता, ज्ञान, इसकी पूजा सबसे पहले होती है। विवेक की पूजा सबसे पहले होती है, बौद्धिकता की पूजा सबसे पहले होती है, यह सीख मिलती है भगवान गणेश के चरित्र से।
0: सनातन संस्कृति में मंगल मूर्ति भगवान गणेश की अनंत महिमा आखिर क्यों है? इसलिए कि वो बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं। बुद्धि और ज्ञान की प्रतिष्ठा हर युग में हर देश काल परिस्थिति में सम्यक रूप से बनी रहती है। गणेश जी ने अपने स्वयं के मन भावन स्वरूप से दुनिया को ये संदेश दिया है कि हमें अहंकार का ज्ञान विकसित करना है, ज्ञान के अहंकार में नहीं रहना है। अहंकार का ज्ञान हो जाए तो कष्ट क्लेश हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, और ज्ञान का अहंकार होगा तो हम माया मोह के जाल में फंस जाएंगे। लौकिक नजरिए से भी देखें तो अहंकार का वजन ही जीवन यात्रा का सबसे बड़ा बोझ है। अहंकार ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा विघ्न है। अहंकार के बोझ से मुक्त होने का संदेश अपने स्वरूप से गणपति बप्पा ने कैसे दिया है, इसे एक पौराणिक प्रसंग से समझने की कोशिश करते हैं। सीता स्वयंवर में जब भगवान राम शिव का धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो स्वयं जगत जननी माँ जानकी मन में गणेश जी का ध्यान कर उनसे अनुनय विनय करती हैं कि आप धनुष का भार कम कर दें। रामचरितमानस के बालकांड की चौपाइयों के जरिए वो स्वामी तुलसीदास ने इसका अत्यंत मार्मिक उल्लेख किया है। माँ जानकी गणेश जी का ध्यान करते हुए मन ही मन कहती हैं, गणनायक बरदायक देवा आज लगे कि नहीं तुम सेवा, बार बार बिनती सुनी मोरी करहु चाप गुरुता अति थोरी। स्वयं जगत जननी जानकी कहती हैं कि हे गणों के नायक वरदान के देवता, मैंने आज के दिन के लिए ही अब तक आपकी सेवा की है, इसलिए आज मेरी विनती सुनिए और धनुष के वजन को काफी कम कर दीजिए। आपके मन में सवाल होगा कि जो स्वयं अपने लौकिक स्वरूप में स्थूल काय और लंबोदर यानी बड़े पेट वाला है, उससे माँ जानकी धनुष का बोझ हल्का करने की प्रार्थना क्यों करती हैं? क्योंकि गणेश जी अहंकार के भारी भरकम बोझ को अपने ज्ञान प्रकाश से हल्का कर देने का हुनर जानते हैं। क्या आपने कभी ये विचार किया कि इतना भीमकाय होने के बाद भी गणेश जी ने अपनी सवारी मूषक यानी चूहे को क्यों बनाया? उनके इस स्वरूप में यही तो संदेश छिपा है कि आपकी लौकिक पद प्रतिष्ठा, आपका सामाजिक सम्मान या ओहदा कितना ही भीमकाय क्यों ना हो, अगर आप बुद्धि विवेक और ज्ञान के जरिए सामंजस्य की सत्ता स्थापित करेंगे तो समाज में प्रथम पूज्य हो जाएंगे। इसी तरह पप्पा अपने स्थूल शरीर के स्वरूप से सूक्ष्म संदेश पूरी दुनिया को देते हैं।
1: भगवान गणेश का प्रत्येक अंग एक नई सीख है। सिर बड़ा होना, सिर बड़ा होने का तात्पर्य है नेतृत्व क्षमता ज्यादा होना, विचारों में समृद्धि होना। छोटी आंख एकाग्रता का प्रतीक है, ध्यान का प्रतीक है। बड़े कान सुनिए सबकी, करिए मन की। छोटा मुंह यानी कम बोलिए, कम बोलने की सीख। सुनिए सबकी, करिए मन की, कम बोलिए। बड़ी सूंड दक्षता का प्रतीक है, क्षमता का प्रतीक है।
0: लौकिक स्वरूप में गणेश जी चार भुजाधारी हैं, नारायण की तरह चतुर्भुज हैं। लेकिन उनकी चारों भुजाओं में जो वस्तुएं हैं, उनका आध्यात्मिक रहस्य जीवन जीने की कला का सुंदर संकेत देता है। उनके एक हाथ में मोदक यानी लड्डू है, जो जीवन यात्रा के मधुर और आनंदमय स्वाद का प्रतीक है। मधुरमय आनंद कैसे मिलेगा, ये वो अपनी बाकी की तीन भुजाओं के जरिए संकेत करते हैं। उनकी एक भुजा हमेशा आशीर्वाद की मुद्रा में रहती है। आशीर्वाद हमेशा दूसरों को दिया जाता है। आशीर्वाद में सारे जगत के कल्याण की कामना की भावना समाहित है। इसका मतलब ये है कि अगर आप जीवन में आनंद चाहते हैं, तो स्वयं का नहीं बल्कि संसार के समस्त गोचर अगोचर प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करें। गणेश जी के एक हाथ में पाश है। पाश मतलब रस्सी या जंजीर। रस्सी या जंजीर से हम अमूमन मर्यादा की सीमाएं तय करते हैं। गणेश जी एक हाथ में पाश लेकर दुनिया को ये बता रहे हैं कि जीवन को आनंदमय बनाना है तो जीवन शैली में मर्यादा की सीमा हर हाल में तय करनी होगी। गणेश जी की एक भुजा में अंकुश रूपी हथियार है। अंकुश आमतौर पर महावत अपने पास रखते हैं हाथियों को नियंत्रित करने के लिए। हाथी मदमस्त मन का प्रतीक है, और मन पर नियंत्रण अगर इंसान ने खो दिया तो जीवन के सफर में आनंद से वंचित हो जाएगा। ब्रह्म बिंदु उपनिषद का एक मंत्र है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्तई निर्विषयम स्मृतम। इसका मतलब ये है कि मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का मूल कारण है। जो विषयों में आसक्त है वो बंधन में है, और जिन्होंने भोग विलास रूपी विषयों से सहज विराग पा लिया है वो मुक्त है, आजाद है। तो एक भुजा में अंकुश लेकर गणपति हमें विषय विकार पर अंकुश लगाने का संदेश देते हैं।
1: भगवान गणेश बुद्धि प्रदायक है, विघ्नहर्ता है, कर्तव्य के प्रतीक हैं, लेकिन वीर योद्धा भी हैं। और न केवल अस्त्र एवं शस्त्र के रूप में वीर योद्धा हैं, बल्कि मन स्थिति के आधार पर भी देखा जाए तो वहां भी भगवान गणेश वीर योद्धा है, अंकुश जैसे शस्त्र, अर्थात जिनका मन पर नियंत्रण है, जिनका विचारों में नियंत्रण है, क्योंकि भगवान गणेश हमें एक शिक्षा देते हैं कि अंकुश भी एक शस्त्र है, एक अस्त्र है।
0: गणेश जी के दो विवाह को अगर हम सांसारिक नजरिए से देखेंगे तो ये हमें भ्रम में डाल देंगे। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक गणेश जी ने रिद्धि और सिद्धि से विवाह किया है। दरअसल रिद्धि और सिद्धि हमारे लौकिक जीवन का पारलौकिक सामंजस्य है। रिद्धि का सार है विवेक, संपदा और उत्थान, जबकि सिद्धि का मतलब है आध्यात्मिक शक्ति। रिद्धि और सिद्धि का पाणी ग्रहण कर गणेश जी दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं कि अगर आपके जीवन में संपन्नता और ऐश्वर्य रूपी रिद्धि है तो उसे संभालने के लिए आध्यात्मिक शक्ति अपने अंदर विकसित करें, तभी आपके जीवन में उत्थान का स्थायित्व तो आएगा। पुराणों में गणेश जी के दो पुत्रों का भी उल्लेख मिलता है जिनके नाम है शुभ और लाभ। यह कितना सुंदर संकेत है, अगर आप अपने जीवन में रिद्धि सिद्धि से गठबंधन कर दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित कर लेंगे तो आपके जीवन में शुभता और समृद्धि रूपी संतानों की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर गणपति बप्पा अपने लौकिक स्वरूप से इंसान को जीवन जीने की कला अनादिकाल से ही सिखा रहे हैं।
2: तो एशियन गेम्स से एक और शानदार खबर निकल करके आ रही है, उसके बारे में आपको जानकारी दे दें कि जापान में इस वक्त एशियन गेम्स लगातार चल रहे हैं, भारत लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है और बेहतरीन प्रदर्शन की इस कड़ी में अब महिला 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू को सिल्वर मेडल मिल गया है। उनसे मेडल की उम्मीद काफी लंबे समय से जताई जा रही थी और आपको बता दें कि मीराबाई चानू का एशियन गेम्स में ये पहला मेडल है। भारत को एशियन गेम्स के चौथे दिन अब तक 11 मेडल मिल चुके हैं और इसके साथ ही ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: देखिए, गुड न्यूज टुडे लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जयंती पर मनाए जा रहे इस गणेश उत्सव के साथ जुड़िए। और इसके लिए आपको करना बस इतना है कि आपके घर पर पधारे गजानन का वीडियो आपको बनाना है और इसे बना करके हमें भेजना है। हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। और देखिए, हमारे पास लगातार जो दर्शक हैं जो जयंती रोज देखते हैं वो वीडियोस हमें भेज भी रहे हैं। इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें देख सकते हैं और आपको बता दें दोनों ही तस्वीरें हमारे दर्शकों द्वारा भेजी गई है। पहली तस्वीर हमें मध्य प्रदेश के नीमच से सुनील उज्जवल ने भेजी है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कितनी भक्ति भाव से बप्पा की यहाँ पर आराधना हो रही है। बप्पा की पगड़ी हो या फिर शानदार सजावट, बड़े ही शानदार तरीके से बप्पा का यहाँ पर श्रृंगार किया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर की अगर हम बात करें तो ये गुजरात के अहमदाबाद से विशाखा सोनी ने खास तौर पर हमें भेजी है। यहाँ बड़े ही उत्साह के साथ विघ्नहर्ता की पूजा अर्चना हो रही है। बड़े ही सुंदर तरीके से फूलों से बप्पा का श्रृंगार यहाँ पर किया गया है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें दो। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
2: एशियन गेम्स में मीराबाई चानू को मिला सिल्वर मेडल। जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस में रचा इतिहास। भारत के पास अब तक कुल 11 मेडल। गणेश उत्सव के 10वें दिन भारी उल्लास। लालबाग चराजा दरबार में भक्तों की कतार। गुजरात के अमरेली में रुपए और डॉलर से बप्पा का श्रृंगार। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर होगा हाईटेक। पहली बार होगा मूवेबल क्रॉसिंग का इस्तेमाल। 320 की रफ्तार पर भी सुरक्षित मोड़ की तैयारी। युद्धाभ्यास 2026 में दिखा अपाचे हेलीकॉप्टर का दम। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में अमेरिकी सेना के साथ दिखा जबरदस्त कोऑर्डिनेशन। ग्राउंड फोर्स के साथ अटैक एविएशन का तालमेल। सैलानियों से गुलजार हुआ जम्मू कश्मीर। सुहाने मौसम में शिकारा राइड का मजा ले रहे सैलानी। श्रीनगर की डल लेक किनारे पर्यटकों का हुजूम लगा।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: सज गए हैं खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव।
3: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषाएं नहीं है। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर वायरल न्यूज तक हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
2: आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में मिट्टी से बनी 63 फीट ऊंची इको फ्रेंडली महागणपति की मूर्ति को मिली वैश्विक पहचान। इंटरनेशनल अचीवर्स बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल। देशभर में अलग अलग थीम पर सजे हैं गणपति के पंडाल। अकोला के गणेश पंडाल में लौटा 80 का दशक, दिखी बीते दौर की पूरी तस्वीर। अमरेली के सावरकुंडला में गणपति महोत्सव का अनोखा नजारा। 25 लाख रूपये की भारतीय करेंसी और अमेरिकी डॉलर से गजानन का श्रृंगार। सूरत में कल्पवृक्ष की थीम पर गणेश पंडाल सजाया गया है। यहां भगवान गणेश के दर्शन के साथ लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया जा रहा। कराड़ के आजाद चौक में इस बार नरसिंह अवतार की खास झांकी बनाई गई। झांकी देखने शहर के साथ आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग।
3: राजगढ़ में उमड़ा आस्था का सैलाब। खिलचीपुर शहर में पारंपरिक आस्था और भक्ति के साथ मनाया गया जल झूलनी ग्यारस का पर्व। रायसेन के उदयपुरा में डोल 11 पर भगवान श्री कृष्ण की विमान यात्रा निकली। सैकड़ों साल पुरानी इस परंपरा में भगवान नगर भ्रमण कर भक्तों को देते हैं दर्शन। काशी विश्वनाथ मंदिर के नए सीईओ सत्या मिश्रा ने संभाला कार्यभार। श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन कराने और सुविधाएं बेहतर कराने पर फोकस। लैंसडाउन में एनएसए अजीत डोभाल ने गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट सेंटर का किया दौरा। अग्निवीरों से की बातचीत, गाया रेजिमेंटल गीत बड़े चलो गढ़वालियों बड़े चलो। युद्धाभ्यास 2026 में दिखा अपाचे हेलीकॉप्टर का दम। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में अमेरिकी सेना के साथ दिखा जबरदस्त कोऑर्डिनेशन।
2: भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने एशियन गेम्स में भारत को दिलाया सिल्वर मेडल। महिलाओं की 49 किलोग्राम कैटेगरी में 198 किलोग्राम के साथ दूसरे स्थान पर रही चानू। एशियन गेम्स में भारत के लिए गुड न्यूज आई है। भारत को सॉफ्ट टेनिस में मिला पहला मेडल। पुरुष सिंगल्स में जय मीणा ने जीता ब्रॉन्ज। भारत ने महिला स्केट टीम इवेंट में जीता ब्रॉन्ज मेडल। रजिया ढिल्लो माहेश्वरी और परिनास की तिकड़ी ने किया 331 का स्कोर। भारत के पुरुष की टीम ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया नारुका। फाइनल में अनंत जीत सिंह नारुका, मेराज अहमद खान और भवतेक सिंह गिल की जीत हुई। भारत दौरे के लिए तिरुवनंतपुरम पहुंची वेस्टइंडीज की टीम। 27 सितंबर से 3 वनडे मैचों की शुरुआत होगी, उसके बाद खेली जाएगी 5 T20 मैचों की सीरीज।
3: फिर लौटा लकी अली का दौर। फिल्म दृश्यम 3 के गाने को दी आवाज। रिलीज हुआ मुस्कुरा दो गाने का टीजर।
4: ये चांद तारे।
3: फिल्म महावीर कर्ण का पहला पोस्टर जारी। लगभग 150 करोड़ के बजट से बन रही है फिल्म। अगले साल हिंदी समेत 5 भाषाओं में होगी रिलीज। एक्टर वीर पहाड़ी और अपार शक्ति खुराना की नई फिल्म प्रेम कीटाणु का ट्रेलर रिलीज। ये फिल्म 2 अक्टूबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में होने वाली है रिलीज। दर्शकों के लिए नई फिल्म पहला प्यार दूसरी बार लेकर आ रहे हैं निर्माता लव रंजन। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज। राजस्थानी फिल्म धूड़ का मोशन पिक्चर जारी। ये एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जो 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। वर्ल्ड स्किल्स शंघाई समारोह की शानदार ओपनिंग सेरेमनी। शंघाई वर्ल्ड एक्सपो कल्चरल सेंटर में हुई 48वीं प्रतियोगिता की आधिकारिक शुरुआत। चीन में मिड ऑटम फेस्टिवल नेशनल डे की छुट्टियां नजदीक, जिसके जश्न के लिए देश भर में 20,000 से ज्यादा रंग बिरंगे इवेंट्स किए जा रहे हैं आयोजित। चीन के वुशी चिड़ियाघर में मिड ऑटम फेस्टिवल से पहले जिराफ, कैपिबारा और लाल पांडा जैसे जानवरों को स्पेशल मून केक दिए गए। सऊदी अरब की ऑटो कंपनी सोर ने अपनी पहली 2 लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च की हैं। एक्सोबॉट नाम की इस कार की बिक्री 2027 की शुरुआत से होगी। टेलर स्विफ्ट को एमटीवी वीएमए में पहली बार दिया जाएगा आर्टिस्ट डायरेक्टर अवार्ड। म्यूजिक वीडियो में उनके डायरेक्शन और क्रिएटिव काम के लिए ये अवार्ड।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: तो चलिए 25 अच्छी खबरों के बाद आप सबके लिए खबरें विस्तार से। आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है। एशियन गेम्स में मीराबाई चानू को मिला सिल्वर मेडल। जय मीना ने सॉफ्ट टेनिस में रचा इतिहास। भारत के पास अब तक कुल 11 मेडल। युद्धाभ्यास 2026 में दिखा अपाचे हेलीकॉप्टर का दम। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में अमेरिकी सेना के साथ दिखा जबरदस्त कोऑर्डिनेशन। ग्राउंड फोर्स के साथ अटैक एविएशन का तालमेल। गणेश उत्सव के 10वें दिन भारी उल्लास। लालबागचा राजा दरबार में भक्तों की कतार। गुजरात के अमरेली में रुपए और डॉलर से बप्पा का श्रृंगार। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर होगा हाईटेक। पहली बार होगा मूवेबल क्रॉसिंग का इस्तेमाल। 320 की रफ्तार पर सुरक्षित मोड की तैयारी। शंघाई में 48वें वर्ल्ड स्किल कंपटीशन का आगाज। उद्घाटन समारोह में इंसानों के साथ रोबोट्स का डांस। 68 देशों के आए प्रतिभागी करेंगे हुनर का प्रदर्शन।

0: और चलिए लंच टाइम में आज सबसे पहले बात रक्षा क्षेत्र में बढ़ते हिंदुस्तान के कदम की। हिंदुस्तान की सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में शुमार है। कई मौकों पर भारत अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर अपनी ताकत का लोहा मनवा चुका है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 के मुताबिक अमेरिका, रूस और चीन के बाद सैन्य ताकत के मामले में भारत दुनिया में दूसरे चौथे स्थान पर है। अपनी सैन्य तैयारियों को धार देने के लिए भारत दुनिया के तमाम देशों के साथ समय समय पर युद्धाभ्यास को अंजाम देता रहता है। इस वक्त भी भारत अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास में जुटा है। भारत और अमेरिका के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास 2026 का ये 22वां संस्करण है, जो 15 सितंबर से उत्तराखंड के औली और राजस्थान के बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक साथ आयोजित किया जा रहा है। 28 सितंबर को इस युद्धाभ्यास का समापन होगा। इतना ही नहीं, 26 सितंबर से भारतीय वायुसेना एक बड़े युद्धाभ्यास तरंग शक्ति में जुट जाएगी। तरंग शक्ति 2026 भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा मल्टीनेशनल हवाई युद्धाभ्यास है, जिसका दूसरा संस्करण 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक राजस्थान के जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित होने जा रहा है। और देखिए, इसी मेगा एक्सरसाइज में दुनिया भर की वायुसेनाएं भारत की सरजमीं पर अपनी सामरिक ताकत का प्रदर्शन करेंगी। इससे पहले जोधपुर में भारत और जापान के सैनिकों ने हवाई युद्धाभ्यास वीर गार्जियन 2026 में अपना पराक्रम दिखाया। और एक दिन पहले समाप्त हुए इस युद्धाभ्यास में भारत की ओर से तेजस, सुखोई 30, एमकेआई और राफेल ने अपनी ताकत का प्रदर्शन भी किया। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, जहां इन दिनों जमीन से लेकर आसमान तक हिंदुस्तान की सेना का दमखम दिख रहा है। भारत और अमेरिका की सेना मिलकर यहां युद्धाभ्यास कर रही है। इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में आधुनिक हथियारों का शक्ति प्रदर्शन भी किया जा रहा है। अभ्यास के दौरान होविट्जर तोप, धनुष और पिनाका रॉकेट लॉन्चर से जबरदस्त आर्टिलरी फायरिंग की गई। इसके साथ ही अटैक हेलीकॉप्टर्स ने आसमान में अपना दमखम दिखाया। एयर डिफेंस सिस्टम और एयर सर्विलांस सिस्टम भी इस युद्धाभ्यास का अहम हिस्सा है। L-70 एयर डिफेंस सिस्टम ने अभ्यास के दौरान अपने सटीक निशाना लगाने की क्षमता दिखाई। वहीं आसमान से आने वाले दुश्मनों को पहचानने वाले सर्विलांस सिस्टम ने सेना में अपनी अहमियत का प्रदर्शन भी किया। दोनों सेनाओं के जवानों ने आधुनिक हथियारों, सर्विलांस ड्रोन्स और सटीक टारगेट पहचान का अभ्यास करते हुए अपनी युद्ध क्षमताओं और आपसी तालमेल का शानदार प्रदर्शन किया।
1: एक साथ गरजती M777 अल्ट्रा लाइट होविट्सर तोपें, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से धुआंधार फायरिंग और आसमान में गरजता सेना का अटैक हेलीकॉप्टर। ये तस्वीरें किसी स्पेशल ऑपरेशन या फिर जंग के मोर्चे की नहीं हैं, बल्कि एक्शन से भरपूर ये तस्वीरें आई हैं राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से, जहां इन दिनों भारत और अमेरिका की सेना मिलकर युद्ध अभ्यास कर रही हैं। युद्ध अभ्यास 2026 के दौरान M777 अल्ट्रालाइट होविट्सर तोप, धनुष आर्टिलरी गन और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ही नहीं, बल्कि प्रैक्टिस सेशन के दौरान L-70 एयर डिफेंस गन और एमलेट सिस्टम का भी एक्शन देखने को मिला। इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी तालमेल को मजबूत करना और आधुनिक युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी ताकत को परखना है। अपने इसी मकसद के तहत दोनों देशों के जवानों ने इन घातक हथियारों का इस्तेमाल कर अपनी मारक क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया। अभ्यास के दौरान दोनों देशों के जवानों ने ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर बैठकर दुश्मन के ठिकानों और लक्ष्यों की बारीकी से पहचान की। सैनिकों ने आपस में खुफिया जानकारी साझा करने और तुरंत फायर ऑर्डर देने और फायरिंग के दौरान जरूरी सुधार करने की जटिल प्रक्रियाओं का मिलकर अभ्यास किया, ताकि युद्ध के मैदान में चूक की कोई गुंजाइश न रह जाए। इस बार के इस अभ्यास में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। इसीलिए ट्रेनिंग के दौरान सर्विलांस और टोही अभियानों के लिए विशेष रूप से ड्रोन्स और ऑटोनोमस सिस्टम का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच ये संयुक्त सैन्य अभ्यास का 22वां एडिशन है। 2 सप्ताह तक चलने वाला अभ्यास 15 सितंबर को शुरू हुआ था। इसका आयोजन उत्तराखंड के औली फॉरन ट्रेनिंग नोड और राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक साथ किया जा रहा है। जिसमें दोनों देशों की ओर से 600-600 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: तो भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास 2026 में पहली बार AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भी अपना दमखम दिखा रहा है। अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स को पहली बार रणनीतिक फायर सपोर्ट आर्किटेक्चर का हिस्सा बनाया गया है। इससे पहले भारत के पास केवल वायुसेना के अपाचे हेलीकॉप्टर ऑपरेशन का हिस्सा बनते थे, लेकिन हाल ही में अमेरिकी डील के तहत भारतीय थल सेना को अपने विशेष अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर मिले हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर मुख्य रूप से राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में अपाचे हेलीकॉप्टर्स अपनी हेल फायर मिसाइलों, 70mm रॉकेट्स और 30mm चेन गन्स के साथ लाइव फायर ट्रेनिंग का हिस्सा बन रहा है। मतलब ये मुख्य रूप से भारी गोलीबारी और सटीक हमलों पर केंद्रित है। तो वहीं उत्तराखंड के औली में अपाचे की ताकत को हाई ऑल्टीट्यूड में परखा जा रहा है। समुद्र तल से लगभग 2500 मीटर की ऊंचाई पर हो रहे इस अभ्यास में अपाचे के जरिए हाई ऑल्टीट्यूड युद्ध कौशल को परखा जा रहा है, जो चीन सीमा से महज 95 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चंद दिनों बाद भारत एक और अहम युद्धाभ्यास को अंजाम देने जा रहा है। इस एक्सरसाइज का नाम है तरंग शक्ति 2026। भारतीय वायुसेना का मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है, जिसका आगाज 26 सितंबर से राजस्थान के जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित होगा। 12 अक्टूबर तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में भारत समेत ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका, UAE की एयरफोर्स शामिल हो रही है। करीब 30 से अधिक देश ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल हो सकते हैं। इस अभ्यास की सबसे बड़ी खासियत अमेरिकी F-35 पांचवी पीढ़ी के स्टील फाइटर की भागीदारी है। वायुसेना के मुताबिक F-35 पहली बार भारत में किसी सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेगा। तरंग शक्ति का पहला संस्करण साल 2024 में दो चरणों में आयोजित किया गया था। इस बार 2026 में इसका दायरा काफी बड़ा हो चुका है, जो भारतीय वायुसेना की वैश्विक इंटर ऑपरेबिलिटी यानी आपसी तालमेल और सामरिक कौशल को एक नए मुकाम तक ले जाएगा।
2: और देखिए, इस बार के तरंग शक्ति अभ्यास की सबसे बड़ी हाईलाइट अमेरिकी वायुसेना की पांचवी पीढ़ी का अत्याधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 की एंट्री है। यह पहला मौका होगा जब F-35 भारतीय सरजमी पर किसी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में उड़ान भरेगा। जहां तक भारत के फायर पावर की ताकत है, तो भारत के कई लड़ाकू विमान इस युद्धाभ्यास में अपनी ताकत की नुमाइश करेंगे, जिसमें राफेल, मिराज 2000, जैगवार तेजस, MiG-29, सुखोई 30, MKI अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए देखे जाएंगे।
0: तो वहीं प्रचंड ध्रुव रुद्र हेलीकॉप्टर भी अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन करेंगे।
2: तो वहीं देखिए, अमेरिका के साथ भारतीय युद्धाभ्यास में जुटा है। तो वहीं जोधपुर में भारत और जापान के सैनिकों ने हवाई युद्धाभ्यास वीर गार्जियन 2026 में अपना पराक्रम दिखाया। इस युद्धाभ्यास में भारत की ओर से तेजस, सुखोई 30, MKI और राफेल के साथ जापान के F-2 लड़ाकू विमान भी शामिल हुए। 22 सितंबर तक चला यह अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच में तालमेल, ऑपरेशन क्षमता और रक्षा सहयोग को मजबूत करने में बेहद मददगार साबित होगा।

रेगिस्तान के आसमान में भारत के जवानों का शौर्य। पाकिस्तान बॉर्डर के पास भारत और जापान का शक्ति प्रदर्शन। जोधपुर एयरबेस हाल ही में हिंदुस्तान और जापान के बीच हवाई ताकत की बेहतरीन साझेदारी का गवाह बना। वीर गार्जियन एक्सरसाइज 2026 में भारत की वायुसेना अपनी ताकत परखने के लिए जापान के साथ युद्धाभ्यास किया।

0: वीर गार्जियन 2026 युद्धाभ्यास का दूसरा संस्करण 9 सितंबर से 22 सितंबर तक जोधपुर एयरबेस पर आयोजित किया गया। यह अभ्यास दोनों देशों के रक्षा संबंधों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ है, क्योंकि वीर गार्जियन 2026 में पहली बार जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के लड़ाकू विमान भारत में संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का हिस्सा बने। नौ सितंबर से शुरू हुए इस युद्धाभ्यास में रविवार 20 सितंबर को ऐतिहासिक मौका तब आया जब भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और जापानी वायुसेना प्रमुख जनरल ताकेहिरो मोरिता ने जोधपुर एयरबेस पर एक साथ स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस पे उड़ान भरी। उड़ान के दौरान एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने मुख्य पायलट की भूमिका निभाई, जबकि जापानी वायुसेना प्रमुख ट्विन सीटर तेजस में सह पायलट के रूप में शामिल हुए। ये उड़ान न केवल भारत जापान के बढ़ते हवाई तालमेल की तस्वीर थी, बल्कि ये उड़ान भारत की स्वदेशी एरोस्पेस क्षमता पर जापान के भरोसे का प्रतीक भी बनी।
1: जापान के एयर चीफ और भारत के एयर चीफ ने एक साथ एक सौटी की, भारत के तेजस विमान को उड़ाया और ये दिखा दिया कि भारत के कौशल के साथ साथ भारत में बना हुआ भारत का अपना फाइटर भी बेहद खास है।
0: जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के चीफ ताकेहिरो मोरिता ने एलसीए तेजस की तारीफ की।
2: आई एम ग्रेटफुल फॉर द इनवैल्युएबल अपॉर्चुनिटी टू फ्लाई ऑन द तेजस As an aircraft born from indigenous defense capabilities, Tejas stands as a symbol of India's technological innovation and embodies Make in India initiative. While flying, I found myself reflecting on the efforts of many people, both in the military and industry, who contributed to its development.
0: दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ओर से भारतीय तेजस लड़ाकू विमान को उड़ाना भारत और जापान के बीच बढ़ते विश्वास का भी प्रतीक है। आपको बता दें, भारत और जापान के बीच मुख्य रूप से दो संयुक्त युद्धाभ्यास होते हैं। दोनों देशों की थल सेनाओं का युद्धाभ्यास धन गार्जियन नाम से, जबकि वायुसेनाओं का युद्धाभ्यास वीर गार्जियन नाम से आयोजित किया जाता है। ये दोनों युद्धाभ्यास समय समय पर भारत और जापान में बारी बारी से होते हैं। अब तक धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास कुल 7 बार आयोजित हो चुका है। इसका 7वां संस्करण इसी साल 24 फरवरी से 9 मार्च 2026 तक उत्तराखंड के चौपटिया में आयोजित किया गया था, जबकि वायुसेनाओं की वॉर एक्सरसाइज वीर गार्जियन का पहला संस्करण जनवरी 2023 में जापान के हायाकुरी एयरबेस पर आयोजित किया गया था। युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान एलसीए तेजस के अलावा सुखोई 30, एमकेआई और राफेल जैसे अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों को शामिल किया गया, जबकि जापानी वायुसेना ने F-2A और कावासाकी C-2 जैसे विमानों के साथ शिरकत की। युद्धाभ्यास के दौरान दोनों वायुसेनाओं ने अपनी हवाई युद्धक क्षमताओं को परखा। दोनों देशों के लड़ाकू विमानों ने एयर स्ट्राइक से जुड़े कई अभियानों का अभ्यास किया। बाईस सितंबर तक जोधपुर में चले इस अभ्यास का मकसद दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच ऑपरेशनल तालमेल, आपसी समझ और संयुक्त अभियानों के दौरान समन्वय को मजबूत करना है। इसीलिए दोनों वायुसेनाएं जोधपुर में अब तक कई तरह के हवाई अभियानों और वॉर एक्टिविटीज का अभ्यास कर चुकी हैं। दोनों वायुसेनाओं के पायलट और कमांडर्स ने आधुनिक युद्ध तकनीक को एडवांस्ड ऑपरेशनल मिशन और संयुक्त मिशन प्लानिंग पर काम किया। इसमें दोनों सेनाओं ने एक दूसरे की ऑपरेशनल टैक्टिक्स को समझा, ताकि जरूरत पड़ने पर मिलकर काम किया जा सके। हवाई युद्धाभ्यास के अलावा दोनों देशों के तकनीकी और इंजीनियरिंग दलों के बीच भी विस्तृत चर्चा हुई। इसमें विमानों के रखरखाव, कठिन मौसम में इंजीनियरिंग सहायता और एरोस्पेस सेफ्टी सुनिश्चित करने की बेस्ट तकनीकों को साझा किया गया। यानी वायुसेना के इस एक्सरसाइज के जरिए जहां दोनों देशों की सेनाएं रण कौशल से जुड़ी अपनी तैयारियों को परखा, तो वहीं युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने वाले जवानों को भी एक दूसरे से काफी कुछ नया सीखने को मिला। ये युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने और पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के दृष्टिकोण से बेहद सफल रहा। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज टुडे।
3: जापान में चल रहे एशियन गेम्स का चौथा दिन भारत के लिए अब तक शुभ रहा। वेटलिफ्टिंग की 49 किलो की कैटेगरी में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता, तो वहीं सॉफ्ट टेनिस में भारत को पहला मेडल जय मीणा ने दिलाया। उन्होंने पुरुष सिंगल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इससे पहले अनंतजीत सिंह, महराज अहमद खान और भवतेक सिंह गिल की टीम ने पुरुष स्किट टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। महिला स्किट टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। अंक तालिका की अगर बात करें तो भारत के पास अब तक कुल 11 मेडल हैं, जिसमें एक गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज शामिल हैं।

0: और चलिए अब आपको एक ऐसी पैरा एथलीट से मिलवाते हैं, बेजोड़ जज्बा ही जिनकी पहचान बन गया है। इंदौर की नेशनल अवार्ड विनर पूजा गर्ग अब दिव्यांगों की राह आसान बनाने के लिए काम कर रही हैं, साथ ही समाज में जागरूकता लाने और पर्यावरण बचाने की दिशा में चल रहे कई अहम प्रोजेक्ट से ये जुड़ी हुई है। हमारे सहयोगी वैभव राज शुक्ला ने पूजा गर्ग से खास बातचीत की है, सुनिए।
1: जीवन में जब राहें कठिन हो जाती हैं, तो कई लोग घुटने टेक देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो मुश्किलों को सीढ़ी बनाकर सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं। ऐसी एक मिसाल पेश की है पैरा एथलीट पूजा गर्ग ने, जिन्होंने अपने हौसले के दम पर वो मकाम हासिल किया जहां पहुंचना किसी सपने के साकार होने जैसा होता है। लेकिन अब पूजा एक नए मिशन पर निकली है।
2: मुझे लगता है कि जिस तरह से इसका नाम है राइड बियॉन्ड लिमिट, बिल्कुल इसी तरह की ये पूरी यात्रा है कि हमें अपनी सीमाओं के पार जो चीजें हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं है उन्हें हमें पाना है, और ऐसा कुछ समाज को और देश को देना है कि हर एक दिव्यांग उस एक्सेसिबिलिटी को फील कर पाए, और जब भी कहीं आने या उसे कुछ चीज की जरूरत पड़े तो वो उसके दिमाग में वो थॉट ना आए कि मैं उस चीज उस जगह पर नहीं जा सकता, उसे बस ये लगे कि नहीं, इंडिया पूरी तरह से एक्सेसिबल है। तो बस उसी थॉट को लेकर मुझे लगता है राइड बियॉन्ड लिमिट करके हम एक प्रोग्राम लेकर आए हैं, एक प्रोजेक्ट है। और मुझे लगता है कि जब मुझे नेशनल अवार्ड मिला था तो कहीं ना कहीं वो रोल मॉडल का अवार्ड था, तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी कंधों पर आई थी कि अब समाज को और उन दिव्यांग भाई बहनों को कुछ ऐसा देना है। तो बस उसी को मद्देनजर रखते हुए एक्सेसिबिलिटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
1: पूजा गर्ग की जिंदगी साहस, संघर्ष और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का प्रतीक है। 2010 में गंभीर दुर्घटना में उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई थी, इसके बावजूद उन्होंने जीवन से हार नहीं मानी। एक के बाद एक 13 कठिन सर्जरीज के बाद उन्होंने न केवल सामान्य जीवन की ओर वापसी की बल्कि इस दौरान कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को भी मात दी। लेकिन अपनी हिम्मत और हौसले के दम पर पूजा गर्ग आज भारत की एक जानी मानी अंतर्राष्ट्रीय पैरा कैनो खिलाड़ी हैं। उन्होंने एशियन पैरा कैनो चैंपियनशिप 2025 में 2 कांस्य पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। यही नहीं, 2024 में उन्होंने 14,400 फीट ऊंचे नाथुला पास पर मोटर बाइक से पहुंचकर भारतीय तिरंगा लहराया था, जिसके लिए उनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में भी दर्ज किया गया।
2: मैं 2024 में जब मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ तब एक ही थॉट आया कि इस जो कैंसर है इसे भी मुझे ग्रैब करना है, इसमें भी अपना बेहतर से बेहतरीन प्रदर्शन करना है। तो इंदौर से नाथुला तक मैंने एक बाइक राइड करा था जो 4 व्हीलर एडेप्टिव व्हीकल के साथ बाइक थी मेरी, और 4500 किलोमीटर की पूरी यात्रा थी और 14,400 फीट की इसका अल्टीट्यूड था पूरी जर्नी का। तो जब मैं
3: बाइक राइड से भी संभव नहीं होता है
2: जी एक्चुअली, तो जब मैं नाथुला पहुंची थी तो जो इंडियन आर्मी वहां पे थी उन्होंने वहां पे मुझे तिरंगा लहराने का मौका दिया और मैंने वहां पर एक कीर्तिमान स्थापित करा।
1: आज पूजा गर्ग केवल एक सफल पैरा एथलीट ही नहीं बल्कि देश के लाखों युवाओं और दिव्यांग जनों के लिए उम्मीद की एक किरण है। लेकिन उनकी जिंदगी का मूल मंत्र है हार ना मानना और पॉजिटिव सोच।
2: तो सारे 5 फैक्टर है आपका, पॉजिटिव एटीट्यूड, फैमिली, आध्यात्म और आपका एक माइंडसेट जो आपको हमेशा एक पॉजिटिव थॉट की तरफ लेके जाता है। ये सारी जो चीजें हैं उन सब को ही मैं मद्देनजर करके ये सारी चीजें करती हूँ। मेरी मदर है जो शायद मेरा पावर पैक है, वो टीचर है, वो हमेशा यही सिखाती है कि हारना नहीं है, और किसी चीज में हार मिल रही है तो वो हार नहीं है, आपका एक्सपीरियंस है। जब इस थॉट को लेकर मैं आगे बढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो निगेटिव जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं।
1: अब पूजा की कोशिश अपने जैसे लोगों की मदद करना है। अब तक उन्होंने जो हासिल किया उसके जरिए वो अपने जैसे दूसरे लोगों की भी मदद करना चाहती हैं, जिसकी पहली सीढ़ी है लाइफ बियॉन्ड लिमिट्स।
2: जब भी मैं इंटरनेशनल जाती हूँ तो वहाँ पर जो एक एटमॉस्फेयर होता है कि दिव्यांगों को एक कहीं ना कहीं एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। आज हमारे इंडिया में भी आज हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने जो दिव्यांग वर्ड हमें दिया है, एक विकलांग से दिव्यांगता की तो जो हमें तरफ लेके गए हैं, उसे हमें सार्थक बनाना है। हर एक व्यक्ति को हमें कुछ स्पेशल दिखना चाहिए। हमारी स्टोरी डेफिनेटली एक स्पेशल होती है, हमारी सबकी एक जर्नी जो है वो कहीं ना कहीं स्पेशल है, लेकिन वो समाज तक आना होगा, उसे समाज को जानना होगा कि हम कितनी मुश्किलों के बाद भी आज उस जगह पे, उस मुकाम पे खड़े हैं, शायद जहाँ खड़े रहना या बैठना भी इम्पॉसिबल है। तो बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि आज से आने वाले कुछ सालों में दिव्यांगों को एक मुख्य धारा से जोड़ा जाए, हर उस जगह पर उन्हें एक सेम दृष्टि से देखा जाए।
1: पूजा ने साबित कर दिखाया कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो दर्द भी सफलता की शक्ति में बदल जाता है।
2: चाहे जैसे भी हो, हाथ उठाए रखिए, पानी कितना भी गहरा हो बैलेंस बनाए रखिए। कौन कहता है, कौन कहता है कि चलनी में पानी रुकता नहीं, बस बर्फ बनने तक का हौसला बनाए रखिए।
1: वैभव राज शुक्ला, गुड न्यूज टुडे। तो चीन में इन दिनों वर्ल्ड स्किल शंघाई 2026 प्रतियोगिता चल रही है। इस कार्यक्रम में 70 से ज्यादा देश अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। कल इस कार्यक्रम की बेहद शानदार ओपनिंग सेरेमनी हुई। इस कार्यक्रम के दौरान 1400 से ज्यादा युवा अलग अलग क्षेत्रों में अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी पर सबसे ज्यादा चर्चा होगी। भारत इस साल 60 से ज्यादा कैटेगरीज में अपने कौशल का प्रदर्शन करेगा। 27 सितंबर को शंघाई वर्ल्ड एक्सपो कल्चर सेंटर में समारोह का भव्य समापन होगा।
0: चलिए इसी के साथ यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के बाद देखिए गणपति बप्पा की 25 तस्वीर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
5: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में खुशियों का ऐलान। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: एशियन गेम्स में मीराबाई चानू को मिला सिल्वर मेडल। जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस में रचा इतिहास, भारत के पास अब तक कुल 11 मेडल। गणेश उत्सव के 10वें दिन भारी उल्लास, लालबाग चराजा दरबार में भक्तों की कतार, गुजरात के अमरेली में रुपए और डॉलर से बप्पा का श्रृंगार। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में धूमधाम से मनी जल झूलनी एकादशी, सड़कों पर उमड़ा आस्था का मेला, आतिशबाजी के साथ कृष्ण लीलाओं का मंचन। सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन में सैर करते दिखे टाइगर, पर्यटकों ने कैमरे में कैद किया नजारा, ग्वालियर से आए पर्यटक हुए रोमांचित।
8: ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट मोड में आया प्रशासन, गंजाम में तैयारियों को परखा।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।

0: और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका लंच टाइम में। देश भर में आस्था और विश्वास की एक खूबसूरत तस्वीर देखने को मिल रही है। भक्त पूरी श्रद्धा के साथ बप्पा की भक्ति में लीन है। अब बप्पा की विदाई में महज 2 दिन बाकी हैं। ऐसे में हर कोई बप्पा का आशीर्वाद लेने और उनके दर्शन करने के लिए पंडालों का रुख कर रहा है। और खास बात तो ये है कि शहर शहर बप्पा के भव्य और दिव्य पंडाल सजाए गए हैं, जहां गणपति के एक से बढ़कर एक स्वरूप भक्तों को आकर्षित कर रहे हैं। कहीं किसान के रूप में बप्पा के दर्शन हो रहे हैं तो कहीं एआई वाले बप्पा भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। वहीं कई पंडालों में सामाजिक संदेशों को भी खास जगह दी गई है। इन अनूठी और आकर्षक झांकियों के जरिए न केवल आस्था का रंग देखने को मिल रहा है, बल्कि समाज को जागरूक करने का संदेश भी दिया जा रहा है।
1: और चलिए अब आपको दिखाते हैं गणपति बप्पा की 25 तस्वीरें।

0: तो गणेशोत्सव का आज दसवां दिन है। देश भर के गणपति पंडालों में भक्तिभाव से गजानन की पूजा अर्चना चल रही है। वहीं मुंबई में लालबागचा राजा के पंडाल में दर्शनार्थियों की भीड़ लगातार उमड़ रही है। हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। इसी बीच लालबागचा राजा की भव्य आरती की गई, परंपरा के अनुसार उनका श्रृंगार हुआ। तो वहीं आज आखिरी दिन भी भगवान गणपति के दर्शनों के लिए सुबह से भक्तों की भीड़ लगी हुई है।
1: मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा के दरबार में बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त अपनी पत्नी मान्यता दत्त के साथ पहुंचे। गणेशोत्सव के बीच दोनों ने बप्पा के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। दोनों ने साथ में गणपति बप्पा की पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने अपने माथे पर तिलक लगाया। इस दौरान पंडाल में भारी भीड़ और कड़ी सुरक्षा के बीच संजय दत्त मान्यता का खास ख्याल रखते हुए नजर आए।
0: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे अपने पिता चंकी पांडे के साथ मुंबई के प्रसिद्ध लालबागचा राजा के दर्शन के लिए पहुंची, जहां दोनों को मुंबई की भीड़ भाड़ वाली गलियों से गुजरते हुए बप्पा के दरबार की ओर जाते देखा गया। इस दौरान अनन्या पांडे ट्रेडिशनल आउटफिट में नजर आई। पिता बेटी की जोड़ी ने गणपति बप्पा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। अनन्या के पहुंचने पर वहां मौजूद लोगों की नजरें उन पर टिक गईं।

0: से ज्यादा चर्चा उनके साथ नजर आई अभिनेत्री कोमल रानी सवंडकर को लेकर हो रही है।
1: मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी ने हाल ही में मुंबई के प्रसिद्ध लाल बादशाह राजा के दर्शन किए। हर साल की तरह इस बार भी अनंत अंबानी पंडाल में पहुंचे, लेकिन इस बार वो अपने परिवार के साथ नहीं थे। उनके साथ उनकी खास दोस्त जानवी कपूर के मित्र शिखर पहाड़िया मौजूद थे। सोशल मीडिया पर अनंत अंबानी और शिखर का वीडियो वायरल है, जिसमें वो बिना लाइन में लगे आराम से भगवान गणेश के दर्शन करते हुए नजर आए।
0: अभिनेता जितेंद्र भी गणपति बप्पा की भक्ति में रंगे नजर आए। पुणे के राजा राम गणपति मंडल पहुंचकर जितेंद्र ने बप्पा के दर्शन किए और विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बप्पा बुलाते हैं, हम यहां आते हैं, मुझे मरते दम तक यहां आना है। जितेंद्र ने बप्पा से सभी लोगों के अच्छे और खुशहाल रहने की प्रार्थना की। गणपति दर्शन के दौरान उनके चेहरे पर आस्था और भक्ति का भाव साफ नजर आया।
1: ठाणे में इच्छा पूर्ति गणपति के दरबार पहुंचे हरभजन सिंह, जहां पूर्व क्रिकेटर और सांसद हरभजन सिंह ने ठाणे में इच्छा पूर्ति गणपति बप्पा के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने बप्पा की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान हरभजन सिंह ने बप्पा की आरती भी की, साथ ही श्रद्धालुओं से मुलाकात की। वहीं हरभजन सिंह को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गणेशोत्सव के दौरान अपने परिवार के साथ मुंबई के प्रसिद्ध लालबागचा राजा के दर्शन किए। पत्नी अमृता फडणवीस और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ पहुंचे मुख्यमंत्री ने बप्पा की विधिवत पूजा अर्चना की और चरणों में शीश नवाया। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र की सुख समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना की। गणेशोत्सव के चलते लालबागचा राजा पंडाल में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।
1: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने अपने बेटे और एनसीपी सांसद पार्थ पवार के साथ मुंबई के प्रसिद्ध लाल बादशाह राजा के दर्शन किए। गणेशोत्सव के मौके पर दोनों ने बप्पा के दरबार में पहुंचकर पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया। इस दौरान लाल बादशाह राजा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई।
0: सूरत में कल्पवृक्ष की थीम पर सजे इस पंडाल में गणपति दर्शन के साथ लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया जा रहा है। पंडाल की डालियों पर ड्रग, शराब, सिगरेट और तंबाकू छोड़ने के स्लोगन लगाए गए हैं। आयोजकों का कहना है कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए जागरूकता बेहद जरूरी है। पूजा के साथ सेवा, शिक्षा, अन्नदान और स्वच्छता का संदेश भी दिया जा रहा है। कल्पवृक्ष की थीम के जरिए लोगों से स्वस्थ और बेहतर जीवन जीने की अपील की गई है।
1: नासिक में सोने के गणेश की अनोखी कला ने लोगों को हैरान कर दिया है। सुनार भगवान दास खरोटे ने 3 मिलीमीटर तक की बेहद छोटी गणेश मूर्तियां बनाई हैं, जिन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। उन्होंने अलग अलग आकार रूपों में 291 सूक्ष्म गणेश प्रतिमाएं तैयार की हैं। इसमें चाय वाले बप्पा से लेकर तबला, हारमोनियम और सितार बजाते गणेश तक शामिल हैं। भगवान दास खरोटे पिछले 32 साल से इस कला पर काम कर रहे हैं और इन मूर्तियों को बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हाथों से तैयार करते हैं।
0: सतारा के आजाद चौक में इस बार नरसिंह अवतार की भव्य झांकी बनाई गई। झांकी देखने के लिए शहर के साथ आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। नवजवान गणेश मंडल की गणेशोत्सव परंपरा कई दशकों पुरानी है। मंडल की स्थापना 1952 में हुई, जबकि 1970 से यहां विशेष शैली की गणेश प्रतिमा स्थापित की जा रही है। साल 2009 से मंडल ने पर्यावरण अनुकूल गणेशोत्सव की शुरुआत की, जिसके बाद शहर के दूसरे मंडलों ने भी इको फ्रेंडली प्रतिमाओं की ओर कदम बढ़ाया। इस बार नरसिंह अवतार की झांकी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
1: अमरेली के सावरकुंडला में गणपति बप्पा का अनोखा स्वरूप श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। सद्भावना ग्रुप ने बप्पा को करीब 25 लाख रुपए की भारतीय करेंसी अमेरिकी डॉलर से सजाया है। 20, 50, 100, 200, 500 रुपए के नोटों से श्रृंगार किया है।
0: तो जालना में 65 किलो चांदी के गणपति बप्पा बनाए गए हैं, जिसके दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मान के पहले गणपति के तौर पर मशहूर इस पंडाल से 79 वर्ष है। बप्पा को 11 तोले के सोने का मुकुट पहनाया गया है।
1: महाराष्ट्र के जालना शहर में गणेशोत्सव का उत्साह दिखाई दिया। शहर के बड़े सड़क इलाके में 22 से 25 फीट तक ऊंची भव्य गणेश प्रतिमाएं श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बन गई।
0: महाराष्ट्र के चंद्रपुर में गणेशोत्सव के दौरान बप्पा के दरबार में भक्ति और आस्था का अनोखा संगम देखने को मिला। यहां भगवान गणेश के साथ भक्तों को खाटू श्याम जी और सावरिया सेठ के दिव्य दर्शन भी हो रहे हैं। श्री सिद्धिविनायक गणेश मंडल की ओर से राजस्थान के प्रसिद्ध सावरिया सेठ मंदिर की भव्य

जागे तैयार की गई है। चंद्रपुर के किसान के रूप में गणपति बप्पा नजर आए। खेत में हल चलाते बप्पा की प्रतिमा श्रद्धालुओं का ध्यान खींचती रही। किसानों को समर्पित की गई ये झांकी आकर्षण का केंद्र बन गई। सोशल मीडिया पर एआई के जरिए पुरानी तस्वीरों को नए अंदाज में दोबारा बनाने का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के अकोला में गणेश पंडाल ने 1980 के दशक को सिर्फ तस्वीरों में नहीं बल्कि पूरी की पूरी झांकी में जिंदा कर दिया है। संधि के आम के रोज परिवर्तन गणेश पंडाल में पहुंचते ही आपको मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया से दूर उस दौर की यादों में पहुंचाने का एहसास होगा। अकोला में गणेश पंडाल की अनोखी थीम भक्तों का ध्यान खींच रही है। विप्रो युवा वाहिनी गणेश मंडल में घटते जंगल और बढ़ते शहरीकरण को दर्शाती खास झांकी सबका आकर्षण का केंद्र बन गई। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में गणपति बप्पा का भव्य और अनोखा स्वरूप देखने को मिल रहा है। मछलीपट्टनम बीच पर स्थापित 63 फीट ऊंची को फ्रेंडली महागणपति प्रतिमा को इंटरनेशनल अचीवर्स बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। मुंबई के अंधेरे में गणेश उत्सव की रौनक देखने को मिल रही है। इस बार अंधेरे के राजा को अयोध्या के राम मंदिर की थीम पर पंडाल में बनाया गया, साथ ही पंडाल को भव्य तरीके से सजाया भी गया। महाराष्ट्र के अमरावती के जय हिंद गणेश उत्सव पंडाल में पर्यावरण संरक्षण और जल बचत का संदेश देने के लिए 31 किलो अंजीर और मखाने से 7 फीट ऊंची इको फ्रेंडली बप्पा की प्रतिमा बनाई गई है। तेलंगाना के पलवंचा शहर में गणेश चतुर्थी के दौरान अलग अलग पंडालों में भगवान गणेश की मूर्तियों को कुल 2,90,00,000 रुपए के असली करेंसी नोटों से सजाया गया, जिसमें 1,40,00,000 रुपए के नोटों से बप्पा को सजाया गया है। कोटा की रेलवे कॉलोनी में गणपति का अनोखा स्वरूप आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बालाजी नवयुवक मंडल ने 9 फीट लंबे विशाल मूषक पर 7 फीट ऊंचे गणपति की स्थापना की है। सांगवी में गणपति विसर्जन के दौरान भक्तिमय माहौल नजर आया। गणपति बप्पा को विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। ढोल ताशे और जयकारों के बीच में बप्पा को विदाई दी गई।

0: तो देखिए, इस बार गणेशोत्सव मुंबई के सभी पंडाल दर्शनीय हैं। जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे आपको गणेश पंडाल नजर आएंगे। यहां हर पंडाल में विराजित किए बप्पा की आभा जितनी विशाल है उतनी ही प्रभावी पंडाल की थीम भी है।
1: जैन में अंधेरी ईस्ट के पारसीवाड़ा चा राजा और घाटकोपर का भटवाड़ी चा राजा पंडाल भी शामिल है। दोनों ही गणेश पंडालों की भव्यता देखने लायक है।
0: और देखिये, इन दोनों पंडालों की थीम क्यों सुर्खियां बटोर रही है, चलिए आपको इसकी वजह बताते हैं।

0: गणेशोत्सव के दौरान मुंबई में भटवाड़ी के राजा भी आस्थावानों को शुभाशीष दे रहे हैं। गणेश जी की सुंदर प्रतिमा की विशेषता इनका इको फ्रेंडली होना रहा है, यानी इनको कागज से तैयार किया जाता है, जो पर्यावरण अनुकूल एक सराहनीय मिसाल है।
1: आपको बताया कि गणपति बप्पा को लगातार 4 साल से कागज से बना करके यहाँ लाया जाता है और पास के ही कृत्रिम तालाब में, जो बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से बनाई गई है, वहाँ इनका विसर्जन कर दिया जाता है। पूरी तरह से इको फ्रेंडली है
0: ये गणेश मंडल। इस साल अपना 58वां साल मना रहा है, तो वहीं पर्यावरण स्वच्छ रहे, आबाद रहे, लोग अपनी आबो हवा साफ सुथरी रखने को लेकर जागरूक बने, इसी उद्देश्य के साथ पिछले 4 साल से भटवाड़ी चा राजा की मूर्ति को कागज से ही तैयार किया जा रहा है।
2: हम 4 साल से, क्योंकि यहाँ पे जो पर्यावरण है वो संभालना बहुत जरूरी है, और अपन मंडल ही करेंगे तो फिर छोटे छोटे लोग भी करेंगे, इसलिए अब सब यंग जनरेशन हमारे जो है वो बोले नहीं, अपन खुद से खुद अपन ये करके करें, पहल करके करेंगे तो आगे सब करेंगे। इसके लिए हमने 4 साल से कागज से गणेश जी लेके आते हैं।
0: लेकिन इस बार भटवाड़ी चा राजा अपने इको फ्रेंडली स्वरूप के साथ ही अपनी एक बेहद निराली और तकनीकी थीम को लेकर भी सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल इस बार भटवाड़ी चा गणेश पंडाल को AI थीम पर तैयार किया गया है।
1: इस बार भटवाड़ी के राजा की जो थीम है वो AI पे रखी गई है, जैसे कि किस तरीके से AI की हेल्प से मिसाइल अपने आप में एक बहुत बड़ा काम कर रही है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने क्या कुछ कहा है, कैसे उन्हें लोग फॉलो कर रहे हैं, और इसके अलावा विज्ञान में AI कितने अंदर तक डीप तक जा चुकी है,
0: यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का देश की तरक्की में कितना योगदान है, इससे क्या फायदा है क्या नुकसान है, इसकी कहानी बयां कर रहे हैं भटवाड़ी चा राजा पंडाल में लगे ये पोस्टर बैनर और एक विशेष चलचित्र भी, जिसको LED के माध्यम से श्रद्धालुओं को दिखाया जा रहा है।
1: AI सुरक्षित है या नहीं, इन सारी चीजों की जो कहानी है, इन सारी चीजों की जो अपडेट है, वो यहाँ पोस्टर बैनर के माध्यम से लगाई गई है। खासतौर से बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खूबसूरत यहाँ पर चलचित्र बनाया गया है।
0: आज जहाँ AI सिर्फ तकनीक नहीं, हमारे देश की हर क्षेत्र में तरक्की की नई रफ्तार है, AI देश की क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है, ऐसे में तकनीक की इस नई दुनिया में अब धीरे धीरे भक्ति और अध्यात्म की भी एंट्री हो रही है, जिसकी ताजा मिसाल भटवाड़ी चा राजा का ये पंडाल भी है।
3: हमारा मंडल का स्पेशलिटी है, हम लोग हर साल कुछ न कुछ सोशल मैसेज देते हैं, तो इस साल हमने सोचा कि गणेशोत्सव के थ्रू हम लोग कुछ न कुछ सोशल मैसेज दे सकते हैं, तो हमने AI कैसा यूज करना है, AI के फायदे क्या है, AI अपने दिन ब दिन के काम में हम लोग AI कैसे प्रॉम्प्ट के जरिए यूज कर सकते हैं, ऐसा हमने डेकोरेशन में मेंशन किया है। साथ ही ये डेकोरेशन के साथ हमने AI के जो वर्कशॉप्स रखे हैं, ताकि सोसाइटी के लोग आए, प्रोफेशनल्स आए, वो AI का यूज कैसे कर सकते हैं वो देख सकते हैं, और लोगों को AI के बारे में अच्छी जानकारी पहुंचाना हमारा काम है, इसके लिए हमने वो AI का डेकोरेशन किया।
0: अहम पहलू ये भी कि AI पंडाल थीम को मंडल के ही सदस्यों ने महीने भर के अंदर ही तैयार कर दिया, तभी तो इको फ्रेंडली भटवाड़ी चा राजा और उनका AI थीम पंडाल यहाँ आने वाले लोगों को आकर्षित कर रहा है। गणेशोत्सव में एक से बढ़कर एक खूबसूरत डेकोरेशन की जा रही है, इनको बनाने में कितनी मेहनत और कितने कारीगर लगते हैं, इसकी मिसाल मुंबई में ही इन दिनों पारसीवाड़ा राजा का पंडाल पेश कर रहा है, जिसकी चमक दमक किसी शाही महल से कम नहीं।
1: ये मैं किसी राजमहल की एंट्री गेट आपको नहीं दिखा रहा, बल्कि एक ऐसा गणेश उत्सव पंडाल दिखा रहा हूँ जो इस तरीके से सजाया गया है। श्रद्धालु इस रास्ते से होते हुए सीधे भीतर की तरफ चलते हैं। दीवारें देखें, इस तरह से बनाई गई हैं जैसे पौराणिक कथाओं की गान गा रही हो, और यहाँ से लोग आते हुए सीधे सबसे पहले श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं, जिनका बाल स्वरूप यहाँ पर झूले में रखा गया है। तो इसी से ये बात मालूम पड़ रही है कि कहीं न कहीं थीम भी इनके आसपास ही है।
0: पारसीवाड़ा चा राजा का पंडाल अपने 63वें साल में है, ऐसे में इस पंडाल को भगवान कृष्ण की दिव्य कथाओं यानी श्री कृष्ण लीला थीम पर तैयार किया गया है, जहां पंडाल के चारों तरफ लगी LED अपने आने वाले लोगों को कान्हा के जन्म से लेकर महाभारत तक के वाक्यों से रूबरू करा रही है। दरअसल ये विजुअल प्रेजेंटेशन ही विशेषकर बच्चों को समझाने के लिए रखी गई है।
4: अभी तक बच्चों लोगों को ये मालूम नहीं ये चित्र क्या है, क्या वो चित्र क्या है, तो उनको ये समझ देना जरूरी है कि भाई ये उस टाइम में भीष्म जो प्रतिज्ञा की थी, ये जो आपने बताया, तो वो भीष्म की प्रतिज्ञा जो श्री कृष्ण ने बोला मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो उस टाइम में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो भीष्म ने बोले थे मैं तुम्हें शस्त्र उठाने के लिए जरूर करूंगा, तो उनकी प्रतिज्ञा सच होना चाहिए, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने शस्त्र उठाया।
0: तो अगर आपको इस गणेशोत्सव भगवान कृष्ण की दिव्य कथाओं का अनुभव करना है, खासकर अपने बच्चों को कान्हा की कथाओं से विजुअली परिचित करवाना है, तो पारसीवाड़ा राजा का ये शाही पंडाल आपके स्वागत के लिए तैयार है।
1: गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति। पारसीवाड़ा के महाराजा के दरबार में हम इस समय मौजूद हैं और वाकई में श्री कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं, उनकी पौराणिक कथा यहां पर दीवारों में उनके कटआउट पोस्टर्स एलईडी के जरिए दिखाने की कोशिश की जा रही है। और आज के जो भी युवा पीढ़ी हैं, उन्हें ये बातें पता चल पाए, बच्चों को ये बातें पता चल पाए कि श्री कृष्ण आखिर क्यों जन्मे थे और उनका उद्देश्य क्या था जन्म लेने का। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष डी के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई।
5: और लंच टाइम में ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
7: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में खुशियों का ऐलान। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
6: तो गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी GNT पर मनाए जा रहे गणेश उत्सव के साथ जुड़िए। इसके लिए आपको बस करना इतना सा है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक वीडियोस भी भेज रहे हैं।
7: तो आपकी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर हमें महाराष्ट्र के जालना से शंकर पिछाड़े ने भेजी है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कितने भक्तिभाव से बप्पा की आराधना हो रही है। बप्पा की पगड़ी हो या शानदार सजावट, बड़े ही शानदार तरीके से बप्पा का श्रृंगार किया गया है। तो वहीं दूसरी तस्वीर हमें महाराष्ट्र के परभणी से ओमकार बागल ने भेजी है। यहां बड़े ही उत्साह के साथ विघ्नहर्ता की पूजा अर्चना हो रही है। बड़े ही सुंदर तरीके से फूलों से बप्पा का श्रृंगार किया गया है। तो दोनों तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां बप्पा का सुंदर तरीके से श्रृंगार हुआ है।
6: और इसी के साथ लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही, और चलिए हम दोनों को इजाजत दीजिए। अच्छे और पॉजिटिव खबरें दिन भर जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों।
8: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में खुशियों का ऐलान। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
3: एशियन गेम्स में मीराबाई चानू को मिला सिल्वर मेडल, जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस में रचा इतिहास, भारत के पास अब तक कुल 11 मेडल। गणेश उत्सव के 10वें दिन भारी उल्लास, लालबादशाह राजा दरबार में भक्तों की

0: तारे गुजरात के अमरेली में रुपए और डॉलर से बप्पा का श्रृंगार। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में धूमधाम से मनी जल झूलनी एकादशी, सड़कों पर उमड़ा आस्था का मेला, आतिशबाजी के साथ कृष्ण लीलाओं का मंचन। सरिस्का टाइगर रिजर्व में बफर जोन में सैर करते दिखे टाइगर, पर्यटकों ने कैमरा में कैद किया ये नजारा, ग्वालियर से आए पर्यटक हुए रोमांचित। ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी, अलर्ट मोड में आया प्रशासन, गंजाम में तैयारियों पर खा।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
0: एशियन गेम्स में मीराबाई चानू ने रचा इतिहास, महिलाओं की 49 किलोग्राम कैटेगरी में भारत को दिलाया सिल्वर मेडल, एशियन गेम्स में मीराबाई का पहला मेडल। इस जीत के साथ मीराबाई चानू ने खत्म किया 28 साल का सूखा। 1998 में कर्णम मल्लेश्वरी के सिल्वर मेडल जीतने के बाद ये दूसरा मौका जब वेटलिफ्टिंग में भारत को मिला सिल्वर। एशियन गेम्स में सॉफ्ट टेनिस से भी भारत के लिए खुशखबरी आई है, पुरुष सिंगल्स में जय मीणा ने जीता ब्रॉन्ज। भारत ने महिला स्की टीम इवेंट में जीता ब्रॉन्ज मेडल, रजिया ढिल्लो, माहेश्वरी चौहान, परीना झालीवाल की तिकड़ी ने किया कमाल। भारत की पुरुष की टीम ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया, नारुका फाइनल में अनंत जीत सिंह नारुका, मेराज अहमद खान और भवतेक सिंह गिल की जीत। गणेशोत्सव के 10वें दिन देशभर के पंडालों में जारी है गजानन की पूजा, मुंबई में लाल बादशाह राजा के पंडाल में लगातार उमड़ रही दर्शनार्थियों की भीड़। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में मिट्टी से बनी 63 फीट ऊंची इको फ्रेंडली महागणपति की मूर्ति को मिली वैश्विक पहचान, इंटरनेशनल अचीवर्स बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल। 1,00,000 से ज्यादा घरों से इकट्ठा की गई मिट्टी से बनाई गई ये मूर्ति इको फ्रेंडली तरीके से त्यौहार मनाने को बढ़ावा देना इस पहल का मकसद। अमरेली के सावरकुंडला में गणपति महोत्सव का अनोखा नजारा, 25,00,000 रुपए की भारतीय करेंसी अमेरिकी डॉलर से गजानन का श्रृंगार। 500 रुपए के नोटों से तैयार किया गया गणपति बप्पा का मुकुट, जबकि 200 रुपए के नोटों से बनाया गया है गणेश जी का हार। देश भर में अलग अलग थीम पर सजे हैं गणपति के पंडाल, अकोला के गणेश पंडाल में लौटा 80 का दशक, दिखी बीते दौर की पूरी तस्वीर। सिंधी कैंप के रोज परिवर्तन गणेश पंडाल में जीवंत किया गया ग्रामीण स्कूल की कक्षा की झांकी को, जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने वाले दिनों की याद हुई ताजा। आज की जेन जी और जेन अल्फा को उनके माता पिता और दादा दादी की बिताई जिंदगी से जोड़ना मकसद, लोगों के लिए पंडाल बना आकर्षण का केंद्र। स्मार्टफोन के इस युग में माचिस के डिब्बे और धागे से बने खिलौने, फोन की झांकी ने खींचा सबका ध्यान, स्मार्ट टीवी की जगह एंटीना वाले टीवी की झलक दिखाई दी। कुएं से पानी खींचती महिलाएं और चूल्हे पर बनता खाना भी दर्शाया गया, गणपति पंडाल में इस अनोखी झांकी को देखकर लोग भावुक हुए। सूरत में कल्पवृक्ष की थीम पर गणेश पंडाल सजाया गया, यहां भगवान गणेश के दर्शन के साथ लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। पंडाल की डालियों पर ड्रग्स, शराब, सिगरेट, तंबाकू छोड़ने के स्लोगन्स लगाए गए हैं, आयोजकों का कहना है कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए जागरूक करना जरूरी है। गणेश पंडाल में पूजा के साथ सेवा, शिक्षा, अन्नदान, स्वच्छता का संदेश भी दिया गया, कल्पवृक्ष की थीम के जरिए लोगों को स्वस्थ और बेहतर जीवन जीने की अपील। पंडाल में लगे कटआउट का संदेश बच्चों को और युवाओं को खींच रहे अपनी तरफ, आयोजकों का मकसद कम उम्र से ही नशे के नुकसान के बारे में जागरूकता फैलाना। आयोजकों के मुताबिक पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर थीम पर बनाया गया था गणेश उत्सव, इस बार कल्पवृक्ष थीम के जरिए समाज को सकारात्मक और नशा मुक्त रहने का संदेश। कराड के आजाद चौक में इस बार नरसिंह अवतार की खास झांकी दिखाई गई, झांकी देखने शहर के आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग। नवजवान गणेश मंडल की गणेशोत्सव परंपरा कई दशकों पुरानी, मंडल की स्थापना 1952 में हुई थी, 1970 से यहां विशेष शैली की गणेश प्रतिमा स्थापित की जा रही। नवजवान गणेश मंडल ने 2009 से पर्यावरण अनुकूल गणेशोत्सव की शुरुआत की, इसके बाद शहर के दूसरे मंडलों ने भी पर्यावरण अनुकूल प्रतिमा की ओर कदम बढ़ाया। इस बार झांकी में प्रहलाद, हिरण्यकश्यप और नरसिंह अवतार की कहानी दिखाई गई। मंडल का उद्देश्य बच्चों को मनोरंजन के साथ अपनी पौराणिक कथाओं के बारे में बताना। नरसिंह अवतार की झांकी देखने के लिए आजाद चौक में जुटी भीड़, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक झांकी देखने आए लोग। नासिक के सोनार भगवान दास खरोटे ने सोने के गणेश की बेहद छोटी मूर्तियां बनाई, सबसे छोटी मूर्ति सिर्फ 3 मिलीमीटर की। भगवान दास खरोटे ने अलग अलग आकार और रूपों में 291 सूक्ष्म गणेश मूर्तियां बनाई हैं। इनमें चाय वाले बप्पा से लेकर तबला, हारमोनियम, सितार बजाते गणेश तक शामिल। पिछले 32 साल से इस कला पर हो रहा काम, इन मूर्तियों को बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हाथों से तैयार किया जा रहा। चाय की केतली और कप पकड़े गणेश के साथ प्रधानमंत्री मोदी की भी आकृति। एक कलाकृति में मोदी समेत दुनिया के नेताओं को चाय पीते दिखाया। भगवान दास करोटे की सूक्ष्म कलाकारी के नाम अब तक 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। उनकी प्रदर्शनी में अलग अलग देशों और परंपराओं से जुड़े गणेश के कई अनोखे रूप देखने को मिल रहे। राजगढ़ में उमड़ा आस्था का सैलाब, खिलचीपुर शहर में पारंपरिक आस्था और भक्ति के साथ मनाया गया जल झूलने 11 का दिवस। गार्ड गंगा नदी तक पहुंचे 200 मंदिरों से सजे धजे भगवान के विमान, हजारों श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। इस नदी पर माझी समाज की ओर से नाव में भगवान राधा कृष्ण की सुंदर झांकी सजाई गई, जो श्रद्धालुओं के बीच में विशेष आकर्षण का केंद्र बन गई। भजनों पर झाल मंजीरे बजाते और नाचते श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना, श्रद्धालुओं ने झांकी और भगवान के विमानों के किए दर्शन। पूजा अर्चना और महाआरती के बाद भगवान के विमानों को गाजे बाजे और भजन कीर्तन के साथ मंदिरों की ओर ले जाया गया वापस। रायसेन के उदयपुरा में डोल 11 पर भगवान श्री कृष्ण की विमान यात्रा निकली। सैकड़ों साल पुरानी इस परंपरा में भगवान नगर भ्रमण कर भक्तों को दर्शन देते हैं। श्री कृष्ण के साथ बलराम, माता यशोदा और रुक्मणी भी पालकी में सवार हुए। भक्तों ने रास्ते भर पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया। महिला, पुरुष और बच्चे भगवान के विमान के नीचे से निकले। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। विमान यात्रा में भजन मंडलियां भगवान के भजन गाती हैं, वहीं नृत्यांगनाओं ने नृत्य करते हुए यात्रा में हिस्सा लिया। नगर भ्रमण के दौरान अखाड़े भी निकाले गए, जहां कलाकारों ने हैरतअंगेज करतब भी दिखाए। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहर सीएम योगी की मौजूदगी में यूपी के 4 शहरों में भारतीय टैक्सी की शुरुआत। कृषक समृद्धि योजना के तहत ई पोर्टल की लॉन्चिंग हुई। योजना के तहत किसानों को 6% प्रभावी ब्याज दर पर 6 लाख तक का ऋण देने का प्रावधान। समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा ब्याज अनुदान। 5 सालों में 5 लाख किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। आज गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी, राज्य के महिला शरणालय का करेंगे लोकार्पण। सीएम योगी कोविड प्रभावित बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत लाभार्थियों को बांटेंगे लैपटॉप। राजस्थान के बीकानेर जिले में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2026, अपाचे हेलीकॉप्टर ने दिखाया दम। अभ्यास में दिखी एविएशन की ताकत, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के साथ भारतीय और अमेरिकी सेना के जवानों ने भी इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल ड्रिल में हिस्सा लिया। संयुक्त मिशन की योजना बनाने और युद्ध में तालमेल बिठाने से लेकर इंटीग्रेटेड मूवमेंट और सटीक हमले करने का भी अभ्यास किया गया। दोनों सेनाओं के बीच में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की क्षमता को मजबूत करती है ये ट्रेनिंग। युद्ध कौशल को मजबूत करना इसका मकसद। दोनों देशों के कुल 1200 सैनिक इसमें हिस्सा ले रहे हैं। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का ये 22वां संस्करण है। उत्तराखंड के लैंसडाउन में एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे, गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर का दौरा किया। गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर में अग्निवीरों से की बातचीत, ट्रेनिंग, ऑपरेशनल क्षमता और सुविधाओं को लेकर भी चर्चा की। इस दौरे के दौरान डोभाल ने रेजिमेंटल गीत बढ़े चलो गढ़वालियों बढ़े चलो भी गाया। एनएसए ने अग्निवीरों को बढ़ाया मनोबल, बोले पूरा विश्वास है कि हमारे अग्निवीर अपनी वीरता, अपने त्याग और अपने पराक्रम से गढ़वाल राइफल्स का नाम ऊंचा करेंगे। दिसंबर में अमेरिका जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. G20 में हो सकती है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सीधी मुलाकात. मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर होगा हाईटेक. पहली बार होगा मूवेबल क्रॉसिंग का इस्तेमाल. 320 की रफ्तार पर भी सुरक्षित मोड़ की तैयारी. पारंपरिक रेलवे लाइनों पर इस्तेमाल होने वाले फिक्स्ड क्रॉसिंग टर्नआउट से बड़ा बदलाव. इस तकनीक के इस्तेमाल से होगी कम वाइब्रेशन जिससे यात्रियों को मिलेगा ज्यादा आराम. सैलानियों से गुलजार हुआ जम्मू कश्मीर. सुहाने मौसम में शिकारा राइड का मजा ले रहे सैलानी. श्रीनगर के डल लेक किनारे पर्यटकों का हुजूम. बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने से स्थानीय कारोबारियों के खिल गए चेहरे. काशी विश्वनाथ मंदिर के नए CEO सत्यम मिश्रा ने संभाला कार्यभार. श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन कराने और सुविधाएं बेहतर करने पर फोकस. मंदिर में भीड़ को संभालने के लिए नई रणनीति बनाई जाएगी. इसमें NDRF, SDRF, पुलिस, जिला प्रशासन और एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर काम किया जाएगा. तिरुमला में आलिपरी पैदल मार्ग पर मंगलवार सुबह करीब 6:30 बजे पेड़ पर दिखा तेंदुआ. श्रद्धालुओं को किया अलर्ट. तिस्ता नदी में बहकर 4 किलोमीटर दूर पहुंचा हाथी का 3 दिन का बच्चा. वनकर्मियों मछुआरों ने 2 घंटे की मेहनत के बाद उसे बचाया. पश्चिम बंगाल के बैकुंठपुर में नदी में बहा नन्हा हाथी सुरक्षित बचा लिया गया. मां से मिलते ही दोनों का मिलन देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हुई. फिर लौट आया लकी अली का दौर. फिल्म दृश्यम 3 के गाने को दी अपनी आवाज. महावीर कर्ण का पहला पोस्टर जारी. लगभग 150 करोड़ रुपए के बजट में बन रही ये फिल्म अगले साल हिंदी समेत 5 languages में रिलीज होगी. एक्टर वीर पहाड़िया और पार शक्ति खुराना की नई फिल्म प्रेम कीटाणु का ट्रेलर रिलीज. ये फिल्म 2 अक्टूबर को दुनिया भर में रिलीज होगी. नई फिल्म पहला प्यार दूसरी बार लेकर आ रहे निर्माता लव रंजन. इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया. राजस्थानी फिल्म धूल का मोशन पिक्चर जारी. ये एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है. 23 अक्टूबर को रिलीज होगी. भोली भोगी गांव में महिलाएं गंगू पत्ते से बना रही हैं टोपी. पद्मश्री जमुना टुडू की देखरेख में महिलाओं को इससे रोजगार मिल रहा. महिलाएं जंगल से गंगू पत्ता लाकर टोपी करती हैं तैयार. इस कला की उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है. ये पुरखों से चली आ रही. खेतों में काम करते समय पहनती हैं महिलाएं गंगू पत्ते की टोपी. महिलाओं के मुताबिक ये धूप और बारिश से बचाती है. गंगू पत्ते की एक टोपी 100 से 150 रुपए तक में बिकती है. जमुना टुडू के मुताबिक अच्छा बाजार मिले तो महिलाओं की बढ़ सकती है कमाई. गांव की महिलाएं बताती हैं इस टोपी को मजबूत और टिकाऊ. उनके मुताबिक टोपी सही देखभाल के साथ करीब 5 साल तक चल सकती है. वर्ल्ड स्किल्स शंघाई समारोह की शानदार ओपनिंग सेरेमनी हुई. शंघाई वर्ल्ड एक्सपो कल्चरल सेंटर में हुई 48वीं प्रतियोगिता की आधिकारिक शुरुआत. इस कौशल मेले में भारत का सबसे बड़ा कुशल युवाओं का दल ले रहा हिस्सा. 68 देशों और क्षेत्रों के करीब 1400 प्रतियोगी 64 स्किल इवेंट्स में शामिल. सेरेमनी में देखने को मिला पारंपरिक और आधुनिक कला का संगम जिसमें विशेष रोबोटिक प्रदर्शन और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हुए. मास्टर स्किल्स चेंज योर फ्यूचर है इस प्रतियोगिता की थीम जिसमें दुनिया भर के युवा अपनी विशेषज्ञता दिखाने अनुभव साझा करने के लिए एक साथ आते हैं. 27 तारीख तक चलेगा दुनिया का सबसे बड़ा कौशल मेला जिसमें दुनिया भर के युवा विभिन्न कौशल प्रतियोगिताओं में कम्पीट करेंगे. चीन में मिड ऑटम फेस्टिवल और नेशनल डे की छुट्टियां आ रही हैं जिसके जश्न के लिए देश भर में 20,000 से ज्यादा रंग बिरंगे इवेंट्स आयोजित किए जा रहे हैं. त्योहार पर खाई जाने वाली पारंपरिक मूंग केक मिठाई बनाने के लिए कारीगर रात दिन जुटे हैं और दुकानों पर इन्हें खरीदने वालों की भारी भीड़ उमड़ रही. त्योहार के इस खास मौके पर लोग अपने घरों को सजाने के लिए खुशहाली लाने वाले ताजे और खूबसूरत फूल पौधे जमकर खरीद रहे. हांगकांग के विक्टोरिया पार्क में इंटरनेशनल लैंटर्न फेस्टिवल चल रहा जहां देश विदेश के हजारों सुंदर लालटेनें देखने के लिए मिल रही. सरकार लोगों को घूमते फिरते के लिए करोड़ों रुपए के डिस्काउंट कूपन दे रही जिससे इस बार रिकॉर्ड तोड़ पर्यटकों के घूमने की उम्मीद है. चीन के वुशी चिड़ियाघर में मिड ऑटम फेस्टिवल से पहले जिराफ, कैपिबारा, लाल पांडा जैसे जानवरों को स्पेशल मून केक दिए गए. ये मूनकेक जानवरों की पसंद और सेहत को ख्याल में रखकर पारंपरिक चीजों के साथ तैयार किए जाते हैं। सभी जानवरों ने इन्हें बड़े चाव से खाया। चिड़ियाघर ने इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए ऑटम फन नाम से कई मजेदार कार्यक्रम भी शुरू किए। लोगों को जानवरों से करीब से देखने, उनके साथ समय बिताने का मौका मिला। बच्चों और बड़ों दोनों के लिए कई मनोरंजक और रोमांचक परफॉर्मेंसेज आयोजित की जा रही। बच्चों को मिल रहा है शानदार अनुभव। इस साल मिड ऑटम फेस्टिवल की छुट्टियां चीन में 3 दिन की होंगी, जो शुक्रवार से शुरू होकर रविवार तक चलेंगी।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में खुशियों का ऐलान। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: गणेश उत्सव के इस पावन मौके पर जीएनटी में भी गणपति पधारे और हमें यकीन है कि हमारे दर्शकों के घर भी गणपति बप्पा जरूर पधारे होंगे। हम चाहते हैं कि आप भी गणपति के उत्सव का हिस्सा बनिए। आप अपने घर पर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें जरूर भेजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें अपने वीडियो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नंबर है 7303409922। ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है, ये भी आपको बता देते हैं, ये नंबर सिर्फ वीडियोस या तस्वीरें भेजने के लिए है। जब भी आप अपना वीडियो या फोटो भेजें तो साथ में अपना नाम, अपना शहर, गांव, कस्बे का नाम लिखना ना भूलिए। तो गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से यही अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे गणेश उत्सव से जुड़िए। इसके लिए आपको करना बस इतना सा है कि अपने घर पर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक वीडियोस भी भेज रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर दो तस्वीरें देख लीजिए। पहली तस्वीर हमें मध्य प्रदेश के विदिशा से लकी और शिल्पा ने भेजी है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितने भक्ति भाव से बप्पा की आराधना की जा रही है। बप्पा की पगड़ी हो या शानदार सजावट हो, बड़े ही शानदार तरीके से बप्पा का श्रृंगार किया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर हमें महाराष्ट्र के पालघर से संतोष अग्रवाल ने भेजी। यहां बड़े ही उत्साह के साथ विघ्नहर्ता की पूजा अर्चना हो रही है, बड़े ही सुंदर तरीके से फूलों से बप्पा का श्रृंगार किया गया।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
7: एशियन गेम्स में मीराबाई चानू को मिला सिल्वर मेडल, जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस में रचा इतिहास, भारत के पास अब तक कुल 11 मेडल। गणेश उत्सव के 10वें दिन भारी उल्लास, लाल बादशाह राजा दरबार में भक्तों की कतार, गुजरात के अमरेली में रुपए और डॉलर से बप्पा का श्रृंगार हुआ। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में धूमधाम से मनी जल झूलनी एकादशी, सड़कों पर उमड़ा आस्था का मेला, आतिशबाजी के साथ कृष्ण लीलाओं का मंचन। सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन में सैर करते दिखे टाइगर, पर्यटकों ने कैमरा में कैद किया नजारा, ग्वालियर से आए पर्यटक हुए रोमांचित। ओडिशा में भारी बारिश के लिए चेतावनी, अलर्ट मोड में आया प्रशासन, गंजाम में तैयारियों को परखा।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच।
8: दोस्तों मनोरंजन का पिटारा लेकर मैं हाजिर हूँ, टेलीविजन की दुनिया के ड्रामे से लेकर ओटीटी और रियलिटी शोज की हर हलचल पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन उससे पहले शुरुआत करते हैं आज की खास हेडलाइंस के साथ।
9: इश्क ने मेरे ये कैसा काम कर दिया, मेरा आशिकों में ऊंचा नाम कर दिया।
10: सास बहू और बेटियों की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए मारा और कबीर ने किया ऐलाने इश्क, अभीरा को लगा जोर का झटका, बिगड़ी अभीरा की तबीयत।

ताजी और चंदू की शादी के बाद चंदू के बच्चों ने किया ईशा और सूरज के कमरे पर कब्जा। शुरू होगा तमाशा।

टीम हमारी भाभी नंबर वन संग करेंगे लंच पार्टी। खाने के साथ होगी ढेर सारी मस्ती भी, सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: अंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में ईशा और सूरज के रूम में हो गया है ऋषि और कृति का कब्जा। ऐसे में जहां सूरज और ईशा दोनों अपना कमरा छिन जाने से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चल रहा है दोनों के बीच मैसेज वाला रोमांस। चलिए देखते हैं।
1: अरे गड़बड़ हो गई, अरे छुट्टी हो गई।

0: तरफ ऋषि की लातें और कृति के खर्राटों से परेशान सूरज और ईशा। तो दूसरी तरफ काव्या के सामने आया रिया का सच।
1: हो गड़बड़ हो गई।
0: एक तरफ सूरज और ईशा का टेक्स्टिंग वाला लव।

तो वहीं दूसरी तरफ बहनों के रिश्ते में पड़ेगी दरार। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में सूरज और ईशा की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि उनके कमरे में ऋषि और कृति दोनों ने धाबा जो बोल दिया है। और अपना हक जमा कर देखिए कैसे दोनों चैन की नींद सो रहे हैं और सूरज ईशा की नींद हराम कर रहे हैं। एक तरफ ऋषि बार बार सूरज के ऊपर लात रख कर उसे परेशान कर रहा है, तो वहीं कृति के खर्राटे ईशा को चैन की नींद सोने

तो ये जैसे कि आप सबको पता चल जाएगा कि ताइमा और चंदू अंकल की शादी ईशा करवा देती है, और तभी ऋषि और कृति भी रूम में आ जाते हैं कि हमें यहाँ सोना है क्योंकि हमारे मम्मी पापा के रूम में हमने थोड़ा स्पेस देना चाहिए और ये सारी चीज़ें। तो सूरज चिढ़ जाता है कि स्पेस स्पेस क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ईशा भी मना लेती है सूरज को कि प्लीज़ आज के दिन सो लेने दो ना, ठीक है। फिर वो अंदर सोने आ जाते हैं और देखते हैं हम कि कैसे ऋषि और कृति ईशा और सूरज को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि ऋषि भी कहता है कि आप तो ब्रह्मचारी हो, वैसे भी सो जाओ ना मेरे साथ ऐसे। तो वो हमारे मूमेंट को ख़राब करके आ जाते हैं सोने, और तभी वो लोग ऋषि सूरज को परेशान कर रहे हैं और कृति के खराटे ईशा को सोने नहीं दे रहे।

भर ऋषि की हरकतों से परेशान सूरज चाह कर भी कुछ कर नहीं पाया, लेकिन उसके हाथों में मोबाइल है। ऐसे में उसने बेड पे सो रही ईशा को वॉइस नोट्स भेजने शुरू कर दिए और अपना प्यार जताना शुरू कर दिया, जिसे ईशा सुन रही है, खुश हो रही है और ईशा उसका जवाब भी वॉइस नोट्स के जरिए ही दे रही है। या यूँ कह लो, दोनों के बीच टेक्स्टिंग वाला लव शुरू हो गया है।

0: तो ईशा ने वॉइस नोट भेजा है कि ईशा ने पहले एक बार लिया था कि सूरज सोते हुए कितना अच्छा लगता है, पर बस सोते हुए ही उठते ही गुस्सा करने झगड़ा करने लग जाता है, पर ईशा को अब सूरज के साथ झगड़े भी अच्छे लगते हैं, मतलब हर वे से अच्छे लगता है। तो ईशा ने ये छोटा सा वॉइस नोट भेजा होता है और सूरज भी अपने दिल की बात ईशा को वॉइस नोट के थ्रू कहता है। तभी हम दूर है पर ऐसे कैसे पास पास वॉइस नोट्स भेज रहे हैं। तो सूरज भी अपने दिल की बात कहता है कि जब से ईशा आई, वो इन शॉर्ट समरी में फास्ट कहानी सूरज ने बता दी कि जब से आई बॉडीगार्ड सूरज था, मैंने पहली बार सूरज को पति कहा और ये सारी चीज़ें। तो वो वॉइस नोट के थ्रू आती है और ईशा इमोशनल हो जाती है एंड दोनों अपने अपने प्यार वाले जोन में ये डिस्टर्बेंस को खोकर अपने जोन में जाके सो जाते हैं।
1: भाई जाने अनजाने ही सही, सूरज और ईशा एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये मोहब्बत अब भी सूरज का ब्रह्मचर्य तोड़ नहीं पाई। फिलहाल तो जल्द ही सूरज अपने ईशा से अपने प्यार का इजहार करेगा और अपने रिश्ते की नई शुरुआत भी करेगा। वहीं दूसरी ओर काव्या भी पहुंच गई है अपने घर के पास मोहल्ले में मंदिर के आगे हाथ जोड़ने के लिए, लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट और जो फाइल वो मंदिर में रखती है उसके पन्ने उड़कर सामने गिर जाते हैं, जिसे समेटने के लिए काव्या चली जाती है और तभी अनजाने में वहाँ पर आ जाती है रिया और देखिए कैसे वो भगवान के आगे हाथ जोड़कर अपने प्यार की दुहाई दे रही है और उसे याद भी कर रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि भगवान के आगे जिस प्यार के लिए वो रो रही है काव्या उसकी सारी बातें सुन रही है। भाई पहले तो रिया ने काव्या को गुमराह करना चाहा, लेकिन जब काव्या गुमराह नहीं हुई तो रिया ने बहाना मार दिया, जिसके चलते काव्या ने उससे प्रॉमिस ले लिया है कि वो अपने ऑफिस का ये एक्ट रिकॉर्ड कर उसे जरूर भेजेगी। अब देखना होगा क्या जल्द ही काव्या को ये पता चल पाएगा कि उसका पति बंटी ही रिया का प्यार है। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: डायरेक्टर और प्रोड्यूसर संदीप सिकंद के घर बाप्पा विराजे हैं। ऐसे में बप्पा के दर्शन और उनका आशीर्वाद लेने के लिए कई सितारे उनके घर पहुंचे। इसके अलावा कई सितारे विघ्नहर्ता का आशीर्वाद लेने के लिए गणपति पंडाल भी पहुंचे। तो देखते हैं सितारों की बाप्पा भक्ति के नजारे।
3: संदीप सिकंद के घर गणेशोत्सव की धूम। सितारों ने किए बापा के दर्शन।

0: दोस्तों का रियूनियन।
1: संकट में है दिल मेरी सुन ले सदा, हम भक्त तुम्हारे जाए कहां संकट।
0: भाई त्योहारों के ही तो मौके होते हैं जब दोस्त यार एक दूसरे से मिलते हैं, त्योहार भी मनाते हैं और खुशियां भी बांटते हैं। और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। संदीप सिकंद के घर पर विराजे हैं गणपति बाप्पा और ऐसे में विघ्नहर्ता के दर्शन के लिए यहां सभी सितारे पहुंचे हैं सज धज कर।

आइए देखते हैं कि कौन कौन पहुँचे हैं बापा के दर्शन लेने के लिए। वैसे आज बात करें होस्ट संदीप सिगंग की, तो देखिए कैसे उन्होंने अपने दिल के साथ साथ इस कुर्ते में भी पापा को बसा लिया है। संदीप के साथ है उनकी मम्मी वीना सिकंद, जो कर रही हैं मेहमानों का स्वागत।

0: तो उनके घर खास मेहमान बनकर आई हैं अदा खान, जिन्होंने आज के दिन के लिए चुनी है ये गोल्डन कलर की साड़ी।
1: मेरे दिल का दरवाजा खोले, गुड़िया बिगाड़ने में लगी है मुझको, मैं भी बिगड़ने लगा होले होले।
0: इसके अलावा यहाँ पहुँचे कई और सितारे, जैसे कि जैस्मिन भसीन, जो आज इंडियन अटायर में है और इस ब्राउन आउटफिट में लग रही है काफी संस्कारी।
1: सुनो गणपति बप्पा मोरे, आप परेशान करे मुझे छोरियां।
0: गुलाबी साड़ी पहन बप्पा के दर्शन के लिए पहुँची अंजलि आनंद।
2: खबो, खबो।
0: तो वहीं पिंक साड़ी में नजर आई रूहानिका। इसके अलावा यहाँ पर पहुँचे शिल्पा शिरोडकर, करणवीर मेहरा, करणवीर शर्मा। नीलम और समीर।

0: तो आइए इन्हीं से ही जानते हैं कैसे वो गणेशोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं इस त्योहार के बारे में।
1: ये साल आई थिंक मैं सबके घर पर गई हूँ और मैं इस साल आई थिंक आई मेड श्योर दैट आई विजिट एवरीबडीज हाउस एंड सबके घर गणपति फेस्टिवल इंजॉय कर रही हूँ। गणेश चतुर्थी मैं सबके घर जा रही हूँ, मिल रही हूँ और यही मौका होता है अपने दोस्तों से मिलने का, यू नो, और उनके साथ सेलिब्रेट करने का। माय शो इज़ ऑन एयर राइट नाउ, द लिफ्ट विद राजन साही, डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल विद जो इशिका शाही ने बनाया है, आप सब जानते हो। सो दैट इज़ ऑन एयर एंड आज फोर्थ एपिसोड आ गया है, सो प्लीज़ डू वॉच इट। सो माय फैंस, आई वुड लाइक टू विश एवरीवन हैप्पी गणेश चतुर्थी एंड ऑफ कोर्स जो मेरा शो आया है लिफ्ट, उसे ज़रूर देखेगा।
2: 10 साल से मैं संदीप जी के घर आ रही हूँ और एवरी ईयर इट जस्ट कीप्स गेटिंग बेटर।

0: ऋत्विक के घर पे कितना मजा आता है, तो आई थिंक इट इज अ वंडरफुल टाइम।
1: गणपति बाबा मौर्य बहुत मजा आया संडे के घर पे, और हर साल आता हूँ मैं गणपति के दर्शन के लिए।
2: गणपति आजकल तो सब लोग के घर पे होता है तो मुश्किल होता है, बट कुछ दोस्त हैं जिनके यहाँ पर हर साल जाते हैं। अब बेटा भी है, वो 6 साल का है, बट उसके भी दोस्त हैं, उनके घर पर भी जाना पड़ता है, तो कुछ लोगों के घर पे अभी जाना नहीं होता। बट ये जो फेस्टिवल है तो ये हमारे फैमिली के लिए बहुत स्पेशल है। मेरी मम्मी, मेरी वाइफ हमारी फैमिली में बहुत मानते हैं, एंड गणेश जी को मैं भी मानता हूँ, तो ये बहुत स्पेशल है ओकेजन। एंड संदीप सिकंद के घर पर तो हम हर साल आते हैं।

वहीं दूसरी तरफ कई सितारे हैं जो पहुंच गए हैं अंधेरी चौराजा के पापा के दर्शन के लिए, जैसे कि साई केतन राव, विजेंद्र कुमेरिया, रजत बेदी, टीम दिव्य प्रेम और बाकी के सितारे जो ले रहे हैं विघ्नहर्ता का आशीर्वाद और कर रहे हैं दिल से उनकी भक्ति।

बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर और शांति से भरा हुआ मोमेंट रहा है। बहुत अच्छे से दर्शन हुए और बप्पा को देखते ही मन खुश हो जाता है हमेशा। ये जो पूरा महोत्सव रहता है, इसमें जहाँ जहाँ मौका मिलता है वहाँ जाके हम दर्शन करते हैं और हमेशा यही मनोकामना करते हैं कि लाइफ में सब अच्छा हो। जैसे वो न्यू बिगनिंग्स के भगवान हैं, वैसे ही हमारी लाइफ में भी जो भी अभी न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं उसमें वो हमें आशीर्वाद दें और सबका भला हो, सबका अच्छा हो, ये मैं इच्छा लेकर आया हूँ यहाँ पर।

0: बहुत लकी फील हो रहा है क्योंकि हमेशा ऐसा कहते हैं कि कोई भी भगवान की जगह या किसी भी भगवान से ना हम जब मिलते हैं तो वो उनका बुलावा आता है, तो इट्स लाइक हम सबको बुलावा आया इसलिए हम अपने आप यहाँ पे आ गए।
1: तो भाई त्योहार का मजा तो सबके साथ ही आता है ना, हमारी तरफ से भी आपको गणेशोत्सव की ढेर सारी बधाइयाँ। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
2: चलिए अब हो जाते हैं सास बहू और बेटियां की एयरलाइंस पर सवार और आपको दिखाते हैं आपके फेवरेट शोज के हाई पॉइंट्स और हाईलाइट्स एक साथ। तो हो जाइए इस स्पेशल एयरलाइंस पर सवार और सीधे चलते हैं सीरियल्स की दुनिया में।
3: अंतरा ने जो अपनी कोख में इनका बच्चा रखा है इस कर्ज से तुम कभी मुक्त नहीं हो पाओगे।
4: आज मैं भगवान को साक्षी मानते हुए अपने पूरे परिवार के सामने ये प्रण लेती हूँ कि अंतरा के दिए हुए कर्ज से मुक्ति पाने के लिए इस घर में सबके सामने होगा महादान।
1: दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में आ गया है जबरदस्त ट्विस्ट। एक तरफ दादी ने अंतरा के कर्ज को पूरा करने के लिए महादान का प्रण ले लिया है, तो वहीं दूसरी ओर अपने मन की शांति के लिए राध्या पहुंच गई है आश्रम करने सेवा। ऐसे में देखिए कैसे राध्या काम करके जाने की तैयारी तो कर ही रही थी कि तभी वहां पर आ जाती है दूसरी औरत जो उसे और भी काम थमा देती है। बस फिर क्या, वो सारी बातें सुनकर राध्या हैरान हो जाती है क्योंकि उसे एक नहीं दो नहीं बल्कि रसोई का पूरा काम करना होगा, वो भी अकेले। ऐसे में राध्या परेशान तो हो ही रही है क्योंकि उसकी घर में से किसी से बात नहीं हो पाई। ऐसे में अपने मन को मारते हुए राध्या रसोई के काम में जुट जाती है और देखिए कैसे सेवा भाव से वो एक एक कर रसोई का सारा काम निपटा भी लेती है। आलू छीलने से लेकर सब्जी काटने से लेकर सब्जी बनाने आटा गूंथने सारा काम वो सेवा भाव से कर रही है। इतना ही नहीं राध्या ने तो खाना झटपट बना भी लिया और उसे टिफिन में पैक भी कर रही है, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि आश्रम में उसके पति प्रथम का कॉल आया है जिसे गुरुजी ने उठा लिया। और देखिए कैसे प्रथम की गुजारिश पर भी गुरुजी ने उस

0: यहाँ लोग मन की शांति के लिए सेवा कर सकते, इसीलिए उन्हें बाहरी दुनिया और टेक्नोलॉजी से जुड़ सकते। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आपकी बात उनसे नहीं कर सकता।
1: देखिए बस दो मिनट मुझे उससे बात करनी है, मैं उनका पति बोल रहा हूँ।
0: देखिए आप पति हो या पिता, मैंने कहा ना मैं आपकी बात उनसे नहीं करवा सकता। यहाँ जो भी आते हैं उन्हें माया मोह और रिश्तेदारों से दूर रखा जाता है ताकि वो उनकी तलाश पूरी कर सकें। एक बार उनकी सेवा पूरी हो जाएगी तभी आपकी बात उनसे संभव, उसके बाद वो स्वयं घर चले जाए, आप निश्चिंत रहें।
2: खैर राध्या इस बात से अनजान है कि यहाँ के गुरुजी भी दादी से मिले हुए हैं और वो सब इसीलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि राध्या और प्रथम एक दूसरे से बात कर ना पाए और ना ही मिल पाए। बड़े पर्दे पर भौकाल मचाने वाली फिल्म मिर्जापुर द मूवी ने अब भी बड़े पर्दे पर धमाल मचा रखा है, जिसके चलते बीती रात रखी गई सक्सेस पार्टी और उस पार्टी में पहुंचे कई सारे सितारे और साथ ही शामिल हुए फिल्म से जुड़े कलाकार भी, जिनमें नाम शामिल है अली फजल जो सिंपल सोबर अवतार में नजर आए। तो वहीं भौकाल मचाने वाले पंकज त्रिपाठी भी कैजुअल लुक में नजर आए अपने दोस्तों के साथ।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: इसी के साथ वहां पर दिखी काला जादू चलाते हुए रसिका दुग्गल भी, जो लग रही है गजब की खूबसूरत।

इनके अलावा साजिद चौधरी भी अपनी दबंगई दिखाते हुए नजर आए। बात करें स्वैग और टशन की, तो जहां रवि किशन वहां मस्ती, ऐसे में रवि किशन भी व्हाइट कलर के सूट बूट में अपना रौब झाड़ रहे हैं। इनके अलावा वहां पर दिखे सुशांत सिंह,

मोहित मलिक जो आए हैं अपनी बीवी अदित मलिक के साथ। इसके अलावा जितेंद्र कुमार भी वहां दिखाई दिए सिंपल सोबर अवतार में।

अमिता त्रिपाठी भी, जिन्होंने लेदर ब्राउन पैंट पहनी हुई है और साथ ही कॉम्बिनेशन किया है कैमल ब्राउन शर्ट से। इसके अलावा श्वेता त्रिपाठी के हाथों में दिखा उन दिनों का कैमरा भी, जिसे लेकर श्वेता कई लोगों की तस्वीर खींच रही है। इसी के साथ

वहाँ पर दिखी सोनल भी, जो ग्रीन कलर के गाउन में मौजूद रही और अपना ग्लैमरस अवतार दिखाया। ऐसे में ग्लैमरस रेडी की तस्वीर खींचते हुए नजर आई श्वेता त्रिपाठी। और तो और सोनल ने कई सारे पोजेस भी दिए। इनके अलावा वहां पर दिखी श्रेया पिलगांवकर। और साथ ही नजर आए कई और सितारे भी, जो मिर्जापुर द मूवी की पार्टी में पहुंचे हैं उन सितारों को देने बधाइयां जिन्होंने इस फिल्म में कड़ी मेहनत की है।

0: ग्लैमर, गॉसिप और हाई वोल्टेज ड्रामा, मनोरंजन की दुनिया से हम लेकर आए हैं कुछ ऐसी रॉकिंग और शॉकिंग खबरें जो आपके चेहरे पर ले आएंगी एक प्यारी सी मुस्कान। आइए आपको ले चलते हैं आज की रॉकिंग खबरों की ओर।
1: देखो खुद को, किसी भी एंगल से लगती हो तुम कंपैटिबल मेरे साथ।
2: मिस प्रीति अरोड़ा, दिस रिलेशनशिप इज ओवर।
3: पेश है बॉलीवुड, ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। कलर्स टीवी लेकर आ रहा है नया शो जिसका नाम है शायद यही है प्यार, जिसमें नजर आएंगी अदिति शर्मा, साथ हैं दक्ष पुरी और कुणाल कपूर। देख लीजिए इसकी खास झलक।
4: बाद में तुम्हें बोरिंग लगने लगी।

0: थैंक यू।
1: इन दो दिलों के बीच कुछ तो कनेक्शन है जो किसी को नजर नहीं आ रहा सिवाय मेरे, लेकिन जैसे मैं देख पा रहा हूँ इनकी प्रेम कहानी में एक ही विलन है और वो है इनकी उम्र। उम्र के इस फासले के आगे क्या टिक पाएगा इनका प्यार?
2: इसी के साथ हुआ टीम मन्नत और टीम कथा अनकही का रीयूनियन, जहां साथ साथ नजर आ रहे हैं अदिति अदनान। फिर एक बार बनने जा रही है मुग्धा छापेकर और कृष्णा कॉल की जोड़ी। कुंडली भाग्य के बाद ये दोनों छोटे पर्दे पर साथ साथ नजर आने वाले हैं। जी हां, आ रही है इनकी वर्टिकल सीरीज जिसके बीटीएस नजारे सामने आए हैं।
3: Yes.
4: You're shooting for something.
3: मैं तेरा हीरो।
4: No, you're shooting for something else.
3: No, I, Akshara, I'm your Abhinav. Yes. We're doing this together.
4: Seriously?
3: Yes. कितनी अच्छी लग रही हो तुम। Thank you for casting us together.
4: Thank you.
2: कसौटी जिंदगी की टू के स्टार्स पार्थ समतान और एरिका फर्नांडिस साथ साथ नजर आए। देखिए हुआ इनका रियूनियन, ऐसे में फैंस हो गए नॉस्टैल्जिक।

तो वही सुनीता आहूजा अकेले ही पापा के दर्शन के लिए गई। भाई दोनों एक ही जगह आए लेकिन अलग अलग। इसी के साथ कई और सितारे पहुंचे लालबाग का राजा, जैसे कि करण तेजस्वी। गुरमीत ईशा,

राजपाल यादव। ईशा कोपिकर और कई और कलाकार।

सीरियल हमारी भाभी नंबर वन में शूटिंग के बीच चल रही है लंच पार्टी, और इस लंच पार्टी में सास बहू और बेटियां की टीम भी शामिल हुई, जहां घर के बने स्वाद के बीच देखने को मिला हंसी मजाक और एक दूसरे की पोल खोल। तो चलिए चलते हैं सीरियल के सेट पर।

0: गया लंच का डिब्बा। शुरू हुई मस्ती की महफिल। अपनों के साथ बढ़ा जायके का मजा। कहते हैं ना, खाने का मजा अपनों के साथ ही आता है। ऐसे में सास बहू और बेटियां पहुंच गया है सीरियल हमारी भाभी नंबर वन के सेट पर, जहां पर बज गई है लंच की घंटी। पूरी टीम पहुंच गई है बा के मेकअप रूम में, जहां सज गई है लंच पार्टी की महफिल। किसी के डिब्बे में है स्वाद का तड़का, तो किसी के टिफिन में है प्यार का चटकारा। और जैसे ही लंच का डिब्बा खुला, तो खुल गए मस्ती के दरवाजे। कोई अपने टिफिन का स्वाद चखा रहा है, तो कोई एक दूसरे के टिफिन में झांक कर पूछ रहा है, आज आपके टिफिन में क्या खास है। हर डिब्बे में है अलग स्वाद, हर निवाले में है घर का प्यार, और इन स्वादों के बीच चल रही है जमकर हंसी मजाक और मस्ती। तो आइए हम भी शामिल हो जाते हैं इनके साथ इनकी इस लंच पार्टी में।
1: जय द्वारकाधीश, आप हैं आज हमारी भाभी नंबर वन के सेट पे, और लंच ब्रेक हो चुका है, और उसके पहले मैं आपकी प्यारी बा यानी वंदना, और हाँ कमिंग बैक अगेन। लंच ब्रेक हो चुका है, सबके डब्बे खुलने लगे हैं, और देखिए आइए, ये है मसाला राइस। ये भी वही है, वैसे हम लोग बहुत सारे हैं लोग, इसीलिए हम ज्यादा खाना लाते हैं। ये है प्रोटीन सैलेड, ये है मस्त कड़वे करेले की सब्जी, ये दाल, और भी डब्बे खुल रहे हैं धीरे धीरे। और ये है मेरी प्यारी बेटी नीलम।
2: हेलो
1: शीतल अंतानी,
2: हाय।
1: और ये प्ले कर रही है नीलम बुआ।
2: यस ए बापला, जब बाग फई खाना लाए तो दूसरा कोई ना खाए।
1: हाँ, और जब फई बोले तो दूसरा कोई ना बोले। और ये है हमारा हीरो अनंत, जो बिना टिफिन के आया है। टिफिन तो ला,
3: लंच टाइम हो गया।
2: हो गया।
3: कैसे मेरे बिना लंच टाइम? और मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे ज्यादा लंच मैं लेकर आता हूँ।
1: झूठा, एकदम झूठा। सबसे ज्यादा हम सब सबसे ज्यादा लाते हैं,
3: लेकिन
1: पर अभी तक तो लाया नहीं है,
2: लेकिन सबसे ज्यादा खाते हैं।
3: लेकिन ऑनेस्टली बोलूं तो इनके घर का खाना जो होता है बहुत टेस्टी होता है, और साथ ही नीलम पाई जो है वो जो
4: देखिए लुक वहीं से मिल रहा है।
3: नीलम भाई मैं आपके बारे में बोलने वाला हूँ, मतलब एक टाइम पे तो एक के बारे में बोलूंगा ना। इनके घर का खाना इज माइंड ब्लोइंग, और नीलम भाई के घर का जो सैलेड होता है प्रोटीन सैलेड, ओ माय गॉड। मतलब मैं हेल्थ फ्रीक हूँ, तो मैं इनका जो प्रोटीन सैलेड है वो बहुत पसंद करता हूँ। लुक एट मी, कितना फिट हूँ यार।
1: 26
5: अगर इसके साथ बन जाएंगे तो
1: खाना
5: छोड़ के।
2: तो हम ऐसे ही करते हैं, कोई एक आधा और दो लोग तो हमारे इतने टिफिन और इतने डब्बों में एडजस्ट हो ही जाए। इसीलिए मैंने दो टिफिन लाए, ताकि मैंने टमाटर की चटनी, और इनको ये बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं दो डब्बे लेकर आई।
1: हाँ, ये टेस्टी होता है टमाटर।
2: तो हम एक जन का खाना नहीं लाते। वेलकम टू गुज्जू फैमिली, हम ऐसे 5-6 लोगों का खाना साथ में लेके चल। यस, अरे रोज डे वन से यही चल रहा है हम लोगों का मिलके खाना।
1: और इसीलिए जब घर पे होते हैं ना, जब घर पे होते हैं ना, तो सिर्फ एक सब्जी, ये वही रोटी, बहुत
3: झूठ अभी पकड़ा जाएगा। ये देखो, ये मैं लेकर आया हूँ इन लोगों के लिए, ये भी लेकर आया हूँ इन लोगों के लिए। आजकल एप्पल फोन तो बहुत महंगा है, तो मैं एप्पल लेकर आया हूँ इन लोगों के लिए। ये लोग प्रोटीन शेक भी लेकर आया हूँ मैं इन लोगों के लिए। और एक मिनट रुक जाओ, ये देखिए, ये भी मैं लेकर आया हूँ। देखिए
1: मोदक सीक्रेट ये है कि ये एक टाइम में 5 मोदक खा सकते हैं।
2: खा जाते हैं, खा सकते नहीं है, खा जाते हैं।
1: ऐसे ऐसे पूरा
2: खा चुके हैं।
3: सिर्फ एक मोदक लिया था, उकड़ी के मोदक। उकड़ी के मोदक मेरे बहुत फेवरेट है और गणपति बप्पा के प्रसाद के रूप में सिर्फ एक मोदक
0: भाई। लंच का टाइम हो गया है और पूरी टीम एक साथ जमा भी हो गई है, लेकिन सिर्फ बंसरी नहीं है और सभी बंसरी को याद कर रहे हैं क्योंकि आज के दिन बंसरी की छुट्टी है। लेकिन उसे याद कर सब अपने अपने टिफिन को खोलकर थाली में परोस रहे हैं। किसी के खाने में है मसालों का तड़का तो किसी के टिफिन में है घर के हाथों का स्वाद। यानी एक ही टेबल पर मिल रहे हैं कई शहरों और कई घरों के जायके। भाई खाने के साथ साथ तो यहाँ पर किससे भी परोसे जा रहे हैं। हंसी के ठहाकों के साथ हर निवाला और भी स्वादिष्ट बन रहा है क्योंकि यहाँ पर खोली जा रही है सबकी पोल भी।
2: मैं हलाता हूँ ना, खाओगे पहले
5: भाई? थोड़ा भूख नहीं कंट्रोल नहीं हो रही है।
2: ये देखिए
3: परिवाना मेरे लिए, अरे बोला, अरे बोलवा तो दो। परिवाना मेरे लिए लाया था प्रोटीन सैलेड स्पेशली, तो पहला निवाला निवाला
5: नहीं, नहीं कुछ इनके लिए नहीं लाया, कुछ भी इनके लिए नहीं लाया। असलियत फैबा खुद बताएंगे, फैबा खुद बताएंगे असलियत की वो किसके लिए लाती है, किसके लिए लाते
2: हो, किसके लिए लाते हो? ये मेरा लड़ना है, ये मेरा
5: है।
2: मैं
5: लड़की
2: क्या
5: गई
2: मेरी बहू से।
5: हेलो हाय, निकल डब्बा किधर है? डब्बा किधर है जरा? मैं तो वैसे भी नहीं लाता हूँ, मैं बैचलर हूँ भाई, यही तो मेरे पास एक बड़ा एक्सक्यूज है। तुम
2: नहीं, नहीं बैचलर तो मैं भी हूँ अभी तक, फायदा हुए अरे खाना लाती हूँ। नहीं नहीं, बैचलर होने के बावजूद ये अच्छा खाना बनाता है पर लाता नहीं है।
5: आज से एक लंच टाइम का कूल बनाते हैं, जो खाना नहीं लाएगा वो यहाँ पे अलाउड नहीं। प्लीज टाइम, आज तो मैं अगर चला गया तो यहाँ की रौनक ही चली जाएगी। यही देखा, हम लोग बातों में लगे रहेंगे।

0: अब आपको समझ में आएगा कि अनंत का पेट क्यों निकल रहा है।
1: ओ, देखो मैं कितना हेल्दी हेल्दी चीज खाता हूँ।
2: मतलब तूने ड्रैगन फ्रूट भी करा
1: दिया? दिखाओ नहीं
3: नहीं देखो देखो
1: पहले देखो सॉरी
0: गाइस आज थोड़ा खिचड़ी
1: पहले दिखाओ तो खिचड़ी भी कैसी है दिखाओ ये देखो
0: ये लेकिन सब पनीर है पूरा वेजिटेबल्स है सोयाबीन है बहुत टेस्टी है। देखा मैंने जैसा कहा था ना कि मैं हेल्थ फ्रीक हूँ और बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ।
1: नहीं मैं बता रहा हूँ इनका हेल्थ फ्रीक होना ये खुद की खिचड़ी मुझे खिलाते हैं जिसकी वजह से मैं थोड़ा अच्छा फिटनेस लग रहा हूँ। बाकी ये सबका खाना खाते हैं सबसे ज्यादा मीठा भी यही खाते हैं पूरे साइड का।
3: और तू
1: आठ कटोरी तो आई भी नहीं थी आई नहीं पाँच थी अरे वो क्या गया। हाँ ये रहा ये रहा ये मतलब अगर आपको करेला नहीं भी पसंद है तो भी आपको करेले से प्यार हो जाएगा ऐसा करेला बनाती है हमारी फाइबा काजू करेला।
2: दिल ने दस्तरखान बिछाया ये कड़ी है फिर ये मसाला राइस ये करेले की सब्जी बहुत टेस्टी ये टमाटर की सब्जी है या चटनी जो बोलो ये प्रोटीन सैलेड है।
4: इश्क है कबूल तो आजा जा दावत इश्क है।
3: चलो गाइस तो अभी खाना शुरू करने से पहले बोलते हैं हेलो पेटो खाड़ो पूर्वा हेलो मतलब खाना खाने चलो इट्स गुजराती इन्विटेशन।
5: सबसे कम मेरे प्लेट में
0: ये दिखाया है
5: ये खिचड़ी है ये खिचड़ी है बहुत ही हेल्दी खिचड़ी है इसमें पनीर है सोयाबीन है मिक्स वेजिटेबल्स है और दाल है और सिर्फ प्रोटीन सैलेड है।
0: ये सब दिखाने ये सब दिखाने की बात है जैसे ही कैमरा बंद होगा ना इनकी असलियत आपको दिखेगी इनकी असलियत आपको दिखेगी
5: भाई। लेकिन सच में यहाँ पे कोई खाता है कोई अगर सच में खाता है वो है साहिल बलानी।
0: अरे तो
5: खाता है भाई
0: खाता हूँ मैं खाता हूँ तभी तो इतना हट्टा खट्टा हूँ मैं
5: सच में कसम से इसका मेटाबॉलिज्म है कमाल का मतलब इसको कुछ भी दे दो जो खत्म नहीं कर पाएगा ना उसका प्लेट दे दो इसको ये खत्म कर देगा।

भाई सभी अपनी अपनी थाली लेकर बैठ गए हैं और हर घर का स्वाद बड़े ही प्यार से चख रहे हैं। लेकिन इस बीच सबके बीच हंसी ठिठोली के साथ साथ टांग खिंचाई भी चल रही है और तो और सभी एक दूसरे की थाली में हाथ भी मार रहे हैं।

0: चमकता है किताब।
1: यहाँ माँ मत देख दूसरों की प्लेट में।
2: जिस तरीके से इधर कड़ी
1: होते प्लेट में झांकना,
2: जिस तरीके एक मिनट इधर कड़ी होते हुए भी जिस तरीके से आपने मेरी कटोरी में से ली है, मैंने वो देखा।
1: ये वैसे मेरी कटोरी थी,
2: मेरी थी।
3: अरे यहाँ पे एक्स्ट्रा कटोरी पड़ी है,
2: ये तो बात है।
1: वही तो मेरी कटोरी, मेरी प्लेट में से लिया इसने।
2: पूरा बड़े भाइयों का फायदा उठाते हैं। आज
3: देखा कैसे इसके प्लेट में कम खाना दिखता है।
4: जब कुछ चाहिए तो
2: मेरी प्लेट से,
4: कुछ नहीं चाहिए तो बुढ़िया। ये है हमारा आनंद।

0: चल जो
1: नती दे नती दे चोर चोर देखो चोर चोर चोले लेकर चला गया चोर
2: प्रोटीन
3: प्रोटीन इनको प्रोटीन के नाम में पता है क्या पसंद है लड्डू पेड़ा
1: मुदा
3: मैंने प्लेट में देखा
1: वड़ा पाव भी खाता है वड़ा पाव
3: समोसा सब खाते हुए दिखेंगे आपको ये
2: 4 ग्राम प्रोटीन मिलता है वड़ा पाव में यार नॉट बैड
3: बिल
2: हमको रंगोली खेलते
3: सबसे पहले मैंने खत्म किया है क्योंकि सबसे कम लिया है थैंक यू थैंक यू।

0: वह धीरे धीरे सभी ने अपना खाना फिनिश कर लिया है और मसालेदार खाना खाने के बाद बारी आती है मीठे की। ऐसे में अनंत ने अपना डिब्बा खोला और डिब्बे में निकले बूंदी के लड्डू, जिसे अनंत ने सभी को अपने हाथों से खिलाया और साथ ही साथ खुल गई अनंत की एक पोल भी।
1: रैपर में तो जेएसएफ जनता स्वीट एंड फरसान दिख रहा है।
2: कुछ हमारे तेरे संग संग, कुछ तुम्हारे मेरे संग संग।
1: अरे ले मेरा प्यारा भाई, देखा मैं सबको बांटता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ। आपने देखा मेरे को खाते हुए? वैष्णवी देखा, मैं सबको बांटता हूँ।
3: मैं भी सुखड़ी लाई हूँ गुजराती। थैंक यू भैया।
1: बदली ले भी बाम मुगल
3: सारा, देख लो।
1: और देखिए मैं कितना सा ले रहा हूँ देखो। नहीं नहीं
4: खा सकते हैं, वो पूरा खा सकते
3: हैं।
1: नहीं मैं सिर्फ इतना ले रहा हूँ, ये देखिए ये देखिए
3: ये
1: देखिए। पर भगवान का नाम लेके
4: खाने में क्यों शर्माना।
1: देखो खाने में क्यों शर्माना। अब पता चला आपको,
3: जो हम बोल रहे थे वो
4: हो चुका है।
1: बाप खिला रहा हूँ। अरे मुंह खोलो।
3: थैंक यू।
4: टीचर
1: बस अब इतना सा बचा है, ये बंसरी। अरे आओ हेतल काकी, मुंह खोलिए।
5: प्यार देखा, प्यार
1: देखा,
4: इसीलिए इनको ऐसे कपड़े पहनाए जाते हैं।
1: कैमरा थोड़ा उधर,
3: ये प्रथम कुंवर है।
1: कैमरा थोड़ा उधर करना, कैमरा उधर।
4: मैं तो हेल्दी भी खाता हूँ,
1: खत्म भी कर दिया,
4: मीठा भी खाता हूँ, सब खाता हूँ।
3: इसमें समय
1: ये खत्म करो, एक मत दे
3: मुझे।
1: इतना मीठा है ना, मस्त है।
3: क्योंकि भी महंगी मिठाइयाँ खा लो पर बूंदी के लड्डू का टेस्ट जो है ना,
1: और ये प्योर घी में बना हुआ, घर पे बना हुआ मेरे।
4: क्यों क्यों मुझे
3: खिलाओ?
4: रैपर में तो जेएसएफ जनता स्वीट एंड फरसान दिख रहा है।
1: अरे ये लेबल के लिए था भाई,
4: लेबल लेबल ही से तो लेबल उसी में होता है ना, घर के
1: मिले। कागज पे लेकर आता क्या? तो मेरे पास जनता फरसान वाला बाजू में रहता है, तो मैंने लिया। ले बेटा
3: गपचुप
1: का।

0: हमारे गुजराती में खाना खाने के टाइम और स्पेशली मीठा खाने के टाइम बोलते हैं गड़ियू ए गड़ियू बाकी बधु बड़ियू, यानी मीठा तो मीठा बाकी सब जला हुआ।
1: मीठा होता है खाना होता है सब अच्छा है और गाना होता है। चलो इसी बात पे गाना है।

0: तैयार हम।
1: भाई लोग सच ही कहते हैं, खाने की टेबल पर यादगार लम्हे बनते हैं और सीरियल हमारी भाभी नंबर वन के सेट पर तो हर दिन ये लम्हे कैद किए जाते हैं, क्योंकि सेट पर शूटिंग की भगदड़ के बीच ऐसे ही छोटे छोटे पल टीम को बनाते हैं एक परिवार।
2: तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम इसी तरह पूरा परिवार बैठकर, हमारी भाभी नंबर वन का पूरा परिवार बैठकर लंच करते हैं, टेस्टी टेस्टी खाना खाते हैं, शेयर करके खाते हैं, मिल बांट कर खाते हैं। तो और सबसे, जैसा कि आप लोगों को पता है, सबसे ज्यादा खाना मैं लाता हूँ, सबको मैं देता हूँ। और अब हम जाने वाले
3: हैं, इतना ही बोल, इससे ज्यादा नहीं बोला था कि हमें शूट सीन के लिए जाने में लेट हो रहा है, तो टाटा बाय बाय बोलना है, इतना सब कुछ लंबा पांच मिनट लेना है, समझा तू?
2: पूरा तो आप ही बोल दो,
0: बस बस बस, इनको इनको तो मौका
3: हम नेक्स्ट टाइम मंसरी के साथ जल्दी मिलेंगे लंच पार्टी पे।
4: बता दीजिए, हम कुछ अच्छा सा लंच और अच्छा सा लाएंगे।
0: उस दिन मैं भी बना के लेके आऊंगा।
3: तो टाटा बाय बाय, और देखते रहिए हमारी
1: मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
5: रोज नए ट्विस्ट, रोज नए हंगामे, टेलीविजन की दुनिया में ड्रामे कभी खत्म नहीं होते। आज किस सीरियल की कहानी में आया है कौन सा बड़ा ट्विस्ट, देखना दिलचस्प होगा। तो चलते हैं सीरियल्स की मजेदार दुनिया में।
6: तुम देना साथ मेरा
7: देखो, एक
1: स्टेबलेस के सीरियल ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा में भाई अपराजिता और रक्षित आशिकी फरमा रहे थे, लेकिन इस बात से अनजान कि उनकी इस आशिकी के नजारे उनके पूरे परिवार ने देख लिया है।
7: हमारी शादी को एक हफ्ता हो गया और अभी तक हमारी सुहागरात नहीं हुई।
8: आप ठीक तो है ना
9: भैया?
10: रक्षित
9: भैया,
1: भाई इसके बाद घर में हंगामा तो होने वाला ही है, लेकिन उसके पहले बीती रात भी एक हंगामा हुआ जहां रक्षित और अपराजिता का बेड टूट गया और उसकी आवाज से पूरा घर इकट्ठा हो गया। और उसके बाद देखिए कैसे बुआ जी ने लेफ्ट राइट अपराजिता और रक्षित को ताने मारे और अपराजिता को दूर करने में भी कामयाब हो गई।
11: तो यही रुक, मैं इनकी प्रेम अग्नि में वो डाल कर आती हूँ।
12: क्या?
11: फायर एग्जीक्यूटर,
12: फायर एक्सटिंग्विशर भाभी।
11: पलंग ही तोड़ दिया। अपराजिता तुझे चोट तो नहीं आई ना बेटा? तू भी ना रक्षित, नहीं मतलब ये क्या सोचेगी हमारे बारे में कि घर में कितना सस्ता वाला फर्नीचर बनवाते हैं? हा? देखो टूट गया, इसे चोट लग जाती तो?
8: नहीं नहीं मैं ठीक हूँ।
11: तू ठीक है?
7: yes.
11: चलो अच्छा है, भगवान की कृपा से तू ठीक है। तू चल मेरे साथ, चल चल आ जा।
7: एक सेकंड, आप मेरी बीवी को कहाँ ले जा रही है?
11: रक्षित बेटा पलंग टूट गया है, कारपेंटर कल आएगा, तो एक दो दिन तो जाएगा ना इसे ठीक होने में।
7: हाँ,
11: तब तक अपराजिता कहाँ सोएगी? तो वो मेरे साथ मेरे कमरे में सोएगी और तू मोहित के साथ चल।
7: कहीं नहीं जाएगी, मेरे साथ रहेगी, हम दोनों जमीन पर सोएंगे, प्रॉब्लम क्या है?
11: ना ना ना ना ना ना, ना। ये एकदम नई नवेली दुल्हन है और नई दुल्हन जमीन पर नहीं सोती। अरे हमारे भारद्वाज खानदान की इज्जत चली जाएगी, तू चल मेरे साथ।
7: अरे पति पत्नी साथ में नहीं सोएंगे तो इज्जत तो वैसे ही चली जाएगी, ये कहीं नहीं जाएगी, मेरे साथ रहेगी। कैसे?
11: नहीं, तेरी बीवी मेरे साथ जाएगी।
7: अरे ऐसे कैसे जाएगी, शादी मैंने की है, बीवी मैं बनाकर लाए हो। आप इतनी उतावली हो रही है तो आप जाकर अपनी बीवी लाइए। हैं? नहीं
11: आ, मेरी बीवी, मेरी बीवी कहाँ से आएगी?
7: आपसे आ जाएगी, आपसे सब कुछ आता है।
11: सच में? अरे मतलब कहाँ से मेरी बीवी आएगी? रक्षित देख तू ज्यादा उछल मत, उछल उछल के क्या पलंग की हालत कर दी। देख देख देख बेटा, एक ही तो रात की बात है। हाँ कल कारपेंटर आ जाएगा, तेरा पलंग ठीक हो जाएगा, तब तक अपराजिता नीचे नहीं सोएगी, वो मेरे साथ मेरे कमरे में जाएगी।
1: भाई एक टेंशन कम थी कि दूसरी टेंशन अपराजिता के रास्ते में आ खड़ी हुई। भाई अपराजिता और रक्षित ने फिर एक बार ऑफिस ज्वाइन करने का सोच लिया है, लेकिन देखिए कैसे इस बात से सासू माँ नाराज है।
11: वाह रे वाह, ये आजकल की लड़कियाँ भी बड़ी अलग है ना सुधा? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि हमारे जमाने में अगर घर से बाहर कदम भी रखना होता था तो भी बड़ों की आज्ञा लेनी पड़ती थी, हिम्मत नहीं होती थी कुछ भी करने की, कुछ भी बोलने की, जब तक हमें बड़े कुछ ना कहें। लेकिन देखो इस अपराजिता को, बन ठन के चली ऑफिस बिना हमें कुछ कहे बताए, है कि नहीं?
9: जाने दीजिए ना भाभी, इसी बहाने ये मेरे घर से बाहर तो जाएगी, घर का माहौल ठीक हो जाएगा। मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे किसी भी काम से आपको खुशी मिलेगी तो मुझे खुशी होगी।
6: महादेव एंड सन्स,
1: कलर्स टीवी के सीरियल महादेव एंड सन्स में भैरजी और धीरज दोनों ही हुए हादसे से बेहद परेशान हैं और सदमे में भी हैं। तभी तो घर वालों के सवालों के जवाब नहीं दे पाए और देखिए कैसे अकेले कमरे में बैठकर काफी परेशान हो रहे हैं।
10: हम बहुत कर गए थे, सॉरी, हमारे दिमाग में रह रहे के सिर्फ वही बातें चल रही है। हम अपने घर पे अपने कमरे में, लेकिन हमें अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी उसी वॉशरूम में है और वो हमें गंदी तरीके से छूने की कोशिश, सेफ नहीं फील कर रहे, और राक्षस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन लेकिन हमें फिर भी लग रहा है जैसे जैसे वो हमारे आस पास है, जैसे वो कहीं से भी आकर हमें,
13: तो कोई गलती नहीं करी है तुमने, जो कुछ भी हुआ इस सब में हम तुम्हारे साथ हैं।
1: इतना ही नहीं भाई, देखिए कैसे घर पर पहुंच गई है पुलिस, जो कर रही है धीरज और रज्जी से पूछताछ, और वो दोनों उनके शक के दायरे में भी हैं।
13: देखा था, निहायत ही बदतमीज और बिगड़ैल किस्म का लड़का था, हमारी प्राइवेट पार्टी में जबरदस्ती घुसाया था।
14: अच्छा, तो तू बड़ा तमीजदार है। तुम्हारी पार्टी में घुसाया और कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ, यह बात खत्म हो गई
13: जी।
14: एक मिनट, ये बताओ कि तुम कल रात को कितने बजे घर आए?
13: लगभग 11:30 बजे।
15: अरे जनाब जनाब, एक बात कहनी थी आपसे। देखिए, आपने जो भी पूछना है सीधे सीधे पूछिए ना, वो आप ऐसे घुमा फिरा के पूछेंगे तो बेचारे, और वैसे भी आप ऐसे डांटिए मत इनको, बच्चे हैं, डर जाएंगे तो फिर का ही जवाब देंगे, है ना?
1: ऐसे में पुलिस वालों को रज्जी पर शक हो गया है और देखिए कैसे उसे फंसाने के लिए उन्होंने बनाया नया प्लान।
16: मोंटी बाबू गायब करने में उन चारों की इन्वॉल्वमेंट, वो दोनों बंदे और उनकी बीवियां।
17: तो वजीर सिंह उस महादेव एंड सन्स का शिकार करने के लिए पिछाओ पिसा।

स्टापलेस के सिरे ये फितूर तेरा में देखिए कैसे पार्टी में शामिल हो गई है सौम्या, और यहाँ पर वो कर रही है रिधान के साथ डांस। लेकिन असली डांस तो उसने जीत के साथ किया, जिसे जीत देखकर बेहद खुश हो गया।

0: लेकिन ये खुशी पल भर की ही थी, क्योंकि अब जीत हो गया है सौम्या से नाराज, और देखिए कैसे उसने उसे खूब खरी खोटी सुनाई।
1: जूनियर, तुमने आज सिर्फ मुझसे झूठ नहीं कहा, मेरे बचपन की तभी हुई उम्मीद को जिंदा करके फिर से मार दिया है। किस हक से?
2: किस हक से जूनियर?
1: किस हक से तुमने मेरी दुख दे रख और नींबू मिर्ची रगड़ दिया? किस हक से तुमने मेरी जिंदगी के सबसे बड़े जख्म को खरीद दिया? मैं कोई टूटा हुआ खिलौना नहीं हूं जिसको तुम ठीक करना चाहते हो, और ना मैं तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट हूं जिसको तुम पूरा करना चाहती हो। जूनियर, मैं जैसा हूं, जो हूं, ठीक हूं। आज के बाद मेरी जिंदगी के किसी भी मामले में मत पड़ना। मेरी जिंदगी में अपनी दखलंदाजी मत देना।
0: लेकिन फिर भी सौम्या अपने आप को जीत के पास जाने से नहीं रोक पाई, और देखिए कैसे जब वो अपने बर्थडे का केक कट कर रहा था उसके पास पहुंच गए, लेकिन उसके बाद हुआ हंगामा।
3: सौम्या, हजार बार मैंने कहा है कि जीत से दूर रहो, कि एक जवान लड़का और एक जवान लड़की को दायरे में रहना चाहिए, लेकिन नहीं, लोग बातें बनाते हैं। सौम्या इज्जत है हमारी, अगर तुम इज्जत के दायरे लांग दोगी ना तो लोग हमारे बारे में बकवास करेंगे, तुम्हारे बारे में बकवास करेंगे।
4: सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में मायरा और कबीर ने कर दिया है अपने प्यार का ऐलान, और इस ऐलान को सुन बिगड़ गई है अभीरा की तबीयत। अब ऐसे में अरमान क्या कदम उठाता है, देखने के लिए चलते हैं सीरियल के सेट पर।

बिगड़ी अभीरा की तबीयत। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज पोद्दार्स और दमानीस दोनों परिवार पहुंच गए हैं एक इवेंट में बनकर खास मेहमान, और वहां के अनाउंसर ने दोनों परिवार में से एक एक सदस्य को बुलाना चाहा, जिसमें अभीरा और राघव उठे तो थे जाने के लिए, लेकिन स्टेज पर उनके जाने से पहले ही वहां पर पहुंच गए मायरा और कबीर, और देखिए कैसे सरेआम उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा, गाना बजाया और शुरू कर दिया ताल से ताल मिलाना।

मैं परफॉर्मेंस किसी और की होने वाली थी, लेकिन यहाँ पर अपनी डांस परफॉर्मेंस दे दी मायरा और कबीर ने, और ये सब इन्होंने जानबूझकर किया है। इतना ही नहीं, डांस खत्म करके इन्होंने एक दूसरे का हाथ थामकर सबके सामने ये जता दिया कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बस फिर क्या, ये जताने पर ही वहाँ के लोगों ने चार बातें करनी शुरू कर दी, जिसे कहीं न कहीं अरमान बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो भी वहाँ से चुपचाप उठकर चला गया।

0: थैंक यू सो मच, और थैंक यू उन परफॉर्मर्स को जो यहाँ टाइम पे नहीं पहुँच पाए, उनकी वजह से हम दोनों आपके सामने परफॉर्म कर
1: पाए। करीब तू
0: भी एक साथ
1: पास था के सौ जन्म।
2: देख के तो नहीं लग रहा कि ये दोनों बाय चांस एक साथ स्टेज पे पहुंचे।
3: हाँ?
2: इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है, देखो कैसे हाथ पकड़ रखे हैं। अरे लेकिन इन दोनों के खानदानों में तो दुश्मनी है ना।
3: ये क्या फिल्म स्टोरी है भाई?
1: ना हो के भी
4: ये स्टोरी फिल्मों से भी बेटर है, क्योंकि ये स्टोरी भी रियल है और ये दूसरी के लिए रियल है। हमारी फैमिलीज के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो आज खत्म।
0: दोनों फैमिलीज के बीच में दोस्ती होगी, अपना पर होगा,
4: प्यारे से रिश्ता होगा।
5: ड्रामा तो चल ही रहा है अभी, बिकॉज मायरा एंड अरमान अभीरा के बीच में कन्फ्लिक्ट है बहुत बड़ा, जो हमारी एक बिल्ली फैमिली और जो हम मतलब उसमें कॉन्फ्लिक्ट है, बिकॉज मायरा को कबीर पसंद है, कबीर हमें अरमान अभीरा को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ की वजह से पसंद नहीं है, प्लस उसकी वजह से वो उसको लाइक करना तो ठीक है कोई बात नहीं, आप 18 की एज में किसी को लाइक कर सकते हो, बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, लेकिन अगर आप लाइफ की अपनी हर चीज़ को यू नो उसके वजह से इग्नोर हो रही है, एग्ज़ाम के लिए नहीं गई, झूठ बोल रही है, तो दैट्स नॉट हर। तो अरमान अभीरा उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट में, तो वो वहाँ उस चीज़ में है कि उसको बस अभी उस लड़के की ही पड़ी है, वो है भी उस एज में, एंड अरमान अभीरा उस स्टेज में कि वो चाह रहे हैं कि मतलब कि अंडरस्टैंड करे।
6: भाई जो हरकत मायरा और कबीर ने की है, ये हरकत पोदार्स तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो यहाँ से जाने लगे, तो वहीं बाहर अरमान एक प्रेमी जोड़े को भी देख लेता है जो उसकी कार से टिककर खड़ा हुआ है, जिसके चलते अरमान का गुस्सा भड़क जाता है और तो और उनकी बातों से अरमान अपना पर्सनल गुस्सा उन पर उतारने लगता है।
7: गलती से भी सॉरी मत बोल देना और हाथ तो छोड़ ही मत देना, बस भागते रहो अपनी जिम्मेदारियों से, भागते रहो।
6: भाई धीरे धीरे अरमान अपनी बेटी मायरा से दूर हो रहा है। वहीं दूसरी ओर जैसे ही अरमान की नज़र अभीरा पर पड़ती है, जिसकी तबीयत बिगड़ी हुई है और पूरा परिवार उसे संभाल रहा है, उसे ऐसा देखकर अरमान हैरान रह जाता है और तभी अभीरा अरमान को सच बताती है कि ये सब मायरा ने जानबूझकर किया है।
4: मुझे नहीं चला, मुझे कहीं जाना है, मुझे नहीं चला, मुझे

0: मायरा और कबीर अभी अंदर एक इवेंट में डांस करते हैं और दोनों अपनी अपनी फैमिलीज को रिप्रेजेंट करते हैं और उन्होंने सारी दुनिया मतलब सारे उदयपुर के सामने बेसिकली बता दिया कि हम साथ में हैं और ऐसा है वैसा है, अब तो हमारे परिवार जुड़ने वाले हैं बेसिकली, क्योंकि ये दोनों शादी करना चाहते हैं. अब दोनों परिवारों को लगता है ये अपसर्ड है, मतलब बहुत ही बेहुदा चीज़ है इस उम्र में बिना कुछ हासिल किए, तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट है. प्लस दोनों फैमिलीज एक दूसरे की फैमिली से भी नफरत कर.
1: भाई अरमान तो अभीरा को संभाल रहा है, उसे गाड़ी में बिठा रहा है कि तभी वहाँ पर आ जाती है मीडिया जो करने लगती है अभीरा से सवाल जवाब. ऐसे में अरमान उन्हें जवाब दिए बिना ही चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता है और अभीरा को वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है. इसी बीच वहाँ पर मायरा भी आ जाती है और मीडिया बाकी पुद्दार परिवार को घेर लेती है. इतना ही नहीं, वहाँ पर मौजूद लोग मायरा की इस हरकत को लेकर चार बातें और सुनाने लगते हैं.
2: कावेरी जी, पूरा उदयपुर आपके संस्कारों की मिसाल देता था, लगता आपने अपनी परपोती को कुछ सिखाया ही नहीं है. कितने बेशर्मी से इसने सबके सामने अपने प्यार का ऐलान कर दिया.
3: सॉरी कावेरी आंटी, मैं आपसे यहाँ नहीं आऊंगी और मैं भी नहीं आऊंगी. आपकी मायरा की वजह से हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे.
0: ऑब्वियसली उनके लिए ह्यूमिलिएटिंग है और उसका कोई ना कोई जवाब तो अरमान, दादी साहब, फैमिली मायरा से मांगेंगे जरूर.
1: भाई प्यार के जोश में आकर मायरा ने भी कहा सोचा था कि बात का बतंगड़ बन जाएगा. खैर, मायरा के चलते पुदार परिवार को और भी जिल्लत बर्दाश्त करनी होगी. वहीं दूसरी ओर आज नंदिनी भी अपने पति राघव से बेहद नाराज है क्योंकि उसका बेटा कबीर घर छोड़कर चला गया है. ऐसे में वो चाहती है कि राघव उसके बेटे को ढूंढ कर लेकर आए, इसीलिए वो उस पर अपना गुस्सा भी उतारती है. इससे पहले कि वो अपने पति को अल्टीमेटम देती, वहाँ पर आ जाती है नंदिनी की सासू माँ और बरसने लगती है नंदिनी पर.
4: आपका दुश्मन नहीं है, बेटा है आपका, याद है ना आपको? अरे पिछली बार 2 दिन के लिए गायब हुआ था, हाल बेहाल लौटा था वो.
5: तब भी पोदास की बेटी उसके साथ थी. कबीर ऐशो आराम में पला बड़ा, 2 दिन जिंदगी की बारिश में भीगेगा ना तो ये गुस्सा आकर और उस लड़की के लिए फीलिंग सब गल जाए और तब उसे परिवार के लिए मिलते. 2 दिन, सिर्फ 2 दिन में वापस लौट आएगा.
6: हमारे यहाँ औरतें पति को अपना तन मन धन दिया करती है, धमकी नहीं. राघव से माफी मांग अभी.
1: भाई कबीर और मायरा के प्यार के चलते तो घर के हर रिश्ते बिखर रहे हैं. अब देखना होगा कि कबीर और मायरा एक दूसरे से शादी कर नया ट्विस्ट लाएंगे या फिर इन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा. मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
7: सीरियल अनुपमा में अनुपमा की जिंदगी में खुशियां लेकर लौटी हैं सरिता ताई. परेशानियों के बाद मिली इस खुशी में कौन कौन देगा अनुपमा का साथ और कौन लाएगा कहानी में ट्विस्ट, देखना दिलचस्प होगा.
1: खुशी से बलखाई अनुपमा, खुशी में शामिल दिग्विजय. अब छटेंगी अनुपमा की मुश्किलें. स्टार प्लस की सीरियल अनुपमा में इतने दिनों से परेशान चल रही अनुपमा आज उसके चेहरे पर खुशी आ गई है और ये खुशी कोई और नहीं बल्कि सरिता ताई के आने से हुई है। तभी तो देखिए कैसे अनुपमा रसोई में न सिर्फ सरिता ताई के लिए उनका पसंदीदा खाना बनाने की कोशिश कर रही है बल्कि खुशी से झूम भी रही है क्योंकि सरिता ताई के आने से अनुपमा की अब मुश्किलें छटने वाली है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब झूमते हुए अनुपमा की नजर पड़ जाती है दिग्विजय पर और देखिए कैसे वो हिचकिचा जाती है और दिग्विजय वो तो बखूबी समझ रहे हैं कि अनुपमा खुश क्यों है। तभी तो आते के साथ ही न सिर्फ वो अनुपमा को कंफर्टेबल करते हैं बल्कि अनुपमा के साथ उस खुशी में शामिल हो जाते हैं।

0: भाई अनुपमा और दिग्विजय दोनों ही बहुत खुश हैं, पर ऐसे में उनकी एक परेशानी और कम हो गई है। जल्द ही उन्हें एक EMI पे करनी है जिसके पैसों का इंतजाम हो गया है। ऐसे में दिग्विजय अनुपमा को हौसला देता है और तो और बहुत ही सोच समझ कर पेपर साइन करके उन पैसों को जमा करने की बात भी कहता है, जिससे अनुपमा थोड़ी बहुत घबराई भी है क्योंकि उसके साथ एक बार धोखा जो हो गया है।
1: बहुत

0: मुझे आप पे और बहुत ज्यादा पर पूरा पूरा पूरा भरोसा है सर, इतने आपसे ज्यादा भरोसा है, क्या था फिक्र, बस बेटर को चेक देने का। तो सर पिछली बार जो कुछ भी हुआ इतनी बुरी चीजें हैं, उस वजह से डर गई हूँ सर, दिमाग में बात रही गई है। वो कहते हैं ना कि दूध का चला छाछ भी फूक फूक करके,
1: छाछ नहीं आप आइसक्रीम भी फूक फूक के खाइएगा, जो गलती एक बार की उसे दोहराइएगा। तो एक एक बार हमने चेक किया है, चार बार आप चेक कीजिएगा और उसके बाद दिल का अगर दिल कहे कि ठीक है तो साइन कर दीजिएगा।
2: अब दिग्विजय ने तो पहले से ही सारे पेपर्स देख सुन लिए हैं, ऐसे में अनुपमा को अपने दोस्त दिग्विजय पर पूरा विश्वास है, इसीलिए वो आंख बंद करके पेपर पसाइन जरूर करेगी। फिलहाल तो अनुपमा के पास पैसों की कमी थी जो सरिता ताई ने आकर पूरी कर दी है। सरिता ताई ने पूरे 5 लाख रुपए अनुपमा को दिए हैं। हालांकि पहले अनुपमा मना कर रही थी, लेकिन जब सरिता ताई ने बताया कि वो पैसे अनुपमा की बदौलत ही उन्हें मिले हैं, तो देखिए कैसे अनुपमा उसके चेहरे की खुशी दुगनी हो गई, क्योंकि उसकी डांस रानी अब तरक्की जो कर रही है, इसीलिए अनुपमा की आंखों से खुशी के आंसू भी बह रहे हैं।
3: अरे वो बहुत बड़ी बन गई है। और तेरे को एक गुड न्यूज देनी है अनु, अपना वो कॉर्पोरेटर है ना, उसने हम डांस रानी को एक बहुत बड़ी जगह दी है और वहाँ पे हमने स्टूडियो खोला है, डांस रानी स्टूडियो।
4: स्टूडियो डांस रानी का स्टूडियो, हमारा अपना डांस रानी का स्टूडियो।
5: स्टूडियो नहीं है, माँ सरस्वती का मंदिर है, वहाँ हम सिर्फ डांस नहीं सिखाते अनु ताई, हमारे और हमारे आसपास के चाल के बुजुर्ग आकर वहाँ योगा भी करते हैं, और कुछ लोग तो वहाँ आके ब्रॉडकास्ट भी बनाते हैं।
3: ब्रॉडकास्ट नहीं है अनिता, पॉडकास्ट।
5: ओके, ऐसा क्या ताई, ब्रॉडकास्ट पॉडकास्ट। और मास्टर जी भी कभी कभी आके वहाँ बच्चों को गाइडेंस करते हैं।
3: अगर गाइडेंस नहीं गा, गाइडेंस बोल, गाइडेंस
5: गाइडेंस करते हैं।
3: और इतना भी नहीं, अरे छोटी पीढ़ी है ना, अभी नए नए बच्चे लोग, संस्कार और संस्कृति अच्छी गढ़नी चाहिए, इसके लिए संस्कार वर्ग चालू किए हैं, और उसमें मंत्र श्लोक और संस्कृत में सब सिखाया जाता है।
4: संस्कृत में,
3: संस्कृत में।
4: बापू जी सब लोग सुना, मेरी डांस रानी तो समाज की रानी हो गई, इतनी सेवा, इतनी मदद, इतना सुधार और इतने सारे सपने।
3: अनु डांस रानी स्टूडियो मुंबई में एकदम फेमस हो गया है, फुल टू।
5: और पता है हमारे यहाँ तो एडमिशन हमेशा फुल रहती है।
4: भगवान करे ऐसा ही रहे हमेशा, तू तू तू आप लोग ऐसे ही तरक्की कीजिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए आप लोग ने कितनी कितनी कितनी मेहनत की होगी।
5: हाँ हमने मेहनत तो की, लेकिन हमें मेहनत करने का जज्बा तुमने जगाया था।
2: अनुपमा तो हमेशा सही रास्ते पर चलती है, लेकिन जल्द ही उसकी रास्तों पर मुश्किलें आने वाली है, क्योंकि जल्द ही होने वाली है न्यू एंट्री, जो अनुपमा का साथी बनेगा या अनुपमा के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा।
4: अरे देख के चला,
6: आप ठीक है?
7: गणपति बाप्पा,
4: देर से क्यों आए, कहा था ना टाइम से आ जाना।
8: सॉरी मम्मी हम लेट से आए, लेकिन हम अपने साथ एक स्पेशल गेस्ट को भी लाए हैं।
4: स्पेशल गेस्ट को?
2: मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
9: के दिन को खास बनाने और चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हम हाजिर हैं कुछ बेहद रॉकिंग और शॉकिंग खबरों के साथ। तो चलिए आपको दिखाते हैं मनोरंजन की दुनिया के अलग अलग रंग और देखते हैं क्या है आज की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें।
10: तलाश फिल्म से

बीती शाम हुआ ग्रैंड प्रीमियर आई पॉप स्टार वॉल्यूम 2 का, जो कि एमएक्स प्लेयर पर आएगा, जो कि है एक रियलिटी शो जिसमें नजर आए एल्विश यादव, राखी सावंत, नेहा कक्कर और कई और सितारे जिन्होंने इस ग्रैंड प्रीमियर में चार चांद लगा दिए।

टीवी के आने वाले नए शो सोहनी और नहीं कोई होनी में नेगेटिव किरदार निभाते नजर आएंगे शिखर शुक्ला, जो कि जल्द शुरू होने वाला है। इमरान हाशमी और जेनेलिया साथ साथ नजर आने वाले हैं फिल्म गन मास्टर G9 में। ऐसे में सामने आई है इस फिल्म के पहले गाने की झलक, जिसका नाम है अफसाना बनाया आपने। देख लीजिए ये खास झलक। सोहा अली खान ने याद किया अपने लेट फादर मंसूर अली खान पटौदी को। ऐसे में इन्होंने ये इमोशनल ट्रिब्यूट दिया है

वाला है द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का सीजन 2। खबरों की माने तो इसका सीजन मार्च 2027 में शुरू हो सकता है। वैसे आपको बता दे, खबरें हैं कि इसमें कास्ट होगी लक्ष्य, बॉबी देओल, राघव जुएल, साहर बांबा और आन्या सिंह की। पर्दे पर बनने जा रही है गुरमीत चौधरी और ईशा मालविया की जोड़ी। ये दोनों साथ साथ नजर आने वाले हैं इनकी आने वाली नई फिल्म तुम मेरे हो में।

1972 नेशनल फिल्म अवार्ड्स का, जिसमें कई सितारों को अवार्ड से नवाजा गया, जैसे कि कार्तिक आर्यन जिन्हें मिला चंदू चैंपियन के लिए नेशनल अवार्ड, तो वही धनुष जिन्हें मिला जिन्हें भी अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा टीम कल की 2898 AD को अवार्ड मिला। कई और सितारे हैं जिन्हें अवार्ड से नवाजा गया।

जल्द शुरू होने जा रहा है पति पत्नी और पंगा सीजन 2। ऐसे में शुरू हो चुकी है शो की शूटिंग। तो भाई सेट के बाहर नजर आई जोड़ियां, तो आइए मिलते हैं इन सभी जोड़ियों से। वैसे आज का इनका लुक है इंडो वेस्टर्न। साथ साथ जोड़ियों में नजर आई दिव्यांका विवेक।

संतोष तिवारी अपनी वाइफ सुरभि संग। कांची और शब्बीर की जोड़ी यहाँ नजर आई। इसके अलावा अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी। अर्जुन बिजलानी और नेहा।

0: साथ ही शो के होस्ट सोनाली बेंद्रे और मुनव्वर फारूकी भी सेट के बाहर नजर आए, यानी कि ये पति पत्नी धमाल और पंगा मचाने के लिए है तैयार।
1: सीरियल्स के सेट पर मचे हंगामों और पर्दे के पीछे की इनसाइड स्टोरीज के साथ आज का हमारा ये सफर यहीं पूरा होता है, लेकिन मनोरंजन का ये सिलसिला कल फिर जारी रहेगा और हम लेकर आएंगे कुछ और दिलचस्प और मसालेदार खबरें। कल फिर मिलते हैं, नमस्कार।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: गणेश उत्सव के इस पावन मौके पर जीएनटी में भी गणपति पधारे, और हमें यकीन है कि हमारे दर्शकों के घर भी गणपति बप्पा जरूर पधारे होंगे। हम चाहते हैं कि आप भी गणपति के उत्सव का हिस्सा बनिए। आप अपने घर पर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें जरूर भेजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें अपने वीडियो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नंबर है 7303409922। ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है, ये भी आपको बता देते हैं, ये नंबर सिर्फ वीडियोस या तस्वीरें भेजने के लिए है। जब भी आप अपना वीडियो या फोटो भेजें तो साथ में अपना नाम, अपना शहर, गांव, कस्बे का नाम लिखना ना भूलिए। तो गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से यही अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे गणेश उत्सव के साथ जुड़िए। इसके लिए करना बस इतना सा है कि अपने घर पर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक वीडियोस भी भेज रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें, पहली तस्वीर में हमें छत्तीसगढ़ के रायपुर से मनीष साहू ने भेजी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कितने भक्तिभाव के साथ बप्पा की आराधना की जा रही है। बप्पा की पगड़ी हो या शानदार सजावट, बड़े ही शानदार तरीके से बप्पा का श्रृंगार किया गया है। तो वहीं दूसरी तस्वीर हमें महाराष्ट्र के नागपुर से समृद्ध सप्रे ने भेजी है। यहाँ बड़े उत्साह के साथ विघ्नहर्ता की पूजा अर्चना की गई, बड़े ही सुंदर तरीके से फूलों से बप्पा का भव्य श्रृंगार हुआ।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
3: एशियन गेम्स में 28 साल बाद भारत को वेट लिफ्टिंग में मेडल, मीराबाई ने दिलाया सिल्वर मेडल, भारत के पास अब तक कुल 11 में। गणेश उत्सव के 10वें दिन भारी उल्लास, मुंबई में बप्पा की भव्य प्रतिमा विराजमान, केदारनाथ मंदिर के तर्ज पर भी भंडार। उज्जैन के खड़े हनुमान मंदिर में आस्था का मेला, श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से कारोबारी खुश, दुकानदारों ने बदले अपने पुराने व्यवसाय। इंदौर में सजने जा रहा सांस्कृतिक कारवां, 150 साल से निभाई जा रही परंपरा, नारी शक्ति के साथ साथ दिखेगी सैन्य शक्ति की झलक। टाइगर रिजर्व के बफर जोन में सैर करते दिखे टाइगर, पर्यटकों ने कैमरे में कैद किया नजारा, ग्वालियर से आए पर्यटक हुए रोमांचित।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: गणेश उत्सव के 10वें दिन देश भर के पंडालों में जारी है गजानन की पूजा अर्चना, मुंबई में लालबाग चौराहा के पंडाल में भी लगातार उमड़ रही दर्शनार्थियों की भीड़। साउथ मुंबई में स्थापित अखिल चंदनवाड़ी गणेश उत्सव मंडल में सजा गजानन का भव्य दरबार, यहां पर विराजमान 28 फीट ऊंची गणपति प्रतिमा।

0: इस बार केदारनाथ अवतार में विराजमान है भगवान गणेश, गणपति बप्पा के पास नंदी भी विराजमान। गुड़ गणपति के नाम से मशहूर है चंदनवाड़ी के बप्पा, क्योंकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं के बीच विघ्नहर्ता के दर्शन कर चीनी शक्कर चढ़ाने की परंपरा है। पंडाल में एंट्री से लेकर बप्पा के दरबार में पहुंचने तक लोगों को होते हैं 12 शिवलिंग के दर्शन। इस बार अपना 49वां साल मना रहा है ये मंडल। गिरगांव के राजा के दरबार में भी भव्य सजावट, गणपति के साथ स्थापित की गई है भगवान कृष्ण की झांकी। द्वारकाधीश पर बनाए गए बप्पा के दरबार की थीम, इस साल अपना 99वां साल मना रहा है गिरगांव के राजा का यह पंडाल। बप्पा के सर पर बंधा फीटा यानी पगड़ी है मुख्य आकर्षण का केंद्र, 6 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा है खास फीटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यक्रम मन की बात में कर चुके हैं इस गणेश मंडल की तारीफ। गणपति उत्सव पर बॉम्बे हाईकोर्ट की सख्ती, सड़कों पर नहीं फोड़े जा सकेंगे पटाखे, तय सीमा से ज्यादा शोर होने पर पुलिस करेगी कार्रवाई। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में मिट्टी से बनी 63 फीट ऊंची इको फ्रेंडली महागणपति की मूर्ति को मिली वैश्विक पहचान, इंटरनेशनल अचीवर्स बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल। 1 लाख से ज्यादा घरों से इकट्ठा की गई मिट्टी से बनाई गई थी ये मूर्ति, इको फ्रेंडली तरीके से त्योहार मनाने को बढ़ावा देना था इस पहल का मकसद। अमरेली के सावर कुंडला में गणपति महोत्सव का अनोखा नजारा, 25 लाख रुपए की भारतीय करेंसी और अमेरिकी डॉलर से गजानन का हुआ श्रृंगार। 500 रुपए के नोटों से तैयार किया गया है गणपति बप्पा का मुकुट, जबकि 200 रुपए के नोटों से बनाया गया है गणेश जी का हार, हाथों और पैरों को भी करेंसी नोटों की सजावट। करीब 1 महीने से की जा रही थी इस विशेष सजावट की तैयारियां, बप्पा के इस अनोखे स्वरूप को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। देश भर में अलग अलग थीम पर सजे हैं गणपति पंडाल, अकोला के गणेश पंडाल में लौटा 80 का दशक, देखी बीते दौर की पूरी तस्वीर। सिंधी कैन के रोज परिवर्तन गणेश पंडाल में जीवंत किया गया ग्रामीण स्कूल के कक्षा की झांकी, जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने वाले दिनों की याद हुई ताजा। आज की जेन जी और जेन अल्फा को उनके माता पिता और दादा दादी की बताई जिंदगी से जोड़ना है इसका मकसद, लोगों के लिए पंडाल बना आकर्षण का मुख्य केंद्र। स्मार्टफोन के इस युग में माचिस के डब्बों और धागे से बने खिलौने, फोन की झांकी ने खींचा सभी का ध्यान, स्मार्ट टीवी की जगह एंटीना वाले टीवी की भी दिखी झलक। कुएं से पानी खींचती महिलाएं और चूल्हे पर बनता खाना भी दर्शाया गया गणपति पंडाल में, सनों की झांकी को देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं और हो रहे हैं भावुक। सूरत में कल्प वृक्ष की थीम पे गणेश पंडाल सजाया गया है, यहाँ पे भगवान गणेश के दर्शन के साथ लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया जा रहा है। पंडाल की डालियों पे ड्रग्स, शराब, सिगरेट और तंबाकू छोड़ने के स्लोगन्स लगाए गए हैं, आयोजकों का कहना है कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए उनको जागरूक करना बेहद जरूरी है। गणेश पंडाल में पूजा के साथ सेवा, शिक्षा, अन्नदान और स्वच्छता का संदेश भी दिया गया है, कल्प वृक्ष की थीम के जरिए लोगों को स्वस्थ और बेहतर जीवन जीने की अपील की जा रही है। पंडाल में लगे कटआउट और संदेश बच्चों और युवाओं का खींच रहे हैं ध्यान, आयोजकों का मकसद कम उम्र से ही नशे के नुकसान के बारे में जागरूकता फैलाना है। आयोजकों के मुताबिक पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर थीम पर मनाया गया था गणेश उत्सव, इस बार कल्प वृक्ष थीम के जरिए समाज को सकारात्मक और नशा मुक्त जीवन देने का संदेश। राजगढ़ में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, खिलचीपुर शहर में पारंपरिक आस्था और भक्ति के साथ मनाया गया जल झूलनी 11 का पर्व। गार्ड गंगा नदी तट पहुंचे 200 मंदिरों से सजे धजे भगवान के विमान, हजारों श्रद्धालुओं ने किए भगवान के दर्शन। गाढ़ गंगा नदी पर माझी समाज की ओर से नाव में भगवान राधा कृष्ण की सुंदर झांकी सजाई गई जो श्रद्धालुओं के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र रही। भजनों पर झाल मंजीरे बजाते और नाचते श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं ने झांकी और भगवान के विमानों के दर्शन किए। पूजा अर्चना और महाआरती के बाद भगवान के विमानों को गाजे बाजे और भजन कीर्तन के साथ मंदिरों की ओर वापस ले जाया गया। भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस बल तैनात रही। रायसेन के उदयपुरा में ढोल ग्यारस पर भगवान श्री कृष्ण की विमान यात्रा निकली। सैकड़ों साल पुरानी इस परंपरा में भगवान नगर भ्रमण कर भक्तों को दर्शन देते हैं। श्री कृष्ण के साथ बलराम, माता यशोदा और रुक्मणी भी पालकी में सवार हुए। भक्तों ने रास्ते भर पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद दिया। महिला पुरुष और बच्चे भगवान के विमान के नीचे से निकले। श्रद्धालु की मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। विमान यात्रा में भजन मंडलियां भगवान के भजन गाती रहीं, वहीं नृत्यांगनाओं ने नृत्य करते हुए यात्रा में हिस्सा लिया। नगर भ्रमण के दौरान अखाड़े भी निकाले गए, जहां पे कलाकारों ने हैरत अंगेज करतब दिखाई। यात्रा दशहरा मैदान लोधीपुर पहुंची, जहां पे भगवान का जल विहार कराया गया। 1 अक्टूबर से बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल, गाजियाबाद में शुरू हुआ इसका ट्रायल। इसके लिए जिला के पेट्रोल पंपों पर विशेष ऐप व्यवस्था लागू। वाहन का नंबर स्कैन करने पर ऐप के माध्यम से तत्काल पता लगाई जा सकेगी संबंधित वाहन के प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता। दिल्ली में महिला सुरक्षा का नया प्लान, जल्द पिंक फोर्स का होगा गठन, संवेदनशील इलाकों में होगी पेट्रोलिंग। स्कूल, कॉलेज, मेट्रो स्टेशन, बाजारों, ट्रांसपोर्ट हब और अन्य संवेदनशील इलाकों में तैनात की जाएगी ये फोर्स। महिला सुरक्षा को लेकर LGTS संधू का बड़ा निर्देश। सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन में सैर करते नजर आए टाइगर्स, पर्यटकों ने कैमरे में कैद किया ये नजारा। ग्वालियर से आए पर्यटक हुए काफी रोमांचित। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहर और सीएम योगी की मौजूदगी में यूपी के 4 शहरों में भारत टैक्सी की शुरुआत हुई। गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में हुआ चालू। कृषक समृद्धि योजना की पोर्टल की भी हुई लॉन्चिंग। योजना के तहत किसानों को 6% प्रभावी ब्याज दर पर 6,00,000 रुपए तक का ऋण देने का प्रावधान। समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा ब्याज अनुदान। 5 वर्षों में 5,00,000 किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य। आज गोरखपुर दौरे पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजकीय महिला शरणालय का करेंगे लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड प्रभावित बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत लाभार्थियों को बांटेंगे लैपटॉप।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: भाई और बहनों नमस्कार, मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर है इसका जीता जागता साबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है, इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में यह है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंधपत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। यह है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं, फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: गुड न्यूज टुडे लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे गणेश उत्सव के साथ जुड़िए, और इसके लिए आपको करना बस इतना है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाना है और उसे बना करके हमें भेजना है। हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। और देखिए, हमारे पास लगातार जो दर्शक है वो अपने वीडियोस भेज भी रहे हैं और उन्हें हम आपको दिखा भी रहे हैं। और इसी कड़ी में इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें देख सकते हैं, और आपको बता दें दोनों ही तस्वीरें हमारे दर्शकों द्वारा हमें भेजी गई है। पहली तस्वीर हमें उत्तर प्रदेश के उन्नाव की रहने वाली स्वाति पांडे ने भेजी है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कितनी भक्ति भाव से बप्पा की आराधना हो रही है। बप्पा की पगड़ी हो या फिर शानदार सजावट, बड़े ही शानदार तरीके से बप्पा का यहाँ पर श्रृंगार किया गया है। और दूसरी तस्वीर की अगर हम बात करें तो दूसरी तस्वीर हमें छत्तीसगढ़ के कांकरे की रहने वाली शालिनी भट्टाचार्य ने भेजी है। यहाँ बड़े ही उत्साह के साथ विघ्नहर्ता की पूजा अर्चना हो रही है। इस बार शालिनी ने इको फ्रेंडली गणपति की स्थापना की है, साथ ही लोगों से पर्यावरण बचाने की अपील भी वो कर रही है।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: क्या बृहस्पति की दृष्टि सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है? क्या बृहस्पति की दृष्टि से कुंडली के ग्रहों की अशुभता कम हो जाती है? क्या बृहस्पति की दृष्टि से मंगल दोष समाप्त हो जाता है? क्या है बृहस्पति की दृष्टि का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: एशियन गेम्स में 28 साल बाद भारत को वेट लिफ्टिंग में मेडल, मीराबाई ने दिलाया सिल्वर मेडल, भारत के पास अब तक कुल 11 मेडल्स। गणेश उत्सव के 10वें दिन भारी उल्लास, मुंबई में बप्पा की भव्य प्रतिमा विराजमान, केदारनाथ मंदिर के तर्ज पर भी पंडाल। उज्जैन के खड़े हनुमान मंदिर में आस्था का मेला, श्रद्धालु की बढ़ती संख्या से कारोबारी खुश, दुकानदारों ने बदले अपने पुराने व्यवसाय। इंदौर में सजने जा रहा सांस्कृतिक कारवां, 150 साल से निभाई जा रही परंपरा, नारी शक्ति के साथ साथ दिखेगी सैन्य शक्ति की झांकियां। सरिस्कट टाइगर रिजर्व के बफर जोन में सैर करते नजर आए टाइगर्स, पर्यटकों ने कैमरे में कैद किया नजारा, ग्वालियर से आए पर्यटक हुए रोमांचित।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
2: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव, और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुरु प्रदोष यानी वो तिथि जब प्रदोष काल के पूजन से आपकी सारी कामनाओं की पूर्ति देवादिदेव महादेव पूर्ण करते हैं। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि जब त्रयोदशी तिथि गुरुवार के दिन पड़ती है तब इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान शिव और देव गुरु बृहस्पति की कृपा एक साथ पाने की पावन और फलदायी तिथि है गुरु प्रदोष, क्योंकि गुरु प्रदोष पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं देवादि देव महादेव। माना जाता है कि गुरु प्रदोष का व्रत करके कुंडली के गुरु को बलवान किया जा सकता है। आज हम आपको बताएंगे गुरु प्रदोष की महिमा के बारे में और क्या है इस व्रत के नियम।

0: वो पावन तिथि है पुण्यकारी, मंगलकारी और लाभकारी। प्रदोष व्रत के पूजन से प्रसन्न होंगे त्रिपुरारी। गुरु प्रदोष पर महादेव देते हैं भक्तों को वरदान, देव गुरु की कृपा से होगा आपका सर्व कल्याण। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि जीवन में शुभता, सुख और समृद्धि के लिए परम फलकारी तिथि है गुरु प्रदोष की तिथि। माना जाता है कि कामना पूर्ति के लिए अमोघ है गुरु प्रदोष की तिथि। जब एक उपासना से दूर होंगे संतान के दोष, साथ ही धन धान्य से भर जाएगा आपका कोष। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि जब त्रयोदशी की तिथि गुरुवार के दिन आती है तब गुरु प्रदोष का संयोग बनता है। आज हम आपको गुरु प्रदोष की तिथि से जुड़ी शिव भक्त राजन की वो कथा भी आज सुनाएंगे कि कैसे माता पार्वती के श्राप से वो शिव भक्त राजा असुर बन गया। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि इस कामना पूर्ति की तिथि पर क्या कहते हैं ज्योतिष के जानकार।
1: प्रदोष जब गुरुवार के दिन पड़ जाए अर्थात त्रयोदशी तिथि और प्रदोष काल मिल रहा हो तो उस दिन प्रदोष कहलाता है। किसी भी व्यक्ति को मनवांछित कामना हो, सबसे समय कलयुग में व्यक्ति के जीवन में सुख की कल्पना, सम्मान वृद्धि, शत्रुओं का दमन और आरोग्यता, ये मन की इच्छाएं व्यक्ति के है। गुरु प्रदोष का उपवास रखने वाला इन चतुर्दिक लाभों को प्राप्त कर लेता है ऐसा माना जाता है।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि प्रदोष तिथि पर व्रत और प्रदोष काल के पूजन से न सिर्फ विघ्न बाधा कट जाती है बल्कि सर्व कामना पूर्ति के भी योग बन जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि कब से लग रही है प्रदोष की तिथि और कब है पूजा का शुभ मुहूर्त। त्रयोदशी तिथि 23 सितंबर की रात 10:50 से आरंभ होगी। त्रयोदशी तिथि का समापन 24 सितंबर की रात 11:18 पर होगा। प्रदोष काल की पूजा का समय 6:24 से रात्रि 8:47 तक होगा। प्रदोष काल सूर्यास्त के आसपास का समय है जब दिन का अंत होने वाला होता है। धर्म ग्रंथ और पुराणों में प्रदोष व्रत को सर्व सुख प्रदान करने के साथ ही मोक्ष दायिनी भी बताया गया है। जानकारों की माने तो महादेव की परम कृपा पाने की तिथि है प्रदोष। चलिए पहले आपको बताते हैं प्रदोष व्रत का क्या है महत्व। हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है और उनकी कृपा से तमाम मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अलग अलग दिन पढ़ने वाले प्रदोष की महिमा अलग अलग होती है। गुरुवार के दिन पढ़ने वाले प्रदोष व्रत को गुरु प्रदोष कहा जाता है। ज्योतिष बताते हैं कि प्रदोष का समय सप्ताह में जिस भी दिन पड़ता है उस दिन की महिमा को बढ़ा देता है। अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत किया जाता है तो व्रत करने वालों को उसको मनचाहा वरदान मिलता है। माना जाता है कि गुरु प्रदोष व्रत से संतान संबंधी किसी भी मनोकामना की पूर्ति इस दिन की जा सकती है।
1: किसी भी व्यक्ति को अगर संतान संबंधी समस्या चली आ रही है तो भगवान शिव के गुरु प्रदोष में रुद्राभिषेक करना, और रुद्राभिषेक भी विशेष तौर पे किस चीज से, के दूध में विशेष तौर पे घी मिलाने के बाद करने वाले व्यक्ति को संतान अवश्य प्राप्त होती है। साथ में इसके पश्चात सहस्त्रार्चन भी करें अर्थात 1008 भगवान शिव के नाम बेलपत्री के साथ शिवलिंग पर चढ़ाने वाला अपनी मनवांछित मनोकामना सिद्ध कर लेता है।
0: मान्यता है कि गुरु प्रदोष व्रत की तिथि भगवान शिव और देव गुरु बृहस्पति की संयुक्त कृपा प्राप्त करने के लिए अलौकिक और प्रभावकारी तिथि है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से आपके शत्रुओं का विनाश होता है, साथ ही आपके घर परिवार में सुख समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। गुरु प्रदोष व्रत रखने से मनचाही इच्छा की पूर्ति होती है। संतान संबंधी किसी भी मनोकामना की पूर्ति इस दिन की जा सकती है। गुरु प्रदोष व्रत रखने से शत्रु और विरोधी शांत होते हैं। मुकदमों और विवादों में विजय मिलती है।
1: किसी व्यक्ति को शत्रु संबंधी बाधाएं चली आ रही हो तो वो गुरु प्रदोष वाले दिन विशेष तौर पे भगवान शिव का अर्पण करे। इसका पुण्य प्रताप ही इतना है कि व्यक्ति के शत्रुओं का दमन होने लगता है। शत्रु उसको गुरु के समान या अपने से बड़ा मानते हुए उसके अधीन आ जाते हैं, ऐसा माना जाता है।
0: मान्यता है कि ये व्रत आपके सौभाग्य को बढ़ाने वाला होता है, साथ ही दूर होती है विवाह में आने वाली रुकावटें। हम सभी जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। उनकी पूजा अर्चना भी सरल ही है, लेकिन गुरु प्रदोष व्रत में शिव की आराधना के कुछ विशेष नियम हैं। कहते हैं कि इस व्रत का पूरा फल तभी मिलता है जब आप इस व्रत के सारे नियमों का पालन करते हैं।
1: भगवान शिव का पूजन किया जाता है और संध्या काल में जो प्रदोष का समय होता है, संध्या के समय पे और उसके पश्चात बढ़ते हुए समय के क्रम में, उस प्रदोष काल में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने का विधान है। उनको बेलपत्र, धतूरा, भांग आदि जल अर्पण करके दूध से स्नान आदि कराने का विधान है। ऐसा व्यक्ति करने वाला ही भगवान की पूजा के विधि पूर्वक उसका पुण्य फल प्राप्त करता है।
0: शिव जी को जल और बेलपत्र अर्पित करें, उनको सफेद वस्तु का भोग लगाएं, शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें, रात्रि के समय भी शिव जी के समक्ष घी का दीपक जलाकर शिव मंत्र का जाप करें, रात्रि के समय 8 दिशाओं में 8 दीपक जलाएं। इस दिन जलाहार और फलाहार ग्रहण करना उत्तम होगा। नमक और अनाज का सेवन ना करें।
2: ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
0: प्रदोष व्रत की महिमा ऐसी ही है, ये आपकी हर मनोकामना को पूरी करती है। जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता। ज्योतिषी इसीलिए प्रदोष व्रत को बहुत कारगर मानते हैं। आगे हम आपको गुरु प्रदोष व्रत से जुड़ी वो पौराणिक कथा भी सुनाएंगे, साथ ही बताएंगे तिथि से जुड़े अचूक कहे जाने वाले महाप्रयोग। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
3: तो देखा आपने कितना पावन और मंगलकारी है गुरु प्रदोष का दिन। शिव कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत की बहुत ज्यादा बड़ी महिमा है। इस दिन अगर विधि विधान से शिव पूजन किया जाए तो हर तरह के दोष दूर हो सकते हैं। विशेषकर अगर संतान संबंधित कोई बाधा आपके जीवन में आ रही है या फिर किसी शत्रु ने कर रखा हो आपको परेशान, तो गुरु प्रदोष का व्रत आपके लिए कल्याणकारी बन सकता है।

आगमी महादेव के महाकृपा की रात। गुरु प्रदोष पर होगी धन धान्य की बरसात। शुभकारी और वरदानी है गुरु प्रदोष का व्रत। व्रत के महाप्रभाव से बाधाएं नहीं आएंगी निकट। महादेव की कृपा से होगी संतान की रक्षा और उन्नति। आज हम अपनी खास पेशकश में गुरु प्रदोष की तिथि से जुड़े अमोघ प्रयोग आपको बताएंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि इस तिथि को लेकर कौन सी कथा धर्म ग्रंथों में वर्णित है जो देव गुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र को सुनाई थी, जिससे देवराज को मिला था एक राक्षस को पराजित करने का संकल्प। कथा है, एक बार इंद्र और वृतासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर डाला। यह देख वृतासुर अत्यंत क्रोधित हुआ। असुरी माया से उसने

0: हाथी महाराज बोले, वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया है। पूर्व जन्म में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने अद्भुत विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर उसने महादेव का उपहास कर दिया। कथा है कि चित्ररथ के बर्ताव से पार्वती क्रोधित हो गई। उन्होंने चित्ररथ को श्राप दे दिया, अब तू दैत्य बन जाएगा। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस बन गया। बाद में त्वष्टा नामक ऋषि के तप के कारण वो शक्तिशाली असुर वृत्रासुर कहलाया। बृहस्पति कहते हैं कि वृत्रासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है। हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर भोलेनाथ को प्रसन्न करो। कथा है कि देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली। माना जाता है कि तब से ही इस व्रत की कीर्ति शत्रु संहारक के रूप में हो गई। कहते हैं कि गुरु प्रदोष पर शिव उपासना से सभी संकटों का नाश होता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि अगर आपके जीवन में संतान से जुड़ी बाधाएं आ रही हैं, तो गुरु प्रदोष व्रत आपकी समस्या का समाधान कर सकता है। तो गौर से देखिए वो उपाय। एक पीतल के लोटे में हल्दी, गुड़ और चने की दाल डालें। केले के पेड़ की जड़ में ये अर्पण करें और गाय के घी का दिया जलाएं। वहीं बृहस्पति स्तोत्र का 3 बार पाठ करें। घर वापस आते समय केले के पेड़ की जड़ से मिट्टी लें और अपने बच्चों के माथे पर तिलक करें।
1: किसी व्यक्ति को सम्मान वृद्धि चाहता हो तो गुरु प्रदोष का उपवास करना ही, उनके उस दिन भगवान शिव का पूजन करना ही, विशेष तौर पर दूध और जल से उनको स्नान कराना और उनको बिल्व पत्र चढ़ाना व्यक्ति के सम्मान में वृद्धि स्वयं करने लगता है। विशेष प्रयोग के तौर पर उनको पीला चंदन भगवान को अर्पण करने से भगवान की तुरंत ही प्रसन्नता प्राप्त होती है।
0: ज्योतिष बताते हैं कि बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। नवग्रहों में बृहस्पति को गुरु और मंत्रणा का कारक माना जाता है। माना जाता है कि देव गुरु बृहस्पति की कृपा के बिना जीवन में खुशियों का संचार संभव नहीं है, क्योंकि बृहस्पति में वो शक्ति है जो किसी भी चीज को बड़ा और विकराल कर सकती है। गुरु को ज्ञान और सौभाग्य का कारक भी माना गया है, जिसके कारण सभी मांगलिक कामों में गुरु की प्रधानता रहती है। तो गुरु प्रदोष व्रत कैसे दे सकता है आपको सुख सौभाग्य का वरदान, ये समझिए। अपने स्नान के जल में 7 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में मिट्टी के बर्तन में जल भरकर रखें, समय समय पर इसे बदलते रहें। पीले आसन पर बैठकर पूर्व दिशा की तरफ मुंह कर हल्दी की माला से बृहस्पति के मंत्रों का जाप करें। जरूरतमंद लोगों को पीला कपड़ा, पीली मिठाई, चने की दाल, हल्दी, गुड़ आदि का दान करें। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि गुरु प्रदोष व्रत पर किए जाने वाले इन प्रयोगों से महादेव के साथ साथ गुरु बृहस्पति की कृपा भी हासिल होगी। शत्रु बाधा को दूर करने का एक महा उपाय और हम आपको बताते हैं।
1: किसी व्यक्ति को यदि शत्रु अत्यधिक परेशान कर रहे हो, तो आपने देखा होगा कई बार लोग कहते हैं बगलामुखी अनुष्ठान कराइए, वो तांत्रिक अनुष्ठान कराइए। एक सरल और बहुत ही प्रभावकारी है, गुरु प्रदोष वाले दिन किसी व्यक्ति को बोले कि उसको मट्ठे से भगवान शिव का अभिषेक कराए, संध्या काल में कराए। ऐसे व्यक्ति के शत्रु तुरंत समाप्त हो जाते हैं, या तो उससे किसी प्रकार संधि कर लेते हैं, नहीं तो शत्रु पलायन कर जाते हैं।
0: प्रदोष काल में भगवान शिव की उपासना करें, शिव जी को पीले फूल अर्पित करें, ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का 11 माला जप करें, शत्रु और विरोधियों के शांत हो जाने की प्रार्थना करें। तो अगर आप अपनी कुंडली के बृहस्पति को मजबूत करना चाहते हैं और देव गुरु से पाना चाहते हैं खुशहाल जीवन का वरदान, तो ज्योतिष में बताए ये महा उपाय विशेष लाभकारी होंगे। आगे हम आपको बताने जा रहे हैं वो महा वरदान जो देव गुरु बृहस्पति की महाकृपा आप पर बरसा सकते हैं।
2: शिव के सबसे पावन व्रत पर उनकी उपासना करके आप अपने जीवन को धन्य कर लीजिए। पंचांग की तिथि कहती है कि हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत रखा जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि गुरु प्रदोष के दिन आखिरकार क्या दान करना चाहिए, जिससे इस व्रत का पूरा लाभ आपको मिल सके।

0: कहते हैं कि महादेव क्षण में प्रसन्न होने वाले हैं। बेलपत्र और धतूरे के अर्पण को वो भक्तों का श्रेष्ठतम उपहार समझते हैं। शिव तो बैरागी हैं, लेकिन उनकी कृपा से ही दुनिया में ऐश्वर्य है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि सृष्टि का आदि भी शिव है और अंत भी शिव ही है, और शिव ही पीड़ाओं को हरने वाले हैं। तभी तो शिव की आराधना से अमंगल मंगल में बदल जाता है। भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं महादेव। आज हम बात कर रहे हैं गुरु प्रदोष व्रत की। अगर व्रत के साथ दान को जोड़ दें, तो कुंडली के ग्रहों के बुरे प्रभावों को भी आप खत्म कर सकते हैं, क्योंकि दान भी इंसान के सबसे उत्तम कर्मों में शामिल है। ज्योतिष कहते हैं कि दान से आप बिगड़े भाग्य को सवार सकते हैं। किसी भी जरूरतमंद कन्या के विवाह के लिए कुछ भोजन सामग्री दान करें। जरूरतमंद लोगों को पीले फल, पीला कपड़ा, चने की दाल, हल्दी गुड़ तथा अन्य भोजन सामग्री दान करें।
1: किसी भी व्यक्ति को अगर इसका पुण्य फल प्राप्ति का विशेष कामना चाहता है, तो गुरु प्रदोष वाले दिन गरीब लोगों को, ब्राह्मण की जोड़ियों को अर्थात पति पत्नी दोनों को श्वेत वस्त्र धारण कराकर और उनको भोजन कराएं। पक्का भोजन कराने के पश्चात उनको फल फूल आदि के साथ में पीले लड्डू, सोने का वर्क चढ़ाकर दान करें। मन में कोई भी इच्छा हो, संतान संबंधी समस्या हो, किसी प्रकार से शत्रुओं से पीड़ित हो, तो निश्चित आप पूर्ण रूपेण इस व्यक्ति को अपने मन की इच्छा पूर्ण पाएंगे।
0: आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना संभव हो सके दान करें। यकीन मानिए, दान करने से आपकी हर मुश्किल आसान हो सकती है। परेशानी कोई भी हो, बाधा कैसी भी हो, शिव की कृपा से आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। माना जाता है कि इस तिथि का कामना पूर्ति के महा उपाय करने से आपके जीवन के सारे संकटों का नाश हो जाता है। चलिए जानते हैं वो ज्योतिषीय महा उपाय। गुरु प्रदोष के दिन शाम के समय शिव मंदिर में जाकर रंगोली बनाएं। रंगोली के बीचों बीच दीपक जलाएं। साथ ही शिवलिंग पर बेलपत्र, केसर मिला हुआ दूध, शहद और अक्षत चढ़ाएं। हाथ जोड़कर शिव जी से कारोबार में तरक्की की प्रार्थना करें। मुकदमों से मिलेगा छुटकारा। गुरु प्रदोष की तिथि पर शिवलिंग का जलाभिषेक करें। धतूरे के पत्ते को दूध से साफ करके शिवलिंग पर अर्पित करें। शिव कृपा से मुकदमों में जल्द ही छुटकारा मिलेगा। उत्तम स्वास्थ्य के लिए उपाय। अच्छी सेहत और रोग मुक्त के लिए शिवलिंग का जलाभिषेक करें। शिवलिंग पर गाय का घी, शहद और बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। साथ ही नमः शिवाय का जाप करें। मानसिक संताप और शारीरिक विकार भी दूर होते हैं। धन संपत्ति के लिए उपाय। भोलेनाथ को बेलपत्र, केसर युक्त दूध, शहद और गन्ने से अभिषेक करें। अनामिका उंगली से चंदन या अष्टगंध बेलपत्र पर लगाकर नमः शिवाय बोलते हुए शिव जी को अर्पित करें। रोज शाम को शिवलिंग के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं। दाम्पत्य जीवन होगा मधुर। भगवान शिव को शहद, कच्चा दूध, बेलपत्र और केसर अर्पित करें। माता पार्वती को कुमकुम, लाल या गुलाबी फूल और सुहागन की वस्तुएं चढ़ाएं। इससे अखंड सौभाग्य और प्रेम का आशीर्वाद मिलता है। तो देर किस बात की, इस महाफलदायी गुरु प्रदोष व्रत का लाभ उठाएं। भगवान भोलेनाथ को मनाइए और साथ में करके देखिए आपके जीवन की समस्याओं से जुड़े ये छोटे छोटे ज्योतिषीय महा उपाय। फिर आपके हर संकट को दूर करने का भार महादेव उठाएंगे।
2: तो चलिए इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए JNT के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनो।
4: खबरों का
0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
2: गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर जयंती में भी गणपति पधारे, और हमें यकीन है कि हमारे दर्शकों यानी आपके घर पर भी गणपति पप्पा जरूर पधारे होंगे। हम चाहते हैं कि आप भी जयंती के गणपति उत्सव का हिस्सा बने। आप अपने अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजें, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें अपने वीडियो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7303409922। आपको बता दें कि ये जो नंबर है ये कॉल करने के लिए नहीं है, ये नंबर से वीडियोज या फिर तस्वीरें भेजने के लिए ही है। और इसके साथ ही जब भी आप अपना वीडियो या फिर फोटोज हमें भेजें, तो साथ में अपना नाम, अपने शहर का नाम, गांव या फिर कस्बे का नाम जरूर साथ में लिख दें। गुड न्यूज टुडे लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी गुड न्यूज टुडे पर मनाए जा रहे गणेश उत्सव के साथ जुड़िए, और इसके लिए आपको करना बस इतना है कि आपके घर पधारे गजानन का वीडियो बना करके उसे हमें भेजना है, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। और देखिए हमारे पास लगातार जो दर्शक हैं जो रोज जयंती देखते हैं वो हमें अपने वीडियोस भेज भी रहे हैं और उसे हम आपको दिखा भी रहे हैं। तो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें देख सकते हैं जो हमारे दर्शकों द्वारा हमें भेजी गई है। पहली तस्वीर हमें गुजरात के अहमदाबाद से यश जाधव ने भेजी है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कितने भक्तिभाव से बप्पा की आराधना हो रही है, बप्पा की पगड़ी हो या फिर शानदार सजावट, बड़ी ही शानदार तरीके से यहाँ पर बप्पा का श्रृंगार किया गया है और उन्हें भोग भी लगाया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी लखनऊ से रोहित कुमार ने ये वीडियो बना करके खास तौर पर हमें भेजी है। आपको बता दें कि यहाँ पे बड़े ही उत्साह के साथ विघ्नहर्ता की पूजा अर्चना हो रही है, बड़े ही सुंदर तरीके से फूलों की माला से, फूलों से बप्पा का यहाँ पर विशेष तौर पर श्रृंगार किया गया है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ आपको भावुक कर जाएंगे।
8: छोटे से गणपति, छोटा सा मंदिर, लेकिन रौनक ऐसी कि सारी भव्यताएं फीकी पड़ जाए। इन नन्हे भक्तों की आस्था से जगमग है गणपति का ये खुला दरबार, जो बन पड़ा उसी से सजा लिया मंदिर। चाहत ही सुसाजो सामान का जुगाड़ भी हो गया, संगीत तो मन में है, बस इसे भक्तिभाव से सजाना था, उसमें कहीं कोई कमी नहीं। मन भगवान के प्रेम में डूबा है, मासूम दिलों का विघ्नहर्ता को बुलावा है। बच्चे मासूम होते हैं, बेफिक्र बेपरवाह, उन्हें बस प्यार करना आता है। देखिए इस छोटी बच्ची को कैसे बछड़े को रोटी खिलाकर खुश है। बछड़ा भी उससे रोटी झपट नहीं रहा बल्कि सावधानी से रोटी ले रहा है ताकि बच्ची डरे नहीं और उसे नन्हे हाथों से आहार मिलता रहे। रोटी लेते हुए जब बछड़े की जीभ बच्चे के हाथों को छू जाती है तो बच्चे की खिलखिलाहट देखने लायक है। दो मासूमों का ये अनकहा जुड़ाव देखकर लोग मुस्कुरा रहे हैं। इन्हें देखिए, खुद आगे का रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा लेकिन पीछे चल रहे कार वाले को रास्ता बता रहे हैं। हाथों के इशारे से बता रहे हैं कि उन्हें अपनी गाड़ी कब किस साइड में रखनी है। आगे बाइक चला रहे शख्स को मालूम नहीं है कि उनके पीछे हो क्या रहा है और ये जनाब अपना काम बखूबी कर रहे हैं। स्कूल का रास्ता लंबा मालूम पड़ता है तभी इतनी फुर्सत से दूसरा काम भी साथ साथ निपटा रहे हैं। कम से कम सफर मजेदार तो हो जाएगा। वैसे सफर तो इन कार वाले भाई साहब का भी मजेदार हो गया, बच्चे की मेहनत और उसके कॉन्फिडेंस को बिल्कुल जाया नहीं होने दे रहे। वैसे ही कार ड्राइव कर रहे हैं जैसे आगे बच्चा इशारा कर रहा है। वीडियो देखकर लोग मुस्कुरा रहे हैं। भाई बहन का रिश्ता सबसे प्यारा और दोनों के बीच का प्यार सबसे अनूठा। दीदी को देखकर छोटे भाई का चेहरा ऐसे खिल गया है मानो सारे जहां की खुशी मिल गई हो। ऐसे गले मिल रहे हैं मानो अब कभी एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे। भाई बहन का ये प्यारा वीडियो लोगों का दिल छू रहा है। दादी अम्मा की उम्र 100 साल पार कर चुकी है पर घर की सबसे छोटी सदस्य ने मानो उनकी जीने की चाह और बढ़ा दी है। छोटी बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाने की कवायद में वो हर वो तरकीब अपना रही हैं जो उनसे हो सकता है। कभी हाथों के इशारे से कुछ कहती नजर आती हैं, तो कभी बैठे बैठे ही बच्चे के साथ लुका छिपी का खेल खेल रही हैं। पारिवारिक रिश्तों की खूबसूरती बयां करते इस वीडियो पर लोग खूब प्यार लुटा रहे हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
9: क्या बृहस्पति की दृष्टि सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है? क्या बृहस्पति की दृष्टि से कुंडली के ग्रहों की अशुभता कम हो जाती है? क्या बृहस्पति की दृष्टि से मंगल दोष समाप्त हो जाता है? क्या है बृहस्पति की दृष्टि का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है।
11: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
12: एशियन गेम्स में 28 साल बाद भारत को वेटलिफ्टिंग में मेडल, मीराबाई ने जीता सिल्वर मेडल, भारत के पास अब तक कुल 11 मेडल्स। गणेश उत्सव के 10वें दिन भारी उल्लास, मुंबई में बप्पा की भव्य प्रतिमा विराजमान, केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर भी पंडाल। हनुमान मंदिर में आस्था का मेला, श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से कारोबारी खुश, दुकानदारों ने बदले अपने पुराने व्यवसाय। इंदौर में सजने जा रहा सांस्कृतिक कारवां, 150 साल से निभाई जा रही परंपरा, नारी शक्ति के साथ साथ दिखेगी सैन्य शक्ति की झांकियां। सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन में सैर करते दिखे टाइगर, पर्यटकों ने कैमरे में रिकॉर्ड किया, ग्वालियर से आए पर्यटक हुए रोमांचित।

0: अब की बार दवा कीमतों पर वार, आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। मुद्दा इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि ये केवल और केवल मरीज तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत के आम नागरिकों के अधिकारों की भी बात है। इस पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। दरअसल दवा कीमतों पर इस बार वार हुआ है और उसको लेकर आज हम बात करेंगे। कैंसर की जरूरी दवाओं की कीमतों में भारी अंतर पर सुप्रीम कोर्ट नाराज है और उसने इसे दिन दिहाड़े डकैती बताया है, और इसी को लेकर देश में अब एक नई बहस भी छिड़ गई है। तो क्या कैंसर दवा कीमतों का खोट अब सुप्रीम चोर, दवा डकैती, बेचारी जनता मनमानी सहती, माल लूट पर मौन, खेल के पीछे आखिर कौन, ये तमाम ऐसे सवाल है जिसको लेकर चर्चा होगी। और इस पर हम तमाम ऑन्कोलॉजिस्ट और साथ ही साथ फार्मा कंपनियों से जुड़े लोगों से भी आगे चर्चा करेंगे। मामला पूरा महंगी दवाओं को लेकर ही है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी भी की है, उन्होंने इसको लूट करार दिया है। अब सबसे पहले आपको पूरा मामला समझा देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। कैंसर की दवाओं की कीमतों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी आई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे दिन दिहाड़े एक डकैती और एक लूट बताया है। कोर्ट में दो याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई थी। कैंसर दवाओं की कीमतों में भारी अंतर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा है कि रिटेलर को 2700 रुपए में मिलने वाली दवा की एमआरपी 27,000 तक छापी जाती है। आप अंदाजा लगाइए कि अंतर कितना ज्यादा होता है। 2700 की दवा आप तक पहुंचती है 27,000 में। साथ ही साथ अस्पतालों की इनहाउस फार्मेसी से भी महंगी दवाओं पर कोर्ट ने आपत्ति भी जताई है, नाराजगी भी जताई है। सुप्रीम अदालत ने पूछा है कि मरीजों को इतनी महंगी दवा बेचकर कैसे ठगा जा रहा है, कैसे मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि इस भारी कीमत के अंतर पर अधिकारी चुप क्यों हैं, संबंधित जो विभाग है वो अभी तक क्यों कुछ नहीं बोले, वो चुप क्यों है। असल में सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गई थी। एक कैंसर पीड़ित महिला के पति ने याचिका दायर की थी और महिला के परिवार ने मरीजों तीमारदारों के शोषण को करीब से देखा है। निजी अस्पतालों में कैंसर पीड़ित महिला का इलाज हुआ, अब परिवार ने इलाज के दौरान महंगी दवाएं खरीदने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया था। याचिकाकर्ता के मुताबिक जेनरिक दवाओं की मांग करने वाले तीमारदारों को दुत्कारा जाता है। और वहीं एक और दूसरी याचिका भी थी और वो याचिकाकर्ता ने अनैतिक मुनाफाखोरी का मुद्दा उठाया था। साथ ही उन्होंने डॉक्टर से भी सस्ती जेनरिक दवाएं लिखने की मांग की थी। अब दोनों ही मामलों में जेनरिक दवा लिखी जाती है या नहीं लिखी जाती डॉक्टर की तरफ से, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या डॉक्टर्स को भी मजबूर किया जाता है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। याचिकाकर्ता ने कहा कि दवा कीमतों में होने वाली लूट रुकनी चाहिए, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी भी की है। इस मामले पर सुनवाई 28 सितंबर को होगी। मामले से जुड़ा और पक्ष भी सामने आएंगे, जाहिर सी बात है। तो दवाओं की कीमतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट चिंतित है, उसने अपनी नाराजगी जताई है। क्या कुछ कहा है कोर्ट ने, आइए हम आपको सुनवाते हैं। मेरे सहयोगी संजय शर्मा विस्तार से बता रहे हैं।
1: कैंसर की दवाइयों की मनमानी कीमत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने टिप्पणी में सुनवाई के दौरान ये कहा कि ये तो जनता के पैसे की लूटपाट है, ये तो डकैती है। जिस तरह से कैंसर के मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने इस पूरे मामले में बहुत सख्त टिप्पणियां की हैं। उनका ये कहना है कि याचिकाकर्ताओं ने जब उन्हें बताया, इस मामले में कई याचिकाकर्ता हैं जो खुद पीड़ित हैं, एक याचिकाकर्ता की पत्नी को ब्रेस्ट कैंसर था, एक की मां को ब्रेस्ट कैंसर था, और उन्होंने आकर ये बताया कि ये नरक हमने खुद भोगा है जिसमें अस्पताल उन्हें मजबूर करते हैं अपनी ही फार्मेसी की दवा लेने पे, और वो दवा जो मैन्युफैक्चरर्स के यहाँ 2700 रुपए की पड़ती है वो 27,000 रुपए में मरीजों को अस्पतालों की फार्मेसी से खरीदनी पड़ती है, जिसमें एक पैसा भी वो छोड़ते नहीं। इस पर अदालत ने बहुत संवेदना के साथ और बहुत नाराजगी के साथ कहा कि ये एक तरह की लूट है, जनता के पैसों की लूट है। न केवल सीधे सीधे मरीजों की मजबूरी का फायदा है, बल्कि ये सरकार को भी चूना लगाने की साजिश है, क्योंकि वही दवाएं जिन पर 2700 की दवाई पर 27,000 रुपए की मैक्सिमम अधिकतम खुदरा मूल्य लिखा रहता है उसे वो सरकारी एजेंसियों को देते हैं, CGHS है, आयुष योजना है, DGHS है, राज्यों की संस्थाएं हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पर सरकार का जवाब क्या आता है और बाकी अन्य संस्थानों का जवाब क्या आता है कि आखिर जनता के पैसों की लूट का, जनता की मजबूरी के फायदा उठाने को लेकर सरकारें कितनी संजीदा हैं। अब पता चलेगा, कोर्ट ने तो अपनी संजीदगी दिखा दी, अब सरकारें कितनी संजीदा हैं और सरकारी महकमे कितने संजीदा हैं इस पर अब बात आ गई। संजय शर्मा, दिल्ली।
0: तो कोर्ट ने क्या कुछ कहा है अपनी टिप्पणी को लेकर, संजय शर्मा मेरे सहयोगी बता रहे थे। और ये मामला काफी अहम भी हो जाता है क्योंकि महंगी दवा पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी आई है। अदालत ने कहा कि कई मरीजों का इलाज आयुष्मान भारत और दूसरी योजनाओं के तहत हो रहा है, इसीलिए टैक्स पेयर्स का पैसा इन सब में जाता है। जो दवा 200 रुपए में बिकती है, बिकनी चाहिए, वो 2000 रुपए में दे दी जाती है और अस्पताल को रीइंबर्समेंट भी मिलता है। यानी ये भी एक अहम मुद्दा है। वैसे इसी मुद्दे पर हमने आम लोगों से भी बात की है, लोगों को क्या वाकई महंगी दवाएं मिलती हैं और ये कितना बड़ा मामला है, इसको लेकर आम लोगों की राय क्या है, एक बार वो भी सुनवाते हैं आपको।
2: देखिए, जिस तरह से बहुत महंगाई बढ़ रही है और भारत में बहुत बड़ी जनता जो गरीबों की तादाद है, तो अगर उनके ऊपर इस तरह महंगाई का बोझ बढ़ेगा दवाइयों का, क्योंकि दवाई जीवन रक्षक होती है और कैंसर की जैसे दवाई है वो तो बेहद बहुत ही मजबूरी में इंसान लेता है और जितना भी पैसा हो अपना घर बेच देगा, कुछ भी करेगा, गरीबी रखेगा और आपके दवाइयों का वो करेगा। पर ये क्यों बढ़ रही हैं, ये सब सरकार को देखना चाहिए।
3: देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मैं बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने अपने आप इस मामले को संज्ञान में लेते हुए दखलअंदाजी की है। दवाएं, यानी कि आप देखिए, स्वास्थ्य शिक्षा पे हम बात करते हैं तो ये बेसिक नीड है आम जनता की, तो इसके अंदर मैं चाहती हूँ कि आम जनता को सुविधा मिलनी चाहिए। ये महंगी नहीं होनी चाहिए, ना शिक्षा महंगी होनी चाहिए, ना स्वास्थ्य की सुविधाएं महंगी होनी चाहिए। दवाएं सस्ती दर पे मिलनी ही चाहिए, इलाज भी सस्ते दर पे मिलना चाहिए।
4: देखिए, मेरा ये मानना है कि हमारे देश में 80-85% जो जनसंख्या है वो गरीब मजदूर और किसान वर्ग से आते हैं, और जब पहले तो पेट की लड़ाई है, और अगर मतलब कैंसर जैसी अगर गंभीर बीमारी किसी सामान्य वर्ग के परिवार के व्यक्ति को हो जाए जो, तो बहुत दुख की बात है। और ये समय अगर ऐसा कुछ हो रहा है और कि 2700 की दवाई को आप 27,000 MRP लगा के भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इंसानियत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
0: चलिए, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े, उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि आखिर दवा की कीमतों पर हमारा कानून क्या कहता है, हमारे देश का कानून क्या कहता है। कीमतों पर नियंत्रण के लिए ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 का नियम भी है और इसमें दवाओं की अनावश्यक कीमतों पर लगाम का भी नियम है। आवश्यक दवाओं के दाम की अधिकतम सीमा का निर्धारण सभी ब्रांड्स के औसत मूल्य पर 16% मार्जिन जोड़ने का भी इसमें नियम है। तो गैर अनुसूचित दवाओं की कीमत में अधिकतम बढ़ोतरी 10% तक की जा सकती है। वहीं सरकार के पास किसी भी दवा का दाम नियंत्रित करने का अधिकार भी है। तो आज बात दवा की कीमतों पर हो रही है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूं। डॉक्टर रवि मेहरोत्रा इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है, फॉर्मर CEO हैं इंडियन कैंसर रिसर्च ICMR से, और हमारे साथ डॉक्टर अंशुमन कुमार भी मौजूद हैं, हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अंशुमन, साथ ही साथ इंदिरा जसूजा कैंसर सर्वाइवर भी हैं और जॉइंट सेक्रेटरी इंडियन कैंसर सोसाइटी से भी हैं, साथ ही साथ डॉक्टर वरांची शाह फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड नेशनल स्पोक्स पर्सन IDMA इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत करूंगी सबसे पहले एक बेसिक सा सवाल जो कि आपसे करना चाहूंगी इंदिरा जी, क्योंकि आप खुद एक कैंसर सर्वाइवर हैं, सोसाइटी के साथ जुड़ी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर पहला रिएक्शन आपका, आपकी पहली राय?
5: नहीं, मैं समझी नहीं आपका क्वेश्चन।
0: सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, दो याचिकाएं कोर्ट के पास गई, दोनों याचिकाओं को कोर्ट ने सुना, उस पर टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि 2700 की दवा 27,000 में बेच दी जाती, यानी कितनी ज्यादा महंगी कैंसर की दवाएं बेची जा रही है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, कहा है कि लूट है। इस पर आपकी राय पहली?
5: बिल्कुल ठीक है, बिकॉज यू सी क्या है, एक तो मिडिल मैन भी खाते हैं, एक जो अस्पतालों में फार्मेसी से अगर आप कोई दवाई लो तो उसमें अस्पतालों का भी एक तरह से उनका भी एक प्रॉफिट होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि हमको फिक्स करनी चाहिए दवाई कि अस्पताल से कितने कितने पैसों में दवाई जाएगी हर हर पॉइंट के ऊपर, क्योंकि मिडल मैन ने भी खाना है, फार्मेसिस्ट ने भी पैसा लेना है और केमिस्ट ने भी पैसा लेना है। तो सबका जो है प्रॉफिट, वो परसेंटेज हम लोगों को पहले सबसे बतानी चाहिए कि कौन कितना कितना पैसा ले सकता है। उससे ये होगा कि दवाइयों का दाम जो है वो बढ़ेगा नहीं। हमने कई बार देखा है जैसे हम लोग भी पेशेंट्स को दवाई देते हैं, वह हमारा ना एक अस्पतालों के साथ एक हमारा संबंध है। हम उनको बोलते हैं कि हमारे कुछ केमिस्ट है जो हमको 30-40% जो है वो हमको रिडक्शन देते हैं दवाइयों में। तो हम उनको बोलते हैं कि हम वहां से दवाई ला के आपको देंगे, क्योंकि वो और हमको अस्पतालों ने ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी हमको अलाउ कर दिया है, क्योंकि हम जो भी एक दो हम केमिस्ट हमने रखे हुए हैं उनसे जितनी भी हमको दवाइयाँ मिलती हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक मिलती हैं। बिकॉज डॉक्टरों को यही मुश्किल होती है कि कहीं स्पूरियस दवाई तो नहीं बाहर से आ रही। तो अब हम इतने सालों से जो दवाइयाँ हम केमिस्ट से ले रहे हैं और डॉक्टर्स हमसे लेते हैं, तो उनको पता है कि ये जो दो केमिस्ट हमने रखे हुए हैं यहाँ पे से जितनी भी दवाइयाँ आती हैं वो ठीक आती हैं। एक बात मैं और भी कहूंगी कि हमारे दिमाग में एक धारणा जो गलत बनी हुई है कि जेनरिक दवाई हमने नहीं लेनी, क्योंकि वो हिंदुस्तान में बनी है वो इतनी इफेक्टिव नहीं है।
0: ठीक
5: तो
0: है।
5: कसूर कुछ हमारा भी है, क्योंकि हम अगर जेनरिक दवाई लेंगे उसकी कीमत कम से कम 1/3 ऑफ द जो बाहर से दवाइयां या फार्मेसी से जो
0: हाँ
5: दवाइयां आती हैं वो आती हैं। तो ये मेरा थोड़ा
0: इंदिरा
5: सा
0: जी, आपने जेनरिक दवाओं की बात कही है और इसको लेकर भी कोर्ट ने कहा है। जेनरिक दवा वाला जवाब मैं डॉक्टर अंशुमन से बाद में लूंगी, क्योंकि बहुत सारे मरीजों ने ये शिकायत भी की है कि बार बार कहने के बावजूद हमें जेनरिक दवाइयां लिख के नहीं दी जाती। उसका क्या प्रोसीजर है, उसका क्या प्रावधान है, क्या प्रेशर डॉक्टर्स पर भी रहता है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन डॉक्टर शाह, मैं आपके पास आना चाहूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर उठाया गया है मिडिलमैन का। सर, जब 2700 की दवा है तो आते आते मरीज तक पहुंचते पहुंचते 27,000 कैसे हो जाती है?
6: मैडम, पहले
5: सब कुछ
6: तो
5: नहीं है,
6: आईडीएमए को इस
5: ये शॉर्ट
6: चर्चा में
5: फॉर्म
6: शामिल
0: बताइए
6: करने के
0: सर।
6: लिए आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। मैडम, इंडिया में जो मेडिसिन मार्केट हो रही है और जो हमारे मिड साइज कंपनीज जो आईडीएमए है में है, वो मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे आर मार्केटिंग थ्रू इथिकल मार्केटिंग, जहां पर इनके जो रिटेल और होलसेल के जो मार्जिन है वो फिक्स होते हैं। यूजुअली हमारी कंपनीज 20% मार्जिन रिटेलर्स को देती है और 10% उनके होलसेलर और सीएनएफ को देती है। तो ऑर्गेनाइज कंपनी से मैडम ये 2700-27,000 वाला होना बहुत कम पॉसिबिलिटी है, मुझे नहीं लग रहा है। ये जो हो रहा है वो शायद क्योंकि जो न्यूज चल रहे हैं उसमें कहीं पर कौन सी ब्रांड है और कौन उसका मैन्युफैक्चरर है ये ध्यान में नहीं आया है, तो मैं स्पेसिफिक कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन पॉसिबिलिटी यही है कि जो प्लेयर्स जेनरिक मेडिसिन इन द सेंस के जो उनका खुद का कोई मार्केटिंग सेटअप नहीं है या स्ट्रक्चर नहीं है, वो कोई भी एमआरपी शायद करते होंगे, लेकिन ऑर्गेनाइज कंपनी से ये होना बहुत रेयर है। काफी ऑन्कोलॉजी के प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑलरेडी प्राइस कंट्रोल है, जहां गवर्नमेंट ने उसका एक एमआरपी फिक्स किया हुआ है, और करीब 40 प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ 2-3 साल पहले एक ट्रेड मार्जिन रेस्टलाइजेशन का भी एक नोटिफिकेशन था, जिसमें हॉस्पिटल्स बाइंग प्राइस से मैक्सिमम 40% मार्कअप करके ही उनको पेशेंट पे देना है। ये भी एक नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ फार्मा एमपीपीए ने दिया हुआ है। तो मुझे वो स्पेसिफिक मेडिसिन्स कौन सी है ये मालूम नहीं है, पर मैं ये मानता हूं कि कोई ऑर्गेनाइज कंपनीज की ये नहीं है।
0: ठीक है। अब डॉक्टर अंशुमन, एक तरफ कैंसर से लड़ता मरीज है, दूसरी तरफ उसके हाथ में जान बचाने की पर्ची है, लेकिन जान की कीमत इतनी ज्यादा है जिसे देखकर मरीज सोचने पर मजबूर हो जाए कि मैं क्या करूं, मैं दवा की दुकान पर जाऊं या मैं पीछे अपना घर देखूं, क्योंकि समय भी कम है। और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जहां पर आप इलाज बीच में रोक नहीं सकते हैं। दोनों सवाल जो इंदिरा जी ने भी कहा है और जो कोर्ट की टिप्पणी है, इस पर आपका जवाब चाहूंगी। जेनरिक दवा से लेकर और क्या वाकई 2700 की दवा 27,000 में बिकती है, क्या मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है? आप खुद एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे पेशेंट्स हैं आपके पास, सर इसको क्लियर कीजिए, बताइए जरा।
7: जी, इसको बिल्कुल डिकोड कर देता हूं, पहले समझने की जरूरत है कहां कहां क्या झोल है। शाह साहब ने हमारे कहा कि अनऑर्गेनाइज कोई कंपनी या फार्मा सेक्टर ने ऐसा किया होगा, ऐसा नहीं है। ऑर्गेनाइज फार्मा सेक्टर पे, और ये मैं आज नहीं कह रहा हूं, मेरे इंटरव्यू का आर्काइव आप उठा ले, 2015-2016 में भी एक मामला उठा था, तब भी मेरे सारे आर्काइव में ही थे कि 2000 रुपए में जो दवा होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास मिल रही है उस पे MRP 18,700 रुपए क्यों रखा गया। सिमिलरली अभी है 2700 से 27,000, ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अगर किसी आप खूंखार शेर को आप खून देंगे और कहेंगे तुम शिकार मत करना, खून तो हम दे रहे हैं, मतलब ये दवा उतर गई होलसेलर के पास या रिटेलर को मिल गई दवा 2700 रुपए में, MRP 27,000 रखने की जरूरत किसने की? अब कहानी यही शुरू होती है कि जब कोई भी कंपनी MRP के लिए मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर में जब अप्लाई करता है कि मैं ये दवा लेके आ रहा हूं, इसलिए पैकेजिंग है और MRP में 27,000 रखना चाहता हूं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के पास है, NPPA उन्हीं का डिविजन है, वो इसको मैक्सिमम रिटेल प्राइस के लिए अलाउ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। उसका रिपरकशन ये हुआ कि अभी 4 साल पहले 492 दवाइयों को, जिसमें कैंसर की काफी दवाइयां थी, हम लोग बहुत समय से इससे लगे हुए थे, उस पर कैपिंग की गई और कहा गया कि एसेंशियल ड्रग्स पे कैप कर दिया, जिसके रिटर्न में मैंने काफी सोशल मीडिया पे इसको डाला था, इंटरव्यू में भी बोला कि एसेंशियल ड्रग्स मतलब बाकी चीजें नॉन एसेंशियल ड्रग्स क्या है, न्यूट्रोसिटिकल्स की बात नहीं करो, जो कैंसर में इलाज में अगर खर्च हो रहा है, दवाइयां लग रही है, सारी दवाइयां एसेंशियल ड्रग्स है, तो ड्रग की MRP निर्धारित करने का तरीका तय किया जाए। तब हमने कहा था, शाह साहब से बिल्कुल सहमति है कि 20% से 40% तक मार्जिन हो, इतनी ज्यादा मार्जिन हो, 10 गुना मार्जिन, कभी कभी 500-600% मार्जिन रखा जा रहा है। ये मार्जिन कहां जा रहा है? आज प्राइवेट हॉस्पिटल कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के फार्मेसी में देखिए, उनका IPD जो पेशेंट है उस पर बिल्कुल इंस्ट्रक्शन है कि दवा बाहर से नहीं ला सकते हैं, आर किया लिया गया नकली दवाइयों का, जिसका मैं समाधान अभी बताता चलूंगा, सब हर चीज का समाधान। उसके बाद उसके मरीज का बिल सिर्फ इन दवाइयों के चक्कर में इतना ज्यादा होता है। आज भारत सरकार का आंकड़ा कह रहा है कि हर साल कितने मरीज इलाज की वजह से बिलो पॉवर्टी लाइन जा रहे हैं, ये भी आंकड़ा है। अब इसके कारण क्या होता है, इन्हीं दवाइयों का, 4 दिन पहले आपने पढ़ा होगा, नकली दवाइयों को काउंटरफिट मेडिसिन का इतना बड़ा रैकेट पकड़ा गया कि दवाइयां महंगी है, नकली बनाओ, स्पूरियस बनाओ, एक्सपायरी डेट चेंज करो और पैसे कमाओ, क्योंकि MRP लिखने की छूट दी गई है। अगर ये सेंट्रली कंट्रोल करें, नंबर 1, नंबर 2 जो बात मैंने कही थी काउंटरफिट मेडिसिन पकड़ने की, दवाइयों का मिसयूज ना हो, उसके लिए QR कोड स्कैनिंग, आज हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, आप QR कोड स्कैन करो, देखो इसका लैंडिंग प्राइस, मतलब रिटेलर के पास पहुंचने में दवा कितने की, आपको पता रहेगा, और MRP इसका 20% से ऊपर ना हो, दवाइयां बेवजह ना दी जाएगी लोगों को, मुनाफा खोरी नहीं होगी, काउंटरफिट मेडिसिन नहीं होगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरे कंट्री की MRP को कंट्रोल कर सकती है। इतना सिंपल फॉर्मूला है। आज सुप्रीम कोर्ट को पता चला, आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, आपको लगता है कि गवर्नमेंट से इसके बारे में कोई सोल्यूशन दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं दिया जाएगा।
0: नहीं, वो तो दो याचिकाएं गई ना, इसीलिए कोर्ट ने इसको लेकर टिप्पणी की। बिल्कुल, याचिका नहीं जाएगी तो टिप्पणी नहीं होगी। जल्दी से सर, मैं डॉक्टर मेहरोत्रा के पास जाऊंगी। इंदिरा जी ने जो एक और अहम सवाल किया था, हाँ आप अपनी बात भी पूरी कीजिएगा, लेकिन उस पर भी रख दीजिए, क्या जेनरिक दवा लिखे या ना लिखे, क्या डॉक्टर्स के पास मजबूरी होती है पर्टिकुलर दवा लिखने की, क्या जेनरिक आम दवाएं डॉक्टर नहीं लिखते हैं क्या?
7: जेनरिक दवा का मतलब आप समझिए, डॉक्टर पे इंस्ट्रक्शन है कि डॉसिटेक्सल फॉर एग्जांपल कीमोथेरेपी करना है, पैक्लिटेक्सल, मतलब आप क्या है इस दवा के अंदर ये लिख दो, ब्रांड नेम ना लिखो। अब क्या है, फार्मेसी पे बैठा जो व्यक्ति है, वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मेसी चल रही है, उसको इंस्ट्रक्शन है कि इसी कंपनी की दवा तुमको देनी है, डॉक्टर कुछ भी लिखे, वो कंपोजिशन लिखेगा, तुम यही दो, ये तो वही होगा जो उसके अंदर रखा हुआ, वही दवा लिखी जाएगी। और जेनरिक दवाइयां जब बायोइक्विवेलेंस स्टैंडर्ड मिला के दी जा रही है, तो उसमें क्या नुकसान है भाई, वो दवा सस्ती मिल रही है, आप उसको दीजिए।
0: ठीक है, चलिए डॉक्टर मेहरोत्रा, क्या जान की कीमत मरीज की मजबूरी से तय होती है? कोर्ट की टिप्पणी तो यही बता रही है।
5: साउंड क्यों नहीं आ रहा
0: डॉक्टर साहब? ऑडियो म्यूट है डॉक्टर साहब, सुन नहीं पा रहे आपको, ऑडियो म्यूट है।
8: आई एम सॉरी। कोर्ट की ये टिप्पणी कि जान की कीमत क्या उसके दवा से ज्यादा हो सकती है, ये तो मतलब सेल्फ एविडेंट है, नो ब्रेनर है। जान तो सबसे जरूरी है, जान गई तो क्या बोलते हैं, जान गई तो पूरी आपका अस्तित्व ही खत्म हो गया, और एक जान से उसका पूरा परिवार उस पर डिपेंड होता है, उसका एम्प्लॉयमेंट डिपेंड होता है, बच्चे होते हैं, माँ बाप होते हैं, तो इसमें तो कोई आर्गुमेंट होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है कि जान जो है वो सर्वप्रिय है और नंबर वन पे आती है। नंबर दो जो आपने कहा कि क्या ऐसी दवाओं के दाम हों कि वो दाम सुनते ही जान निकल जाए, ये भी बिल्कुल सेल्फ एविडेंट है कि दाम ऐसे होने चाहिए कि कम से कम वो पेशेंट अफोर्ड कर पाए। अब समस्या ये है कि जैसे भी थोड़ी देर पहले हमारे मित्र डॉक्टर साहब बता रहे थे, डॉक्टर अंशवान जी, कि ये आंकड़े हैं कि 80% लोग जो हैं वो दवाएं अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हिंदुस्तान में, जो बहुत महंगी महंगी होती हैं, या सर्जरी महंगी होती है, या कैंसर के इलाज महंगा होता है। तो अगर ये देखा गया कि इंडिविजुअल बैंकरप्सी यानी कि दिवालिया होने का जो सबसे अहम कारण है, इसको बोलते हैं एब्जेक्ट पेन्यूरी में जाना या बिल्कुल कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हो जाना फाइनेंशियल, वो कैंसर का इलाज है। बहुत छोटी मात्रा में हमारे यहाँ देश में हमारे लोग जो है वो इंश्योर्ड है, चाहे वो प्राइवेट इंश्योरेंस हो, सरकारी हो, या कंपनी द्वारा प्रोवाइडेड हो। धीमे धीमे करके वो नंबर बढ़ रहा है, परंतु आज भी अधिकांश लोग जो है वो अनइंश्योर्ड है। अभी हाल में ही एक सरकार ने पिछले कुछ सालों से आयुष्मान भारत का जो स्कीम शुरू करी है, इसमें कि 30% जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, 30% पॉपुलेशन वो कवर होती है, और फिलहाल अभी बहुत ही रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही या कुछ महीने पहले ही जो 70 के ऊपर लोग हैं जो किसी और इंश्योरेंस से कवर्ड नहीं है उनको भी कवर करा है। तो उस तरीके से जो पैकेज बनाए जाते हैं वो भी एक लिमिट के अंदर रखे जाते हैं। तो अगर दवाएं बहुत महंगी हो जाएंगी तो ये जो आयुष्मान भारत का स्कीम है ये भी कामयाब नहीं होगी। अभी हमारी कुछ दिनों पहले इंश्योरेंस वालों से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हमें सब हेल्थ इंश्योरेंस करने में बहुत नुकसान होता है, क्योंकि ज्यादातर इतनी महंगी महंगी दवाएं हैं, इतना महंगे महंगे इलाज हो गए हैं खासतौर से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, कि हम बाकी चीजों को कवर नहीं कर पाते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस में हमारा घाटा होता है। तो इसमें तो कोई आर्गुमेंट है ही नहीं कि जो दवाएं होनी चाहिए वो कम से कम मरीज के, पहली बात तो जरूरत होनी चाहिए, हर दवा को हर मरीज को जरूरत नहीं है, वो अप्रोप्रिएट दवा हर जगह पाई जाए। बायोसिमिलर्स या जेनरिक की आपने बात करी, मेरे समझ से इससे कोई इंपॉर्टेंट चीज हो ही नहीं सकती है। और तीसरी बात, पेशेंट से ये ना कहा जाए कि आपको हमारे ही फार्मेसी से दवा लेनी है, खासतौर से जब वो अर्जेंट मामला नहीं है, फौरन नहीं देनी है, या कोल्ड चेन का मामला नहीं है, वो पेशेंट को पूरी आजादी होनी चाहिए किसी भी हॉस्पिटल में ये किसी भी जो रिकॉग्नाइज फार्मेसी है वहां से खरीद सके।
0: लेकिन सर ये कितना ग्राउंड पर ये कितना वर्क करता है आप ये बताइए।
8: कुछ जगह करता
0: अभी,
8: है ज्यादा।
0: अभी डॉक्टर अंशुमन ने पूरा नेक्सस बता ही दिया, आप जैसे डॉक्टर्स अगर लिख भी देंगे तो वहां पर फार्मासिस्ट उसको देगा ही नहीं।
8: ये बात तो देखिए काफी हद तक सही है, मैं अंशुमन जी से पूरा एग्री करता हूँ। और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, पहली बात तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहां पर जो फार्मेसी, चूंकि उसका ही एक तरीके से वो प्रॉफिट सेंटर होता है, वो आसानी से तो नहीं होगा।
0: ठीक है,
8: अब इसमें इसमें मेरे ख्याल से हमारे सरकार की भी और एनपीपीए जो ऑर्गेनाइजेशन बताया गया, शाहजी निक पॉस के रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं, कि अगर ये क्लियर गाइडलाइंस हो, और मुझे अंशुमन जी का ये आइडिया बहुत पसंद आया, क्योंकि अब हर जगह तो क्यू आर कोड हो गए हैं, अब आप जो पेमेंट करते हैं ऑनलाइन वो भी क्यूआर कोड से करते हैं, तो अगर आप उस पे देखेंगे कि वो चेन ऑफ लाइन क्या, कितने मैन्युफैक्चरर ने बनाया, कितने रिटेलर ने लिया, अगर ये सामने होगा और ये हो कि अगर मरीज ने उसकी रसीद दिखाई कि उस पे 40% से या 30% से ऊपर है, तो वो कम से कम एक एविडेंस हो जाता है। ये आइडिया बहुत अच्छा है और बहुत दिनों से बात हो रही है, पर ऑब्वियसली अभी तक तो अमल में नहीं।
0: एक बार डॉक्टर शाह इस पर मैं आपसे भी एक रिएक्शन चाहूंगी, डॉक्टर अंशुमन ने, डॉक्टर मेहरोत्रा ने, दोनों ने इस पर बात की है।
6: देखिए आईडीएमए की तरफ से और बाकी जो सीरियस इंडस्ट्री एसोसिएशन है उनकी तरफ से ऑलरेडी गवर्नमेंट के साथ ट्रेड मार्जिन रेशनलाइजेशन का डिस्कशन चल रहा है, और गवर्नमेंट भी एक सीरियस लेवल पे इसको कंसिडर कर रही है। तो आई थिंक ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है जो गवर्नमेंट लेने जा रही है, उनके साथ ये चल रहा है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि क्यूआर कोड भी पॉसिबल है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि मैं ये 2700 का 27000 को कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये बात भी आपको कह रहा हूं कि आपको अगर अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन वगैरह चाहिए तो देर विल बी अ कॉस्ट टू इट, और एक रिजनेबल प्राइस भी हमें देनी पड़ेगी और प्रॉपर सप्लाई चेन से लेनी पड़ेगी। कहीं जगह पर अगेन मैं बोल रहा हूं कि मुझे नहीं मालूम है ये पर्टिकुलर किस कौन सी मॉलिक्यूल का है और कौन सी प्रोडक्ट का है, लेकिन कहीं ये बहुत सस्ता लेने में स्पूरियस मेडिसिन भी सिस्टम में घुस जाती है और जो ठीक मेडिसिन नहीं है वो भी आ जाती है।
0: सर
6: तो
0: सर
6: ये सब का
0: एक
6: ध्यान
0: सेकंड डॉक्टर
6: रखें।
0: साहब, एक सेकंड, बिल्कुल सर, मैं इस पर एक और क्लैरिटी आपसे चाहूंगी। आपने कहा कि अच्छी क्वालिटी और सही तरह की दवाएं लेनी होंगी और तो फिर जाहिर सी बात है कि उसमें रेट वेरी करेंगे। सर एक बात बताइए, सिंपल सी बात है, अगर डॉक्टर अंशुमन हमारे साथ हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, अगर मैं एक पेशेंट हूं, मैं कहीं जाके दवा ले रही हूं, तो मुझे जो मेरा डॉक्टर लिख के देगा मैं वही दवा लूंगी ना। मेरा डॉक्टर अगर जेनरिक दवा लिख के दे रहा है, उनको मेरी कंडीशन पता है कैसी है, तो जाहिर सी बात है कि वो मेरे हिसाब से मेरी, हम नॉर्मल मरीज जो अफोर्ड कर पाए, डॉक्टर जान जाता है इतने में कि वो क्या वाकई वो अफोर्ड कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, तो वही वही दवा तो हम जाके लेंगे। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि सस्ती दवाएं इतनी इफेक्टिव नहीं और हमें महंगी दवाओं पर जाना चाहिए?
6: नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं मैडम। इसमें सस्ती महंगी का सवाल इसलिए नहीं है कि एमआरपी जो है उन्होंने शायद जो स्ट्रक्चर्ड कंपनीज हैं, जो मेजर कंपनीज है, उसके हिसाब से रखी है और कहीं ना कहीं सप्लाई चेन से यहाँ सस्ती पहुंची है। और वो क्या है मुझे नहीं मालूम है। देखिए, हम एज अ पेशेंट कहे या कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी कहे या पूरा कंट्री कहे, हमें डॉक्टर पे तो डिपेंड रहना ही पड़ेगा। और किसी भी पेशेंट के, मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में ऐसे भी कोई डॉक्टर होंगे जो किसी फाइनेंशियल्स लेने के लिए कोई पेशेंट को मिसगाइड करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उनका काम है और उनका फोकस होता है पेशेंट। अगर वो पेशेंट को ट्रीट नहीं करेंगे तो पेशेंट भी उनके पास नहीं आएंगे। तो इसमें ऐसा मैं कुछ डॉक्टर का कोई नेगेटिव रोल है या ऐसा मैं नहीं मान रहा हूं।
0: ठीक
6: मैंने
0: है,
6: जैसे आपको बताया कि पूरा सिस्टम में कुछ गैप्स अगर भी है, तो जैसे ट्रेड मार्जिन रेस्टलाइजेशन वगैरह है, उसके ऊपर काम ऑलरेडी हो रहा है और गवर्नमेंट में 40 प्रोडक्ट्स के लिए ऑलरेडी मार्कअप हॉस्पिटल्स के लिए कर गए हैं। इसके ज्यादा भी हम कर सकते हैं, सॉल्यूशंस है। मैं सिर्फ ये स्पेसिफिक केस में कमेंट नहीं करना चाहता, मुझे नहीं मालूम है कि कौन सा मॉलिक्यूल और किस प्रोडक्ट है कि ये बात हो रही थी।
0: जी जी डॉक्टर अंशुमन,
7: जी
0: कुछ कहना चाह
7: बिल्कुल,
0: रहे थे आप?
7: देखिए इसको इसको बिल्कुल इसको इसको क्लियर करके चले, अदरवाइज पब्लिक समझ नहीं पाएगी कि मामला है कहाँ, नकली दवा, असली दवा और अच्छी दवा बुरी दवा हो जाएगी। जेनरिक मेडिसिन एक इशू है, जेनरिक मेडिसिन सस्ती है, जेनरिक मेडिसिन अवेलेबल होनी चाहिए, लेकिन ये सच है कि जेनरिक मेडिसिन जितनी प्रोडक्शन है कंट्री की वो फुलफिल नहीं कर रही हमारे रिक्वायरमेंट को। एक तो ये, चलिए बात क्लियर हो गई, जेनरिक मेडिसिन को अलग करें। अब मैं बात करता हूं उसकी, मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन अब मजबूरी हो गई है, सिप्ला, फाइजर, रॉस, जो जो कैंसर की अच्छी कंपनी, मैं उसकी बात कह रहा हूं, उसमें दवा की कीमत लिखी हुई है 18,000 या डिस्कशन में चल रहा 27,000, एग्जाम्पल रख लें 27,000। यही दवा डायरेक्टली होलसेलर से जब लेके आते हैं या ये दवा अस्पताल की फार्मेसी पर रखी जा रही है 2700 रुपए की, मतलब कंपनी 2700 में वही अच्छी दवा अच्छे सप्लाई चेन को मेंटेन करके पहुंचा चुकी है 2700 में। तो एमआरपी 27,000 रखी क्यों गई थी? दवा की क्वालिटी मेंटेन्ड है,
0: बिल्कुल
7: कंपनी इंश्योर कर रही है कि दवा हमारी है, बैच नंबर हमारे, जो कि प्योर कोर्ट से जो मैं कह रहा हूँ इसका भी सोल्यूशन है, आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल दवा है, 2700 में मिल सकती थी लेकिन उससे 27,000 एमआरपी रखी गई, कहानी यहाँ है।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, यही कोर्ट ने भी कहा है कि भारी अंतर है कीमतों में और ऐसा क्यों है, और संबंधित अधिकारियों से जवाब भी मांगा। यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल एक ब्रेक, तुरंत लौटते हैं।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: की बार दवा कीमतों पर वार, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए इसी को लेकर अपनी बात रखी और अगली सुनवाई अब कहा है कि संबंधित अधिकारी संबंधित विभाग जो है इस पर अपनी बात रखे। दरअसल दो याचिकाएं कोर्ट में दाखिल की गई थी जिसके बाद कोर्ट की सख्त टिप्पणी आई है और टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट ने इसे दिन दिहाड़े डकैती का मामला करार दिया। इंदिरा जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी, इस पर जो एक नेक्सस चल रहा है, जो अभी हाल फिलहाल में रीइंबर्समेंट वाली बात डॉक्टर मेहरोत्रा ने उठाई थी उस पर बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ इंदिरा जी, नरपिशाची आदमखोर से कई गुना ज्यादा भयानक शब्द है जिसका मतलब है इंसानों का शिकार करना। सीधे तौर पर इंदिरा जी, कोर्ट की टिप्पणी के पीछे यही बात है कि आप खेल रहे हैं एक इंसान की जान से, ये हमारे अधिकारों का भी हनन है।
1: यस, वो तो है ही, बिल्कुल। जो मरीज है वो उसके उसका हमको पहले सबसे पहले देखना चाहिए कैसा मरीज है, उसके मुताबिक ही डॉक्टर को दवाई को लिख के देना चाहिए। क्योंकि जैसे ब्रेस्ट कैंसर होता है, उसके बाद जो दवाइयां दी जाती हैं ऑपरेशन होने के बाद, उसमें कई दवाइयां तो हैं जो बाहर से आती हैं और बहुत महंगी हैं। तो अगर तो आप इंश्योरेंस, आप उसके पास इंश्योरेंस है किसी के पास, या कोई बहुत अमीर है, तो उनको आप बाहर की दवाइयों को ही लिख के दीजिए, और जो बाकी जो गरीब लोग हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी दवाई जो है वो एक एक रुपए की भी गोली है। तो आप डॉक्टरों को ये ख्याल करना चाहिए कि अगला वो अफोर्ड कर सकता है कि नहीं वो अफोर्ड कर सकता, उसके मुताबिक ही दवाई लिख के देनी चाहिए। एक मुद्दा मैं और भी उठाऊंगी। अब देखिए, हमारा हिंदुस्तान एक है, मैंने कई बार देखा है कि जो दवाइयां कश्मीर में दी जाती हैं, दे आर मोर एक्सपेंसिव देन दे आर इन दिल्ली। दिल्ली में क्यों वो सस्ती हैं और वही दवाइयां कश्मीर में जाके ज्यादा महंगी हो गई हैं? इसके बारे में भी आई थिंक हमको सोचना चाहिए, जबकि एक ही देश है और जगह जगह पे जो दवाइयां मिलती हैं, क्यों जो है, क्या GST है या ISD, क्या किस कारण उसकी दवाई की प्राइस ज्यादा हो गई है? उसके लिए भी हमको देखना चाहिए कि सरकार को देखना चाहिए कि वो ठीक तरह से उसके ऊपर कीमत लगाए।
0: इंदिरा जी आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, मैं चाहूंगी डॉक्टर शाह अगर आप इस पे थोड़ी सी क्लैरिटी दे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप नियम इसके बारे में बता सके।
2: नहीं मैडम, एज पर ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर मेडिसिन के पूरे इंडिया में एक ही MRP होती है, तो चाहे कश्मीर हो चाहे कन्याकुमारी हो, MRP जो होती है अक्रॉस इंडिया सेम रहती है एक पर्टिकुलर ब्रांड की।
0: इंदिरा जी, ऑलमोस्ट सेम रहती है, डॉक्टर शाह बता रहे हैं।
1: मेरे को बिल्कुल डॉक्टर शाह की एक भी बात सुनाई नहीं दे रही।
0: डॉक्टर शाह का ये कहना है कि एज पर जो जितने भी नियम है, नियमों के हिसाब से पूरे देश में एक ही कीमत रहती है दवाओं की।
1: है नहीं ऐसी बात, वो हम सोचते हैं।
0: डॉक्टर अंशुमन, इस पर आप कोई बात रखना चाहेंगे?
1: आप कश्मीर में जाके पूछे, वहां के लोग सब रो रहे हैं, वो कहते हैं कि प्राइसेस ज्यादा है।
0: ठीक है, एक सेकंड डॉक्टर अंशुमन।
3: बिल्कुल डॉक्टर शाह की टिप्पणी से बिल्कुल मैं सहमत हूँ। MRP कंपनी की सेम लिखी जाती है,
0: ठीक है।
3: कुछ दवाइयां जो पेटेंट लाइसेंस से बाहर आ गई, दिल्ली क्योंकि एक मेजर मेडिकल हब है, उस पर डिस्काउंट रिटेलर या होलसेलर अपनी तरफ से देता है, दवाइयां सस्ती मिलती है। कश्मीर की मेन प्रॉब्लम क्या है? काउंटरफिट मेडिसिन। मैं कश्मीर जाता हूँ मरीजों को देखने के लिए, नकली दवाइयां बहुत ज्यादा है मार्केट में, कश्मीर के मार्केट में। कुछ ही ऐसी फार्मेसी है जिसपे लोग ट्रस्ट करते हैं, जिनका सप्लाई चेन या तो डायरेक्टली कंपनी से या दिल्ली से दवा मंगवाते हैं, उसपे लोग ट्रस्ट करते हैं। उनके पास क्योंकि इतना मार्जिन नहीं बचता है, इसलिए डिस्काउंट नहीं दे पाते हैं, तो वहां पे दवाइयां MRP और कभी कभी स्टॉक कम हो जाए तो उससे ज्यादा भी ले लेते हैं ये लोग, इसलिए कश्मीर में दवाइयां महंगी लगती है, लेकिन रिटेल प्राइस सेम होगा, अलग नहीं।
0: डॉक्टर मेहरोत्रा, एक बार आपके पास आना चाहूंगी, कोर्ट ने यह भी कहा है कि अस्पताल जो है वो महंगी कीमत पर दवा ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, फिर सरकारी योजना के तहत इसका रीइंबर्समेंट हो जाता है। आपने भी रीइंबर्समेंट का मुद्दा उठाया था।
4: आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, देखिए उनकी भी अपनी समस्याएं होंगी, और वो ज्यादातर चूंकि बल्क में दवा लेते हैं, उनको जैसे कि इंदिरा जी ने भी बताया कि इंडियन कैंसर सोसाइटी जिसको वो रिप्रेजेंट करती हैं, वो उनको 30-40% पैसे कम मिल लगते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनको साल में या महीने में 100 वायल उठाने हैं, 500 वायल उठाने हैं। तो वो जो जैसे डॉक्टर साहब अंशुमन ने भी बोला कि क्योंकि वहां पर वॉल्यूम ज्यादा है, खासतौर से जैसे NCR में है, तो वो डिस्काउंट आगे पास ऑन कर देते हैं। और रही बात इसकी कि आप कम पैसे में लें और ज्यादा पैसे में बेचें, ये तो देखिए होता है, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। और इसीलिए मैंने बार बार बोल रहा हूं कि अगर एक ट्रेल अकाउंटेबिलिटी हो कि भाई ये दवा 27, मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे भी नहीं मालूम है दवा का नाम क्या है, 2700 रुपए की दवा थी, उस पर मैक्सिमम 40% बढ़ना चाहिए, तो अमूमन 4000 के अंदर ही आनी चाहिए। अगर ये क्लैरिटी हो और उस पे QR कोड से या उसके साथ पे कागज जो इंसर्ट आते हैं जो कोई पढ़ता नहीं है अमूमन, अगर उस पे लिखा हो तो ये समस्या आएगी नहीं। तो अगर हमारे NPPA है, हमारे जो IDMA या इस तरीके की बॉडीज हैं जो कि रेगुलेशन करती हैं और देखती हैं कि किस तरीके से प्राइसिंग करी जाए, तो ये प्रॉब्लम मेरे समझ से पहले से बहुत कम हो जाएगी।
0: ठीक है इंदिरा जी,
4: दूसरी बात ये है,
0: हाँ चलिए सर अपनी बात रख लीजिए,
4: बस हम खत्म ये करना चाह रहे थे कि NPPA जो है वो गवर्नमेंट की बॉडी है और जो इनिशियली कोई भी मैन्युफैक्चर आता है तो वो बताता है हम इतने पैसे में इसकी NRP रखेंगे। तो NPPA का जो काम है वो ये नोटिस करना है, रेगुलेट करना है कि उसके बाद जो बढ़ोतरी होती, मान लो 100 रुपए की दवा है वो बढ़ के 110 रुपए होगी, 120 रुपए होगी, ऐसा नहीं है कि थोड़ा से बढ़ के 500 हो जाएगी, पर जो इनिशियल रेगुलेशन है कि कितने पे रखा जाए MRP, ये NPPA अगर थोड़ा उस पर ध्यान दें और उस पर समझ के रखें इससे आगे नहीं होगी तो मेरे ख्याल से आगे जाके भी ये प्रॉब्लम्स कम हो जाएगी।
0: इंदिरा जी, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसमें मरीज के अधिकारों का भी ख्याल रखा गया है, जिसमें तमाम नियमों को पालन करने के लिए, यहाँ अपनी टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, इसका सीधे तौर पर मतलब ये कि उसका उल्लंघन हो रहा है। मैम अगर आप बता पाए, आपने खुद अपना एक एग्जाम्पल दिया जब हमने चर्चा की शुरुआत की थी कि आप भी सस्ती दवाएं लेती हैं और बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनको सस्ती दवाएं दी जाती हैं, फिर ये प्राइस कौन बढ़ाता है?
1: ये तो मेरा बहुत मुश्किल कह रहा है, मेरे को लगता है कि जो केमिस्ट है वो भी ज्यादा प्राइस करते हैं और जो मिडिल मैन एजेंट्स जो होते हैं, एजेंट्स मैं कम से कम ये सोचती हूँ कि सारे जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं सभी थोड़ी थोड़ी प्राइस बढ़ाते जाते हैं।
0: ठीक है, साफ शब्दों में समझाया जाए तो आपका ये कहना है कि सब अपना कट रखते हैं।
1: सब अपना कट रखते हैं।
0: डॉक्टर अंशुमन,
3: देखिए चीजों को हम मिक्स ना करें, इसमें कोई प्राइस बढ़ाने वाला नहीं बैठा है। डॉक्टर मल्होत्रा ने बिल्कुल क्लियर कर कहा कि एक फॉर एग्जांपल मैंने दवा कंपनी बनाई, मैं आज दवा लेके जा रहा हूं, इसको मुझे मार्केट में लाना है, मैंने लैंडिंग प्राइस बोलते हैं कि मुझे बनाने में, पैकिंग करने में और दुकान तक उतार देने में मेरा कितना खर्चा होगा मेरी कंपनी का, मैंने वहां पे NPPA को आइडिया दिया कि मैं इस दवा को 2700 रुपए में उतार सकूंगा, लेकिन कागज में लिखा हुआ है, डब्बे पे मैंने लिख रखा है MRP 27,000 में रखना चाहता हूं। ऑब्वियसली मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट होगा ना कि मेरी दवा ज्यादा बिकेगी अस्पतालों में, डॉक्टर ज्यादा लिखेंगे क्योंकि इस पे मार्जिन है, मतलब अस्पताल की फार्मेसी दवा होलसेलर से खरीद लेगी 2700 रुपए में और 27,000 MRP होने के बजाय, सॉरी 20% प्रॉफिट रखने के बजाय इस पे 27,000 मैक्सिमम रिटेल प्राइस रखा गया है, तो ये बीच का पैसा कहां जाएगा, किसके पास जाएगा? जो डॉक्टर उस दवा को लिखेगा और जिस अस्पताल की फार्मेसी से दवा बिकेगी उस अस्पताल के बिजनेस प्रमोटर को पैसा जाएगा, तो दवा निश्चित जल्दी चलेगी, फिर वही दवा CGHS और जितने गवर्नमेंट बेनिफिशरी हैं, इंश्योरेंस कंपनी बेनिफिशरी हैं, उनको लिखी जाएगी और ये सारी कंपनी उनको रिटर्न करेंगे, रिइंबर्स करेंगे, तो पैसा भी मिला। तो आप बताइए कि कौन, अगर आप अलाउ कर देंगे तो NPPA को वही रोक देना चाहिए कि जब लैंडिंग प्राइस आपका 2700 रुपए है तो 27,000 MRP क्यों लिख लाए हो आप, 3200 रुपए करो, 2700 खर्चा हो रहा है आपका, 3200 MRP लिखो, इससे ज्यादा आपको ड्रग हैंडलिंग में फार्मेसी को पैसा नहीं मिलेगा।
0: डॉक्टर अंशुमन,
3: रोक वहां लगानी है।
0: डॉक्टर अंशुमन, एक एक हमारे आम दर्शकों के लिए, सबके लिए जो भी इस शो को देख रहे हो।

0: सच में कई दवाइयां बिल्कुल सस्ती उपलब्ध है, एक रुपए की गोली है उसमें। दूसरा, जिस प्रेस्क्रिप्शन में सबसे ज्यादा मारामारी हो रही है आईपीडी पेशेंट, मतलब मरीज अस्पताल के अंदर भर्ती है और ये जगह नहीं हो रहा है प्राइवेट अस्पताल में, सरकारी अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिल रही है तो मरीज जाके बाहर से दवा खाने से दवा खिला रहा है, और उस पे एमआरपी में जो लूट चल रहा है, इसी लूट को कम करने के लिए पिछले 15-17 साल से हम लोग भिड़े हुए हैं कि एमआरपी का खेल बंद करो भाई, ट्रांसपेरेंसी करो लैंडिंग प्राइस पे, ट्रांसपेरेंसी करो प्रॉफिट मार्जिन में, और क्यूआर कोड से स्कैनिंग करो। कहीं नहीं सकता है अस्पताल का जो लाला होता है, एमबीए किया हुआ जो अस्पताल चला रहा होता है, वो कह नहीं सकता है नकली दवाई है बाहर से लाए हम नहीं चलाएंगे, क्यूआर कोड स्कैन करके देख लेगा मरीज की दवा ओरिजिनल है, ओरिजिनल कंपनी का बैच नंबर लगा हुआ सब कुछ है, नकली कैसे कह रहे हो। ये ट्रांसपेरेंसी जरूरत है, अदरवाइज आपको बताओ इंडिपेंडेंट इंडिया का लार्जेस्ट स्कैम है हेल्थ केयर स्कैम, इवन फ्रॉडर स्कैम, दिस स्कैम, दैट स्कैम, 2G 5G सब भूल जाओगे अगर सच में हेल्थ केयर स्कैम का आपको अंदाजा लग जाए, इतना बड़ा स्कैम चल रहा है।
1: डॉक्टर मेहरोत्रा, अब इसको रोकेगा कौन? कोर्ट ने भी जवाब तलब किया है संबंधित अधिकारियों से, विभागों से, कौन रोकेगा, किस तरीके से रोका जाएगा? और अगर डॉक्टर अंशुमन यहाँ कह रहे हैं कि वो भी लगातार इसको लेकर आवाज उठा रहे हैं, तो फिर अभी तक सुनी क्यों नहीं जाती है?
2: इसका तो जवाब आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, एक पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, जो कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे यहाँ रूल्स तो बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं हिंदुस्तान में, उसका इम्प्लीमेंटेशन होने में कितनी समस्याएं होती हैं, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप देखें कि एनपीपीए है या गवर्नमेंट के और बॉडीज हैं जो कि इस तरीके की चीजों को रेगुलेट करते, जिनका काम है रेगुलेट करना, अगर फार्मेसी के पास आप चले जाओ, आपके घर के पड़ोस में भी हर हर दुकान हर बाजार में एक फार्मेसी है, उसमें कितने फार्मेसिस्ट जो है क्वालिफाइड है, एक फार्मेसिस्ट जो है वो 10 जगह उसका लाइसेंस लगा हुआ है। ये जो प्रॉब्लम्स हैं हिंदुस्तान की, देखिए उसको हम लोग नजरअंदाज तो कर नहीं सकते। तो अच्छा, तीसरी बात जो प्राइवेट हॉस्पिटल में बात हुई, अभी बात करी अंशुमन जी ने कि जो हमारे जो MBA बैठे हुए हैं या ओनर्स बैठे हैं उनको भी प्रॉफिट चाहिए। सरकारी अस्पतालों में ज्यादातर दवाएं जो अब मिलना पहले से बेहतर हो गई हैं, बट कहीं जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे आपका, अगर मैं एक सेंटेंस में जवाब दूं, ये एक सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कहना कि सिर्फ सरकार करेगी वो भी मुश्किल है, पुलिस करेगी वो भी मुश्किल है, ये तो मेरे ख्याल से मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट को और फार्मास्यूटिकल कंपनीज को साथ में बैठ के डिसाइड करना है कि कैसे इस तरह, क्योंकि ये प्रॉब्लम दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है।
1: बिल्कुल।
2: अभी हाल में आपने सुना होगा एक बड़ा स्कैम हुआ था कि चंडीगढ़ में एक इंसान रीफिल, बैंगलोर में रीफिल कर करके वो दवाई दे रहे थे नकली, और करोड़ों के रुपए वो पकड़े गए।
1: सर, हमने कोविड समय में भी देखी थी कि कौन सी दवा, मैं डॉक्टर अंशुमन या डॉक्टर मेहरोत्रा आपको याद होगा वो कौन सी दवा थी जो लाखों में बिकी, वो देखा था हमने। तो मतलब कुल मिलाकर ये है कि जब तक सुप्रीम डंडा नहीं पड़ेगा तब तक कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा और ना ही उसका पालन करेगा। अब जवाबदेही संबंधित विभागों की है, 28 तारीख को वापस से कोर्ट में उन्हें पहुंचना है, अपना जवाब देना है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ।

0: क्या बृहस्पति की दृष्टि सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है? क्या बृहस्पति की दृष्टि से कुंडली के ग्रहों की अशुभता कम हो जाती है? क्या बृहस्पति की दृष्टि से मंगल दोष समाप्त हो जाता है? क्या है बृहस्पति की दृष्टि का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, कुछ दिल को छू जाती। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी

0: पर है असर। जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: क्या बृहस्पति की दृष्टि सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है? क्या बृहस्पति की दृष्टि से कुंडली के ग्रहों की अशुभता कम हो जाती है? क्या बृहस्पति की दृष्टि से मंगल दोष समाप्त हो जाता है? क्या है बृहस्पति की दृष्टि का रहस्य? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
3: गुड न्यूज, जापान में चल रहे एशियन गेम्स में वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाने वाली मीराबाई चानू से जीएनटी की एक्सक्लूसिव बातचीत हम आपको दिखाते हैं।
4: सो एशियन गेम्स में मीराबाई चानू ने कमाल कर दिया है, क्योंकि जो 28 साल का सूखा था, पिछले 28 साल से विमेंस कैटेगरी में हम एक मेडल की तलाश में थे। कर्णम मनेश्वरी ने 1998 में ये कारनामा किया था और हमें अब लग गया एक मेडल पाने में। 28 साल मीरा, आपने ये जो 28 साल का सूखा खत्म किया है, सबसे पहले तो आप इसके बारे में बताइए, क्योंकि आपने 2014 में शुरुआत की थी एशियन गेम्स की और 2026 में जाके आपको ये मेडल हासिल हुआ है।
5: सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ ये मेडल से, कि हमने इतना सालों से, मतलब जब से मैंने स्पोर्ट्स को, वेटलिफ्टिंग को शुरू किया था, तब से ही बोल सकते हैं कि मुझे एशियन गेम्स में मेडल चाहिए। और हर मैंने 2014 में सबसे पहला मेरा गेम्स एशियन गेम्स था, तो इसमें तो पता नहीं चला था कि क्या करना है क्या नहीं है, और परफॉर्मेंस भी कम थे, तो ऐसे ही आते गया, तो कुछ ना कुछ एशियन गेम्स में हो रहा था, तो डाउट भी था क्या हो रही है, वो सब समझ में भी नहीं आ रहा था, पर मन में तो ऐसा था कि एशियन गेम्स का मेडल मेरा कम है, अभी मिसिंग है, क्योंकि सब है मेरा, तो ओलंपिक मेडल है, वर्ल्ड मेडल है, सब गेम्स, 3 times गेम, कमल गेम्स मेडल है, तो एशियन गेम्स में कुछ ना कुछ हो रहा था, तो इस बार तो ऐसा लगा था कि मुझे करना है इंडियन वेटलिफ्टिंग के लिए और इंडिया के लिए, मुझे एक मेडल जरूर देने के लिए। तो मैंने पूरा प्रोसेस किया, बहुत मेहनत किया, गेम्स कमल गेम्स की तुरंत ही मैंने शुरू किया था ट्रेनिंग करना, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थे, तो बस बहुत खुश है कि फाइनली अभी पूरा हो गया मेरा मेडल का लिस्ट में पूरा आ गया, तो इससे और ज्यादा खुश ही क्या हो सकता है।
4: नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जैसे आपने कहा भी कि सारे मेडल्स थे आपके कैबिनेट में, बट एक ये एशियन गेम्स का मेडल मिसिंग था, वो भी आपने पूरा कर दिया, लेकिन इसके पीछे मीरा आपकी सालों की मेहनत है, और हमने देखा है कि मीरा जो है जब भी एक इवेंट आता है, नजदीक आता है, और वो एकदम गायब हो जाती है, फोन बंद, सोशल मीडिया बंद, किसी से कोई मुलाकात नहीं, मतलब हमें ही पता करना पड़ता है मीरा आखिर है कहाँ। तो ये आपको लगता है ये वो डेडिकेशन है, वो आपकी जो एक जिद है कि मुझे करना ही करना है, वो चीज आपको यहाँ तक लेकर आती है?
5: एक जीत है, एक प्लेयर्स क्या ऐसा होना चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं जैसा बनना है, मैं जो कर रही है ऐसा करना है, सबका हर प्लेयर्स के अलग अलग सिस्टम होते हैं, अलग अलग माइंड होते हैं, अलग अलग ट्रेनिंग होते हैं सब कुछ, पर वेटलिफ्टिंग में ऐसा है कि हम प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं करते तो हमारे परफॉर्मेंस में इफेक्ट पड़ते हैं और इंजुरी आना शुरू हो जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगा था कि कहीं चुपचाप रह के मेरा जो करना चाहते हैं, जो फोकस है मेरा, उसी में ही मुझे फोकस दे, तो वो भी था, वही ज्यादा ही वही था कि मैं किसी से मिलना ना, मैं चुपचाप रहती हूँ कि मेरा जो फोकस है उसी को तब तक नहीं मिलती, मैं उसी में ही ज्यादा फोकस रखती हूँ, तो वही था कि मैंने सब कुछ बंद करके पूरा फोकस इसी में ही रखा था, ये बहुत कम टाइमिंग भी थे मेरे पास, तो इसलिए मैं सब कुछ बंद करके मैंने सिर्फ ट्रेनिंग में ही फोकस किया था।
4: मेरा कई बार ऐसा हुआ है कि आपने अच्छी शुरुआत की, बट एशियन गेम्स आया उससे पहले कभी कहीं इंजरी हो गई, आपने उसको मिस कर दिया, फिर कई बार ऐसा हुआ कि आपने बहुत कोशिश की, कभी फोर्थ फिनिश किया, कभी नाइन्थ फिनिश किया, इस बार आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि मुझे ना इंजरी लानी है अपने से, अपने नजदीक, और ना ही मुझे जो है फोर्थ या फिफ्थ फिनिश करना है, मुझे ऊपर एक दो तीन में रहना है।
5: इस बार मैं पूरा कॉन्फिडेंस भी थी और हाँ बहुत कम टाइमिंग भी थी कि समझ में नहीं आता ट्रेनिंग कैसे करना है, कैसा मुझे इम्प्रूव करना है वो चीजों में, पर इस बार मैं पूरा यही सोचा था कि मुझे कुछ भी हो जाए मुझे एक मेडल जरूर इंडिया के लिए देना है, या ब्रॉन्ज हो या सिल्वर हो या गोल्ड हो, तो मेरा यही यही एम था कि मुझे कुछ भी करके ही इस एशियन गेम्स को मुझे एक मेडल तो जरूर इंडिया के लिए देना था। वही हर टाइम मैं सोते समय खाते समय ये सब मैं सोचते रहते कि इस बार मेरे पास बहुत मौका है, मैं कभी हाथ से नहीं निकलने दूंगी। हर एशियन गेम्स में कुछ ना कुछ होता है, लास्ट एशियन गेम्स में भी इंजुरी हुआ था एशियन गेम्स इसी के स्टेज के ऊपर ही, तो ऐसा ही कुछ होते रहते थे। तो इस बार मुझे ऐसा लगा था जो भी हो, या इंजुरी भी आए हो या मुझे ज्यादा फाइट करना पड़े, फिर भी मैं ऐसा लगा था कि मैं इस बार बिल्कुल मतलब छोड़ेगा नहीं ऐसा
4: बिल्कुल
5: तो
4: छोड़ेगा नहीं, और
5: वही
4: आपने छोड़ा भी नहीं, पोडियम पे आप खड़ी हुई, आपके पास वो मेडल है। मेरा एक दो चीज और हमें बताइए, देखिए क्या होता है ना कि एक तो होता है फोकस, और एक होता है कि नहीं चाहे कुछ भी हो जाए मुझे योग करना है। आपने वेट मैनेजमेंट किया, आपने स्किल ट्रेनिंग की, आपने सारा सोशल मीडिया कट ऑफ कर दिया, कोई अब ऐसा चीज है जो है ना, क्योंकि आप हर बार मीरा का एक अलग ना एक प्रण होता है, एक होता है कि नहीं मुझे करना है, इस बार क्या किया था आप?
5: मतलब ट्रेनिंग दिन में या
4: ओवरऑल
5: हाँ मैंने इस बार काफी खुद के ऊपर भी चैलेंजेस रखा है कि जब से कॉमन गेम्स के बाद से मैंने सब कुछ बंद भी किया है, घर भी नहीं गई थी मैं, कि मुझे ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, तो फोकस इसमें ही ज्यादा था कि मैं कुछ भी खाऊं तो मैं ट्रेनिंग के लिए ही पहले सोचती हूँ कि मैं ये खाया तो मेरा वेट में क्या होगा और जो मेरा परफॉर्मेंस देना है तो इसका क्या इफेक्ट मिलेगा, कि बहुत कम टाइमिंग में कुछ बीमार हो गया तो मैं क्या होगा, वो सब ना हर चीज में मैंने मतलब कोशिश किया था कि अच्छा से रहने के लिए।
4: बिल्कुल। अच्छा मेरा एक आखिरी सवाल देखिए क्या है कि आपके पास ओलंपिक का भी मेडल है, आपके पास कॉमनवेल्थ है, आपके पास वर्ल्ड चैंपियनशिप है, अब आपके पास एशियन गेम्स है, एक चीज अभी भी बाकी है, वो है मेडल का ओलंपिक्स में कलर चेंज करना, ठीक है? तो मीरा, मीरा मुझे पता है वो इतनी जल्दी हार नहीं मानती है, और मीरा जो है वो देश के लिए ये काम जरूर करेंगी। आप कितनी कॉन्फिडेंट है, क्योंकि अगर वो होगा ना तो वो आप समझिए वो ऐतिहासिक पल होगा पूरी पूरे भारत के लिए, क्योंकि आज आपने जापान में अभी बैठे, आपको पता नहीं है कि इंडिया में क्या चल रहा है। इंडिया में इस वक्त सोशल मीडिया उठा के देखिए, हर जगह मीराबाई चानू, मीराबाई चानू, मीराबाई चानू चल रहा है,
5: थैंक
4: चाहे वो
5: यू
4: प्रधानमंत्री
5: सो
4: हो,
5: मच,
4: प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, वो सब लोग आपको बधाई दे रहे हैं, तो मुझे यकीन है कि
5: थैंक
4: आप उनको ये मौका जरूर देंगी।
5: यू बिल्कुल सर, मैं पूरा कोशिश करूंगी। और बोल तो नहीं सकते थे कि कलर चेंज होना है कि नहीं, पर मेरी तरफ से मैं पूरा कोशिश करूंगी।
3: गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जयंती पर मनाइए गणेश उत्सव, और इसके लिए आपको बस इतना करना है कि अपने घर में पधारे गजानन का वीडियो बनाइए और हमें भेज दीजिए। दुनिया भर से तमाम वीडियोस हमारे पास लगातार आ रहे हैं, हमारे दर्शक लगातार हमें वीडियोस भेज रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के इंदौर से हमारे साथ पर्व की खुशियां साझा करने के लिए तनिषा तिवारी ने वीडियो भेजा है, इनके यहाँ बप्पा की छोटी प्रतिमा स्थापित की गई है, साथ ही साथ शिवलिंग भी यहाँ पर मौजूद है और बप्पा के सामने अखंड ज्योति भी प्रज्वलित की गई है और बप्पा को कई तरह के भोग लगाए गए हैं। दूसरी तस्वीर भेजी हमें मध्य प्रदेश के ब्रह्मपुर से रोशनी चौधरी ने, और इनके यहाँ स्थापित बप्पा भी बेहद सुंदर लग रहे हैं, बप्पा को बहुत सुंदर पगड़ी बांधी हुई है, फूलों से उनका श्रृंगार किया गया है, साथ ही साथ बप्पा के दरबार को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और
0: नमस्कार, स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शुरुआत करेंगे प्रथम पूज्य गणपति के दिव्य दर्शन के साथ, आपको गणपति के विराट दर्शन भी करवाएंगे, साथ ही साथ गणपति की ऐसी प्रतिमा भी दिखाएंगे जिसे देखने के लिए लेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है, और ये सारी तस्वीरें बस थोड़ी देर में आगे।
3: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। देखिए गणपति उत्सव की सबसे दिव्य रौनक मुंबई में नजर आ रही है। मुंबई में तमाम पंडालों को अलग अलग थीम पर सजाया गया है, कहीं पंडाल में केदारनाथ धाम के दर्शन हो रहे हैं तो कहीं बप्पा के दरबार में एआई युग उतर आया है, इसकी तस्वीरें भी आगे आपको दिखाएंगे।
0: नमस्कार, महेश गुप्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। बात हनुमान अंश की भी करेंगे जिसकी कमाई की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। फिल्म की अपार सफलता के बाद निर्माता निर्देशक समेत फिल्म से जुड़े लोग रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे हैं, इसकी भी तस्वीरें आई हैं, दिखाएंगे आपको।
4: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। तो देखिए बात मीराबाई चानू की भी करेंगे जिन्होंने एशियन गेम्स के वेट लिफ्टिंग इवेंट में 28 साल का सूखा खत्म कर दिया है। सिल्वर अपने नाम करके मीराबाई ने एक नया इतिहास भी रच दिया है, तो उनसे भी हम अपनी एक्सक्लूसिव मुलाकात आपके कराने वाले हैं।
3: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। आगे आपको लिए चलेंगे चाइना, जहां इन दिनों वर्ल्ड स्किल शंघाई इवेंट चल रहा है, तो क्यों पूरी दुनिया की नजरें इस इवेंट पर टिकी हुई है, इस पर आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं अभी तक की बड़ी खबरें।
5: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
3: एशियन गेम्स में 28 साल बाद भारत को वेटलिफ्टिंग में मेडल, मीराबाई ने जीता सिल्वर मेडल, भारत के पास अब तक कुल 11 मेडल। वामन द्वादश पर बद्रीनाथ में धूमधाम से निकली भगवान उद्धव जी की ढोली, माता मूर्ति महोत्सव में उमड़ा भक्तों का सैलाब। संभाजीनगर में बनाई गई 41 फीट की इको फ्रेंडली प्रतिमा, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश, चंद्रपुर में विसर्जन के लिए बनाया जा रहा 20 फीट का कुंड। गणेश उत्सव के 10वें दिन भारी उल्लास, मुंबई में बप्पा की भव्य प्रतिमा विराजमान, केदारनाथ मंदिर के तर्ज पर भी पंडाल। उज्जैन के खड़े हनुमान मंदिर में आस्था का मेला, श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से कारोबारी खुश, दुकानदारों ने बदले अपने पुराने व्यवसाय। इंदौर में सजने जा रहा है सांस्कृतिक कारवा, 150 साल से निभाई जा रही परंपरा, नारी शक्ति के साथ साथ दिखेगी सैन्य शक्ति की झांकियां।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।
3: और चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं आज भी गणपति उत्सव की तस्वीरों के साथ, क्योंकि आपको बता दें कि देश भर से आस्था और विश्वास की खूबसूरत तस्वीरें आ रही है। भक्त पूरी श्रद्धा के साथ बप्पा की भक्ति में लीन है। अब बप्पा की विदाई में महज 2 दिन बाकी है, ऐसे में हर कोई बप्पा का आशीर्वाद लेने और उनके दर्शन करने के लिए पंडालों का रुख कर रहा है।
0: सबसे खास बात यह है कि शहर शहर बप्पा के भव्य और दिव्य पंडाल सजाए गए हैं जहाँ पर गणपति के एक से बढ़कर एक स्वरूप भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। कहीं किसान के रूप में बप्पा के दर्शन हो रहे हैं तो कहीं एआई वाले बप्पा भक्तों को अपने अनोखे स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं। कहीं पंडालों में सामाजिक संदेशों को भी खास जगह दी गई है। इन अनूठी और आकर्षक झांकियों के जरिए न केवल आस्था का रंग देखने को मिल रहा है, बल्कि समाज को जागरूक करने का संदेश भी दिया जा रहा है। तो देखिए गणपति उत्सव में बप्पा के एक से बढ़कर एक भव्य और अनोखे रूप देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के मछलीपट्टनम में बप्पा का विराट स्वरूप हर किसी का ध्यान खींच रहा है। समुद्र किनारे सजे इस दरबार में आस्था के साथ पर्यावरण का संदेश भी साफ दिखाई दे रहा है।
4: बिल्कुल, देखिए खास बात यह है कि इस विशाल प्रतिमा को तैयार करने में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भागीदारी रही। अब 63 फीट ऊंचे महागणपति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली है, यानी बप्पा की भक्ति के साथ प्रकृति की चिंता का यह अनोखा संगम लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।

गले में सजी है फूलों की सुंदर माला, माथे पर दमक रहा है तिलक, एक हाथ में धनुष और दूसरे हाथ में भक्तों को अभय का आशीर्वाद देते बप्पा। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में समुद्र तट पर विराजमान गणपति का ये विराट स्वरूप देखते ही बनता है। ये बप्पा की सबसे ऊंची प्रतिमा है। 63 फीट ऊंची इस विशाल प्रतिमा की भव्यता के सामने हर कोई ठहर जाता है, और जब आसमान से ड्रोन कैमरे की नजर पड़ती है तो बप्पा की दिव्यता विराट रूप और भी निखर आता है। यहाँ सिर्फ प्रतिमा ही नहीं बल्कि बप्पा के लिए 63 फीट ऊंचा भव्य पंडाल भी तैयार किया गया है। यानी जितनी ऊंची बप्पा की प्रतिमा उतना ही विशाल उनका दरबार, और इसे देखने और बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में जहां बप्पा की विशाल प्रतिमा स्थापित है, वहां छोटे छोटे कई पंडाल भी सजाए गए हैं। बच्चों और परिवारों के मनोरंजन के लिए झूले भी लगाए गए हैं, और जैसे ही रात होती है रोशनी से सजा ये पूरा परिसर एक अलग ही रंग में नजर आता है।

0: इस 63 फीट ऊंची इको फ्रेंडली महागणपति प्रतिमा ने इंटरनेशनल अचीवर्स बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाई है। इस विशाल प्रतिमा को कृष्णा जिले और आसपास के इलाकों के 1 लाख से ज्यादा घरों से जुटाई गई मिट्टी से तैयार किया गया है। इस पहल के पीछे मकसद न सिर्फ बप्पा की भव्य प्रतिमा तैयार करना है बल्कि पर्यावरण के अनुकूल गणपति उत्सव को बढ़ावा देना भी है। साथ ही ऐसे आयोजन से पूरे जिले के लोगों को जोड़ना भी है, यानी मिट्टी से बने बप्पा और बप्पा से जुड़ता पूरा समाज। कृष्णा जिले से अब्दुल बशीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: महाराष्ट्र के नासिक में भगवान गणेश की एक अनोखी प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जहां लोगों को विघ्नहर्ता गणेश की सोने से बनी बेहद छोटी मूर्तियां देखने को मिली। ये मूर्तियां इतनी छोटी हैं कि इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करना पड़ा है।
2: बिल्कुल, आपको बता दें, इन मूर्तियों को नासिक के सुनार भगवान दास खरोटे ने बनाया है। खरोटे ने अलग अलग साइज की 291 सूक्ष्म सोने की गणेश मूर्तियां बनाई है। इनमें सबसे सूक्ष्म 3 मिलीमीटर से लेकर 1 इंच साइज की गणेश मूर्ति शामिल है।
3: विघ्नहर्ता भगवान गणेश की ये ऐसी अद्भुत प्रदर्शनी है जहां बाप्पा कई अलग अलग साइज और अलग अलग स्वरूप में मौजूद हैं। लेकिन बाप्पा के इन स्वरूपों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि गणेश जी की इन मूर्तियों का आकार बहुत छोटा है। नासिक के सुनार भगवान दास खरोटे ने अलग अलग साइज की 291 सूक्ष्म सोने की गणेश मूर्तियां बनाई हैं। इनमें सबसे सूक्ष्म 3 मिलीमीटर से लेकर 1 इंच साइज तक की गणेश मूर्ति शामिल है। इतना ही नहीं, सिर्फ 1.25 इंच की जगह में अलग अलग एक्सप्रेशन वाली 256 गणेश मूर्तियां भी खरोटे ने बनाई है।
4: चने की दाल पे मैं गणेश जी का मूर्ति बनाया था जो बहुत छोटा था। उसको पहला फर्स्ट प्राइज भी मिला था। हुआ ऐसा कि 6 महीने के बाद उसको कीड़े मकोड़ों ने खा लिया, तो मैं बहुत हर्ट हो गया कि जो मैं कलाकृति बनाया था वो तो मेरा आइडेंटिटी था, लेकिन अभी गायब हो गया। तो मैं ऐसा सोचा कि ये कोई परमानेंट माध्यम हो, इसलिए मुझे गोल्ड में बनाने का इच्छा हुआ, तो गोल्ड में ही मैं शुरुआत किया बनाने के लिए।
3: खरोटे ने गायक, तबला वादक, हारमोनियम वादक और वीणा वादक जैसे अलग अलग रूपों में छोटी सोने की गणेश मूर्तियां भी बनाई हैं। इसके अलावा उन्होंने अष्टविनायक, हेरम गणेश, मखारा में गणेश, कंबोडिया और इंडोनेशिया की सोने की गणेश मूर्तियों की रेप्लिका भी बनाई है। उनके पास बाली, जावा, मंगोलिया, सुमात्रा जैसे अलग अलग देशों से अलग अलग रूपों और साइज में गणेश की छोटी सोने की मूर्तियां भी हैं।
4: पूरे दुनिया भर में, विश्व में गणेश जी के अलग अलग स्वरूप पाए जाते हैं, अलग अलग ध्यान है, और सब सोने में बनाने का मैं प्रयास किया हूँ। जैसे जावा, सुमात्रा, बाली, कंबोडिया, नेपाल, चीन, यहाँ गणेश जी के अलग अलग ध्यान होते हैं, और सब सोने में मैं माइक्रो स्वरूप में, छोटे छोटे स्वरूप में बनाने का प्रयास किया हूँ।
3: हर छोटी गणेश मूर्ति के पीछे सिर्फ कलाकार का हाथ नहीं बल्कि एक कॉन्सेप्ट, सोच, भावना और कई सालों की लगातार प्रैक्टिस है। भगवान दास खरोटे ने कहा कि इनमें हर गणेश मूर्ति को एक खास उद्देश्य और इरादे को ध्यान में रखते हुए मंत्रों के जाप के माहौल में शुभ समय पर बनाया गया है।
4: गणेश जी का भक्त हूँ। गणेश जी ऐसे 64 कला और 14 विद्या के अधिपति है, तो मुझे गणेश जी के प्रति बहुत भक्ति है, प्रेम है, आदर है, तो इसलिए मैं गणेश जी को ही चुना।
3: सुनार भगवान दास खरोटे पिछले 32 सालों से सूक्ष्म गणेश मूर्तियां बनाने में लगे हैं और वो अपनी इस अद्भुत कला के लिए 4 विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। खास बात ये है कि नैनो गणेश मूर्तियों को बनाते समय खरोटे ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए बगैर पारंपरिक तरीके से और इंसानी कारीगरी की मदद से इन सूक्ष्म गणेश मूर्तियों का संसार बसाया है। नासिक से प्रवीण बी ठाकरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: और अब आपको लिए चलते हैं गणपति के उस दरबार में जहां मन्नत पूरी होने के लिए श्रद्धालु चीनी चढ़ाते हैं। ये साउथ मुंबई का गोट गणपति का दरबार है जहां गणपति नंदी पर सवार हैं। बिल्कुल, देखिए अखिल चंदनबाड़ी गणेशोत्सव मंडल इस बार अपना 49वां साल मना रहा है। चंदनबाड़ी गणेशोत्सव मंडल के बप्पा की हाइट 28 फीट है और वो केदारनाथ अवतार में विराजमान है। बप्पा के दरबार में पहुंचने से पहले लोग 12 शिवलिंग के दर्शन करते हुए मुख्य पंडाल में आते हैं।
5: इस वक्त मैं मौजूद हूं साउथ मुंबई में स्थित अखिल चंदनवाड़ी गणेश उत्सव पंडाल में, जहां के बप्पा गोड़ गणपति बप्पा के नाम से भी जाने जाते हैं। तस्वीरों में देखें किस तरीके से बहुत ही ज्यादा विशाल, बहुत ज्यादा भव्य नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बप्पा की जो हाइट है वो तकरीबन 28 फीट है और केदारनाथ के अवतार में यहां पर स्थापित हुए हैं। डेकोरेशन चलचित्र देखने के बाद भी ये पता चल पा रहा है कि केदारनाथ की पूरी थीम रखी हुई है। साथ ही साथ आपको बताएं कि जब आप मुख्य द्वार से बप्पा की तरफ आगे बढ़ते हैं तो बाकी के भी जो 11 शिवलिंग हैं वो वहां पर स्थापित किए गए हैं, जिसमें ओंकारेश्वर, उज्जैन के महाकाल, काशी, नासिक के त्र्यंबकेश्वर जैसे नाम शामिल हैं। आखिर क्यों गोड़ गणपति के नाम से मशहूर हैं, आखिर क्यों हर किसी के मोबाइल पे बप्पा की तस्वीरें, बप्पा के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। और मंडल की तरफ से पदाधिकारी सर प्लीज यहाँ पर आए, हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। थोड़ा सा वो शक्कर भी ले लें हाथ में।
6: एक ने मन्नत मांगा था तो उसका सब इच्छा पूर्ण हुआ, इसलिए उसने जब इससे शक्कर चढ़ाया, जब इससे आज तक पूरा वो शक्कर शक्कर है, वो पूरा जाने के अभी पहले दिन से अभी 11 दिन तक पूरा लोग भगवान जो भक्तजन आता है वो शक्कर लाता है।
7: आज पांडव सब युद्ध होने के बाद जा रहे थे, जब ये शंकर को ढूंढने गए पाप ऐसा करने के लिए, तो वो टाइम पे नंदी शंकर का रूप लेके, शंकर ने नंदी, शंकर भगवान ने नंदी का रूप लेके वो जा रहे थे, तो वो ये शंकर भगवान नंदी के रूप में और ये गणपति अपना भीम के रूप में।
5: अच्छा, इसलिए नंदी के ऊपर विराजमान है गणपति बप्पा, नहीं तो पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ। कितना साल हो गया मंडल को?
6: 49।
5: अच्छा, तो इस बार क्या खास है जो यहाँ पे आते हैं श्रद्धालु उनके लिए क्या खास है?
7: केदारनाथ का दर्शन ही है अपने, 12 ज्योतिर्लिंग है।
5: अच्छा, और इसके अलावा भंडारा प्रसाद, भजन कीर्तन,
7: आज भंडारा रखे हैं।
5: कितने बजे है?
7: आज शाम को 7 बजे भंडारा,
5: मतलब टाइम से पहुंच जाना है भंडारा।
7: जरूर जरूर जरूर।
5: अच्छा, ओके, तो यहाँ पे मतलब जो भी मिन्नत मांगता है उसके पूरे हो जाते हैं, वो आकर के शक्कर इस तरह से चीनी चढ़ाते हैं।
7: ये शक्कर हम लोग विसर्जन के दूसरे दिन, हम लोग ऐसा ही थैली बांध के हर पूरा विभाग में अपने जो वर्गणीदार है, हित चिंतक है, एडवर्टाइज वाले है, जितनी भी बिल्डिंग्स है उनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
5: क्या बात है, इसी बात पे गणपति बप्पा
8: मोरिया,
5: मंगल मूर्ति
8: मोरिया।
5: फिर से एक बार इस विशाल काय गणपति बप्पा का आप दर्शन करें जो इस समय नंदी पर विराजमान है, गोड़ गणपति के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर है। मैं इस समय मौजूद हूँ अखिल चंदनवाड़ी गणेश उत्सव मंडल में, जो इस समय अपना 49 ईयर्स मना रहा है, और देखिए किस तरीके से लोग बड़े श्रद्धालु में हुए होते हैं। घंटी बजाई जा रही है, अगरबत्ती जलाई जा रही है, बप्पा से वो सारी चीजें मांगी जा रही है जो वो चाहते हैं, और वाकई में बेसब्री से इंतजार होता है गणपति बप्पा के आगमन का। लेकिन अब समय आ चला है उनके विसर्जन का, और बहुत ही ज्यादा मायूसी लोगों के चेहरे पे देखी जा रही है, लेकिन जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, वो ये भी है कि गणपति बप्पा जाएंगे नहीं तो वापस अगले साल आएंगे कैसे। वो कहते ना कि गणपति बप्पा मोरिया, उर्चा वर्षी लोकरिया। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल चौहान के साथ धर्मेंद्र दुबे।
0: भक्ति के साथ साथ भक्ति फिल्मों का जिक्र भी अब कर लेते हैं। बात हनुमान अंश की कर रहे हैं, जिसकी कामयाबी का विजय रथ लगातार जारी, और फिल्म की कामयाबी के बीच उसकी टीम आस्था के दरबार में लगातार पहुंच रही है। देवी देवताओं, संतों का आशीर्वाद भी ले रही है। हरिद्वार से लेकर बागेश्वर धाम, अयोध्या तक हर जगह पर हनुमान अंश की टीम पहुंची हुई है। लेकिन जिन लोगों ने इस फिल्म को देख लिया है उनसे जरूर इसकी राय लेना बनता है। मेरी तरफ देख रहे हैं सब,
9: कैसी लगी?
0: देखो, मैं मंडे को गई थी, मंडे इज अ वर्किंग डे, बट उसके बावजूद जो है हाउसफुल था। बहुत बड़ी बात है, आप देखिए कितना समय हो गया फिल्म को।
2: एज ग्रुप क्या था सरगम वहाँ पे?
0: ज्यादातर ओल्ड एज लोग थे, लोग अपनी मम्मी को, अपनी दादी को, जो लोग चल भी नहीं पा रहे थे ना, वो ये फिल्म देखने के लिए आ रहे थे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतना समय हो गया फिल्म को रिलीज हुए, लेकिन दीवानगी जो है फिल्म के लिए वो खत्म नहीं हो रही है। देखिए, फिल्म कमाई के मामले में 366 करोड़ रुपए के आंकड़े के पार पहुंच चुकी है, जो वाकई में बहुत बड़ी बात है। फिल्म की कामयाबी के बाद डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने अपनी अगली फिल्म यानी कि राम बोला का भी ऐलान कर दिया है। यानी हनुमान अंश की सफलता के साथ अब भक्ति और सिनेमा की इस यात्रा में एक नई कहानी की शुरुआत भी हो चुकी है।
10: बॉक्स ऑफिस पर हनुमान अंश की कामयाबी का सिलसिला लगातार जारी है, और इसी कामयाबी के बीच फिल्म की टीम आस्था के दरबार में पहुंची। हरिद्वार से लेकर बागेश्वर धाम और अब अयोध्या तक फिल्म के निर्माता अनुप्रिया नागर और टीम संतोर देवी देवताओं का आशीर्वाद ले रही है। अयोध्या में टीम ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। अयोध्या की इस यात्रा को अनुप्रिया नागर सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं मानती, उनके लिए यह हनुमान अंश के सफर का एक भावुक पड़ाव भी है। अनुप्रिया नागर ने कहा कि रामलला के दर्शन उनके लिए बेहद भावुक और सौभाग्य का पल है। उन्होंने इस यात्रा को आस्था, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ा अनुभव बताया। अनुप्रिया नागर ने फिल्म की सफलता को हनुमान जी के आशीर्वाद से जोड़ते हुए कहा कि उन्हें महसूस होता है कि हनुमान जी की कृपा उनके साथ है।
8: मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे अभी भी याद है, मैं अप्रैल के समय आई थी हनुमानगढ़ी, राम मंदिर आई थी मैं, और उस दिन बहुत इमोशनल थी मैं, क्योंकि हम हनुमान अंश फिल्म बना रहे थे और मैं चाहती थी कि हनुमान जी से ही मैं आशीर्वाद लूँ सबसे पहले। और आज मैं वापस आई हूँ, जब फिल्म बहुत अच्छी कर रही है, सक्सेसफुल हो चुकी है फिल्म, और जब मैं वापस आई, वापस मुझे बहुत ही इमोशनल फीलिंग आई, क्योंकि एक पूरा सर्किल कंप्लीट हो गया और मैं जानती हूँ कि हनुमान जी का आशीर्वाद है हमारे साथ, उनकी कृपा है और उनकी वजह से ही हम इधर तक पहुँचे हैं।
10: हनुमान अंश की टीम जब अयोध्या पहुंची तो माहौल पूरी तरह से भक्तिमय नजर आया। फिल्म के निर्माता अनुप्रिया नागर और टीम ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन पूजन किए। इसके बाद टीम ने महंत नृत्य गोपाल दास से आशीर्वाद लिया। मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र मिश्रा भी इस दौरान मौजूद रहे। रामलला के दर्शन के बाद टीम ने मंदिर परिसर और वहां चल रहे निर्माण कार्यों का भी अवलोकन किया। स्थापत्य कला, मंदिर की निर्माण शैली और परिसर की बारीकियों को करीब से देखा। अनुप्रिया नागर ने ये भी बताया कि गुरुजी की ओर से उन्हें हनुमान जी की भेंट और प्रसाद मिला है। उन्होंने कहा कि वो इस भेंट को अपने साथ लेकर जाएंगी ताकि हनुमान जी का आशीर्वाद सदैव उनके साथ बना रहे। अनुप्रिया ने फिल्म की सफलता को लेकर कहा कि वो इसे चमत्कार और हनुमान जी का आशीर्वाद मानती हैं।
8: तो गुरुजी ने मुझे ये भेंट दी है हनुमान जी, और ये मैं लेकर गई थी कि उनका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहे, और ये प्रसाद है मेरे।
9: देखा जाए जो फिल्म जिस तरीके से आगे बढ़त हुई है, लोगों का आशीर्वाद ही है।
8: हाँ जी बिल्कुल, चमत्कार है, आशीर्वाद है, हम तो समझते ये लीला ही है।
10: जहाँ फिल्म से जुड़ी आस्था और कामयाबी की तस्वीर सामने आ रही है, वहीं उसकी बॉक्स ऑफिस कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। 7 अगस्त को रिलीज हुई हनुमान अंश 47 दिन पूरे करने के बाद भी सिनेमाघरों में भीड़ बटोर रही है। फिल्म ने 47वें दिन यानी कि मंगलवार को भारत में 4.90 करोड़ की नेट कमाई की, जबकि सोमवार को फिल्म ने 4.15 करोड़ रुपए कमाए, यानी एक दिन में कलेक्शन में करीब 18% का उछाल आया। 47वें दिन के बाद भारत में फिल्म की कुल नेट कमाई 280.93 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जबकि ग्रॉस कलेक्शन 331.70 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। विदेशों में भी फिल्म का सफर जारी है। 47वें दिन ओवरसीज से करीब 1 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन हुआ, जिसके बाद ओवरसीज कलेक्शन 34.75 करोड़ तक पहुंच गया। भारत की ग्रॉस और विदेश की कमाई को मिलाकर देखा जाए तो हनुमान अंश का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 366.45 करोड़ रुपए तक पहुँच चुका है। यानी 7वें हफ्ते में भी हनुमान अंश की रफ्तार थमती नजर नहीं आ रही। हनुमान अंश की सफलता के बाद फिल्म के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने अपनी अगली फिल्म राम बोला का ऐलान कर दिया है। गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित इस फिल्म के प्रोड्यूसर महावीर जैन और अमित उपाध्याय ने अपनी निजी कमाई और बचत का 100% हिस्सा सेवा कार्यों में लगाने का संकल्प लिया है। हनुमान अंश की कहानी नीम करोली बाबा के जीवन और आध्यात्मिक यात्रा से प्रेरित है। फिल्म को लेकर निर्माताओं की कोशिश रही है कि भक्ति, आस्था और सेवा की इस कहानी को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो दिल्ली में गणपति विसर्जन के लिए शानदार पहल की गई है। विसर्जन के लिए 81 जगहों पर आर्टिफिशियल तालाब बनाए गए हैं। तालाबों के आसपास सुरक्षा, लाइट और मेडिकल फैसिलिटी का इंतजाम किया गया है। यहां श्रद्धालु सुरक्षित और आसानी से विसर्जन भी कर सकते हैं।
11: दिल्ली सरकार ने धार्मिक आस्था और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए 110 संग्रह केंद्र भी बनाए हैं। यहां श्रद्धालु पुरानी और खंडित मूर्तियों का सम्मान पूर्वक निस्तारण कर सकेंगे। ये पहल उन श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छा विकल्प है जो अक्सर पुरानी मूर्तियों को सार्वजनिक जगहों पर छोड़ देते हैं।

0: देश भर में गणेशोत्सव की धूम है। इस बीच बापा के भक्तों के लिए गुड न्यूज आई है। दिल्ली में गणपति विसर्जन के लिए सरकार ने विशेष इंतजाम किए हैं। चाहे गणेश उत्सव हो या दशहरा, हर उत्सव के बाद देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ पूजा सामग्रियों का विसर्जन एक बड़ी समस्या होती है। दिल्ली सरकार ने इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने की कोशिश की है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि आस्था और पर्यावरण संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है, इसमें नागरिकों की भागीदारी जरूरी है।
1: एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इतने प्रेम से बाबा को घर लाते हो, भगवान की पूजा करते हो, तो कभी भी खंडित तस्वीर को, मूर्ति को ऐसे छोड़ के अनादर करते हुए नहीं आना है, उसको भी स्थान देना है।
0: दिल्ली सरकार की पहल के तहत पुरानी खंडित मूर्तियों और पूजा सामग्री के सम्मानजनक निस्तारण के लिए 110 जगहों पर विशेष संग्रह केंद्र बनाए गए हैं। ये पहल यमुना को प्रदूषण से बचाने में भी मददगार साबित होगी।
2: इस वक्त हम मौजूद है रोहिणी के सेक्टर 15 में, ठीक विद्या भारती स्कूल के बाहर, जहां पर आपको ये केंद्र जो है वो नजर आ जाएगा, ताकि लोग जो है वो अपने घर का जितना भी पूजा सामग्री का सामान है वो यहाँ पर आके जो है वो सामान वो जो है यहाँ पर रख सके। आप देख सकते हैं तस्वीरें, पहले दिखाऊंगी कि किस तरीके की चीजें आपको यहाँ पर नजर आने वाली है। अच्छा, जो सबसे ज्यादा नजर आएगा आपको कुछ इस तरीके के जो मूर्तियां, भगवान की मूर्तियों पर जो चुनरी चढ़ती है, जो दुपट्टे चढ़ते हैं, वो आपको सबसे ज्यादा जो है वो यहाँ नजर आ जाएंगे। आपको इसमें सूखा नारियल जो है वो भी नजर आ जाएगा कि लोगों ने अब सूखे नारियल को जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है। इसके अलावा जो है आपको फूल जो है वो नजर आ जाएंगे, आपको मूर्तियां भी जो है इसमें नजर आ जाएगी। जितनी भी मंदिर की जो से जरूरत की जो चीजें होती है वो सभी चीजें जो है वो यहाँ नजर आने वाली है।
0: अक्सर पुरानी या खंडित मूर्तियों और पूजा पाठ से संबंधित सामग्री को लेकर धार्मिक भावनाओं के कारण पेड़ों के नीचे, पार्कों, सड़क किनारे या दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर रख देते हैं। इससे एक ओर धार्मिक आस्था जुड़ी होती है, तो वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता और पर्यावरण से जुड़ी चुनौती भी सामने आती है। ऐसे में दिल्ली के लोग सरकार की नई पहल का दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं।
3: बहुत बढ़िया सुविधा हो गई, नहीं तो ऐसे ही इधर उधर रखते हैं, कोई फायदा नहीं रहता ना, पाप ही चढ़ता है। अभी एक सुविधा हो गई, एक जगह बनी, वहाँ रख दिया, ना प्रदूषण हुआ ना कुछ हुआ। बहुत बढ़िया करा रेखा, अभी हम थैला भर के लाए थे, हमने अपना पूरा कर दिया विसर्जन, तो हमारे लिए तो बेस्ट है।
0: दिल्ली में गणपति मूर्तियों के विसर्जन के लिए 81 जगहों पर आर्टिफिशियल तालाब बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं से मूर्ति विसर्जन केवल कृत्रिम तालाबों में ही करने को कहा गया है। गणेश विसर्जन की तैयारियों में सुरक्षा, स्वच्छता, लाइट, चिकित्सा, आपातकालीन व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन और पर्यावरणीय सुरक्षा जैसे पहलुओं को भी शामिल किया गया है। सरकार ने यमुना और दूसरे जल स्रोतों में मूर्ति, फूल माला या पूजा सामग्री डालने से मना किया है। श्रद्धालुओं को पर्यावरण अनुकूल मूर्तियों को प्राथमिकता देने और POP और हानिकारक रसायनों से बनी प्रतिमाओं से बचने की सलाह दी गई है। दिल्ली से मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे।
4: तो चलिए अब बात वाराणसी की। काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास और विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद के नए CEO सत्यम मिश्र ने कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले उन्होंने सपरिवार बाबा काल भैरव और काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन भी किया।
5: आपको बता दें कि सत्यम मिश्र ने श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं को और बेहतर बनाने की बात कही। हमारे संवाददाता रोशन जायसवाल ने सत्यम मिश्र से बात की।
6: द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से प्रधान ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ मंदिर के नए मुख्य कार्यपालक अधिकारी की जिम्मेदारी संभालने के लिए आ चुके हैं वाराणसी में सत्यम मिश्रा जी। पहले भी शासन में बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को आपने संभाला है, इनसे सीधे बात करते हैं और जानते हैं कि आगे इतनी बड़ी जिम्मेदारी और साथ ही साथ बहुत बड़ी चुनौती भी किस तरह से आप संभालेंगे और साथ ही साथ लोगों की श्रद्धा आस्था का भी ख्याल रखा जाएगा।
7: बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम में पहले तो आप सभी का स्वागत है। कल दिनांक 21/9/2026 को मेरे द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया। उसके बाद मैं आज अपने संबंधित अधिकारियों के साथ में, टीम के साथ में पूरे मंदिर परिसर का भ्रमण किया गया, व्यवस्थाओं को देखा गया, सभी से इस बारे में वार्ता भी हुई। तो अभी पहला प्रयास यही है कि दर्शनार्थियों को सुलभ दर्शन किस तरीके से हों, जो भी हमारे शिव भक्त आते हैं उनके लिए हम और क्या बेहतर व्यवस्थाएं कर सकते हैं, क्या अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं कर सकते हैं जिससे उनके लिए और दर्शन सुगम हो सकें, इस पर एक पूरी वार्ता हुई है, इस पर हम लोग प्लान करेंगे और प्लान करने के बाद में सभी स्टेक होल्डर्स के साथ में संवाद के माध्यम से हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि जो हमारे सभी शिवभक्त जो आते हैं उनके लिए हम और अधिक बेहतर सुविधाएं कर पाएं। ये सुनिश्चित करेंगे कि जो दर्शनार्थी आते हैं उन दर्शनार्थियों को अभी जो वर्तमान व्यवस्थाएँ संचालित हैं उन व्यवस्थाओं को संचालित करते हुए इससे भी बेहतर क्या व्यवस्थाएँ हो सकती हैं उन व्यवस्थाओं को हम और अधिक सुदृढ़ करेंगे। इसके अलावा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, अन्य लाभार्थी हैं और अन्य दर्शनार्थी हैं उन सभी के लिए हम और बेहतर क्या व्यवस्थाएं कर सकते हैं, हम उनको सभी से वार्ता के माध्यम से और उसको प्लान बना करके उसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अभी की जो क्राउड मैनेजमेंट है निश्चित रूप से ये श्री काशी विश्वनाथ धाम में बाबा के प्रति सभी दर्शनार्थियों की सभी शिवभक्तों की असीम श्रद्धा है जिस कारण से इतना यहाँ पर फुटफॉल है, तो उसके अनुरूप जो क्राउड मैनेजमेंट है वो निश्चित रूप से उसकी और बेहतर प्लानिंग हो इस पर हम सभी के साथ बैठ करके एक पूरा उसकी स्ट्रेटजी बना करके काम करेंगे। इस संबंध में NDRF SDRF इसके अलावा जो जिला प्रशासन की टीम है, इसके अलावा जो एक्सपर्ट्स हैं, पुलिस है, अन्य एजेंसीज हैं, जो सिविल सोसाइटी है, उन सभी से संवाद करते हुए उनका फीडबैक लेते हुए इस भीड़ प्रबंधन को हम और भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे।
5: तो चलिए हम वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे एशियन गेम्स में वेट लिफ्टिंग की पदक वीर मीराबाई चानू से।
8: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा। इससे पहले आगे बढ़े, नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
1: एशियन गेम्स में 28 साल के बाद भारत को वेट लिफ्टिंग में मेडल, मीराबाई ने जीता सिल्वर मेडल, भारत के पास अब तक कुल 11 मेडल। वामन द्वादश पर बद्रीनाथ में धूमधाम से निकली भगवान उद्धव जी की डोली, माता मूर्ति महोत्सव में उमड़ा भक्तों का सैलाब। संभाजी नगर में बनाई गई 41 फीट की इको फ्रेंडली प्रतिमा, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। चंद्रपुर में विसर्जन के लिए बनाया जा रहा 20 फीट का कुंड। चलिए अब बात रक्षा क्षेत्र में बढ़ते हिंदुस्तान के कदम की। अपनी सैन्य तैयारियों को धार देने के लिए भारत दुनिया के तमाम देशों के साथ समय समय पर युद्धाभ्यास को अंजाम देता रहता है। इस समय भी भारत अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास में जुटा है।
3: भारत और अमेरिका के बीच ये संयुक्त सैन्य अभ्यास का 22वां एडिशन है। 2 सप्ताह तक चलने वाला अभ्यास 15 सितंबर को शुरू हुआ था। इसका आयोजन उत्तराखंड के औली फॉरन ट्रेनिंग नोड और राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक साथ किया जा रहा है। इसमें दोनों देशों की ओर से 600-600 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं।
4: एक साथ गरजती M777 अल्ट्रा लाइट होविट्सर तोपें, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से धुआंधार फायरिंग और आसमान में गरजता सेना का अटैक हेलीकॉप्टर। ये तस्वीरें किसी स्पेशल ऑपरेशन या फिर जंग के मोर्चे की नहीं है, बल्कि एक्शन से भरपूर ये तस्वीरें आई हैं राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से, जहां इन दिनों भारत और अमेरिका की सेना मिलकर युद्ध अभ्यास कर रही हैं। युद्ध अभ्यास 2026 के दौरान M777 अल्ट्रालाइट होविट्सर तोप, धनुष आर्टिलरी गन और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ही नहीं, बल्कि प्रैक्टिस सेशन के दौरान L70 एयर डिफेंस गन और एमलेट सिस्टम का भी एक्शन देखने को मिला। इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी तालमेल को मजबूत करना और आधुनिक युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी ताकत को परखना है। अपने इसी मकसद के तहत दोनों देशों के जवानों ने इन घातक हथियारों का इस्तेमाल कर अपनी मारक क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया। अभ्यास के दौरान दोनों देशों के जवानों ने ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर बैठकर दुश्मन के ठिकानों और लक्ष्यों की बारीकी से पहचान की। सैनिकों ने आपस में खुफिया जानकारी साझा करने और तुरंत फायर ऑर्डर देने और फायरिंग के दौरान जरूरी सुधार करने की जटिल प्रक्रियाओं का मिलकर अभ्यास किया, ताकि युद्ध के मैदान में चूक की कोई गुंजाइश न रह जाए। इस बार के इस अभ्यास में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। इसीलिए ट्रेनिंग के दौरान सर्विलांस और टोही अभियानों के लिए विशेष रूप से ड्रोन्स और ऑटोनोमस सिस्टम का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच ये संयुक्त सैन्य अभ्यास का 22वां एडिशन है। 2 सप्ताह तक चलने वाला अभ्यास 15 सितंबर को शुरू हुआ था। इसका आयोजन उत्तराखंड के औली फॉरन ट्रेनिंग नोड और राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक साथ किया जा रहा है, जिसमें दोनों देशों की ओर से 600-600 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: मुंबई आतंकी हमले को शायद ही देश कभी भूल पाए। उस वक्त आतंकियों से मुकाबला करते हुए देश के कई वीर जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए ही भारतीय सेना के एक पूर्व जवान दीपक कुमार बीते 15 अगस्त को पर्वतारोहण पर निकले, जिसे नाम दिया गया प्रोजेक्ट 2611 हिमालयंस ब्लिट्स।
6: इस प्रोजेक्ट के तहत 26 चोटियों तक महज 11 दिन में पहुंचने की नई कहानी लिखी गई। तो कैसे दीपक कुमार ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस चुनौतीपूर्ण अभियान को अंजाम तक पहुंचाया, इसकी साहसिक कहानी खुद पर्वतारोही दीपक कुमार ने सुनाई।
7: कहते हैं जहां रास्ते खत्म होते हैं वहीं से अदम्य और अनूठे साहस की शुरुआत होती है। भारतीय सेना के पूर्व सैनिक और मौजूदा पर्वतारोही दीपक कुमार ने इसी लाइन को सच साबित कर दिखाया है। गाजियाबाद में मुरादनगर से ताल्लुक रखने वाले दीपक कुमार ने लद्दाख में एक अनोखे पर्वतारोहण की कमान संभाली और 11 दिनों में 26 चोटियों पर चढ़ने के लिए स्पीड क्लाइंबिंग अभियान का नेतृत्व कर कामयाबी का झंडा गाड़ा।
8: आज हम आपको भारतीय सेना के एक ऐसे रिटायर्ड सैनिक के घर लेकर आए हैं जिसकी दीवारें ऐसे तमाम रिकॉर्ड से भरी पड़ी हैं, पटी पड़ी हैं। लेकिन इन रिकॉर्ड से परे इस सैनिक ने एक नया मिशन अपनाया। उन्होंने कहा कि वो 26/11 के हमले में शहीद हुए तमाम बलिदानों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके लिए उन्होंने रास्ता चुना पहाड़ का। 11 दिन के भीतर 26 ऊंची पर्वत की चोटियों की इन्होंने चढ़ाई की, जिसमें से हर चोटी की ऊंचाई 6000 मीटर से ज्यादा की थी।
7: भारतीय सेना के ये पूर्व जवान 31 जुलाई को सेना से रिटायर हुए, लेकिन इसके बाद जिस तरह अपने एक कठिन और चुनौतीपूर्ण पर्वतारोहण को मुंबई के 26/11 आतंकी हमले के शहीदों को समर्पित किया, उसकी हर तरफ सराहना हो रही है।
9: ये मैंने सोचा एज आर्मी पर्सन कि मैं रिटायरमेंट होने के बाद मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो एक शहीदों के लिए कुछ हो। तब एज ए माउंटेनियर मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूँगा जो बिल्कुल अलग हो, ठीक है। तो जैसे एकदम मेरे दिमाग में ये चीज़ें आई सडन कि 26/11 मुंबई अटैक्स हुआ था, तो मैं उन शहीदों को ट्रिब्यूट करता हूँ।
7: दीपक के लिए 26/11 का मतलब रहा 26 चोटियों को 11 दिन के अंदर हर हाल में फतेह करना। ये सभी पीक्स 6000 मीटर से ऊंची थी। ऐसे में उनका ये अभियान शहीदों के परिवारों को ये एहसास दिलाना भी था कि आज भी हमले के दौरान उनके पति, भाई या बेटे की शहादत देश भूला नहीं है। तभी इस साल दीपक कुमार ने 26 नवंबर से पहले किसी भी तारीख पर इस अभियान को करने का मकसद बनाया ताकि देश उन शहीदों को 26/11 के अलावा भी दूसरी तारीखों में याद रखे। दीपक और उनके साथियों ने लद्दाख में इस साल 15 अगस्त को इस अभियान को शुरू किया। प्रोजेक्ट 26/11 हिमालयन ब्लिट्स के तहत दीपक ने 6 सदस्यों की टीम का नेतृत्व किया और 11 दिनों में 6000 मीटर से ज्यादा ऊंची 26 चोटियों पर तिरंगा फहराया। साल 2006 में भारतीय सेना ज्वाइन करने वाले दीपक कुमार ने 2011 में पहली बार पर्वतारोहण किया। उन्होंने आर्मी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट सियाचिन से बेसिक और एडवांस पर्वतारोहण का कोर्स और दार्जिलिंग स्थित हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट से मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन कोर्स किया। इसी अनुभव के दम पर दीपक कई चोटियों को फतह कर चुके हैं।
9: इसकी बात करूं तो माउंट एवरेस्ट मैंने 2025 में किया था सर। उससे पहले माउंट मकालू मैंने 2019, जो दुनिया की पांचवी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मकालू, मैंने वो 2019 में किया था। और माउंट कॉमेट 7756 वो मैंने 2022 में किया था। माउंट नून मैंने 2023 में किया था और माउंट थैलिया सागर मैंने 2016 में किया था।
7: दीपक का सफर पहाड़ की ऊंचाइयों को लगातार छूता गया और उनके अनुभवों को कई बड़े सम्मानों से नवाजा भी गया।
9: ये इसमें वो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड है और ऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करूँ तो ऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड में 3 दिन में हमने 11 पिक सबमिट की थी, जिसमें 3 वर्जन पिक थी जो मतलब किसी ने अभी तक क्लाइम भी नहीं की थी, वो फर्स्ट टाइम क्लाइम हुई थी। तो ये रिकॉर्ड्स थे। फर्स्ट टाइम मैंने जो 2019 में रिकॉर्ड्स बनाया था वो मैंने 9 दिन में 15 पिक सबमिट की थी।
7: पर्वतों की चोटियां ऊंचाई नहीं हौसला देती हैं, पहाड़ चुनौती नहीं वो हमारे भीतर के साहस को पुकारते हैं। और इसी साहस के दम पर दीपक और उनके साथियों ने पर्वतारोहण की सबसे यादगार कहानी लिखी। 11 दिनों में 26 चोटियों पर चढ़ाई दीपक की कोई पर्वत पहाड़ जीतने की नहीं बल्कि अपने साहस की सीमाओं को तोड़ने की ही शुरुआत है। अब भारतीय सेना के इस पूर्व जवान का अगला टारगेट 7000 मीटर से ज्यादा ऊंची उत्तराखंड की सतोपंथ पीक है। इस अभियान को उन्होंने अपने एक साथी जवान की सतोपंथ में ही हुई शहादत को समर्पित किया है।
8: एक सैनिक से ज़्यादा और कोई इस बात को नहीं समझ सकता कि एक शहीद की शहादत कितनी बड़ी होती है। हम सलाम आज दीपक सर को भी कर रहे हैं कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया और उम्मीद करते हैं कि आगे बहुत सारी चोटियां वो ऐसे ही बिना किसी रुकावट के चढ़ते जाएंगे। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, गाजियाबाद।
10: तो चलिए बात करते हैं एशियन गेम्स की, जहां मीराबाई चानू ने एशियन गेम्स 2026 में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। ये एशियन गेम्स में उनका पहला पदक है। पिछले संस्करण में वो चौथे स्थान पर रही थी। इस पदक के साथ मीराबाई चानू कर्णम मलेश्वरी के बाद ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप समेत बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पदक जीतने वाली भारतीय वेटलिफ्टर बन गई हैं।
1: देखिए ओलंपिक के मेडलिस्ट मनु भाकर के लिए एशियन गेम्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। मनु 23 सितंबर को 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में हिस्सा लिया था। उन्होंने वो इंडिविजुअल इवेंट में पांचवें स्थान पर रही तो वहीं टीम इवेंट में मामूली अंतर से पदक से चूक गई। आपको बता दें कि इस इवेंट में पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। भारत ने एशियन गेम्स 2026 में महिला हॉकी में थाईलैंड को 20-1 से हराया। इस जीत में दीपिका ने रिकॉर्ड 9 गोल दागे और पेनल्टी कॉर्नर पर अपने सभी प्रयासों को गोल में बदला। भारत की पूल बी में ये लगातार तीसरी जीत है।
3: मीराबाई चानू ने एशियन गेम्स की वेटलिफ्टिंग स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया और इस शानदार जीत के साथ ही एशियाई खेलों के वेटलिफ्टिंग में भारत का 28 साल लंबा इंतजार खत्म हुआ। 32 वर्षीय मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम भार वर्ग कैटेगरी में कुल 198 किलोग्राम वजन उठाकर ये सफलता हासिल की है। उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्नैश में 87 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 111 किलो वजन उठाया। ये मीराबाई चानू के स्वर्णिम करियर का पहला एशियन गेम्स मेडल है।
11: मीराबाई चानू इससे पहले ओलंपिक खेलों और राष्ट्रीय मंडल खेलों में देश के लिए मेडल जीत चुकी हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी तिरंगा फहरा चुकी मीराबाई ने अब एशियाई पदक जीतकर अपनी बड़ी उपलब्धियों को पूरा कर लिया है। इससे पहले भारत को एशियन गेम्स की वेटलिफ्टिंग स्पर्धा में आखिरी बार साल 1998 में सिल्वर मेडल मिला था।
12: एशियन गेम्स में मीराबाई चानू ने कमाल कर दिया है, क्योंकि जो 28 साल का सूखा था, पिछले 28 साल से विमेंस कैटेगरी में हम एक मेडल की तलाश में थे। कर्णम मनेश्वरी ने 1998 में ये कारनामा किया था और हमें अब लग गए एक मेडल पाने में। 28 साल मीरा, आपने ये जो 28 साल का सूखा खत्म किया है, सबसे पहले तो आप इसके बारे में बताइए, क्योंकि आपने 2014 में शुरुआत की थी एशियन गेम्स की और 2026 में जाके आपको ये मेडल हासिल हुआ है।
13: सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ ये मेडल से, कि हमने इतना सालों से, मतलब जब से मैंने स्पोर्ट्स को वेटलिफ्टिंग को शुरू किया था तब से ही बोल सकते हैं कि मुझे एशियन गेम्स में मेडल चाहिए। और हर मैंने 2014 में सबसे पहला मेरा गेम्स एशियन गेम्स था, तो इसमें तो पता नहीं चला था कि क्या करना है क्या नहीं है और परफॉर्मेंस भी कम थे, तो ऐसे ही आते गया, तो कुछ ना कुछ एशियन गेम्स में हो रहा था, तो डाउट भी था क्या हो रही है, वो सब समझ में भी नहीं आ रहा था। पर मन में तो ऐसा था कि एशियन गेम्स का मेडल मेरा कम है, अभी मिस है, मिसिंग है, क्योंकि सब है मेरा, तो ओलंपिक मेडल है, वर्ल्ड मेडल है, सब गेम्स, थ्री टाइम्स गेम्स, कॉमन गेम्स मेडल है, तो एशियन गेम्स में कुछ ना कुछ हो रहा था। तो इस बार तो ऐसा लगा था कि मुझे करना है इंडियन वेटलिफ्टिंग के लिए और इंडिया के लिए मुझे एक मेडल जरूर देने के लिए, तो मैंने पूरा प्रोसेस किया, बहुत मेहनत किया, गेम्स कमर गेम्स की तुरंत ही मैंने शुरू किया था ट्रेनिंग करना, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बस बहुत खुश है कि फाइनली अभी पूरा हो गया, मेरा मेडल का लिस्ट में पूरा आ गया, तो इससे और ज्यादा खुशी क्या हो सकता है सर।
11: और अब आपको एक ऐसी पैरा एथलीट से मिलवाते हैं, बेजोड़ जज्बा ही उनकी पहचान बन गया है। इंदौर की नेशनल अवार्ड विनर पूजा गर्ग अब दिव्यांगों की राह आसान बनाने के लिए काम कर रही हैं। समाज में जागरूकता लाने और पर्यावरण बचाने की दिशा में चल रहे कई अहम प्रोजेक्ट से भी वो जुड़ी हुई हैं। हमारे सहयोगी वैभवराज शुक्ला ने पूजा गर्ग से खास बातचीत की।
14: जीवन में जब राहें कठिन हो जाती हैं, तो कई लोग घुटने टेक देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो मुश्किलों को सीढ़ी बनाकर सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं। ऐसी एक मिसाल पेश की है पैरा एथलीट पूजा गर्ग ने, जिन्होंने अपने हौसले के दम पर वो मकाम हासिल किया जहां पहुंचना किसी सपने के साकार होने जैसा होता है। लेकिन अब पूजा एक नए

0: कि हर एक दिव्यांग उस एक्सेसिबिलिटी को फील कर पाए और जब भी कहीं आने या उसे कुछ चीज की जरूरत पड़े तो वो उसके दिमाग में वो थॉट ना आए कि मैं उस चीज उस जगह पर नहीं जा सकता, उसे बस ये लगे कि नहीं इंडिया पूरी तरह से एक्सेसिबल है। तो बस उसी थॉट को लेकर मुझे लगता है राइट बियॉन्ड लिमिट करके हम एक प्रोग्राम लेकर आए हैं, एक प्रोजेक्ट है। और मुझे लगता है कि जब मुझे नेशनल अवार्ड मिला था तो कहीं ना कहीं वो रोल मॉडल का अवार्ड था, तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी कंधों पर आई थी कि अब समाज को और उन दिव्यांग भाई बहनों को कुछ ऐसा देना है। तो बस उसी को मद्देनजर रखते हुए एक्सेसिबिलिटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
1: पूजा गर्ग का मिशन लाइफ बियॉन्ड लिमिट उन तमाम दिव्यांगजनों के लिए है जो देश की ऐतिहासिक धरोहरों की खूबसूरती देखने से दूर है।
0: जब भी हम हेरिटेज की बात करते हैं या हमारे जो टेंपल्स वगैरह की बात करते हैं तो वो एक्सेसिबल नहीं है, तो एक थॉट आता है कि क्यों ना कुछ ऐसा करा जाए कि वो एक्सेसिबल हो जाए। तो इसी को हमने करके हेरिटेज को एक्सेसिबल बनाने का सोचा है। हमारे मध्य प्रदेश में जो हेरिटेज हैं, खजुराहो, ओरछा हुआ, सांची हुआ, जब भी हम उसके बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि नहीं वहाँ सीढ़ियाँ होंगी, हम वहाँ नहीं जा पाएंगे, तो हम कहीं ना कहीं एक स्टेप बैक ले लेते हैं। तो अब एक स्टेप फॉरवर्ड लेने की बारी है।
1: संघर्षों से शुरू हुआ प्रिया गर्ग का ये सफर अब देश की धरोहरों को सबके लिए सुलभ बनाने की लड़ाई बन चुका है। इसके लिए उनके कुछ सुझाव भी हैं।
0: हम उसे डैमेज ना करके एक टेम्परेरी रैंप वहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं, जो जब भी कोई डिसेबल्ड पर्सन जाता है तो उसके लिए वहाँ पर उसे यूज़ किया जाए और बाकी उसे साइड में किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ एक सबसे बड़ा पॉइंट मैं ये रखना चाहूँगी कि जो भी वहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन हो वो पूरी तरह से अवेयर हो कि कोई डिसेबल्ड पर्सन अगर वो जा रहा है तो ऐसा ना हो कि नेक्स्ट टाइम हमने जो करा है वो वर्थलेस हो जाए। उसे डेफिनेटली उस चीज़ के लिए एंसरेबल होना पड़ेगा कि हाँ एक डिसेबल्ड आया है तो उसको वो फैसिलिटीज डेफिनेटली वो यूज़ कर पाए और उस चीज़ को एक्सेस कर पाए।
1: पूजा गर्ग की जिंदगी साहस, संघर्ष और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का प्रतीक है। 2010 में एक गंभीर दुर्घटना में उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई थी। इसके बावजूद उन्होंने जीवन से हार नहीं मानी। एक के बाद एक 13 कठिन सर्जरीज के बाद उन्होंने न केवल सामान्य जीवन की ओर वापसी की बल्कि इस दौरान कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को भी मात दी। लेकिन अपनी हिम्मत और हौसले के दम पर पूजा गर्ग आज भारत की एक जानी मानी अंतर्राष्ट्रीय पैरा कैनो खिलाड़ी हैं। उन्होंने एशियन पैरा कैनो चैंपियनशिप 2025 में 2 कांस्य पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। यही नहीं, 2024 में उन्होंने 14,400 फीट ऊंचे नाथुला पास पर मोटर बाइक से पहुंचकर भारतीय तिरंगा लहराया था, जिसके लिए उनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में भी दर्ज किया गया।
0: मैं 2024 में जब मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ तब एक ही थॉट आया कि इस जो कैंसर है इसे भी मुझे ग्रैब करना है, इसमें भी अपना बेहतर से बेहतरीन प्रदर्शन करना है। तो इंदौर से नाथुला तक मैंने एक बाइक राइड करा था जो 4-व्हीलर एडेप्टिव व्हीकल के साथ बाइक थी मेरी, और 4500 किलोमीटर की पूरी यात्रा थी और 14,400 फीट की इसका अल्टीट्यूड था पूरी जर्नी का। तो जब मैं
2: बाइक राइड से भी संभव नहीं होता है
0: जी एक्चुअली, तो जब मैं नाथुला पहुंची थी तो जो नामी वहाँ पे थी उन्होंने वहाँ पे मुझे तिरंगा लहराने का मौका दिया और मैंने वहाँ पर एक कीर्तिमान स्थापित करा।
1: आज पूजा गर्ग केवल एक सफल पैरा एथलीट ही नहीं बल्कि देश के लाखों युवाओं और दिव्यांग जनों के लिए उम्मीद की एक किरण है। लेकिन उनकी जिंदगी का मूल मंत्र है हार ना मानना और पॉजिटिव सोच। पूजा ने साबित कर दिखाया कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो दर्द भी सफलता की शक्ति में बदल जाता है।
0: चाहे जैसे भी हो हाथ उठाए रखिए, पानी कितना भी गहरा हो बैलेंस बनाए रखिए। कौन कहता है कि चलनी में पानी रुकता नहीं, बस बर्फ बनने तक का हौसला बनाए रखिए।
1: वैभव राज शुक्ला, गुड न्यूज टुडे।
3: और यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे चीन में चल रहे वर्ल्ड स्किल्स शंघाई इवेंट की झलकियां।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
5: क्या बृहस्पति की दृष्टि सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है? क्या बृहस्पति की दृष्टि से कुंडली के ग्रहों की

0: अशुभता कम हो जाती है। क्या बृहस्पति की दृष्टि से मंगल दोष समाप्त हो जाता है? क्या है बृहस्पति की दृष्टि का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: चीन में इन दिनों वर्ल्ड स्किल शंघाई 2026 प्रतियोगिता चल रही है। इस कार्यक्रम में 70 से ज्यादा देश अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। कल इस कार्यक्रम की बेहद शानदार ओपनिंग सेरेमनी हुई। कार्यक्रम के दौरान 1400 से ज्यादा युवा अलग अलग क्षेत्रों में अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी पर सबसे ज्यादा चर्चा होगी। वर्ल्ड स्किल्स की ओपनिंग सेरेमनी में तकनीक का शानदार नजारा देखने को मिला। कल ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने इंसानों के साथ मिलकर डांस भी किया।

0: चलिए इसी के साथ रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी चाय पर चर्चा लगातार जारी है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: क्या बृहस्पति की दृष्टि सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है? क्या बृहस्पति की दृष्टि से कुंडली के ग्रहों की अशुभता कम हो जाती है? क्या बृहस्पति की दृष्टि से मंगल दोष समाप्त हो जाता है? क्या है बृहस्पति की दृष्टि का रहस्य? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: चीन में इन दिनों मिड ऑटम फेस्टिवल की तैयारियां जोरों पर हैं। यूनान प्रांत के सफारी पार्क में भी इस त्योहार का रंग देखने को मिल रहा है। यहां जानवरों के लिए खास तरह के पकवान तैयार किए गए। एक नन्हे ब्लैक बियर के लिए चांद के आकार का एक खास ट्रीट बनाया गया है। वहीं रैकून के लिए फलों और सब्जियों की खास प्लेट तैयार की गई। कैपिबारा के लिए अलग अलग आकार के मजेदार पकवान बनाए गए।
2: और देखिए, सफारी पार्क के कर्मचारियों के मुताबिक इन खास पकवानों को सिर्फ देखने में आकर्षण बनाने पर ही ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि इन्हें जानवरों की प्राकृतिक डाइट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यानी स्वाद के साथ साथ पोषण और सेहत का भी पूरा पूरा ख्याल रखा गया। मिड ऑटम फेस्टिवल चीन में परिवार के साथ मिलकर बनाया जाने वाला एक खास त्योहार है।
1: तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। आप रखिए अपना ख्याल, कल शाम 5 बजे चाय पर मिलते हैं।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: क्या बृहस्पति की दृष्टि सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है? क्या बृहस्पति की दृष्टि से कुंडली के ग्रहों की अशुभता कम हो जाती है? क्या बृहस्पति की दृष्टि से मंगल दोष समाप्त हो जाता है? क्या है बृहस्पति की दृष्टि का रहस्य? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
7: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
8: देश भर में सजय बप्पा के अनूठे पंडाल, संभाजीनगर में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती 41 फीट की प्रतिमा, तो बीड जिले में मेडिकल वेस्ट से बनाई गणपति की मूर्ति। जालना में बुलेट पर सवार गणपति बप्पा की अनोखी मूर्ति बनी आकर्षण का केंद्र, चंद्रपुर में विसर्जन के लिए बनाया जा रहा 20 फीट का कुंड। नागपुर के गणेश टेकरी मंदिर में भगवान गणेश को चढ़ाया गया 1101 किलो का महालड्डू। 5 फीट ऊंचे और 4 फीट चौड़े लड्डू को 22 कारीगरों ने 6 दिन में तैयार किया। वामन द्वादश पर बद्रीनाथ में धूमधाम से निकली भगवान उद्धव जी की डोली, महामूर्ति महोत्सव में उमड़ा भक्तों का सैलाब। एशियन गेम्स में 28 साल के बाद भारत को वेटलिफ्टिंग में मेडल, मीराबाई ने जीता सिल्वर मेडल, भारत के पास अब तक कुल 11 मेडल।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिलदेव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात गणेशोत्सव की। जब से गणेशोत्सव का शुभारंभ हुआ है, जीएनटी स्पेशल में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह पूरे देश में कितनी भव्यता, कितने उत्साह और आस्था के साथ भगवान गणेश का ये उत्सव मनाया जा रहा है। देश भर में शहर शहर सजे पंडालों में गजानन के एक से बढ़कर एक निराले रूप नजर आ रहे हैं। लेकिन गणेशोत्सव के बीच ही देश के अलग अलग कोनों में कई लोक पर्वों और त्योहारों को मनाने का सिलसिला भी जारी है। कल जहां देश मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में डोल ग्यारस यानी जल झूलनी एकादशी का पर्व मनाया गया, तो वहीं गुजरात के अंबाजी शक्तिपीठ में भादरवी महामेले का आयोजन जोर शोर से चल रहा है। गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर स्थित विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल अंबाजी में हर साल होने वाले भादरवी महामेले की धूम है। भादरवी महीने में नवमी से पूनम यानी 7 दिनों तक धूमधाम से मनाए जाने वाले मेले का श्री गणेश 21 सितंबर को हुआ था। माता जी का रथ खींचकर मंदिर के पंडितों द्वारा शास्त्रों के अनुसार पूजा अर्चना और अनुष्ठान के साथ ये शुभारंभ हुआ और अब यहां भक्तों का सैलाब उमड़ा है। मां के धाम में भजन और गरबा के गीत साथ में गूंज रहे हैं। भादरवी महामेला अंबाजी शक्तिपीठ का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। गुजरात में भादरवी मेला तो राजस्थान और एमपी में जल झूलनी एकादशी की रौनक नजर आई। डोल ग्यारस का त्यौहार श्री कृष्ण के साथ जुड़ा है। जल झूलनी एकादशी की सबसे बड़ी विशेषता यहां होने वाले सामूहिक देव दर्शन है। इस दिन बालकृष्ण स्वरूप को पालकियों में सवार करवाकर नगर भ्रमण पर ले जाने की परंपरा है। साल में एक बार शहर भर के मंदिरों के बाल विग्रह एक साथ पालकियों में विराजित करके श्रद्धालुओं के बीच आते हैं। ये नजारा कल कई शहरों में दिखाई दिया। तो चलिए उत्सवों की इन तमाम तस्वीरों के बीच ही अब आपको दिखाते हैं गणेशोत्सव की छटा और करवाते हैं यात्रा देश भर के सबसे अद्भुत और भव्य गणेश पंडालों की।

0: अद्भुत है, अनुपम है, अनन्य है। गणेशोत्सव के दिनों में गजानन के एक से एक अनोखे रूप साकार हो उठे हैं। आज बापा के अनोखे रूपों के अध्याय का श्री गणेश करते हैं उनके सबसे सजीले स्वरूप के साथ। मुंबई में ये दरबार है गिरगांव के राजा का। गिरगांव के राजा के दरबार को इस बार द्वारकाधीश थीम पर तैयार किया गया है और बापा यहाँ श्री कृष्ण के स्वरूप में विराजे हैं। बापा के इस स्वरूप की सबसे खास पहचान बन गई है उनके मस्तक पर सजा ये शानदार फेटा यानी पगड़ी। महाकाय के स्वरूप के हिसाब से उनकी ये पगड़ी भी विशालकाय है। इस फेटे की लंबाई लगभग 6 फीट और चौड़ाई करीब 5 फीट बताई जा रही है।
1: हर साल बिल्कुल एक ही तरह की थीम होती है, एक ही तरह का आकार होता है गणपति बप्पा का, लेकिन विशेष इस बार ये है कि श्री कृष्ण के रूप में देखे जा रहे हैं। बप्पा बहुत ज्यादा प्यारे और सुंदर तो लग ही रहे हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा जो बहुत ज्यादा देखने वाली चीज है उनका फेटा है। मुझे लगता है कि देश का यह सबसे बड़ा फेटा है जिसकी लंबाई कम से कम 6 फीट है, चौड़ाई कम से कम 5 फीट है, और इन्हें ही देखने के लिए, इनका दर्शन देखने के लिए दूर दराज से मुंबई महाराष्ट्र से श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर पहुंचते हैं। खास बात यह है कि द्वारकाधीश का भी यहाँ पर थीम रखा गया है और कुछ चीजें ऐसी रखी गई हैं जो हूबहू द्वारका में देखी जा रही हैं। 99 साल मना रहा है ये पंडाल। खास बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी मन की बात में इस पंडाल का जिक्र किया था, तारीफ की थी और स्पेशली ये कहा था कि इको फ्रेंडली बप्पा हूँ।
0: आपको बता दें कि मराठी संस्कृति में फेटा सर्वोच्च सम्मान, अधिकार और राजसी वैभव का प्रतीक माना जाता है। भगवान गणेश को गणपति यानी गणों के स्वामी और नगराध्यक्ष यानी शहर के राजा के रूप में पूजा जाता है, जैसे किसी महान राजा का राज्य अभिषेक बिना मुकुट या पगड़ी के अधूरा है, वैसे ही बापा को फेटा पहनाकर भक्त उन्हें अपने जीवन और क्षेत्र के राजा के रूप में सम्मानित करते हैं। अब आपको दिखाते हैं मुंबई में ही सजा चंदनवाड़ी गणेश उत्सव मंडल का पंडाल, जहां बापा का पंडाल केदारनाथ धाम की थीम पर तैयार किया गया है। पंडाल तो अनोखा है ही, यहां बापा का स्वरूप भी खास है। यहां गौरी नंदन अपने वाहन मूषक को छोड़ पिता महादेव की सवारी नंदी महाराज पर विराजे हैं। एक हाथ में डमरू, दूसरे में त्रिशूल है। बर्फीले पहाड़ के बीच नंदी पर विराजे लगभग 28 फीट के बप्पा का रूप अनोखा है। बापा की प्रतिमा के पास ही भोलेनाथ का केदार स्वरूप भी स्थापित किया गया है।
1: इस वक्त मैं मौजूद हूँ साउथ मुंबई में स्थित अखिल चंदनवाड़ी गणेश उत्सव पंडाल में, जहाँ के बप्पा गोड़ गणपति बप्पा के नाम से भी जाने जाते हैं। तस्वीरों में देखें किस तरीके से बहुत ही ज्यादा विशाल, बहुत ज्यादा भव्य नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बप्पा की जो हाइट है वो तकरीबन 28 फीट है और केदारनाथ के अवतार में यहाँ पर स्थापित हुए हैं। डेकोरेशन चलचित्र देखने के बाद भी ये पता चल पा रहा है कि केदारनाथ की पूरी थीम रखी हुई है। साथ ही साथ आपको बताएं कि जब आप मुख्य द्वार से बप्पा की तरफ आगे बढ़ते हैं तो बाकी के भी जो 11 शिवलिंग हैं वो वहां पर स्थापित किए गए हैं, जिसमें ओंकारेश्वर, उज्जैन के महाकाल, काशी, नासिक के त्रिम्बकेश्वर जैसे नाम शामिल हैं।
0: अब चलिए आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम, जहां समुद्र तट पर गणपति विराट स्वरूप में विराजे हैं। इस प्रतिमा की ऊंचाई 63 फीट है। बताया जा रहा है कि ये बप्पा की सबसे ऊंची इको फ्रेंडली प्रतिमा है। गले में सजी है फूलों की सुंदर माला, माथे पर दमक रहा है तिलक, एक हाथ में धनुष और दूसरे हाथ से भक्तों को अभय का आशीर्वाद देते बप्पा। यहाँ से प्रतिमा ही नहीं बाप्पा के लिए 63 फीट ऊंचा भव्य पंडाल भी तैयार किया गया है। यानी जितनी ऊंची बाप्पा की प्रतिमा उतना ही विशाल उनका दरबार। इसे देखने और बाप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस विशाल प्रतिमा को कृष्णा जिले और आसपास के इलाकों के 1 लाख से ज्यादा घरों से जुटाई गई मिट्टी से तैयार किया गया है। बता दें कि 63 फीट ऊंची इको फ्रेंडली महागणपति प्रतिमा ने इंटरनेशनल अचीवर्स बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाई है। गणेश उत्सव के दौरान मुंबई में भटवाड़ी के राजा भी आस्थावानों को शुभाशीष दे रहे हैं। भटवाड़ी जा राजा की प्रतिमा को कागज से तैयार किया गया है। इस बार ये पंडाल अपनी बेहद निराली और तकनीक थीम को लेकर सुर्खियों में है। दरअसल इस बार भटवाड़ी चा गणेश पंडाल को AI थीम पर तैयार किया गया है।
1: खास बात यह है कि इस बार भटवाड़ी के राजा की जो थीम है वो AI पे रखी गई है। जैसे कि किस तरीके से AI की हेल्प से मिसाइल अपने आप में एक बहुत बड़ा काम कर रही है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने क्या कुछ कहा है, कैसे उन्हें लोग फॉलो कर रहे हैं, और इसके अलावा विज्ञान में AI कितने अंदर तक डीप तक जा चुकी है।
0: यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का देश की तरक्की में कितना योगदान है, इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये तमाम चीजें पंडाल में लगे पोस्टर बैनर और LED पर दिखाए जा रहे विशेष वीडियो पर श्रद्धालुओं को दिखाया जा रहा है।
2: एक शक्ति जी पूजा के इजाद होते बुद्धि जी विद्धि जी।
0: अब चलिए चंद्रपुर जहां बाप्पा का ये अद्भुत दरबार सजा है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में यहां के श्री सिद्धि विनायक गणेश मंडल ने सांवलिया सेठ की थीम पर ये गणेश पंडाल सजाया है। एक ही प्रतिमा में खाटू के श्याम बाबा और चित्तौड़ के सांवलिया सेठ साथ दर्शन दे रहे हैं। एक ही प्रतिमा में दोनों आराध्य देवों की छवियों का समावेश इसे बेहद खास बना रहा है। बड़ी संख्या में भक्त यहां पहुंच रहे हैं और अपनी अर्जियां लगा रहे हैं।
3: जो हारे के सहारे हैं उनके पास अपनी अर्जी लगाई है और मुझे यहां पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पूरा विश्वास है उन पे कि मेरी जो लगाई हुई अर्जी है वो पूरी होगी और इन्होंने इस बार यहां पे बहुत अच्छा सेटअप किया है।
4: अर्जी लगाई है, अच्छा लगता है, बाबा शाम पर्ची पूरी करेंगे हमारी, यही भावना से आए हैं।
0: बड़ी संख्या में भक्त अपनी मनोकामना लेकर बाप्पा के इस दरबार में पहुंच रहे हैं और लाल कपड़े में नारियल बांधकर मोर पंख के साथ अपनी अर्जी लगा रहे हैं। इस पंडाल में खूबसूरत रोशनी और सजावट के जरिए राजस्थान के प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर की बारीकियों को बेहद खूबसूरती से दर्शाया गया है और भक्त भी उसी भाव के साथ यहां दर्शन को पहुंच रहे हैं। चंद्रपुर में श्री कृष्ण का सांवलिया स्वरूप है तो वहीं मुंबई के पारसीवाड़ा में गणेश पंडाल को भगवान कृष्ण की दिव्य कथाओं यानी श्री कृष्ण लीला थीम पर तैयार किया गया है। पारसीवाड़ा चा राजा का पंडाल अपने 63वें साल में है। यहां बाप्पा का स्वरूप तो भव्य है ही, लेकिन अब की बार इस पंडाल को भी बेहद खास तरीके से सजाया गया है। कान्हा के जन्म से लेकर महाभारत तक के प्रसंग इस पंडाल में चारों ओर नजर आ रहे हैं।
1: गणपति उत्सव में डेकोरेशन किस तरह से बनाया जाता है, उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है और कितने महीने लगते हैं, कितने लोग लगते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये मैं किसी राजमहल की एंट्री गेट आपको नहीं दिखा रहा, बल्कि एक ऐसा गणेश उत्सव पंडाल दिखा रहा हूँ जो इस तरीके से सजाया गया है। श्रद्धालु इस रास्ते से होते हुए सीधे भीतर की तरफ चलते हैं। दीवारें देखें इस तरह से बनाई गई हैं जैसे पौराणिक कथाओं की गान गा रही हो, और यहाँ से लोग आते हुए सीधे सबसे पहले श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं जिनका बाल स्वरूप यहाँ पर झूले में रखा गया है। तो इसी से ये बात मालूम पड़ रही है कि कहीं ना कहीं थीम भी इनके आसपास ही है। भीतर की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से एक भव्य पंडाल यहाँ पर बनाया गया है और वाकई में महीनों मेहनत करने के बाद जो आर्टिस्ट हैं वो किस तरीके से रूप दे देते हैं एक पंडाल को, ये दिखाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। सबसे पहले तो आप देखें कि अच्छी खासी यहाँ पर जगह है और कितना ज्यादा मेहनत किया गया है। जहां भी आप देखें झूमर दिख रहा है और कुछ इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है, यानी कि श्रद्धालु जब यहाँ आते हैं तो आने के बाद बकायदा अच्छे दर्शन भी करते हैं। तमाम पदाधिकारी भी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं और अब सीधे गणपति बप्पा का दर्शन करें। पारसीवाड़ाचा महाराजा के नाम से मशहूर है, पास में ही सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और उसके बगल का ही ये पंडाल है। हर साल इसी तरीके से बप्पा को यहाँ पर बनाया जाता है, कोई बदलाव नहीं लाया जाता है। बड़े अस्तीले से बड़े प्यार से लोग यहाँ आते हैं और दर्शन करते हैं। पास में बहुत सारे यहाँ पर खिड़कियां के अनुसार पोस्टर एंड बैनर्स लगाए गए हैं जहां पर श्री कृष्ण की लीला दिखाई जाती है। थोड़ी ये तस्वीर देखें, ये भी एक बहुत बड़ी लीला है श्री कृष्ण जी की, और बचपन से जब वो जन्मे और जन्म से लेकर के इस युद्ध तक की जितनी भी कहानियां हैं वो सभी पोस्टर बैनर्स के जरिए श्रद्धालुओं तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है।
0: अब देखिए चंदरपुर में विराजे गजानन का अनोखा स्वरूप, एक हाथ में हल, दूसरे में बैलों की रस्सी, तन पर धोती कुर्ता और सिर पर गमछा, ये है विघ्नहर्ता का अन्नदाता अवतार जिसे बनाया है चंदरपुर के युवा गणेश मंडल ने। ये मंडल हर साल अलग अलग सामाजिक और जन जागृति विषयों को गणेश उत्सव की झांकियों के माध्यम से लोगों के सामने पेश करता है। इसी कड़ी में इस साल युवा गणेश मंडल ने किसान के रूप में बापा की झांकी के जरिए अन्नदाता की मेहनत, संघर्ष और उसके दर्द को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, जिसे लोग खासा पसंद भी कर रहे हैं।
5: चंदरपुर के युवा गणेश मंडल में मौजूद है। यहाँ पर इस बार झांकी बनाई है, बेहद ही खास झांकी है। एक अलग थीम पर यहाँ पर झांकी बनाई गई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बाप्पा को किसान का रूप दिया गया है। किसान के रूप में बाप्पा यहाँ पर हल चलाते हुए नजर आ रहे हैं, खेती कर रहे हैं। यहाँ पर धान की खेती आपको नजर आएगी, बाप्पा हल जोत रहे हैं यहाँ पर जब अपने फसल के लिए, यहाँ पर वो बाप्पा मेहनत कर रहे हैं और दो यहाँ पर बैल भी आपको नजर आएंगे। मतलब पूरी जो यहाँ पर बाप्पा को किसान के रूप में दिखाने की कोशिश यहाँ पर मंडल की ओर से की गई है।
0: अब देखिए गणपति की वो झांकी जो अब से पहले आपने नहीं देखी होगी। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर 80 के दशक का ट्रेंड चल रहा है, सो इस गणेश पंडाल ने इसी थीम की झलक दिखाने की कोशिश की है। इस गणेश पंडाल में 80 के दशक के एक गांव की सुंदर तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई है। यहां गणपति दर्शन को आ रहे श्रद्धालुओं के दिलों में 80 के सादगी भरे दौर की यादें ताजा हो रही है। सिलबट्टे पर पिस्ता मसाला, कुएं से पानी भरती महिलाएं घर घर पहुंचा डाकिया, बायोस्कोप वाला ग्राम विद्यालय और पंचायत के दृश्यों को बापा के इस पंडाल में जीवंत किया गया है। ये वो दौर था जब गांवों में पेड़ के नीचे कुर्सी पर बैठकर मास्टर जी पढ़ाया करते थे और जब एक ही टीवी से पूरा मोहल्ला रामायण देखता था। जाहिर है इस पहल के जरिए आज की पीढ़ी को बीते वक्त की खुशनुमा यादों से जोड़ने की कोशिश की गई है। यहां आ रहे श्रद्धालु इसे काफी पसंद कर रहे हैं।
6: हमने 1980 के गणपति देखे, पुरानी यादें बहुत अच्छे से ताजा हुई और आज फिर वो 1980 के रील्स बनाने का ट्रेंड शुरू है सबका।
7: क्या क्या देखा आपने
6: या इसमें? यहाँ पे पुराना जो उनका बायोस्कोप से देखना, एक सरपंच के घर में रामायण चल रहा है, दैट इज एक ही टीवी होता था और सारा गांव बैठ के देखता था।
0: 80 के दशक का पंडाल खास है तो अकोला का ही ये हरा भरा पंडाल भी अनोखा है। यहाँ आस्था भक्ति के साथ ही प्रकृति की छवि को भी संजोया गया है। गजानन की प्रतिमा के इर्द गिर्द जंगल की सुंदर तस्वीर पेश की गई है। प्रकृति से सनातन संस्कृति का हमेशा से गहरा संबंध रहा है और यही इस हरे भरे पंडाल की थीम भी है। आज से नहीं सदियों से साधु संत प्रकृति को पूजते आए हैं। धर्म आध्यात्म के जरिए समाज को पर्यावरण के संरक्षण का महत्व भी बताते आए हैं। अकोला के विप्र युवा वाहिनी गणेश मंडल ने इस बार घटते जंगल और बढ़ते शहरीकरण को अपनी झांकी का विषय बनाया है। तो वहीं वारंगल के एक भक्त ने बापा को न्याय मूर्ति के रूप में दिखा दिया है। इस पंडाल में बापा का कोर्ट रूम सजा हुआ है, जहां बापा जज की कुर्सी पर विराजे है। काला कोट पहना है, लेकिन सिर पर मुकुट भी सजा है। सामने न्याय का तराजू है और बापा फैसला सुनाने के अंदाज में बैठे हैं। बड़ी संख्या में भक्त बापा के इस स्वरूप के दर्शन करने पहुंच रहे हैं।

0: लेकिन मुंबई के इस पंडाल का तो कहना ही क्या। सांता क्रूज के इस पंडाल में गणपति बाप्पा स्वयं अपने बाप्पा महादेव के रूप में विराजे हैं। जटाओं में गंगा, गले में नाग, हाथ में डमरू, बाघम्बर और त्रिशूल, अनोखा है गजानन का ये स्वरूप।
1: इस समय मैं मौजूद हूँ मुंबई के सांताक्रूज इलाके में और यहाँ के सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल गौठन लेन बहुत ज्यादा चर्चित है अपने बप्पा की सुंदरता के कारण। आप भी खुद करें दर्शन। वाकई में जैसा सुना था वैसा यहाँ पर पाया है। शिवजी के रूप में गणपति बप्पा यहाँ के दरबार में पधारे हुए हैं और इनका दर्शन करने के लिए तमाम श्रद्धालु आसपास के पहुँच रहे हैं। खास बात यह है कि मुंबई का वेस्टर्न लाइन का सांताक्रूज इलाके का जो लोकल रेलवे स्टेशन है ठीक उसके 500 मीटर की दूरी पे ही यहाँ पर शिवजी के रूप में गणपति बप्पा विराजमान हैं। थोड़ा उनका पंडाल भी देखिए कितनी खूबसूरती से इसे सजाया गया है। बाहर भी कुछ दृश्य हैं, तस्वीरें हैं। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि हम आकर दिखाएं। गणपति बप्पा तक हर कोई पहुँच नहीं पाता, इस वजह से यहाँ पर एक छोटे गणपति बप्पा को भी हमेशा विराजमान किया जाता है। हर कोई बप्पा को दूरदर्शन करने के बाद इनके पग छूता है और जो भी इन्हें चढ़ाना होता है, अर्पण करना होता है, वो चढ़ाते हैं।
0: वही महाराष्ट्र के ही अमरावती में भक्तों ने ड्राई फ्रूट से बाप्पा का स्वरूप तैयार किया है। 31 किलो अंजीर और मखाने से बाप्पा की ये 7 फीट ऊंची इको फ्रेंडली प्रतिमा बनाई गई है। अमरावती के जय हिंद गणेश उत्सव पंडाल में पर्यावरण संरक्षण और जल बचत का संदेश देने के लिए इस साल बाप्पा के इस स्वरूप का सृजन किया गया। इस अनूठे प्रयोग के जरिए जल है तो कल है का संदेश दिया जा रहा है। इसी बीच गुजरात के अमरेली में गणपति के धनपति रूप के दर्शन हो रहे हैं। यहां भक्तों ने बाप्पा को करीब 25 लाख रुपए और अमेरिकी डॉलर से सजा दिया है। 20, 50, 100, 200 और 500 रुपए के नोटों से बाप्पा का मुकुट, हार, हाथ और पैर सजाए गए हैं। खास बात ये है कि 20 साल से गणपति महोत्सव आयोजन कर रहे सद्भावना ग्रुप ने पहली बार डॉलर से भी बाप्पा का श्रृंगार किया है। बाप्पा के इस अनोखे स्वरूप के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बाप्पा का कुछ ऐसा ही स्वरूप तेलंगाना में भी नजर आ रहा है। तेलंगाना के पलवंचा शहर में 2 अलग अलग पंडालों में भगवान गणेश की मूर्तियों को कुल 2,90,00,000 रुपए के असली करेंसी नोटों से सजाया गया है, जिसमें 1,40,00,000 रुपए के नोटों से बाप्पा को सजाया गया है। वही पूरे पंडाल को सजाने के लिए 10, 20, 50, 100, 200, 500 के नोटों का इस्तेमाल किया गया है। इस भव्य सजावट के लिए स्थानीय व्यापारियों ने आर्थिक योगदान दिया और बैंक कर्मचारियों ने नए नोट उपलब्ध कराने में मदद की। बाप्पा का माइक्रो स्वरूप भी जरा देख लीजिए। विग्रहहरता भगवान गणेश की ये ऐसी अद्भुत प्रदर्शनी है जहां बाप्पा कई अलग अलग साइज और अलग अलग स्वरूप में मौजूद है, लेकिन बाप्पा के इन स्वरूपों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि गणेश जी की इन मूर्तियों का आकार बहुत ही छोटा है। नासिक के सुनार भगवान दास खरोटे ने अलग अलग साइज की 291 सूक्ष्म सोने की गणेश मूर्तियां बनाई है। इनमें सबसे सूक्ष्म 3 मिलीमीटर से लेकर 1 इंच साइज तक की गणेश मूर्ति शामिल है। यहाँ गायक, तबला वादक, हारमोनियम वादक और वीणा वादक जैसे अलग अलग रूपों में छोटी सोने की गणेश मूर्तियां भी मौजूद है। इसके अलावा अष्ट विनायक, हेरम गणेश, मखारा में गणेश, कंबोडिया और इंडोनेशिया की सोने की गणेश मूर्तियों की रेप्लिका भी आपको यहां दिख जाएंगे। साथ ही बाली, जावा, मंगोलिया, सुमात्रा जैसे अलग अलग देशों से अलग अलग रूपों और साइज में गणेश की छोटी सोने की मूर्तियां भी मौजूद है।
2: चलिए इसी के के साथ जेएनडी स्पेशल की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी और पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: क्या बृहस्पति की दृष्टि सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है? क्या बृहस्पति की दृष्टि से कुंडली के ग्रहों की अशुभता कम हो जाती है? क्या बृहस्पति की दृष्टि से मंगल दोष समाप्त हो जाता है? क्या है बृहस्पति की दृष्टि का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
1: तो गणेश उत्सव के इस पावन मौके पर जीएनटी में भी गणपति पधारे और हमें यकीन है कि हमारे दर्शकों के घर भी गणपति बप्पा जरूर पधारे होंगे। हम चाहते हैं कि आप भी जीएनटी के गणपति उत्सव का हिस्सा बनिए। आप अपने अपने घर पर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। आप हमें अपने वीडियो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 7303409922। ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है, ये आपको बता देते हैं, ये नंबर सिर्फ वीडियो या तस्वीरें भेजने के लिए है। जब भी आप अपना वीडियो या फोटो भेजें तो साथ में अपना नाम और अपने शहर, गांव, कस्बे का नाम जरूर लिखिए।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: क्या बृहस्पति की दृष्टि सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है? क्या बृहस्पति की दृष्टि से कुंडली के ग्रहों की अशुभता कम हो जाती है? क्या बृहस्पति की दृष्टि से मंगल दोष समाप्त हो जाता है? क्या है बृहस्पति की दृष्टि का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: देश भर में सजे बप्पा के अनूठे पंडाल, संभाजीनगर में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती 41 फीट की प्रतिमा, तो बीड जिले में मेडिकल वेस्ट से बनाई गणपति की मूर्ति। जालना में बुलेट पर सवार गणपति बप्पा की अनोखी मूर्ति बनी आकर्षण का केंद्र, चंद्रपुर में विसर्जन के लिए बनाया जा रहा 20 फीट का कुंड। नागपुर के गणेश टेकड़ी मंदिर में भगवान गणेश को चढ़ाया गया 1101 किलो का महालड्डू, 5 फीट ऊंचे और 4 फीट चौड़े लड्डू को 22 कारीगरों ने 6 दिन में तैयार किया। वामन द्वादश पर बद्रीनाथ में धूमधाम से निकली भगवान उद्धव जी की डोली, माता मूर्ति महोत्सव में उमड़ा भक्तों का सैलाब। एशियन गेम्स में 28 साल के बाद भारत को वेटलिफ्टिंग में मेडल, मीराबाई ने जीता सिल्वर मेडल, भारत के पास अब तक कुल 11 मेडल।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
1: गणेशोत्सव के 10वें दिन देश भर के पंडालों में जारी है गजानन की पूजा, मुंबई में लाल बादशाह राजा के पंडाल में लगातार उमड़ रही दर्शनार्थियों की भीड़। साउथ मुंबई में स्थापित अखिल चंदनवाड़ी गणेशोत्सव मंडल में सजा गजानन का भव्य दरबार, यहां विराजमान 28 फीट ऊंचा गणपति प्रतिमा। इस बार केदारनाथ अवतार में विराजमान है भगवान गणेश, गणपति बप्पा के पास नंदी भी विराजमान है। गोट गणपति के नाम से मशहूर चंदनवाड़ी के बप्पा, क्योंकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं के बीच विघ्नहर्ता के दर्शन कर चीनी शक्कर चढ़ाने की परंपरा। पंडाल में एंट्री से लेकर बप्पा के दरबार में पहुंचने तक लोगों को होते हैं 12 शिवलिंग के दर्शन। इस बार अपना 49वां साल मना रहा ये मंडल। गिरगांव का राजा के दरबार में भव्य सजावट, गणपति के साथ स्थापित की गई भगवान कृष्ण की झांकी। द्वारकाधीश पर बनाई गई है बप्पा के दरबार की थीम। इस साल अपना 99वां साल मना रहा गिरगांव के राजा का ये पंडाल। बप्पा के सर पर बंधा फेटा यानी पगड़ी है मुख्य आकर्षण। 6 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा है ये खास फेटा। पूरी तरह से इको फ्रेंडली मिट्टी से बनी बप्पा की मूर्त। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यक्रम मन की बात में कर चुके हैं इस गणेश मंडल की तारीफ। गणपति उत्सव पर बॉम्बे हाईकोर्ट की सख्ती, सड़कों पर नहीं फोड़े जा सकेंगे पटाखे, तय सीमा से ज्यादा शोर होने पर पुलिस करेगी एक्शन। नागपुर के टेकड़ी मंदिर में भगवान गणेश को चढ़ाया गया विशाल लड्डू। 1101 किलो के भारी भरकम लड्डू का लगाया गया भोग। 5 फीट ऊंचे और 4.5 फीट चौड़ा है ये महालड्डू। 22 कारीगरों ने लगातार 6 दिन तक मेहनत करके तैयार किया ये विशाल लड्डू। ये महालड्डू बनाने में 230 किलो बेसन, 260 किलो चीनी, 320 किलो देसी घी, 61 किलो सूखे मेवे का इस्तेमाल किया गया। बूंदी और सूखे मेवे से बनाई 7 परतें। बप्पा को भोग में चढ़ाने के लिए बनाए गए महालड्डू में बूंदी, सूखे मेवे, घी, गुलाब जल, चांदी के वर्क का इस्तेमाल किया गया। भगवान गणेश का दर्शन पूजा आशीर्वाद पाने के साथ ये विशाल लड्डू देखने को मंदिर में आ रहे लगातार श्रद्धालु। महाराष्ट्र के अकोला में बने गणपति बप्पा से एक से बढ़कर एक पंडाल, काला मारुति गणेश पंडाल में बप्पा के दरबार में सजी महाभारत की झांकी। 102 साल पुराना है काला मारुति गणेश पंडाल। पंडाल में द्रौपदी के चीरहरण वाला प्रसंग हुआ सजीव, द्रौपदी की लाज बचाते दिख रहे भगवान श्री कृष्ण। अकोला के रिद्धि सिद्धि गणेश पंडाल में बप्पा के दरबार में दिखाई गई खाटू श्याम की जीवनी से जुड़ी हुई झांकी। झांकी में खाटू श्याम बाबा से जुड़ी धार्मिक मान्यता को अलग अलग दृश्यों के जरिए प्रदर्शित किया। मान्यता के मुताबिक महाभारत काल के बरब्रीक से है संबंध। श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही गणपति पंडालों की झांकियां, बप्पा के दर्शन के साथ साथ धार्मिक झांकियों के हो रहे यहां पर दर्शन। महाराष्ट्र के जालना में हैदराबाद स्टाइल वाले बप्पा बने आकर्षण का केंद्र। पहली बार हैदराबाद से जालना लाई गई गणपति बप्पा की विशाल मूर्ति। बालाजी महादेव गणेश मंडल में पहली बार लगी हैदराबाद पैटर्न वाले बप्पा की प्रतिमा। खास शैली में बनी ये मूर्ति श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही। अलग स्टाइल वाले बप्पा के दर्शन और आशीर्वाद पाने के लिए बड़ी संख्या में पंडाल पहुंच रहे श्रद्धालु। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही बप्पा की ये मूर्ति। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भगवान शिव के रौद्र रूप में विराजमान है 9 फीट ऊंचे बप्पा, दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालु। श्रद्धालुओं को भा रहे त्रिशूल, डमरू, नाग, बाघ, अंबर से सजे बप्पा। ढोल 11 पर ढोल नगाड़ों के बीच में की गई भगवान गणेश की महाआरती। महाराष्ट्र के जालना में अप्पा गणेश मित्र मंडल में लगी बप्पा की मूर्ति की चर्चा। पंडाल में बुलेट मोटरसाइकिल पर विराजे गणपति बप्पा। बुलेट बाइक की सवारी कर रहे बप्पा के पीछे वाली सीट पर बैठे हैं मूषक राज। मूर्ति तैयार करने में आई करीब 40,000 रुपए की लागत। श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने बुलेट वाले बप्पा। बप्पा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पंडाल में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। महाराष्ट्र के बीड में जय किसान गणेश मंडल ने मेडिकल वेस्ट से बनाई है बप्पा की प्रतिकृति। पर्यावरण अनुकूल चीजों से बनाई गणपति जैसी आकृति। आर्टिस्ट ने इलाज में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों से बनाई है बप्पा की आकृति। लेझिम, ढोल, हलगी, चपल्या जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों से करते हैं स्वागत। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में मिट्टी से बनी 63 फीट ऊंची इको फ्रेंडली महागणपति की मूर्ति को मिली वैश्विक पहचान, इंटरनेशनल अचीवर्स बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल। 1,00,000 से ज्यादा घरों से इकट्ठा की गई मिट्टी से बनाई गई थी ये मूर्ति, इको फ्रेंडली तरीके से त्यौहार मनाने को बढ़ावा देना था इस पहल का मकसद। अमरेली के सावर कुंडला में गणपति महोत्सव का अनोखा नजारा, 25,00,000 रुपए की भारतीय करेंसी अमेरिकी डॉलर से गजानन का श्रृंगार हुआ। ₹500 के नोटों से तैयार किया गया गणपति बप्पा का मुकुट, जबकि ₹200 के नोटों से बनाया गया है गणेश जी का हार भी। करीब एक महीने से की जा रही थी इस विशेष सजावट की तैयारियां, बप्पा के इस अनोखे स्वरूप को दर्शन के लिए बड़ी संख्या में आ रहे श्रद्धालु। देशभर में अलग अलग थीम पर सजे हैं गणपति के पंडाल, अकोला के गणेश पंडाल में लौटा 80 का दशक, दिखी बीते दौर की पूरी तस्वीर। सिंधी कैंप के रोज परिवर्तन गणेश पंडाल में जीवंत किया गया ग्रामीण स्कूल की कक्षा की झांकी को, जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने वाले दिनों की यादें ताजा हुई। आज की जेन जी और जेन अल्फा को उनके माता पिता और दादा दादी की बिताई जिंदगी से जोड़ना मकसद, लोगों के लिए पंडाल बना आकर्षण का केंद्र। स्मार्टफोन के इस युग में माचिस के डब्बों और धागे से बने खिलौना फोन की झांकी ने खींचा सबका ध्यान, स्मार्ट टीवी की जगह एंटीना वाले टीवी की भी झलक। कुएं से पानी खींचती महिलाएं और चूल्हे पर बनता खाना दर्शाया गया गणपति पंडाल में, इस अनोखी झांकी को देखकर लोग इमोशनल हुए। सूरत में कल्पवृक्ष की थीम पर गणेश पंडाल सजाया गया है, यहां भगवान गणेश के दर्शन के साथ लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया जा रहा। पंडाल की डालियों पर ड्रग्स, शराब, सिगरेट और तंबाकू छोड़ने के स्लोगन्स लगाए गए हैं, आयोजकों का कहना है युवाओं को नशे से बचाने के लिए जागरूक करना जरूरी है। गणेश पंडाल में पूजा के साथ सेवा, शिक्षा, अन्नदान, स्वच्छता का संदेश भी दिया गया, कल्पवृक्ष की थीम के जरिए लोगों को स्वस्थ और बेहतर जीवन जीने की अपील की गई। पंडाल में लगे कटआउट्स और संदेश बच्चों और युवाओं का ध्यान खींच रहे हैं, आयोजकों का मकसद कम उम्र से भी नशे के नुकसान के बारे में जागरूकता फैलाना। आयोजकों के मुताबिक पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर थीम पर मनाया गया था गणेश उत्सव, इस बार कल्पवृक्ष थीम के जरिए समाज को सकारात्मक और नशा मुक्त जीवन का संदेश। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में गणपति बप्पा की प्रतिमाओं के विसर्जन की तैयारी, बनाया गया 20 फीट गहरा विशाल कुंड, कुंड में भरा गया 30,00,000 लीटर पानी। गणपति प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए चंद्रपुर महानगर पालिका ने तैयार करवाया है 800 वर्ग फुट में फैला विशाल कुंड, यहां से कल से शुरू होगा प्रतिमा का विसर्जन। इराई नदी के किनारे तैयार किया गया प्रतिमा विसर्जन का कुंड, प्रतिमा विसर्जन के दौरान कड़े सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए। इस विशाल कुंड में बप्पा की 450 से ज्यादा बड़ी प्रतिमाओं का होगा विसर्जन, विसर्जन और जुलूस पर नजर रखने के लिए लगाए गए हैं सीसीटीवी कैमरा। लोगों को परेशानी से बचाने और पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए महानगर पालिका और पुलिस ने की तैयारी, करीब 1,000 प्रतिमाओं का होगा विसर्जन। राजगढ़ में उमड़ा आस्था का सैलाब, खिलचीपुर शहर में पारंपरिक आस्था और भक्ति के साथ मनाया गया जल झूलनी ग्यारस का पर्व। घाट गंगा नदी तक पर पहुंचे 200 मंदिरों से सजे धजे भगवान के विमान, हजारों श्रद्धालुओं ने किए उनके दर्शन। माझी समाज की ओर से नाव में भगवान राधा कृष्ण की सुंदर झांकी सजाई गई, जो श्रद्धालुओं के बीच में विशेष आकर्षण का केंद्र रही। भजनों पर झाल मंजीरे बजाते और नाचते श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना, श्रद्धालुओं ने झांकी और भगवान के विमानों के भी दर्शन किए। पूजा अर्चना और महाआरती के बाद भगवान के विमानों को गाजे बाजे और भजन कीर्तन के साथ मंदिरों की तरफ ले जाया गया वापस। भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस बल रहा तैनात। एक अक्टूबर से बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल। गाजियाबाद में शुरू हुआ ट्रायल। इसके लिए जिले के पेट्रोल पंपों पर विशेष ऐप व्यवस्था लागू। वाहन का नंबर स्कैन करने पर ऐप के माध्यम से तत्काल पता लगाई जा सकेगी संबंधित वाहन के प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता। दिल्ली में महिला सुरक्षा का नया प्लान। जल्द पिंक फोर्स का होगा गठन। संवेदनशील इलाकों में होगी पेट्रोलिंग। स्कूल कॉलेज मेट्रो स्टेशन बाजारों ट्रांसपोर्ट हब और अन्य संवेदनशील इलाकों में तैनात की जाएगी ये फोर्स। महिला सुरक्षा को लेकर एलजी टीएस संधू का बड़ा निर्देश। सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन में सैर करते दिखे टाइगर पर्यटकों ने कैमरा में कैप्चर किया यह नजारा। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल और सीएम योगी की मौजूदगी में यूपी के चार शहरों में भारतीय टैक्सी की शुरुआत। गोरखपुर वाराणसी कानपुर प्रयागराज में हुआ चालू। कृषक समृद्धि योजना के ई पोर्टल की भी लॉन्चिंग हुई। योजना के तहत किसानों को 6% प्रभावी ब्याज दर पर 6,00,000 तक का ऋण देने का प्रावधान। समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा ब्याज अनुदान। 5 सालों में 5,00,000 किसानों को लाभान्वित करने का टारगेट। आज गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी राज्य के महिला शरणालय का करेंगे लोकार्पण। सीएम योगी कोविड प्रभावित बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत लाभार्थियों को बांटेंगे लैपटॉप भी। राजस्थान के बीकानेर जिले में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2026 अपाचे हेलीकॉप्टर ने दिखाया अपना दम। अभ्यास में दिखी एविएशन की ताकत। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के साथ भारतीय और अमेरिकी सेना के जवानों ने लिया इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल ड्रिल में हिस्सा। संयुक्त मिशन की योजना बनाने और युद्ध में तालमेल बिठाने से लेकर इंटीग्रेटेड मूवमेंट और सटीक हमले करने तक का अभ्यास। जमीनी सेना के साथ एविएशन के बेहतरीन तालमेल की बात। दोनों सेनाओं के बीच में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की

पहुंचे गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर का दौरा किया। गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर में अग्निवीरों से की बातचीत, ट्रेनिंग, ऑपरेशनल क्षमता और सुविधाओं को लेकर भी बातचीत। अपने इस दौरे के दौरान ढवाल ने रेजिमेंटल गीत बढ़े चलो गढ़वालियों बढ़े चलो भी गाया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम भी रहे मौजूद। एनएसए ने अग्निवीरों को बढ़ाया मनोबल, बोले पूरा विश्वास है हमारे अग्निवीर अपनी वीरता, अपने त्याग और अपने पराक्रम से गढ़वाल राइफल्स का नाम और ऊंचा करेंगे। दिसंबर में अमेरिका जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, G20 में हो सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सीधी मुलाकात। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर होगा हाईटेक, पहली बार होगा मूवेबल क्रॉसिंग का इस्तेमाल। तीन सौ बीस की रफ्तार पर भी सुरक्षित मोड़ की तैयारी, पारंपरिक रेलवे लाइनों पर इस्तेमाल होने वाले फिक्स्ड क्रॉसिंग टर्नआउट से बड़ा बदलाव। इस तकनीक के इस्तेमाल से होगी कम वाइब्रेशन, जिससे यात्रियों को मिलेगा ज्यादा आराम। सैलानियों से गुलजार हुआ जम्मू कश्मीर, सुहाने मौसम में शिकारा राइड का मजा ले रहे। श्रीनगर की डल लेक किनारे पर्यटकों का हुजूम, बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने से स्थानीय कारोबारियों के खिल गए चेहरे। भोली बोगी गांव में महिलाएं गंगू पत्ते से बना रही टोपी, पद्मश्री जमुना टूडू की देखरेख में महिलाओं को इससे मिल रहा रोजगार। महिलाएं जंगल से गंगू पत्ता लाकर टोपी करती हैं तैयार, इस कला की उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ले रखी, ये पुरखों से चली आ रही है। खेतों में काम करते समय पहनती हैं महिलाएं गंगू पत्ते की ये टोपी, महिलाओं के मुताबिक ये धूप और बारिश से बचाने में सहायता करती है। गंगू पत्ते की एक टोपी 100 से 150 रुपए तक में बिकती है, जमुना टुडू के मुताबिक अच्छा बाजार मिले तो महिलाओं की बढ़ सकती है कमाई। गांव की महिलाएं बताती हैं इस टोपी को और मजबूत और टिकाऊ, उनके मुताबिक टोपी सही देखभाल के साथ करीब 5 साल तक चल सकती है। एशियन गेम्स में मीराबाई चानू ने रचा इतिहास, महिलाओं की 49 किलोग्राम कैटेगरी में भारत को दिलाया सिल्वर मेडल। इस जीत के साथ चानू ने खत्म किया 28 साल का सूखा। 1998 में कर्णम मल्लेश्वरी के सिल्वर मेडल जीतने के बाद यह दूसरा मौका जब वेटलिफ्टिंग में भारत को मिला सिल्वर मेडल। एशियन गेम्स में सॉफ्ट टेनिस से ही भारत के लिए खुशखबरी, पुरुष सिंगल्स में जय मीणा ने जीता ब्रॉन्ज। भारत ने महिला स्की टीम इवेंट में जीता ब्रॉन्ज मेडल, रजिया ढिल्लो, माहेश्वरी चौहान, परिनाज धालीवाल की तिकड़ी ने किया कमाल। भारत की पुरुष स्की टीम ने ब्रॉन्ज मेडल किया अपने नाम, नारुका इंडिविजुअल फाइनल में अनंत जीत सिंह नारुका, मेहराज अहमद खान और भवतेक सिंह गिल की जीत। फिर से लौट आया लकी अली का दौर, फिल्म दृश्यम 3 के गाने को दी अपनी आवाज, रिलीज हुआ मुस्कराओ दो गाने का टीजर। फिल्म महावीर कर्ण का पहला पोस्टर जारी, लगभग 150 करोड़ रुपए के बजट में बन रही है फिल्म, अगले साल हिंदी समेत 5 भाषाओं में रिलीज होगी। एक्टर वीर पहाड़िया अपार शक्ति खुराना की नई फिल्म प्रेम कीटाणु का ट्रेलर रिलीज, ये फिल्म 2 अक्टूबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में होने वाली है रिलीज। नई फिल्म का पहला दूसरा प्यार लेकर आ रहे हैं निर्माता लव रंजन, इस फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया। राजस्थानी फिल्म धूल का मोशन पिक्चर जारी, एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जो 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। टेलर स्विफ्ट को एमटीवी वीएमए में पहली बार आर्टिस्ट डायरेक्टर अवार्ड दिया जाएगा, ये अवार्ड म्यूजिक वीडियो में उनके डायरेक्शन और क्रिएटिव काम के लिए।

0: टेलर स्विफ्ट अब तक 7 बार VMA में बेस्ट डायरेक्टर के लिए नॉमिनेट हो चुकी हैं, इनमें से 4 बार उन्होंने अवार्ड जीता है। टेलर स्विफ्ट ने द फेट ऑफ ओफेलिया, ओपेलाइट और एंटी हीरो जैसे वीडियो में डायरेक्शन किया है। MTV ने उनके काम को अलग और नए आइडिया वाला बताया। टेलर स्विफ्ट 14 बार ग्रैमी अवार्ड जीत चुकी हैं, 4 बार एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी अपने नाम किया। उनका नया एल्बम द लाइफ ऑफ अ शो गर्ल रिलीज के पहले हफ्ते में रिकॉर्ड बिक्री कर चुका। इस साल MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड की मेजबानी स्नूप डॉग करेंगे, समारोह रविवार को लॉस एंजलिस में होगा।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: क्या बृहस्पति की दृष्टि सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है? क्या बृहस्पति की दृष्टि से कुंडली के ग्रहों की अशुभता कम हो जाती है? क्या बृहस्पति की दृष्टि से मंगल दोष समाप्त हो जाता है? क्या है बृहस्पति की दृष्टि का रहस्य, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: चीन में इन दिनों वर्ल्ड स्किल शंघाई 2026 प्रतियोगिता चल रही है, इस कार्यक्रम में 70 से ज्यादा देश अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। कल इस कार्यक्रम की बेहद शानदार ओपनिंग सेरेमनी हुई, कार्यक्रम के दौरान 1400 से ज्यादा युवा अलग अलग क्षेत्रों में अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी पर सबसे ज्यादा चर्चा होगी। वर्ल्ड स्किल्स की ओपनिंग सेरेमनी में तकनीक का शानदार नजारा देखने को मिला, कई ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने इंसानों के साथ मिलकर डांस भी किया।

0: शंघाई में वर्ल्ड स्किल्स का सबसे बड़ा मंच सज चुका है। कौशलों का ओलंपिक कही जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता का 48वां संस्करण शुरू हो चुका है, जिसमें अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने भारत समेत दुनिया भर के हुनरमंद युवा पहुँच चुके हैं। 22 सितंबर को शंघाई के नेशनल एग्जीबिशन एंड इन्वेंशन सेंटर में शुरू हुए वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में 70 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों के 1400 से ज्यादा युवा कौशल पेशेवर हिस्सा ले रहे हैं। भारत की ओर से टीम स्किल इंडिया के 70 युवा 63 श्रेणियों में देश का तिरंगा थामकर वैश्विक मंच पर अपनी धमक दिखाने पहुँचे हैं। वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता का मकसद सिर्फ प्रतियोगिता नहीं बल्कि युवाओं को बदलती तकनीक और भविष्य की रोजगार आवश्यकताओं के लिए तैयार करना भी है। इलेक्ट्रॉनिक से लेकर ऑटोमोबाइल, रोबोटिक्स, आईटी, निर्माण, वेल्डिंग, कुकिंग और कई दूसरे क्षेत्रों में प्रतियोगी अपनी दक्षता साबित करते हैं। वैश्विक कौशल प्रतियोगिता में भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है। भारत के युवाओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अलग अलग कौशल क्षेत्रों में अपने हुनर का दम दिखाया है। 2015 में ब्राजील के साओ पाउलो में हुई वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता में भारत 29वें स्थान पर था। भारतीय टीम ने कुल 8 मेडलियन ऑफ एक्सीलेंस जीते थे। 2024 में फ्रांस के लियोन शहर में हुई इस प्रतियोगिता में भारत ने बेहतर प्रदर्शन किया और 13वें स्थान पर पहुंच गया। टीम ने कुल 16 पदक और उत्कृष्टता पदक हासिल किए। वर्ल्ड स्किल एशिया 2025 में भारत ने और बेहतर प्रदर्शन करते हुए 8वां स्थान हासिल किया। इस प्रतियोगिता में भारत ने 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज और 3 उत्कृष्टता पदक समेत कुल 6 पदक जीते। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में ग्लोबल स्किल्स चैलेंज 2026 में टीम इंडिया ने 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर शंघाई के लिए अपनी तैयारी को और मजबूत किया। आंकड़ों से साफ है कि दुनिया की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता में भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है और भारत के युवा हुनर और तकनीक कौशल के जरिए दुनिया में अपनी नई पहचान बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे इस उत्सव के साथ जुड़िए। इसके लिए आप करना बस इतना सा है कि अपने घर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेज दीजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक वीडियोस भी भेज रहे हैं और ये तस्वीरें आई हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर से सामने। सुनील अग्रवाल ने तस्वीरें भेजी हैं। सफेद पर्दों और फूलों से सजे पंडाल में बिराजे बप्पा का स्वरूप बेहद निराला लग रहा है। बप्पा ने सिर पर नीली पगड़ी बांधी है जो उनके स्वरूप को और निखार रही है। दूसरी तस्वीर हमें भेजी है बेंगलुरु कर्नाटक से ललिता और राजीव जैन ने। बप्पा की प्रतिमा को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया, साथ ही बप्पा के मुकुट पर एक फूल भी सजाया गया।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम
9: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
10: देश
5: देश में सजे बप्पा के अनूठे पंडाल, संभाजीनगर में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती 41 फीट की प्रतिमा, तो बीड जिले में मेडिकल वेस्ट से बनाई गणपति की मूर्ति। जालना में बुलेट पर सवार गणपति बप्पा की अनोखी मूर्ति बनी आकर्षण का केंद्र, चंद्रपुर में विसर्जन के लिए बनाया जा रहा 20 फीट का कुंड। नागपुर के गणेश टेकड़ी मंदिर में भगवान गणेश को चढ़ाया गया 1101 किलो का महालड्डू। 5 फीट ऊंचे और 4 फीट चौड़े लड्डू को 22 कारीगरों ने 6 दिन में तैयार किया। बामन द्वादश पर बद्रीनाथ में धूमधाम से निकली भगवान उद्धव जी की डोली, माता मूर्ति महोत्सव में उमड़ा भक्तों का सैलाब। एशियन गेम्स में 28 साल बाद भारत को वेटलिफ्टिंग में मेडल, मीराबाई ने जीता सिल्वर मेडल, भारत के पास अब तक कुल 11 मेडल।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे।
5: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। पूरे देश में गणेशोत्सव की धूम है और गणपति बप्पा अलग अलग रूपों में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। कहीं मन्नत पूरी होने की आस में भक्त बप्पा को शक्कर चढ़ा रहे हैं, तो कहीं गणपति बप्पा केदारनाथ के अवतार में दर्शन दे रहे हैं। ऐसे में आज की जो हमारी पहली गुड न्यूज है वो है गणपति पंडालों में भव्यता और दिव्यता का संगम। शहर शहर बप्पा के भव्य और दिव्य पंडाल सजाए गए हैं, जहां गणपति का एक से बढ़कर एक स्वरूप भक्तों को आकर्षित कर रहा है। कहीं बप्पा का श्रृंगार लाखों रुपए की करेंसी और अमेरिकी डॉलर से किया गया है, तो कहीं बप्पा के दरबार के जरिए सामाजिक संदेश दिया जा रहा है।
6: शहर शहर बिखरे गणपति उत्सव के रंग, कहीं पंडालों में भव्यता और दिव्यता का संगम, कहीं बप्पा का अनोखा श्रृंगार बना आकर्षण, कहीं करोड़ों के आभूषणों से सजा गणपति का दरबार, कहीं फूल और मोदक के भोग से हो रही बप्पा की आराधना। मुंबई के तमाम इलाकों में बप्पा के भव्य दिव्य स्वरूप देखने के लिए मिल रहे हैं। मुंबई के अखिल चंदनवाड़ी के गणपति पंडाल में भी आस्था का ऐसा ही अनोखा रंग देखने को मिल रहा है। यहाँ बप्पा का पंडाल केदारनाथ थीम पर सजाया गया है।
10: इस वक्त मैं मौजूद हूँ साउथ मुंबई में स्थित अखिल चंदनवाड़ी गणेश उत्सव पंडाल में, जहाँ के बप्पा गोड़ गणपति बप्पा के नाम से भी जाने जाते हैं। तस्वीरों में देखें किस तरीके से बहुत ही ज्यादा विशाल, बहुत ज्यादा भव्य नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बप्पा की जो हाइट है वो तकरीबन 28 फीट है और केदारनाथ के अवतार में यहाँ पर स्थापित हुए हैं।
6: यहाँ श्रद्धालु अपनी मन्नत के लिए गणपति बप्पा को चीनी यानी शक्कर अर्पित कर रहे हैं।
11: एक ने मन्नत मांगा था तो उसका सब इच्छा पूर्ण हुआ, इसलिए उसने जब इसे शक्कर चढ़ाया जब इसे आज तक पूरा वो शक्कर ही है।
6: मुंबई में गिरगांव का राजा का दरबार भी इस साल खूब चर्चा में है। इस साल ये पंडाल अपना 99वां साल मना रहा है। हर साल की तरह इस साल भी गणपति बप्पा बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं जैसे हर साल होते हैं, लेकिन इस साल दरबार की थीम द्वारकाधीश पर बनाई गई है और प्रतिमा पर भी कृष्ण जी के मोर पंख से लेकर उनके बाल स्वरूप को दिखाया गया है।
10: बिल्कुल एक ही तरह की थीम होती है, एक ही तरह का आकार होता है गणपति बप्पा का, लेकिन विशेष इस बार ये है कि श्री कृष्ण के रूप में देखे जा रहे हैं। बप्पा बहुत ज्यादा प्यारे और सुंदर तो लग ही रहे हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा जो बहुत ज्यादा देखने वाली चीज है उनका फेटा है।
6: महाराष्ट्र का अकोला भी आस्था और भक्ति के रंग से सराबोर है। यहाँ करीब 4 दशक पुरानी परंपरा को फिर से जीवंत किया गया है और 1980 के दौर की झलक गणपति पंडाल में दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ आकर्षण सिर्फ पुरानी यादें नहीं है, बप्पा के कई ऐसे स्वरूप भी हैं जिन्हें देखकर श्रद्धालु हैरान रह जाते हैं।
12: सिंधिया इलाके में जो है आप देख सकते हो कि 1980 के दशक का किस तरह से जो पूरा उस वक्त का दौर था वो किस कैसा दौर था।
6: ये भक्तों की आस्था और विश्वास ही है कि वो अपनी कल्पना को आकार देकर बप्पा को अपने मनचाहे रूप में ढाल लेते हैं। ये तस्वीर नासिक की है जहाँ गणपति बप्पा का इतना सूक्ष्म रूप है कि उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप तक की जरूरत पड़ती है। नासिक के सुनार भगवान दास खरोटे ने अलग अलग साइज की 291 सूक्ष्म सोने की गणेश मूर्तियां बनाई हैं। इनमें सबसे सूक्ष्म 3 मिलीमीटर से लेकर 1 इंच साइज तक की गणेश मूर्ति शामिल है। इतना ही नहीं, सिर्फ 1.25 इंच की जगह में अलग अलग एक्सप्रेशन वाली 256 गणेश मूर्तियां भी खरोटे ने बनाई है।
13: 92 में क्या चने की दाल पे मैं गणेश जी का मूर्ति बनाया था जो बहुत छोटा था, उसको पहला फर्स्ट प्राइज भी मिला था। हुआ ऐसा कि 6 महीने के बाद उसको कीड़े मकोड़ों ने खा लिया, तो मैं बहुत हर्ट हो गया कि जो मैं कलाकृति बनाया था वो तो मेरा आइडेंटिटी था लेकिन अभी गायब हो गया। तो मैं ऐसा सोचा कि ये कोई परमानेंट माध्यम हो, इसलिए मुझे गोल्ड में बनाने का इच्छा हुआ।
6: वैसे बप्पा के इन रूपों में सिर्फ कला नहीं, समाज के लिए संदेश भी छुपा है। ऐसे कई पंडाल हैं जहां सामाजिक संदेश के जरिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सूरत के पाल हजीरा रोड पर एक ऐसा गणेश पंडाल तैयार हुआ है जो यहां गणेश दर्शन के लिए आ रहे लोगों को व्यसन मुक्ति का संदेश भी दे रहा है।
14: ये जो हमने थीम रखी है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर ये समाज हमारा, जो खास करके युवा, जो युवा धन है हमारा, वो बहुत ही गलत रास्ते पे चल रहा है, तो वो गलत रास्ते पे नहीं चले और वो समझे सबसे ज्यादा।
6: गुजरात के अमरेली में बप्पा का दरबार नोटों से सजाया गया है। अमरेली के सावरकुंडला में गणपति बप्पा के श्रृंगार में 20, 50, 100, 200 और 500 रुपए के नोटों का इस्तेमाल किया गया है। और इतना ही नहीं, अमेरिकी डॉलर भी बप्पा के दरबार की शोभा बढ़ा रहे हैं। गणेश उत्सव अब अपने अंतिम चरण की ओर है। 2 दिन बाद अनंत चतुर्दशी पर ढोल नगाड़ और जयकारों के बीच बप्पा को विदाई दी जाएगी। आंखें नम होगी, दिल में भावुकता होगी और जुबा पर होगा सिर्फ एक ही जयकारा, गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू चल दिया। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, अमरेली से ब्रजेश जोशी, अकोला से धनंजय साबले और चंद्रपुर से विकास राजुरकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: और गया जी में पितृपक्ष मेले की शुरुआत होने जा रही है और मेले की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जा रहा है। असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए पूरे मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है पितृपक्ष मेला में सीसीटीवी कैमरों से नजर। पितृपक्ष मेला में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर गया जी की पुलिस ने अभी से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम शुरू कर दिए हैं। 15 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष मेला क्षेत्र में तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुलिस शिविर बनाए गए हैं।
15: भगवान विष्णु की नगरी माने जाने वाले गया जी में 25 तारीख से पितृपक्ष महामेले का आगाज हो रहा है। ऐसी मान्यता है कि गया जी के विष्णुपद क्षेत्र में चलने वाले पितृपक्ष मेला के दौरान पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और यहां पिंडदान करने वाले श्रद्धालुओं और तीर्थ यात्रियों को पूर्वजों का आशीर्वाद और सुख शांति मिलती है। इस मेले में देश विदेश से पिंडदान करने के लिए श्रद्धालु गया जी में एकत्रित होते हैं, लिहाजा उनकी सुरक्षा और सुविधा के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। 15 दिनों तक चलने वाले इस पितृपक्ष मेले में पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के लिए जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों के जरिए तीर्थ यात्रियों के अलावा असामाजिक तत्वों पर भी पुलिस की नजर रहेगी।
16: सीसीटीवी लगाया जा रहा है जिसके द्वारा जो है हमारे कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जाएगी, चाहे वो क्राउड कंट्रोल का हो या सामाजिक तत्व है उनके ऊपर नज़र रखनी हो, सारी चीज़ें हम लोग उसके माध्यम से करेंगे। ट्रैफिक का भी हम लोगों ने प्लान बनाया हुआ है।
15: पितृपक्ष मेला के दौरान मेला क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट को मेला क्षेत्र में सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है और पूरे मेला क्षेत्र में 118 पुलिस शिविर बनाए गए हैं। इन शिविरों में 2400 घंटे पुलिस बल और अधिकारी मौजूद रहेंगे।
16: बहुत बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट की डेपुटेशन कर रहे हैं। 24x7 डेपुटेशन होगा 3 पालियों में, लगभग 118 पुलिस शिविर भी लगाया जा रहा है, जहां मे आई हेल्प यू का भी काउंटर लगेगा और वहां पे 24/7 24 घंटे पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की।
15: जिला प्रशासन भी मेले को लेकर पूरी तरह से तैयार है। विष्णुपद मंदिर के पास साफ सफाई और देवघाट सहित अन्य घाटों की सफाई की व्यवस्था की गई है। यहाँ पिंडदान करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए टेंट लगाए गए हैं और उनके बैठने की व्यवस्था की गई है।
17: प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा हमारे पास मंदिर की ओर साफ सफाई, विधि व्यवस्था, घाटों की साफ सफाई, तालाबों की साफ सफाई, सड़क की मरम्मत की जा रही है, लाइट की समुचित व्यवस्था हो चुकी है, कुछ पेयजल की व्यवस्था की जा रही है, जिजमानों का आसन आवासन के लिए स्कूल निर्गत किए गए हैं।
15: पितृपक्ष के अवसर पर प्रयागराज स्थित पवित्र गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और संगम में स्नान करने के बाद अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं और उनकी आत्मा की शांति और अपने परिवार के कल्याण की कामना करते हैं। संगम को पितृ कर्म के लिए विशेष श्रद्धा का स्थान माना जाता है।
18: पिंडदान करने के वास्ते बड़े को पिंडदान करने हमें आंध्रा से इधर काशी आया, बुद्धगया आया, बिल्कुल लास्ट में त्रिवेणी संगम है ना, इधर पिंड प्रदान करा तो हमारे पिता को, पिता श्री को अच्छा होता है, घर को पिंड प्रदान करने के वास्ते इधर से आया, इधर हमको बहुत अच्छा करा स्वामी, करा दिया।
15: इस बार प्रयागराज के तीर्थ पुरोहितों ने ऑनलाइन पिंडदान की भी व्यवस्था की है। जो लोग देश विदेश या किसी कारणवश अपने पुरखों का पिंडदान करने नहीं आ सकते, वह ऑनलाइन पिंडदान कर सकते हैं और ऐसा करके वह लोग अपने पूर्वजों और अपनी परंपरा से जुड़े रहते हैं।
19: देश विदेश से लोग जो है लोग आते हैं, अपने पितरों को जो है मोक्ष दिलाने के लिए, बचरनी पार कराने के लिए आते हैं, यहाँ पर वैकुंठवास कराने के लिए आते हैं, तो सर्वप्रथम आके पहले प्रयागराज में करते हैं। विष्णु मुख प्रयाग, विष्णु नाभि काशी, विष्णु चरण गया, तो पहला पिंडदान प्रयाग में होता है, दूसरा काशी में होता है, तीसरा गया में होता है। ये गया वर्जन जो है पिंडदान होता है, जो लोग आते हैं गया वर्जन श्राद्ध करने के लिए, तो सर्वप्रथम प्रयागराज से प्रारंभ करते हैं काशी होते हुए।
15: प्रयागराज में देश भर से लोग पितृपक्ष में पिंडदान करने आते हैं और प्रयागराज पहुंचकर अपने पूर्वजों का पिंडदान कर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं और अपने परिवार की सुख शांति की कामना करते हैं। गया से पंकज कुमार के साथ प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे।
5: इन दिनों जमीन से लेकर आसमान तक हिंदुस्तान की सेना का दमखम दिख रहा है। भारत और अमेरिका की सेना मिलकर यहां पर युद्धाभ्यास कर रही है। इस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में आधुनिक हथियारों का शक्ति प्रदर्शन भी किया जा रहा है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है युद्धाभ्यास में आसमान से गरजता अटैक हेलीकॉप्टर। आपको बता दें कि अभ्यास के दौरान होवित्सर तोप, धनुष और पिनाका रॉकेट लॉन्चर से जबरदस्त आर्टिलरी फायरिंग की गई। इसके साथ ही अटैक हेलीकॉप्टर्स ने आसमान में अपना दम दिखाया।

0: एक साथ गरजती M777 अल्ट्रा लाइट होविट्सर तोपें, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से धुआंधार फायरिंग और आसमान में गरजता सेना का अटैक हेलीकॉप्टर। ये तस्वीरें किसी स्पेशल ऑपरेशन या फिर जंग के मोर्चे की नहीं हैं, बल्कि एक्शन से भरपूर ये तस्वीरें आई हैं राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से, जहां इन दिनों भारत और अमेरिका की सेना मिलकर युद्ध अभ्यास कर रही हैं। युद्ध अभ्यास 2026 के दौरान M777 अल्ट्रालाइट होविट्सर तोप, धनुष आर्टिलरी गन और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ही नहीं, बल्कि प्रैक्टिस सेशन के दौरान L-70 एयर डिफेंस गन और एमलेट सिस्टम का भी एक्शन देखने को मिला। इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी तालमेल को मजबूत करना और आधुनिक युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी ताकत को परखना है। अपने इसी मकसद के तहत दोनों देशों के जवानों ने इन घातक हथियारों का इस्तेमाल कर अपनी मारक क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया।
1: पाकिस्तान की सीमा के नजदीक भारत और अमेरिका के सैनिक न सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमान में भी अपना रण कौशल दिखा रहे हैं। युद्ध अभ्यास के दौरान टैक्टिकल ड्रिल्स के साथ साथ अब हवाई करतब भी देखने को मिल रहे हैं और साथ ही किस तरह से एक युद्ध में अपने एयर असेट्स का इस्तेमाल किया जाता है उस पर भी जोर दिया जा रहा है। और इसी कड़ी में भारतीय सेना ने अपने अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स के जरिए खास फायरिंग भी इस युद्धाभ्यास में की है।
0: अभ्यास के दौरान दोनों देशों के जवानों ने ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर बैठकर दुश्मन के ठिकानों और लक्ष्यों की बारीकी से पहचान की। सैनिकों ने आपस में खुफिया जानकारी साझा करने और तुरंत फायर ऑर्डर देने और फायरिंग के दौरान जरूरी सुधार करने की जटिल प्रक्रियाओं का मिलकर अभ्यास किया, ताकि युद्ध के मैदान में चूक की कोई गुंजाइश न रह जाए।
1: बताया जा रहा है कि किस तरह से जमीन से लेकर आसमान तक एविएशन की बात हो या फिर तोप की बात हो, आर्टिलरी की बात हो, हर तरफ भारत का कौशल, भारत की स्किल और भारत के युद्ध में जो नई तकनीक है वो कैसे आगे बढ़ रही है और अमेरिका इससे सीख भी रहा है और इसे देख भी रहा है।
0: इस बार के इस अभ्यास में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है, इसीलिए ट्रेनिंग के दौरान सर्विलांस और टोही अभियानों के लिए विशेष रूप से ड्रोन्स और ऑटोनोमस सिस्टम का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच ये संयुक्त सैन्य अभ्यास का 22वां एडिशन है। 2 सप्ताह तक चलने वाला अभ्यास 15 सितंबर को शुरू हुआ था। इसका आयोजन उत्तराखंड के औली फॉरन ट्रेनिंग नोड और राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक साथ किया जा रहा है, जिसमें दोनों देशों की ओर से 600-600 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और श्रीनगर के लाल चौक पर मंगलवार को बड़ी संख्या में तिरंगे लहराने लगे। दरअसल यहां से एक पीस और यूनिटी मार्च निकाला गया जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। ये मार्च सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष में आयोजित किया गया था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने तिरंगा लेकर जुलूस निकाला। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है लाल चौक पर लौह पुरुष की जयंती पर शांति मार्च। श्रीनगर के बीचों बीच स्थित मशहूर लाल चौक पर मंगलवार को राष्ट्रीय गर्व और आध्यात्मिक एकता का एक शानदार नजारा देखने को मिला। यहां पर बड़ी संख्या में लोग तिरंगा लेकर पहुंचे और वहां पर उन्होंने शांति और एकता के लिए मार्च निकाला। शांति और एकता के लिए अहम कार्यक्रम में मुख्य धार्मिक नेता के तौर पर गुजरात के मणिनगर स्थित स्वामीनारायण संस्थान के परम पूज्य आचार्य स्वामी श्री जितेंद्र प्रियदास जी महाराज शामिल हुए। इस कार्यक्रम में देश भर से आए लोगों ने हिस्सा लिया और शांति, एकता, सांप्रदायिक सद्भाव और आपसी समझबूझ का संदेश दिया। लाल चौक जो कि लंबे समय से इस इलाके के अशांत अतीत का प्रतीक रहा है, वहां लोग सैकड़ों तिरंगों के साथ निकले और भारत माता के जय और वंदे मातरम के जोरदार नारे लगाए। इस जमावड़े ने देश और दुनिया को एक साफ संदेश दिया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और यहाँ शांतिपूर्ण और आतंक के साए से मुक्त है और अब लोगों को यहाँ आकर इसकी सुंदरता का अनुभव करना चाहिए।
3: हिंदुस्तान के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल के 150वें जन्मदिन समारोह के चलते श्रीनगर के लाल चौक में गुजरात से सरदार पटेल सोसाइटी के कई सारे लोगों ने पीस मार्च निकाला। इस पीस मार्च के दौरान हाथों में तिरंगा थामे ये लोग लाल चौक में अलग अलग जगहों पर गुजरे और साथ ही साथ सरदार पटेल को याद किया। गौरतलब है कि 1947 में भारत और पाकिस्तान की आजादी के बाद सरदार पटेल की बतौरी गृह मंत्री बड़ी भूमिका थी जम्मू कश्मीर को भारत से मिलाने के लिए। उसी अवसर को उनके 150वें जन्मदिन पर यहां श्रीनगर के लाल चौक में याद किया गया।
2: जंगल आदिवासी समाज के लिए सिर्फ जिंदगी का हिस्सा नहीं बल्कि उनकी जरूरतों और रोजगार का भी सहारा है। झारखंड के जमशेदपुर से करीब 75 किलोमीटर दूर एक आदिवासी गांव में पत्तों से ऐसी टोपी तैयार की जा रही है जो कि धूप और बारिश से बचाव करने के साथ ही पीढ़ियों पुरानी परंपरा को भी जिंदा रखे हुए है। इसी से जुड़ी आज की हमारी अगली यानी कि पांचवी गुड न्यूज है, आदिवासी महिलाओं को गंगू टोपी से रोजगार। जी हाँ, झारखंड के जमशेदपुर में महिलाएं अपने हुनर से जंगल के पत्तों को रोजगार में बदल रही है। पीढ़ियों से चली आ रही कारीगरी के जरिए ये महिलाएं पत्ते से ऐसी पारंपरिक टोपी तैयार कर रही हैं जो कि धूप और बारिश से बचाने के साथ साथ उनके लिए कमाई का जरिया भी बन रही है।

0: जंगल की सैर भला किसे नहीं भाती। चारों तरफ हरियाली, ठंडी हवा और प्रकृति का खूबसूरत नजारा। लेकिन जंगल और खेतों में काम करने के दौरान तेज धूप लोगों को जरूर परेशान करती है। धूप से बचने के लिए बाजार में कई तरह की टोपियां मिलती हैं। लेकिन झारखंड की आदिवासी महिलाओं ने इसका ऐसा देसी जुगाड़ निकाला है जो प्रकृति से जुड़ा भी है और बेहद उपयोगी भी। जंगल से पत्ते चुनकर ये महिलाएं ऐसी पारंपरिक टोपी तैयार करती हैं जो तेज धूप से सिर और चेहरे को बचाने में मदद करती हैं। ये तस्वीरें हैं जमशेदपुर से करीब 75 किलोमीटर दूर चकुलिया प्रखंड का भोली बोगी गांव की, जहां करीब 50 घरों वाले इस आदिवासी बहुल गांव में ज्यादातर परिवार जंगल और खेती से जुड़े हैं। और इसी गाँव में जंगल से मिलने वाले पत्ते अब यहां की महिलाओं के हुनर और रोजगार की पहचान बन रहे हैं। भोली बोगी गांव में टोपी बनाने के इस हुनर को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं के चार समूह काम कर रहे हैं। इन समूहों का नेतृत्व पद्मश्री से सम्मानित जमुना टूडू करती हैं। महिलाएं जंगल से खास तरह के गोंग पत्ते चुनकर लाती हैं। घर पहुंचकर पत्तों को अच्छी तरह साफ किया जाता है। फिर इन पत्तों की कटिंग और बुनाई के जरिए एक ऐसी टोपी तैयार होती है जो देखने में भले ही साधारण लगे लेकिन होती बेहद खास है। बनाने के लिए महिलाओं ने कोई औपचारिक ट्रेनिंग नहीं ली। ये हुनर उन्हें अपने परिवार से मिला है। आदिवासी समाज में खेतों में काम करने के दौरान बरसात और गर्मी से बचने के लिए ऐसी टोपी का इस्तेमाल लंबे समय से होता आ रहा है, जो अब सिर्फ ढकने तक सीमित नहीं है बल्कि जंगल बचाने के लिए महिलाओं को संगठित करने वाले जमुना टूडू महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर रही है। अब इसी जंगल से मिलने वाले संसाधनों को महिलाओं के रोजगार से जोड़ने की कोशिश की जा रही है।
1: कम से कम एक दिन में तैयार हो जाता है, लेकिन जंगल से लाना पड़ता है पत्ता को।
2: मेरे बच्ची समझे कि बाजार क्या है इसका?
1: देखिए, बाजार जो है ना, हम लोग गांव के लोग हैं, बड़ा बड़ा बाजार में तो लोग बेच नहीं पाते हैं। हम लोग का ये जो गांव में टोला में कहीं हाट बनता है या कोई मेला होता है तो उस सब जगह में ले जा करके हम लोग बेचते हैं। जैसे कि 100 रुपया में, 102 रुपया में ऐसे हम लोग बेचते हैं।
2: ये पत्ता कौन सा है और कितने दिन तक ये रह सकता है?
1: ये पत्ता का नाम है गुंगू पत्ता, हम लोग गुंगू पत्ता बोलते हैं। और ये जो इस पत्ता में टोपी बना के कम से कम
3: जंगल से लाना पड़ेगा और एक दिन में हो जाएगा टोपी।
2: टोपी, इस टोपी की खासियत क्या है?
3: धूप के बचाने के लिए तो, और बरसात में।
0: जाहिर है जिस जंगल को ये महिलाएं बचाती हैं उसी जंगल से उन्हें अपनी जिंदगी संवारने का रास्ता भी मिल रहा है। पत्ते चुनकर लाना, उन्हें साफ करना, कारीगरी से टोपी तैयार करना और फिर उसे बाजार तक पहुंचाना, महिलाओं के हुनर, आत्मनिर्भरता और जंगल से उनके गहरे रिश्ते की पहचान बन गया है। जमशेदपुर से अम सिन्हा, गुड न्यूज टुडे।
4: भारत की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने एशियन गेम्स में इतिहास रच दिया है। उन्होंने महिलाओं की 49 किलोग्राम स्पर्धा में कुल 198 ग्राम वजन उठाकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। ये एशियन गेम्स में मीराबाई का पहला पदक है। इसके साथ ही भारत को वेटलिफ्टिंग में 28 साल बाद एशियन गेम्स का पदक मिला है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो है भारत को वेटलिफ्टिंग में 28 साल बाद पदक। मीराबाई चानू का ये तीसरा एशियन गेम्स है। वो इससे पहले 2014 और 2018 में भी एशियाड में हिस्सा ले चुकी हैं, लेकिन पदक जीतने में सफलता नहीं मिली थी। ओलंपिक विश्व चैंपियनशिप और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीत चुकी मीराबाई के लिए एशियन गेम्स का पदक अब तक एक अधूरा सपना था, लेकिन 2026 में उन्होंने इस कमी को भी पूरा कर लिया। मीराबाई ने स्नैच में 83 किलोग्राम से शुरुआत की और अपने दूसरे प्रयास में 85 किलोग्राम वजन उठाया। इसके बाद उन्होंने तीसरे प्रयास में 87 किलोग्राम का सफल लिफ्ट किया। स्नैच के बाद वो पदक की दौड़ में मजबूती से बनी हुई थी, जबकि क्लीन एंड जर्क में मीराबाई ने 107 किलोग्राम के सफल प्रयास के साथ शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दूसरे प्रयास में 111 किलोग्राम वजन उठाया। मीराबाई ने 87 किलोग्राम स्नैच और 111 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क के साथ कुल 198 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक हासिल किया।
5: मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि यही दिन का हमें इंतजार थी काफ़ी सालों से, पर फाइनली आज मिल गए उनके सिल्वर मेडल। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं खुद के ऊपर भी बहुत प्राउड फील करती हूँ कि जो मुझे चाहिए था, जो मेरा सपना था, वो आज पूरा हो गया। प्रेशर भी थे कि इस बार एशियन गेम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे मेरे लिए, और बैक टू बैक कॉम्पिटिशन करना ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो कॉमन गेम्स के बाद एक महीने ही मिल रही थी मेरे पास, तो बस मुझे यही था कि मुझे करना है जो भी हो। इस बार एशियन गेम्स में बिल्कुल मुझे मेडल एक तो एक लेना ही है, तो मैंने पूरा अच्छे तरीके से तैयारी की थी यही मेडल। बस समझ में नहीं आ रहा मैं क्या से शुरू करूँ, पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सर के साथ मैं सेलिब्रेट करना चाहूँगी कि ये हमने बहुत ही मुश्किल, बहुत ही इसी का ही दिन हमने इंतजार बहुत सालों से किया था, तो हम बहुत खुश है, सर भी खुश है, तो मैं बहुत बड़ा सेलिब्रेट करूँगी।
4: और राजस्थान के अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को जंगल सफारी के दौरान रोमांचक अनुभव हुआ। पर्यटकों को टाइगर ST-19 के दो बच्चे नजर आए। घने जंगलों के बीच शावकों के साइटिंग ने पर्यटकों के रोमांच को यादगार बना दिया। ऐसे में आज की हमारी सातवीं और आखिरी गुड न्यूज इसी से जुड़ी है। सरिस्का के बफर जोन में दिखे बाघों के बच्चे। आपको बता दें कि सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन में मंगलवार को सफारी के दौरान पर्यटकों को ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने उनका रोमांच और बढ़ा दिया। ढूंढ इलाके में सफारी के दौरान अचानक घनी झाड़ियों के बीच टाइगर ST-19 का एक नर शावक नजर आया और इसके कुछ ही देर बाद दूसरा नर शावक भी अलग लोकेशन पर दिखाई दिया। दोनों शावक करीब 40 मीटर के दायरे में थे। दोनों शावक करीब 1.5 साल के बताए जा रहे हैं। जंगल के बीच एक साथ दो शावकों की साइटिंग ने पर्यटकों का रोमांच कई गुना बढ़ा दिया और इस रोमांचक नजारे को कैद करने के लिए पर्यटकों ने कैमरे निकाले और किसी ने इस नजारे को अपने कैमरे में कैद किया तो किसी ने फोन में। एक ही सफारी में दो शावकों की साइटिंग ने पर्यटकों के सरिस्का सफारी के अनुभव को यादगार बना दिया। दरअसल सरिस्का का बफर जोन बाघों के लिए बेहद अहम इलाका है। घना जंगल, पर्याप्त वन क्षेत्र और वन्य जीवों की आवाजाही की वजह से यहां पर टाइगर साइटिंग पर्यटकों के लिए हमेशा से खास आकर्षण बनी रहती है। इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
7: बप्पा के संग आस्था के रंग हर ओर संकट के तारणहार हैं। खंडित प्रतिमाओं की सम्मानजनक विदाई, 26 चोटियों पर शहीदों को श्रद्धांजलि। देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: गुजरात के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी में चल रहे भादरवी महामेले में उमड़ रहा जनसमूह, तीन दिन में पहुंचे 15 लाख से ज्यादा भक्त। नैनीताल में फूलों की बारिश के बीच कैलाश को रवाना हुई मां नंदा सुनंदा, हजारों नमांकों ने दी विदाई, उमड़ा आस्था का सैलाब। बामन द्वादश पर बद्रीनाथ में धूमधाम से निकली भगवान उद्धव जी की डोली, माता मूर्ति महोत्सव में उमड़ा भक्तों का सैलाब। देश भर में सजे बापा के अनूठे पंडाल, संभाजी नगर में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती 41 फीट ऊंची प्रतिमा, तो बीड जिले में मेडिकल वेस्ट से बनाई गणपति की मूर्ति। जाला में बुलेट पर सवार गणपति बप्पा की अनोखी मूर्ति बनी आकर्षण का केंद्र, चंद्रपुर में विसर्जन के लिए बनाया जा रहा 20 फीट का कुंड। नागपुर के गणेश टेकड़ी मंदिर में भगवान गणेश को चढ़ाया गया 1101 किलो का महालड्डू, 5 फीट ऊंचे और 4 फीट चौड़े लड्डू को 22 कारीगरों ने 6 दिन में तैयार किया।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार की तरह फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, कभी किसी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में अब खबरें अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा, हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है, और यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कभी पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है, कभी किसी वीडियो को एडिट करके पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे इन्हें सच मान लेते हैं और लगातार इसे शेयर कर देते हैं, और यहीं से अफवाहों की आदि शुरू होती है। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें बात सबसे पहले सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की, जिसको शेयर करते हुए ये दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो स्वतंत्र भारद्वाज के जेल से बाहर आने के बाद का है, जिसमें वो खुलेआम धमकी दे रहा है। क्या इसकी सच्चाई, आगे जानिए। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी, जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि भारत में एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। सरेरा एक व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। इस वीडियो की सच्चाई क्या है, आगे आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़। और
2: सोशल मीडिया पर एक वीडियो दिनों दिन लगातार वायरल हो रहा, और उसे देखकर लोग कह रहे हैं कि स्वतंत्र भारद्वाज सुधरने वाला नहीं है, ये वही स्वतंत्र भारद्वाज है जिसे जंतर मंतर पर नीट के प्रदर्शन में मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 15 सितंबर को अंतरिम जमानत पर ये 3 हफ्ते के लिए जेल से बाहर आया, और इसके जेल से छूटने के बाद अब एक और वीडियो सामने आया है, जिसे लेकर दावा ये किया जा रहा है कि जेल से छूटते ही स्वतंत्र भारद्वाज अपने पुराने रंग में लौट आया है और फिर से खुलेआम धमकी दे रहा है। क्या है वीडियो की सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में।
3: तुम लोग इन लोग को क्यों टारगेट कर रहे हो, ये लोग तो अपने भाई ये चाहते थे वहाँ पे, हमको पता है, लेकिन कुछ वजह था जिसके वजह से ये लोग ना कानून को फॉलो किए। लेकिन एक चीज बताना चाहते हैं, जो भी इन लोग का गाड़ी को घेरे हो ना, तुम लोग को अब कुछ नहीं करने वाले, ना तुम लोग मेरे लायक हो, ना मेरे लेवल पे हो। तुम्हारा जो बाप है चंद्रशेखर रावण, उसको जाके मैसेज पहुंचा देना, इन लोग का जो अटैक हुआ है इन लोग के ऊपर, उसका बदला ना लेने के लिए एक ब्राह्मण शेर है।
4: जंतर मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के दौरान एक प्रदर्शनकारी के पिता से मारपीट मामले के बाद चर्चा में आए स्वतंत्र भारद्वाज का ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कुछ लोगों का दावा है कि ये वीडियो स्वतंत्र भारद्वाज के जेल से छूटने के तुरंत बाद का है, जिसमें वो लोगों को खुलेआम धमकी दे रहा है। इस वीडियो में स्वतंत्र के साथ एक और लड़का नजर आता है। वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, भारतीय न्याय व्यवस्था एक बार फिर से फेल हो गई है। स्वतंत्र भारद्वाज बाहर आते ही फिर से शुरू हो गया है। कुछ न्यूज आउटलेट्स ने भी इसी दावे के साथ ये वीडियो शेयर किया है। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं।
3: फॉलो किए, लेकिन एक चीज बताना चाहते हैं, जो भी इन लोग का गाड़ी को घेरे हो ना, तुम लोग को अब कुछ नहीं करने वाले, ना तुम लोग मेरे लायक हो, ना मेरे लेवल पे हो। तुम्हारा जो बाप है चंद्रशेखर रावण, उसको जाके मैसेज पहुंचा देना, इन लोग का जो अटैक हुआ है इन लोग के ऊपर, उसका बदला ना लेने के लिए एक ब्राह्मण शेर है।
2: आपको याद होगा कि केस दर्ज होने के बाद स्वतंत्र भारद्वाज छुपता फिर रहा था। 4 सितंबर को उसे बुलंदशहर से पुलिस ने पकड़ा था और इसके बाद 15 सितंबर को उसे 3 हफ्तों के अंतरिम जमानत मिली थी और वो जेल से बाहर आया। इससे बाहर आते ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया, जिसके जरिए कहा जा रहा है कि स्वतंत्र भारद्वाज जेल से छूटने के बाद फिर से खुलेआम धमकी दे रहा है, एक खास जाति के लोगों को टारगेट कर रहा है और इस वीडियो को देखकर हमें भी हैरानी हुई, लगा कि कोई जेल से छूटने के बाद ऐसा कैसे कर सकता है। इसीलिए हमने इस वीडियो की जांच शुरू कर दी और सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो की आवाज को हमने ध्यान से सुना और इसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि कहीं गाड़ियों पर हमला हुआ है, जिसके लिए वीडियो में दिख रहा व्यक्ति नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण को जिम्मेदार ठहरा रहा है, उसे सबक सिखाने की बात कह रहा है। सोशल मीडिया पर दावा यह किया जा रहा है कि यह आवाज और वीडियो दोनों स्वतंत्र भारद्वाज के ही हैं, पर हमारे लिए हैरानी की बात यह थी कि यह सिर्फ सोशल मीडिया पर ही दिखा, कहीं किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पर इसके बारे में कोई जिक्र नहीं था। जिसकी गिरफ्तारी इतने बड़ा मुद्दा बनी, वो इस तरह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कैसे कर सकता है, और अगर किया भी है तो ये खबर सामने नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए हमने इस पूरे प्रकरण की टाइमलाइन चेक करने की कोशिश की। स्वतंत्र भारद्वाज को 15 सितंबर को अंतरिम जमानत मिली थी। प्रक्रिया पूरी होने के बाद 17 सितंबर को वो तिहाड़ जेल से बाहर आया। फैक्ट चेक टीम ने जब स्वतंत्र भारद्वाज के सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाला तो पता चला कि स्वतंत्र भारद्वाज ने एक्स और फेसबुक पर 2 सितंबर के बाद कोई पोस्ट ही नहीं डाला। सितंबर में विवाद के बाद उसके इंस्टाग्राम अकाउंट को बैन कर दिया गया था और इसीलिए ये तो तय हो गया कि हमने अपने किसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह पोस्ट नहीं डाली है। हमने पहले आपको ये भी बता दें कि स्वतंत्र भारद्वाज को जमानत देते वक्त कोर्ट ने कुछ कड़ी शर्तें भी रखी हैं और कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि बाहर निकलने के बाद स्वतंत्र किसी सोशल मीडिया या फिर किसी भी मंच पर कोई भी चर्चा या बयानबाजी नहीं करेंगे। ऐसे में हमारे सामने पहला सवाल ये खड़ा हो रहा था कि क्या स्वतंत्र भारद्वाज कोर्ट की अवमानना करने का रिस्क ले सकता है, और अगर वीडियो को लेकर किया जा रहा दावा सच्चा है तो फिर अब तक इसके बारे में किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में जानकारी या खबर क्यों नहीं आए। तीसरा सवाल यह कि अगर स्वतंत्र भारद्वाज ने खुलेआम धमकी दी है तो फिर अब तक पुलिस ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया है।
4: वीडियो जब तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वीडियो का सच झूठ जानने के लिए पड़ताल में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और सर्च किया। इस दौरान हमें YouTube पर इसका एक पुराना वर्जन मिला। एक YouTube चैनल ने इसे 8 सितंबर को अपलोड किया था। इतनी बात तो यही साफ हो गई कि ये वीडियो पुराना है। स्वतंत्र भारद्वाज को 15 सितंबर को अंतरिम जमानत मिली थी और वो 17 सितंबर की रात को जेल से बाहर आ गया था। यानी ये भारद्वाज के जेल से बाहर आने के बाद का वीडियो नहीं है। इसके बाद हमने वायरल वीडियो की असलियत को जानने के लिए लगातार खोजबीन की। इस दौरान हमें एक इंस्टाग्राम अकाउंट मिला जिसमें 26 जून को पोस्ट किया गया वायरल वीडियो जैसा ही वीडियो मिला। प्रोफाइल देखने पर पता चलता है कि वायरल वीडियो में स्वतंत्र के साथ दिख रहा लड़का वही है जिसके इंस्टाग्राम अकाउंट से वीडियो पोस्ट किया गया था। इस अकाउंट पर स्वतंत्र के साथ उसकी कई तस्वीरें और वीडियो मौजूद हैं। स्वतंत्र भारद्वाज के पूरे मामले की शुरुआत जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन से हुई थी। इस प्रोटेस्ट में उसने कथित तौर पर निशु आजाद नाम की एक लड़की के पिता संजय आजाद से मारपीट की। उस वक्त स्वतंत्र पर सख्त धाराएं नहीं लगी थी, लेकिन एक पॉडकास्ट में उसने खुलेआम दावा किया कि उसने लड़की के पिता का सिर फोड़ दिया था और अपने राजनीतिक संपर्कों के चलते वो गिरफ्तारी से बच निकला। इसके बाद काफी राजनीतिक बवाल हुआ और पुलिस ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए FIR में SC ST अधिनियम और पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ दी। इस मामले में स्वतंत्र अंतरिम जमानत पर 17 सितंबर की रात को जेल से बाहर आ गया। इस तरह हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो पुराना है। स्वतंत्र 17 सितंबर को जेल से बाहर आया था, जबकि ये वीडियो जून से ही इंटरनेट पर मौजूद है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: चलिए अब आपको एक और वायरल वीडियो दिखाते हैं और दावा यह किया जा रहा है कि भारत में धर्म पूछकर एक युवक पर हमला किया गया। इस वीडियो को आधार बनाकर यह कहा जा रहा है कि हमारे देश में एक धर्म विशेष के लोगों को लगातार टारगेट किया जा रहा है, वो इस देश में सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे। ये मुद्दा गंभीर है, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है ये वीडियो, लेकिन सच्चाई इसकी क्या है इस रिपोर्ट में जानिए।
5: गली की सड़क पर लोग आते जाते दिख रहे हैं, एक शख्स भी बैग लिए आराम से चला जा रहा है, तभी पीछे से दो व्यक्ति आते हैं। एक व्यक्ति का चेहरा मास्क से ढका हुआ है, उसके हाथ में एक धारदार हथियार है। इस हथियार से पहले वो पीठ पर वार करता है और फिर कमर के नीचे वाले हिस्से पर मारता है। इसके बाद दोनों शख्स उसे उंगली उठाकर चुपचाप चले जाने का इशारा करते हैं। जब शख्स तेजी से वहां से निकल जाता है तब ये दोनों शख्स भी पीछे मुड़कर निकल जाते हैं। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए ये दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो भारत का है और वहां एक धर्म विशेष समुदाय से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति पर हमला किया गया। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि भारत में मुसलमानों को सबके सामने पीटा जा रहा है और मानवाधिकार संगठन इस पर चुप है। वीडियो का सच झूठ जाने बगैर लोग इसे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर धड़ल्ले से वायरल कर रहे हैं।
2: दरअसल इस वीडियो के सामने आते ही इसे कम्युनल रंग दिया जाने लगा। सोशल मीडिया पर एक खास नैरेटिव फैलाई गई, ऐसे लोग जो कि झूठ सच का फर्क किए बगैर राय बनाने में देर नहीं करते हैं, वो इस खबर पर कूद पड़े। कहने लगे कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है। पर हमें लगा कि जो दिखाया जा रहा है वही सच हो ये जरूरी नहीं है, और मुद्दा क्योंकि देश की छवि से जुड़ा हुआ था और इसीलिए जांच जरूरी हो गई थी। वीडियो में दिख रहा है कि एक व्यक्ति को पीछे से आ रहा एक नकाबपोश धारदार हथियार से मार रहा है और उसे आगे जाने का इशारा कर रहा है। पर गौर करने वाली बात यह है कि इस टूटी फूटी सड़क पर आसपास से गुजर रहे लोग रिएक्ट नहीं करते, पीड़ित भी कुछ नहीं कह रहा है, ना शोर मचा रहा और ना ही आसपास के लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की है। ये बहुत हैरान करने वाली बात थी। इसीलिए हमारे सामने पहला सवाल यही था कि हमला होने के बाद पीड़ित ने किसी से मदद की गुहार क्यों नहीं लगाई। इसी के बाद हमने ये भी पता लगाने की कोशिश की कि ये वीडियो कहाँ का है, इसके बैकग्राउंड में जो आवाजें आ रही थी वो बांग्ला में थी। इससे ये तो साफ हो गया कि ये वीडियो या तो पश्चिम बंगाल का हो सकता है या फिर बांग्लादेश का हो सकता है। इसीलिए हमारे सामने दूसरा सवाल यही था कि अगर ये वीडियो पश्चिम बंगाल का है तो फिर अब तक इसके बारे में कोई रिपोर्ट सामने क्यों नहीं आई। और तीसरी सबसे बड़ी बात हमें ये खटक रही थी कि कहीं किसी लूटपाट के वीडियो को जानबूझकर धार्मिक रंग तो नहीं दिया जा रहा है। देखिए सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में।
5: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और सर्च किया। इस दौरान हमें बांग्लादेश के एक न्यूज़पेपर का फेसबुक पेज मिला जिस पर 15 सितंबर 2026 को इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा गया था, मोहम्मदपुर का नबी नगर हाउसिंग एरिया दिन के समय सुनसान रहता है, यहां तक कि पैदल चलने वाले लोग भी चुपचाप देखते रहते हैं। इस जानकारी के आधार पर हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। सर्च के दौरान हमें एक यूट्यूब चैनल पर 13 सितंबर 2026 को वायरल क्लिप का लंबा वर्जन अपलोड किया गया मिला। इसमें इसे मोहम्मदपुर के नबीनगर हाउसिंग इलाके में हुई लूटपाट का बताया गया। वीडियो में दोनों लोगों को एक व्यक्ति से लूटपाट करते हुए देखा जा सकता है। ढाका स्थित एक न्यूज पोर्टल के फेसबुक पेज पर भी 15 सितंबर 2026 को इस वीडियो को पोस्ट करते हुए इसे मोहम्मदपुर के नबीनगर हाउसिंग में सरेआम लूटपाट का बताया गया था। वीडियो पर 7 सितंबर 2026 की तारीख और ढाका बांग्लादेश की लोकेशन दी गई है। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वायरल वीडियो वास्तव में बांग्लादेश का है। ढाका में सरेराह लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। जिसके वीडियो को भारत का बताकर अब वायरल किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: फैक्ट चेक में फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
6: बप्पा के संग आस्था के रंग हर ओर संकट के तारणहार हैं।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
1: वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, आपको दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, लिए चलते हैं आपको वायरल दुनिया में।
2: एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान एक छोटी बच्ची की मासूमियत ने हर किसी का दिल जीत लिया। मेटल डिटेक्टर स्कैनर के पास खड़ी होकर जब बच्ची ने बिल्कुल बड़ों की तरह सुरक्षा कर्मी के सामने दोनों हाथ फैलाए तो सुरक्षा कर्मी भी इसके इस प्यारे अंदाज को देखकर मुस्कुरा उठे। बच्ची के इस प्यारे रिएक्शन को देखकर जवान ने भी बड़ी आत्मीयता से स्कैनर डिवाइस से उसकी सुरक्षा जांच की। बच्ची सुरक्षा नियमों को किसी बड़े व्यक्ति की तरह समझती और मानती हुई दिखती है। चेकिंग पूरी होने के बाद वे खुशी खुशी नीचे उतर कर अपने परिवार के पास चली जाती है। मॉर्निंग असेंबली की तस्वीरें हैं जहां सैकड़ों बच्चों ने एक साथ हनुमान भजन गाकर माहौल बना दिया। बच्चों की मासूम आवाज और अनुशासन ने इस प्रार्थना सभा को खास बना दिया। लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं।

0: Breathe in. Breathe out. I see.
1: जब ज्यादातर बच्चे 5 साल की उम्र में स्कूल जाना और खेलना शुरू करते हैं, उस उम्र में अमेरिका की फिनिक्स गिसेल हिक्स ने ऐसा कारनामा कर दिखाया, इसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। महज 5 साल और 337 दिन की उम्र में फिनिक्स दुनिया की सबसे युवा महिला योग शिक्षिका बन गई। उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है। रिकॉर्ड बनाने के लिए फिनिक्स ने 200 घंटे का योग शिक्षण ट्रेनिंग कोर्स पूरा किया। फिनिक्स अपनी माँ सिडनी हिक्स के साथ अमेरिका के ह्यूस्टन टेक्सास में बच्चों और बड़ों को योग सिखाती है। दादा दादी और पोते पोतियों का रिश्ता हमेशा से ही बेहद खास रहा है। इस रिश्ते में प्यार, अपनापन और बचपन की अनन्य यादें जुड़ी होती हैं। इसी खूबसूरत रिश्ते की याद दिला रहा है ये प्यारा पल। महिला हॉस्टल के बाहर खड़ी है जबकि उसकी पोती अंदर की तरफ मौजूद है। सामने बड़ा सा गेट लगा हुआ है। दोनों के बीच दूरी होने के बावजूद महिला पोती के बालों को प्यार से ठीक करती दिखाई देती है। वह कंघी से उसके बाल संवारती है और उन्हें व्यवस्थित करती है। पोती भी इस दौरान चुपचाप अपनी दादी के हाथों से बाल ठीक करवाती नजर आती है। इस पूरे पल में दादी का अपनापन और पोती के लिए चिंता साफ दिखाई देती है। इस वीडियो को देखकर लोग इमोशनल हो रहे हैं और जमकर कमेंट्स कर रहे हैं।
2: तो सबसे पहले ब्लिंकिट की ऐप खोलिए।
3: ओपन ऐप।
2: अब आपको क्या क्या चाहिए?
3: शैम्पू।
2: तो आप या तो टाइप कर सकती हैं यहाँ पे शैम्पू, ठीक है। अगर टाइप नहीं करना तो ये माइक दिख रहा है?
3: हाँ।
2: माइक दबाइए।
3: प्रेस माइक।
2: माइक को प्रेस करके
3: हाँ।
2: आपको बोलना है जो आपको चाहिए।
3: अच्छा,
2: ठीक है। तो माइक को प्रेस करिए और फिर बोलिए शैम्पू। हाँ।
1: नानी को ब्लिंकिट चलाना सीखते देखकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। नानी बकायदा कॉपी लेकर ब्लिंकिट चलाना सीखती नजर आ रही हैं। उनकी टीचर बनी है सानिया हुसैन। सानिया जैसे जैसे ऐप इस्तेमाल करने का तरीका बताती है, नानी बिल्कुल एक अच्छी स्टूडेंट की तरह हर बात ध्यान से सुनती है और उसे कॉपी में लिखती जाती है। सानिया कहती है कि सबसे पहले ब्लिंकिट की ऐप खोलनी है। नानी तुरंत फोन में ऐप खोल लेती है और साथ ही कॉपी में भी बात नोट कर लेती है। इसके बाद उन्हें बताया जाता है कि जरूरत का सामान टाइप करके भी खोजा जा सकता है और माइक पर बोलकर भी सामान ढूंढ सकते हैं।
2: तो सबसे पहले ब्लिंकिट की ऐप खोलिए।
3: ओपन ऐप।
2: अब आपको क्या क्या चाहिए?
3: शैम्पू।
2: तो आप या तो टाइप कर सकती हैं यहाँ पे शैम्पू, ठीक है। अगर टाइप नहीं करना तो ये माइक दिख रहा है?
3: हाँ।
2: माइक दबाइए।
3: प्रेस माइक।
2: माइक को प्रेस करके
3: हाँ।
2: आपको बोलना है जो आपको चाहिए।
3: अच्छा,
2: ठीक है। तो माइक को प्रेस करिए और फिर बोलिए शैम्पू। हाँ।
1: जैसे ही नानी को वॉइस सर्च के बारे में पता चलता है, वह तुरंत माइक पर शैम्पू बोल देती है। सामान स्क्रीन पर आते ही वह उसे कार्ट में ऐड भी कर लेती है।
3: एड टू कार्ट। नेस्कैफे स्मॉल वन। हर्षी चॉकलेट सिरप। 1/2 kg अमूल बटर। एयर फ्रायर।
2: अब व्यू कार्ट में जाइए।
1: उनका यह अंदाज देखकर ऐसा लगता है जैसे वह काफी समय से ब्लिंकिट चलाने की तैयारी कर रही हूँ। इसके बाद नानी की नजर ऑर्डर के डिलीवरी आइटम पर जाती है। वह उसे भी अपनी कॉपी में लिखने लगती है। तभी सानिया उन्हें समझाती है कि डिलीवरी का समय हर ऑर्डर के हिसाब से अलग हो सकता है, इसलिए इसे लिखने की जरूरत नहीं है।
3: प्लेस ऑर्डर। ठीक है, फिर
2: अब पे करिए इससे।
3: पे अमाउंट। ठीक है, पे कर रही हूँ मैं। अब हो गया।
2: डन हो गया।
3: ठीक है। अराइविंग इन 15 मिनट्स।
2: हाँ, 15 मिनट्स में आ जाए।
3: अराइविंग इन 15 मिनट्स।
2: ये लिखने की जरूरत नहीं है, अलग अच्छा, अलग होगा।
3: चलो ठीक है।
1: नानी पूरी बात ध्यान से समझती है और फिर आखिरकार उनका ऑर्डर भी प्लेस हो जाता है। कुछ देर बाद नानी ने जो सामान मंगाया था वह घर पहुंच जाता है। सामान देखकर उनके चेहरे पर जो खुशी आती है वह वीडियो का सबसे प्यारा हिस्सा है। लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
10: एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, भरोसा तुम हो।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
6: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए, और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। बप्पा के संग आस्था के रंग, हर और संकट के तारणहार के दिव्य दर्शन कीजिए। खंडित प्रतिमाओं की सम्मानजनक विदाई, त्योहारों के बीच दिल्ली में विसर्जन पात्र की सुविधा मिलेगी, और 26 चोटियों पर बलिदानियों को श्रद्धांजलि। 26/11 के शहीदों की याद में एक पूर्व सैनिक का पर्वतारोहण अभियान दिखाएंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
11: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
6: गुजरात के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी में चल रहे भादरवी महामेले में उमड़ रहा जनसमूह, 3 दिन में पहुंचे 15 लाख से ज्यादा भक्त। नैनीताल में फूलों की बारिश के बीच कैलाश को रवाना हुई मां नंदा सुनंदा, हजारों नामांकों ने दी विदाई, उमड़ा आस्था का सैलाब। बामन द्वादश पर बद्रीनाथ में धूमधाम से निकली भगवान उद्धव जी की डोली, माता मूर्ति महोत्सव में उमड़ा भक्तों का सैलाब। देश भर में सजे बप्पा के अनूठे पंडाल, संभाजी नगर में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती 41 फीट की प्रतिमा, तो बीड जिले में मेडिकल वेस्ट से बनाई गणपति की मूर्ति। नागपुर के गणेश टेकरी मंदिर में भगवान गणेश को चढ़ाया गया 1101 किलो का महालड्डू। 5 फीट ऊंचे और 4 फीट चौड़े लड्डू को 22 कारीगरों ने 6 दिन में किया तैयार। झांसी में शाही अंदाज में निकली बप्पा की प्रतिमा की विसर्जन यात्रा। महाराज के रूप में विराजमान हुए बप्पा, झूमते दिखे भक्त।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
6: शुरुआत करेंगे अच्छी और सच्ची खबरों की, और सबसे पहले बात बप्पा के दरबारों की, जो गणेश उत्सव को लेकर सजे हुए हैं। भव्य पंडालों में दिव्य रूप में बप्पा विराजमान है। अलग अलग थीम पर बने पंडाल भक्तों को खूब आकर्षित कर रहे हैं और इन पंडालों के माध्यम से कई बहुमूल्य संदेश भी देने की कोशिश की गई है। पर्यावरण संरक्षण से किसानों की समस्याओं को लेकर भी आकर्षक झांकियां बनाई गई हैं।

0: बप्पा हर और विद्यमान है। उत्सव चल रहा है, गणेश पंडालों में रौनक है और भक्तों से गणपति का हर दरबार गुलजार है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की भव्य आभा दिख रही है। सबसे पहले गिरगांव के राजा के इस दरबार में विराजमान बप्पा की दिव्य प्रतिमा के दर्शन कभी न भूल पाने का अनुभव जैसा है।
1: सबसे पहले आप बप्पा के यहाँ का दर्शन करें, क्योंकि हमेशा की तरह इस बार भी बहुत ज्यादा चर्चित हैं, वायरल हैं। हर साल बिल्कुल एक ही तरह की थीम होती है, एक ही तरह का आकार होता है गणपति बप्पा का, लेकिन विशेष इस बार ये है कि श्री कृष्ण के रूप में देखे जा रहे हैं। बप्पा बहुत ज्यादा प्यारे और सुंदर तो लग ही रहे हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा जो बहुत ज्यादा देखने वाली चीज है उनका फेटा है। मुझे लगता है कि देश का यह सबसे बड़ा फेटा है, जिसकी लंबाई कम से कम 6 फीट है, चौड़ाई कम से कम 5 फीट है। खास बात यह है कि द्वारकाधीश का भी यहाँ पर थीम रखा गया है और फेटा है। मुझे लगता है कि देश का यह सबसे बड़ा फेटा है, जिसकी लंबाई कम से कम 6 फीट है, चौड़ाई कम से कम 5 फीट है। खास बात यह है कि द्वारकाधीश का भी यहाँ पर थीम रखा गया है और कुछ चीजें ऐसी रखी गई हैं जो हूबहू द्वारका में देखी जा रही हैं। ये वही गिरगांव के राजा का दरबार है जहाँ पास में समुद्र है और जितनी भी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं जो साउथ मुंबई में स्थापित की जाती है, जिनमें लालबाग के राजा, चिंतामणि के राजा, गणेश गली, मुंबई का राजा, तेजुका का राजा, परेल का महाराजा, विघ्नहर्ता, लंबोदर, तमाम बड़े पंडाल इसी गिरगांव चौपाटी में आकर के विसर्जित किए जाते हैं।
0: चंदनवाड़ी के इस गणेश मंडल के दिव्य पंडाल और इसमें विराजे विघ्नहर्ता के दर्शन अलौकिक हैं, जिन्हें गोड गणपति के रूप में भी जाना जाता है। केदारनाथ की थीम पर बने इस पंडाल में 12 ज्योतिर्लिंग के भव्य दर्शन भी हो रहे हैं।
1: जहाँ के बप्पा गोड़ गणपति बप्पा के नाम से भी जाने जाते हैं, तस्वीरों में देखें किस तरीके से बहुत ही ज्यादा विशाल, बहुत ज्यादा भव्य नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बप्पा की जो हाइट है वो तकरीबन 28 फीट है और केदारनाथ के अवतार में यहाँ पर स्थापित हुए हैं। डेकोरेशन चलचित्र देखने के बाद भी ये पता चल पा रहा है कि केदारनाथ की पूरी थीम रखी हुई है। साथ ही साथ आपको बताएं कि जब आप मुख्य द्वार से बप्पा की तरफ आगे बढ़ते हैं तो बाकी के भी जो 11 शिवलिंग हैं वो वहां पर स्थापित किए गए हैं। सबसे पहले सवाल ये है कि गोड़ गणपति बप्पा के नाम से मशहूर है आखिर क्यों? आपके हाथ में शक्कर भी है।
2: एक ने मन्नत मांगा था तो उसका सब इच्छा पूर्ण हुआ, इसलिए उसने जब इससे शक्कर चढ़ाया, जब इससे आज तक पूरा वो शक्कर है वो पूरा जाने के अभी पहले दिन से अभी 11 दिन तक पूरा लोग भगवान जो भक्तजन आता है वो शक्कर लाता है।
0: मुंबई में इसी तरह जगह जगह भव्य रूप से उत्सव मनाया जा रहा है और अलग अलग थीम पर बने पंडालों में बप्पा के दर्शन हो रहे हैं। महाराष्ट्र में जगह जगह गणेश पंडालों के माध्यम से कोई ना कोई विशेष सामाजिक संदेश देने की कोशिश की गई है। चंद्रपुर में युवा गणेश मंडल ने इस वर्ष किसानों को समर्पित अनोखी झांकी तैयार की है, जिसमें किसानों की समस्याओं और उनके दर्द को दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ भगवान गणेश को भी किसान का रूप दिया गया है।
3: बप्पा को अगर आप देखेंगे तो बप्पा किसान की तरह ही गमछा बांधे हुए, यहाँ पर हाथ में छड़ी लिए और यहाँ पर हल चलाते हुए बेहद ही आकर्षक मूर्ति बप्पा की यहाँ पर साकारी गई है। मंडल का यही उद्देश्य है कि किसानों को जो तकलीफ हो रही है, किसानों की परेशानी कोई समझ नहीं पा रहा है, सरकार किसानों की नहीं सुन रही है, लेकिन बप्पा के माध्यम से किसानों की सारी परेशानियां दूर हो, यही यहाँ पर मंडल की ओर से दिखाने का प्रयास किया गया है।
0: चंद्रपुर के ही दत्ता नगर में एक और विशेष झांकी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहाँ चारों ओर पहाड़ों के बीच छाए बादलों के बीच विघ्नहर्ता विराजे हुए हैं, जहाँ से मूषक राज के पर्यावरण वसुंधरा एक्सप्रेस नाम की ट्रेन गुजरती है। इस ट्रेन में बप्पा अलग अलग रूप में सवार है। इस झांकी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के साथ ही जल है तो कल है जैसा संदेश देने की कोशिश की गई है। अकोला में भी जगह जगह बप्पा के दिव्य दरबारों के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ के विप्र युवा वाहिनी गणेश मंडल ने इस बार घटते जंगल और शहरों की ओर बढ़ते शहरीकरण को अपनी झांकी का विषय बनाया है। पंडाल के अंदर बनाई गई गुफा और जंगल में जानवरों के स्टैचू के जरिए पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है।
4: गणेश उत्सव पंडाल में जहां आप देख सकते हैं बाप्पा की जो है भव्य जो है 15 फीट की जो मूर्ति है वो भव्य मूर्ति और सुंदर सजाई हुई है। बस ये यहाँ पर सीन जो है वो जंगल का किया गया है, मानो जंगल बचाना जरूरी है, उसी के बाद में ही पर्यावरण बचेगा। जो झांकी है वो झांकी सभी को ध्यान आकर्षित करने वाली जरूर है।
0: अकोला के सिंधी कैंप के रोज परिवर्तन गणेश पंडाल में भी एक भव्य झांकी बनाई गई है, जिसमें 1980 के दौर में गांव और देहात को जीवंत करने की कोशिश की गई है। सतारा जिले के कराड के आजाद चौक में इस वर्ष नरसिंह अवतार की झांकी साकार की गई है। इस पौराणिक झांकी को देखने के लिए शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र के अलावा गुजरात में भी गणेश उत्सव बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। अमरेली के सावर कुंडला में बप्पा की 25 लाख रुपए की भारतीय करेंसी और अमेरिकी डॉलर से दिव्य सजावट की गई है। वहीं सूरत के पाल हजीरा इलाके में मौजूद वीर स्वास्तिक हाइट्स में कल्प वृक्ष की थीम पर गणेश पंडाल बना है, जिसके जरिए कई तरह के सामाजिक संदेश देने की कोशिश की गई है।
5: गणेश उत्सव के दौरान गणेश पंडालों में अलग अलग प्रकार की थीम देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा लोग सामाजिक संदेश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो कल्प वृक्ष बनाया गया है, देखेंगे आप पूरा किस तरह से कल्प वृक्ष में किस तरह की शिक्षा को लेकर के, सेवा को लेकर के, पर्यावरण सुरक्षा को लेकर, हेल्प को लेकर के, अन्नदान को लेकर के और अनुशासन के लेकर, स्वच्छ भारत को लेकर कई तरह के यहाँ पर स्लोगन दिए गए हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो व्यसन मुक्त भारत का यहाँ पर एक मैसेज दिया गया है। जो भी युवा आ रहे हैं वो कहीं न कहीं इसके पीछे संकल्पबद्ध भी हो रहे हैं और संकल्प भी ले रहे हैं कि व्यसन अगर वो करते हैं तो व्यसन को जरूर त्याग कर देंगे।
0: आस्था और उत्साह के इस उत्सव के माध्यम से ऐसे संदेश दिए जा रहे हैं जिसके पालन में हर किसी की भलाई छिपी है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, चंद्रपुर से विकास राजुरकर, अकोला से धनंजय साबले और सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: बढ़ते आगे बात दिल्ली सरकार की एक ऐसी पहल की जो आस्था का सम्मान करने के साथ पर्यावरण की स्वच्छता के लिए भी बेहतर है। आपने अक्सर कहीं खंडित मूर्तियां यूं ही पड़ी हुई जरूर देखी होंगी, जहां तहां पूजा की बिक्री सामग्रियों पर भी आपकी नजर जरूर गई होगी। लेकिन अब दिल्ली में जगह जगह ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे ऐसी तस्वीरें ना दिखें। खंडित मूर्तियों और पूजा सामग्रियों को सम्मान देने के लिए विशेष केंद्र बनाए गए हैं।

0: आस्था और भक्ति का निर्वाह हर कोई अपने अपने तरीके से करता है। कोई घर में पूजा पाठ करता है तो कोई मंदिर जाकर। इसी तरह गणेश उत्सव से लेकर नवरात्र तक ऐसे कई विशेष धार्मिक अवसर होते हैं जिसमें पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ अल्प अवधि के लिए प्रतिमा स्थापित की जाती है। लोग पूरे विधि विधान के साथ उन मूर्तियों और पूजन सामग्रियों का विसर्जन भी करते हैं। इसके बाद भी जगह जगह पूजन सामग्री और खंडित मूर्तियां दिख जाती है। इसको लेकर दिल्ली सरकार ने अब एक ऐसी पहल की है जिससे त्योहार के समापन के बाद भी आस्था का सम्मान हो सके। दिल्ली में जगह जगह खंडित मूर्तियों और पूजा सामग्री के सम्मानजनक संग्रह के लिए केंद्र बनाए गए हैं, जहां लोग इनको लेकर पहुंच रहे हैं और वहां जमा कर रहे हैं।
1: बहुत बढ़िया सुविधा हो गई, नहीं तो ऐसे ही इधर उधर रखते हैं, कोई फायदा नहीं रहता ना, पाप ही चढ़ता है। अभी एक सुविधा हो गई, एक जगह बनी, वहाँ रख दिया, ना प्रदूषण हुआ ना कुछ हुआ। बहुत बढ़िया करा रेखा, अब हम थैला भर के लाए थे, हमने अपना पूरा कर दिया विसर्जन, तो हमारे लिए तो बेस्ट है।
2: 21st सेंचुरी में हमें थोड़ी अपनी थिंकिंग चेंज करनी चाहिए, गवर्नमेंट के साथ हमें स्टेप टू स्टेप से चलना चाहिए।
3: हमारी पूजनीय चीजें हैं और उनको फिर एक समय हमने उनको बहुत अच्छी तरह उनसे पूजा की और फिर आज इस कदर हम उन्हें छोड़ देते हैं कि भाई अब हमारे काम की नहीं रहे, अगर नहीं भी रहे तो उनका कम से कम सही तरीके से प्रवाहित हो जाए या जहां पर भी रखा जाए उनको ठीक तरीके से उनका विसर्जन हो जाए। ये वेरी अप्रिशिएटेड है दिल्ली सरकार की तरफ से, मच बेटर।
0: इन केंद्रों के होने से धार्मिक आस्था के सम्मान के साथ ही इससे जलवायु को साफ रखने में भी मदद मिलेगी।
4: देख सकते हैं तस्वीरें भी पहले दिखाऊंगी कि किस तरीके की चीजें आपको यहाँ पर नजर आने वाली है। अच्छा, जो सबसे ज्यादा नजर आएगा आपको कुछ इस तरीके के जो मूर्तियां भगवान की मूर्तियों पर जो चुनरी चढ़ती है, जो दुपट्टे चढ़ते हैं, वो आपको सबसे ज्यादा जो है वो यहाँ नजर आ जाएंगे। आपको इसमें सूखा नारियल जो है वो भी नजर आ जाएगा कि लोगों ने अब सूखे नारियल को जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है। इसके अलावा जो है आपको फूल जो है वो नजर आ जाएंगे, आपको मूर्तियां भी जो है इसमें नजर आ जाएगी। जितनी भी मंदिर की जो से जरूरत की जो चीजें होती है वो सभी चीजें जो है वो यहाँ नजर आने वाली है। सेंटर्स की जो बूथ है वो तैयार किए गए ताकि जितना भी जो खंडित मूर्ति है उसको जगह जगह फेंका ना जाए, वो इस तरीके से आकर जो है वो दान कर दी जाए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हर जगह आपको जो है इस तरीके की खंडित मूर्तियां जो है वो नजर आने वाली है और इसमें हर कोई जो है इस तरीके का पूजा का जितना भी सामग्री का सामान है वो यहाँ डाल सकते हैं, ना कि पेड़ों के नीचे। पीपल के पेड़ के नीचे लोग जो है अक्सर रख देते हैं, पार्क में रख देते हैं, तो वो चीज ना हो इस चीज का ध्यान में रखते हुए इस तरीके के सेंटर्स जो है वो दिल्ली में बनाए गए हैं।
0: इन केंद्रों में लाकर डाली गई खंडित मूर्तियां और पूजा सामग्रियों का बेहतर उपयोग किया जाएगा। सब सामान का वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल तरीके से निस्तारण और रिसाइकलिंग का काम किया जाएगा।
4: दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो इस तरीके के केंद्र बनाए गए और वहीं एमसीडी आके ये सारा जितना भी कलेक्शन है वो लेकर जाएगी और उसके बाद इनको रिसाइकल भी जब किया जाएगा तो उसमें भी आस्था का जो है ध्यान रखा जाएगा। अगर हम मूर्तियों की बात करें तो उन मूर्तियों को रिसाइकल करके जो है ईंटें बनाई जाएगी और उन ईंटों का इस्तेमाल, उन ब्रिक्स का इस्तेमाल जो है वो वापस से किसी धार्मिक स्थल के निर्माण कार्य में जो है किया जाएगा। फिर चाहे वो मंदिर की बात हो या कोई भी रिलीजियस कुछ चीज़ बन रही होगी तो उसमें उन ईंटों का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं अगर हम सूखे फूलों की बात करें तो उन सूखे फूलों का इस्तेमाल जो है अगरबत्ती, धूप बत्ती, इन सब चीजों को बनाने में जो है किया जाएगा। तो इस तरीके से वेस्टेज ना हो, किसी तरीके से आस्था का अपमान ना हो, उस चीज का ध्यान दिल्ली सरकार रख रही हो।
0: दिल्ली में जगह जगह ऐसे 110 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं जहां पूजन सामग्री और खंडित मूर्तियां लोग जमा कर सकते हैं। इससे ये सब सामान ना पेड़ों के नीचे लावारिस पड़े रहेंगे, ना पार्कों में दिखाई देंगे और ना ही यमुना में कचरा बढ़ेगा। साथ ही खंडित मूर्तियों और पूजन सामग्रियों का सम्मान भी हो सकेगा और पर्यावरण को इससे फायदा भी। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
5: और बात शहादत की याद में पूर्व सैनिकों के एक अभियान की, जिसका मकसद 26/11 के शहीदों के सम्मान में 26 पर्वत की चोटियों पर श्रद्धांजलि था। गाजियाबाद के रहने वाले पूर्व सैनिक दीपक कुमार ने अपनी टीम के साथ 11 दिन में 6000 मीटर की ऊंचाई वाली 26 पर्वत चोटियों पर तिरंगा फहराया। मुंबई हमले के दौरान देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करते हुए बलिदान देने वाले हर शहीद की फोटो भी लगाई गई। इस अभियान का एकमात्र मकसद रिकॉर्ड बनाना नहीं बल्कि 26/11 के शहीदों को पर्वतारोहण अभियान के जरिए श्रद्धांजलि देना था।
6: आमतौर पर माउंटेन क्लाइंबिंग यानी पर्वतारोहण का मकसद नए और मुश्किल पर्वत शिखरों को फतह करना होता है। इस दौरान पर्वतारोही की शारीरिक और मानसिक सीमाओं की परख भी हो जाती है, साथ ही प्रकृति की सुंदरता देखने समझने का मौका भी मिल जाता है। लेकिन पर्वतारोहण के पीछे भारतीय सेना में रहे इस पूर्व सैनिक का मकसद कुछ और है। देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना हर सैनिक का सर्वोपरि और बुनियादी कर्तव्य है। देश की रक्षा के संकल्प के दौरान कई बार शहादत भी देनी पड़ती है, जिसकी कद्र करना किसी भी समाज के लिए सबसे बड़ा धर्म है। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देना यानी सर्वोच्च कुर्बानी की अहमियत एक सैनिक से ज्यादा कौन समझ सकता है। ऐसे में पूर्व सैनिक और पर्वतारोही दीपक कुमार की तरफ से अलग अलग पर्वत के शिखरों तक पहुंचने का मकसद बेहद नेक है।
7: किसी शहीद के बलिदान के मायने एक सैनिक से ज्यादा शायद ही कोई समझ सकता है। आज हम आपको भारतीय सेना के एक ऐसे रिटायर्ड सैनिक के घर लेकर आए हैं जिसकी दीवारें ऐसे तमाम रिकॉर्ड से भरी पड़ी हैं, पटी पड़ी हैं। लेकिन इन रिकॉर्ड से परे इस सैनिक ने एक नया मिशन अपनाया। उन्होंने कहा कि वो 26/11 के हमले में शहीद हुए तमाम बलिदानों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके लिए उन्होंने रास्ता चुना पहाड़ का। 11 दिन के भीतर 26 ऊंची पर्वत की चोटियों की इन्होंने चढ़ाई की, जिसमें से हर चोटी की ऊंचाई 6000 मीटर से ज्यादा की थी। मिलवाते हैं आपको आज उसी सैनिक से।
6: 26/11 मुंबई हमला भारत के इतिहास का काला अध्याय है, जिसे देश का कोई भी नागरिक कभी नहीं भूल सकता है। तब सैकड़ों मासूम लोगों की जिंदगी बचाने के लिए 18 सुरक्षा कर्मियों ने अपनी शहादत दी थी। ऐसे शहीदों के प्रति मन में सम्मान की वजह से पर्वतारोही दीपक कुमार ने श्रद्धांजलि देने की अपनी भावना को खास अभियान से जोड़ दिया। सेना मेडल तक पा चुके दीपक कुमार 31 जुलाई को रिटायर हुए हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच जहां हवा भी मुश्किल से सांस लेती है, जहां तापमान -5 डिग्री से -20 डिग्री तक होता है, जहां हर कदम बढ़ाना पहाड़ जैसी चुनौती के बराबर होता है, वहां दीपक कुमार अपनी टीम के साथ 26/11 के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए तिरंगा लहराते हैं। खास बात यह है कि शहादत के सम्मान से जुड़े इस अभियान के लिए उन्होंने 26 नवंबर की तारीख नहीं चुनी, बल्कि 11 दिनों में 26 पर्वत की चोटियों पर तिरंगा फहराने का फैसला किया।
8: मैंने सोचा एज ए आर्मी पर्सन कि मैं रिटायरमेंट होने के बाद मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो एक शहीदों के लिए कुछ हो। तब एज ए माउंटेनियर मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूँगा जो बिल्कुल अलग हो, ठीक है। तो जैसे एकदम मेरे दिमाग में ये चीज़ें आई सडन कि 26/11 मुंबई अटैक्स हुआ था, तो मैं उन शहीदों को ट्रिब्यूट करता हूँ। तो उसी के ब्याह पे हम जो है 11 दिन में 26 पीक क्लाइम करेंगे, जो सारी 6000 मीटर से अबव होंगी, और इसके जरिए जो शहीद हुए हैं हम उनको एक ट्रिब्यूट करेंगे।
6: दीपक कुमार की टीम में 6 सदस्य हैं, जिनमें भारतीय सेना के 3 सर्विंग सोल्जर के अलावा 2 सिविलियन भी शामिल हैं। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर क्रॉन्च पर्वत से शुरू हुए इस अभियान के दौरान कई मशहूर पर्वत चोटियों पर शहीदों की फोटो लगाई और तिरंगा लहराया, वो भी अल्पाइन स्टाइल में, जो पर्वतारोहण की एक ऐसी शैली है जिसमें पर्वतारोही बिना किसी बाहरी मदद, भारी साजो सामान, फिक्स्ड रस्सियों और खाने पीने की चीजों के साथ तेजी से पहाड़ की चोटी पर चढ़ते हैं।
8: हमने स्टार्ट किया था इंडिपेंडेंस से 15 अगस्त से स्टार्ट किया था, और इसमें जो टीम थी हमारी 6 बंदों की टीम थी, और 6 बंदों की टीम थी। तो हमने जो ये मिशन था ये हमने स्टार्ट किया था कारजोक से। हमने फर्स्ट में ग्यामा रेंज को, मेंटोक रेंज को कंप्लीट किया था एक दिन में। उसके बाद दूसरा दिन हमारा था यालुंगनांग की तरफ हम गए। तीसरा फेज था हमारा ग्यामा मैसिफ की जो पीक्स हैं उसका था, और चौथा फेज था हमारा पोलोगोंका की जो रेंज थी, और पांचवें फेज में हमने खत्म किया था ये अपना थोकजे रेंज को।
9: दीपक के इस अभियान का मकसद रिकॉर्ड बनाना नहीं बल्कि 26/11 के शहीदों को पहाड़ों के जरिए श्रद्धांजलि देना है। हालांकि पर्वतारोहण का शौक उन्हें सेना में रहते लगा। 2006 में भारतीय सेना को ज्वाइन करने के बाद पर्वतारोही के तौर पर दीपक कुमार का सफर लगातार ऊंचाइयां छूता गया। 2013 से 2025 के बीच दीपक 65 चोटियों को फतह कर चुके हैं। इनमें नेपाल की 8,685 मीटर ऊंची माउंट मकालू से लेकर माउंट एवरेस्ट की चोटियां तक शामिल हैं। 2019 में भारतीय सेना के एडवेंचर विंग के अभियान के तहत उन्होंने माउंट मकालू का सफल आरोहण किया था। इस अद्भुत उपलब्धि के लिए उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। पर्वतारोहण की दुनिया में दीपक कुमार ने सिर्फ चोटियां फतह नहीं की बल्कि रिकॉर्ड भी बनाए हैं। 2019 में कजाकिस्तान में 9 दिनों के भीतर 15 चोटियों को छू लिया था। इसके बाद दीपक ने साल 2021 में 24 घंटे के भीतर 12 पर्वत चोटियों का आरोहण किया। दीपक रूस की 5,642 मीटर ऊंची माउंट एल्ब्रुस और अफ्रीका की 5,895 मीटर ऊंची माउंट किलिमंजारो की चोटियों पर भी तिरंगा फहरा चुके हैं। उनके नाम कई रिकॉर्ड बुक्स में दर्ज हो चुका है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दीपक 3 बार जगह बना चुके हैं। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 3 बार उनका नाम दर्ज हो चुका है और इसके अलावा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, नोबल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और ऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दीपक की उपलब्धियां दर्ज है। -25 डिग्री तापमान, बर्फीले तूफानों और खतरनाक ग्लेशियर पर लगातार चढ़ाई के पीछे एक और मकसद है, त्याग, बलिदान और शहादत के सम्मान के जरिए पूर्व सैनिक दीपक कुमार आने वाली पीढ़ियों और युवाओं में राष्ट्रवाद और सेवा की भावना को भी बढ़ावा देना चाहते हैं। गाजियाबाद से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ, आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
14: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
14: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
14: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
14: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
14: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
14: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
14: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
14: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे

स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, ज्योतिष में बृहस्पति को सबसे महान और सबसे पवित्र माना जाता है। बृहस्पति की पवित्रता उसकी दृष्टि में छिपी होती है और बृहस्पति की दृष्टि को सर्वाधिक पवित्र क्यों मानते हैं, अलग अलग ग्रहों पर इसकी दृष्टि का प्रभाव क्या होता है, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं बृहस्पति देव की दृष्टि के बारे में। बृहस्पति की दृष्टि इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? देखिए, ज्योतिष में 9 ग्रहों का अध्ययन हम करते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। राहु केतु के पास कोई दृष्टि नहीं होती। बाकी बच गए 7 ग्रह। हर ग्रह के पास, इन 7 ग्रह के पास एक ही दृष्टि होती है, 7वीं। लेकिन बृहस्पति, मंगल और शनि के पास विशेष दृष्टियां भी होती हैं। बृहस्पति के पास 7वीं दृष्टि तो है ही, लेकिन उसके अलावा 5वीं और 9वीं दृष्टि भी बृहस्पति के पास होती है। बृहस्पति की दृष्टि यानी बृहस्पति का देखना अत्यंत शुभ है, अत्यंत शक्तिशाली है। बृहस्पति की दृष्टि जिस ग्रह पर पड़े या जिस भाव पर पड़े उसको अत्यंत शुभ कर देती है। यानी अगर कुंडली में कोई अशुभ ग्रह है या कोई अशुभ योग है और बृहस्पति की दृष्टि उसके ऊपर पड़ गई तो उसकी अशुभता नष्ट हो जाएगी। बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां शुभता नहीं आती। बृहस्पति का बैठना शुभ नहीं होता, लेकिन बृहस्पति जहां देख लेते हैं, जिस भाव पर उनकी दृष्टि पड़ जाती है वो भाव अत्यंत शुभ हो जाता है। जिस ग्रह पर दृष्टि पड़ती है वो ग्रह भी शुभ हो जाता है। अलग अलग ग्रहों पर बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव क्या होता है इसको जानेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, धन हानि से बचाव करें, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, धन और उपहार की प्राप्ति होगी, परिवार में खुशहाली आएगी, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, पारिवारिक स्थितियों में सुधार होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, माता लक्ष्मी की अगर उपासना कर लें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे,
धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि जब बृहस्पति की दृष्टि अलग अलग ग्रहों पर पड़ती है तो इसका क्या असर होता है। अगर सूर्य पर दृष्टि पड़े बृहस्पति की तो व्यक्ति को जीवन में बहुत सारा मान सम्मान मिलता है। गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार या राज्य की तरफ से सहायता और कृपा प्राप्त होती है। अगर बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर पड़े तो मानसिक स्थिरता मिलती है और व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। अगर मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि पड़े तो व्यक्ति अत्यंत पराक्रमी हो जाता है, लेकिन अगर बृहस्पति मंगल को देखे और मंगल भी बृहस्पति को देख ले तो ये वैवाहिक जीवन में उन्माद और उपद्रव पैदा करता है। अगर केवल गुरु जो है मंगल को देख रहा है तो व्यक्ति को साहसी और पराक्रमी बना देता है। बुध पर अगर दृष्टि हो बृहस्पति की तो व्यक्ति काफी बुद्धिमान और काफी ज्ञानी होता है। ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में और सलाहकारिता के क्षेत्र में बड़े सफल होते हैं। लिखने पढ़ने के काम में, बोलने में, वाणी में, प्रेजेंट करने में इनको काफी सफलता जीवन में प्राप्त होती है। बाकी ग्रहों पर बृहस्पति की दृष्टि का क्या प्रभाव है ये जानेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, महत्वपूर्ण काम टाल दें, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन की समस्या दूर होगी, करियर में सफलता मिलेगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है, परिवार में विवादों से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो हमने आपको बताया कि बृहस्पति की दृष्टि का सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध पर कैसा प्रभाव पड़ता है। अब बाकी ग्रहों का भी हाल जानते हैं। शुक्र पर अगर बृहस्पति की दृष्टि है तो व्यक्ति वैभवशाली होता है, व्यक्ति का चरित्र काफी मजबूत होता है,
हालांकि कभी कभी माइनर केसेस में बृहस्पति अगर शुक्र को देखे और शुक्र भी बृहस्पति को देखे तो ये मेंटल डिप्रेशन का कारण बन सकता है। अगर केवल बृहस्पति शुक्र को देख रहा है तो ये जीवन में धन संपन्नता और वैभव देगा। शनि पर अगर बृहस्पति की दृष्टि हो तो व्यक्ति को आध्यात्मिक उपलब्धि मिलती है। बृहस्पति अगर शनि को देखेगा तो व्यक्ति को आध्यात्मिक उपलब्धि मिलेगी। कभी कभी बृहस्पति शनि को देखे तो आदमी कानून की पढ़ाई करता है या लॉ के फील्ड में जाता है। राहु और केतु पर अगर बृहस्पति की दृष्टि है तो इन ग्रहों के दुष्प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। ये ग्रह सामान्यतः अच्छा फल प्रदान करना शुरू कर देते हैं। कुंडली में कोई अशुभ योग बना हुआ है, कोई खराब कॉम्बिनेशन है और उस पर अगर गुरु की दृष्टि पड़ गई है तो उस खराब कॉम्बिनेशन का, खराब योग का ज्यादा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अगर कुंडली में कोई स्थान दूषित हो गया है, कोई स्थान कमजोर हो गया है और बृहस्पति की दृष्टि वहां पड़ती है तो वो स्थान, वो भाव शुभ हो जाएगा और जीवन में शुभ परिणाम प्रदान करना शुरू कर देगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, चोट चपेट से बचाव करें, संतान की चिंता रह सकती है, महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन की दशा में सुधार होगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की स्थिति ठीक होगी, करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में लाभ होगा, सेहत में सुधार होगा, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं, सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति उस भाव को नुकसान पहुंचा देते हैं, लेकिन जिस भाव को, जिस ग्रह को देखते हैं

मंगल दोष है और बृहस्पति मंगल को देख रहा है तो मंगल दोष भंग हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ेगी या नवम दृष्टि पड़ेगी मंगल के ऊपर तो मंगल के दुष्प्रभाव कम हो जाएंगे, उसकी इंटेंसिटी थोड़ी घट जाएगी। लेकिन अगर सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो मंगल के हाल पर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, ऑलमोस्ट मंगल उतना ही डिस्टर्ब करेगा, उतना ही परेशान करेगा। तो बृहस्पति की हालांकि तीनों दृष्टियां पवित्र हैं लेकिन जो सप्तम दृष्टि है वो सबसे कम पवित्र है, उसके बाद पंचम दृष्टि पवित्र है और उसके बाद नवम दृष्टि बृहस्पति की सबसे ज्यादा पवित्र है। नवम दृष्टि जिस भाव पर पड़े, जिस ग्रह पर पड़े, वहां बृहस्पति की सारी शुभता आ जाती है। तो आज हमने आपको बताया बृहस्पति की दृष्टि के बारे में और बृहस्पति की दृष्टि की शुभता के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। घर के दरवाजों को खोलते बंद करते समय तड़ाक भड़ाक की आवाज नहीं होनी चाहिए। अगर घर के दरवाजों को खोलते बंद करते समय आवाज होगी जोर से तो घर में कलह कलेश और अशांति पैदा होगी। प्रातः काल माता लक्ष्मी को एक गुलाब का फूल अर्पित करिए। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिए। दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: पूरा देश बप्पा की भक्ति के रंग में रंगा हुआ है। गुड न्यूज टुडे भी आपको लगातार भक्ति की तमाम तस्वीरें दिखा ही रहा है, साथ ही साथ अनंत चतुर्दशी पर किस तरीके से बप्पा का विसर्जन होगा, भावुक विदाई के लिए भी हर कोई तैयार है, वो तस्वीरें आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन बप्पा की इस भक्ति से जुड़ी तमाम तस्वीरें आप तक लाने के लिए हमारे दर्शक यानी आप लोग भी हमारा साथ दे रहे हैं, तो एक बार फिर से गुड न्यूज टुडे आपसे अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे इस उत्सव के साथ जुड़ी यानी हमारे साथ जुड़ी, और इसके लिए आपको बस इतना करना है कि बप्पा जब आपके घर में पधारे हैं तो उनका वीडियो बनाइए, हमें भेजिए, हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार हमारे दर्शकों के वीडियोस आ भी रहे हैं, हमारे पास ये दो वीडियोज आए। सबसे पहला वीडियो आया है चंद्र प्रकाश भगत का, और ये वीडियो हमें नागपुर महाराष्ट्र से भेजा है हमारे दर्शक ने। बेहद खूबसूरत तरीके से बप्पा को सजाया गया है, पूरी तरह से भक्ति में लीन चंद्र प्रकाश नजर आ रहे हैं, और ये तस्वीरें देखिए फूल माला के साथ सुसज्जित और साथ ही साथ पगड़ी में कितने खूबसूरत बप्पा यहाँ पर लग रहे हैं। अलग अलग लाइटिंग से बप्पा को सजाया गया है, उनका श्रृंगार किया गया है। साथ ही साथ दूसरी जो तस्वीर है वो नासिक महाराष्ट्र से आई है, पहली तस्वीर नागपुर की, दूसरी नासिक की, और ये मधुकर जी ने हमें भेजा है। यहाँ पर भी किस तरीके से बप्पा की भक्ति हो रही है वो भी आप देख सकते हैं, लाल फूलों के साथ बप्पा का श्रृंगार किया गया है, साथ में कलश स्थापना भी की गई है, दिया यहाँ पर बप्पा की भक्ति में लगाया गया है, बेहद खूबसूरत घर में ही सही लेकिन छोटा सा पंडाल सजाया है इन्होंने भी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज।

0: Today.
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
7: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छा।
8: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा, स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
7: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
8: दिव्य और भव्य होगा दीपोत्सव 2026, 30 लाख दीपों से जगमगाएगी अयोध्या, 2100 ड्रोन शो से बढ़ेगा दीपोत्सव का आकर्षण। गुजरात के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी में चल रहे भादरवी महामेले में उमड़ रहा जनसमूह, 3 दिन में पहुंचे 15 लाख से ज्यादा भक्त। नैनीताल में फूलों की बारिश के बीच कैलाश को रवाना हुई मां नंदा सुनंदा, हजारों नम आंखों से दी गई विदाई, उमड़ा आस्था का सैलाब। वामन द्वादश पर बद्रीनाथ में धूमधाम से निकली भगवान उद्धव जी की डोली, माता मूर्ति महोत्सव में उमड़ा भक्तों का सैलाब। नागपुर के गणेश टेकड़ी मंदिर में भगवान गणेश को चढ़ाया गया 1101 किलो का महालड्डू, 5 फीट ऊंचे और 4 फीट चौड़े लड्डू को 22 कारीगरों ने 6 दिन में किया तैयार। झांसी में शाही अंदाज में निकली बप्पा की प्रतिमा की विसर्जन यात्रा, महाराज के रूप में विराजमान हुए बप्पा, झूमते दिखे भक्त। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है, और चर्चा बेल्जियम में महाराष्ट्र जैसे गणेशोत्सव की भी है। देखिए
9: ऊंची बर्फीली चोटियों को फतह कोई अपने शौक के लिए करता है, कोई अपनी हिम्मत पर रखता है, लेकिन गाजियाबाद के दीपक ने ऐसी कठिन चढ़ाइयां 26/11 आतंकी हमलों में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए की और अपने इस मिशन को नाम दिया प्रोजेक्ट 2611 हिमालयन ब्लिट्ज। 11 दिन में हिमालय की 26 चोटियां फतह करना इस मिशन का लक्ष्य था। 6 लोगों की टीम बनाई और अभियान की कमान संभाली खुद पर्वतारोही दीपक कुमार ने। दीपक खुद भी आर्मी के जवान रह चुके हैं और पर्वतारोहण का भी उन्हें लंबा अनुभव है। उन्होंने इस फील्ड में कई रिकॉर्ड भी बनाए हैं और सम्मानित भी हो चुके हैं, लेकिन इस बार लक्ष्य रिकॉर्ड बनाना या सम्मान पाना नहीं था, बल्कि शहीदों को सम्मान देना था। सो हिमालय की बर्फीली चोटियों पर तिरंगा शान से लहराया। बच्चों के साथ थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है क्योंकि कुछ आदतें आसानी से नहीं जाती, और फिर बच्चों का मन तो कोमल होता है। समय पर सही गलत का एहसास न कराया जाए तो यही आदतें उसे गलत राह पर भी लेकर चली जाती हैं। इसी मकसद से इन नन्हे बच्चों के साथ ये ज्यादती हो रही है। उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, मोबाइल देखना नहीं छोड़ा तो आंखें नहीं रहेंगी, बिल्कुल इनकी तरह घूमना पड़ेगा। बच्चे डरे सहमे जार जार रो रहे हैं, कोई माफी मांग रहा है तो कोई कभी भी मोबाइल न देखने की कसम खा रहा है। बच्चे तो आखिर बच्चे हैं, नाटक को सच मान बैठे, लेकिन असर बहुत हुआ। पेरेंट्स के कहने पर स्कूल ने ये नाटक प्ले किया था। जिसमें सारे किरदार बच्चों ने ही निभाए। बस फर्क ये रहा कि छोटे बच्चे इसे सच मान बैठे। बच्चों ने मोबाइल न देखने की कसम खाई, मामा पापा से सॉरी बोला और घर जाकर पेरेंट्स को भी आगाह किया और पल भर बाद ही ये रोते बच्चे डांस करते भी नजर आए। हालांकि स्कूल ने भी माना कि इस नाटक को प्ले करवाते हुए वो भी डरे हुए थे कि असर कहीं उल्टा ना हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्कूल की इस कोशिश का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा में है। बाघ वैसे तो खतरनाक जंगली जानवर है, लोगों की पहुंच से बाहर ना आसानी से दिखाई देते हैं, ना ही उसके पास जाना समझदारी है। ऐसे में जिसे हम करीब से देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसकी अगर झलक भी मिल जाए तो बड़ी बात होती है। और टाइगर रिजर्व में तो सैलानी खास तौर पर इसीलिए पहुंचते हैं। हाल ही में सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन में सैलानियों को ST-19 के एक नहीं दो दो शावकों की झलक मिली। एक जंगल में घूमता दिखा तो दूसरा आराम फरमाता, जम्हाई लेता। सैलानियों की आवाज पर वो गुर्राया भी। पर्यटकों को भला और क्या चाहिए, इतने करीब से इतने हिंसक जानवर को देखना, उसकी गतिविधियां देखी, उनकी आवाज सुनी, यकीनन ये उनके लिए एक यादगार लम्हा रहा होगा। ये भव्य दिव्य तस्वीरें बद्रीनाथ धाम की हैं, जहां आज वामन द्वादशी के पावन मौके पर माता मूर्ति महोत्सव पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। बद्रीनाथ धाम से करीब 3 किलोमीटर दूर माणा गांव के सामने स्थित माता मूर्ति मंदिर में भगवान बद्री विशाल के प्रतिनिधि के रूप में भगवान उद्धव जी पहुंचे और माँ और पुत्र के इस पौराणिक मिलन के साक्षी बनने के लिए हजारों की तादाद में श्रद्धालु भी पहुंचे। धार्मिक मान्यता है कि वामन द्वादशी के दिन भगवान नारायण अपनी माता मूर्ति से मिलने यहाँ आते हैं। ऐसे में सुबह सुबह बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना और बाल भोग के बाद भगवान उद्धव जी की उत्सव डोली को मंदिर से बाहर लाया गया और उन्हें भगवान विष्णु के प्रतिनिधि के तौर पर माता मूर्ति मंदिर के लिए रवाना किया गया। सेना के बैंड की मधुर धुनों और भगवान बद्री विशाल के जयकारों के बीच जैसे ही उत्सव डोली बद्रीनाथ धाम से निकली, पूरा बद्रीनाथ धाम भक्तिमय हो उठा। रास्ते भर श्रद्धालु भगवान के जयकारे लगाते डोली के साथ चलते रहे। माणक क्षेत्र के ग्रामीणों और तीर्थयात्रियों ने भी डोली का स्वागत किया। परंपरा भारत की है पर जश्न विदेशी धरती पर मन रहा है। महाराष्ट्र की मिट्टी की खुशबू और परंपराओं की गूंज सात समंदर पार सुनाई दे रही है। तस्वीरें बेल्जियम से आई हैं, जहां महाराष्ट्र के पारंपरिक वाद्य यंत्र संबल की गूंज ने हर किसी का मन मोह लिया। खास बात ये कि इस पारंपरिक वाद्य को बजाने वाली कोई और नहीं बल्कि चंद्रपुर जिले के राजुरा की बेटी प्रियंका बोंडे महाजन है, जिनके इस प्रस्तुति के जरिए बेल्जियम के ऐतिहासिक ग्रैंड प्लेस के सामने श्री गणेश के आगमन का पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया गया। महाराष्ट्र से हजारों किलोमीटर दूर यूरोप की धरती पर गूंजती संबल वाद्य की गूंज से बेल्जियम का माहौल पूरी तरह महाराष्ट्र में नजर आया और महाराष्ट्र मंडल बेल्जियम का मकसद भी यही है। महाराष्ट्र मंडल बेल्जियम इस बार यहां 10वां गणेशोत्सव मना रहा है।
8: और अब बात करते हैं भारत और अमेरिका की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की। इन दिनों जमीन से लेकर आसमान तक हिंदुस्तान और अमेरिका की सेना एक साथ मिलकर दम दिखा रही है। भारत अमेरिका के बीच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास उत्तराखंड के औली फॉरेन ट्रेनिंग नोड में और राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में चल रही है। अभ्यास के दौरान होवित्सर तोप, धनुष और पिनाका रॉकेट लॉन्चर से जबरदस्त फायरिंग की गई। इसके साथ ही अटैक हेलीकॉप्टर्स ने आसमान में अपना दम दिखाया। इस एक्सरसाइज से दोनों सेनाओं को एक दूसरे के बेहतर सैन्य तौर तरीकों को समझने और साझा करने में मदद मिलेगी, साथ ही ज्वाइंट प्लानिंग करने और उसे जमीन पर लागू करने की क्षमता भी मजबूत होगी।
9: आसमान में गरजता सेना का अटैक हेलीकॉप्टर, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से धुआंधार फायरिंग और एक साथ गरजती M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोपें। ये तस्वीरें किसी स्पेशल ऑपरेशन या फिर जंग के मोर्चे की नहीं है बल्कि सेना के एक्शन की ये तस्वीरें राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से आई, जहां भारत और अमेरिका की सेनाएं मिलकर युद्ध अभ्यास कर रही हैं। ब्रिक्स समिट के बाद अब भारत और अमेरिका की सेनाएं एक और बड़े रणनीतिक अभ्यास में आमने सामने नहीं बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध की नई तकनीक और नई रणनीति का अभ्यास कर रही हैं। इस बार ये अभ्यास बेहद खास है क्योंकि पहली बार एक ही एक्सरसाइज को दो बिल्कुल अलग अलग इलाकों में कराया जा रहा है। एक तरफ राजस्थान का गर्म रेगिस्तान और दूसरी तरफ उत्तराखंड का ऊंचाई वाला पहाड़ी इलाका। पहला फेज राजस्थान के बीकानेर के पास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हो रहा है, जहां दोनों देशों के सैनिक रेगिस्तानी इलाके में लॉन्ग रेंज फायर, प्रिसीजन स्ट्राइक, मैन्यूवर और ज्वाइंट ऑपरेशन का अभ्यास कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय और अमेरिकी सैनिकों के साथ दूसरे फेज का अभ्यास उत्तराखंड के औली में हो रहा है। यहां दोनों सेनाओं का फोकस हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर, कठिन पहाड़ी इलाके में ऑपरेशन, एयर मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स पर है। उत्तराखंड का औली LSC यानी चीन सीमा से केवल 100 किलोमीटर की दूरी पर है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर अमेरिकी सैनिकों विशेष रूप से अलास्का की 11वीं एयरबॉर्न डिवीजन का भारतीय सेना के साथ अभ्यास करना ये दिखाता है कि दोनों सेनाएं अत्यधिक ठंडे और पहाड़ी इलाकों में मिलकर चीन के खिलाफ मोर्चा संभाल सकती हैं। जबकि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज का इलाका पाकिस्तान सीमा के बेहद करीब है। यहां अमेरिका का हिमार्स और भारत का पिनाका रॉकेट और अपाचे हेलीकॉप्टर से की जा रही लाइव फायरिंग ये साफ संदेश देती है कि भारत अमेरिका का रक्षा सहयोग केवल समुद्री क्षेत्र तक सीमित नहीं है बल्कि ये थल सीमा पर भी पूरी तरह सक्रिय है। पहली बार दो अलग अलग इलाकों में एक साथ हो रहा यह अभ्यास भारत की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत सेना को एक ही समय में उत्तरी और पश्चिमी मोर्चे पर संभावित खतरों से एक साथ निपटने के लिए तैयार किया जा रहा है। अभ्यास के दौरान दोनों देशों की सेनाओं ने ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर बैठकर दुश्मनों के ठिकानों और लक्ष्यों की बारीकी से पहचान की। सैनिकों ने आपस में खुफिया जानकारी साझा करने, तुरंत फायर ऑर्डर देने और फायरिंग के दौरान जरूरी सुधार करने की जटिल प्रक्रियाओं का मिलकर अभ्यास किया ताकि युद्ध के मैदान में चूक की कोई गुंजाइश न रह जाए। 15 सितंबर से शुरू हुआ ये युद्ध अभ्यास 28 सितंबर तक चलेगा। इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के लगभग 1200 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें कई तरह के आधुनिक हथियारों को आजमाया जा रहा है, जिनमें ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टम और ऑटोनॉमस सिस्टम का उपयोग मुख्य रूप से किया जा रहा है।
10: पाकिस्तान की सीमा के नजदीक भारत और अमेरिका के सैनिक न सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमान में भी अपना रण कौशल दिखा रहे हैं। युद्धाभ्यास के दौरान टैक्टिकल ड्रिल्स के साथ साथ अब हवाई करतब भी देखने को मिल रहे हैं और साथ ही किस तरह से एक युद्ध में अपने एयर असेट्स का इस्तेमाल किया जाता है उस पर भी जोर दिया जा रहा है। और इसी कड़ी में भारतीय सेना ने अपने अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स के जरिए खास फायरिंग भी इस युद्धाभ्यास में की है। अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स जो भारत ने अमेरिका से ही लिए हैं, हाल ही में भारतीय सेना के एविएशन विंग का हिस्सा बने हैं और अब अमेरिका के सैनिक भारत में आकर इन एविएशन ड्रिल्स को देख रहे हैं और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि किस तरह से जमीन से लेकर आसमान तक एविएशन की बात हो या फिर तोप की बात हो, आर्टिलरी की बात हो, हर तरफ भारत का कौशल, भारत की स्किल और भारत के युद्ध में जो नई तकनीक है वो कैसे आगे बढ़ रही है और अमेरिका से सीख भी रहा है और इसे देख भी रहा है।
9: इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य पहाड़ी और अर्ध पहाड़ी क्षेत्रों में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की संयुक्त क्षमता को बढ़ाना है। यह अभ्यास सिर्फ पारंपरिक प्रशिक्षण नहीं है बल्कि इसमें दोनों सेनाओं के विशेषज्ञ मल्टी डोमेन वॉरफेयर यानी कई क्षेत्रों में एक साथ युद्ध की उभरती तकनीकों पर विचार साझा कर रहे हैं। ये पहला मौका है जब भारत का इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप पहली बार किसी विदेशी सेना के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहा है। तो वहीं ये भी पहली बार हो रहा है जब अमेरिका ने अपनी 3 MDTF यानी थर्ड मल्टी डोमेन टास्क फोर्स को भारत के साथ इस साझा युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने भेजा है। ये फोर्स अंतरिक्ष, साइबर इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और लंबी दूरी की मिसाइलों को एक साथ कंट्रोल करती है। अभ्यास के पहले हफ्ते में अमेरिकी और भारतीय सैनिकों ने एक दूसरे के हथियारों, नाइट विजन उपकरणों और अनमैन्ड सिस्टम्स का अध्ययन किया। सैनिकों ने एक दूसरे की राइफल्स और हथियारों को चलाने की तकनीकों और सुरक्षा प्रोटोकॉल पर चर्चा की। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में अमेरिका के सबसे एडवांस्ड मोबाइल काउंटर ड्रोन सिस्टम एमलिट्स को तैनात कर पहली बार भारतीय सैनिकों को उसके संचालन का लाइव प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा रैपलिंग यानी हेलीकॉप्टरों और ऊंचाई वाले स्थानों से रस्सियों के सहारे नीचे उतरने का भी कड़ा अभ्यास इस एक हफ्ते की एक्टिविटीज में शामिल रहा। इस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी तालमेल को मजबूत करना और आधुनिक युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी ताकत को परखना है। अपने इसी मकसद के तहत दोनों देशों के जवानों ने इन घातक हथियारों का इस्तेमाल कर अपनी मारक क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया। इस बार के इस अभ्यास में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। इसलिए ट्रेनिंग के दौरान सर्विलांस और टोही अभियानों के लिए विशेष रूप से ड्रोन्स और ऑटोनोमस सिस्टम का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अभ्यास में दोनों सेनाएं अपनी अपनी नई टेक्नोलॉजी, हथियार प्रणालियों और युद्ध के अनुभव को एक दूसरे के साथ साझा कर रही हैं। हाल के युद्धों में ड्रोन, काउंटर ड्रोन, प्रिसिजन फायर और मल्टी डोमेन ऑपरेशन जिस तरह निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं, लिहाजा युद्ध अभ्यास का ये संस्करण उन्हीं बदलती युद्ध परिस्थितियों के अनुरूप दिखाई देता है। साथ ही ये युद्धाभ्यास दिखाता है कि क्वाड देशों में भारत और अमेरिका की सैन्य साझेदारी अब केवल कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर भी बेहद मजबूत हो चुकी है। माना जा रहा है कि ये अभ्यास भारत अमेरिका रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला कदम है जो न सिर्फ दोनों देशों की सैनिक क्षमता बढ़ाएगा बल्कि आपसी विश्वास और सहयोग को भी मजबूत करेगा। भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास की शुरुआत 2004 में हुई थी और तब से ये दोनों सेनाओं के बीच सालाना अभ्यास के रूप में जारी है। ये अभ्यास बारी बारी से भारत और अमेरिका में आयोजित होता रहा है, लेकिन 2026 का ये युद्ध अभ्यास इसलिए खास है क्योंकि पहली बार एक ही अभ्यास में हिमालय से लेकर राजस्थान तक युद्ध की अलग अलग परिस्थितियों को शामिल किया गया है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: नागपुर के प्रसिद्ध गणेश टेकड़ी मंदिर में भगवान गणेश को 1101 किलो के महालड्डू का लगा भोग। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
9: नशीली दवाओं के खिलाफ तेलंगाना सरकार और राज्य पुलिस की मुहिम को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। केंद्र सरकार द्वारा एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स के मूल्यांकन के लिए तय किए गए 7 कड़े मापदंडों में तेलंगाना पुलिस ने 80% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं। इसके लिए तेलंगाना के नार्कोटिक्स ब्यूरो और ईगल फोर्स को ड्रग विरोधी अभियानों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार और नेशनल रिकॉग्निशन से सम्मानित किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज ITU मेट्रो स्टेशन से विशेष रैपिंग वाली मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सरकार की ये पहल सेवा संकल्प अभियान के तहत शुरू की गई है। इसमें 5 मेट्रो ट्रेनों के कुल 36 डिब्बों को सरकार की योजनाओं के संदेशों से सजाया गया है। ये ट्रेनें मेट्रो के रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन और वायलेट लाइनों पर चलेंगी और दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के लगभग 67% हिस्से को कवर करेगी। इसका मकसद दिल्ली सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और जनहितकारी नीतियों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाना है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में 3 नक्सली शीर्ष कमांडरों ने आज पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। नक्सली कमांडर जवा महतो, नयन तारा साहू और रामप्रसाद मंडी ने पश्चिमी जोन के ADG को अपने हथियार सौंपे। ये तीनों अलग अलग नामों से पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम, बांकुड़ा, पुरुलिया और पश्चिम मेदिनीपुर जिलों के साथ साथ पड़ोसी राज्य झारखंड के पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र में लंबे समय तक सक्रिय रहे थे। पुलिस रिकॉर्ड में इनके खिलाफ हत्या समेत 75 से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज हैं। रांची में BIT मेसरा अपने हॉस्टलों में एंटी सुसाइड सीलिंग फैन रॉड लगाएगा। हाल के दिनों में संस्थानों में छात्रों की बढ़ती सुसाइड की घटनाओं के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। इस रॉड की खासियत ये है कि जब कोई खुद को इस पंखे से लटकाने की कोशिश करेगा तो एक निश्चित वेट के बाद पंखे की रॉड नीचे आ जाएगी और पंखे से अलग हो जाएगी। देश भर में गणेश उत्सव की धूम के बीच नागपुर के प्रसिद्ध गणेश टेकरी मंदिर में आज भगवान गणेश को 1101 किलो का विशाल महालड्डू अर्पित किया गया। करीब 5 फीट ऊंचे और 4.5 फीट चौड़े इस महालड्डू को तैयार करने में 22 कारीगरों ने लगातार 6 दिनों तक दिन रात मेहनत की। आयोजकों के मुताबिक लड्डू में बूंदी और सूखे मेवों की कुल 7 परतें लगाकर इसे विशाल गोले का आकार दिया गया है और इसे बनाने में करीब 320 किलो बेसन, 260 किलो शक्कर, 320 किलो देसी घी और 61 किलो सूखे मेवे का इस्तेमाल किया गया है। इसमें पिस्ता, बादाम, काजू, किशमिश और केसर के साथ गुलाब जल भी मिलाया गया है। लड्डू को आकर्षक बनाने के लिए इसके ऊपर चांदी का वर्क भी लगाया गया है।
8: और अब बात गणेश उत्सव की। पूरे देश में गणेशोत्सव की धूम है। शहर शहर बप्पा के भव्य और दिव्य पंडाल सजाए गए हैं, जहां बप्पा भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। कहीं गणपति बप्पा केदारनाथ के अवतार में दर्शन दे रहे हैं, तो कहीं मन्नत पूरी होने की आस में भक्त बप्पा को शक्कर चढ़ा रहे हैं। कहीं बप्पा का श्रृंगार लाखों रुपए की करेंसी से किया गया है, तो कहीं बप्पा के दरबार के जरिए सामाजिक संदेश दिया जा रहा है। महाराष्ट्र के नासिक में विघ्नहर्ता गणेश की सोने से बनी बेहद छोटी मूर्तियों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। वहीं आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के मछलीपट्टनम में बप्पा का विराट स्वरूप हर किसी का ध्यान खींच रहा है।

0: भक्ति और आस्था की ये तस्वीरें गणेश उत्सव की हैं। गणेश पंडालों में रौनक है और भक्तों से गणपति का हर दरबार गुलजार है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की भव्य छटा छाई हुई है। मुंबई के तमाम इलाकों में बाप्पा के भव्य दिव्य स्वरूप देखने को मिल रहे हैं। मुंबई के अखिल चंदनवाड़ी के गणपति पंडाल में भी आस्था का ऐसा ही अनोखा रंग देखने को मिल रहा है। केदारनाथ की थीम पर बने इस पंडाल में 12 ज्योतिर्लिंग के भव्य दर्शन भी हो रहे हैं।
1: साउथ मुंबई में स्थित अखिल चंदनवाड़ी गणेश उत्सव पंडाल में, जहां के बप्पा गोड़ गणपति बप्पा के नाम से भी जाने जाते हैं, तस्वीरों में देखें किस तरीके से बहुत ही ज्यादा विशाल, बहुत ज्यादा भव्य नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बप्पा की जो हाइट है वो तकरीबन 28 फीट है और केदारनाथ के अवतार में यहां पर स्थापित हुए हैं। डेकोरेशन चलचित्र देखने के बाद भी ये पता चल पा रहा है कि केदारनाथ की पूरी थीम रखी हुई है। साथ ही साथ आपको बताएं कि जब आप मुख्य द्वार से बप्पा की तरफ आगे बढ़ते हैं तो बाकी के भी जो 11 शिवलिंग हैं वो वहां पर स्थापित किए गए हैं, जिसमें ओंकारेश्वर, उज्जैन के महाकाल, काशी, नासिक के त्र्यंबकेश्वर जैसे नाम शामिल हैं। आखिर क्यों गोड़ गणपति के नाम से मशहूर हैं? आखिर क्यों हर किसी के मोबाइल पे बप्पा की तस्वीरें, बप्पा के वीडियोस वायरल हो रहे हैं?
2: उसने मन्नत मांगा था तो उसका सब इच्छा पूर्ण हुआ, इसलिए उसने जब इससे शक्कर चढ़ाया, जब इससे आज तक पूरा वो शक्कर है वो पूरा जाने के अभी पहले दिन से अभी 11 दिन तक पूरा लोग भगवान जो भक्तजन आता है वो शक्कर लाता है।
0: चंदनवाड़ी के गणपति पंडाल के बाद अब गिरगांव के राजा के दरबार में विराजमान बाप्पा की दिव्य प्रतिमा के भी दर्शन कीजिए। यहाँ की थीम द्वारकाधीश के नाम पर रखी गई है।
1: पहले आप बप्पा के यहाँ का दर्शन करें, क्योंकि हमेशा की तरह इस बार भी बहुत ज्यादा चर्चित हैं, वायरल हैं। हर साल बिल्कुल एक ही तरह की थीम होती है, एक ही तरह का आकार होता है गणपति बप्पा का, लेकिन विशेष इस बार ये है कि श्री कृष्ण के रूप में देखे जा रहे हैं। बप्पा बहुत ज्यादा प्यारे और सुंदर तो लग ही रहे हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा जो बहुत ज्यादा देखने वाली चीज है उनका फेटा है। मुझे लगता है कि देश का यह सबसे बड़ा फेटा है, जिसकी लंबाई कम से कम 6 फीट है, चौड़ाई कम से कम 5 फीट है। खास बात यह है कि द्वारकाधीश का भी यहां पर थीम रखा गया है और कुछ चीजें ऐसी रखी गई हैं जो हूबहू द्वारका में देखी जा रही हैं। देखिए, ये वही गिरगांव के राजा का दरबार है जहां पास में समुद्र है और जितनी भी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं जो साउथ मुंबई में स्थापित की जाती है, जिनमें लालबाग के राजा, चिंतामणि के राजा, गणेश गली, मुंबई का राजा, तेजुका का राजा, परेल का महाराजा, विघ्नहर्ता, लंबोदर, तमाम बड़े पंडाल इसी गिरगांव चौपाटी में आकर के विसर्जित किए जाते हैं।
0: मुंबई में इसी तरह जगह जगह भव्य रूप से उत्सव मनाया जा रहा है और अलग अलग थीम पर बने पंडालों में बाप्पा के दर्शन हो रहे हैं। महाराष्ट्र का अकोला भी आस्था और भक्ति के रंग से सराबोर है। यहाँ करीब 4 दशक पुरानी परंपरा को जीवंत किया गया है। यहाँ 1980 के दौर की झलक गणपति पंडाल में दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ आकर्षण सिर्फ पुरानी यादें नहीं है, बल्कि बाप्पा के कई ऐसे स्वरूप भी हैं जिन्हें देखकर श्रद्धालु आश्चर्यचकित रह जाते हैं।
3: अकोला के सिंधिया इलाके में जो है, आप देख सकते हो कि 1980 के दशक का किस तरह से जो पूरा उस वक्त का दौर था वो किस कैसा दौर था, वो जो है वो एक अलग ही दौर था। क्योंकि उस जमाने में जो है मोबाइल नहीं हुआ करते, खेल कूद हुआ करती थी। जिस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पर टायर से खेलना है,
4: यहाँ पे पुराना जो उनका बायोस्कोप से देखना, एक सरपंच के घर में रामायण चल रहा है, दैट इज एक ही टीवी होता था और सारा गांव बैठ के देखता था।
0: ये भक्तों की आस्था और विश्वास ही है कि वो अपनी कल्पना को आकार देकर बप्पा को अपने मनचाहे रूप में ढाल देते हैं। ये तस्वीर नासिक की है, जहां गणपति बाप्पा का इतना सूक्ष्म रूप कि उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप तक की जरूरत पड़ती है। नासिक के सुनार भगवान दास खरोटे ने अलग अलग साइज की 291 सूक्ष्म सोने की गणेश मूर्तियां बनाई हैं। इनमें सबसे सूक्ष्म 3 मिलीमीटर से लेकर 1 इंच साइज तक की गणेश मूर्ति शामिल है। इतना ही नहीं, सिर्फ 1.25 इंच की जगह में अलग अलग एक्सप्रेशन वाली 256 गणेश मूर्तियां भी बनाई हैं।
5: 92 में क्या चने की दाल पे मैं गणेश जी का मूर्ति बनाया था, जो बहुत छोटा था, उसको पहला फर्स्ट प्राइज भी मिला था। हुआ ऐसा कि 6 महीने के बाद उसको कीड़े मकोड़ों ने खा लिया, तो मैं बहुत हर्ट हो गया कि जो मैं कलाकृति बनाया था वो तो मेरा आइडेंटिटी था, लेकिन अभी गायब हो गया। तो मैं ऐसा सोचा कि ये कोई परमानेंट माध्यम हो, इसलिए मुझे गोल्ड में बनाने का इच्छा हुआ, तो गोल्ड में ही मैं शुरुआत किया बनाने के लिए।
0: महाराष्ट्र में जगह जगह गणेश पंडालों के माध्यम से कोई ना कोई विशेष सामाजिक संदेश देने की कोशिश की गई है। चंद्रपुर में युवा गणेश मंडल ने इस साल किसानों को समर्पित अनोखी झांकी तैयार की है, जिसमें किसानों की समस्याओं और उनके दर्द को दिखाने की कोशिश की गई है। यहां भगवान गणेश को भी किसान का रूप दिया गया है।
3: पापा किसान की तरह ही गमछा बांधे हुए यहाँ पर हाथ में छड़ी लिए और यहाँ पर हल चलाते हुए बेहद ही आकर्षक मूर्ति बापा की यहाँ पर साकारी गई है। मंडल का यही उद्देश्य है कि किसानों को जो तकलीफ हो रही है, किसानों की परेशानी कोई समझ नहीं पा रहा है, सरकार किसानों की नहीं सुन रही है, लेकिन बापा के माध्यम से किसानों की सारी परेशानियाँ दूर हो, यही यहाँ पर मंडल की ओर से दिखाने का प्रयास किया गया है।
0: चंद्रपुर के ही दत्तानगर में एक और विशेष झांकी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहाँ चारों ओर पहाड़ों के बीच छाए बादलों के बीच विघ्नहर्ता विराजे हुए हैं, जहाँ से मूषक राज की पर्यावरण वसुंधरा एक्सप्रेस नाम की ट्रेन गुजरती है। इस ट्रेन में बाप्पा अलग अलग रूप में सवार हैं। इस झांकी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के साथ ही जल है तो कल है जैसा संदेश देने की कोशिश की गई है। सतारा जिले के कराड़ के आजाद चौक में इस वर्ष नरसिंह अवतार की झांकी साकार की गई है। इस पौराणिक झांकी को देखने के लिए शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं।
6: न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
0: शेयर बाजार में आज बढ़त देखने को मिली। बुधवार 23 सितंबर को सेंसेक्स 299 अंक बढ़कर 74,828 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 118 अंक ऊपर चढ़ा, ये बढ़कर 23,447 पर पहुंच गया। सोने की कीमतों में लगातार तीसरे दिन गिरावट आई। बुधवार 23 सितंबर को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 900 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,54,000 रुपए हो गई। हालांकि चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया, ये लगातार दूसरे दिन 2,42,000 रुपए पर स्थिर रही। बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया, इसमें 12 पैसे की गिरावट आई। इस तरह एक डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 95.74 रुपए हो गई।
6: फिल्म गन मास्टर G9 का पहला गाना जारी हो चुका है। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलें फिल्मी मोड़ पर।
0: सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की मच अवेटेड फिल्म द विवान को लेकर दर्शकों का इंतजार खत्म होने वाला है। लोक कथाओं, कल्पना और प्राचीन मान्यताओं की रोलर कोस्टर सवारी कराने वाली इस फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। दीपक कुमार मिश्रा के निर्देशन में बनी द विवान में सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। शोभा कपूर, एकता आर कपूर, अरुणाभ कुमार और नीरज कोठारी इसके निर्माता हैं। फिल्म 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है।
7: ओ मेरे करण अर्जुन, मुझे ऐसे 200 मीटर आगे का नहीं दिख रहा और तू पास्ट में घूम क्या रहा है?
8: शायद देवी तुम्हें कुछ दिखाना चाहती है।

इमरान हाशमी और हिमेश रेशमिया की जोड़ी एक बार फिर साथ आई है। फिल्म गन मास्टर G9 का पहला गाना अफसाना बनाया आपने रिलीज हो गया है। हिमेश रेशमिया ने इस गाने को कंपोज करने के साथ इसके बोल भी लिखे हैं, जबकि हिमेश और असीस कौर ने इसे अपनी आवाज दी है। आदित्य दत्त के निर्देशन में बनी इस रोमांटिक एक्शन फिल्म में इमरान हाशमी के साथ जेनेलिया देशमुख और अपार शक्ति खुराना मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म 27 नवम्बर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

मराठी सिनेमा के बहुत प्रतीक्षित फिल्म अफरा तफरी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। तीन भाइयों की कहानी पर बनी ये फिल्म कंफ्यूजन, गलतियों और अफरा तफरी से भरपूर कॉमेडी का तड़का लेकर आ रही है। फिल्म में मोहन अगाशी, संजय नार्वेकर, शशांक शिंदे, ओंकार भुजने, नेहा खान, प्रजक्ता हनमघर और असावरी जोशी समेत कई कलाकार नजर आएंगे। मिलिंद जुम्बर कवड़े के निर्देशन में बनी इस फिल्म को स्काईलाइन सिनेमैटिक और येन मूवी स्टूडियोज ने प्रस्तुत किया है। अफरा तफरी 9 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मुंबई के मशहूर रॉयल ओपेरा हाउस में 20 सितंबर को हुआ ये प्रेम मोलिया कैंपेन अब भी चर्चा में है। हिमेश रेशमिया, राष्ट्रीय और महावीर जैन फिल्म्स ने फिल्म की शुरुआत कुछ अलग अंदाज में की। न कोई पोस्टर, न कोई टीजर, बल्कि सीधे 5 मिनट का गाना पेश किया गया। इस अनोखे प्रेजेंटेशन ने फिल्म को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ाई। मेकर्स का ये तरीका फिल्म को दर्शकों के सामने पेश करने की एक अलग विजन को दिखाता है। इवेंट खत्म होने के बाद इसकी चर्चा बनी हुई है।

0: न्यूज वक्त में खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
0: दिव्य और भव्य होगा दीपोत्सव 2026, 30 लाख दीपों से जगमगाएगी अयोध्या, 2100 ड्रोन शो से बढ़ेगा दीपोत्सव का आकर्षण। गुजरात के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी में चल रहे भादरवी महामेले में उमड़ रहा जनसमूह, 3 दिन में पहुंचे 15 लाख से ज्यादा भक्त। नैनीताल में फूलों की बारिश के बीच कैलाश को रवाना हुई मां नंदा सुनंदा, हजारों नम आंखों ने दी विदाई, उमड़ा आस्था का सैलाब। वामन द्वादश पर बद्रीनाथ में धूमधाम से निकली भगवान उद्धव जी की डोली, माता मूर्ति महोत्सव में उमड़ा भक्तों का सैलाब। नागपुर के गणेश टेकड़ी मंदिर में भगवान गणेश को चढ़ाया गया 1101 किलो का महालड्डू, 5 फीट ऊंचे और 4 फीट चौड़े लड्डू को 22 कारीगरों ने 6 दिन में किया तैयार। झांसी में शाही अंदाज में निकली बप्पा की प्रतिमा के विसर्जन यात्रा, महाराज के रूप में विराजमान हुए बप्पा, झूमते दिखे भक्त। चलिए न्यूज पथ में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
2: पिता की दौलत उसके जेब से नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए उसके प्यार से मापी जाती है। तस्वीर में एक पिता अपनी बेटी को कंधे पर बैठाकर स्कूल ले जाता नजर आ रहा है, बेटी भी पिता के कंधे पर बैठकर बेफिक्र अंदाज में स्कूल जा रही है। पिता की हालत भले ही साधारण हो लेकिन अपनी बेटी को खुश रखने में वो किसी राजा से कम नहीं। इस पिता का अपनी बेटी के प्रति प्यार और जिम्मेदारी देखकर लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। का दिल सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि हर उस जीव के लिए धड़कता है जिसे प्यार और सहारे की जरूरत हो। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक महिला खाना खा रही है और उसके पास एक कौवा बैठा हुआ है। महिला अपनी थाली से खाना निकालकर कौवे को भी खिला रही है और साथ साथ खुद भी खाना खा रही है। महिला ने कौवे में सिर्फ एक पक्षी नहीं बल्कि एक भूखी जान देखी जिसे थोड़े प्यार की जरूरत थी। त्रिपुरा के उदयपुर में स्थित माँ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर आस्था का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ माता की भव्य आरती का दृश्य भक्तों का मन मोह लेता है। इस क्षेत्र में माँ त्रिपुरा सुंदरी को प्यार से माता बाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक उन्हें 10 महाविद्याओं में तीसरी महाविद्या के रूप में पूजा जाता है। देवी श्री विद्या परंपरा में भी माँ त्रिपुरा सुंदरी का विशेष महत्व बताया गया है। आरती के दौरान मंदिर का वातावरण भक्तिमय हो जाता है।

0: ताश खेलने के शौकीन लोगों ने ऐसी जगह ढूंढ निकाली जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कुछ लोग हाथी के ठीक नीचे बैठकर ताश खेलते नजर आ रहे हैं। आसपास हाथी खड़ा है और लोग बिल्कुल आराम से अपना खेल खेलने में व्यस्त हैं। वीडियो देखने के बाद लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। हालांकि इतने बड़े और ताकतवर जानवर के बेहद करीब बैठना जोखिम भरा भी हो सकता है। वीडियो ने सोशल मीडिया पर खूब ध्यान खींचा है। जुगाड़ के मामले में लोग अक्सर ऐसा तरीका खोज निकालते हैं जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक महिला दांत साफ करने के लिए गजब का जुगाड़ करती नजर आ रही है। महिला ने ब्रश को पंखे के साथ लगा दिया और घूमते हुए ब्रश से दांत साफ करने की कोशिश कर रही है। महिला के सनों की तरकीब को देखकर लोग हैरान हैं और वीडियो पर तरह तरह के मजेदार कमेंट कर रहे हैं।
1: न्यूज पद के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी धार्मिक जुलूसों के दौरान होने वाले तय सीमा से ज्यादा शोर की। इन दिनों मुंबई समेत देश भर में गणेश उत्सव चल रहा है। उत्सव के दौरान होने वाले ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सवाल उठाए। गणेश उत्सव और दूसरे धार्मिक जुलूसों के दौरान बढ़ते ध्वनि और वायु प्रदूषण को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कल हुई सुनवाई में जस्टिस गिरीश एस कुलकर्णी और जस्टिस नीला के गोखले की बेंच ने उत्सव के दौरान सड़कों पर पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह से रोक लगाने की बात कही। हाईकोर्ट की बेंच ने इस मामले में 21 सितंबर को स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से पूछा कि ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए कौन कौन से कानून लागू हैं। इसके साथ ही सरकार से यह भी पूछा गया कि इन कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक उत्सव और जुलूस निकालने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इनका आयोजन इस तरह होना चाहिए कि दूसरे नागरिकों के अधिकार प्रभावित ना हो। हाईकोर्ट ने विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों, छात्रों और बीमार लोगों पर अत्यधिक शोर के असर को गंभीरता से लेते हुए ये बात कही। कोर्ट ने पूछा कि जब सामान्य तौर पर तेज म्यूजिक बजाने की अनुमति रात 10 बजे तक है, तो धार्मिक जुलूसों में तेज आवाज वाले संगीत को आधी रात तक चलाने की अनुमति कैसे दी जा रही है। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि क्या लाउड स्पीकर और पटाखों के इस्तेमाल से भगवान से अतिरिक्त आशीर्वाद मिलने वाला है। कोर्ट ने पंडरपुर का उदाहरण देते हुए कहा कि ये यात्रा बिना लाउड स्पीकर और अत्यधिक शोर के भी शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित होती है। महाराष्ट्र के महाधिवक्ता मिलिंद साठे ने हाईकोर्ट को बताया कि मुंबई पुलिस ने गणेशोत्सव के दौरान कई प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इस पर हाईकोर्ट ने सवाल किया है कि इन आदेशों का जमीन पर कितना पालन किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि नियम है तो उन पर अमल क्यों नहीं हो रहा है। कोर्ट ने कहा है कि केवल कागजों पर आदेश होना पर्याप्त नहीं है और यदि उनका उल्लंघन हो रहा है तो संबंधित अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई करनी होगी ताकि दूसरे लोग बेवजह प्रभावित ना हो। पुणे में भी गणेश उत्सव के दौरान होने वाले शोर को लेकर लगाम कसी जा रही है। पुणे में पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने पर 50 मामले दर्ज किए हैं और 40 डीजे जब्त किए हैं। इस मुद्दे पर हमने पुणे में लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
2: भारत एक विविधता से भरपूर ऐसा देश है, यहाँ पर बहुत सारी जाति धर्म है और जैसे 6 प्रमुख जाति है, अन्य जाति है, जमातियाँ है, बहुत सारे। और भारत में जितने भी जो त्यौहार है वो वैसे माने तो कई और देशों से बढ़कर यहाँ त्यौहारों की कोई कमी नहीं है। और इस त्यौहार को मनाने के लिए हर कोई चाहता है कि खुशी और उल्लास और आनंद से हम ये जो त्यौहार होते हैं उसे मनाएं। पर उससे मनाने के बाद भी अगर हम अपने बावजूद अपने साथ साथ औरों का भी कुछ ख्याल रखें, और जैसे होता है कि आजकल जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है डीजे का, और डीजे के बारे में तो सब कुछ पेपर में आता है, टीवी में आता है, लेकिन उसके बारे में मैं तो कहना चाहूँगा जहाँ तक सीमित हो उसका जो डेसिबल का जो साउंड है उसको जो पर्याप्त रखेंगे तो हम भी आनंद ले सकते हैं और बाकी के भी आनंद ले सकते हैं। सभी जाति धर्म के अनुयायी हो या सदस्य हो, सभी बहनों को मेरा निवेदन है कि हम अगर आनंद और लेना चाहते हैं तो किसी को दुख पहुँच कर और उनको ठेज पहुँच कर, अगर उनको तकलीफ देकर अगर हम खुशी पाना चाहते तो वो खुशी नहीं, वही खुशी बेहतर है जो हम अपने साथ साथ औरों को भी खुश रखें और उनका भी ख्याल रखें। ये बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि बच्चे हो, बूढ़े हो, जो पढ़ाई करने वाले हो, या तो जो कोई बीमार हो और जो कानों में उनका जो दर्द होता है उसके प्रति अगर हम ख्याल रखेंगे तो ये इंसानियत के तौर पे हमारी एक बड़ी जागरूकता और एक पहला कदम होगा।
3: गणपति उत्सव तो बहुत अच्छी तरह से पिंपरी चिंचवड़ में मनाया जाता है, पर डीजे रुकना चाहिए, पूरी तरह से उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पुलिस अपनी तरह से कोशिश कर रहे हैं, पर लोगों ने भी इसके लिए तो आगे आके कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से बच्चों पर और बूढ़े लोगों पर बहुत बुरा असर हो रहा है। तो इसके लिए मुझे लगता है गणेश जो मंडल है वो उन्होंने सबने मिल के कुछ ना कुछ इस पे विचार करना चाहिए और उन्होंने आगे आके डीजे को रुकवाना चाहिए।
4: सही है, क्योंकि पुणे ये संस्कृति शहर है, इंडस्ट्री के साथ साथ संस्कृति जतन करने वाली शहर है, जिसमें कई साल से यानी कि 10-15 साल से आज के जमाने में डीजे का आवाज बढ़ते जा रहा है। इसकी वजह से तकलीफ तो होती है, मगर जिनकी उम्र होती है उनको ज्यादा तकलीफ होती है। तो
1: झारखंड के जमशेदपुर से करीब 75 किलोमीटर दूर एक आदिवासी गांव में पत्तों से ऐसी टोपी तैयार की जा रही है जो कि धूप और बारिश से बचाव करने के साथ ही पीढ़ियों पुरानी परंपरा को भी जिंदा रखे हुए है। यहां महिलाएं पीढ़ियों से चली आ रही कारीगरी के जरिए पत्ते से ऐसी पारंपरिक टोपी तैयार करती हैं जो कि धूप और बारिश से बचाने के साथ साथ उनके लिए कमाई का जरिया भी बन गई है।

0: जंगल की सैर भला किसे नहीं भाती। चारों तरफ हरियाली, ठंडी हवा और प्रकृति का खूबसूरत नजारा। लेकिन जंगल और खेतों में काम करने के दौरान तेज धूप लोगों को जरूर परेशान करती है। धूप से बचने के लिए बाजार में कई तरह की टोपियां मिलती हैं। लेकिन झारखंड की आदिवासी महिलाओं ने इसका ऐसा देसी जुगाड़ निकाला है जो प्रकृति से जुड़ा भी है और बेहद उपयोगी भी। जंगल से पत्ते चुनकर ये महिलाएं ऐसी पारंपरिक टोपी तैयार करती हैं जो तेज धूप से सिर और चेहरे को बचाने में मदद करती हैं। ये तस्वीरें हैं जमशेदपुर से करीब 75 किलोमीटर दूर चाकुलिया प्रखंड का भोली बोगी गांव की, जहां करीब 50 घरों वाले इस आदिवासी बहुल गांव में ज्यादातर परिवार जंगल और खेती से जुड़े हैं। और इसी गाँव में जंगल से मिलने वाले पत्ते अब यहां की महिलाओं के हुनर और रोजगार की पहचान बन रहे हैं। भोली बोगी गांव में टोपी बनाने के इस हुनर को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं के चार समूह काम कर रहे हैं। इन समूहों का नेतृत्व पद्मश्री से सम्मानित जमुना टुडू करती हैं। महिलाएं जंगल से खास तरह के गोंग पत्ते चुनकर लाती हैं। घर पहुंचकर पत्तों को अच्छी तरह साफ किया जाता है। फिर इन पत्तों की कटिंग और बुनाई के जरिए एक ऐसी टोपी तैयार होती है जो देखने में भले ही साधारण लगे लेकिन होती बेहद खास है।
1: गाँव मोली बुनी है और चकुलिया प्रखंड में पड़ता है, पूर्वी सिंहभूम जिला है।
2: मैडम क्या बन रहा है, गांव की महिलाएं क्या है, क्या बना रही हैं?
1: ये जो मोली बुनी गांव है, ये मेरा जो वन सुरक्षा समिति से सब जुड़े हुए हैं और एलोंग बरसात से बचने के लिए या धूप से बचने के लिए एलोंग टोपी बनाती है। जितना भी यहाँ पर लेडी लोग है सब टोपी बनाती है। और ये जंगल का पत्ता है, जंगल हम लोग सुरक्षा करते हैं और उसी जंगल से हम लोग को ये पत्ता मिलता है और पत्ता को लाके हम लोग यहाँ पर जैसे टोपी बना रहे हैं।
0: इस टोपी को बनाने के लिए महिलाओं ने कोई औपचारिक ट्रेनिंग नहीं ली, ये हुनर उन्हें अपने परिवार से मिला है। आदिवासी समाज में खेतों में काम करने के दौरान बरसात और गर्मी से बचने के लिए ऐसी टोपी का इस्तेमाल लंबे समय से होता आ रहा है, जो अब सिर्फ ढकने तक सीमित नहीं है बल्कि जंगल बचाने के लिए महिलाओं को संगठित करने वाले जमुना टुडू महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर रही है। अब इसी जंगल से मिलने वाले संसाधनों को महिलाओं के रोजगार से जोड़ने की कोशिश की जा रही है।
1: कम से कम एक दिन में तैयार हो जाता है लेकिन जंगल से लाना पड़ता है पत्ता को।
2: मेरे बच्ची समझे कि बाजार क्या है इसका?
1: देखिए बाजार जो है ना, हम लोग गांव के लोग है, बड़ा बड़ा बाजार में तो लोग बेच नहीं पाते हैं। हम लोग का ये जो गांव में टोला में कहीं हाट बनता है या कोई मेला होता है तो उस सब जगह में ले जा करके हम लोग बेचते हैं, जैसे कि 100 रुपया में, 110 रुपया में, ऐसे हम लोग बेचते हैं।
2: ये पत्ता कौन सा है और कितने दिन तक ये रह सकता है?
1: ये पत्ता का नाम है घुंगू पत्ता, हम लोग घुंगू पत्ता बोलते हैं। और ये जो इस पत्ता में टोपी बना के कम से कम 5 साल तो रहेगा, आप अगर अच्छा से रखिएगा तो 5 साल रहेगा। और ये जो टोपी पहन के इतना आराम मिलता है धूप में भी और पानी में भी।
0: इस टोपी की एक और खासियत है इसकी लंबी उम्र। ग्रामीणों के मुताबिक पत्तों से तैयार की गई ये टोपी कई साल तक इस्तेमाल की जा सकती है।
3: लाड़सा काम बोलते हैं हम लोग, जंगल से लाना पड़ेगा और एक दिन में हो जाएगा टोपी।
2: इस टोपी की खासियत क्या है?
3: धूप के बचाने के लिए तो और बरसात में।
0: जाहिर है जिस जंगल को ये महिलाएं बचाती हैं उसी जंगल से उन्हें अपनी जिंदगी संवारने का रास्ता भी मिल रहा है। पत्ते चुनकर लाना, उन्हें साफ करना, कारीगरी से टोपी तैयार करना और फिर उसे बाजार तक पहुंचाना, महिलाओं के हुनर, आत्मनिर्भरता और जंगल से उनके गहरे रिश्ते की पहचान बन गया है। जमशेदपुर से अमित सिन्हा, गुड न्यूज टुडे।
4: चीन में लगा दुनिया का सबसे बड़ा कौशल मेला। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां दुनिया भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
5: शंघाई में दुनिया के सबसे बड़े कौशल मेले की शानदार शुरुआत हुई। शंघाई वर्ल्ड एक्सपो कल्चर सेंटर में 48वीं वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता की ओपनिंग सेरेमनी हुई। इस बार 68 देशों और क्षेत्रों के करीब 1400 प्रतियोगी 64 स्किल इवेंट्स में हिस्सा ले रहे हैं। भारत भी अपने अब तक के सबसे बड़े कुशल युवाओं के दल के साथ प्रतियोगिता में शामिल है। उद्घाटन समारोह में पारंपरिक और आधुनिक कला का शानदार संगम देखने को मिला। खास रोबोटिक प्रदर्शन ने भी लोगों का ध्यान खींचा। मास्टर स्किल्स चेंज योर फ्यूचर प्रतियोगिता की थीम है। ये आयोजन 27 सितंबर तक चलेगा। चीन में मिड ऑटम फेस्टिवल और नेशनल डे की छुट्टियों का रंग चढ़ने लगा है। जश्न के लिए देश भर में 20,000 से ज्यादा रंग बिरंगे इवेंट्स आयोजित किए जा रहे हैं। पारंपरिक मून केक बनाने के लिए कारीगर दिन रात जुटे हैं और दुकानों पर खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। लोग घरों को सजाने और खुशहाली के लिए खूबसूरत फूल पौधे भी खरीद रहे हैं। हांगकांग के विक्टोरिया पार्क में इंटरनेशनल लैंटर्न फेस्टिवल आकर्षण का केंद्र बना है। सरकार पर्यटकों को घूमने के लिए डिस्काउंट कूपन भी दे रही है, जिससे इस बार पर्यटन में रिकॉर्ड की उम्मीद है। चीन के वुशी चिड़ियाघर में मिड ऑटम फेस्टिवल का जश्न कुछ खास अंदाज में मनाया गया। जिराफ, कैपिवारा और लाल पांडा समेत कई जानवरों को स्पेशल मून केक खिलाए गए। इन मून केक को जानवरों की पसंद और सेहत को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक चीजों से तैयार किया गया था। जानवरों ने भी इसे बड़े चाव से खाया। चिड़ियाघर ने इस मौके पर ऑटम फन नाम से कई कार्यक्रम शुरू किए हैं, जहां लोगों को जानवरों के करीब जाने और उनके साथ वक्त बिताने का मौका मिल रहा है। बच्चों के लिए भी खास परफॉर्मेंस और मनोरंजक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। टेलर स्विफ्ट को इस साल MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स में पहली बार आर्टिस्ट डायरेक्टर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये अवार्ड म्यूजिक वीडियो में उनके निर्देशन और क्रिएटिव काम के लिए दिया जा रहा है। टेलर अब तक 7 बार VMA में बेस्ट डायरेक्टर के लिए नॉमिनेट हो चुकी हैं, जिनमें 4 बार उन्होंने अवार्ड जीता है। द फेट ऑफ ऑफेलिया, ओपालाइट और एंटी हीरो जैसे वीडियो में उन्होंने डायरेक्शन किया है। टेलर 14 ग्रैमी अवार्ड जीत चुकी हैं और 4 बार एल्बम ऑफ द ईयर का सम्मान हासिल कर चुकी हैं। इस साल VMA की मेजबानी स्नूप डॉग करेंगे। सऊदी अरब की ऑटो कंपनी सोर ने अपनी पहली 2 लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च की हैं। इनमें एक्सोबॉट नाम की कार का लुक साइंस फिक्शन फिल्मों जैसा नजर आता है। कार में ऊपर की ओर खुलने वाले स्टाइलिश गल्विंग दरवाजे दिए गए हैं और आगे पीछे की सीटों के बीच का पिलर भी हटाया गया है। कंपनी के मुताबिक इसकी बिक्री 2027 के शुरुआत से शुरू होगी। सऊदी अरब का लक्ष्य 2030 तक 5 और नए मॉडल लॉन्च करना है। सरकार देश में तेल पर निर्भरता कम करने और स्थानीय ऑटो निर्माण बढ़ाने पर जोर दे रही है।
4: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
6: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखा

0: एक अच्छी शुरुआत।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच की।
1: एशियन गेम्स में 28 साल बाद भारत को वेटलिफ्टिंग में मिला मेडल। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चले खेल चक्कर।
2: भारतीय स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने एशियन गेम्स 2026 में सिल्वर मेडल जीता है। उन्होंने महिलाओं के 49 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए ये पदक अपने नाम किया। 32 साल की मीराबाई ने एशियाई खेलों में पहली बार मेडल जीता है, साथ ही भारत का 28 साल का सूखा भी खत्म किया है। एशियन गेम्स में 28 साल बाद भारत को वेटलिफ्टिंग में मेडल मिला है। इससे पहले 1998 में कर्णम मल्लेश्वरी ने सिल्वर जीता था। भारतीय वुशु खिलाड़ी रोशिबिना देवी नाओरेम अब गोल्ड मेडल से बस एक कदम दूर हैं। जापान के आईटी नागोया में चल रहे एशियन गेम्स में उन्होंने आज इंडोनेशिया की थानिया कुजुमानिंग तियास को हराकर महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। रोशिबिना ने ये मुकाबला 2-0 से जीता। फाइनल में उनका सामना चीन की शियाओ युझांग से होगा। आईपीएल 2027 का ऑक्शन गोवा में होगा। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने आज इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिसंबर में मिनी ऑक्शन आयोजित किया जाएगा। पिछले तीनों ऑक्शन भारत से बाहर हुए थे, 2024 में दुबई, 2025 में सऊदी अरब के जिद्दा और 2026 में अबू धाबी में नीलामी कराई गई थी।
1: इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ।
3: क्या आपके काम अंतिम समय पर जाकर बिगड़ जाते हैं? क्या आपके अपने कर्मों की वजह से बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं या किसी और का प्रभाव आपके बने बनाए काम को बिगाड़ रहा है? क्यों बिगड़ जाते हैं बने बनाए काम और क्या है इसका समाधान, जानिए मेरे साथ

0: सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी जीएनटी पर मनाए जा रहे इस उत्सव से जुड़िए। इसके लिए आपको बस करना इतना है कि अपने घर पर पधारे गजानन का वीडियो बनाकर हमें भेजिए। हम उन वीडियोस को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे पास लगातार दर्शक वीडियोस भेज रहे हैं। मध्य प्रदेश जबलपुर से हमारे साथ पर्व की खुशियां साझा कर रही अर्चना देशमुख, बप्पा का फूलों से श्रृंगार किया है, बप्पा के सिर पर सजा मुकुट भी बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। वहीं महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हमें वहां से वीडियो भेजा है हेमंत गोनाडे ने। यहां न सिर्फ बप्पा विराजमान है बल्कि शिवलिंग भी यहां बप्पा के साथ स्थापित किया गया है और फूलों से श्रृंगार किया गया है। बप्पा और भगवान भोले शंकर अपने भक्तों को सुख समृद्धि का वरदान देते नजर आ रहे हैं।
6: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: क्या आपके काम अंतिम समय पर जाकर बिगड़ जाते हैं? क्या आपके अपने कर्मों की वजह से बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं या किसी और का प्रभाव आपके बने बनाए काम को बिगाड़ रहा है? क्यों बिगड़ जाते हैं बने बनाए काम और क्या है इसका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
8: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
9: दिव्य और भव्य होगा दीपोत्सव 2026। 30 लाख दीपों से जगमगाएगी अयोध्या। 2100 ड्रोन शो से बढ़ेगा दीपोत्सव का आकर्षण। गुजरात के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी में चल रहे भादरवी महामेले में उमड़ रहा है जनसमूह। 3 दिन में पहुंचे 15 लाख से ज्यादा भक्त। नैनीताल में फूलों की बारिश के बीच कैलाश को रवाना हुई मां नंदा सुनंदा। हजारों नम आंखों ने दी विदाई, उमड़ा आस्था का सैलाब। वामन द्वादश पर बद्रीनाथ में धूमधाम से निकली भगवान उद्धव जी की डोली। माता मूर्ति महोत्सव में उमड़ा भक्तों का सैलाब। नागपुर के गणेश टेकरी मंदिर में भगवान गणेश को चढ़ाया गया 1101 किलो का महालड्डू। 5 फीट ऊंचे और 4 फीट चौड़े लड्डू को 22 कारोगरों ने 6 दिन में तैयार किया। झांसी में शाही अंदाज में निकली बप्पा की प्रतिमा की विसर्जन यात्रा। महाराज के रूप में विराजमान हुए बप्पा, झूमते नजर आए भक्त।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की
9: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं दमदार जोड़ीदार की। जंग के अभ्यास में ये जोड़ी है भारत और अमेरिका की, जिसके 1200 सैनिक इन दिनों पाकिस्तान की सरहद के करीब बीकानेर में युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। दोनों देशों के जवान युद्ध या मिशन के लिए एक दूसरे का रण कौशल लगातार देख रहे हैं और सीख रहे हैं। इस अभ्यास में अपाचे जैसे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स के साथ अभी भी अभ्यास किया जा रहा है और आपसी तालमेल के साथ आसमान में जमीन तक दुश्मन को मार गिराने की रणनीति बनाई गई। आज आपको औली और बीकानेर में चल रहे इस युद्धाभ्यास की हैरतअंगेज तस्वीरें दिखाएंगे, धनुष और पिनाका का भी दमखम दिखाएंगे और इसके बाद बात होगी तरंग शक्ति 2.0 की, जिसका जोधपुर में 26 सितंबर से आगाज होने जा रहा है और जिसमें पहली बार अमेरिका का F-35 भी शामिल होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सरहद के करीब युद्धाभ्यास कर रहे दमदार जोड़ीदारों से। आसमान में अपाची की दहाड़ और जमीन पर पिनाका से रॉकेट की बरसात, यकीनन राजस्थान में ऐसी तस्वीरें दुश्मन देश को डरा रही होंगी, पर ये तस्वीरें हैं भारत और अमेरिका के संयुक्त युद्धाभ्यास की। बीकानेर में दोनों देशों के सैनिकों ने मिलकर हवा और जमीन की ताकत और आपसी तालमेल को परखा। जहां अपाचे ने पिन पॉइंट फायरिंग से अपनी मारक क्षमता दिखाई, वहीं पर धनुष और पिनाका ने जमीनी ताकत का दमखम दिखाया। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में चल रहे इस अभ्यास में युद्ध की रणनीति, सर्विलांस और साझा कार्रवाई पर भी मंथन हुआ। रिपोर्ट देखिए।

0: आंख मिलाते, अपनी शान बताते। जब परवाज भरता है, दिल दुश्मन का डरता है। हवा के पैरों पर पराक्रम का हस्ताक्षर है ये, अपाचे है ये। और इसकी ताकत की नुमाइश एक बार फिर हुई बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, जहां भारत और अमेरिका की फौज मिलकर युद्धाभ्यास कर रही है। देखिए हवा का टैंक कहा जाने वाला ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर कैसे पिन पॉइंट मार करता है। एक बार लक्ष्य तय हुआ तो बस समझिए कि दुश्मन गया। हेलीकॉप्टर से निकलती 30 mm गोलियों की रफ्तार देखिए और जमीन पर उनकी मार देखिए। गोलियों की आवाज से रेगिस्तान गूंज उठा और दूर कहीं लक्ष्य धुआं धुआं हो गया। युद्धाभ्यास 2026 में एविएशन की ताकत जोड़ते हुए भारतीय सेना के अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को शामिल किया गया। उसकी ताकत और कौशल को दोनों देशों के जवानों ने आजमाया और अपाचे ने अपनी खूबियां बता दी। करीब 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है इसकी और इसके नीचे लगी राइफल से एक बार में 30 mm की 1200 गोलियां भरी जा सकती है। फ्लाइंग रेंज करीब 550 किलोमीटर है और एक उड़ान में करीब 3 घंटे तक उड़ान भर सकता है अपाचे। कई तरह के मिसाइलों से लैस है ये हेलीकॉप्टर। दुनिया के सबसे एडवांस लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स में शुमार है और इसका युद्धाभ्यास में शामिल किया जाना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
1: पाकिस्तान की सीमा के नजदीक भारत और अमेरिका के सैनिक न सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमान में भी अपना रणकौशल दिखा रहे हैं। युद्धाभ्यास के दौरान टैक्टिकल ड्रिल्स के साथ साथ अब हवाई करतब भी देखने को मिल रहे हैं और साथ ही किस तरह से एक युद्ध में अपने एयर असेट्स का इस्तेमाल किया जाता है उस पर भी जोर दिया जा रहा है। और इसी कड़ी में भारतीय सेना ने अपने अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स के जरिए खास फायरिंग भी इस युद्धाभ्यास में की है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स जो भारत ने अमेरिका से ही लिए हैं, हाल ही में भारतीय सेना के एविएशन विंग का हिस्सा बने हैं और अब अमेरिका के सैनिक भारत में आकर इन एविएशन ड्रिल्स को देख रहे हैं और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि किस तरह से जमीन से लेकर आसमान तक एविएशन की बात हो या फिर तोप की बात हो, आर्टिलरी की बात हो, हर तरफ भारत का कौशल, भारत की स्किल और भारत के युद्ध में जो नई तकनीक है वो कैसे आगे बढ़ रही है और अमेरिका इससे सीख भी रहा है और इसे देख भी रहा है।
0: असल में अभ्यास के दौरान भारत और अमेरिका के सैनिकों ने एक मिशन की योजना बनाई और इसी के तहत जमीन पर मौजूद सैनिकों और हवा में उड़ान भर रहे अपाचे के बीच तालमेल बनाया गया। मकसद ये देखना था कि जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर और जमीनी सैनिक मिलकर कितनी तेजी से काम कर पाएंगे। इस तरह हवाई हमले और जमीनी कार्रवाई को साथ जोड़ने और साथ ही संपर्क बनाए रखने और टाइमिंग का अभ्यास किया गया। इस युद्धाभ्यास में भारतीय और अमेरिकी सैनिक एक दूसरे के रणकौशल को करीब से देख समझ रहे हैं। युद्ध के दौरान प्रक्रिया, संचार और तालमेल को बेहतर बनाया जा रहा है। जाहिर है कि इसमें सिर्फ जमीनी तैयारी नहीं बल्कि फोकस हवा और जमीन की ताकत के बीच तालमेल बनाने का है। और जहां तक बात जमीनी ताकत की है तो उन्हें इन धमाकों से समझा जा सकता है। जो M777 अल्ट्रा लाइट होवित्ज़र धनुष तो और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के हैं। अत्याधुनिक तकनीक वाले हथियार रणभूमि में दुश्मन के लिए काल हैं, जिनके सटीक इस्तेमाल का अभ्यास सरहद के पास किया गया। बड़ा की तेजी के साथ तोप के गोले डाले गए और जब फायरिंग हुई तो पूरा इलाका धमाकों से गूंज उठा। अब जरा पिनाका की ताकत भी देख लीजिए। कमांड मिलते ही इसकी मल्टी बैरल लॉन्चर से कई रॉकेट लक्ष्य की ओर लपके। बीकानेर के इस रेतीले इलाके में भारतीय और अमेरिकी सैनिकों ने मिलकर एयर डिफेंस तोपों और एम लीज प्रणालियों को भी परखा। इस दौरान फायरिंग की योजना बनाई गई और उसमें आपसी तालमेल भी परखा गया। लेकिन भारत अमेरिका युद्धाभ्यास में फोकस कई और चीजों पर भी है। युद्ध या मिशन के दौरान सर्विलांस की रणनीति क्या हो, टोही अभियानों की तैयारी कैसी की जाए और इसमें ड्रोन्स का बेहतर तालमेल कैसे हो, इन सभी जरूरी मुद्दों पर दोनों देशों के सैनिक मंथन कर रहे हैं। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में दोनों सेनाओं के ऑब्जर्वेशन पोस्ट टुकड़ियों ने भी साथ मिलकर काम किया। लक्ष्य की पहचान करने के साथ एक्शन की रणनीति तय हुई। ये तस्वीरें भारत और अमेरिकी सैनिकों की ताकत और कौशल की नुमाइश है, लेकिन भारत और पाकिस्तान की सरहद के करीब ये युद्धाभ्यास दुश्मन के लिए एक संदेश भी है। आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच ये 22वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसकी शुरुआत 15 सितंबर को हुई। इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के 600-600 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: क्वाड देशों में शामिल भारत और अमेरिका के बीच सैन्य साझेदारी बहुत मजबूत है और ये युद्धाभ्यास दोनों देशों के आपसी विश्वास की पहचान है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब अमेरिका और भारत ने अभ्यास के लिए दो अलग अलग इलाकों को चुना है, एक तरफ उत्तराखंड का औली और दूसरी तरफ राजस्थान का बीकानेर। भारत के नजरिए से अगर हम देखें तो ये उत्तरी और पश्चिमी मोर्चे पर एक साथ दुश्मनों से निपटने की तैयारी है। रिपोर्ट देखिए।

0: दो देश, दो सेनाएं, दो अलग युद्ध क्षेत्र। एक तरफ बर्फीले पहाड़ है, वीरों की दहाड़ है, दूसरी ओर तपता रेगिस्तान है, युद्ध घमासान है। भारतीय जाबाज अमेरिकी सेना के साथ 22वीं बार युद्धाभ्यास करने उतरे हैं। पहली बार दो अलग अलग भूभागों पर एक साथ। एक अभ्यास उत्तराखंड की औली में फॉरेन ट्रेनिंग नोड और राजस्थान की महाजन फायरिंग रेंज में एक साथ चल रहा है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य पहाड़ी और अर्ध पहाड़ी क्षेत्रों में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की संयुक्त क्षमता को बढ़ाना है। यह अभ्यास सिर्फ पारंपरिक प्रशिक्षण नहीं है, बल्कि इसमें दोनों सेनाओं के विशेषज्ञ मल्टी डोमेन वॉरफेयर यानी कई क्षेत्रों में एक साथ युद्ध की उभरती तकनीकों पर विचार साझा कर रहे हैं। ये पहला मौका है जब भारत का इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप पहली बार किसी विदेशी सेना के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास में भाग ले रहा है। तो वहीं ये भी पहली बार हो रहा है जब अमेरिका ने अपनी 3 MDTF यानी थर्ड मल्टी डोमेन टास्क फोर्स को भारत के साथ इस साझा युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने भेजा है। ये फोर्स अंतरिक्ष, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और लंबी दूरी की मिसाइलों को एक साथ नियंत्रित करती है। अभ्यास के पहले हफ्ते में अमेरिकी और भारतीय सैनिकों ने एक दूसरे के हथियारों, नाइट विजन उपकरणों और अनमैन्ड सिस्टम्स का अध्ययन किया। सैनिकों ने एक दूसरे के राइफल्स और हथियारों को चलाने की तकनीकों और सुरक्षा प्रोटोकॉल पर चर्चा की। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में अमेरिका के सबसे एडवांस्ड मोबाइल काउंटर ड्रोन सिस्टम MILDS को तैनात कर पहली बार भारतीय सैनिकों को इसके संचालन का लाइव प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा रैम्पलिंग यानी हेलीकॉप्टरों और ऊंचाई वाले स्थानों से रस्सियों के सहारे नीचे उतरने का भी कड़ा अभ्यास इस एक हफ्ते की एक्टिविटीज में शामिल रहा। इसके अलावा दोनों सेनाओं ने संदिग्ध आतंकियों या दुश्मनों के ठिकानों को घेरने के लिए बिल्डिंग क्लियरेंस और रोम इंटरवेंशन का संयुक्त अभ्यास किया। रैपलिंग और रोम इंटरवेंशन के अभ्यासों से इंडियन आर्मी के ट्रेन डॉग्स ने खास भूमिका निभाई। बता दें कि भारतीय सेना के 4 ट्रेन डॉग्स राइस, विक्टर, जैक और राउडी युद्धाभ्यास 2026 में भाग ले रहे हैं। इन चारों में राउडी और विक्टर रामपुर हाउंड है यानी भारत की अपनी स्वदेशी नस्ल, जैक बेल्जियन मेलिनोइस है और राइस लेब्राडोर रिट्रीवर। इन चारों की खूबियां अलग हैं, लेकिन मिशन एक, जवानों का साथ देना और खतरे को वक्त रहते पहचानना। क्योंकि जहां इंसान की नजरों की सीमा समाप्त होती है, इनकी सूंघने की ताकत कई बार छिपे खतरे तक पहुंचने में मदद करती है। यही वजह रही कि इन डॉग्स ने अमेरिकी सैनिकों के सामने रोम इंटरवेंशन और रैपलिंग में अपना दम दिखाया। खास तौर पर भारतीय नस्ल के रामपुर हाउंड, विक्टर और राउडी ने तो कमाल ही कर दिया। अभ्यास के दौरान इनकी फुर्ती, सूंघने की क्षमता और कठिन सामरिक परिस्थितियों में क्विक रिएक्शन को देखकर अमेरिकी सैनिक भी हैरान रह गए। ये ऑपरेशन अब तक इस युद्धाभ्यास की हाइलाइट्स में से एक रहा। आपको बता दें कि अपनी तमाम हाइलाइट्स और स्पष्ट उद्देश्यों से इतर इस युद्धाभ्यास को आयोजित करने के पीछे सबसे बड़े सामरिक और रणनीतिक संदेश है। उत्तराखंड का औली LSE यानी चीन सीमा से केवल 100 किलोमीटर की दूरी पर है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर अमेरिकी सैनिकों, विशेष रूप से अलास्का की 11वीं एयरबोर्न डिवीजन का भारतीय सेना के साथ अभ्यास करना ये दिखाता है कि दोनों सेनाएं अत्यधिक ठंड और पहाड़ी इलाकों में मिलकर चीन के खिलाफ मोर्चा संभाल सकती हैं। जबकि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज का इलाका पाकिस्तान सीमा के बेहद करीब है। यहाँ हिमार्स, पिनाका रॉकेट और अपाचे हेलीकॉप्टरों से की जा रही लाइव फायरिंग ये साफ संदेश देती है कि भारत अमेरिका का रक्षा सहयोग केवल समुद्री क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि ये खल सीमा पर पूरी तरह सक्रिय है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और अब बात करते हैं तरंग शक्ति 2.0 की। जोधपुर का आसमान जल्द ही दुनिया के आधुनिक लड़ाकू विमानों की दहाड़ से गूंजने वाला है। भारतीय वायुसेना के बहुपक्षीय अभ्यास तरंग शक्ति 2.0 में 7 देशों की वायुसेना अपनी ताकत और तकनीक का प्रदर्शन करने जा रही हैं। लेकिन इस बार सबसे बड़ा आकर्षण अमेरिका का F-35 स्टेल्थ फाइटर होगा, जो भारत में पहली बार किसी सैन्य अभ्यास का हिस्सा बनने जा रहा है। राफेल, सुखोई, तेजस और F-16 जैसे फाइटर जेट्स भी इस हवाई शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा होने जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए।

0: आसमान में गरजते फाइटर जेट, रफ्तार से सहमी हवा, एक साथ देश और दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान। जल्दी ही जोधपुर में होने जा रहा है ऐसा शक्ति प्रदर्शन जिस पर पूरी दुनिया की नजर होगी, क्योंकि पहली बार भारतीय सैन्य अभ्यास में उतरने जा रहा है अमेरिका का F-35 स्टिल्थ फाइटर। भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े बहुपक्षीय हवाई अभ्यासों में शामिल तरंग शक्ति 2.0 की तैयारियां पूरी हो चुकी है। 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक जोधपुर एयरबेस पर होने वाले इस अभ्यास में 7 देश अपने एयरक्राफ्ट के साथ उतरेंगे। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और UAE अपनी हवाई क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। वहीं 32 देश ऑब्जर्वर के तौर पर अभ्यास को देखेंगे, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा निगाहें अमेरिका के F-35 पर होंगी। पांचवी पीढ़ी का यह स्टेल्थ फाइटर पहली बार भारत में किसी सैन्य अभ्यास का हिस्सा बनेगा। अमेरिका 6 F-35 के साथ पहुंचेगा। इसके अलावा 2 KC-135 भी अमेरिकी दल में शामिल होंगे। F-35 इससे पहले एरो इंडिया 2025 में भारत आ चुका है, लेकिन तरंग शक्ति में इसकी मौजूदगी पहली बार होगी।
1: F-35 के साथ हम पहले एक्सरसाइज कर चुके हैं, इंटरनेशनल एक्सरसाइज में हमने पार्ट लिया है, और उसमें 2 या 3 एक्सरसाइज में जो मुझे याद पड़ता है हमने F-35 के साथ एक्सरसाइज की, इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर।
0: भारत भी अपना स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर विकसित कर रहा है और इसके साथ जरूरी सपोर्ट सिस्टम, कौशल और तकनीकी क्षमता तैयार करने की भी योजना है। ऐसे में अमेरिकी F-35 की भारत में मौजूदगी मायने रखती है।
2: One is that we are developing our own 5th generation aircraft, AMCA, and Indian Air Force has put all its weight and all its technical capability, technical know-how behind it. The second aspect is we should be able to somehow detect it, and that capabilities also we are developing.
1: Well, I think that is more than sufficient to know at this stage.
0: तरंग शक्ति में सिर्फ विदेशी विमानों की ताकत नहीं दिखेगी, भारतीय वायुसेना भी अपने प्रमुख लड़ाकू प्लेटफॉर्म मैदान में उतारेगी। राफेल, सुखोई 30 MKI, तेजस, मिराज 2000, जगुआर और MiG-29 जैसे विमान इस हवाई अभ्यास का हिस्सा होंगे। फ्रांस 7 राफेल, 3 A400M और 2 MRTT के साथ पहुंचेगा। UAE 6 F-16 और 1 ग्लोबल 6000 लाएगा। जर्मनी के 2 A400M, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के C-130, जबकि श्रीलंका का किंग एयर 350 भी शामिल होगा। इस पूरे अभ्यास की एक खासियत इसका इंटर ऑपरेबिलिटी वाला कॉन्स्ट्रक्ट है, यानी अलग अलग देशों की वायुसेनाएं साझा अभियानों में एक दूसरे के साथ काम करने की क्षमता परखेंगी। भारतीय वायुसेना के मुताबिक 65 देशों को न्योता दिया गया था, जिनमें से भागीदारी और ऑब्जर्वर की भूमिका अभ्यास की जरूरत के मुताबिक तय की गई। इस दौरान मित्र देशों की तकनीक, रणनीति, संचालन अनुभव और अलग अलग क्षमताओं से सीखने का मौका मिलेगा।
1: 10 अक्टूबर को हम लोग डिस्टिंग्विश्ड विजिटर्स डे ऑर्गेनाइज करेंगे। अबाउट 10 चीफ्स और चीफ इक्विवेलेंट आर गोइंग टू टेक पार्ट एज पर द करेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद अस, एंड 31 अदर वन लेवल बिलो विल टेक पार्ट। वी आर डूइंग अ सेमिनार हियर ऑन 9th इन दिल्ली ओनली, and after that we are taking them to DV day, it is called Distinguished Visitors Day, that will happen on 10th of October. So 10-11 chiefs I think will come. We will be able to confirm this when we are closer to the event.
0: जोधपुर में यह हवाई हलचल ऐसे वक्त होने जा रही है जब इसी एयरबेस पर भारत और जापान का वीर गार्जियन 2026 अभ्यास अभी खत्म हुआ है। 9 से 22 सितंबर तक चले इस अभ्यास में भारतीय राफेल, सुखोई 30 MKI और तेजस के साथ जापान के F2A ने हिस्सा लिया। अब उसी आसमान में बहुराष्ट्रीय उड़ानों का नया दौर शुरू होगा, जहां अलग अलग देशों के लड़ाकू विमान साझा मिशनों के जरिए अपनी क्षमता और तालमेल को परखेंगे। दरअसल तरंग शक्ति की शुरुआत 2024 में हुई थी। पहला संस्करण दो चरणों में सुलूर और जोधपुर में आयोजित किया गया था। सुलूर चरण में फ्रांस के राफेल, जर्मनी, स्पेन और ब्रिटेन के यूरोफाइटर टाइफून शामिल हुए थे। इसके बाद जोधपुर में ऑस्ट्रेलिया के EA-18G ग्रॉलर, ग्रीस और UAE के F-16 तथा अमेरिका के A-10 और F-16 जैसे विमान पहुंचे थे। अब इसमें तरंग शक्ति का दूसरा संस्करण पहले से कहीं ज्यादा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई मंच तैयार कर रहा है। एक तरफ पांचवी पीढ़ी का अमेरिकी F-35, दूसरी तरफ भारतीय राफेल, तेजस और सुखोई। जोधपुर का आसमान सिर्फ विमानों की उड़ान नहीं देखेगा, बल्कि अलग अलग वायु सेनाओं के साझा प्रशिक्षण, तालमेल और तकनीकी अनुभवों का गवाह बनेगा।
3: तरंग शक्ति 2026 यानी भारत की अपनी मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज शुरू हो रही है 26 सितंबर को। इसमें पूरी दुनिया की लगभग 40 वायुसेनाएं शामिल होंगी। 7 वायुसेनाएं जो अपने एयरक्राफ्ट लेकर, अपने फाइटर्स लेकर इस तरंग शक्ति का हिस्सा बनेगी। और अमेरिका का F-35 फाइटर पहली बार भारत की वायुसेना के साथ भारत में अपने युद्ध कौशल को दिखाएगा, और वो भी पाकिस्तान की सीमा के बेहद नजदीक। जोधपुर में शुरू होने वाली तरंग शक्ति में पूरी दुनिया के एयर पर्सनल होंगे और साथ ही वायुसेना प्रमुख भी इसका हिस्सा बनने वाले हैं। भारतीय वायुसेना लगातार अपने अलग अलग कौशल, अपने अलग अलग एयर टेक्निक्स और अपने ड्रिल्स को यहां पर साझा करेगी। साथ ही ये भी पैगाम देगी कि किस तरह से भारतीय वायुसेना लगातार दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वायुसेनाओं के साथ मिलकर इंटर ऑपरेबिलिटी की ट्रेनिंग कर रही है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान हो या फिर चीन, दोनों के लिए संदेश बिल्कुल साफ है कि भारत के साथ पूरी दुनिया की तमाम वायुसेनाएं मित्र सेनाओं की तरह खड़ी हैं। अमेरिका हो या फिर रूस, तमाम देश एक साथ मिलकर इस तरंग शक्ति का हिस्सा बनेंगे, और पाकिस्तान हो या चीन, दोनों के लिए ये एक कड़ा संदेश भी साबित होगा। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ शिवानी शर्मा, गुड न्यूज स्टूडियो के लिए दिल्ली से।
4: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज स्टूडियो के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर जीएनटी में भी गणपति पधारे, और हमें यकीन है कि हमारे दर्शकों के घर भी गणपति बप्पा जरूर पधारे होंगे। हम चाहते हैं कि आप भी जीएनटी के गणपति उत्सव के साथ शामिल हो जाइए। आप अपने अपने घर पर पधारे गजानन का वीडियो बनाइए, हमें भेज दीजिए, हम उन वीडियोज को दुनिया तक पहुंचाएंगे। और वीडियोस आपको भेजने स्क्रीन पर दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर पर, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो 7303409922। ये नंबर कॉल करने के लिए नहीं है, याद रहे ये नंबर सिर्फ वीडियोस और तस्वीरें भेजने के लिए है। जब भी आप अपना वीडियो या फोटो भेजें साथ में अपना नाम और शहर, गांव या कस्बे का नाम जरूर लिखें।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: क्या आपके काम अंतिम समय पर जाकर बिगड़ जाते हैं? क्या आपके अपने कर्मों की वजह से बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं, या किसी और का प्रभाव आपके बने बनाए काम को बिगाड़ रहा है? क्यों बिगड़ जाते हैं बने बनाए काम, और क्या है इसका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: दिव्य और भव्य होगा दीपोत्सव 2026, 30 लाख दीपों से जगमगाएगी अयोध्या, 2100 ड्रोन शो से बढ़ेगा दीपोत्सव का आकर्षण। गुजरात के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी में चल रहे भादरवी महामेले में उमड़ रहा है जनसमूह, 3 दिन में पहुंचे 15 लाख से ज्यादा भक्त। नैनीताल में फूलों की बारिश के बीच कैलाश को रवाना हुई मां नंदा सुनंदा, हजारों नमा खूने दी विदाई, उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बामन द्वादश पर बद्रीनाथ में धूमधाम से निकली भगवान उद्धव जी की डोली, माता मूर्ति महोत्सव में उमड़ा भक्तों का सैलाब। नागपुर के गणेश टेकड़ी मंदिर में भगवान गणेश को चढ़ाया गया 1101 किलो का महालड्डू, 5 फीट ऊंचे और 4 फीट चौड़े लड्डू को 22 कारीगरों ने 6 दिन में किया है तैयार। झांसी में शाही अंदाज में निकली बप्पा की प्रतिमा की विसर्जन यात्रा, महाराज के रूप में विराजमान हुए बप्पा, झूमते नजर आए भक्त।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
2: गुजरात के बनासकांठा जिले में लगा दुनिया का सबसे बड़ा पैदल मेला शक्तिपीठ अंबाजी में आयोजित, सालाना मेले के पहले 3 दिन में पहुंचे 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु। हिंदू पंचांग के भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तिथि के मौके पर किया जाता है आयोजन, मेले में देश भर से धूमधाम से पैदल चलकर पहुंचते हैं लाखों श्रद्धालु। अंबाजी धाम में आस्था और भक्ति की बह रही है बायार, भक्तिमय गीतों की धुन ने माहौल को बनाया संगीतमय। अंबाजी शक्तिपीठ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के भोजन के इंतजाम, पैदल चलकर पहुंचने वाले श्रद्धालु के लिए फुट मसाज का इंतजाम। मेले के लिए मंदिर के साथ रास्तों में भी की गई है शानदार सजावट। नैनीताल की सड़कों पर उमड़ा आस्था का जनसमुद्र, जय मां नंदा जय मां सुनंदा के जयकारे। मां नंदा देवी के 124वें महोत्सव में उमड़ी सरोवर नगरी। फूलों की बारिश के साथ कैलाश पर्वत के लिए रवाना हुई मां नंदा और मां सुनंदा, हजारों श्रद्धालुओं ने भरे दिल और नम आंखों के साथ विदाई दी। मां नंदा और मां सुनंदा की विदाई यात्रा में शामिल हुए हजारों लोग, ढोल दमाऊ बैंड बाजे और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की गूंज के बीच पूरा आस्था और भक्ति का माहौल। गणेशोत्सव के 10वें दिन देशभर के पंडालों में जारी है गजानन की पूजा, मुंबई में लालबाग चौराहा के पंडाल में लगातार उमड़ रहा है दर्शनार्थियों की भीड़। साउथ मुंबई में स्थापित अकेला चंदनवाड़ी गणेशोत्सव मंडल में सजा गजानन का भव्य दरबार। इस बार केदारनाथ अवतार में विराजमान है भगवान गणेश, गणपति बप्पा के पास नंदी भी विराजमान है। गोडा गणपति के नाम से मशहूर है चंदनवाड़ी के बप्पा। पंडाल में एंट्री से लेकर बप्पा के दरबार में पहुंचने तक लोगों को होते हैं 12 शिवलिंग के दर्शन। गिरगांव का राजा के दरबार में भी भव्य सजावट, गणपति के साथ स्थापित की गई है भगवान कृष्ण की झांकी। द्वारकाधीश पर बनाई गई है बप्पा के दरबार की थीम, इस साल अपना 99वें साल मना रहा है गिरगांव की राजा का ये पंडाल। बप्पा के सिर पर बंधा फेटा यानी पगड़ी है मुख्य आकर्षण। पूरी तरह से इको फ्रेंडली है मिट्टी से बनी बप्पा की प्रतिमा। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यक्रम मन की बात कर चुके हैं इस गणेश मंडल की तारीफ। गणपति उत्सव पर बॉम्बे हाई कोर्ट की सख्ती, सड़कों पर नहीं फोड़े जाएंगे पटाखे। नागपुर के टेकड़ी मंदिर में भगवान गणेश को चढ़ा गया विशाल लड्डू, 1101 किलो के भारी भरकम लड्डू को लगाया गया भोग, 5 फीट ऊंचे और 4.5 फीट चौड़ा है ये महालड्डू। ये माल लड्डू बनाने में 230 किलो बेसन, 260 किलो चीनी, 320 किलो देशी घी, 61 किलो सूखे मेवे का इस्तेमाल। बप्पा को भोग में चढ़ाने के लिए बनाए गए हैं ये महा लड्डू। बूंदी, सूखे मेवे, घी, गुलाब जल और राह चांदी के वर्क से इस्तेमाल किया गया। भगवान गणेश का दर्शन पूजन करने और आशीर्वाद पाने के लिए विशाल लड्डू देखने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। महाराष्ट्र के खोला में बने गणपति बप्पा के एक से बढ़कर एक पंडाल। ला काला मारुति गणेश पंडाल में बप्पा के दरबार में सजी महाभारत की झांकी। 102 साल पुराना है काला मारुति गणेश पंडाल। अकोला के रिद्धि सिद्धि गणेश पंडाल में बप्पा के दरबार में दिखाई गई खाटू श्याम की प्रतिमा। झांकी में खाटू श्याम बाबा से जुड़ी हुई धार्मिक मान्यताओं को अलग अलग दृश्यों के जरिए प्रदर्शित किया गया। श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही है गणपति पंडालों की झांकियां, बप्पा के दर्शन के साथ साथ धार्मिक झांकियां। महाराष्ट्र के जालना में हैदराबाद स्टाइल वाले बप्पा बने आकर्षण का मुख्य केंद्र। पहली बार हैदराबाद से जालना लाई गई है गणपति बप्पा की विशाल प्रतिमा। बालाजी महादेव गणेश मंडल में पहली बार लगी हैदराबाद पैटर्न वाले बप्पा की विशाल प्रतिमा। अलग स्टाइल वाले बप्पा के दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भगवान शिव के रौद्र रूप में विराज 9 फीट ऊंचे बप्पा। श्रद्धालुओं को भी त्रिशूल, डमरू, नाग और पाख अंबर सजी नजर आए बप्पा। महाराष्ट्र के जालना में अप्पा गणेश मित्र मंडल में लगी है बप्पा की मूर्ति की चर्चा हो रही है। खूब पंडाल में बुलेट मोटरसाइकिल पर विराजमान है गणपति बप्पा। बुलेट बाइक के सवारी कर रहे हैं बप्पा के पीछे वाली सीट पर बैठे हैं मूषक राज। श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने बुलेट वाले बप्पा। बप्पा के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। महाराष्ट्र की भीड़ में जय किसान गणेश मंडल ने मेडिकल वेस्ट से बनाई है बप्पा की प्रतिकृति। आर्टिस्ट ने इलाज में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों से बनाई है बप्पा की आकृति। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में मिट्टी से बनी 63 फीट ऊंची इको फ्रेंडली प्रतिमा। 1 लाख से ज्यादा घरों से इकट्ठा की गई मिट्टी से बनाई गई थी यह मूर्ति। इको फ्रेंडली तरीके से त्योहार मनाने को बढ़ावा देना मकसद है। अमरेली के सावर्रा कुंडला में गणपति महोत्सव का अनोखा नजारा 25 लाख रुपए की भारतीय करेंसी और अमेरिकी डॉलर से तैयार किया गया। 500 रुपए की नोटों से तैयार किया गया है गणपति बप्पा का मुकुट। करीब 1 महीने से की जा रही थी विशेष सजावट की तैयारियां। देश भर में अलग अलग थीम पर सजे गणपति पंडाल। अकोला के गणेश पंडाल में लौटा 80 का दशक। सिंधी कैंप के रूच परिवर्तन गणेश मंडल में जीवंत किया गया है ग्रामीण स्कूल की कक्षा की झांकी। आज की जेंजी और जैन अल्फा को उनके माता पिता और दादा दादी की बताई जिंदगी से जोड़ना है मकसद। स्मार्टफोन के इस युग में माचिस के डिब्बों और धागों से बने खिलौनों के फोन की झांकी सबका ध्यान आकर्षित कर रही है। कुएं से पानी खींचती महिलाएं और चूल्हे पर बनाता हुआ खाना दृश्य सबसे आकर्षण का केंद्र। उत्तर प्रदेश के झांसी में देखा बप्पा का शाही अंदाज। विंटेज कार में सवार होकर महाराज के रूप में निकले भगवान गणपति। बप्पा को विदा करने के लिए श्रद्धालुओं ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में महिलाएं पगड़ी लगाकर शामिल हुई। श्रद्धालुओं ने भगवान गजानन को धूमधाम से विदा किया। बप्पा की विदाई में जुलूस में जमकर थिरके श्रद्धालु। अयोध्या में साल दीपोत्सव पर 30 लाख दिए जलाने की तैयारी। दीपोत्सव के लिए MyGOV UP पर आम लोगों से सुझाव लेगी सरकार। इस साल अयोध्या दीपोत्सव पर 2100 ड्रोन शो को भी लाइव किया जाएगा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में गणपति बप्पा की प्रतिमाओं के विसर्जन की तैयारी। बनाया गया है 20 फीट गहरा विशाल कुंड। गणपति प्रतिमाओं के विसर्जन करने के लिए चंद्रपुर महानगर पालिका ने तैयार कराया 800 वर्ग फीट में फैला विशाल कुंड। इराई नदी के किनारे तैयार किया गया है प्रतिमा विसर्जन कुंड। प्रतिमा विसर्जन के दौरान कड़े सुरक्षा के इंतजाम। इस विशाल कुंड में बप्पा की 450 से ज्यादा बड़ी प्रतिमाओं का होगा विसर्जन। विसर्जन और जुलूस पर नजर रखी जाएगी। लोगों को परेशानी से बचाने और पर्यावरण को नुकसान होने से बचाने के लिए महानगर पालिका का यह फैसला। राजगढ़ में उमड़ा आस्था का सैलाब। खिलचीपुर शहर में पारंपरिक आस्था और भक्ति के साथ मनाया गया जल झुलसी। गार्ड गंगा नदी तट पहुंचे 200 मंदिरों से सजे दजे भगवान विमान। गार्ड गंगा नदी पर माझी समाज की ओर से नाव में भगवान राधा कृष्ण की सुंदर झांकी निकाली गई। भजनों पर झाल मंजीर बजाते हुए नास्तिकाते झूमते हुए नजर आए श्रद्धालु। पूजा अर्चना और महाआरती के बाद भगवान के विमान को काजेबाजी के साथ वापस भेजा गया। 1 अक्टूबर से बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। इसके लिए जिले के पेट्रोल पंपों पर विशेष ऐप व्यवस्था लगी। दिल्ली में महिला सुरक्षा का नया प्लान। जल्द पिंक फोर्स का होगा गठन। स्कूल कॉलेज मेट्रो स्टेशन बाजारों ट्रांसपोर्ट हब और अन्य संवेदनशील इलाकों में तैनात की जाएगी ये फोर्स। सरस का टाइगर रिजर्व के बफर जोन में सैर करते दिखर नजर आया टाइगर। राजस्थान के बीकानेर जिले में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2026 अपाचे हेलीकॉप्टर ने दिखाया दमखम। अभ्यास में देखी एविएशन की ताकत। अपाचे हेलीकॉप्टर के साथ भारतीय और अमेरिकी सेना ने इंटीग्रेटेड ऑपरेशन किया। संयुक्त मिशन की योजना बनाने और युद्ध में तालमेल बैठाने से लेकर इंटीग्रेटेड मूवमेंट और सटीक हमले करने की अभ्यास। दोनों सेनाओं के बीच एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की क्षमता को और मजबूत करने का लक्ष्य। दोनों देशों के कुल 1200 सैनिक इसमें शामिल हो रहे हैं। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास का 22वां संस्करण। उत्तराखंड के लैंड्स डाउन में एनएसए अजीत डोभाल गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट सेंटर का दौरा। गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर में अग्निवीरों से बातचीत की। दौरे के दौरान डोभाल ने रेजिमेंट गीत बढ़े चलो गढ़वालियों बढ़े चलो भी गाया। एनएसए ने अग्निवीरों का बढ़ाया उन्होंने मनोबल। दिसंबर में अमेरिका जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G20 में हो सकते हैं शामिल। विश्व आयुर्वेद दिवस के मौके पर हरिद्वार में पतंजलि आयुर्वेद गुरुकुल का शुभारंभ। उत्तर प्रदेश के रामपुर की जुड़वा बहनों को मिला अलग अलग आधार नंबर। रेटिना मैच होने की वजह से किया गया जारी। दुर्गा पूजा से पहले दिल्ली में सजा है बंगाल का रंग। दिल्ली हाट में 30 सितंबर तक बंगाली हथकरघा प्रदर्शन। प्रदर्शनी में बंगाल की परंपराओं के साथ आधुनिक मेल। स्मार्ट क्लास और वीडियो तकनीक से रोचक हुआ बच्चों का पढ़ना। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर होगा हाईटेक। पहली बार होगा मूवेबल क्रॉसिंग का इस्तेमाल। 320 की रफ्तार पर भी सुरक्षित मोड़ की तैयारियां। पारंपरिक रेलवे लाइनों पर इस्तेमाल होने वाले फिक्स्ड क्रॉसिंग टर्नओवर से बड़ा बदलाव। इस तकनीक के इस्तेमाल से होगी कम वाइब्रेशन। सैलानियों से गुलजार हुआ जम्मू कश्मीर। सुहाने मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी। श्रीनगर की डल लेक किनारे पर्यटकों का हुजूम। बड़ी संख्या में पर्यटकों ने पहुंचे। एशियन गेम्स में मीराबाई चानू ने रच दिया इतिहास। महिलाओं की 49 किलोग्राम कैटेगरी में भारत को दिलाया सिल्वर। इस जीत के साथ ही चानू ने खत्म कर दिया 28 साल का सूखा। एशियन गेम्स में सॉफ्ट टेनिस से भी भारत के लिए खुशखबरी। पुरुष सिंगल्स में ब्रॉन्ज। भारत महिला सटीक स्कीट टीम में इवेंट में जीता ब्रॉन्ज। भारत की पुरुष स्कीट टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। फिर लौटाया लकी अली का दौर। फिल्म दृश्यम 3 के गाने को आवाज। फिल्म महावीर कर्ण का पहला पोस्टर हुआ रिलीज। एक्टर वीर पहाड़िया और बार शक्ति खुराना नजर आएंगे। नई फिल्म का पहला या दूसरी बार राह लेकर आ रहे हैं निर्माता लवरंजन। राजस्थानी फिल्म धूड़ का मोशन पिक्चर जारी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: क्या आपके काम अंतिम समय पर जाकर बिगड़ जाते हैं? क्या आपके अपने कर्मों की वजह से बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं या किसी और का प्रभाव आपके बने बनाए काम को बिगाड़ रहा है? क्यों बिगड़ जाते हैं बने बनाए काम और क्या है इसका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज़।

0: पत्रकारिता करते हैं, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: दिल्ली में गणपति विसर्जन के लिए सरकार की ओर से तैयारियां की गई हैं। विसर्जन के लिए 81 जगहों पर आर्टिफिशियल तालाब बनाए गए हैं। तालाबों के आसपास सुरक्षा लाइट्स और मेडिकल फैसिलिटी का भी इंतजाम किया गया है, यहां श्रद्धालु सुरक्षित और आसानी से विसर्जन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने धार्मिक आस्था और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए 110 खंडित मूर्ति संग्रह केंद्र भी बनाए हैं।

0: देश भर में गणेशोत्सव की धूम है। इस बीच बापा के भक्तों के लिए गुड न्यूज आई है। दिल्ली में गणपति विसर्जन के लिए सरकार ने विशेष इंतजाम किए हैं। चाहे गणेश उत्सव हो या दशहरा, हर उत्सव के बाद देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ पूजा सामग्रियों का विसर्जन एक बड़ी समस्या होती है। दिल्ली सरकार ने इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने की कोशिश की है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि आस्था और पर्यावरण संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है, इसमें नागरिकों की भागीदारी जरूरी है।
1: एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इतने प्रेम से बाबा को घर लाते हो, भगवान की पूजा करते हो, तो कभी भी खंडित तस्वीर को, मूर्ति को ऐसे छोड़ के अनादर करते हुए नहीं आना है, उसको भी स्थान देना है।
0: दिल्ली सरकार की पहल के तहत पुरानी खंडित मूर्तियों और पूजा सामग्री के सम्मानजनक निस्तारण के लिए 110 जगहों पर विशेष संग्रह केंद्र बनाए गए हैं। ये पहल यमुना को प्रदूषण से बचाने में भी मददगार साबित होगी।
2: इस वक्त हम मौजूद है रोहिणी के सेक्टर 15 में, ठीक विद्या भारती स्कूल के बाहर, जहां पर आपको ये केंद्र जो है वो नजर आ जाएगा, ताकि लोग जो है वो अपने घर का जितना भी पूजा सामग्री का सामान है वो यहां पर आके जो है वो सामान वो जो है यहाँ पर रख सके। आप देख सकते हैं तस्वीरें भी पहले दिखाऊंगी कि किस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर नजर आने वाली है। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा नजर आएगा आपको कुछ इस तरीके के जो मूर्तियाँ, भगवान की मूर्तियों पर जो चुनरी चढ़ती है, जो दुपट्टे चढ़ते हैं, वो आपको सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ नजर आ जाएंगे। आपको इसमें सूखा नारियल जो है वो भी नजर आ जाएगा कि लोगों ने अब सूखे नारियल को जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है। इसके अलावा जो है आपको फूल जो है वो नजर आ जाएंगे, आपको मूर्तियाँ भी जो है इसमें नजर आ जाएगी। जितनी भी मंदिर की जो से जरूरत की जो चीज़ें होती है वो सभी चीजें जो है वो यहाँ नजर आने वाली है।
0: अक्सर पुरानी या खंडित मूर्तियों और पूजा पाठ से

0: संबंधित सामग्री को लेकर धार्मिक भावनाओं के कारण पेड़ों के नीचे, पार्कों, सड़क किनारे या दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर रख देते हैं। इससे एक ओर धार्मिक आस्था जुड़ी होती है तो वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता और पर्यावरण से जुड़ी चुनौती भी सामने आती है। ऐसे में दिल्ली के लोग सरकार की नई पहल का दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं।
1: बहुत बढ़िया सुविधा हो गई, नहीं तो ऐसे ही इधर उधर रखते हैं, कोई फायदा नहीं रहता ना, पाप ही चढ़ता है। अभी एक सुविधा हो गई, एक जगह बनी, वहाँ रख दिया, ना प्रदूषण हुआ ना कुछ हुआ। बहुत बढ़िया करा रेखा, अभी हम थैला भर के लाए थे, हमने अपना पूरा कर दिया विसर्जन, तो हमारे लिए तो बेस्ट है।
0: दिल्ली में गणपति मूर्तियों के विसर्जन के लिए 81 जगहों पर आर्टिफिशियल तालाब बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं से मूर्ति विसर्जन केवल कृत्रिम तालाबों में ही करने को कहा गया है। गणेश विसर्जन की तैयारियों में सुरक्षा, स्वच्छता, लाइट, चिकित्सा, आपातकालीन व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन और पर्यावरणीय सुरक्षा जैसे पहलुओं को भी शामिल किया गया है। सरकार ने यमुना और दूसरे जल स्रोतों में मूर्ति, फूल माला या पूजा सामग्री डालने से मना किया है। श्रद्धालुओं को पर्यावरण अनुकूल मूर्तियों को प्राथमिकता देने और POP और हानिकारक रसायनों से बनी प्रतिमाओं से बचने की सलाह दी गई है। दिल्ली से मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे लगातार दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप भी GNT पर मनाए जा रहे इस उत्सव से जुड़िए। इसके लिए आपको बस इतना सा करना है कि अपने घर पधारे का जनन का वीडियो बनाना है और हमें भेज देना है, हम उन वीडियोस को दुनिया तक पहुंचाते हैं और दर्शक हमें लगातार वीडियोस भेज भी रहे हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए दुर्ग की पहली तस्वीर देखिए, कितनी सुंदर प्रतिमा सजाई गई है गणेश जी की। और दूसरी तस्वीर देखिए, ये मध्य प्रदेश से है जो हमें प्रदीप प्रजापति ने भेजी है। इसमें भी बहुत सुंदर लाइटिंग से गणेश जी की प्रतिमा को सजाया गया है, सुंदर श्रृंगार उनका किया गया है। साफा की ये मूर्ति है जो विशेष नजर आती है।
3: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
3: दिव्य और भव्य होगा दीपोत्सव 2026। 30 लाख दीपों से जगमगाएगी अयोध्या। 2100 ड्रोन शो से बढ़ेगा दीपोत्सव का आकर्षण। गुजरात के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी में चल रहे भादरवी महामेले में उमड़ रहा है जनसमूह। 3 दिन में पहुंचे 15 लाख से ज्यादा भक्त। नैनीताल में फूलों की बारिश के बीच कैलाश को रवाना हुई मां नंदा सुनंदा। हजारों नम आंखों ने दी विदाई, उमड़ा आस्था का सैलाब। वामन द्वादश पर बद्रीनाथ में धूमधाम से निकली भगवान उद्धव जी की डोली। माता मूर्ति महोत्सव में उमड़ा भक्तों का सैलाब। नागपुर के गणेश टेकरी मंदिर में भगवान गणेश को चढ़ाया गया 1101 किलो का महालड्डू। 5 फीट ऊंचे और 4 फीट चौड़े लड्डू को 22 कारोगरों ने 6 दिन में तैयार किया। झांसी में शाही अंदाज में निकली बप्पा की प्रतिमा की विसर्जन यात्रा। महाराज के रूप में विराजमान हुए बप्पा, झूमते नजर आए भक्तों।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे क्यों बार बार हमारे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं और हम लगातार कोशिश करते हैं, कभी अपनी किस्मत को दोष देते हैं तो कभी अपनी कुंडली को दोष देते हैं। इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा और जानेंगे कि ऐसा आखिर होता क्यों है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
1: अगर संतान को लेकर किसी भी तरह की समस्या होती हो, उसके करियर को, उसके स्वास्थ्य को, उसके स्वभाव को लेकर किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती हो, तो हर बृहस्पतिवार को भगवान शिव को पीले फूल अर्पित करके प्रार्थना करिएगा। अगर हर बृहस्पतिवार को भगवान शिव को पीले फूल अर्पित करके प्रार्थना करें तो संतान की उन्नति अवश्य होगी।
0: और चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से कि जब हम कोई काम करते हैं, खासकर कि कोई ऐसा काम जिसके बिगड़ने के पीछे हमें कोई वजह नहीं पता चलती लेकिन वो काम बिगड़ जाता है, तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या होती है, वो पंडित जी से जानेंगे।
1: जी देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। काम 99 तक पहुंच जाता है लेकिन 100 नहीं होता, काम बिगड़ जाता है। आखिर किसी काम के बिगड़ने की वजह क्या होती है, पहले ये जानते हैं। देखिए, ऐसा आपने बहुत बार अपने जीवन में देखा होगा कि कभी कभी बिना कारण के सारे किए हुए काम, बने हुए काम बिगड़ने लगते हैं। कुछ काम बिगड़ने के पीछे अपने कर्म होते हैं, अपनी गलतियां होती हैं, और कुछ काम के बिगड़ने के पीछे दूसरों के कर्म होते हैं, दूसरों का प्रभाव होता है। ये तमाम बातें ग्रहों को देखकर आप जान सकते हैं कि बिना कारण के किस कारण से बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं। अगर आपकी खुद की गलतियों से, खुद के कर्मों से काम बिगड़ रहे हैं तो उसका निवारण और समाधान सरल होता है। लेकिन अगर कोई दूसरा आपके काम बिगाड़ रहा है, अपनी भावना से, अपनी प्रार्थना से, अपने प्रयास से, तो उसको ठीक करने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा। तो मुख्यतः दो तरीके से काम बिगड़ते हैं, अपनी गलती से, अपने खराब कर्मों से, और दूसरे के प्रभाव से, दूसरे के प्रयास से भी काम बिगड़ जाते हैं।
0: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल।
1: मेष राशि, बेवजह की चिंता आपको परेशान कर सकती है, धन हानि से बचाव करें, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, धन और उपहार की प्राप्ति होगी, परिवार में खुशहाली आएगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, पारिवारिक स्थितियों में सुधार होगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, माता लक्ष्मी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और आइए जानते हैं कि अपने किन कर्मों के कारण काम बिगड़ने लगते हैं, हमारे वो कौन से कर्म होते हैं जिनका हमें पता नहीं होता लेकिन उसी वजह से हमारे काम लगातार बिगड़ते हैं।
1: देखिए, आपके अपने बहुत सारे कर्म होते हैं, आपको लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कर्म आपके भाग्य को ब्लॉक कर देते हैं, आपके काम बिगाड़ने लगते हैं, आपके काम चौपट करने लगते हैं। कौन से कर्म हैं? अगर आप अपने माता पिता का या अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं तो पक्की तौर से जानिए कि आगे चलकर हर काम में रुकावट आएगी, हर काम होते होते रह जाएगा। बिना किसी उचित कारण के अगर आप एबॉर्शन करवाते हैं, अपना, अगर आप महिला हैं स्वयं का करवाती हैं, या पुरुष हैं अपनी पत्नी का करवाते हैं, बिना किसी उचित कारण के भ्रूण हत्या करवाते हैं, महापाप है ये। इसके गंभीर परिणाम जीवन में भुगतने होंगे और याद रखिए इसकी वजह से जीवन में संतान को लेकर हमेशा कष्ट भोगना पड़ेगा और साथ ही साथ आपके हर काम में रुकावट आएगी। अगर आप किसी व्यक्ति का अधिकार छीन लेते हैं, कोई व्यक्ति आपकी सेवा करता है, नौकरी करता है, उसकी तनख्वाह 10,000 होनी चाहिए, आप उसको 500 रुपए देते हैं, 2,000 देते हैं, 4,000 देते हैं, उसका अधिकार छीनते हैं या उसको उसका सही हक नहीं देते हैं, तो याद रखिए परमात्मा आपका हक, आपका भाग्य उतना % काट लेगा और आपके हर बने बनाए काम में रुकावट आएगी, हर काम रुकने लगेगा। केवल निजी स्वार्थ के लिए आप हरे पेड़ कटवाते हैं, आपके घर का शो खराब हो रहा है, आप हरे पेड़ कटवाएंगे, परिणाम बहुत ही गंभीर हैं। परिवार में विशेष बीमारियां पैदा होंगी, संतान को लेकर कष्ट होगा, अपमृत्यु की स्थिति बनेगी। बिना किसी सही वजह के हरे पेड़ मत कटवाइए, बहुत ही भयंकर है इसकी सजा। या आप नदियों को दूषित करते हैं, देखिए हर नदी पवित्र है, ऐसा नहीं है कि गंगा पवित्र है, यमुना पवित्र है, बाकी नदियां पवित्र नहीं है, हर नदी पवित्र है, इसलिए नदियों को दूषित करेंगे, आपके हर काम में अज्ञात बाधा आएगी। अगर आप जानबूझकर दूसरों को मानसिक रूप से परेशान करते हैं, आप ऐसा काम करते हैं जिससे दूसरों को मानसिक कष्ट मिलता है, तो पक्की तौर पर आप ये जान लीजिए कि आपके हर काम में रुकावट आएगी और उतना ही मानसिक कष्ट आपको झेलना पड़ेगा।
0: और चलिए अब जानते हैं पंडित जी से कि कई बार ऐसा होता है कि हम काम करते हैं और बिगड़ जाते हैं, लेकिन उसके पीछे दूसरों का हाथ होता है। जी हाँ, दूसरों के कर्मों की वजह से हमारे काम बिगड़ते हैं, तो उसकी वजह क्या है ये हम जानेंगे।
1: देखिए, बहुत बार क्या होता है कि आपके कर्म तो ठीक हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करता है, आपसे जलता है, आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसका प्रयास करता है, आपको नुकसान हो इसके लिए पूजा और प्रार्थना भी करता है। तो दूसरों के किन कामों से अपने काम बिगड़ते हैं? जब दूसरे आपके लिए नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करने लगे, आपकी अपनी एनर्जी कमजोर है और दूसरे की निगेटिव एनर्जी आएगी तो आप बीमार पड़ेंगे। जिसको आप मोटी बोलचाल की भाषा में कहते हैं नजर लग जाना, आपकी अंदर की शक्ति कमजोर होगी और दूसरा आपको नजर लगाएगा या आपकी चीजों को देख के मन में नकारात्मक भाव लाएगा तो आपके काम रुकेंगे। जब दूसरे लोग आपको नुकसान पहुंचाने के लिए मंत्र शक्ति का प्रयोग करें, वैसे तो देखिए माता बगलामुखी के मंत्र जपना इतना आसान नहीं है, उसकी बड़ी टेक्निक है, लेकिन फिर भी कोई आपके लिए जप रहा है कि ओम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जेवाम कीलय बुद्धि विनाशय, ये करते हैं ना लोग कि भैया नुकसान हो ही जाए, तो अगर कोई आपके लिए मंत्र शक्ति का प्रयोग करे आपको नुकसान पहुंचाने के लिए और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी कम होगी तो भी आपके काम रुकेंगे, आपको नुकसान होगा। जब दूसरे लोग आपके साथ रहकर गलत काम करें, भले ही आप गलत काम ना करें, आप तो मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करते लेकिन दूसरे को पैसे देते हैं कि मांस खाओ मदिरा पियो, दूसरे को अपने साथ घुमाते हैं, वो गलत हरकत करता है, गलत आचरण करता है, उसके संस्कार आपको भी भुगतने पड़ेंगे। संगति से गुण उपजे, संगति से गुण जाए, वो संस्कार आपको भुगतने पड़ेंगे, आपके काम में बाधा आएगी। देखिए, आपकी कोई जिम्मेदारी है बहुत बड़ी माता पिता के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने ऑफिस के प्रति, और आप वो जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, आप बेईमानी करते हैं, कोई और निभाता है, तो तैयार हो जाइए, जो आपकी किस्मत का हिस्सा है वो ले जाएगा और आपके हर काम में रुकावट आनी शुरू हो जाएगी। आपकी जिम्मेदारी कोई निभाने लगेगा, जो काम आपको करना चाहिए वो दूसरा करने लगेगा, तो आप पक्का जानिए आपकी किस्मत से उतना हिस्सा कटेगा और आप जब अपने महत्वपूर्ण काम करने जाएंगे वो काम आपके नहीं बनेंगे। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करते हैं जो अच्छा व्यक्ति नहीं है, दुष्ट व्यक्ति है, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है या पहुंचाने का प्रयास करता है, अगर ऐसा करते हैं, आप खराब आदमी की सहायता करते हैं, तो ये अच्छा नहीं होता। उसके नकारात्मक वाइब्रेशन, उसकी नकारात्मक तरंगे आपके काम को बिगाड़ देती हैं और आपके काम होते होते रह जाते हैं।
0: और अब वक्त हो गया है कर्क, सिंह और कन्या राशि के राशिफल को जानने का।
1: कर्क राशि, करियर में आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, महत्वपूर्ण काम टाल दें, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब पंडित जी द्वारा दिए जाने का, तो पंडित जी से ही जानते हैं। पंडित जी, आज का पहला सवाल आप किसका ले रहे हैं?
1: जी, आज का पहला प्रश्न हरिनाथ जी ने हमें लिखा है, अयोध्या धाम से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 18 अक्टूबर 1970। जन्म का समय सुबह के 8:30। जन्म का स्थान है अयोध्या। हरिनाथ जी कह रहे हैं कि संपत्ति को लेकर एक मुकदमा काफी समय से चल रहा है, तो ये जानना चाहते हैं कि ये मुकदमा कब तक हल होगा और भविष्य में सफलता कब तक मिल पाएगी। हरिनाथ जी, आपका जो मुकदमा है वो आपके परिवार में ही चल रहा है, आपके अपने भाई बहनों के साथ, और जो आप मकान बनवाना चाहते हैं अगले साल आप मकान भी बनवा सकेंगे। तो थोड़ा सा कम या ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपसी सुलह समझौते से सुलझाइए तो अच्छा रहेगा। एक मूंगा बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का

0: प्रातः मूंगा धारण करें, सुबह शाम दोनों समय एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का अगर पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: तो अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी से पूछना, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए देखते हैं आज का दूसरा सवाल पंडित जी किसका लेते हैं।
0: जी अगला प्रश्न शिप्रा जी ने हमें लिखा है और शिप्रा जी ग्रेटर नोएडा से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 जनवरी 1983। जन्म का समय दोपहर में 2:24। जन्म स्थान है शामली, उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरे स्वास्थ्य में लगातार दिक्कतें बनी रहती हैं और तमाम दवाइयां करने पर भी कोई बहुत लाभ नहीं हो पाता है। थोड़े दिन मैं ठीक रहती हूँ, फिर बीमार पड़ जाती हूँ। तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए? शिप्रा जी, आपकी कुंडली में ज्यादातर दिक्कतें आपके हड्डियों की हैं, नसों की हैं। कोल्ड कफ की प्रॉब्लम आपको जल्दी होती है, वो भी एक समस्या है आपके लिए। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आपको अभी, जब तक ये साल खत्म नहीं हो जाता है, दिसंबर 2026 तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। 2027 के शुरुआत के साथ आपकी स्थितियां बेहतर दिखाई दे रही हैं। एक माणिक्य बनवा के पहनिए, लगभग 6-8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः माणिक्य पहने, रोज शाम को माता दुर्गा की पूजा करें और देवी कवच का रोज शाम को पाठ करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा।
1: तो अभी हमने बात की, इससे पहले अगर दूसरे के कर्म जो हैं वो आपके काम में बाधा डाल रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करें? अगर खुद के कर्मों की वजह से आपका बना बनाया काम बिगड़ रहा है तो उसके लिए क्या उपाय करें? आइए जानते हैं।
0: अगर आपके खुद के कर्म ऐसे हैं, जैसा हमने आपको पहले बताया कि कौन कौन से कर्म हैं, अगर आपके खुद के कर्म गड़बड़ हैं जिसकी वजह से आपका बना बनाया काम बिगड़ रहा है तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा और अपने माता पिता का चरण स्पर्श करिएगा। ऐसा रोज सुबह अवश्य करें। घर में और घर के बाहर, पार्क में, सड़क के किनारे, अपनी बालकनी में, मैदान में ढेर सारे फूलों के पौधे लगाइए और उनकी देखभाल करिएगा। नियमित रूप से प्रातः काल अगर संभव हो तो सूर्योदय के पहले पीपल के वृक्ष में नियमित रूप से जल चढ़ाइएगा और रोज सुबह एक बार गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिएगा। गजेंद्र मोक्ष पढ़ने से और ईमानदारी से रहने से पापों का प्रायश्चित होता है। महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार अगर आप अफोर्ड कर सकें तो किसी निर्धन व्यक्ति को भर पेट भोजन कराइए। भविष्य में किसी को भी जानबूझकर पीड़ा मत पहुंचाइए। देखिए, अनजाने में गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन जानबूझकर ऐसा काम करें कि किसी को कष्ट पहुंचे, किसी को पीड़ा पहुंचे, तो वो बहुत बड़ा पाप है। एक श्लोक आता है ना, अष्टाद्वश पुराणेषु व्यासस्य द्विवचनम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परमीडनम्। यानी 18 पुराण में वेद व्यास जी ने दो ही बातें कही हैं कि दूसरे का उपकार करना पुण्य है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना ही पाप है।
1: और अब वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि के राशिफल को जानने का।
0: तुला राशि, धन की समस्या आपकी दूर होती दिख रही है, करियर में आपको सफलता मिलेगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है, परिवार में विवादों से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, चोट चपेट से बचाव करें, संतान की चिंता रह सकती है, महत्वपूर्ण काम रुक सकता है, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: तो चलिए जानते हैं, अगर दूसरों के कर्मों के कारण आपके काम बिगड़ रहे हों तो उसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए?
0: देखिए, आपको पहले बताया कि दूसरों के कर्मों से, दूसरों के प्रभाव से भी आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। अगर दूसरों की वजह से काम बिगड़ रहे हैं तो क्या करेंगे? अपने घर के मुख्य द्वार पर दरवाजे के दोनों तरफ सिंदूर से स्वस्तिक बनाइएगा। घर के मुख्य द्वार पर या तो अशोक का वृक्ष लगाइए बड़े गमले में या जमीन में, या अशोक के पत्तों का वंदन वार लगाइए, इसको हर हफ्ते बदलते रहिए। रोज शाम को घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थान पर दीपक जरूर जलाएं। अगर ऐसा लगता है आपको कि किसी ने आपके लिए नकारात्मक ऊर्जा का या मंत्र का प्रयोग किया है तो ऐसी स्थिति में आपको एक मंत्र बताते हैं। इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करिएगा। मंत्र होगा ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट। ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हूं फट। इस मंत्र का रोज सुबह, या और अच्छा होगा कि रोज शाम को 108 बार जप करें। आपकी पॉजिटिव एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का या नकारात्मक मंत्र शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और मंत्र जप करते समय गुग्गल की धूप बत्ती अगर आप जलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा।
1: और अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशि के राशिफल को जानने का, तो चलिए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल।
0: मकर राशि, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, धन की दशा में सुधार होगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की स्थिति ठीक रहेगी, करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: स्वास्थ्य में सुधार होगा। जल्दबाजी में निर्णय ना लें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब जानते हैं पंडित जी से ही कि आज का तीसरा सवाल उनको कहां से आया है और किसने भेजा है।
0: जी अगला प्रश्न प्रभास ने हमें लिखा है और प्रभास हमें मेल लिखते हैं अहमदाबाद से। इनकी जन्म की तारीख है 27 नवंबर 2002। जन्म का समय सुबह के 8:55। जन्म स्थान है अहमदाबाद। प्रभास कह रहे हैं कि मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर ली है, आगे मैं मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहता हूं, क्या ऐसा करना मेरे लिए बेहतर होगा। प्रभास आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं, अगर आप MBA करते हैं तो MBA करना, मैनेजमेंट करना आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर विदेश जाना चाहते हैं तो अभी मुझे लगता है उसका उचित समय नहीं है। आप नौकरी करने के लिए 2028 के बाद विदेश जाइएगा, अभी भारत में ही किसी अच्छे संस्थान से MBA की पढ़ाई कर लें। अभी जल्दबाजी में आप एकदम से व्यापार में घुस जाएं, एकदम से नौकरी करने लगें, ऐसा उचित नहीं होगा। अभी आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
1: गुड लक में अब वक्त हो गया आज के अंतिम सवाल का, तो चलिए जानते हैं आज का अंतिम और चौथा सवाल पंडित जी किसका लेते हैं।
0: अगला प्रश्न रीतिका ने हमें लिखा है, कोलकाता से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 जुलाई 2008। जन्म का समय दोपहर में 2:55। जन्म स्थान है रांची। मेल लिखती हैं कोलकाता से। ये कह रही हैं कि मैं अभी इंटरमीडिएट में हूं और इसके बाद मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना चाहती हूं, क्या ये दिशा मेरे लिए ठीक रहेगी या मुझे किसी और दिशा में जाना चाहिए। रितिका आपकी कुंडली के हिसाब से मैं आपको CA करने की, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने की कोई सलाह नहीं दूंगा। 12वीं के बाद ग्रेजुएशन करिए और गवर्नमेंट जॉब में जाइए, या 12वीं के बाद BBA MBA करके मैनेजमेंट में अपना करियर बनाइए, अच्छा रहेगा। 10 साल भी अगर परिश्रम करेंगी तो कोई जरूरी नहीं है कि आप CA बन पाए, इसलिए इस ट्रैक पर जाना आपके लिए बेहतर नहीं होगा। एक पीला पुखराज, वजन में 6-7 रत्ती, सोने या पीतल के लॉकेट में, पीले धागे में, अपने गले में बृहस्पति वार को प्रातः धारण कर लें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा।
1: जिनका जन्मदिन आने वाला है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो आइए जानते हैं आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।
0: आने वाले वर्ष में आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, रुका हुआ धन मिलेगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। अविवाहितों के विवाह में अभी विलंब दिखाई दे रहा है। क्या उपाय करना चाहिए? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या कोई भी व्यक्ति किसी भी ग्रह का दान कर सकता है? देखिए, आपको जीवन में उसी ग्रह की वस्तुओं का दान करना अच्छा रहेगा जो ग्रह जीवन में समस्या दे रहा हो। जो ग्रह कुंडली का शुभ ग्रह हो, जो आपके लिए फायदेमंद हो, उस ग्रह से संबंधित वस्तु का दान नहीं करना चाहिए।
1: और गुडलक में अब वक्त हो गया आज के शुभ पहर को जानने का।
0: शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें। आपकी धन संबंधी समस्या में सुधार होगा।
1: और अब वक्त हो गया आज की गुडलक राशि के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए सप्ताह के कौन से दिन अच्छे होते हैं और कौन से दिन अशुभ होते हैं। आज की गुडलक राशि है धनु। इनके लिए रविवार और मंगलवार का दिन अनुकूल होता है। इनको शुक्रवार को महत्वपूर्ण काम करने से बचना चाहिए।
1: और गुडलक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, आप बहुत अच्छे काम करते हैं, आप दूसरों की सहायता करते हैं, ऑफिस में मेहनत से काम करते हैं, लेकिन किए गए अच्छे कार्यों का यश आपको नहीं मिलता, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य देव को जितना सुबह हो सके जल अर्पित करिए। इसके बाद सूर्य देव के सामने एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और जब पाठ कर लें उसके बाद लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर और अपने कंठ पर लगाएं। रोज अगर नियमित रूप से आप ऐसा करें तो आपके अच्छे कार्यों का यश प्रतिष्ठा आपको जरूर प्राप्त होगी।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: बात करते हैं बप्पा के दरबारों की, जो गणेशोत्सव को लेकर सजा हुआ है। भव्य पंडालों में दिव्य रूप में बप्पा विराजमान है। अलग अलग थीम पर बने पंडाल भक्तों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। इन पंडालों के माध्यम से कई बहुमूल्य संदेश देने की कोशिश की गई। पर्यावरण संरक्षण से किसानों की समस्याओं को लेकर भी आकर्षक झांकियां बनाई गई हैं।
2: शुभ करण शुभ

0: बप्पा हर और विद्यमान है। उत्सव चल रहा है, गणेश पंडालों में रौनक है, पर भक्तों से गणपति का हर दरबार गुलजार है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की भव्य आभा दिख रही है। सबसे पहले गिरगांव के राजा के इस दरबार में विराजमान बप्पा की दिव्य प्रतिमा के दर्शन कभी न भूल पाने का अनुभव जैसा है।
1: सबसे पहले आप बप्पा के यहाँ का दर्शन करें, क्योंकि हमेशा की तरह इस बार भी बहुत ज्यादा चर्चित हैं, वायरल हैं। हर साल बिल्कुल एक ही तरह की थीम होती है, एक ही तरह का आकार होता है गणपति बप्पा का, लेकिन विशेष इस बार ये है कि श्री कृष्ण के रूप में देखे जा रहे हैं। बप्पा बहुत ज्यादा प्यारे और सुंदर तो लग ही रहे हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा जो बहुत ज्यादा देखने वाली चीज है उनका फेटा है। मुझे लगता है कि देश का यह सबसे बड़ा फेटा है, जिसकी लंबाई कम से कम 6 फीट है, चौड़ाई कम से कम 5 फीट है। खास बात यह है कि द्वारकाधीश का भी यहाँ पर थीम रखा गया है और कुछ चीजें ऐसी रखी गई हैं जो हूबहू द्वारका में देखी जा रही हैं। ये वही गिरगांव के राजा का दरबार है जहाँ पास में समुद्र है, और जितनी भी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं जो साउथ मुंबई में स्थापित की जाती है, जिनमें लालबाग के राजा, चिंतामणि के राजा, गणेश गली, मुंबई का राजा, तेजुका का राजा, परेल का महाराजा, विघ्नहर्ता, लंबोदर, तमाम बड़े पंडाल इसी गिरगांव चौपाटी में आकर के विसर्जित किए जाते हैं।
0: चंदनवाड़ी के इस गणेश मंडल के दिव्य पंडाल और इसमें विराजे विघ्नहर्ता के दर्शन अलौकिक है, जिन्हें गोड गणपति के रूप में भी जाना जाता है। केदारनाथ की थीम पर बने इस पंडाल में 12 ज्योतिर्लिंग के भव्य दर्शन भी हो रहे हैं।
1: जहां के बप्पा गोड़ गणपति बप्पा के नाम से भी जाने जाते हैं, तस्वीरों में देखें किस तरीके से बहुत ही ज्यादा विशाल, बहुत ज्यादा भव्य नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बप्पा की जो हाइट है वो तकरीबन 28 फीट है और केदारनाथ के अवतार में यहां पर स्थापित हुए हैं। डेकोरेशन चलचित्र देखने के बाद भी ये पता चल पा रहा है कि केदारनाथ की पूरी थीम रखी हुई है। साथ ही साथ आपको बताएं कि जब आप मुख्य द्वार से बप्पा की तरफ आगे बढ़ते हैं तो बाकी के भी जो 11 शिवलिंग हैं वो वहां पर स्थापित किए गए हैं। सबसे पहले सवाल ये है कि गोड़ गणपति बप्पा के नाम से मशहूर है, आखिर क्यों? आपके हाथ में शक्कर भी है।
2: एक ने मन्नत मांगा था तो उसका सब इच्छा पूर्ण हुआ, इसलिए उसने जब इससे शक्कर चढ़ाया, जब इससे आज तक पूरा वो शक्कर ही है, वो पूरा जाने के अभी पहले दिन से अभी 11 दिन तक पूरा लोग भगवान जो भक्तजन आता है वो शक्कर लाता है।
0: मुंबई में इसी तरह जगह जगह भव्य रूप से उत्सव मनाया जा रहा है और अलग अलग थीम पर बने पंडालों में बप्पा के दर्शन हो रहे हैं। महाराष्ट्र में जगह जगह गणेश पंडालों के माध्यम से कोई ना कोई विशेष सामाजिक संदेश देने की कोशिश की गई है। चंद्रपुर में युवा गणेश मंडल ने इस वर्ष किसानों को समर्पित अनोखी झांकी तैयार की है, जिसमें किसानों की समस्याओं और उनके दर्द को दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ भगवान गणेश को भी किसान का रूप दिया गया है।
3: बप्पा को अगर आप देखेंगे तो बप्पा किसान की तरह ही गमछा बांधे हुए, यहाँ पर हाथ में छड़ी लिए और यहाँ पर हल चलाते हुए बेहद ही आकर्षक मूर्ति बप्पा की यहाँ पर साकारी गई है। मंडल का यही उद्देश्य है कि किसानों को जो तकलीफ हो रही है, किसानों की परेशानी कोई समझ नहीं पा रहा है, सरकार किसानों की नहीं सुन रही है, लेकिन बप्पा के माध्यम से किसानों की सारी परेशानियां दूर हो, यही यहाँ पर मंडल की ओर से दिखाने का प्रयास किया गया है।
0: चंद्रपुर के ही दत्ता नगर में एक और विशेष झांकी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहाँ चारों ओर पहाड़ों के बीच छाए बादलों के बीच विघ्नहर्ता विराजे हुए हैं, जहाँ से मूषकराज के पर्यावरण वसुंधरा एक्सप्रेस नाम की ट्रेन गुजरती है। इस ट्रेन में बप्पा अलग अलग रूप में सवार है। इस झांकी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के साथ ही जल है तो कल है जैसा संदेश देने की कोशिश की गई है। अकोला में भी जगह जगह बप्पा के दिव्य दरबारों के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ के विप्र युवा वाहिनी गणेश मंडल ने इस बार घटते जंगल और शहरों की ओर बढ़ते शहरीकरण को अपनी झांकी का विषय बनाया है। पंडाल के अंदर बनाई गई गुफा और जंगल में जानवरों के स्टैचू के जरिए पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है।
4: गणेश उत्सव पंडाल में जहां आप देख सकते हैं बाप्पा की जो है भव्य जो है 15 फीट की जो मूर्ति है वो भव्य मूर्ति और सुंदर सजाई हुई है। बस ये यहाँ पर सीन जो है वो जंगल का किया गया है, मानो जंगल बचाना जरूरी है, उसी के बाद में ही पर्यावरण बचेगा। जो झांकी है वो झांकी सभी को ध्यान आकर्षित करने वाली जरूर है।
0: अकोला के सिंधी कैंप के रोज परिवर्तन गणेश पंडाल में भी एक भव्य झांकी बनाई गई है, जिसमें 1980 के दौर में गांव और देहात को जीवंत करने की कोशिश की गई है। सतारा जिले के कराड के आजाद चौक में इस वर्ष नरसिंह अवतार की झांकी साकार की गई है। इस पौराणिक झांकी को देखने के लिए शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र के अलावा गुजरात में भी गणेश उत्सव बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। अमरेली के सावर कुंडला में बप्पा की 25 लाख रुपए की भारतीय करेंसी और अमेरिकी डॉलर से दिव्य सजावट की गई है। वहीं सूरत के पाल हजीरा इलाके में मौजूद वीर स्वास्तिक हाइट्स में कल्प वृक्ष के थीम पर गणेश पंडाल बना है, जिसके जरिए कई तरह के सामाजिक संदेश देने की कोशिश की गई है।
5: गणेश उत्सव के दौरान गणेश पंडालों में अलग अलग प्रकार की थीम देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा लोग सामाजिक संदेश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो कल्प वृक्ष बनाया गया है, देखेंगे आप पूरा किस तरह से कल्प वृक्ष में किस तरह की शिक्षा को लेकर के, सेवा को लेकर के, पर्यावरण सुरक्षा को लेकर, हेल्प को लेकर के, अन्नदान को लेकर के और अनुशासन के लेकर, स्वच्छ भारत को लेकर कई तरह के यहाँ पर स्लोगन दिए गए हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो व्यसन मुक्त भारत का यहाँ पर एक मैसेज दिया गया है। जो भी युवा आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसके पीछे संकल्पबद्ध भी हो रहे हैं और संकल्प भी ले रहे हैं कि व्यसन अगर वो करते हैं तो व्यसन को जरूर त्याग कर देंगे।
0: आस्था और उत्साह के इस उत्सव के माध्यम से ऐसे संदेश दिए जा रहे हैं जिसके पालन में हर किसी की भलाई छिपी है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, चंद्रपुर से विकास राजुरकर, अकोला से धनंजय साबले और सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: बात करते हैं शहादत की याद में पूर्व सैनिक के एक अभियान की, जिसका मकसद 26/11 के शहीदों के सम्मान में 26 पर्वत की चोटियों पर श्रद्धांजलि था। गाजियाबाद के रहने वाले पूर्व सैनिक दीपक कुमार ने अपनी टीम के साथ 11 दिन में 6000 मीटर की ऊंचाई वाली 26 पर्वत चोटियों पर तिरंगा फहराया। मुंबई हमले के दौरान देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करते हुए बलिदान देने वाले हर शहीद की फोटो भी लगाई।
0: आमतौर पर माउंटेन क्लाइंबिंग यानी पर्वतारोहण का मकसद नए और मुश्किल पर्वत शिखरों को फतह करना होता है। इस दौरान पर्वतारोही की शारीरिक और मानसिक सीमाओं की परख भी हो जाती है, साथ ही प्रकृति की सुंदरता देखने समझने का मौका भी मिल जाता है। लेकिन पर्वतारोहण के पीछे भारतीय सेना में रहे इस पूर्व सैनिक का मकसद कुछ और है। देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना हर सैनिक का सर्वोपरि और बुनियादी कर्तव्य है। देश की रक्षा के संकल्प के दौरान कई बार शहादत भी देनी पड़ती है, जिसकी कद्र करना किसी भी समाज के लिए सबसे बड़ा धर्म है। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देना यानी सर्वोच्च कुर्बानी की अहमियत एक सैनिक से ज्यादा कौन समझ सकता है। ऐसे में पूर्व सैनिक और पर्वतारोही दीपक कुमार की तरफ से अलग अलग पर्वत के शिखरों तक पहुंचने का मकसद बेहद नेक है।
7: किसी शहीद के बलिदान के मायने एक सैनिक से ज्यादा शायद ही कोई समझ सकता है। आज हम आपको भारतीय सेना के एक ऐसे रिटायर्ड सैनिक के घर लेकर आए हैं जिसकी दीवारें ऐसे तमाम रिकॉर्ड से भरी पड़ी हैं, पटी पड़ी हैं। लेकिन इन रिकॉर्ड से परे इस सैनिक ने एक नया मिशन अपनाया। उन्होंने कहा कि वो 26/11 के हमले में शहीद हुए तमाम बलिदानों

0: के दीपक कुमार 31 जुलाई को रिटायर हुए हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच जहां हवा भी मुश्किल से सांस लेती है, जहां तापमान -5 डिग्री से -20 डिग्री तक होता है, जहां हर कदम बढ़ाना पहाड़ जैसी चुनौती के बराबर होता है, वहां दीपक कुमार अपनी टीम के साथ 26/11 के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए तिरंगा लहराते हैं। खास बात यह है कि शहादत के सम्मान से जुड़े इस अभियान के लिए उन्होंने 26 नवंबर की तारीख नहीं चुनी, बल्कि 11 दिनों में 26 पर्वत की चोटियों पर तिरंगा फहराने का फैसला किया।
1: मैंने सोचा एज ए आर्मी पर्सन कि मैं रिटायरमेंट होने के बाद मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो एक शहीदों के लिए कुछ हो। तब एज ए माउंटेनियर मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जो बिल्कुल अलग हो, ठीक है। तो जैसे एकदम मेरे दिमाग में ये चीजें आई सडन कि 26/11 मुंबई अटैक्स हुआ था, तो मैं उन शहीदों को ट्रिब्यूट करता हूँ। तो उसी के ब्याह पे हम जो है 11 दिन में 26 पीक क्लाइम करेंगे जो सारी 6000 मीटर से अबव होंगी, और इसके जरिए जो शहीद हुए हैं हम उनको एक ट्रिब्यूट करेंगे।
0: दीपक कुमार की टीम में 6 सदस्य हैं, जिनमें भारतीय सेना के 3 सर्विंग सोल्जर के अलावा 2 सिविलियन भी शामिल है। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर क्रॉन्च पर्वत से शुरू हुए इस अभियान के दौरान कई मशहूर पर्वत चोटियों पर शहीदों की फोटो लगाई और तिरंगा लहराया, वो भी अल्पाइन स्टाइल में, जो पर्वतारोहण की एक ऐसी शैली है जिसमें पर्वतारोही बिना किसी बाहरी मदद, भारी साजो सामान, फिक्स्ड रस्सियों और खाने पीने के चीजों के साथ तेजी से पहाड़ की चोटी पर चढ़ते हैं।
1: हमने स्टार्ट किया था इंडिपेंडेंस से 15 अगस्त से स्टार्ट किया था, और इसमें जो टीम थी हमारी 6 बंदों की टीम थी, और 6 बंदों की टीम थी। तो हमने जो ये मिशन था ये हमने स्टार्ट किया था कारजोक से। हमने फर्स्ट में ग्यामा रेंज को, मेंटोक रेंज को कंप्लीट किया था एक दिन में। उसके बाद दूसरा दिन हमारा था यालुंगनांग की तरफ हम गए। तीसरा फेज था हमारा ग्यामा मैसिफ की जो पीक्स हैं उसका था, और चौथा फेज था हमारा पोलोगोंका की जो रेंज थी, और पांचवें फेज में हमने खत्म किया था ये अपना थोकजे रेंज को।
0: दीपक के इस अभियान का मकसद रिकॉर्ड बनाना नहीं, बल्कि 26/11 के शहीदों को पहाड़ों के जरिए श्रद्धांजलि देना है। हालांकि पर्वतारोहण का शौक उन्हें सेना में रहते लगा। 2006 में भारतीय सेना को ज्वाइन करने के बाद पर्वतारोही के तौर पर दीपक कुमार का सफर लगातार ऊंचाइयां छूता गया। 2013 से 2025 के बीच दीपक 65 चोटियों को फतह कर चुके हैं। इनमें नेपाल की 8,685 मीटर ऊंची माउंट मकालू से लेकर माउंट एवरेस्ट की चोटियां तक शामिल हैं। 2019 में भारतीय सेना के एडवेंचर विंग के अभियान के तहत उन्होंने माउंट मकालू का सफल आरोहण किया था। इस अद्भुत उपलब्धि के लिए उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। पर्वतारोहण की दुनिया में दीपक कुमार ने सिर्फ चोटियां फतह नहीं की बल्कि रिकॉर्ड भी बनाए हैं। 2019 में कजाकिस्तान में 9 दिनों के भीतर 15 चोटियों को छू लिया था। इसके बाद दीपक ने साल 2021 में 24 घंटे के भीतर 12 पर्वत चोटियों का आरोहण किया। दीपक रूस की 5,642 मीटर ऊंची माउंट एल्ब्रुस और अफ्रीका की 5,895 मीटर ऊंची माउंट किलिमंजारो की चोटियों पर भी तिरंगा फहरा चुके हैं। उनके नाम कई रिकॉर्ड बुक्स में दर्ज हो चुका है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दीपक 3 बार जगह बना चुके हैं। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 3 बार उनका नाम दर्ज हो चुका है, और इसके अलावा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, नोबल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और ऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दीपक की उपलब्धियां दर्ज है। -25 डिग्री तापमान, बर्फीले तूफानों और खतरनाक ग्लेशियर पर लगातार चढ़ाई के पीछे एक और मकसद है, त्याग, बलिदान और शहादत के सम्मान के जरिए पूर्व सैनिक दीपक कुमार आने वाली पीढ़ियों और युवाओं में राष्ट्रवाद और सेवा की भावना को भी बढ़ावा देना चाहते हैं। गाजियाबाद से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: चीन में इन दिनों वर्ल्ड स्किल शंघाई 2026 प्रतियोगिता चल रही है। इस कार्यक्रम में 70 से ज्यादा देश अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। कल इस कार्यक्रम की बहुत शानदार ओपनिंग सेरेमनी हुई। कार्यक्रम के दौरान 1400 से ज्यादा युवा अलग अलग क्षेत्रों में अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी पर सबसे ज्यादा चर्चा होगी।
3: वर्ल्ड्स के स्किल्स का सबसे बड़ा मंच सज चुका है। कौशलों का ओलंपिक कही जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता का 48वां संस्करण शुरू हो चुका है, जिसमें अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने भारत समेत दुनिया भर के हुनरमंद युवा

0: पहुंच चुके हैं। 22 सितंबर को शंघाई के नेशनल एग्जीबिशन एंड इन्वेंशन सेंटर में शुरू हुए वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में 70 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों के 1400 से ज्यादा युवा कौशल पेशेवर हिस्सा ले रहे हैं। भारत की ओर से टीम स्किल इंडिया के 70 युवा 63 श्रेणियों में देश का तिरंगा थामकर वैश्विक मंच पर अपनी धमक दिखाने पहुँचे हैं। वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता का मकसद सिर्फ प्रतियोगिता नहीं बल्कि युवाओं को बदलती तकनीक और भविष्य की रोजगार आवश्यकताओं के लिए तैयार करना भी है। इलेक्ट्रॉनिक से लेकर ऑटोमोबाइल, रोबोटिक्स, आईटी, निर्माण, वेल्डिंग, कुकिंग और कई दूसरे क्षेत्रों में प्रतियोगी अपनी दक्षता साबित करते हैं। वैश्विक कौशल प्रतियोगिता में भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है। भारत के युवाओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अलग अलग कौशल क्षेत्रों में अपने हुनर का दम दिखाया है। 2015 में ब्राजील के साओ पाउलो में हुई वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता में भारत 29वें स्थान पर था। भारतीय टीम ने कुल 8 मेडलियन ऑफ एक्सीलेंस जीते थे। 2024 में फ्रांस के लियोन शहर में हुई इस प्रतियोगिता में भारत ने बेहतर प्रदर्शन किया और 13वें स्थान पर पहुंच गया। टीम ने कुल 16 पदक और उत्कृष्टता पदक हासिल किए। वर्ल्ड स्किल एशिया 2025 में भारत ने और बेहतर प्रदर्शन करते हुए 8वां स्थान हासिल किया। इस प्रतियोगिता में भारत ने 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज और 3 उत्कृष्टता पदक समेत कुल 6 पदक जीते। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में ग्लोबल स्किल्स चैलेंज 2026 में टीम इंडिया ने 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर शंघाई के लिए अपनी तैयारी को और मजबूत किया। आंकड़ों से साफ है कि दुनिया की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता में भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है और भारत के युवा हुनर और तकनीक कौशल के जरिए दुनिया में अपनी नई पहचान बना रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज़ टुडे।

0: अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: दिव्य और भव्य होगा दीपोत्सव 2026, 30 लाख दीपों से जगमगाएगी अयोध्या, 2100 ड्रोन शो से बढ़ेगा दीपोत्सव का आकर्षण। गुजरात के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी में चल रहे भादरवी महामेले में उमड़ रहा है जनसमूह, 3 दिन में पहुंचे 15 लाख से ज्यादा भक्त। नैनीताल में फूलों की बारिश के बीच कैलाश को रवाना हुई मां नंदा सुनंदा, हजारों नम आंखों ने दी विदाई, उमड़ा आस्था का सैलाब। बामन द्वादश पर बद्रीनाथ में धूमधाम से निकली भगवान उद्धव जी की डोली, माता मूर्ति महोत्सव में उमड़ा भक्तों का सैलाब। नागपुर के गणेश टेकरी मंदिर में भगवान गणेश को चढ़ाया गया 1101 किलो का महालड्डू, 5 फीट ऊंचे और 4 फीट चौड़े लड्डू को 22 कारीगरों ने 6 दिन में तैयार किया। झांसी में शाही अंदाज में निकली बप्पा की प्रतिमा की विसर्जन यात्रा, महाराज के रूप में विराजमान हुए बप्पा, झूमते नजर आए भक्तों।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिलदेव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात गणेशोत्सव की। जब से गणेशोत्सव का शुभारंभ हुआ है, जीएनटी स्पेशल में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह पूरे देश में कितनी भव्यता, कितने उत्साह और आस्था के साथ भगवान गणेश का ये उत्सव मनाया जा रहा है। देश भर में शहर शहर सजे पंडालों में गजानन के एक से बढ़कर एक निराले रूप नजर आ रहे हैं। लेकिन गणेशोत्सव के बीच ही देश के अलग अलग कोनों में कई लोक पर्वों और त्योहारों को मनाने का सिलसिला भी जारी है। कल जहां देश मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में डोल ग्यारस यानी जल झूलनी एकादश

0: एकादशी का पर्व मनाया गया, तो वहीं गुजरात के अंबाजी शक्तिपीठ में भादरवी महामेले का आयोजन जोर शोर से चल रहा है। गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर स्थित विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल अंबाजी में हर साल होने वाले भादरवी महामेले की धूम है। भादरवी महीने में नवमी से पूनम यानी 7 दिनों तक धूमधाम से मनाए जाने वाले मेले का श्री गणेश 21 सितंबर को हुआ था। माता जी का रथ खींचकर मंदिर के पंडितों द्वारा शास्त्रों के अनुसार पूजा अर्चना और अनुष्ठान के साथ ये शुभारंभ हुआ और अब यहां भक्तों का सैलाब उमड़ा है। मां के धाम में भजन और गरबा के गीत साथ में गूंज रहे हैं। भादरवी महामेला अंबाजी शक्तिपीठ का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। गुजरात में भादरवी मेला तो राजस्थान और एमपी में जल झूलनी एकादशी की रौनक नजर आई। डोल ग्यारस का त्यौहार श्री कृष्ण के साथ जुड़ा है। जल झूलनी एकादशी की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ होने वाले सामूहिक देव दर्शन है। इस दिन बालकृष्ण स्वरूप को पालकियों में सवार करवा कर नगर भ्रमण पर ले जाने की परंपरा है। साल में एक बार शहर भर के मंदिरों के बाल विग्रह एक साथ पालकियों में विराजित करके श्रद्धालुओं के बीच आते हैं। ये नजारा कल कई शहरों में दिखाई दिया, तो चलिए उत्सवों की इन तमाम तस्वीरों के बीच ही अब आपको दिखाते हैं गणेशोत्सव की छटा और करवाते हैं यात्रा देश भर के सबसे अद्भुत और भव्य गणेश पंडालों की।
1: अद्भुत है, अनुपम है, अनन्य है। गणेशोत्सव के दिनों में गजानन के एक से एक अनोखे रूप साकार हो उठे हैं। आज बापा के अनोखे रूपों के अध्याय का श्री गणेश करते हैं उनके सबसे सजीले स्वरूप के साथ। मुंबई में ये दरबार है गिरगांव के राजा का। गिरगांव के राजा के दरबार को इस बार द्वारकाधीश थीम पर तैयार किया गया है और बापा यहाँ श्री कृष्ण के स्वरूप में विराजे हैं। बापा के इस स्वरूप की सबसे खास पहचान बन गई है उनके मस्तक पर सजा ये शानदार फेटा यानी पगड़ी। महाकाय के स्वरूप के हिसाब से उनकी ये पगड़ी भी विशालकाय है। इस भेटे की लंबाई लगभग 6 फीट और चौड़ाई करीब 5 फीट बताई जा रही है।
2: हर साल बिल्कुल एक ही तरह की थीम होती है, एक ही तरह का आकार होता है गणपति बप्पा का, लेकिन विशेष इस बार ये है कि श्री कृष्ण के रूप में देखे जा रहे हैं। बप्पा बहुत ज्यादा प्यारे और सुंदर तो लग ही रहे हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा जो बहुत ज्यादा देखने वाली चीज है उनका फेटा है। मुझे लगता है कि देश का यह सबसे बड़ा फेटा है जिसकी लंबाई कम से कम 6 फीट है, चौड़ाई कम से कम 5 फीट है। और इन्हें ही देखने के लिए, इनका दर्शन देखने के लिए दूर दराज से मुंबई महाराष्ट्र से श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर पहुंचते हैं। खास बात यह है कि द्वारकाधीश का भी यहाँ पर थीम रखा गया है और कुछ चीजें ऐसी रखी गई हैं जो हूबहू द्वारका में देखी जा रही हैं। 99 साल मना रहा है ये पंडाल। खास बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी मन की बात में इस पंडाल का जिक्र किया था, तारीफ की थी और स्पेशली ये कहा था कि इको फ्रेंडली बप्पा हूँ।
1: आपको बता दें कि मराठी संस्कृति में फेटा सर्वोच्च सम्मान, अधिकार और राजसी वैभव का प्रतीक माना जाता है। भगवान गणेश को गणपति यानी गणों के स्वामी और नगराध्यक्ष यानी शहर के राजा के रूप में पूजा जाता है। जैसे किसी महान राजा का राज्य अभिषेक बिना मुकुट या पगड़ी के अधूरा है, वैसे ही बापा को फेटा पहनाकर भक्त उन्हें अपने जीवन और क्षेत्र के राजा के रूप में सम्मानित करते हैं। अब आपको दिखाते हैं मुंबई में ही सजा चंदनवाड़ी गणेश उत्सव मंडल का पंडाल, जहां बापा का पंडाल केदारनाथ धाम की थीम पर तैयार किया गया है। पंडाल तो अनोखा है ही, यहां बापा का स्वरूप भी खास है। यहां गौरी नंदन अपने वाहन मूषक को छोड़ पिता महादेव की सवारी नंदी महाराज पर विराजे हैं। एक हाथ में डमरू, दूसरे में त्रिशूल है। बर्फीले पहाड़ के बीच नंदी पर विराजे लगभग 28 फीट के बप्पा का रूप अनोखा है। बाबा की प्रतिमा के पास ही भोलेनाथ का केदार स्वरूप भी स्थापित किया गया है।
2: इस वक्त मैं मौजूद हूँ साउथ मुंबई में स्थित अखिल चंदनवाड़ी गणेश उत्सव पंडाल में, जहाँ के बप्पा गोड़ गणपति बप्पा के नाम से भी जाने जाते हैं। तस्वीरों में देखें किस तरीके से बहुत ही ज्यादा विशाल, बहुत ज्यादा भव्य नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बप्पा की जो हाइट है वो तकरीबन 28 फीट है और केदारनाथ के अवतार में यहाँ पर स्थापित हुए हैं। डेकोरेशन चलचित्र देखने के बाद भी ये पता चल पा रहा है कि केदारनाथ की पूरी थीम रखी हुई है। साथ ही साथ आपको बताएं कि जब आप मुख्य द्वार से बप्पा की तरफ आगे बढ़ते हैं तो बाकी के भी जो 11 शिवलिंग हैं वो वहां पर स्थापित किए गए हैं, जिसमें ओंकारेश्वर, उज्जैन के महाकाल, काशी, नासिक के त्र्यंबकेश्वर जैसे नाम शामिल हैं।
1: अब चलिए आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम, जहां समुद्र तट पर गणपति विराट स्वरूप में विराजे हैं। इस प्रतिमा की ऊंचाई 63 फीट है। बताया जा रहा है कि ये बाबा की सबसे ऊंची इको फ्रेंडली प्रतिमा है। गले में सजी है फूलों की सुंदर माला, माथे पर दमक रहा है तिलक, एक हाथ में धनुष और दूसरे हाथ से भक्तों को अभय का आशीर्वाद देते बाप्पा। यहाँ सिर्फ प्रतिमा ही नहीं, बाप्पा के लिए 63 फीट ऊंचा भव्य पंडाल भी तैयार किया गया है। यानी जितनी ऊंची बाप्पा की प्रतिमा उतना ही विशाल उनका दरबार। इसे देखने और बाप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस विशाल प्रतिमा को कृष्णा जिले और आसपास के इलाकों के 1,00,000 से ज्यादा घरों से जुटाई गई मिट्टी से तैयार किया गया है। बता दें कि 63 फीट ऊंची इको फ्रेंडली महागणपति प्रतिमा ने इंटरनेशनल अचीवर्स बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाई है। गणेश उत्सव के दौरान मुंबई में भटवाड़ी के राजा भी आस्थावानों को शुभाशीष दे रहे हैं। भटवाड़ी चार राजा की प्रतिमा को कागज से तैयार किया गया है। इस बार ये पंडाल अपनी बेहद निराली और तकनीक थीम को लेकर सुर्खियों में है। दरअसल इस बार भटवाड़ी चा गणेश पंडाल को AI थीम पर तैयार किया गया है।
2: खास बात यह है कि इस बार भटवाड़ी के राजा की जो थीम है वो AI पे रखी गई है। जैसे कि किस तरीके से AI की हेल्प से मिसाइल अपने आप में एक बहुत बड़ा काम कर रही है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने क्या कुछ कहा है, कैसे उन्हें लोग फॉलो कर रहे हैं, और इसके अलावा विज्ञान में AI कितने अंदर तक डीप तक जा चुकी है।
1: यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का देश की तरक्की में कितना योगदान है, इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये तमाम चीजें पंडाल में लगे पोस्टर, बैनर और LED पर दिखाए जा रहे विशेष वीडियो पर श्रद्धालुओं को दिखाया जा रहा है।
3: एक शक्ति जी पूजा के लिए जात होती है, बुद्धि जी, विद्धि जी।
1: चलिए चंद्रपुर, जहां बाबा का ये अद्भुत दरबार सजा है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में यहां के श्री सिद्धि विनायक गणेश मंडल ने सांवलिया सेठ की थीम पर ये गणेश पंडाल सजाया है। एक ही प्रतिमा में खाटू के श्याम बाबा और चित्तौड़ के सांवलिया सेठ साथ दर्शन दे रहे हैं। एक ही प्रतिमा में दोनों आराध्य देवों की छवियों का समावेश इसे बेहद खास बना रहा है। बड़ी संख्या में भक्त यहां पहुंच रहे हैं और अपनी अर्जियां लगा रहे हैं।
4: जो हारे के सहारे हैं उनके पास अपनी अर्जी लगाई है और मुझे यहां पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पूरा विश्वास है उन पे कि मेरी जो लगाई हुई अर्जी है वो पूरी होगी और इन्होंने इस बार यहां पे बहुत अच्छा सेटअप किया है।
5: अर्जी लगाई है, अच्छा लगता है, बाबा शाम पर्ची पूरी करेंगे हमारी, यही भावना से आए हैं।
1: बड़ी संख्या में भक्त अपनी मनोकामना लेकर बाबा के इस दरबार में पहुंच रहे हैं और लाल कपड़े में नारियल बांधकर मोर पंख के साथ अपनी अर्जी लगा रहे हैं। इस पंडाल में खूबसूरत रोशनी और सजावट के जरिए राजस्थान के प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर की बारीकियों को बेहद खूबसूरती से दर्शाया गया है और भक्त भी उसी भाव के साथ यहां दर्शन को पहुंच रहे हैं। जंदरपुर में श्री कृष्ण का सांवलिया स्वरूप है, तो वहीं मुंबई के पारसीवाड़ा में गणेश पंडाल को भगवान कृष्ण की दिव्य कथाओं यानी श्री कृष्ण लीला थीम पर तैयार किया गया है। पारसीवाड़ाचार राजा का पंडाल अपने 63वें साल में है। यहाँ बापा का स्वरूप तो भव्य है ही, लेकिन अब की बार इस पंडाल को भी बेहद खास तरीके से सजाया गया है। कान्हा के जन्म से लेकर महाभारत तक के प्रसंग इस पंडाल में चारों ओर नजर आ रहे हैं।
2: गणपति उत्सव में डेकोरेशन किस तरह से बनाया जाता है, उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है और कितने महीने लगते हैं, कितने लोग लगते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये मैं किसी राजमहल की एंट्री गेट आपको नहीं दिखा रहा, बल्कि एक ऐसा गणेश उत्सव पंडाल दिखा रहा हूँ जो इस तरीके से सजाया गया है। श्रद्धालु इस रास्ते से होते हुए सीधे भीतर की तरफ चलते हैं। दीवारें देखें, इस तरह से बनाई गई हैं जैसे पौराणिक कथाओं की गान गा रही हो। और यहाँ से लोग आते हुए सीधे सबसे पहले श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं, जिनका बाल स्वरूप यहाँ पर झूले में रखा गया है। तो इसी से ये बात मालूम पड़ रही है कि कहीं न कहीं थीम भी इनके आसपास ही है। भीतर की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से एक भव्य पंडाल यहाँ पर बनाया गया है। और वाकई में महीनों मेहनत करने के बाद जो आर्टिस्ट हैं वो किस तरीके से रूप दे देते हैं एक पंडाल को, ये दिखाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। सबसे पहले तो आप देखें कि अच्छी खासी यहाँ पर जगह है और कितना ज्यादा मेहनत किया गया है। जहाँ भी आप देखें झूमर दिख रहा है और कुछ इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है, यानी कि श्रद्धालु जब यहाँ आते हैं तो आने के बाद बकायदा अच्छे दर्शन भी करते हैं। तमाम पदाधिकारी भी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं और अब सीधे गणपति बप्पा का दर्शन करें। पारसीवाड़ाचा महाराजा के नाम से मशहूर है, पास में ही सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और उसके बगल का ही ये पंडाल है। हर साल इसी तरीके से बप्पा को यहाँ पर बनाया जाता है, कोई बदलाव नहीं लाया जाता है। बड़े अस्तीले से बड़े प्यार से लोग यहाँ आते हैं और दर्शन करते हैं। पास में बहुत सारे यहाँ पर खिड़कियां के अनुसार पोस्टर एंड बैनर्स लगाए गए हैं जहां पर श्री कृष्ण की लीला दिखाई जाती है। थोड़ी ये तस्वीर देखें, ये भी एक बहुत बड़ी लीला है श्री कृष्ण जी की। और बचपन से जब वो जन्मे और जन्म से लेकर के इस युद्ध तक की जितनी भी कहानियां हैं वो सभी पोस्टर बैनर्स के जरिए श्रद्धालुओं तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है।
1: अब देखिए चंदरपुर में विराजे गजानन का अनोखा स्वरूप, एक हाथ में हल, दूसरे में बैलों की रस्सी, तन पर धोती कुर्ता और सिर पर गमछा, ये है विघ्नहर्ता का अन्नदाता अवतार, जिसे बनाया है चंदरपुर के युवा गणेश मंडल ने। ये मंडल हर साल अलग अलग सामाजिक और जन जागृति विषयों को गणेश उत्सव की झांकियों के माध्यम से लोगों के सामने पेश करता है। इसी कड़ी में इस साल युवा गणेश मंडल ने किसान के रूप में बापा की झांकी के जरिए अन्नदाता की मेहनत, संघर्ष और उसके दर्द को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, जिसे लोग खासा पसंद भी कर रहे हैं।
6: चंदरपुर के युवा गणेश मंडल में मौजूद है, यहाँ पर इस बार झांकी बनाई है, बेहद ही खास झांकी है। एक अलग थीम पर यहाँ पर झांकी बनाई गई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बाप्पा को किसान का रूप दिया गया है। किसान के रूप में बाप्पा यहाँ पर हल चलाते हुए नजर आ रहे हैं, खेती कर रहे हैं। यहाँ पर धान की खेती आपको नजर आएगी, बाप्पा हल जोत रहे हैं यहाँ पर जब अपने फसल के लिए, यहाँ पर वो बाप्पा मेहनत कर रहे हैं। और दो यहाँ पर बैल भी आपको नजर आएंगे, मतलब पूरी जो यहाँ पर बाप्पा को किसान के रूप में दिखाने की कोशिश यहाँ पर मंडल की ओर से की गई है।
1: अब देखिए गणपति की वो झांकी जो अब से पहले आपने नहीं देखी होगी। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर 80 के दशक का ट्रेंड चल रहा है, सो इस गणेश पंडाल ने इसी थीम की झलक दिखाने की कोशिश की है। इस गणेश पंडाल में 80 के दशक के एक गांव की सुंदर तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई है। यहां गणपति दर्शन को आ रहे श्रद्धालुओं के दिलों में 80 के सादगी भरे दौर की यादें ताजा हो रही है। सिलबट्टे पर पिस्ता मसाला, कुएं से पानी भरती महिलाएं, घर घर पहुंचा डाकिया, बायोस्कोप वाला ग्राम विद्यालय और पंचायत के दृश्यों को बापा के इस पंडाल में जीवंत किया गया है। ये वो दौर था जब गांवों में पेड़ के नीचे कुर्सी पर बैठकर मास्टर जी पढ़ाया करते थे और जब एक ही टीवी से पूरा मोहल्ला रामायण देखता था। जाहिर है इस पहल के जरिए आज की पीढ़ी को बीते वक्त की खुशनुमा यादों से जोड़ने की कोशिश

0: कोशिश की गई है। यहां आ रहे श्रद्धालु इसे काफी पसंद कर रहे हैं।
1: हमने 1980 के गणपति देखे, पुरानी यादें बहुत अच्छे से ताजा हुई और आज फिर वो 1980 के रील्स बनाने का ट्रेंड शुरू है सबका।
2: क्या क्या देखा आपने
1: या इसमें? यहाँ पे पुराना जो उनका बायोस्कोप से देखना, एक सरपंच के घर में रामायण चल रहा है, दैट इज एक ही टीवी होता था और सारा गांव बैठ के देखता था।
0: 80 के दशक का पंडाल खास है तो अकोला का ही ये हरा भरा पंडाल भी अनोखा है। यहाँ आस्था भक्ति के साथ ही प्रकृति की छवि को भी संजोया गया है। गजानन की प्रतिमा के इर्द गिर्द जंगल की सुंदर तस्वीर पेश की गई है। प्रकृति से सनातन संस्कृति का हमेशा से गहरा संबंध रहा है और यही इस हरे भरे पंडाल की थीम भी है। आज से नहीं, सदियों से साधु संत प्रकृति को पूजते आए हैं। धर्म आध्यात्म के जरिए समाज को पर्यावरण के संरक्षण का महत्व भी बताते आए हैं। अकोला के विप्र युवा वाहिनी गणेश मंडल ने इस बार घटते जंगल और बढ़ते शहरीकरण को अपनी झांकी का विषय बनाया है। तो वही वारंगल के एक भक्त ने बापा को न्याय मूर्ति के रूप में दिखा दिया है। इस पंडाल में बापा का कोर्ट रूम सजा हुआ है जहां बापा जज की कुर्सी पर विराजे हैं। काला कोट पहना है लेकिन सिर पर मुकुट भी सजा है। सामने न्याय का तराजू है और बापा फैसला सुनाने के अंदाज में बैठे हैं। बड़ी संख्या में भक्त बापा के इस स्वरूप के दर्शन करने पहुंच रहे हैं।

0: लेकिन मुंबई के इस पंडाल का तो कहना ही क्या। सांता क्रूज के इस पंडाल में गणपति बाप्पा स्वयं अपने बाप्पा महादेव के रूप में विराजे हैं। जटाओं में गंगा, गले में नाग, हाथ में डमरू, बाघम्बर और त्रिशूल, अनोखा है गजानन का ये स्वरूप।
1: इस समय मैं मौजूद हूं मुंबई के सांताक्रूज इलाके में और यहां के सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल गौठन लेन बहुत ज्यादा चर्चित है अपने बप्पा की सुंदरता के कारण। आप भी खुद करें दर्शन। वाकई में जैसा सुना था वैसा यहां पर पाया है। शिवजी के रूप में गणपति बप्पा यहां के दरबार में पधारे हुए हैं और इनका दर्शन करने के लिए तमाम श्रद्धालु आसपास के पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि मुंबई का वेस्टर्न लाइन का सांताक्रूज इलाके का जो लोकल रेलवे स्टेशन है ठीक उसके 500 मीटर की दूरी पे ही यहां पर शिवजी के रूप में गणपति बप्पा विराजमान हैं। थोड़ा उनका पंडाल भी देखिए कितनी खूबसूरती से इसे सजाया गया है। बाहर भी कुछ दृश्य हैं, तस्वीरें हैं। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि हम आकर दिखाएं। गणपति बप्पा तक हर कोई पहुँच नहीं पाता, इस वजह से यहाँ पर एक छोटे गणपति बप्पा को भी हमेशा विराजमान किया जाता है। हर कोई बप्पा को दूरदर्शन करने के बाद इनके पग छूता है और जो भी इन्हें चढ़ाना होता है, अर्पण करना होता है, वो चढ़ाते हैं।
0: वही महाराष्ट्र के ही अमरावती में भक्तों ने ड्राई फ्रूट से बाप्पा का स्वरूप तैयार किया है। 31 किलो अंजीर और मखाने से बाप्पा की ये 7 फीट ऊंची इको फ्रेंडली प्रतिमा बनाई गई है। अमरावती के जय हिंद गणेश उत्सव पंडाल में पर्यावरण संरक्षण और जल बचत का संदेश देने के लिए इस साल बाप्पा के इस स्वरूप का सृजन किया गया। इस अनूठे प्रयोग के जरिए जल है तो कल है का संदेश दिया जा रहा है। इसी बीच गुजरात के अमरेली में गणपति के धनपति रूप के दर्शन हो रहे हैं। यहां भक्तों ने बाप्पा को करीब 25 लाख रुपए और अमेरिकी डॉलर से सजा दिया है। 20, 50, 100, 200 और 500 रुपए के नोटों से बाप्पा का मुकुट, हार, हाथ और पैर सजाए गए हैं। खास बात ये है कि 20 साल से गणपति महोत्सव आयोजन कर रहे सद्भावना ग्रुप ने पहली बार डॉलर से भी बापा का श्रृंगार किया है। बापा के इस अनोखे स्वरूप के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बापा का कुछ ऐसा ही स्वरूप तेलंगाना में भी नजर आ रहा है। तेलंगाना के पलवंचा शहर में 2 अलग अलग पंडालों में भगवान गणेश की मूर्तियों को कुल 2,90,00,000 रुपए के असली करेंसी नोटों से सजाया गया है, जिसमें 1,40,00,000 रुपए के नोट

0: पत्रों से बाप्पा को सजाया गया है। वही पूरे पंडाल को सजाने के लिए 10, 20, 50, 100, 200, 500 के नोटों का इस्तेमाल किया गया है। इस भव्य सजावट के लिए स्थानीय व्यापारियों ने आर्थिक योगदान दिया और बैंक कर्मचारियों ने नए नोट उपलब्ध कराने में मदद की। बापा का माइक्रो स्वरूप भी जरा देख लीजिए। विग्रहहरता भगवान गणेश की ये ऐसी अद्भुत प्रदर्शनी है जहां बापा कई अलग अलग साइज और अलग अलग स्वरूप में मौजूद है, लेकिन बापा के इन स्वरूपों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि गणेश जी की इन मूर्तियों का आकार बहुत ही छोटा है। नासिक के सुनार भगवान दास खरोटे ने अलग अलग साइज की 291 सूक्ष्म सोने की गणेश मूर्तियां बनाई है। इनमें सबसे सूक्ष्म 3 मिलीमीटर से लेकर 1 इंच साइज तक की गणेश मूर्ति शामिल है। यहाँ गायक, तबला वादक, हारमोनियम वादक और वीणा वादक जैसे अलग अलग रूपों में छोटी सोने की गणेश मूर्तियां भी मौजूद है। इसके अलावा अष्ट विनायक, हेरम गणेश, मखारा में गणेश, कंबोडिया और इंडोनेशिया की सोने की गणेश मूर्तियों की रेप्लिका भी आपको यहां दिख जाएंगे। साथ ही बाली, जावा, मंगोलिया, सुमात्रा जैसे अलग अलग देशों से अलग अलग रूपों और साइज में गणेश की छोटी सोने की मूर्तियां भी मौजूद है।
1: चलिए इसी के साथ जेएनडी स्पेशल की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी और पॉजिटिव खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

दिल्ली में गणपति विसर्जन के लिए सरकार की ओर से तैयारियां की गई हैं। विसर्जन के लिए 81 जगहों पर आर्टिफिशियल तालाब बनाए गए हैं। तालाबों के आसपास सुरक्षा लाइट्स और मेडिकल फैसिलिटी का भी इंतजाम किया गया है। यहां श्रद्धालु सुरक्षित और आसानी से विसर्जन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने धार्मिक आस्था और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए 110 खंडित मूर्ति संग्रह केंद्र भी बनाए हैं।

0: देश भर में गणेशोत्सव की धूम है। इस बीच बापा के भक्तों के लिए गुड न्यूज आई है। दिल्ली में गणपति विसर्जन के लिए सरकार ने विशेष इंतजाम किए हैं। चाहे गणेश उत्सव हो या दशहरा, हर उत्सव के बाद देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ पूजा सामग्रियों का विसर्जन एक बड़ी समस्या होती है। दिल्ली सरकार ने इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने की कोशिश की है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि आस्था और पर्यावरण संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है, इसमें नागरिकों की भागीदारी जरूरी है।
1: एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इतने प्रेम से बाबा को घर लाते हो, भगवान की पूजा करते हो, तो कभी भी खंडित तस्वीर को, मूर्ति को ऐसे छोड़ के अनादर करते हुए नहीं आना है, उसको भी स्थान देना है।
0: दिल्ली सरकार की पहल के तहत पुरानी खंडित मूर्तियों और पूजा सामग्री के सम्मानजनक निस्तारण के लिए 110 जगहों पर विशेष संग्रह केंद्र बनाए गए हैं। ये पहल यमुना को प्रदूषण से बचाने में भी मददगार साबित होगी।
2: इस वक्त हम मौजूद है रोहिणी के सेक्टर 15 में, ठीक विद्या भारती स्कूल के बाहर, जहां पर आपको ये केंद्र जो है वो नजर आ जाएगा, ताकि लोग जो है वो जो मूर्तियां, भगवान की मूर्तियों पर जो चुनरी चढ़ती है, जो दुपट्टे चढ़ते हैं, वो आपको सबसे ज्यादा जो है वो यहां नजर आ जाएंगे। आपको इसमें सूखा नारियल जो है वो भी नजर आ जाएगा कि लोगों ने अब सूखे नारियल को जो है वो यहां पर रखा हुआ है। इसके अलावा जो है आपको फूल जो है वो नजर आ जाएंगे, आपको मूर्तियां भी जो है इसमें नजर आ जाएगी। जितनी भी मंदिर की जो से जरूरत की जो चीजें होती है वो सभी चीजें जो है वो यहाँ नजर आने वाली है।
0: अक्सर पुरानी या खंडित मूर्तियों और पूजा पाठ से संबंधित सामग्री को लेकर धार्मिक भावनाओं के कारण पेड़ों के नीचे, पार्कों, सड़क किनारे या दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर रख देते हैं। इससे एक ओर धार्मिक आस्था जुड़ी होती है, तो वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता और पर्यावरण से जुड़ी चुनौती भी सामने आती है।

0: ऐसे में दिल्ली के लोग सरकार की नई पहल का दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं।
1: बहुत बढ़िया सुविधा हो गई, नहीं तो ऐसे ही इधर उधर रखते हैं, कोई फायदा नहीं रहता ना, पाप ही चढ़ता है। अभी एक सुविधा हो गई, एक जगह बनी, वहाँ रख दिया, ना प्रदूषण हुआ ना कुछ हुआ, बहुत बढ़िया करा रेखा। अब हम थैला भर के लाए थे, हमने अपना पूरा कर दिया विसर्जन, तो हमारे लिए तो बेस्ट है।
0: दिल्ली में गणपति मूर्तियों के विसर्जन के लिए 81 जगहों पर आर्टिफिशियल तालाब बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं से मूर्ति विसर्जन केवल कृत्रिम तालाबों में ही करने को कहा गया है। गणेश विसर्जन की तैयारियों में सुरक्षा, स्वच्छता, लाइट, चिकित्सा, आपातकालीन व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन और पर्यावरणीय सुरक्षा जैसे पहलुओं को भी शामिल किया गया है। सरकार ने यमुना और दूसरे जल स्रोतों में मूर्ति, फूल माला या पूजा सामग्री डालने से मना किया है। श्रद्धालुओं को पर्यावरण अनुकूल मूर्तियों को प्राथमिकता देने और POP और हानिकारक रसायनों से बनी प्रतिमाओं से बचने की सलाह दी गई है। दिल्ली से मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आती है।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: दिव्य और भव्य होगा दीपोत्सव 2026। 30 लाख दीपों से जगमगाएगी अयोध्या। 2100 ड्रोन शो से बढ़ेगा दीपोत्सव का आकर्षण। गुजरात के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी में चल रहे भादरवी महामेले में उमड़ रहा है जनसमूह। 3 दिन में पहुंचे 15 लाख से ज्यादा भक्त। नैनीताल में फूलों की बारिश के बीच कैलाश को रवाना हुई मां नंदा सुनंदा। हजारों नम आंखों ने दी विदाई, उमड़ा आस्था का सैलाब। वामन द्वादश पर बद्रीनाथ में धूमधाम से निकली भगवान उद्धव जी की डोली। माता मूर्ति महोत्सव में उमड़ा भक्तों का सैलाब। ठाकुर के गणेश टेकरी मंदिर में भगवान गणेश को चढ़ाया गया 1101 किलो का महालड्डू। 5 फीट ऊंचे और 4 फीट चौड़े लड्डू को 22 कारीगरों ने 6 दिन में तैयार किया। झांसी में शाही अंदाज में निकली बप्पा की प्रतिमा की विसर्जन यात्रा। महाराज के रूप में विराजमान हुए बप्पा, झूमते नजर आए भक्तों।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं दमदार जोड़ीदार की। जंग के अभ्यास में ये जोड़ी है भारत और अमेरिका की, जिसके 1200 सैनिक इन दिनों पाकिस्तान की सरहद के करीब बीकानेर में युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। दोनों देशों के जवान युद्ध या मिशन के लिए एक दूसरे का रण कौशल लगातार देख रहे हैं और सीख रहे हैं। इस अभ्यास में अपाचे जैसे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स के साथ अभी भी अभ्यास किया जा रहा है और आपसी तालमेल के साथ आसमान में जमीन तक दुश्मन को मार गिराने की रणनीति बनाई गई। आज आपको औली और बीकानेर में चल रहे इस युद्धाभ्यास की हैरतअंगेज तस्वीरें दिखाएंगे, धनुष और पिनाका का भी दमखम दिखाएंगे और इसके बाद बात होगी तरंग शक्ति 2.0 की, जिसका जोधपुर में 26 सितंबर से आगाज होने जा रहा है और जिसमें पहली बार अमेरिका का F-35 भी शामिल होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सरहद के करीब युद्धाभ्यास कर रहे दमदार जोड़ीदारों से। आसमान में अपाची की दहाड़ और जमीन पर पिनाका से रॉकेट की बरसात, यकीनन राजस्थान में ऐसी तस्वीरें दुश्मन देश को डरा रही होंगी। पर ये तस्वीरें हैं भारत और अमेरिका के संयुक्त युद्धाभ्यास की। बीकानेर में दोनों देशों के सैनिकों ने मिलकर हवा और जमीन की ताकत और आपसी

मेल को परखा, जहां अपाचे ने पिन पॉइंट फायरिंग से अपनी मारक क्षमता दिखाई, वहीं पर धनुष और पिनाका ने जमीनी ताकत का दमखम दिखाया। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में चल रहे इस अभ्यास में युद्ध की रणनीति, सर्विलांस और साझा कार्रवाई पर भी मंथन हुआ। रिपोर्ट देखिए।

0: से आंख मिलाते, अपनी शान बताते। जब परवाज भरता है, दिल दुश्मन का डरता है। हवा के पैरों पर पराक्रम का हस्ताक्षर है ये, अपाचे है ये। और इसकी ताकत की नुमाइश एक बार फिर हुई बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, जहां भारत और अमेरिका की फौज मिलकर युद्धाभ्यास कर रही है। देखिए हवा का टैंक कहा जाने वाला ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर कैसे पिन पॉइंट मार करता है। एक बार लक्ष्य तय हुआ तो बस समझिए कि दुश्मन गया। हेलीकॉप्टर से निकलती 30 mm गोलियों की रफ्तार देखिए और जमीन पर उनकी मार देखिए। गोलियों की आवाज से रेगिस्तान गूंज उठा और दूर कहीं लक्ष्य धुआं धुआं हो गया। युद्धाभ्यास 2026 में एविएशन की ताकत जोड़ते हुए भारतीय सेना के अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को शामिल किया गया। उसकी ताकत और कौशल को दोनों देशों के जवानों ने आजमाया और अपाचे ने अपनी खूबियां बता दी। करीब 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है इसकी और इसके नीचे लगी राइफल से एक बार में 30 mm की 1200 गोलियां भरी जा सकती है। फ्लाइंग रेंज करीब 550 किलोमीटर है और एक उड़ान में करीब 3 घंटे तक उड़ान भर सकता है अपाचे। कई तरह के मिसाइलों से लैस है ये हेलीकॉप्टर। दुनिया के सबसे एडवांस लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स में शुमार है और इसका युद्धाभ्यास में शामिल किया जाना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
1: पाकिस्तान की सीमा के नजदीक भारत और अमेरिका के सैनिक न सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमान में भी अपना रण कौशल दिखा रहे हैं। युद्धाभ्यास के दौरान टैक्टिकल ड्रिल्स के साथ साथ अब हवाई करतब भी देखने को मिल रहे हैं और साथ ही किस तरह से एक युद्ध में अपने एयर असेट्स का इस्तेमाल किया जाता है उस पर भी जोर दिया जा रहा है। और इसी कड़ी में भारतीय सेना ने अपने अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स के जरिए खास फायरिंग भी इस युद्धाभ्यास में की है। अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स जो भारत ने अमेरिका से ही लिए हैं, हाल ही में भारतीय सेना के एविएशन विंग का हिस्सा बने हैं और अब अमेरिका के सैनिक भारत में आकर इन एविएशन ड्रिल्स को देख रहे हैं और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि किस तरह से जमीन से लेकर आसमान तक एविएशन की बात हो या फिर तोप की बात हो, आर्टिलरी की बात हो, हर तरफ भारत का कौशल, भारत की स्किल और भारत के युद्ध में जो नई तकनीक है वो कैसे आगे बढ़ रही है और अमेरिका इससे सीख भी रहा है और इसे देख भी रहा है।
0: असल में अभ्यास के दौरान भारत और अमेरिका के सैनिकों ने एक मिशन की योजना बनाई और इसी के तहत जमीन पर मौजूद सैनिकों और हवा में उड़ान भर रहे अपाचे के बीच तालमेल बनाया गया। मकसद ये देखना था कि जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर और जमीनी सैनिक मिलकर कितनी तेजी से काम कर पाएंगे। इस तरह हवाई हमले और जमीनी कार्रवाई को साथ जोड़ने और साथ ही संपर्क बनाए रखने और टाइमिंग का अभ्यास किया गया। इस युद्धाभ्यास में भारतीय और अमेरिकी सैनिक एक दूसरे के रण कौशल को करीब से देख समझ रहे हैं। युद्ध के दौरान प्रक्रिया, संचार और तालमेल को बेहतर बनाया जा रहा है। जाहिर है कि इसमें सिर्फ जमीनी तैयारी नहीं बल्कि फोकस हवा और जमीन की ताकत के बीच तालमेल बनाने का है। और जहां तक बात जमीनी ताकत की है तो उन्हें इन धमाकों से समझा जा सकता है। जो M777 अल्ट्रा लाइट होवित्ज़र

0: धनुष 100 और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के हैं। अत्याधुनिक तकनीक वाले हथियार रणभूमि में दुश्मन के लिए काल हैं, जिनके सटीक इस्तेमाल का अभ्यास सरहद के पास किया गया। बला की तेजी के साथ तोप के गोले डाले गए और जब फायरिंग हुई तो पूरा इलाका धमाकों से गूंज उठा। अब जरा पिनाका की ताकत भी देख लीजिए। कमांड मिलते ही इसकी मल्टी बैरल लॉन्चर से कई रॉकेट लक्ष्य की ओर लपके। बीकानेर के इस रेतीले इलाके में भारतीय और अमेरिकी सैनिकों ने मिलकर एयर डिफेंस तोपों और एम लीज प्रणालियों को भी परखा। इस दौरान फायरिंग की योजना बनाई गई और उसमें आपसी तालमेल भी परखा गया। लेकिन भारत अमेरिका युद्धाभ्यास में फोकस कई और चीजों पर भी है। युद्ध या मिशन के दौरान सर्विलांस की रणनीति क्या हो, टोही अभियानों की तैयारी कैसी की जाए और इसमें ड्रोन्स का बेहतर तालमेल कैसे हो, इन सभी जरूरी मुद्दों पर दोनों देशों के सैनिक मंथन कर रहे हैं। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में दोनों सेनाओं के ऑब्जर्वेशन पोस्ट टुकड़ियों ने भी साथ मिलकर काम किया। लक्ष्य की पहचान करने के साथ एक्शन की रणनीति तय हुई। ये तस्वीरें भारत और अमेरिकी सैनिकों की ताकत और कौशल की नुमाइश है, लेकिन भारत और पाकिस्तान की सरहद के करीब ये युद्धाभ्यास दुश्मन के लिए एक संदेश भी है। आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच ये 22वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसकी शुरुआत 15 सितंबर को हुई। इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के 600-600 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: क्वाड देशों में शामिल भारत और अमेरिका के बीच सैन्य साझेदारी बहुत मजबूत है और ये युद्धाभ्यास दोनों देशों के आपसी विश्वास की पहचान है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब अमेरिका और भारत ने अभ्यास के लिए दो अलग अलग इलाकों को चुना है, एक तरफ उत्तराखंड का औली और दूसरी तरफ राजस्थान का बीकानेर। भारत के नजरिए से अगर हम देखें तो ये उत्तरी और पश्चिमी मोर्चे पर एक साथ दुश्मनों से निपटने की तैयारी है। रिपोर्ट देखिए।

दो देश, दो सेनाएं, दो अलग युद्ध क्षेत्र। एक तरफ बर्फीले पहाड़ है, वीरों की दहाड़ है, दूसरी ओर तपता रेगिस्तान है, युद्ध घमासान है। भारतीय जाबाज अमेरिकी सेना के साथ 22वीं बार युद्धाभ्यास करने उतरे हैं। पहली बार दो अलग अलग भूभागों पर एक साथ। एक अभ्यास उत्तराखंड की औली में फॉरेन ट्रेनिंग नोड और राजस्थान की महाजन फायरिंग रेंज में एक साथ चल रहा है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य पहाड़ी और अर्ध पहाड़ी क्षेत्रों में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की संयुक्त क्षमता को बढ़ाना है। यह अभ्यास सिर्फ पारंपरिक प्रशिक्षण नहीं है, बल्कि इसमें दोनों सेनाओं के विशेषज्ञ मल्टी डोमेन वॉरफेयर यानी कई क्षेत्रों में एक साथ युद्ध की उभरती तकनीकों पर विचार साझा कर रहे हैं। ये पहला मौका है जब भारत का इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप पहली बार किसी विदेशी सेना के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास में भाग ले रहा है। तो वहीं ये भी पहली बार हो रहा है जब अमेरिका ने अपनी 3 MDTF यानी थर्ड मल्टी डोमेन टास्क फोर्स को भारत के साथ इस साझा युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने भेजा है। ये फोर्स अंतरिक्ष, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और लंबी दूरी की मिसाइलों को एक साथ नियंत्रित करती है। अभ्यास के पहले हफ्ते में अमेरिकी और भारतीय सैनिकों ने एक दूसरे के हथियारों, नाइट विजन उपकरणों और अनमैन्ड सिस्टम्स का अध्ययन किया। सैनिकों ने एक दूसरे के राइफल्स और हथियारों को चलाने की तकनीकों और सुरक्षा प्रोटोकॉल पर चर्चा की। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में अमेरिका के सबसे एडवांस्ड मोबाइल काउंटर ड्रोन सिस्टम MILDS को तैनात कर पहली बार भारतीय सैनिकों को इसके संचालन का लाइव प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा रैम्पलिंग यानी हेलीकॉप्टरों और ऊंचाई वाले स्थानों से रस्सियों के सहारे नीचे उतरने का भी कड़ा अभ्यास इस एक हफ्ते की एक्टिविटीज में शामिल रहा। इसके अलावा दोनों सेनाओं ने संदिग्ध आतंकियों या दुश्मनों के ठिकानों को घेरने के लिए बिल्डिंग क्लीयरेंस और रूम इंटरवेंशन का

0: संयुक्त अभ्यास किया। रैपलिंग और रोम इंटरवेंशन के अभ्यासों से इंडियन आर्मी के ट्रेंड डॉग्स ने खास भूमिका निभाई। बता दें कि भारतीय सेना के 4 ट्रेंड डॉग्स राइस, विक्टर, जैक और राउडी युद्धाभ्यास 2026 में भाग ले रहे हैं। इन चारों में राउडी और विक्टर रामपुर हाउंड है, यानी भारत की अपनी स्वदेशी नस्ल। जैक बेल्जियन मेलिनोइस है और राइस लेब्राडोर रिटीवर। इन चारों की खूबियां अलग हैं, लेकिन मिशन एक, जवानों का साथ देना और खतरे को वक्त रहते पहचानना। क्योंकि जहां इंसान की नजरों की सीमा समाप्त होती है, इनकी सूंघने की ताकत कई बार छिपे खतरे तक पहुंचने में मदद करती है। यही वजह रही कि इन डॉग्स ने अमेरिकी सैनिकों के सामने रोम इंटरवेंशन और रैपलिंग में अपना दम दिखाया। खास तौर पर भारतीय नस्ल के रामपुर हाउंड, विक्टर और राउडी ने तो कमाल ही कर दिया। अभ्यास के दौरान इनकी फुर्ती, सूंघने की क्षमता और कठिन सामरिक परिस्थितियों में क्विक रिएक्शन को देखकर अमेरिकी सैनिक भी हैरान रह गए। ये ऑपरेशन अब तक इस युद्धाभ्यास की हाइलाइट्स में से एक रहा। आपको बता दें कि अपनी तमाम हाइलाइट्स और स्पष्ट उद्देश्यों से इतर इस युद्धाभ्यास को आयोजित करने के पीछे सबसे बड़े सामरिक और रणनीतिक संदेश है। उत्तराखंड का औली एलएसी यानी चीन सीमा से केवल 100 किलोमीटर की दूरी पर है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर अमेरिकी सैनिकों, विशेष रूप से अलास्का की 11वीं एयरबोर्न डिवीजन का भारतीय सेना के साथ अभ्यास करना, ये दिखाता है कि दोनों सेनाएं अत्यधिक ठंड और पहाड़ी इलाकों में मिलकर चीन के खिलाफ मोर्चा संभाल सकती हैं। जबकि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज का इलाका पाकिस्तान सीमा के बेहद करीब है। यहाँ हिमार्स, पिनाका रॉकेट और अपाचे हेलीकॉप्टरों से की जा रही लाइव फायरिंग ये साफ संदेश देती है कि भारत अमेरिका का रक्षा सहयोग केवल समुद्री क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि ये खल सीमा पर पूरी तरह सक्रिय है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और अब बात करते हैं तरंग शक्ति 2.0 की। जोधपुर का आसमान जल्द ही दुनिया के आधुनिक लड़ाकू विमानों की दहाड़ से गूंजने वाला है। भारतीय वायुसेना के बहुपक्षीय अभ्यास तरंग शक्ति 2.0 में 7 देशों की वायुसेना अपनी ताकत और तकनीक का प्रदर्शन करने जा रही हैं। लेकिन इस बार सबसे बड़ा आकर्षण अमेरिका का F-35 स्टेल्थ फाइटर होगा, जो भारत में पहली बार किसी सैन्य अभ्यास का हिस्सा बनने जा रहा है। राफेल, सुखोई, तेजस और F-16 जैसे फाइटर जेट्स भी इस हवाई शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा होने जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए।

0: आसमान में गरजते फाइटर जेट, रफ्तार से सहमी हवा, एक साथ देश और दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान। जल्दी ही जोधपुर में होने जा रहा है ऐसा शक्ति प्रदर्शन जिस पर पूरी दुनिया की नजर होगी, क्योंकि पहली बार भारतीय सैन्य अभ्यास में उतरने जा रहा है अमेरिका का F-35 स्टिल्थ फाइटर। भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े बहुपक्षीय हवाई अभ्यासों में शामिल तरंग शक्ति 2.0 की तैयारियां पूरी हो चुकी है। 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक जोधपुर एयरबेस पर होने वाले इस अभ्यास में 7 देश अपने एयरक्राफ्ट के साथ उतरेंगे। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और UAE अपनी हवाई क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। वहीं 32 देश ऑब्जर्वर के तौर पर अभ्यास को देखेंगे, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा निगाहें अमेरिका के F-35 पर होंगी। पांचवी पीढ़ी का यह स्टेल्थ फाइटर पहली बार भारत में किसी सैन्य अभ्यास का हिस्सा बनेगा। अमेरिका 6 F-35 के साथ पहुंचेगा। इसके अलावा 2 KC-135 भी अमेरिकी दल में शामिल होंगे। F-35 इससे पहले एरो इंडिया 2025 में भारत आ चुका है, लेकिन तरंग शक्ति में इसकी मौजूदगी पहली बार होगी।
1: F-35 के साथ हम पहले एक्सरसाइज कर चुके हैं, इंटरनेशनल एक्सरसाइज में हमने पार्ट लिया है, और उसमें 2 या 3 एक्सरसाइज में जो मुझे याद पड़ता है हमने F-35 के साथ एक्सरसाइज की, इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर।
0: भारत भी अपना स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर विकसित कर रहा है और इसके साथ जरूर

0: प्रभावी सपोर्ट सिस्टम, कौशल और तकनीकी क्षमता तैयार करने की भी योजना है। ऐसे में अमेरिकी F-35 की भारत में मौजूदगी मायने रखती है।
1: One is that we are developing our own fifth generation aircraft, AMCA, and Indian Air Force has put all its weight and all its technical capability, technical know-how behind it. The second aspect is we should be able to somehow detect it, and that capability is also we are developing.
2: Well, I think that is more than sufficient to know at this stage.
0: तरंग शक्ति में सिर्फ विदेशी विमानों की ताकत नहीं दिखेगी, भारतीय वायुसेना भी अपने प्रमुख लड़ाकू प्लेटफॉर्म मैदान में उतारेगी। राफेल, सुखोई 30 MKI, तेजस, मिराज 2000, जगुआर और मिग 29 जैसे विमान इस हवाई अभ्यास का हिस्सा होंगे। फ्रांस 7 राफेल, 3 A400M और 2 MRTT के साथ पहुंचेगा। UAE 6 F-16 और 1 ग्लोबल 6000 लाएगा। जर्मनी के 2 A400M, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के C-130, जबकि श्रीलंका का किंग एयर 350 भी शामिल होगा। इस पूरे अभ्यास की एक खासियत इसका इंटर ऑपरेबिलिटी वाला कॉन्स्ट्रक्ट है, यानी अलग अलग देशों की वायुसेनाएं साझा अभियानों में एक दूसरे के साथ काम करने की क्षमता परखेंगी। भारतीय वायुसेना के मुताबिक 65 देशों को न्योता दिया गया था, जिनमें से भागीदारी और ऑब्जर्वर की भूमिका अभ्यास की जरूरत के मुताबिक तय की गई। इस दौरान मित्र देशों की तकनीक, रणनीति, संचालन अनुभव और अलग अलग क्षमताओं से सीखने का मौका मिलेगा।
2: 10th अक्टूबर को हम लोग डिस्टिंग्विश विजिटर्स डे ऑर्गेनाइज करेंगे। अबाउट 10 चीफ्स और चीफ इक्विवेलेंट आर गोइंग टू टेक पार्ट एज पर द करेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद अस, and 31 other one level below will take part. We are doing a seminar here on 9th in Delhi only, and after that we are taking them to DV Day. It is called Distinguished Visitors Day. That will happen on 10th of October. So 10-11 chiefs I think will come. We will be able to confirm this when we are closer to the event.
0: जोधपुर में यह हवाई हलचल ऐसे वक्त होने जा रही है जब इसी एयरबेस पर भारत और जापान का वीर गार्जियन 2026 अभ्यास अभी खत्म हुआ है। 9 से 22 सितंबर तक चले इस अभ्यास में भारतीय राफेल, सुखोई 30 MKI और तेजस के साथ जापान के F-2A ने हिस्सा लिया। अब उसी आसमान में बहुराष्ट्रीय उड़ानों का नया दौर शुरू होगा, जहां अलग अलग देशों के लड़ाकू विमान साझा मिशनों के जरिए अपनी क्षमता और तालमेल को परखेंगे। दरअसल तरंग शक्ति की शुरुआत 2024 में हुई थी। पहला संस्करण 2 चरणों में सुलूर और जोधपुर में आयोजित किया गया था। सुलूर चरण में फ्रांस के राफेल, जर्मनी, स्पेन और ब्रिटेन के यूरोफाइटर टाइफून शामिल हुए थे। इसके बाद जोधपुर में ऑस्ट्रेलिया के EA-18G ग्रॉलर, ग्रीस और UAE के F-16 तथा अमेरिका के A-10 और F-16 जैसे विमान पहुंचे थे। अब इसमें तरंग शक्ति का दूसरा संस्करण पहले से कहीं ज्यादा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई मंच तैयार कर रहा है। एक तरफ पांचवी पीढ़ी का अमेरिकी F-35, दूसरी तरफ भारतीय राफेल, तेजस और सुखोई। जोधपुर का आसमान सिर्फ विमानों की उड़ान नहीं देखेगा, बल्कि अलग अलग वायुसेनाओं के साझा प्रशिक्षण, तालमेल और तकनीकी अनुभवों का गवाह बनेगा।
3: तरंग शक्ति 2026 यानी भारत की अपनी मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज शुरू हो रही है 26 सितंबर को। इसमें पूरी दुनिया की लगभग 40 वायुसेनाएं शामिल होंगी। 7 वायुसेनाएं जो अपने एयरक्राफ्ट लेकर, अपने फाइटर्स लेकर इस तरंग शक्ति का हिस्सा बनेगी। और अमेरिका का F-35 फाइटर पहली बार भारत की वायुसेना के साथ भारत में अपने युद्ध कौशल को दिखाएगा, और वो भी पाकिस्तान की सीमा के बेहद नजदीक। जोधपुर में शुरू होने वाली तरंग शक्ति में पूरी दुनिया के एयर पर्सनल होंगे और साथ ही वायुसेना प्रमुख भी इसका हिस्सा बनने वाले हैं। भारतीय वायुसेना लगातार अपने अलग अलग कौशल, अपने अलग अलग एयर टेक्निक्स और अपने ड्रिल्स को यहां पर साझा करेगी। साथ ही ये भी पैगाम देगी कि किस तरह से भारतीय वायुसेना लगातार दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वायुसेनाओं के साथ मिलकर इंटर ऑपरेबिलिटी की ट्रेनिंग कर रही है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान हो या फिर चीन, दोनों के लिए संदेश बिल्कुल साफ है कि भारत के साथ पूरी दुनिया की

तमाम वायु सेनाएं मित्र सेनाओं की तरह खड़ी हैं, अमेरिका हो या फिर रूस, तमाम देश एक साथ मिलकर इस तरंग शक्ति का हिस्सा बनेंगे और पाकिस्तान हो या चीन, दोनों के लिए ये एक

0: अनी शर्मा, गुड न्यूज स्टूडियो के लिए दिल्ली से।
1: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज स्टूडियो के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। बात करेंगे दिल्ली सरकार की एक ऐसी पहल की जो आस्था का सम्मान करने के साथ पर्यावरण की स्वच्छता के लिए भी बेहतर है। आपने अक्सर कहीं खंडित मूर्तियां यूं ही पड़ी हुई देखी होंगी, जहां पूजा की बिखरी सामग्रियों पर भी आपकी नजर जरूर पड़ी होगी। लेकिन अब दिल्ली में जगह जगह ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे ऐसी तस्वीरें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। खंडित मूर्तियों और पूजा सामग्रियों को सम्मान देने के लिए विशिष्ट केंद्र बनाए गए हैं।

0: आस्था और भक्ति का निर्वाह हर कोई अपने अपने तरीके से करता है। कोई घर में पूजा पाठ करता है तो कोई मंदिर जाकर। इसी तरह गणेशोत्सव से लेकर नवरात्र तक ऐसे कई विशेष धार्मिक अवसर होते हैं जिसमें पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ अल्प अवधि के लिए प्रतिमा स्थापित की जाती है। लोग पूरे विधि विधान के साथ उन मूर्तियों और पूजन सामग्रियों का विसर्जन भी करते हैं। इसके बाद भी जगह जगह पूजन सामग्री और खंडित मूर्तियां दिख जाती है। इसको लेकर दिल्ली सरकार ने अब एक ऐसी पहल की है जिससे त्योहार के समापन के बाद ही आस्था का सम्मान हो सके। दिल्ली में जगह जगह खंडित मूर्तियों और पूजा सामग्री के सम्मानजनक संग्रह के लिए केंद्र बनाए गए हैं, जहां लोग इनको लेकर पहुंच रहे हैं और वहां जमा कर रहे हैं।
1: बहुत बढ़िया सुविधा हो गई, नहीं तो ऐसे ही इधर उधर रखते हैं, कोई फायदा नहीं रहता ना, पाप ही चढ़ता है। अभी एक सुविधा हो गई, एक जगह बनी, वहाँ रख दिया, ना प्रदूषण हुआ ना कुछ हुआ। बहुत बढ़िया करा रेखा, अब हम थैला भर के लाए थे, हमने अपना पूरा कर दिया विसर्जन, तो हमारे लिए तो बेस्ट है।
2: 21st सेंचुरी में हमें थोड़ी अपनी थिंकिंग चेंज करनी चाहिए, गवर्नमेंट के साथ हमें स्टेप टू स्टेप से चलना चाहिए।
3: हमारी पूजनीय चीजें हैं और उनको फिर एक समय हमने उनको बहुत अच्छी तरह उनसे पूजा की और फिर आज इस कदर हम उन्हें छोड़ देते हैं कि भाई अब हमारे काम की नहीं रहे, अगर नहीं भी रहे तो उनका कम से कम सही तरीके से प्रवाहित हो जाए या जहां पर भी रखा जाए उनको ठीक तरीके से उनका विसर्जन हो जाए। ये वेरी अप्रिशिएटेड है दिल्ली सरकार की तरफ से, मच बेटर।
0: इन केंद्रों के होने से धार्मिक आस्था के सम्मान के साथ ही इससे जलवायु को साफ रखने में भी मदद मिलेगी।
4: देख सकते हैं तस्वीरें भी पहले दिखाऊंगी कि किस तरीके की चीजें आपको यहाँ पर नजर आने वाली है। अच्छा, जो सबसे ज्यादा नजर आएगा आपको कुछ इस तरीके के जो मूर्तियां भगवान की मूर्तियों पर जो चुनरी चढ़ती है, जो दुपट्टे चढ़ते हैं, वो आपको सबसे ज्यादा जो है वो यहाँ नजर आ जाएंगे। आपको इसमें सूखा नारियल जो है वो भी नजर आ जाएगा कि लोगों ने अब सूखे नारियल को जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है। इसके अलावा जो है आपको फूल जो है वो नजर आ जाएंगे, आपको मूर्तियां भी जो है इसमें नजर आ जाएगी। जितनी भी मंदिर की जो से जरूरत की जो चीजें होती है वो सभी चीजें जो है वो यहाँ नजर आने वाली है। सेंटर्स की जो बूथ है वो तैयार किए गए ताकि जितना भी जो खंडित मूर्ति है उसको जगह जगह फेंका ना जाए, वो इस तरीके से आकर जो है वो दान कर दी जाए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हर जगह आपको जो है इस तरीके की खंडित मूर्तियां जो है वो नजर आने वाली है और इसमें हर कोई जो है इस तरीके का पूजा का जितना भी सामग्री का सामान है वो यहाँ डाल सकते हैं, ना कि पेड़ों के नीचे। पीपल के पेड़ के नीचे लोग जो है अक्सर रख देते हैं, पार्क में रख देते हैं, तो वो चीज ना हो इस चीज का ध्यान में रखते हुए इस तरीके के सेंटर्स जो है वो दिल्ली में बनाए गए हैं।
0: इन केंद्रों में लाकर डाली गई खंडित मूर्तियां और पूजा सामग्रियों का बेहतर उपयोग किया जाएगा। सब सामान का वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल तरीके से निस्तारण और रिसाइकलिंग का काम किया जाएगा।
4: दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो इस तरीके के केंद्र बनाए गए और वहीं MCD आके ये सारा जितना भी कलेक्शन है वो लेकर जाएगी और उसके बाद इनको रिसाइकल भी जब किया जाएगा तो उसमें भी आस्था का जो है ध्यान रखा जाएगा। अगर हम मूर्तियों की बात करें तो उन मूर्तियों को रिसाइकल करके जो है ईंटें बनाई जाएगी और उन ईंटों का इस्तेमाल, उन ब्रिक्स का इस्तेमाल जो है वो वापस से किसी धार्मिक स्थल के निर्माण कार्य में जो है किया जाएगा। फिर चाहे वो मंदिर की बात हो या कोई भी रिलीजियस कुछ चीज़ बन रही होगी तो उसमें उन ईंटों का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं अगर हम सूखे फूलों की बात करें तो उन सूखे फूलों का इस्तेमाल जो है अगरबत्ती, धूप बत्ती, इन सब चीजों को बनाने में जो है किया जाएगा। तो इस तरीके से वेस्टेज ना हो, किसी तरीके से आस्था का अपमान ना हो, उस चीज का ध्यान दिल्ली सरकार रख रही हो।
0: दिल्ली में जगह जगह ऐसे 110 से अधिक

0: केंद्र बनाए गए हैं जहां पूजन सामग्री और खंडित मूर्तियां लोग जमा कर सकते हैं। इससे ये सब सामान ना पेड़ों के नीचे लावारिस पड़े रहेंगे, ना पार्कों में दिखाई देंगे और ना ही यमुना में कचरा बढ़ेगा। साथ ही खंडित मूर्तियों और पूजन सामग्रियों का सम्मान भी हो सकेगा और पर्यावरण को इससे फायदा भी। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: दिव्य और भव्य होगा दीपोत्सव 2026, 30 लाख दीपों से जगमगाएगी अयोध्या, 2100 ड्रोन शो से बढ़ेगा दीपोत्सव का आकर्षण। गुजरात के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी में चल रहे भादरवी महामेले में उमड़ रहा है जनसमूह, 3 दिन में पहुंचे 15 लाख से ज्यादा भक्त। नैनीताल में फूलों की बारिश के बीच कैलाश को रवाना हुई मां नंदा सुनंदा, हजारों नम आंखों ने दी विदाई, उमड़ा आस्था का सैलाब। वामन द्वादश पर बद्रीनाथ में धूमधाम से निकली भगवान उद्धव जी की डोली, माता मूर्ति महोत्सव में उमड़ा भक्तों का सैलाब। ठाकुर के गणेश टेकरी मंदिर में भगवान गणेश को चढ़ाया गया 1101 किलो का महालड्डू, 5 फीट ऊंचे और 4 फीट चौड़े लड्डू को 22 कारीगरों ने 6 दिन में तैयार किया। झांसी में शाही अंदाज में निकली बप्पा की प्रतिमा की विसर्जन यात्रा, महाराज के रूप में विराजमान हुए बप्पा, झूमते नजर आए भक्तों।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिलदेव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात गणेशोत्सव की। जब से गणेशोत्सव का शुभारंभ हुआ है, जीएनटी स्पेशल में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह पूरे देश में कितनी भव्यता, कितने उत्साह और आस्था के साथ भगवान गणेश का ये उत्सव मनाया जा रहा है। देश भर में शहर शहर सजे पंडालों में गजानन के एक से बढ़कर एक निराले रूप नजर आ रहे हैं। लेकिन गणेशोत्सव के बीच ही देश के अलग अलग कोनों में कई लोक पर्वों और त्योहारों को मनाने का सिलसिला भी जारी है। कल जहां देश, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में डोल ग्यारस यानी जल झूलनी एकादशी का पर्व मनाया गया, तो वहीं गुजरात के अंबाजी शक्तिपीठ में भादरवी महामेले का आयोजन जोर शोर से चल रहा है। गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर स्थित विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल अंबाजी में हर साल होने वाले भादरवी महामेले की धूम है। भादरवी महीने में नवमी से पूनम यानी 7 दिनों तक धूमधाम से मनाए जाने वाले मेले का श्री गणेश 21 सितंबर को हुआ था। माता जी का रथ खींचकर और मंदिर के पंडितों द्वारा शास्त्रों के अनुसार पूजा अर्चना और अनुष्ठान के साथ ये शुभारंभ हुआ और अब यहां भक्तों का सैलाब उमड़ा है। मां के धाम में भजन और गरबा के गीत साथ में गूंज रहे हैं। भादरवी महामेला अंबाजी शक्तिपीठ का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। गुजरात में भादरवी मेला तो राजस्थान और एमपी में जल झूलनी एकादशी की रौनक नजर आई। डोल ग्यारस का त्यौहार श्री कृष्ण के साथ जुड़ा है। जल झूलनी एकादशी की सबसे बड़ी विशेषता यहां होने वाले सामूहिक देव दर्शन है। इस दिन बाल कृष्ण स्वरूप को पालकियों में सवार करवाकर नगर भ्रमण पर ले जाने की परंपरा है। साल में एक बार शहर भर के मंदिरों के बाल विग्रह एक साथ पालकियों में विराजित करके श्रद्धालुओं के बीच आते हैं। ये नजारा कल कई शहरों में दिखाई दिया। तो चलिए उत्सवों की इन तमाम तस्वीरों के बीच ही अब आपको दिखाते हैं गणेशोत्सव की छटा और करवाते हैं यात्रा देश भर के सबसे अद्भुत और भव्य गणेश पंडालों की।
1: अद्भुत है, अनुपम है, अनन्य है। गणेशोत्सव के दिनों में गजानन के एक से एक अनोखे रूप साकार हो उठे हैं। आज बापा के अनोखे रूपों के अध्याय का श्री गणेश करते हैं उनके सबसे सजीले स्वरूप के साथ। मुंबई में ये दरबार है गिरगांव के राजा का। गिरगांव के राजा के दरबार को इस बार द्वारकाधीश थीम पर तैयार किया गया है और बापा यहाँ श्री कृष्ण के स्वरूप में विराजे हैं। बापा के इस स्वरूप की सबसे खास पहचान बन गई है उनके मस्तक पर सजा ये शानदार फेटा यानी पगड़ी। महाकाय के स्वरूप के हिसाब से उनकी ये पगड़ी भी विशालकाय है। इस भेटे की लंबाई लगभग 6 फीट और चौड़ाई करीब 5 फीट बताई जा रही है।
2: हर साल बिल्कुल एक ही तरह की थीम होती है, एक ही तरह का आकार होता है गणपति बप्पा का, लेकिन विशेष इस बार ये है कि श्री कृष्ण के रूप में देखे जा रहे हैं। बप्पा बहुत ज्यादा प्यारे और सुंदर तो लग ही रहे हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा जो बहुत ज्यादा देखने वाली चीज है उनका फेटा है। मुझे लगता है कि देश का यह सबसे बड़ा फेटा है जिसकी लंबाई कम से कम 6 फीट है, चौड़ाई कम से कम 5 फीट है। और इन्हें ही देखने के लिए, इनका दर्शन देखने के लिए दूर दराज से, मुंबई महाराष्ट्र से श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर पहुंचते हैं। खास बात यह है कि द्वारकाधीश का भी यहाँ पर थीम रखा गया है और कुछ चीजें ऐसी रखी गई हैं जो हूबहू द्वारका में देखी जा रही हैं। 99 साल मना रहा है ये पंडाल। खास बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी मन की बात में इस पंडाल का जिक्र किया था, तारीफ की थी और स्पेशली ये कहा था कि इको फ्रेंडली बप्पा हूँ।
1: आपको बता दें कि मराठी संस्कृति में फेटा सर्वोच्च सम्मान, अधिकार और राजसी वैभव का प्रतीक माना जाता है। भगवान गणेश को गणपति यानी गणों के स्वामी और नगराध्यक्ष यानी शहर के राजा के रूप में पूजा जाता है, जैसे किसी महान राजा का राज्य अभिषेक बिना मुकुट या पगड़ी के अधूरा है, वैसे ही बापा को फेटा पहनाकर भक्त उन्हें अपने जीवन और क्षेत्र के राजा के रूप में सम्मानित करते हैं। अब आपको दिखाते हैं मुंबई में ही सजा चंदनवाड़ी गणेश उत्सव मंडल का पंडाल। जहां बाप्पा का पंडाल केदारनाथ धाम की थीम पर तैयार किया गया है। पंडाल तो अनोखा है ही, यहां बाप्पा का स्वरूप भी खास है। यहां गौरी नंदन अपने वाहन मूषक को छोड़ पिता महादेव की सवारी नंदी महाराज पर विराजे है। एक हाथ में डमरू, दूसरे में त्रिशूल है। बर्फीले पहाड़ के बीच नंदी पर विराजे लगभग 28 फीट के बाप्पा का रूप अनोखा है। बाप्पा की प्रतिमा के पास ही भोलेनाथ का केदार स्वरूप भी स्थापित किया गया है।
2: इस वक्त मैं मौजूद हूं साउथ मुंबई में स्थित अखिल चंदन वाड़ी गणेश उत्सव पंडाल में, जहां के बप्पा गोड़ गणपति बप्पा के नाम से भी जाने जाते हैं। तस्वीरों में देखें किस तरीके से बहुत ही ज्यादा विशाल, बहुत ज्यादा भव्य नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बप्पा की जो हाइट है वो तकरीबन 28 फीट है और केदारनाथ के अवतार में यहां पर स्थापित हुए हैं। डेकोरेशन चलचित्र देखने के बाद भी ये पता चल पा रहा है कि केदारनाथ की पूरी थीम रखी हुई है। साथ ही साथ आपको बताएं कि जब आप मुख्य द्वार से बप्पा की तरफ आगे बढ़ते हैं तो बाकी के भी जो 11 शिवलिंग हैं वो वहां पर स्थापित किए गए हैं, जिसमें ओंकारेश्वर, उज्जैन के महाकाल, काशी, नासिक के त्र्यंबकेश्वर जैसे नाम शामिल हैं।
1: अब चलिए आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम, जहां समुद्र तट पर गणपति विराट स्वरूप में विराजे हैं। इस प्रतिमा की ऊंचाई 63 फीट है। बताया जा रहा है कि ये बाप्पा की सबसे ऊंची इको फ्रेंडली प्रतिमा है। गले में सजी है फूलों की सुंदर माला, माथे पर दमक रहा है तिलक, एक हाथ में धनुष और दूसरे हाथ से भक्तों को अभय का आशीर्वाद देते बाप्पा। यहाँ से प्रतिमा ही नहीं, बाप्पा के लिए 63 फीट ऊंचा भव्य पंडाल भी तैयार किया गया है। यानी जितनी ऊंची बाप्पा की प्रतिमा उतना ही विशाल उनका दरबार। इसे देखने और बाप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस विशाल प्रतिमा को कृष्णा जिले और आसपास के इलाकों के 1,00,000 से ज्यादा घरों से जुटाई गई मिट्टी से तैयार किया गया है। बता दें कि 63 फीट ऊंची इको फ्रेंडली महागणपति प्रतिमा ने इंटरनेशनल अचीवर्स बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाई है। गणेश उत्सव के दौरान मुंबई में भटवाड़ी के राजा भी आस्थावानों को शुभाशीष दे रहे हैं। भटवाड़ी चार राजा की प्रतिमा को कागज से तैयार किया गया है। इस बार ये पंडाल अपनी बेहद निराली और तकनीक थीम को लेकर सुर्खियों में है। दरअसल इस बार भटवाड़ी चा गणेश पंडाल को AI थीम पर तैयार किया गया है।
2: खास बात यह है कि इस बार भटवाड़ी के राजा की जो थीम है वो AI पे रखी गई है। जैसे कि किस तरीके से AI की हेल्प से मिसाइल अपने आप में एक बहुत बड़ा काम कर रही है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने क्या कुछ कहा है, कैसे उन्हें लोग फॉलो कर रहे हैं, और इसके अलावा विज्ञान में AI कितने अंदर तक डीप तक जा चुकी है।
1: यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का देश की तरक्की में कितना योगदान है, इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये तमाम चीजें पंडाल में लगे पोस्टर, बैनर और LED पर दिखाए जा रहे विशेष वीडियो पर श्रद्धालुओं को दिखाया जा रहा है। चलिए चंद्रपुर, जहां बाप्पा का ये अद्भुत दरबार सजा है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में यहां के श्री सिद्धि विनायक गणेश मंडल ने सांवलिया सेठ की थीम पर ये गणेश पंडाल सजाया है। एक ही प्रतिमा में खाटू के श्याम बाबा और चित्तौड़ के सांवलिया सेठ साथ दर्शन दे रहे हैं। एक ही प्रतिमा में दोनों आराध्य देवों की छवियों का समावेश इसे बेहद खास बना रहा है। बड़ी संख्या में भक्त यहां पहुंच रहे हैं और अपनी अर्जियां लगा रहे हैं।
3: जो सहारे के सहारे हैं, उनके पास अपनी अर्जी लगाई है और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पूरा विश्वास है उन पे कि मेरी जो लगाई हुई अर्जी है वो पूरी होगी और इन्होंने इस बार यहाँ पे बहुत अच्छा सेटअप किया है।
4: अर्जी लगाई है, अच्छा लगता है, बाबा शाम पर्ची पूरी करेंगे हमारी, यही भावना से आए हैं।
1: बड़ी संख्या में भक्त अपनी मनोकामना लेकर बाप्पा के इस दरबार में पहुंच रहे हैं और लाल कपड़े में नारियल बांधकर मोर पंख के साथ अपनी अर्जी लगा रहे हैं। इस पंडाल में खूबसूरत रोशनी और सजावट के जरिए राजस्थान के प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर की बारीकियों को बेहद खूबसूरती से दर्शाया गया है और भक्त भी उसी भाव के साथ यहां दर्शन को पहुंच रहे हैं। चंदरपुर में श्री कृष्ण का सांवलिया स्वरूप है तो वहीं मुंबई के पारसीवाड़ा में गणेश पंडाल को भगवान कृष्ण की दिव्य कथाओं यानी श्री कृष्ण लीला थीम पर तैयार किया गया है। पारसीवाड़ाचार राजा का पंडाल अपने 63वें साल में है। यहां बापा का स्वरूप तो भव्य है ही, लेकिन अब की बार इस पंडाल को भी बेहद खास तरीके से सजाया गया है। कान्हा के जन्म से लेकर महाभारत तक के प्रसंग इस पंडाल में चारों ओर नजर आ रहे हैं।
2: गणपति उत्सव में डेकोरेशन किस तरह से बनाया जाता है, उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है और कितने महीने लगते हैं, कितने लोग लगते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये मैं किसी राजमहल की एंट्री गेट आपको नहीं दिखा रहा, बल्कि एक ऐसा गणेश उत्सव पंडाल दिखा रहा हूँ जो इस तरीके से सजाया गया है। श्रद्धालु इस रास्ते से होते हुए सीधे भीतर की तरफ चलते हैं। दीवारें देखें इस तरह से बनाई गई हैं जैसे पौराणिक कथाओं की गान गा रही हो, और यहाँ से लोग आते हुए सीधे सबसे पहले श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं जिनका बाल स्वरूप यहाँ पर झूले में रखा गया है। तो इसी से ये बात मालूम पड़ रही है कि कहीं न कहीं थीम भी इनके आसपास ही है। भीतर की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से एक भव्य पंडाल यहाँ पर बनाया गया है और वाकई में महीनों मेहनत करने के बाद जो आर्टिस्ट हैं वो किस तरीके से रूप दे देते हैं एक पंडाल को, ये दिखाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। सबसे पहले तो आप देखें कि अच्छी खासी यहाँ पर जगह है और कितना ज्यादा मेहनत किया गया है। जहाँ भी आप देखें झूमर दिख रहा है और कुछ इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है, यानी कि श्रद्धालु जब यहाँ आते हैं तो आने के बाद बकायदा अच्छे दर्शन भी करते हैं। तमाम पदाधिकारी भी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं और अब सीधे गणपति बप्पा का दर्शन करें। पारसीवाड़ाचा महाराजा के नाम से मशहूर है, पास में ही सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और उसके बगल का ही ये पंडाल है। हर साल इसी तरीके से बप्पा को यहाँ पर बनाया जाता है, कोई बदलाव नहीं लाया जाता है। बड़े अस्तीले से बड़े प्यार से लोग यहाँ आते हैं और दर्शन करते हैं। पास में बहुत सारे यहाँ पर खिड़कियां के अनुसार पोस्टर एंड बैनर्स लगाए गए हैं जहां पर श्री कृष्ण की लीला दिखाई जाती है। थोड़ी ये तस्वीर देखें, ये भी एक बहुत बड़ी लीला है श्री कृष्ण जी की, और बचपन से जब वो जन्मे और जन्म से लेकर के इस युद्ध तक की जितनी भी कहानियां हैं वो सभी पोस्टर बैनर्स के जरिए श्रद्धालुओं तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है।
1: अब देखिए चंदरपुर में विराजे गजानन का अनोखा स्वरूप, एक हाथ में हल, दूसरे में बैलों की रस्सी, तन पर धोती कुर्ता और सिर पर गमछा, ये है विघ्नहर्ता का अन्नदाता अवतार जिसे बनाया है चंदरपुर के युवा गणेश मंडल ने। ये मंडल हर साल अलग अलग सामाजिक और जन जागृति विषयों को गणेश उत्सव की झांकियों के माध्यम से लोगों के सामने पेश करता है। इसी कड़ी में इस साल युवा गणेश मंडल ने किसान के रूप में बाप्पा की झांकी के जरिए अन्नदाता की मेहनत, संघर्ष और उसके दर्द को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है जिसे लोग खासा पसंद भी कर रहे हैं।
5: चंदरपुर के युवा गणेश मंडल में मौजूद है, यहाँ पर इस बार झांकी बनाई है, बेहद ही खास झांकी है, एक अलग थीम पर यहाँ पर झांकी बनाई गई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बाप्पा को किसान का रूप दिया गया है, किसान के रूप में बाप्पा यहाँ पर हल चलाते हुए नजर आ रहे हैं, खेती कर रहे हैं। यहाँ पर धान की खेती आपको नजर आएगी, बाप्पा हल जोत रहे हैं यहाँ पर अपने फसल के लिए, यहाँ पर वो बाप्पा मेहनत कर रहे हैं और दो यहाँ पर बैल भी आपको नजर आएंगे। मतलब पूरी जो यहाँ पर बाप्पा को किसान के रूप में दिखाने की कोशिश यहाँ पर मंडल की ओर से की गई है।
1: अब देखिए गणपति की वो झांकी जो अब से पहले आपने नहीं देखी होगी, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर 80 के दशक का ट्रेंड चल रहा है, सो इस गणेश पंडाल ने इसी थीम की झलक दिखाने की कोशिश की है। इस गणेश पंडाल में 80 के दशक के एक गांव की सुंदर तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई है। यहां गणपति दर्शन को आ रहे श्रद्धालुओं के दिलों में 80 के सादगी भरे दौर की यादें ताजा हो रही है। सिलबट्टे पर पिस्ता मसाला, कुएं से पानी भरती महिलाएं घर घर पहुंचा डाकिया, बायोस्कोप वाला ग्राम विद्यालय और पंचायत के दृश्यों को बापा के इस पंडाल में जीवंत किया गया है। ये वो दौर था जब गांवों में पेड़ के नीचे कुर्सी पर बैठकर मास्टर जी पढ़ाया करते थे और जब एक ही टीवी से पूरा मोहल्ला रामायण देखता था। जाहिर है इस पहल के जरिए आज की पीढ़ी को बीते वक्त की खुशनुमा यादों से जोड़ने की कोशिश की गई है। यहां आ रहे श्रद्धालु इसे काफी पसंद कर रहे हैं।
3: हमने 1980 के गणपति देखे, पुरानी यादें बहुत अच्छे से ताजा हुई और आज फिर वो 1980 के रील्स बनाने का ट्रेंड शुरू है सबका।
5: क्या क्या देखा आपने
3: या इसमें? यहाँ पे पुराना जो उनका बायोस्कोप से देखना, एक सरपंच के घर में रामायण चल रहा है, दैट इज एक ही टीवी होता था और सारा गांव बैठ के देखता था।
1: 80 के दशक का पंडाल खास है तो अकोला का ही ये हरा भरा पंडाल भी अनोखा है। यहाँ आस्था भक्ति के साथ ही प्रकृति की छवि को भी संजोया गया है। गजानन की प्रतिमा के इर्द गिर्द जंगल की सुंदर तस्वीर पेश की गई है। प्रकृति से सनातन संस्कृति का हमेशा से गहरा संबंध रहा है और यही इस हरे भरे पंडाल की थीम भी है। आज से नहीं, सदियों से साधु संत प्रकृति को पूजते आए हैं। धर्म आध्यात्म के जरिए समाज को पर्यावरण के संरक्षण का महत्व भी बताते आए हैं। अकोला के विप्र युवा वाहिनी गणेश मंडल ने इस बार घटते जंगल और बढ़ते शहरीकरण को अपनी झांकी का विषय बनाया है। तो वही वारंगल के एक भक्त ने बापा को न्याय मूर्ति के रूप में दिखा दिया है। इस पंडाल में बापा का कोर्ट रूम सजा हुआ है जहां बापा जज की कुर्सी पर विराजे हैं। काला कोट पहना है लेकिन सिर पर मुकुट भी सजा है। सामने न्याय का तराजू है और बापा फैसला सुनाने के अंदाज में बैठे हैं। बड़ी संख्या में भक्त बापा के इस स्वरूप के दर्शन करने पहुंच रहे हैं।

0: लेकिन मुंबई की इस पंडाल का तो कहना ही क्या। सांता क्रूज के इस पंडाल में गणपति बाप्पा स्वयं अपने बाप्पा महादेव के रूप में विराजे हैं। जटाओं में गंगा, गले में नाग, हाथ में डमरू, बाघम्बर और त्रिशूल, अनोखा है गजानन का ये स्वरूप।
1: इस समय मैं मौजूद हूँ मुंबई के सांता क्रूज इलाके में और यहाँ के सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल गौठन लेन बहुत ज्यादा चर्चित है अपने बप्पा की सुंदरता के कारण। आप भी खुद करें दर्शन। वाकई में जैसा सुना था वैसा यहाँ पर पाया है। शिवजी के रूप में गणपति बप्पा यहाँ के दरबार में पधारे हुए हैं और इनका दर्शन करने के लिए तमाम श्रद्धालु आसपास के पहुँच रहे हैं। खास बात यह है कि मुंबई का वेस्टर्न लाइन का सांता क्रूज इलाके का जो लोकल रेलवे स्टेशन है ठीक उसके 500 मीटर की दूरी पे ही यहाँ पर शिवजी के रूप में गणपति बप्पा विराजमान हैं। थोड़ा उनका पंडाल भी देखिए कितनी खूबसूरती से इसे सजाया गया है। बाहर भी कुछ दृश्य हैं, तस्वीरें हैं। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि हम आकर दिखाएं। गणपति बप्पा तक हर कोई पहुँच नहीं पाता, इस वजह से यहाँ पर एक छोटे गणपति बप्पा को भी हमेशा विराजमान किया जाता है। हर कोई बप्पा को दूर दर्शन करने के बाद इनके पग छूता है और जो भी इन्हें चढ़ाना होता है, अर्पण करना होता है, वो चढ़ाते हैं।
0: वही महाराष्ट्र के ही अमरावती में भक्तों ने ड्राई फ्रूट से बाप्पा का स्वरूप तैयार किया है। 31 किलो अंजीर और मखाने से बाप्पा की ये 7 फीट ऊंची इको फ्रेंडली प्रतिमा बनाई गई है। अमरावती के जय हिंद गणेश उत्सव पंडाल में पर्यावरण संरक्षण और जल बचत का संदेश देने के लिए इस साल बाप्पा के इस स्वरूप का सृजन किया गया। इस अनूठे प्रयोग के जरिए जल है तो कल है का संदेश दिया जा रहा है। इसी बीच गुजरात के अमरेली में गणपति के धनपति रूप के दर्शन हो रहे हैं। यहां भक्तों ने बाप्पा को करीब 25 लाख रुपए और अमेरिकी डॉलर से सजा दिया है। 20, 50, 100, 200 और 500 रुपए के नोटों से बाप्पा का मुकुट, हार, हाथ और पैर सजाए गए हैं। खास बात ये है कि 20 साल से गणपति महोत्सव आयोजन कर रहे सद्भावना ग्रुप ने पहली बार डॉलर से भी बाप्पा का श्रृंगार किया है। बाप्पा के इस अनोखे स्वरूप के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बाप्पा का कुछ ऐसा ही स्वरूप तेलंगाना में भी नजर आ रहा है। तेलंगाना के पलवंचा शहर में 2 अलग अलग पंडालों में भगवान गणेश की मूर्तियों को कुल 2,90,00,000 रुपए के असली करेंसी नोटों से सजाया गया है, जिसमें 1,40,00,000 रुपए के नोटों से बाप्पा को सजाया गया है। वही पूरे पंडाल को सजाने के लिए 10, 20, 50, 100, 200, 500 के नोटों का इस्तेमाल किया गया है। इस भव्य सजावट के लिए स्थानीय व्यापारियों ने आर्थिक योगदान दिया और बैंक कर्मचारियों ने नए नोट उपलब्ध कराने में मदद की। बाप्पा का माइक्रो स्वरूप भी जरा देख लीजिए। विग्रहहरता भगवान गणेश की ये ऐसी अद्भुत प्रदर्शनी है जहां बाप्पा कई अलग अलग साइज और अलग अलग स्वरूप में मौजूद है। लेकिन बाप्पा के इन स्वरूपों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि गणेश जी की इन मूर्तियों का आकार बहुत ही छोटा है। नासिक के सुनार भगवान दास खरोटे ने अलग अलग साइज की 291 सूक्ष्म सोने की गणेश मूर्तियां बनाई है। इनमें सबसे सूक्ष्म 3 मिलीमीटर से लेकर 1 इंच साइज तक की गणेश मूर्ति शामिल है। यहाँ गायक, तबला वादक, हारमोनियम वादक और वीणा वादक जैसे अलग अलग रूपों में छोटी सोने की गणेश मूर्तियां भी मौजूद है। इसके अलावा अष्ट विनायक, हेरम गणेश, मखारा में गणेश, कंबोडिया और इंडोनेशिया की सोने की गणेश मूर्तियों की रेप्लिका भी आपको यहां दिख जाएंगे। साथ ही बाली, जावा, मंगोलिया, सुमात्रा जैसे अलग अलग देशों से अलग अलग रूपों और साइज में गणेश की छोटी सोने की मूर्तियां भी मौजूद है।
2: चलिए इसी के साथ जेएनडी स्पेशल की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी और पॉजिटिव खबरें जा रही हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

दिल्ली में गणपति विसर्जन के लिए सरकार की ओर से तैयारियां की गई हैं। विसर्जन के लिए 81 जगहों पर आर्टिफिशियल तालाब बनाए गए हैं। तालाबों के आसपास सुरक्षा लाइट्स और मेडिकल फैसिलिटी का भी इंतजाम किया गया है। यहां श्रद्धालु सुरक्षित और आसानी से विसर्जन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने धार्मिक आस्था और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए 110 खंडित मूर्ति संग्रह केंद्र भी बनाए हैं।

0: देश भर में गणेशोत्सव की धूम है। इस बीच बापा के भक्तों के लिए गुड न्यूज आई है। दिल्ली में गणपति विसर्जन के लिए सरकार ने विशेष इंतजाम किए हैं। चाहे गणेश उत्सव हो या दशहरा, हर उत्सव के बाद देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ पूजा सामग्रियों का विसर्जन एक बड़ी समस्या होती है। दिल्ली सरकार ने इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने की कोशिश की है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि आस्था और पर्यावरण संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है, इसमें नागरिकों की भागीदारी जरूरी है।
1: एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इतने प्रेम से बाबा को घर लाते हो, भगवान की पूजा करते हो, तो कभी भी खंडित तस्वीर को, मूर्ति को ऐसे छोड़ के अनादर करते हुए नहीं आना है, उसको भी स्थान देना है।
0: दिल्ली सरकार की पहल के तहत पुरानी खंडित मूर्तियों और पूजा सामग्री के सम्मानजनक निस्तारण के लिए 110 जगहों पर विशेष संग्रह केंद्र बनाए गए हैं। ये पहल यमुना को प्रदूषण से बचाने में भी मददगार साबित होगी।
2: इस वक्त हम मौजूद है रोहिणी के सेक्टर 15 में, ठीक विद्या भारती स्कूल के बाहर, जहां पर आपको ये केंद्र जो है वो नजर आ जाएगा, ताकि लोग जो है वो अपने घर का जितना भी पूजा सामग्री का सामान है वो यहाँ पर आके जो है वो सामान वो जो है यहाँ पर रख सके। आप देख सकते हैं, तस्वीरें भी पहले दिखाऊंगी कि किस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर नजर आने वाली है। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा नजर आएगा आपको कुछ इस तरीके के जो मूर्तियाँ, भगवान की मूर्तियों पर जो चुनरी चढ़ती है, जो दुपट्टे चढ़ते हैं, वो आपको सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ नजर आ जाएंगे। आपको इसमें सूखा नारियल जो है वो भी नजर आ जाएगा कि लोगों ने अब सूखे नारियल को जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है। इसके अलावा जो है आपको फूल जो है वो नजर आ जाएंगे, आपको मूर्तियाँ भी जो है इसमें नजर आ जाएगी। जितनी भी मंदिर की जो से जरूरत की जो चीज़ें होती है वो सभी चीजें जो है वो यहाँ नजर आने वाली है।
0: अक्सर पुरानी या खंडित मूर्तियों और पूजा पाठ से संबंधित सामग्री को लेकर धार्मिक भावनाओं के कारण पेड़ों के नीचे, पार्कों, सड़क किनारे या दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर रख देते हैं। इससे एक ओर धार्मिक आस्था जुड़ी होती है, तो वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता और पर्यावरण से जुड़ी चुनौती भी सामने आती है। ऐसे में दिल्ली के लोग सरकार की नई पहल का दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं।
3: बहुत बढ़िया सुविधा हो गई, नहीं तो ऐसे ही इधर उधर रखते हैं, कोई फायदा नहीं रहता ना, पाप ही चढ़ता है। अभी एक सुविधा हो गई, एक जगह बनी, वहाँ रख दिया, ना प्रदूषण हुआ ना कुछ हुआ। बहुत बढ़िया करा रेखा, अभी हम थैला भर के लाए थे, हमने अपना पूरा कर दिया विसर्जन, तो हमारे लिए तो बेस्ट है।
0: दिल्ली में गणपति मूर्तियों के विसर्जन के लिए 81 जगहों पर आर्टिफिशियल तालाब बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं से मूर्ति विसर्जन केवल कृत्रिम तालाबों में ही करने को कहा गया है। गणेश विसर्जन की तैयारियों में सुरक्षा, स्वच्छता, लाइट, चिकित्सा, आपातकालीन व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन और पर्यावरणीय सुरक्षा जैसे पहलुओं को भी शामिल किया गया है। सरकार ने यमुना और दूसरे जल स्रोतों में मूर्ति, फूल माला या पूजा सामग्री डालने से मना किया है। श्रद्धालुओं को पर्यावरण अनुकूल मूर्तियों को प्राथमिकता देने और POP और हानिकारक रसायनों से बनी प्रतिमाओं से बचने की सलाह दी गई है। दिल्ली से मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
6: दिव्य और भव्य होगा दीपोत्सव 2026। 30 लाख दीपों से जगमगाएगी अयोध्या, 2100 ड्रोन शो से बढ़ेगा दीपोत्सव का आकर्षण। गुजरात के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी में चल रहे भादरवी महामेले में उमड़ रहा है जनसमूह, 3 दिन में पहुंचे 15 लाख से ज्यादा भक्त। नैनीताल में फूलों की बारिश के बीच कैलाश को रवाना हुई मां नंदा सुनंदा, हजारों नम आंखों ने दी विदाई, उमड़ा आस्था का सैलाब। वामन द्वादश पर बद्रीनाथ में धूमधाम से निकली भगवान उद्धव जी की डोली, माता मूर्ति महोत्सव में उमड़ा भक्तों का सैलाब। नागपुर के गणेश टेकरी मंदिर में भगवान गणेश को चढ़ाया गया 1101 किलो का महालड्डू। 5 फीट ऊंचे और 4 फीट चौड़े लड्डू को 22 कारीगरों ने 6 दिन में तैयार किया। झांसी में शाही अंदाज में निकली बप्पा की प्रतिमा की विसर्जन यात्रा। महाराज के रूप में विराजमान हुए बप्पा, झूमते नजर आए भक्तों।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं दमदार जोड़ीदार की। जंग के अभ्यास में ये जोड़ी है भारत और अमेरिका की, जिसके 1200 सैनिक इन दिनों पाकिस्तान की सरहद के करीब बीकानेर में युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। दोनों देशों के जवान युद्ध या मिशन के लिए एक दूसरे का रण कौशल लगातार देख रहे हैं और सीख रहे हैं। इस अभ्यास में अपाचे जैसे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स के साथ अभी भी अभ्यास किया जा रहा है और आपसी तालमेल के साथ आसमान में जमीन तक दुश्मन को मार गिराने की रणनीति बनाई गई। आज आपको औली और बीकानेर में चल रहे इस युद्धाभ्यास की हैरतअंगेज तस्वीरें दिखाएंगे। धनुष और पिनाका का भी दमखम दिखाएंगे और इसके बाद बात होगी तरंग शक्ति 2.0 की, जिसका जोधपुर में 26 सितंबर से आगाज होने जा रहा है और जिसमें पहली बार अमेरिका का F-35 भी शामिल होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सरहद के करीब युद्धाभ्यास कर रहे दमदार जोड़ीदारों से। आसमान में अपाची की दहाड़ और जमीन पर पिनाका से रॉकेट की बरसात, यकीनन राजस्थान में ऐसी तस्वीरें दुश्मन देश को डरा रही होंगी। पर ये तस्वीरें हैं भारत और अमेरिका के संयुक्त युद्धाभ्यास की। बीकानेर में दोनों देशों के सैनिकों ने मिलकर हवा और जमीन की ताकत और आपसी तालमेल को परखा। जहां अपाचे ने पिन पॉइंट फायरिंग से अपनी मारक क्षमता दिखाई, वहीं पर धनुष और पिनाका ने जमीनी ताकत का दमखम दिखाया। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में चल रहे इस अभ्यास में युद्ध की रणनीति, सर्विलांस और साझा कार्रवाई पर भी मंथन हुआ। रिपोर्ट देखिए।

0: से आंख मिलाते, अपनी शान बताते। जब परवाज भरता है, दिल दुश्मन का डरता है। हवा के पैरों पर पराक्रम का हस्ताक्षर है ये, अपाचे है ये। और इसकी ताकत की नुमाइश एक बार फिर हुई बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, जहां भारत और अमेरिका की फौज मिलकर युद्धाभ्यास कर रही है। देखिए हवा का टैंक कहा जाने वाला ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर कैसे पिन पॉइंट मार करता है। एक बार लक्ष्य तय हुआ तो बस समझिए कि दुश्मन गया। हेलीकॉप्टर से निकलती 30 mm गोलियों की रफ्तार देखिए और जमीन पर उनकी मार देखिए। गोलियों की आवाज से रेगिस्तान गूंज उठा और दूर कहीं लक्ष्य धुआं धुआं हो गया। युद्धाभ्यास 2026 में एविएशन की ताकत जोड़ते हुए भारतीय सेना के अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को शामिल किया गया। उसकी ताकत और कौशल को दोनों देशों के जवानों ने आजमाया और अपाचे ने अपनी खूबियां बता दी। करीब 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है इसकी और इसके नीचे लगी राइफल से एक बार में 30 mm की 1200 गोलियां भरी जा सकती हैं। फ्लाइंग रेंज करीब 550 किलोमीटर है और एक उड़ान में करीब 3 घंटे तक उड़ान भर सकता है अपाचे। कई तरह के मिसाइलों से लैस है ये हेलीकॉप्टर। दुनिया के सबसे एडवांस लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स में शुमार है और इसका युद्धाभ्यास में शामिल किया जाना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
1: पाकिस्तान की सीमा के नजदीक भारत और अमेरिका के सैनिक न सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमान में भी अपना रण कौशल दिखा रहे हैं। युद्धाभ्यास के दौरान टैक्टिकल ड्रिल्स के साथ साथ अब हवाई करतब भी देखने को मिल रहे हैं और साथ ही किस तरह से एक युद्ध में अपने एयर असेट्स का इस्तेमाल किया जाता है उस पर भी जोर दिया जा रहा है। और इसी कड़ी में भारतीय सेना ने अपने अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स के जरिए खास फायरिंग भी इस युद्धाभ्यास में की है। अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स जो भारत ने अमेरिका से ही लिए हैं, हाल ही में भारतीय सेना के एविएशन विंग का हिस्सा बने हैं और अब अमेरिका के सैनिक भारत में आकर इन एविएशन ड्रिल्स को देख रहे हैं और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि किस तरह से जमीन से लेकर आसमान तक एविएशन की बात हो या फिर तोप की बात हो, आर्टिलरी की बात हो, हर तरफ भारत का कौशल, भारत की स्किल और भारत के युद्ध में जो नई तकनीक है वो कैसे आगे बढ़ रही है और अमेरिका इससे सीख भी रहा है और इसे देख भी रहा है।
0: असल में अभ्यास के दौरान भारत और अमेरिका के सैनिकों ने एक मिशन की योजना बनाई और इसी के तहत जमीन पर मौजूद सैनिकों और हवा में उड़ान भर रहे अपाचे के बीच तालमेल बनाया गया। मकसद ये देखना था कि जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर और जमीनी सैनिक मिलकर कितनी तेजी से काम कर पाएंगे। इस तरह हवाई हमले और जमीनी कार्रवाई को साथ जोड़ने और साथ ही संपर्क बनाए रखने और टाइमिंग का अभ्यास किया गया। इस युद्धाभ्यास में भारतीय और अमेरिकी सैनिक एक दूसरे के रण कौशल को करीब से देख समझ रहे हैं। युद्ध के दौरान प्रक्रिया, संचार और तालमेल को बेहतर बनाया जा रहा है। जाहिर है कि इसमें सिर्फ जमीनी तैयारी नहीं बल्कि फोकस हवा और जमीन की ताकत के बीच तालमेल बनाने का है। और जहां तक बात जमीनी ताकत की है तो उन्हें इन धमाकों से समझा जा सकता है। जो M777 अल्ट्रा लाइट होवित्ज़र धनुष तो और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के हैं। अत्याधुनिक तकनीक वाले हथियार रणभूमि में दुश्मन के लिए काल हैं, जिनके सटीक इस्तेमाल का अभ्यास सरहद के पास किया गया। बड़ा की तेजी के साथ तोप के गोले डाले गए और जब फायरिंग हुई तो पूरा इलाका धमाकों से गूंज उठा। अब जरा पिनाका की ताकत भी देख लीजिए। कमांड मिलते ही इसकी मल्टी बैरल लॉन्चर से कई रॉकेट लक्ष्य की ओर लपके। बीकानेर के इस रेतीले इलाके में भारतीय और अमेरिकी सैनिकों ने मिलकर एयर डिफेंस तोपों और एम लीज प्रणालियों को भी परखा। इस दौरान फायरिंग की योजना बनाई गई और उसमें आपसी तालमेल भी परखा गया। लेकिन भारत अमेरिका युद्धाभ्यास में फोकस कई और चीजों पर भी है। युद्ध या मिशन के दौरान सर्विलांस की रणनीति क्या हो, टोही अभियानों की तैयारी कैसी की जाए और इसमें ड्रोन्स का बेहतर तालमेल कैसे हो, इन सभी जरूरी मुद्दों पर दोनों देशों के सैनिक मंथन कर रहे हैं। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में दोनों सेनाओं की ऑब्जर्वेशन पोस्ट टुकड़ियों ने भी साथ मिलकर काम किया। लक्ष्य की पहचान करने के साथ एक्शन की रणनीति तय हुई। ये तस्वीरें भारत और अमेरिकी सैनिकों की ताकत और कौशल की नुमाइश है, लेकिन भारत और पाकिस्तान की सरहद के करीब ये युद्धाभ्यास दुश्मन के लिए एक संदेश भी है। आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच ये 22वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसकी शुरुआत 15 सितंबर को हुई। इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के 600-600 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: क्वाड देशों में शामिल भारत और अमेरिका के बीच सैन्य साझेदारी बहुत मजबूत है और ये युद्धाभ्यास दोनों देशों के आपसी विश्वास की पहचान है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब अमेरिका और भारत ने अभ्यास के लिए दो अलग अलग इलाकों को चुना है, एक तरफ उत्तराखंड का औली और दूसरी तरफ राजस्थान का बीकानेर। भारत के नजरिए से अगर हम देखें तो ये उत्तरी और पश्चिमी मोर्चे पर एक साथ दुश्मनों से निपटने की तैयारी है। रिपोर्ट देखिए।

0: देश, दो सेनाएं, दो अलग युद्ध क्षेत्र। एक तरफ बर्फीले पहाड़ है, वीरों की दहाड़ है, दूसरी ओर तपता रेगिस्तान है, युद्ध घमासान है। भारतीय जाबाज अमेरिकी सेना के साथ 22वीं बार युद्धाभ्यास करने उतरे हैं। पहली बार दो अलग अलग भूभागों पर एक साथ। एक अभ्यास उत्तराखंड की औली में फॉरेन ट्रेनिंग नोड और राजस्थान की महाजन फायरिंग रेंज में एक साथ चल रहा है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य पहाड़ी और अर्ध पहाड़ी क्षेत्रों में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की संयुक्त क्षमता को बढ़ाना है। यह अभ्यास सिर्फ पारंपरिक प्रशिक्षण नहीं है, बल्कि इसमें दोनों सेनाओं के विशेषज्ञ मल्टी डोमेन वॉरफेयर यानी कई क्षेत्रों में एक साथ युद्ध की उभरती तकनीकों पर विचार साझा कर रहे हैं। ये पहला मौका है जब भारत का इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप पहली बार किसी विदेशी सेना के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास में भाग ले रहा है। तो वहीं ये भी पहली बार हो रहा है जब अमेरिका ने अपनी 3 MDTF यानी थर्ड मल्टी डोमेन टास्क फोर्स को भारत के साथ इस साझा युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने भेजा है। ये फोर्स अंतरिक्ष, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और लंबी दूरी की मिसाइलों को एक साथ नियंत्रित करती है। अभ्यास के पहले हफ्ते में अमेरिकी और भारतीय सैनिकों ने एक दूसरे के हथियारों, नाइट विजन उपकरणों और अनमैन्ड सिस्टम्स का अध्ययन किया। सैनिकों ने एक दूसरे के राइफल्स और हथियारों को चलाने की तकनीकों और सुरक्षा प्रोटोकॉल पर चर्चा की। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में अमेरिका के सबसे एडवांस्ड मोबाइल काउंटर ड्रोन सिस्टम MILDS को तैनात कर पहली बार भारतीय सैनिकों को इसके संचालन का लाइव प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा रैंपलिंग यानी हेलीकॉप्टरों और ऊंचाई वाले स्थानों से रस्सियों के सहारे नीचे उतरने का भी कड़ा अभ्यास इस एक हफ्ते की एक्टिविटीज में शामिल रहा। इसके अलावा दोनों सेनाओं ने संदिग्ध आतंकियों या दुश्मनों के ठिकानों को घेरने के लिए बिल्डिंग क्लीयरेंस और रोम इंटरवेंशन का संयुक्त अभ्यास किया। रैपलिंग और रोम इंटरवेंशन के अभ्यासों से इंडियन आर्मी के ट्रेंड डॉग्स ने खास भूमिका निभाई। बता दें कि भारतीय सेना के 4 ट्रेंड डॉग्स राइस, विक्टर, जैक और राउडी युद्धाभ्यास 2026 में भाग ले रहे हैं। इन चारों में राउडी और विक्टर रामपुर हाउंड है यानी भारत की अपनी स्वदेशी नस्ल, जैक बेल्जियन मेलिनोइस है और राइस लेब्राडोर रिट्रीवर। इन चारों की खूबियां अलग हैं, लेकिन मिशन एक, जवानों का साथ देना और खतरे को वक्त रहते पहचानना। क्योंकि जहां इंसान की नजरों की सीमा समाप्त होती है, इनकी सूंघने की ताकत कई बार छिपे खतरे तक पहुंचने में मदद करती है। यही वजह रही कि इन डॉग्स ने अमेरिकी सैनिकों के सामने रोम इंटरवेंशन और रैपलिंग में अपना दम दिखाया। खास तौर पर भारतीय नस्ल के रामपुर हाउंड, विक्टर और राउडी ने तो कमाल ही कर दिया। अभ्यास के दौरान इनकी फुर्ती, सूंघने की क्षमता और कठिन सामरिक परिस्थितियों में क्विक रिएक्शन को देखकर अमेरिकी सैनिक भी हैरान रह गए। ये ऑपरेशन अब तक इस युद्धाभ्यास की हाइलाइट्स में से एक रहा। आपको बता दें कि अपनी तमाम हाइलाइट्स और स्पष्ट उद्देश्यों से इतर इस युद्धाभ्यास को आयोजित करने के पीछे सबसे बड़े सामरिक और रणनीतिक संदेश है। उत्तराखंड का औली LSE यानी चीन सीमा से केवल 100 किलोमीटर की दूरी पर है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर अमेरिकी सैनिकों, विशेष रूप से अलास्का की 11वीं एयरबोर्न डिवीजन का भारतीय सेना के साथ अभ्यास करना ये दिखाता है कि दोनों सेनाएं अत्यधिक ठंड और पहाड़ी इलाकों में मिलकर चीन के खिलाफ मोर्चा संभाल सकती हैं। जबकि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज का इलाका पाकिस्तान सीमा के बेहद करीब है। यहाँ हिमार्स, पिनाका रॉकेट और अपाचे हेलीकॉप्टरों से की जा रही लाइव फायरिंग ये साफ संदेश देती है कि भारत अमेरिका का रक्षा सहयोग केवल समुद्री क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि ये खल सीमा पर पूरी तरह सक्रिय है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और अब बात करते हैं तरंग शक्ति 2.0 की। जोधपुर का आसमान जल्द ही दुनिया के आधुनिक लड़ाकू विमानों की दहाड़ से गूंजने वाला है। भारतीय वायुसेना के बहुपक्षीय अभ्यास तरंग शक्ति 2.0 में 7 देशों की वायुसेना अपनी ताकत और तकनीक का प्रदर्शन करने जा रही हैं। लेकिन इस बार सबसे बड़ा आकर्षण अमेरिका का F-35 स्टेल्थ फाइटर होगा, जो भारत में पहली बार किसी सैन्य अभ्यास का हिस्सा बनने जा रहा है। राफेल, सुखोई, तेजस और F-16 जैसे फाइटर जेट्स भी इस हवाई शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा होने जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए।

0: आसमान में गरजते फाइटर जेट, रफ्तार से सहमी हवा, एक साथ देश और दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान। जल्दी ही जोधपुर में होने जा रहा है ऐसा शक्ति प्रदर्शन जिस पर पूरी दुनिया की नजर होगी, क्योंकि पहली बार भारतीय सैन्य अभ्यास में उतरने जा रहा है अमेरिका का F-35 स्टिल्थ फाइटर। भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े बहुपक्षीय हवाई अभ्यासों में शामिल तरंग शक्ति 2.0 की तैयारियां पूरी हो चुकी है। 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक जोधपुर एयरबेस पर होने वाले इस अभ्यास में 7 देश अपने एयरक्राफ्ट के साथ उतरेंगे। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और UAE अपनी हवाई क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। वहीं 32 देश ऑब्जर्वर के तौर पर अभ्यास को देखेंगे, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा निगाहें अमेरिका के F-35 पर होंगी। पांचवी पीढ़ी का यह स्टेल्थ फाइटर पहली बार भारत में किसी सैन्य अभ्यास का हिस्सा बनेगा। अमेरिका 6 F-35 के साथ पहुंचेगा। इसके अलावा 2 KC-135 भी अमेरिकी दल में शामिल होंगे। F-35 इससे पहले एरो इंडिया 2025 में भारत आ चुका है, लेकिन तरंग शक्ति में इसकी मौजूदगी पहली बार होगी।
1: F-35 के साथ हम पहले एक्सरसाइज कर चुके हैं, इंटरनेशनल एक्सरसाइज में हमने पार्ट लिया है, और उसमें 2 या 3 एक्सरसाइज में जो मुझे याद पड़ता है हमने F-35 के साथ एक्सरसाइज की, इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर।
0: भारत भी अपना स्वदेशी 5th generation फाइटर विकसित कर रहा है और इसके साथ जरूरी सपोर्ट सिस्टम, कौशल और तकनीकी क्षमता तैयार करने की भी योजना है। ऐसे में अमेरिकी F-35 की भारत में मौजूदगी मायने रखती है।
2: One is that we are developing our own 5th generation aircraft, AMCA, and Indian Air Force has put all its weight and all its technical capability, technical know-how behind it. The second aspect is we should be able to somehow detect it, and that capability is also we are developing.
1: Well, I think that is more than sufficient to know at this stage.
0: तरंग शक्ति में सिर्फ विदेशी विमानों की ताकत नहीं दिखेगी, भारतीय वायुसेना भी अपने प्रमुख लड़ाकू प्लेटफॉर्म मैदान में उतारेगी। राफेल, सुखोई 30 MKI, तेजस, मिराज 2000, जगुआर और MiG-29 जैसे विमान इस हवाई अभ्यास का हिस्सा होंगे। फ्रांस 7 राफेल, 3 A400M और 2 MRTT के साथ पहुंचेगा। UAE 6 F-16 और 1 ग्लोबल 6000 लाएगा। जर्मनी के 2 A400M, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के C-130, जबकि श्रीलंका का किंग एयर 350 भी शामिल होगा। इस पूरे अभ्यास की एक खासियत इसका इंटर ऑपरेबिलिटी वाला कॉन्स्ट्रक्ट है, यानी अलग अलग देशों की वायुसेना साझा अभियानों में एक दूसरे के साथ काम करने की क्षमता परखेंगी। भारतीय वायुसेना के मुताबिक 65 देशों को न्योता दिया गया था, जिनमें से भागीदारी और ऑब्जर्वर की भूमिका अभ्यास की जरूरत के मुताबिक तय की गई। इस दौरान मित्र देशों की तकनीक, रणनीति, संचालन अनुभव और अलग अलग क्षमताओं से सीखने का मौका मिलेगा।
1: 10 अक्टूबर को हम लोग डिस्टिंग्विश्ड विजिटर्स डे ऑर्गेनाइज करेंगे। अबाउट 10 चीफ्स और चीफ इक्विवेलेंट आर गोइंग टू टेक पार्ट एज पर द करेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद अस, एंड 31 अदर वन लेवल बिलो विल टेक पार्ट। वी आर डूइंग अ सेमिनार हियर ऑन 9th इन दिल्ली ओनली, एंड आफ्टर दैट वी आर टेकिंग देम टू DV डे, इट इज कॉल्ड डिस्टिंग्विश्ड विजिटर्स डे, दैट विल हैपन ऑन 10th ऑफ अक्टूबर। सो 10-11 चीफ्स आई थिंक विल कम, वी विल बी एबल टू कन्फर्म दिस व्हेन वी आर क्लोजर टू द इवेंट।
0: जोधपुर में यह हवाई हलचल ऐसे वक्त होने जा रही है जब इसी एयरबेस पर भारत और जापान का वीर गार्जियन 2026 अभ्यास अभी खत्म हुआ है। 9 से 22 सितंबर तक चले इस अभ्यास में भारतीय राफेल, सुखोई 30 MKI और तेजस के साथ जापान के F2A ने हिस्सा लिया। अब उसी आसमान में बहुराष्ट्रीय उड़ानों का नया दौर शुरू होगा, जहां अलग अलग देशों के लड़ाकू विमान साझा मिशनों के जरिए अपनी क्षमता और तालमेल को परखेंगे। दरअसल तरंग शक्ति की शुरुआत 2024 में हुई थी। पहला संस्करण दो चरणों में सुलूर और जोधपुर में आयोजित किया गया था। सुलूर चरण में फ्रांस के राफेल, जर्मनी, स्पेन और ब्रिटेन के यूरोफाइटर टाइफून शामिल हुए थे। इसके बाद जोधपुर में ऑस्ट्रेलिया के EA-18G ग्रॉलर, ग्रीस और UAE के F-16 तथा अमेरिका के A-10 और F-16 जैसे विमान पहुंचे थे। अब इसमें तरंग शक्ति का दूसरा संस्करण पहले से कहीं ज्यादा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई मंच तैयार कर रहा है। एक तरफ पांचवी पीढ़ी का अमेरिकी F-35, दूसरी तरफ भारतीय राफेल, तेजस और सुखोई। जोधपुर का आसमान सिर्फ विमानों की उड़ान नहीं देखेगा, बल्कि अलग अलग वायु सेनाओं के साझा प्रशिक्षण, तालमेल और तकनीकी अनुभवों का गवाह बनेगा।
3: तरंग शक्ति 2026 यानी भारत की अपनी मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज शुरू हो रही है 26 सितंबर को। इसमें पूरी दुनिया की लगभग 40 वायुसेनाएं शामिल होंगी। 7 वायुसेनाएं जो अपने एयरक्राफ्ट लेकर, अपने फाइटर्स लेकर इस तरंग शक्ति का हिस्सा बनेगी। और अमेरिका का F-35 फाइटर पहली बार भारत की वायुसेना के साथ भारत में अपने युद्ध कौशल को दिखाएगा, और वो भी पाकिस्तान की सीमा के बेहद नजदीक। जोधपुर में शुरू होने वाली तरंग शक्ति में पूरी दुनिया के एयर पर्सनल होंगे और साथ ही वायुसेना प्रमुख भी इसका हिस्सा बनने वाले हैं। भारतीय वायुसेना लगातार अपने अलग अलग कौशल, अपने अलग अलग एयर टेक्निक्स और अपने ड्रिल्स को यहां पर साझा करेगी। साथ ही ये भी पैगाम देगी कि किस तरह से भारतीय वायुसेना लगातार दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वायुसेनाओं के साथ मिलकर इंटर ऑपरेबिलिटी की ट्रेनिंग कर रही है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान हो या फिर चीन, दोनों के लिए संदेश बिल्कुल साफ है कि भारत के साथ पूरी दुनिया की तमाम वायुसेनाएं मित्र सेनाओं की तरह खड़ी हैं। अमेरिका हो या फिर रूस, तमाम देश एक साथ मिलकर इस तरंग शक्ति का हिस्सा बनेंगे, और पाकिस्तान हो या चीन, दोनों के लिए ये एक कड़ा संदेश भी साबित होगा। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ शिवानी शर्मा, गुड न्यूज स्टूडियो के लिए दिल्ली से।
4: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज स्टूडियो के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। बात करेंगे दिल्ली सरकार की एक ऐसी पहल की जो

0: आस्था और भक्ति का निर्वाह हर कोई अपने अपने तरीके से करता है। कोई घर में पूजा पाठ करता है तो कोई मंदिर जाकर। इसी तरह गणेशोत्सव से लेकर नवरात्र तक ऐसे कई विशेष धार्मिक अवसर होते हैं जिसमें पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ अल्प अवधि के लिए प्रतिमाएं स्थापित की जाती है। लोग पूरे विधि विधान के साथ उन मूर्तियों और पूजन सामग्रियों का विसर्जन भी करते हैं। इसके बाद भी जगह जगह पूजन सामग्री और खंडित मूर्तियां दिख जाती है। इसको लेकर दिल्ली सरकार ने अब एक ऐसी पहल की है जिससे त्योहार के समापन के बाद भी आस्था का सम्मान हो सके। दिल्ली में जगह जगह खंडित मूर्तियों और पूजा सामग्री के सम्मानजनक संग्रह के लिए केंद्र बनाए गए हैं, जहां लोग इनको लेकर पहुंच रहे हैं और वहां जमा कर रहे हैं।
1: बहुत बढ़िया सुविधा हो गई, नहीं तो ऐसे ही इधर उधर रखते हैं, कोई फायदा नहीं रहता ना, पाप ही चढ़ता है। अभी एक सुविधा हो गई, एक जगह बनी वहाँ रख दिया, ना प्रदूषण हुआ ना कुछ हुआ, बहुत बढ़िया करा रेखा। अब हम थैला भर के लाए थे, हमने अपना पूरा कर दिया विसर्जन, तो हमारे लिए तो बेस्ट है।
2: 21st सेंचुरी में हमें थोड़ी अपनी थिंकिंग चेंज करनी चाहिए, गवर्नमेंट के साथ हमें स्टेप टू स्टेप से चलना चाहिए।
3: हमारी पूजनीय चीजें हैं और उनको फिर एक समय हमने उनको बहुत अच्छी तरह उनसे पूजा की और फिर आज इस कदर हम उन्हें छोड़ देते हैं कि भाई अब हमारे काम की नहीं रहे, अगर नहीं भी रहे तो उनका कम से कम सही तरीके से प्रवाहित हो जाए या जहां पर भी रखा जाए उनको ठीक तरीके से उनका विसर्जन हो जाए। ये वेरी अप्रिशिएटेड है दिल्ली सरकार की तरफ से, मच बेटर।
0: इन केंद्रों के होने से धार्मिक आस्था के सम्मान के साथ ही इससे जलवायु को साफ रखने में भी मदद मिलेगी।
4: देख सकते हैं तस्वीरें वाले दिखाऊंगी कि किस तरीके की चीजें आपको यहाँ पर नजर आने वाली है। अच्छा, जो सबसे ज्यादा नजर आएगा आपको कुछ इस तरीके के जो मूर्तियां भगवान की मूर्तियों पर जो चुनरी चढ़ती है, जो दुपट्टे चढ़ते हैं, वो आपको सबसे ज्यादा जो है वो यहाँ नजर आ जाएंगे। आपको इसमें सूखा नारियल जो है वो भी नजर आ जाएगा कि लोगों ने अब सूखे नारियल को जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है। इसके अलावा जो है आपको फूल जो है वो नजर आ जाएंगे, आपको मूर्तियां भी जो है इसमें नजर आ जाएगी। जितनी भी मंदिर की जो से जरूरत की जो चीजें होती है वो सभी चीजें जो है वो यहाँ नजर आने वाली है। सेंटर्स की जो बूथ है वो तैयार किए गए ताकि जितना भी जो खंडित मूर्ति है उसको जगह जगह फेंका ना जाए, वो इस तरीके से आकर जो है वो दान कर दी जाए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हर जगह आपको जो है इस तरीके के खंडित मूर्तियां जो है वो नजर आने वाली है और इसमें हर कोई जो है इस तरीके का पूजा का जितना भी सामग्री का सामान है वो यहाँ डाल सकते हैं, ना कि पेड़ों के नीचे। पीपल के पेड़ के नीचे लोग जो है अक्सर रख देते हैं, पार्क में रख देते हैं, तो वो चीज ना हो इस चीज का ध्यान में रखते हुए इस तरीके के सेंटर्स जो है वो दिल्ली में बनाए गए हैं।
0: इन केंद्रों में लाकर डाली गई खंडित मूर्तियां और पूजा सामग्रियों का बेहतर उपयोग किया जाएगा। सब सामान का वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल तरीके से निस्तारण और रिसाइकलिंग का काम किया जाएगा।
4: दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो इस तरीके के केंद्र बनाए गए और वहीं एमसीडी आके ये सारा जितना भी कलेक्शन है वो लेकर जाएगी और उसके बाद इनको रिसाइकल भी जब किया जाएगा तो उसमें भी आस्था का जो है ध्यान रखा जाएगा। अगर हम मूर्तियों की बात करें तो उन मूर्तियों को रिसाइकल करके जो है ईंटें बनाई जाएगी और उन ईंटों का इस्तेमाल, उन ब्रिक्स का इस्तेमाल जो है वो वापस से किसी धार्मिक स्थल के निर्माण कार्य में जो है किया जाएगा। फिर चाहे वो मंदिर की बात हो या कोई भी रिलीजियस कुछ चीज़ बन रही होगी तो उसमें उन ईंटों का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं अगर हम सूखे फूलों की बात करें तो उन सूखे फूलों का इस्तेमाल जो है अगरबत्ती, धूप बत्ती, इन सब चीजों को बनाने में जो है किया जाएगा। तो इस तरीके से वेस्टेज ना हो, किसी तरीके से आस्था का अपमान ना हो, उस चीज का ध्यान दिल्ली सरकार रख रही हो।
0: दिल्ली में जगह जगह ऐसे 110 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं जहां पूजन सामग्री और खंडित मूर्तियां लोग जमा कर सकते हैं। इससे ये सब सामान ना पेड़ों के नीचे लावारिस पड़े रहेंगे, ना पार्कों में दिखाई देंगे और ना ही यमुना में कचरा बढ़ेगा। साथ ही खंडित मूर्तियों और पूजन सामग्रियों का सम्मान भी हो सकेगा और पर्यावरण को इससे फायदा भी। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: दिव्य और भव्य होगा दीपोत्सव, दीपोत्सव का आकर्षण। गुजरात के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी में चल रहे भादरवी महामेले में उमड़ रहा है जनसमूह, 3 दिन में पहुंचे 15 लाख से ज्यादा भक्त। नैनीताल में फूलों की बारिश के बीच कैलाश को रवाना हुई मां नंदा सुनंदा, हजारों नम आंखों ने दी विदाई, उमड़ा आस्था का सैलाब। वामन द्वादश पर बद्रीनाथ में धूमधाम से निकली भगवान उद्धव जी की डोली, माता मूर्ति महोत्सव में उमड़ा भक्तों का सैलाब। नागपुर के गणेश टेकरी मंदिर में भगवान गणेश को चढ़ाया गया 1101 किलो का महालड्डू, 5 फीट ऊंचे और 4 फीट चौड़े लड्डू को 22 कारीगरों ने 6 दिन में तैयार किया। झांसी में शाही अंदाज में निकली बप्पा की प्रतिमा की विसर्जन यात्रा, महाराज के रूप में विराजमान हुए बप्पा, झूमते नजर आए भक्तों।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात गणेशोत्सव की। जब से गणेशोत्सव का शुभारंभ हुआ है, जीएनटी स्पेशल में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह पूरे देश में कितनी भव्यता, कितने उत्साह और आस्था के साथ भगवान गणेश का ये उत्सव मनाया जा रहा है। देश भर में शहर शहर सजे पंडालों में गजानन के एक से बढ़कर एक निराले रूप नजर आ रहे हैं। लेकिन गणेशोत्सव के बीच ही देश के अलग अलग कोनों में कई लोक पर्वों और त्योहारों को मनाने का सिलसिला भी जारी है। कल जहां देश, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में डोल ग्यारस यानी जल झूलनी एकादशी का पर्व मनाया गया, तो वहीं गुजरात के अंबाजी शक्तिपीठ में भादरवी महामेले का आयोजन जोर शोर से चल रहा है। गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर स्थित विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल अंबाजी में हर साल होने वाले भादरवी महामेले की धूम है। भादरवी महीने में नवमी से पूनम यानी 7 दिनों तक धूमधाम से मनाए जाने वाले मेले का श्री गणेश 21 सितंबर को हुआ था। माता जी का रथ खींच कर मंदिर के पंडितों द्वारा शास्त्रों के अनुसार पूजा अर्चना और अनुष्ठान के साथ ये शुभारंभ हुआ और अब यहां भक्तों का सैलाब उमड़ा है। मां के धाम में भजन और गरबा के गीत साथ में गूंज रहे हैं। भादरवी महामेला अंबाजी शक्तिपीठ का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। गुजरात में भादरवी मेला तो राजस्थान और एमपी में जल झूलनी एकादशी की रौनक नजर आई। डोल ग्यारस का त्यौहार श्री कृष्ण के साथ जुड़ा है। जल झूलनी एकादशी की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ होने वाले सामूहिक देव दर्शन है। इस दिन बालकृष्ण स्वरूप को पालकियों में सवार करवा कर नगर भ्रमण पर ले जाने की परंपरा है। साल में एक बार शहर भर के मंदिरों के बाल विग्रह एक साथ पालकियों में विराजित करके श्रद्धालुओं के बीच आते हैं। ये नजारा कल कई शहरों में दिखाई दिया, तो चलिए उत्सवों की इन तमाम तस्वीरों के बीच ही अब आपको दिखाते हैं गणेशोत्सव की छटा और करवाते हैं यात्रा देश भर के सबसे अद्भुत और भव्य गणेश पंडालों की।
1: अद्भुत है, अनुपम है, अनन्य है। गणेशोत्सव के दिनों में गजानन के एक से एक अनोखे रूप साकार हो उठे हैं। आज बापा के अनोखे रूपों के अध्याय का श्री गणेश करते हैं उनके सबसे सजीले स्वरूप के साथ। मुंबई में ये दरबार है गिरगांव के राजा का। गिरगांव के राजा के दरबार को इस बार द्वारकाधीश थीम पर तैयार किया गया है और बापा यहाँ श्री कृष्ण के स्वरूप में विराजे हैं। बापा के इस स्वरूप की सबसे खास पहचान बन गई है उनके मस्तक पर सजा ये शानदार फेटा यानी पगड़ी। महाकाय के स्वरूप के हिसाब से उनकी ये पगड़ी भी विशालकाय है। इस भेटे की लंबाई लगभग 6 फीट और चौड़ाई करीब 5 फीट बताई जा रही है।
2: हर साल बिल्कुल एक ही तरह की थीम होती है, एक ही तरह का आकार होता है गणपति बप्पा का, लेकिन विशेष इस बार ये है कि श्री कृष्ण के रूप में देखे जा रहे हैं। बप्पा बहुत ज्यादा प्यारे और सुंदर तो लग ही रहे हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा जो बहुत ज्यादा देखने वाली चीज है उनका फेटा है। मुझे लगता है कि देश का यह सबसे बड़ा फेटा है जिसकी लंबाई कम से कम 6 फीट है, चौड़ाई कम से कम 5 फीट है। और इन्हें ही देखने के लिए, इनका दर्शन देखने के लिए दूर दराज से मुंबई महाराष्ट्र से श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर पहुंचते हैं। खास बात यह है कि द्वारकाधीश का भी यहाँ पर थीम रखा गया है और कुछ चीजें ऐसी रखी गई हैं जो हूबहू द्वारका में देखी जा रही हैं। 99 साल मना रहा है ये पंडाल। खास बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी मन की बात में इस पंडाल का जिक्र किया था, तारीफ की थी और स्पेशली ये कहा था कि इको फ्रेंडली बप्पा हूँ।
1: आपको बता दें कि मराठी संस्कृति में फेटा सर्वोच्च सम्मान, अधिकार और राजसी वैभव का प्रतीक माना जाता है। भगवान गणेश को गणपति यानी गणों के स्वामी और नगराध्यक्ष यानी शहर के राजा के रूप में पूजा जाता है। जैसे किसी महान राजा का राज्य अभिषेक बिना मुकुट या पगड़ी के अधूरा है, वैसे ही बापा को फेटा पहनाकर भक्त उन्हें अपने जीवन और क्षेत्र के राजा के रूप में सम्मानित करते हैं। अब आपको दिखाते हैं मुंबई में ही सजा चंदनवाड़ी गणेश उत्सव मंडल का पंडाल। जहां बाप्पा का पंडाल केदारनाथ धाम की थीम पर तैयार किया गया है। पंडाल तो अनोखा है ही, यहां बाप्पा का स्वरूप भी खास है। यहां गौरी नंदन अपने वाहन मूषक को छोड़ पिता महादेव की सवारी नंदी महाराज पर विराजे है। एक हाथ में डमरू, दूसरे में त्रिशूल है। बर्फीले पहाड़ के बीच नंदी पर विराजे लगभग 28 फीट के बाप्पा का रूप अनोखा है। बाप्पा की प्रतिमा के पास ही भोलेनाथ का केदार स्वरूप भी स्थापित किया गया है।
2: इस वक्त मैं मौजूद हूं साउथ मुंबई में स्थित अखिल चंदनवाड़ी गणेश उत्सव पंडाल में, जहां के बप्पा गोड़ गणपति बप्पा के नाम से भी जाने जाते हैं। तस्वीरों में देखें किस तरीके से बहुत ही ज्यादा विशाल, बहुत ज्यादा भव्य नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बप्पा की जो हाइट है वो तकरीबन 28 फीट है और केदारनाथ के अवतार में यहां पर स्थापित हुए हैं। डेकोरेशन चलचित्र देखने के बाद भी ये पता चल पा रहा है कि केदारनाथ की पूरी थीम रखी हुई है। साथ ही साथ आपको बताएं कि जब आप मुख्य द्वार से बप्पा की तरफ आगे बढ़ते हैं तो बाकी के भी जो 11 शिवलिंग हैं वो वहां पर स्थापित किए गए हैं, जिसमें ओंकारेश्वर, उज्जैन के महाकाल, काशी, नासिक के त्र्यंबकेश्वर जैसे नाम शामिल हैं।
1: अब चलिए आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम, जहां समुद्र तट पर गणपति विराट स्वरूप में विराजे हैं। इस प्रतिमा की ऊंचाई 63 फीट है। बताया जा रहा है कि ये बाप्पा की सबसे ऊंची इको फ्रेंडली प्रतिमा है। गले में सजी है फूलों की सुंदर माला, माथे पर दमक रहा है तिलक, एक हाथ में धनुष और दूसरे हाथ से भक्तों को अभय का आशीर्वाद देते बाप्पा। यहाँ से प्रतिमा ही नहीं, बाप्पा के लिए 63 फीट ऊंचा भव्य पंडाल भी तैयार किया गया है। यानी जितनी ऊंची बाप्पा की प्रतिमा उतना ही विशाल उनका दरबार। इसे देखने और बाप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस विशाल प्रतिमा को कृष्णा जिले और आसपास के इलाकों के 1,00,000 से ज्यादा घरों से जुटाई गई मिट्टी से तैयार किया गया है। बता दें कि 63 फीट ऊंची इको फ्रेंडली महागणपति प्रतिमा ने इंटरनेशनल अचीवर्स बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाई है। गणेश उत्सव के दौरान मुंबई में भटवाड़ी के राजा भी आस्थावानों को शुभाशीष दे रहे हैं। भटवाड़ी जा राजा की प्रतिमा को कागज से तैयार किया गया है। इस बार ये पंडाल अपनी बेहद निराली और तकनीक थीम को लेकर सुर्खियों में है। दरअसल इस बार भटवाड़ी चा गणेश पंडाल को AI थीम पर तैयार किया गया है।
2: खास बात यह है कि इस बार भटवाड़ी के राजा की जो थीम है वो AI पे रखी गई है। जैसे कि किस तरीके से AI की हेल्प से मिसाइल अपने आप में एक बहुत बड़ा काम कर रही है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने क्या कुछ कहा है, कैसे उन्हें लोग फॉलो कर रहे हैं, और इसके अलावा विज्ञान में AI कितने अंदर तक डीप तक जा चुकी है।
1: यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का देश की तरक्की में कितना योगदान है, इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये तमाम चीजें पंडाल में लगे पोस्टर, बैनर और LED पर दिखाए जा रहे विशेष वीडियो पर श्रद्धालुओं को दिखाया जा रहा है।
3: एक शक्ति जी पूजा के लिए जात होती है, बुद्धि जी, विधि जी।
1: चलिए चंदरपुर, जहां बाप्पा का ये अद्भुत दरबार सजा है। महाराष्ट्र के चंदरपुर में यहां के श्री सिद्धि विनायक गणेश मंडल ने सांवलिया सेठ की थीम पर ये गणेश पंडाल सजाया है। एक ही प्रतिमा में खाटू के श्याम बाबा और चित्तौड़ के सांवलिया सेठ साथ दर्शन दे रहे हैं। एक ही प्रतिमा में दोनों आराध्य देवों की छवियों का समावेश इसे बेहद खास बना रहा है। बड़ी संख्या में भक्त यहां पहुंच रहे हैं और अपनी अर्जियां लगा रहे हैं।
4: जो हारे के सहारे हैं उनके पास अपनी अर्जी लगाई है और मुझे यहां पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पूरा विश्वास है उन पे कि मेरी जो लगाई हुई अर्जी है वो पूरी होगी और इन्होंने इस बार यहां पे बहुत अच्छा सेटअप किया है।
5: अर्जी लगाई है, अच्छा लगता है, बाबा श्याम पर्ची पूरी करेंगे हमारी, यही भावना से आए हैं।
1: बड़ी संख्या में भक्त अपनी मनोकामना लेकर बाप्पा के इस दरबार में पहुंच रहे हैं और लाल कपड़े में नारियल बांधकर मोर पंख के साथ अपनी अर्जी लगा रहे हैं। इस पंडाल में खूबसूरत रोशनी और सजावट के जरिए राजस्थान के प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर की बारीकियों को बेहद खूबसूरती से दर्शाया गया है और भक्त भी उसी भाव के साथ यहां दर्शन को पहुंच रहे हैं। चंदरपुर में श्री कृष्ण का सांवलिया स्वरूप है तो वहीं मुंबई के पारसीवाड़ा में गणेश पंडाल को भगवान कृष्ण की दिव्य कथाओं यानी श्री कृष्ण लीला थीम पर तैयार किया गया है। पारसीवाड़ाचार राजा का पंडाल अपने 63वें साल में है। यहां बापा का स्वरूप तो भव्य है ही, लेकिन अब की बार इस पंडाल को भी बेहद खास तरीके से सजाया गया है। कान्हा के जन्म से लेकर महाभारत तक के प्रसंग इस पंडाल में चारों ओर नजर आ रहे हैं।
2: गणपति उत्सव में डेकोरेशन किस तरह से बनाया जाता है, उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है और कितने महीने लगते हैं, कितने लोग लगते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये मैं किसी राजमहल की एंट्री गेट आपको नहीं दिखा रहा, बल्कि एक ऐसा गणेश उत्सव पंडाल दिखा रहा हूँ जो इस तरीके से सजाया गया है। श्रद्धालु इस रास्ते से होते हुए सीधे भीतर की तरफ चलते हैं। दीवारें देखें इस तरह से बनाई गई हैं जैसे पौराणिक कथाओं की गान गा रही हो, और यहाँ से लोग आते हुए सीधे सबसे पहले श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं जिनका बाल स्वरूप यहाँ पर झूले में रखा गया है। तो इसी से ये बात मालूम पड़ रही है कि कहीं न कहीं थीम भी इनके आसपास ही है। भीतर की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से एक भव्य पंडाल यहाँ पर बनाया गया है, और वाकई में महीनों मेहनत करने के बाद जो आर्टिस्ट हैं वो किस तरीके से रूप दे देते हैं एक पंडाल को, ये दिखाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। सबसे पहले तो आप देखें कि अच्छी खासी यहाँ पर जगह है और कितना ज्यादा मेहनत किया गया है। जहाँ भी आप देखें झूमर दिख रहा है और कुछ इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है, यानी कि श्रद्धालु जब यहाँ आते हैं तो आने के बाद बकायदा अच्छे दर्शन भी करते हैं। तमाम पदाधिकारी भी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं और अब सीधे गणपति बप्पा का दर्शन करें। पारसीवाड़ाचा महाराजा के नाम से मशहूर है, पास में ही सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और उसके बगल का ही ये पंडाल है। हर साल इसी तरीके से बप्पा को यहाँ पर बनाया जाता है, कोई बदलाव नहीं लाया जाता है। बड़े अस्तीले से बड़े प्यार से लोग यहाँ आते हैं और दर्शन करते हैं। पास में बहुत सारे यहाँ पर खिड़कियां के अनुसार पोस्टर एंड बैनर्स लगाए गए हैं जहां पर श्री कृष्ण की लीला दिखाई जाती है। थोड़ी ये तस्वीर देखें, ये भी एक बहुत बड़ी लीला है श्री कृष्ण जी की, और बचपन से जब वो जन्मे और जन्म से लेकर के इस युद्ध तक की जितनी भी कहानियां हैं वो सभी पोस्टर बैनर्स के जरिए श्रद्धालुओं तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है।
1: अब देखिए चंदरपुर में विराजे गजानन का अनोखा स्वरूप, एक हाथ में हल, दूसरे में बैलों की रस्सी, तन पर धोती कुर्ता और सिर पर गमछा, ये है विघ्नहर्ता का अन्नदाता अवतार जिसे बनाया है चंदरपुर के युवा गणेश मंडल ने। ये मंडल हर साल अलग अलग सामाजिक और जन जागृति विषयों को गणेश उत्सव की झांकियों के माध्यम से लोगों के सामने पेश करता है। इसी कड़ी में इस साल युवा गणेश मंडल ने किसान के रूप में बाप्पा की झांकी के जरिए अन्नदाता की मेहनत, संघर्ष और उसके दर्द को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है जिसे लोग खासा पसंद भी कर रहे हैं।
6: चंदरपुर के युवा गणेश मंडल में मौजूद है, यहाँ पर इस बार झांकी बनाई है, बेहद ही खास झांकी है, एक अलग थीम पर यहाँ पर झांकी बनाई गई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बाप्पा को किसान का रूप दिया गया है, किसान के रूप में बाप्पा यहाँ पर हल चलाते हुए नजर आ रहे हैं, खेती कर रहे हैं। यहाँ पर धान की खेती आपको नजर आएगी, बाप्पा हल जोत रहे हैं यहाँ पर जब अपने फसल के लिए, यहाँ पर वो बाप्पा मेहनत कर रहे हैं और दो यहाँ पर बैल भी आपको नजर आएंगे। मतलब पूरी जो यहाँ पर बाप्पा को किसान के रूप में दिखाने की कोशिश यहाँ पर मंडल की ओर से की गई है।
1: अब देखिए गणपति की वो झांकी जो अब से पहले आपने नहीं देखी होगी। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर 80 के दशक का ट्रेंड चल रहा है सो इस गणेश पंडाल ने इसी थीम की झलक दिखाने की कोशिश की है। इस गणेश पंडाल में 80 के दशक के एक गांव की सुंदर तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई है। यहां गणपति दर्शन को आ रहे श्रद्धालुओं के दिलों में 80 के सादगी भरे दौर की यादें ताजा हो रही है। सिलबट्टे पर पिस्ता मसाला, कुएं से पानी भरती महिलाएं, घर घर पहुंचा डाकिया, बायोस्कोप वाला ग्राम विद्यालय और पंचायत के दृश्यों को बापा के इस पंडाल में जीवंत किया गया है। ये वो दौर था जब गांवों में पेड़ के नीचे कुर्सी पर बैठकर मास्टर जी पढ़ाया करते थे और जब एक ही टीवी से पूरा मोहल्ला रामायण देखता था। जाहिर है इस पहल के जरिए आज की पीढ़ी को बीते वक्त की खुशनुमा यादों से जोड़ने की कोशिश की गई है। यहां आ रहे श्रद्धालु इसे काफी पसंद कर रहे हैं।
7: हमने 1980 के गणपति देखे, पुरानी यादें बहुत अच्छे से ताजा हुई और आज फिर वो 1980 के रील्स बनाने का ट्रेंड शुरू है सबका।
8: क्या क्या देखा आपने
7: या इसमें? यहाँ पे पुराना जो उनका बायोस्कोप से देखना, एक सरपंच के घर में रामायण चल रहा है, दैट इज एक ही टीवी होता था और सारा गांव बैठ के देखता था।
1: 80 के दशक का पंडाल खास है तो अकोला का ही ये हरा भरा पंडाल भी अनोखा है। यहाँ आस्था भक्ति के साथ ही प्रकृति की छवि को भी संजोया गया है। गजानन की प्रतिमा के इर्द गिर्द जंगल की सुंदर तस्वीर पेश की गई है। प्रकृति से सनातन संस्कृति का हमेशा से गहरा संबंध रहा है और यही इस हरे भरे पंडाल की थीम भी है। आज से नहीं, सदियों से साधु संत प्रकृति को पूजते आए हैं। धर्म आध्यात्म के जरिए समाज को पर्यावरण के संरक्षण का महत्व भी बताते आए हैं। अकोला के विप्र युवा वाहिनी गणेश मंडल ने इस बार घटते जंगल और बढ़ते शहरीकरण को अपनी झांकी का विषय बनाया है। तो वही वारंगल के एक भक्त ने बापा को न्याय मूर्ति के रूप में दिखा दिया है। इस पंडाल में बापा का कोर्ट रूम सजा हुआ है जहां बापा जज की कुर्सी पर विराजे हैं। काला कोट पहना है लेकिन सिर पर मुकुट भी सजा है। सामने न्याय का तराजू है और बापा फैसला सुनाने के अंदाज में बैठे हैं। बड़ी संख्या में भक्त बापा के इस स्वरूप के दर्शन करने पहुंच रहे हैं।

0: लेकिन मुंबई के इस पंडाल का तो कहना ही क्या। सांता क्रूज के इस पंडाल में गणपति बाप्पा स्वयं अपने बाप्पा महादेव के रूप में विराजे हैं। जटाओं में गंगा, गले में नाग, हाथ में डमरू, बाघम्बर और त्रिशूल, अनोखा है गजानन का ये स्वरूप।
1: इस समय मैं मौजूद हूं मुंबई के सांताक्रूज इलाके में और यहां के सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल गौठन लेन बहुत ज्यादा चर्चित है अपने बप्पा की सुंदरता के कारण। आप भी खुद करें दर्शन। वाकई में जैसा सुना था वैसा यहां पर पाया है। शिवजी के रूप में गणपति बप्पा यहां के दरबार में पधारे हुए हैं और इनका दर्शन करने के लिए तमाम श्रद्धालु आसपास के पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि मुंबई का वेस्टर्न लाइन का सांताक्रूज इलाके का जो लोकल रेलवे स्टेशन है ठीक उसके 500 मीटर की दूरी पे ही यहां पर शिवजी के रूप में गणपति बप्पा विराजमान हैं। थोड़ा उनका पंडाल भी देखिए कितनी खूबसूरती से इसे सजाया गया है। बाहर भी कुछ दृश्य हैं, तस्वीरें हैं। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि हम आकर दिखाएं। गणपति बप्पा तक हर कोई पहुँच नहीं पाता, इस वजह से यहाँ पर एक छोटे गणपति बप्पा को भी हमेशा विराजमान किया जाता है। हर कोई बप्पा को दूरदर्शन करने के बाद इनके पग छूता है और जो भी इन्हें चढ़ाना होता है, अर्पण करना होता है, वो चढ़ाते हैं।
0: वही महाराष्ट्र के ही अमरावती में भक्तों ने ड्राई फ्रूट से बाप्पा का स्वरूप तैयार किया है। 31 किलो अंजीर और मखाने से बाप्पा की ये 7 फीट ऊंची इको फ्रेंडली प्रतिमा बनाई गई है। अमरावती के जय हिंद गणेश उत्सव पंडाल में पर्यावरण संरक्षण और जल बचत का संदेश देने के लिए इस साल बाप्पा के इस स्वरूप का सृजन किया गया। इस अनूठे प्रयोग के जरिए जल है तो कल है का संदेश दिया जा रहा है। इसी बीच गुजरात के अमरेली में गणपति के धनपति रूप के दर्शन हो रहे हैं। यहां भक्तों ने बाप्पा को करीब 25 लाख रुपए और अमेरिकी डॉलर से सजा दिया है। 20, 50, 100, 200 और 500 रुपए के नोटों से बाप्पा का मुकुट, हार, हाथ और पैर सजाए गए हैं। खास बात ये है कि 20 साल से गणपति महोत्सव आयोजन कर रहे सद्भावना ग्रुप ने पहली बार डॉलर से भी बापा का श्रृंगार किया है। बापा के इस अनोखे स्वरूप के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बापा का कुछ ऐसा ही स्वरूप तेलंगाना में भी नजर आ रहा है। तेलंगाना के पलवंचा शहर में 2 अलग अलग पंडालों में भगवान गणेश की मूर्तियों को कुल 2,90,00,000 रुपए के असली करेंसी नोटों से सजाया गया है, जिसमें 1,40,00,000 रुपए के नोटों से बापा को सजाया गया है। वहीं पूरे पंडाल को सजाने के लिए 10, 20, 50, 100, 200, 500 के नोटों का इस्तेमाल किया गया है। इस भव्य सजावट के लिए स्थानीय व्यापारियों ने आर्थिक योगदान दिया और बैंक कर्मचारियों ने नए नोट उपलब्ध कराने में मदद की। बापा का माइक्रो स्वरूप भी जरा देख लीजिए। विग्रहरता भगवान गणेश की ये ऐसी अद्भुत प्रदर्शनी है जहां बापा कई अलग अलग साइज और अलग अलग स्वरूप में मौजूद है, लेकिन बापा के इन स्वरूपों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि गणेश जी की इन मूर्तियों का आकार बहुत ही छोटा है। नासिक के सुनार भगवान दास खरोटे ने अलग अलग साइज की 291 सूक्ष्म सोने की गणेश मूर्तियां बनाई है। इनमें सबसे सूक्ष्म 3 मिलीमीटर से लेकर 1 इंच साइज तक की गणेश मूर्ति शामिल है। यहाँ गायक, तबला वादक, हारमोनियम वादक और वीणा वादक जैसे अलग अलग रूपों में छोटी सोने की गणेश मूर्तियां भी मौजूद है। इसके अलावा अष्ट विनायक, हिरम गणेश, मखारा में गणेश, कंबोडिया और इंडोनेशिया की सोने की गणेश मूर्तियों की रेप्लिका भी आपको यहां दिख जाएंगे। साथ ही बाली, जावा, मंगोलिया, सुमात्रा जैसे अलग अलग देशों से अलग अलग रूपों और साइज में गणेश की छोटी सोने की मूर्तियां भी मौजूद है।
2: चलिए इस इसी के साथ जेएनटी स्पेशल की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी और पॉजिटिव खबरें जा रही हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

दिल्ली में गणपति विसर्जन के लिए सरकार की ओर से तैयारियां की गई हैं। विसर्जन के लिए 81 जगहों पर आर्टिफिशियल तालाब बनाए गए हैं। तालाबों के आसपास सुरक्षा लाइट्स और मेडिकल फैसिलिटी का भी इंतजाम किया गया है। यहां श्रद्धालु सुरक्षित और आसानी से विसर्जन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने धार्मिक आस्था और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए 110 खंडित मूर्ति संग्रह केंद्र भी बनाए हैं।

0: देश भर में गणेशोत्सव की धूम है। इस बीच बापा के भक्तों के लिए गुड न्यूज आई है। दिल्ली में गणपति विसर्जन के लिए सरकार ने विशेष इंतजाम किए हैं। चाहे गणेश उत्सव हो या दशहरा, हर उत्सव के बाद देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ पूजा सामग्रियों का विसर्जन एक बड़ी समस्या होती है। दिल्ली सरकार ने इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने की कोशिश की है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि आस्था और पर्यावरण संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है, इसमें नागरिकों की भागीदारी जरूरी है।
1: एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इतने प्रेम से बाबा को घर लाते हो, भगवान की पूजा करते हो, तो कभी भी खंडित तस्वीर को, मूर्ति को ऐसे छोड़ के अनादर करते हुए नहीं आना है, उसको भी स्थान देना है।
0: दिल्ली सरकार की पहल के तहत पुरानी खंडित मूर्तियों और पूजा सामग्री के सम्मानजनक निस्तारण के लिए 110 जगहों पर विशेष संग्रह केंद्र बनाए गए हैं। ये पहल यमुना को प्रदूषण से बचाने में भी मददगार साबित होगी।
2: इस वक्त हम मौजूद है रोहिणी के सेक्टर 15 में, ठीक विद्या भारती स्कूल के बाहर, जहां पर आपको ये केंद्र जो है वो नजर आ जाएगा, ताकि लोग जो है वो अपने घर का जितना भी पूजा सामग्री का सामान है वो यहां पर आके जो है वो सामान वो जो है यहाँ पर रख सके। आप देख सकते हैं तस्वीरें भी पहले दिखाऊंगी कि किस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर नजर आने वाली है। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा नजर आएगा आपको कुछ इस तरीके के जो मूर्तियाँ भगवान की मूर्तियों पर जो चुनरी चढ़ती है, जो दुपट्टे चढ़ते हैं, वो आपको सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ नजर आ जाएंगे। आपको इसमें सूखा नारियल जो है वो भी नजर आ जाएगा कि लोगों ने अब सूखे नारियल को जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है। इसके अलावा जो है आपको फूल जो है वो नजर आ जाएंगे, आपको मूर्तियाँ भी जो है इसमें नजर आ जाएगी। जितनी भी मंदिर की जो से ज़रूरत की जो चीज़ें होती है वो सभी चीजें जो है वो यहाँ नजर आने वाली है।
0: अक्सर पुरानी या खंडित मूर्तियों और पूजा पाठ से संबंधित सामग्री को लेकर धार्मिक भावनाओं के कारण पेड़ों के नीचे, पार्कों, सड़क किनारे या दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर रख देते हैं। इससे एक ओर धार्मिक आस्था जुड़ी होती है, तो वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता और पर्यावरण से जुड़ी चुनौती भी सामने आती है। ऐसे में दिल्ली के लोग सरकार की नई पहल का दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं।
3: बहुत बढ़िया सुविधा हो गई, नहीं तो ऐसे ही इधर उधर रखते हैं, कोई फायदा नहीं रहता ना, पाप ही चढ़ता है। अभी एक सुविधा हो गई, एक जगह बनी, वहाँ रख दिया, ना प्रदूषण हुआ ना कुछ हुआ, बहुत बढ़िया करा रेखा। अब हम थैला भर के लाए थे, हमने अपना पूरा कर दिया विसर्जन, तो हमारे लिए तो बेस्ट है।
0: दिल्ली में गणपति मूर्तियों के विसर्जन के लिए 81 जगहों पर आर्टिफिशियल तालाब बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं से मूर्ति विसर्जन केवल कृत्रिम तालाबों में ही करने को कहा गया है। गणेश विसर्जन की तैयारियों में सुरक्षा, स्वच्छता, लाइट, चिकित्सा, आपातकालीन व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन और पर्यावरणीय सुरक्षा जैसे पहलुओं को भी शामिल किया गया है। सरकार ने यमुना और दूसरे जल स्रोतों में मूर्ति, फूल माला या पूजा सामग्री डालने से मना किया है। श्रद्धालुओं को पर्यावरण अनुकूल मूर्तियों को प्राथमिकता देने और POP और हानिकारक रसायनों से बनी प्रतिमाओं से बचने की सलाह दी गई है। दिल्ली से मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रहा है।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
6: दिव्य और भव्य होगा दीपोत्सव 2026। 30 लाख दीपों से जगमगाएगी अयोध्या। 2100 ड्रोन शो से बढ़ेगा दीपोत्सव का आकर्षण।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं दमदार जोड़ीदार की। जंग के अभ्यास में ये जोड़ी है भारत और अमेरिका की, जिसके 1200 सैनिक इन दिनों पाकिस्तान की सरहद के करीब बीकानेर में युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। दोनों देशों के जवान युद्ध या मिशन के लिए एक दूसरे का रण कौशल लगातार देख रहे हैं और सीख रहे हैं। इस अभ्यास में अपाचे जैसे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स के साथ अभी भी अभ्यास किया जा रहा है और आपसी तालमेल के साथ आसमान में जमीन तक दुश्मन को मार गिराने की रणनीति बनाई गई। आज आपको औली और बीकानेर में चल रहे इस युद्धाभ्यास की हैरतअंगेज तस्वीरें दिखाएंगे, धनुष और पिनाका का भी दमखम दिखाएंगे और इसके बाद बात होगी तरंग शक्ति 2.0 की, जिसका जोधपुर में 26 सितंबर से आगाज होने जा रहा है और जिसमें पहली बार अमेरिका का F-35 भी शामिल होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सरहद के करीब युद्धाभ्यास कर रहे दमदार जोड़ीदारों से। आसमान में अपाची की दहाड़ और जमीन पर पिनाका से रॉकेट की बरसात, यकीनन राजस्थान में ऐसी तस्वीरें दुश्मन देश को डरा रही होंगी। पर ये तस्वीरें हैं भारत और अमेरिका के संयुक्त युद्धाभ्यास की। बीकानेर में दोनों देशों के सैनिकों ने मिलकर हवा और जमीन की ताकत और आपसी तालमेल को परखा। जहां अपाचे ने पिन पॉइंट फायरिंग से अपनी मारक क्षमता दिखाई, वहीं पर धनुष और पिनाका ने जमीनी ताकत का दमखम दिखाया। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में चल रहे इस अभ्यास में युद्ध की रणनीति, सर्विलांस और साझा कार्रवाई पर भी मंथन हुआ। रिपोर्ट देखिए।

0: से आंख मिलाते, अपनी शान बताते। जब परवाज भरता है, दिल दुश्मन का डरता है। हवा के पैरों पर पराक्रम का हस्ताक्षर है ये, अपाचे है ये। और इसकी ताकत की नुमाइश एक बार फिर हुई बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, जहां भारत और अमेरिका की फौज मिलकर युद्धाभ्यास कर रही है। देखिए हवा का टैंक कहा जाने वाला ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर कैसे पिन पॉइंट मार करता है। एक बार लक्ष्य तय हुआ तो बस समझिए कि दुश्मन गया। हेलीकॉप्टर से निकलती 30 mm गोलियों की रफ्तार देखिए और जमीन पर उनकी मार देखिए। गोलियों की आवाज से रेगिस्तान गूंज उठा और दूर कहीं लक्ष्य धुआं धुआं हो गया। युद्धाभ्यास 2026 में एविएशन की ताकत जोड़ते हुए भारतीय सेना के अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को शामिल किया गया। उसकी ताकत और कौशल को दोनों देशों के जवानों ने आजमाया और अपाचे ने अपनी खूबियां बता दी। करीब 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है इसकी और इसके नीचे लगी राइफल से एक बार में 30 mm की 1200 गोलियां भरी जा सकती है। फ्लाइंग रेंज करीब 550 किलोमीटर है और एक उड़ान में करीब 3 घंटे तक उड़ान भर सकता है अपाचे। कई तरह के मिसाइलों से लैस है ये हेलीकॉप्टर। दुनिया के सबसे एडवांस लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स में शुमार है और इसका युद्धाभ्यास में शामिल किया जाना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
1: पाकिस्तान की सीमा के नजदीक भारत और अमेरिका के सैनिक न सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमान में भी अपना रण कौशल दिखा रहे हैं। युद्धाभ्यास के दौरान टैक्टिकल ड्रिल्स के साथ साथ अब हवाई करतब भी देखने को मिल रहे हैं और साथ ही किस तरह से एक युद्ध में अपने एयर असेट्स का इस्तेमाल किया जाता है उस पर भी जोर दिया जा रहा है। और इसी कड़ी में भारतीय सेना ने अपने अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स के जरिए खास फायरिंग भी इस युद्धाभ्यास में की है। अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स जो भारत ने अमेरिका से ही लिए हैं, हाल ही में भारतीय सेना के एविएशन विंग का हिस्सा बने हैं और अब अमेरिका के सैनिक भारत में आकर इन एविएशन ड्रिल्स को देख रहे हैं और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि किस तरह से जमीन से लेकर आसमान तक एविएशन की बात हो या फिर तोप की बात हो, आर्टिलरी की बात हो, हर तरफ भारत का कौशल, भारत की स्किल और भारत के युद्ध में जो नई तकनीक है वो कैसे आगे बढ़ रही है और अमेरिका इससे सीख भी रहा है और इसे देख भी रहा है।
0: असल में अभ्यास के दौरान भारत और अमेरिका के सैनिकों ने एक मिशन की योजना बनाई और इसी के तहत जमीन पर मौजूद सैनिकों और हवा में उड़ान भर रहे अपाचे के बीच तालमेल बनाया गया। मकसद ये देखना था कि जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर और जमीनी सैनिक मिलकर कितनी तेजी से काम कर पाएंगे। इस तरह हवाई हमले और जमीनी कार्रवाई को साथ जोड़ने और साथ ही संपर्क बनाए रखने और टाइमिंग का अभ्यास किया गया। इस युद्धाभ्यास में भारतीय और अमेरिकी सैनिक एक दूसरे के रण कौशल को करीब से देख समझ रहे हैं। युद्ध के दौरान प्रक्रिया, संचार और तालमेल को बेहतर बनाया जा रहा है। जाहिर है कि इसमें सिर्फ जमीनी तैयारी नहीं बल्कि फोकस हवा और जमीन की ताकत के बीच तालमेल बनाने का है। और जहां तक बात जमीनी ताकत की है तो उन्हें इन धमाकों से समझा जा सकता है। जो M777 अल्ट्रा लाइट होवित्ज़र धनुष तो और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के हैं। अत्याधुनिक तकनीक वाले हथियार रणभूमि में दुश्मन के लिए काल हैं, जिनके सटीक इस्तेमाल का अभ्यास सरहद के पास किया गया। बड़ा की तेजी के साथ तोप के गोले डाले गए और जब फायरिंग हुई तो पूरा इलाका धमाकों से गूंज उठा। अब जरा पिनाका की ताकत भी देख लीजिए। कमांड मिलते ही इसकी मल्टी बैरल लॉन्चर से कई रॉकेट लक्ष्य की ओर लपके। बीकानेर के इस रेतीले इलाके में भारतीय और अमेरिकी सैनिकों ने मिलकर एयर डिफेंस तोपों और एम लीज प्रणालियों को भी परखा। इस दौरान फायरिंग की योजना बनाई गई और उसमें आपसी तालमेल भी परखा गया। लेकिन भारत अमेरिका युद्धाभ्यास में फोकस कई और चीजों पर भी है। युद्ध या मिशन के दौरान सर्विलांस की रणनीति क्या हो, टोही अभियानों की तैयारी कैसी की जाए और इसमें ड्रोन्स का बेहतर तालमेल कैसे हो, इन सभी जरूरी मुद्दों पर दोनों देशों के सैनिक मंथन कर रहे हैं। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में दोनों सेनाओं की ऑब्जर्वेशन पोस्ट टुकड़ियों ने भी साथ मिलकर काम किया। लक्ष्य की पहचान करने के साथ एक्शन की रणनीति तय हुई। ये तस्वीरें भारत और अमेरिकी सैनिकों की ताकत और कौशल की नुमाइश है, लेकिन भारत और पाकिस्तान की सरहद के करीब ये युद्धाभ्यास दुश्मन के लिए एक संदेश भी है। आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच ये 22वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसकी शुरुआत 15 सितंबर को हुई। इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के 600-600 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: क्वाड देशों में शामिल भारत और अमेरिका के बीच सैन्य साझेदारी बहुत मजबूत है और ये युद्धाभ्यास दोनों देशों के आपसी विश्वास की पहचान है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब अमेरिका और भारत ने अभ्यास के लिए दो अलग अलग इलाकों को चुना है, एक तरफ उत्तराखंड का औली और दूसरी तरफ राजस्थान का बीकानेर। भारत के नजरिए से अगर हम देखें तो ये उत्तरी और पश्चिमी मोर्चे पर एक साथ दुश्मनों से निपटने की तैयारी है। रिपोर्ट देखिए।

0: दो देश, दो सेनाएं, दो अलग युद्ध क्षेत्र। एक तरफ बर्फीले पहाड़ है, वीरों की दहाड़ है, दूसरी ओर तपता रेगिस्तान है, युद्ध घमासान है। भारतीय जाबाज अमेरिकी सेना के साथ 22वीं बार युद्धाभ्यास करने उतरे हैं। पहली बार दो अलग अलग भूभागों पर एक साथ। एक अभ्यास उत्तराखंड की औली में फॉरेन ट्रेनिंग नोड और राजस्थान की महाजन फायरिंग रेंज में एक साथ चल रहा है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य पहाड़ी और अर्ध पहाड़ी क्षेत्रों में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की संयुक्त क्षमता को बढ़ाना है। यह अभ्यास सिर्फ पारंपरिक प्रशिक्षण नहीं है, बल्कि इसमें दोनों सेनाओं के विशेषज्ञ मल्टी डोमेन वॉरफेयर यानी कई क्षेत्रों में एक साथ युद्ध की उभरती तकनीकों पर विचार साझा कर रहे हैं। ये पहला मौका है जब भारत का इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप पहली बार किसी विदेशी सेना के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास में भाग ले रहा है। तो वहीं ये भी पहली बार हो रहा है जब अमेरिका ने अपनी 3 MDTF यानी थर्ड मल्टी डोमेन टास्क फोर्स को भारत के साथ इस साझा युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने भेजा है। ये फोर्स अंतरिक्ष, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और लंबी दूरी की मिसाइलों को एक साथ नियंत्रित करती है। अभ्यास के पहले हफ्ते में अमेरिकी और भारतीय सैनिकों ने एक दूसरे के हथियारों, नाइट विजन उपकरणों और अनमैन्ड सिस्टम्स का अध्ययन किया। सैनिकों ने एक दूसरे के राइफल्स और हथियारों को चलाने की तकनीकों और सुरक्षा प्रोटोकॉल पर चर्चा की। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में अमेरिका के सबसे एडवांस्ड मोबाइल काउंटर ड्रोन सिस्टम MILDS को तैनात कर पहली बार भारतीय सैनिकों को इसके संचालन का लाइव प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा रैंपलिंग यानी हेलीकॉप्टरों और ऊंचाई वाले स्थानों से रस्सियों के सहारे नीचे उतरने का भी कड़ा अभ्यास इस एक हफ्ते की एक्टिविटीज में शामिल रहा। इसके अलावा दोनों सेनाओं ने संदिग्ध आतंकियों या दुश्मनों के ठिकानों को घेरने के लिए बिल्डिंग क्लियरेंस और रूम इंटरवेंशन का संयुक्त अभ्यास किया। रैपलिंग और रूम इंटरवेंशन के अभ्यासों से इंडियन आर्मी के ट्रेंड डॉग्स ने खास भूमिका निभाई। बता दें कि भारतीय सेना के 4 ट्रेंड डॉग्स राइस, विक्टर, जैक और राउडी युद्धाभ्यास 2026 में भाग ले रहे हैं। इन चारों में राउडी और विक्टर रामपुर हाउंड है यानी भारत की अपनी स्वदेशी नस्ल, जैक बेल्जियन मेलिनोइस है और राइस लेब्राडोर रिट्रीवर। इन चारों की खूबियां अलग हैं, लेकिन मिशन एक, जवानों का साथ देना और खतरे को वक्त रहते पहचानना। क्योंकि जहां इंसान की नजरों की सीमा समाप्त होती है, इनकी सूंघने की ताकत कई बार छिपे खतरे तक पहुंचने में मदद करती है। यही वजह रही कि इन डॉग्स ने अमेरिकी सैनिकों के सामने रूम इंटरवेंशन और रैपलिंग में अपना दम दिखाया। खास तौर पर भारतीय नस्ल के रामपुर हाउंड विक्टर और राउडी ने तो कमाल ही कर दिया। अभ्यास के दौरान इनकी फुर्ती, सूंघने की क्षमता और कठिन सामरिक परिस्थितियों में क्विक रिएक्शन को देखकर अमेरिकी सैनिक भी हैरान रह गए। ये ऑपरेशन अब तक इस युद्धाभ्यास की हाइलाइट्स में से एक रहा। आपको बता दें कि अपनी तमाम हाइलाइट्स और स्पष्ट उद्देश्यों से इतर इस युद्धाभ्यास को आयोजित करने के पीछे सबसे बड़े सामरिक और रणनीतिक संदेश है। उत्तराखंड का औली LSE यानी चीन सीमा से केवल 100 किलोमीटर की दूरी पर है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर अमेरिकी सैनिकों, विशेष रूप से अलास्का की 11वीं एयरबोर्न डिवीजन का भारतीय सेना के साथ अभ्यास करना ये दिखाता है कि दोनों सेनाएं अत्यधिक ठंड और पहाड़ी इलाकों में मिलकर चीन के खिलाफ मोर्चा संभाल सकती हैं। जबकि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज का इलाका पाकिस्तान सीमा के बेहद करीब है। यहाँ हिमार्स, पिनाका रॉकेट और अपाचे हेलीकॉप्टरों से की जा रही लाइव फायरिंग ये साफ संदेश देती है कि भारत अमेरिका का रक्षा सहयोग केवल समुद्री क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि ये खल सीमा पर पूरी तरह सक्रिय है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और अब बात करते हैं तरंग शक्ति 2.0 की। जोधपुर का आसमान जल्द ही दुनिया के आधुनिक लड़ाकू विमानों की दहाड़ से गूंजने वाला है। भारतीय वायुसेना के बहुपक्षीय अभ्यास तरंग शक्ति 2.0 में 7 देशों की वायुसेना अपनी ताकत और तकनीक का प्रदर्शन करने जा रही हैं। लेकिन इस बार सबसे बड़ा आकर्षण अमेरिका का F-35 स्टेल्थ फाइटर होगा, जो भारत में पहली बार किसी सैन्य अभ्यास का हिस्सा बनने जा रहा है। राफेल, सुखोई, तेजस और F-16 जैसे फाइटर जेट्स भी इस हवाई शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा होने जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए।

0: आसमान में गरजते फाइटर जेट, रफ्तार से सहमी हवा, एक साथ देश और दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान। जल्दी ही जोधपुर में होने जा रहा है ऐसा शक्ति प्रदर्शन जिस पर पूरी दुनिया की नजर होगी, क्योंकि पहली बार भारतीय सैन्य अभ्यास में उतरने जा रहा है अमेरिका का F-35 स्टिल्थ फाइटर। भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े बहुपक्षीय हवाई अभ्यासों में शामिल तरंग शक्ति 2.0 की तैयारियां पूरी हो चुकी है। 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक जोधपुर एयरबेस पर होने वाले इस अभ्यास में 7 देश अपने एयरक्राफ्ट के साथ उतरेंगे। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और UAE अपनी हवाई क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। वहीं 32 देश ऑब्जर्वर के तौर पर अभ्यास को देखेंगे, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा निगाहें अमेरिका के F-35 पर होंगी। पांचवी पीढ़ी का यह स्टेल्थ फाइटर पहली बार भारत में किसी सैन्य अभ्यास का हिस्सा बनेगा। अमेरिका 6 F-35 के साथ पहुंचेगा। इसके अलावा 2 KC-135 भी अमेरिकी दल में शामिल होंगे। F-35 इससे पहले एरो इंडिया 2025 में भारत आ चुका है, लेकिन तरंग शक्ति में इसकी मौजूदगी पहली बार होगी।
1: F-35 के साथ हम पहले एक्सरसाइज कर चुके हैं, इंटरनेशनल एक्सरसाइज में हमने पार्ट लिया है, और उसमें 2 या 3 एक्सरसाइज में जो मुझे याद पड़ता है हमने F-35 के साथ एक्सरसाइज की, इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर।
0: भारत भी अपना स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर विकसित कर रहा है और इसके साथ जरूरी सपोर्ट सिस्टम, कौशल और तकनीकी क्षमता तैयार करने की भी योजना है। ऐसे में अमेरिकी F-35 की भारत में मौजूदगी मायने रखती है।
2: One is that we are developing our own 5th generation aircraft, AMCA, and Indian Air Force has put all its weight and all its technical capability, technical know-how behind it. The second aspect is we should be able to somehow detect it, and that capability is also we are developing.
1: Well, I think that is more than sufficient to know at this stage.
0: तरंग शक्ति में सिर्फ विदेशी विमानों की ताकत नहीं दिखेगी, भारतीय वायुसेना भी अपने प्रमुख लड़ाकू प्लेटफॉर्म मैदान में उतारेगी। राफेल, सुखोई 30 MKI, तेजस, मिराज 2000, जगुआर और MiG-29 जैसे विमान इस हवाई अभ्यास का हिस्सा होंगे। फ्रांस 7 राफेल, 3 H-400M और 2 MRTT के साथ पहुंचेगा। UAE 6 F-16 और 1 ग्लोबल 6000 लाएगा। जर्मनी के 2 H-400M, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के C-130, जबकि श्रीलंका का किंग एयर 350 भी शामिल होगा। इस पूरे अभ्यास की एक खासियत इसका इंटर ऑपरेबिलिटी वाला कॉन्स्ट्रक्ट है, यानी अलग अलग देशों की वायुसेनाएं साझा अभियानों में एक दूसरे के साथ काम करने की क्षमता परखेंगी। भारतीय वायुसेना के मुताबिक 65 देशों को न्योता दिया गया था, जिनमें से भागीदारी और ऑब्जर्वर की भूमिका अभ्यास की जरूरत के मुताबिक तय की गई। इस दौरान मित्र देशों की तकनीक, रणनीति, संचालन अनुभव और अलग अलग क्षमताओं से सीखने का मौका मिलेगा।
1: 10 अक्टूबर को हम लोग डिस्टिंग्विश्ड विजिटर्स डे ऑर्गेनाइज करेंगे। अबाउट 10 चीफ्स और चीफ इक्विवेलेंट आर गोइंग टू टेक पार्ट एज पर द करेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू अस, and 31 other one level below will take part. We are doing a seminar here on 9th in Delhi only, and after that we are taking them to DV Day, it is called Distinguished Visitors Day, that will happen on 10th of October. So 10-11 chiefs I think will come. We will be able to confirm this when we are closer to the event.
0: जोधपुर में यह हवाई हलचल ऐसे वक्त होने जा रही है जब इसी एयरबेस पर भारत और जापान का वीर गार्जियन 2026 अभ्यास अभी खत्म हुआ है। 9 से 22 सितंबर तक चले इस अभ्यास में भारतीय राफेल, सुखोई 30 MKI और तेजस के साथ जापान के F2A ने हिस्सा लिया। अब उसी आसमान में बहुराष्ट्रीय उड़ानों का नया दौर शुरू होगा, जहां अलग अलग देशों के लड़ाकू विमान साझा मिशनों के जरिए अपनी क्षमता और तालमेल को परखेंगे। दरअसल तरंग शक्ति की शुरुआत 2024 में हुई थी। पहला संस्करण दो चरणों में सुलूर और जोधपुर में आयोजित किया गया था। सुलूर चरण में फ्रांस के राफेल, जर्मनी, स्पेन और ब्रिटेन के यूरोफाइटर टाइफून शामिल हुए थे। इसके बाद जोधपुर में ऑस्ट्रेलिया के EA-18G ग्रॉलर, ग्रीस और UAE के F-16 तथा अमेरिका के A-10 और F-16 जैसे विमान पहुंचे थे। अब इसमें तरंग शक्ति का दूसरा संस्करण पहले से कहीं ज्यादा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई मंच तैयार कर रहा है। एक तरफ पांचवी पीढ़ी का अमेरिकी F-35, दूसरी तरफ भारतीय राफेल, तेजस और सुखोई। जोधपुर का आसमान सिर्फ विमानों की उड़ान नहीं देखेगा, बल्कि अलग अलग वायु सेनाओं के साझा प्रशिक्षण, तालमेल और तकनीकी अनुभवों का गवाह बनेगा।
3: तरंग शक्ति 2026 यानी भारत की अपनी मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज शुरू हो रही है 26 सितंबर को। इसमें पूरी दुनिया की लगभग 40 वायुसेनाएं शामिल होंगी। 7 वायुसेनाएं जो अपने एयरक्राफ्ट लेकर, अपने फाइटर्स लेकर इस तरंग शक्ति का हिस्सा बनेगी। और अमेरिका का F-35 फाइटर पहली बार भारत की वायुसेना के साथ भारत में अपने युद्ध कौशल को दिखाएगा, और वो भी पाकिस्तान की सीमा के बेहद नजदीक। जोधपुर में शुरू होने वाली तरंग शक्ति में पूरी दुनिया के एयर पर्सनल होंगे और साथ ही वायुसेना प्रमुख भी इसका हिस्सा बनने वाले हैं। भारतीय वायुसेना लगातार अपने अलग अलग कौशल, अपने अलग अलग एयर टेक्निक्स और अपने ड्रिल्स को यहां पर साझा करेगी। साथ ही ये भी पैगाम देगी कि किस तरह से भारतीय वायुसेना लगातार दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वायुसेनाओं के साथ मिलकर इंटर ऑपरेबिलिटी की ट्रेनिंग कर रही है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान हो या फिर चीन, दोनों के लिए संदेश बिल्कुल साफ है कि भारत के साथ पूरी दुनिया की तमाम वायुसेनाएं मित्र सेनाओं की तरह खड़ी हैं। अमेरिका हो या फिर रूस, तमाम देश एक साथ मिलकर इस तरंग शक्ति का हिस्सा बनेंगे, और पाकिस्तान हो या चीन, दोनों के लिए ये एक कड़ा संदेश भी साबित होगा। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ शिवानी शर्मा, गुड न्यूज स्टूडियो के लिए दिल्ली से।
4: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज स्टूडियो के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। बात करेंगे दिल्ली सरकार की एक ऐसी पहल की जो आस्था का सम्मान करने के साथ पर्यावरण की स्वच्छता के लिए भी बेहतर है। आपने अक्सर कहीं खंडित मूर्तियां यूं ही पड़ी हुई देखी होंगी, जहां पूजा की बिखरी सामग्रियों पर भी आपकी नजर जरूर पड़ी होगी। लेकिन अब दिल्ली में जगह जगह ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे ऐसी तस्वीरें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। खंडित मूर्तियों और पूजा सामग्रियों को सम्मान देने के लिए विशिष्ट केंद्र बनाए गए हैं।

0: आस्था और भक्ति का निर्वाह हर कोई अपने अपने तरीके से करता है। कोई घर में पूजा पाठ करता है तो कोई मंदिर जाकर। इसी तरह गणेशोत्सव से लेकर नवरात्र तक ऐसे कई विशेष धार्मिक अवसर होते हैं जिसमें पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ अल्प अवधि के लिए प्रतिमाएं स्थापित की जाती है। लोग पूरे विधि विधान के साथ उन मूर्तियों और पूजन सामग्रियों का विसर्जन भी करते हैं। इसके बाद भी जगह जगह पूजन सामग्री और खंडित मूर्तियां दिख जाती है। इसको लेकर दिल्ली सरकार ने अब एक ऐसी पहल की है जिससे त्योहार के समापन के बाद भी आस्था का सम्मान हो सके। दिल्ली में जगह जगह खंडित मूर्तियों और पूजा सामग्री के सम्मानजनक संग्रह के लिए केंद्र बनाए गए हैं, जहां लोग इनको लेकर पहुंच रहे हैं और वहां जमा कर रहे हैं।
1: बहुत बढ़िया सुविधा हो गई, नहीं तो ऐसे ही इधर उधर रखते हैं, कोई फायदा नहीं रहता ना, पाप ही चढ़ता है। अभी एक सुविधा हो गई, एक जगह बनी, वहाँ रख दिया, ना प्रदूषण हुआ ना कुछ हुआ। बहुत बढ़िया करा रेखा, अभी हम थैला भर के लाए थे, हमने अपना पूरा कर दिया विसर्जन, तो हमारे लिए तो बेस्ट है।
2: 21st सेंचुरी में हमें थोड़ी अपनी थिंकिंग चेंज करनी चाहिए, गवर्नमेंट के साथ हमें स्टेप

0: तापमान के साथ ही इससे जलवायु को साफ रखने में भी मदद मिलेगी।
1: देख सकते हैं तस्वीरें पहले दिखाऊंगी कि किस तरीके की चीजें आपको यहाँ पर नजर आने वाली है। अच्छा, जो सबसे ज्यादा नजर आएगा आपको कुछ इस तरीके के जो मूर्तियां भगवान की मूर्तियों पर जो चुनरी चढ़ती है, जो दुपट्टे चढ़ते हैं, वो आपको सबसे ज्यादा जो है वो यहाँ नजर आ जाएंगे। आपको इसमें सूखा नारियल जो है वो भी नजर आ जाएगा कि लोगों ने अब सूखे नारियल को जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है। इसके अलावा जो है आपको फूल जो है वो नजर आ जाएंगे, आपको मूर्तियां भी जो है इसमें नजर आ जाएगी। जितनी भी मंदिर की जो से जरूरत की जो चीजें होती है वो सभी चीजें जो है वो यहाँ नजर आने वाली है। सेंटर्स की जो बूथ है वो तैयार किए गए ताकि जितना भी जो खंडित मूर्ति है उसको जगह जगह फेंका ना जाए, वो इस तरीके से आकर जो है वो दान कर दी जाए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हर जगह आपको जो है इस तरीके के खंडित मूर्तियां जो है वो नजर आने वाली है, और इसमें हर कोई जो है इस तरीके का पूजा का जितना भी सामग्री का सामान है वो यहाँ डाल सकते हैं, ना कि पेड़ों के नीचे। पीपल के पेड़ के नीचे लोग जो है अक्सर रख देते हैं, पार्क में रख देते हैं, तो वो चीज ना हो इस चीज का ध्यान में रखते हुए इस तरीके के सेंटर्स जो है वो दिल्ली में बनाए गए हैं।
0: इन केंद्रों में लाकर डाली गई खंडित मूर्तियां और पूजा सामग्रियों का बेहतर उपयोग किया जाएगा। सब सामान का वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल तरीके से निस्तारण और रिसाइकलिंग का काम किया जाएगा।
1: दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो है इस तरीके के केंद्र बनाए गए, और वहीं एमसीडी आके ये सारा जितना भी कलेक्शन है वो लेकर जाएगी और उसके बाद इनको रिसाइकल भी जब किया जाएगा तो उसमें भी आस्था का जो है ध्यान रखा जाएगा। अगर हम मूर्तियों की बात करें तो उन मूर्तियों को रिसाइकल करके जो है ईंटें बनाई जाएगी, और उन ईंटों का इस्तेमाल, उन ब्रिक्स का इस्तेमाल जो है वो वापस से किसी धार्मिक स्थल के निर्माण कार्य में जो है किया जाएगा। फिर चाहे वो मंदिर की बात हो या कोई भी रिलीजियस कुछ चीज़ बन रही होगी तो उसमें उन ईंटों का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं अगर हम सूखे फूलों की बात करें तो उन सूखे फूलों का इस्तेमाल जो है अगरबत्ती, धूप बत्ती, इन सब चीजों को बनाने में जो है किया जाएगा। तो इस तरीके से वेस्टेज ना हो, किसी तरीके से आस्था का अपमान ना हो, उस चीज का ध्यान दिल्ली सरकार रख रही हो।
0: दिल्ली में जगह जगह ऐसे 110 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं जहां पूजन सामग्री और खंडित मूर्तियां लोग जमा कर सकते हैं। इससे ये सब सामान ना पेड़ों के नीचे लावारिस पड़े रहेंगे, ना पार्कों में दिखाई देंगे और ना ही यमुना में कचरा बढ़ेगा। साथ ही खंडित मूर्तियों और पूजन सामग्रियों का सम्मान भी हो सकेगा और पर्यावरण को इससे फायदा भी। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: दिव्य और भव्य होगा दीपोत्सव 2026। 30 लाख दीपों से जगमगाएगी अयोध्या। 2100 ड्रोन शो से बढ़ेगा दीपोत्सव का आकर्षण। गुजरात के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी में चल रहे भादरवी महामेले में उमड़ रहा है जनसमूह। 3 दिन में पहुंचे 15 लाख से ज्यादा भक्त। नैनीताल में फूलों की बारिश के बीच कैलाश को रवाना हुई मां नंदा सुनंदा। हजारों नम आंखों ने दी विदाई, उमड़ा आस्था का सैलाब। वामन द्वादश पर बद्रीनाथ में धूमधाम से निकली भगवान उद्धव जी की डोली। माता मूर्ति महोत्सव में उमड़ा भक्तों का सैलाब। नागपुर के गणेश टेकरी मंदिर में भगवान गणेश को चढ़ाया गया 1101 किलो का महालड्डू। 5 फीट ऊंचे और 4 फीट चौड़े लड्डू को 22 कारीगरों ने 6 दिन में तैयार किया। झांसी में शाही अंदाज में निकली बप्पा की प्रतिमा की विसर्जन यात्रा।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। तो जीएनटी स्पेशल में आज बात गणेशोत्सव की। जब से गणेशोत्सव का शुभारंभ हुआ है, जीएनटी स्पेशल में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह पूरे देश में कितनी भव्यता, कितने उत्साह और आस्था के साथ भगवान गणेश का ये उत्सव मनाया जा रहा है। देश भर में शहर शहर सजे पंडालों में गजानन के एक से बढ़कर एक निराले रूप नजर आ रहे हैं। लेकिन गणेशोत्सव के बीच ही देश के अलग अलग कोनों में कई लोक पर्वों और त्योहारों को मनाने का सिलसिला भी जारी है। कल जहां देश मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में डोल ग्यारस यानी जल झूलनी एकादशी का पर्व मनाया गया, तो वहीं गुजरात के अंबाजी शक्तिपीठ में भादरवी महामेले का आयोजन जोर शोर से चल रहा है। गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर स्थित विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल अंबाजी में हर साल होने वाले भादरवी महामेले की धूम है। भादरवी महीने में नवमी से पूनम यानी 7 दिनों तक धूमधाम से मनाए जाने वाले मेले का श्री गणेश 21 सितंबर को हुआ था। माता जी का रथ खींचकर मंदिर के पंडितों द्वारा शास्त्रों के अनुसार पूजा अर्चना और अनुष्ठान के साथ ये शुभारंभ हुआ और अब यहां भक्तों का सैलाब उमड़ा है। मां के धाम में भजन और गरबा के गीत साथ में गूंज रहे हैं। भादरवी महामेला अंबाजी शक्तिपीठ का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। गुजरात में भादरवी मेला तो राजस्थान और एमपी में जल झूलनी एकादशी की रौनक नजर आई। डोल ग्यारस का त्योहार श्री कृष्ण के साथ जुड़ा है। जल झूलनी एकादशी की सबसे बड़ी विशेषता यहां होने वाले सामूहिक देव दर्शन है। इस दिन बालकृष्ण स्वरूप को पालकियों में सवार करवाकर नगर भ्रमण पर ले जाने की परंपरा है। साल में एक बार शहर भर के मंदिरों के बाल विग्रह एक साथ पालकियों में विराजित करके श्रद्धालुओं के बीच आते हैं। ये नजारा कल कई शहरों में दिखाई दिया। तो चलिए उत्सवों की इन तमाम तस्वीरों के बीच ही अब आपको दिखाते हैं गणेशोत्सव की छटा और करवाते हैं यात्रा देश भर के सबसे अद्भुत और भव्य गणेश पंडालों की।

0: अनुपम है, अनन्य है। गणेश उत्सव के दिनों में गजानन के एक से एक अनोखे रूप साकार हो उठे हैं। आज बापा के अनोखे रूपों के अध्याय का श्री गणेश करते हैं उनके सबसे सजीले स्वरूप के साथ। मुंबई में ये दरबार है गिरगांव के राजा का। गिरगांव के राजा के दरबार को इस बार द्वारकाधीश थीम पर तैयार किया गया है और बापा यहाँ श्री कृष्ण के स्वरूप में विराजे हैं। बापा के इस स्वरूप की सबसे खास पहचान बन गई है उनके मस्तक पर सजा ये शानदार फेटा यानी पगड़ी। महाकाय के स्वरूप के हिसाब से उनकी ये पगड़ी भी विशालकाय है। इस फेटे की लंबाई लगभग 6 फीट और चौड़ाई करीब 5 फीट बताई जा रही है।
1: हर साल बिल्कुल एक ही तरह की थीम होती है, एक ही तरह का आकार होता है गणपति बप्पा का, लेकिन विशेष इस बार ये है कि श्री कृष्ण के रूप में देखे जा रहे हैं। बप्पा बहुत ज्यादा प्यारे और सुंदर तो लग ही रहे हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा जो बहुत ज्यादा देखने वाली चीज है उनका फेटा है। मुझे लगता है कि देश का यह सबसे बड़ा फेटा है जिसकी लंबाई कम से कम 6 फीट है, चौड़ाई कम से कम 5 फीट है, और इन्हें ही देखने के लिए, इनका दर्शन देखने के लिए दूर दराज से मुंबई महाराष्ट्र से श्रद्धालु जो हैं यहाँ पर पहुंचते हैं। खास बात यह है कि द्वारकाधीश का भी यहाँ पर थीम रखा गया है और कुछ चीजें ऐसी रखी गई हैं जो हूबहू द्वारका में देखी जा रही हैं। 99 साल मना रहा है ये पंडाल। खास बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी मन की बात में इस पंडाल का जिक्र किया था, तारीफ की थी और स्पेशली ये कहा था कि इको फ्रेंडली बप्पा हूँ।
0: आपको बता दें कि मराठी संस्कृति में फेटा सर्वोच्च सम्मान, अधिकार और राजसी वैभव का प्रतीक माना जाता है। भगवान गणेश को गणपति यानी गणों के स्वामी और नगराध्यक्ष यानी शहर के राजा के रूप में पूजा जाता है, जैसे किसी महान राजा का राज्य अभिषेक बिना मुकुट या पगड़ी के अधूरा है, वैसे ही बापा को फेटा पहनाकर भक्त उन्हें अपने जीवन और क्षेत्र के राजा के रूप में सम्मानित करते हैं। अब आपको दिखाते हैं मुंबई में ही सजा चंदनवाड़ी गणेश उत्सव मंडल का पंडाल, जहां बापा का पंडाल केदारनाथ धाम की थीम पर तैयार किया गया है। पंडाल तो अनोखा है ही, यहां बापा का स्वरूप भी खास है। यहां गौरी नंदन अपने वाहन मूषक को छोड़ पिता महादेव की सवारी नंदी महाराज पर विराजे है। एक हाथ में डमरू, दूसरे में त्रिशूल है। बर्फीले पहाड़ के बीच नंदी पर विराजे लगभग 28 फीट के बप्पा का रूप अनोखा है। बापा की प्रतिमा के पास ही भोलेनाथ का केदार स्वरूप भी स्थापित किया गया है।
1: इस वक्त मैं मौजूद हूँ साउथ मुंबई में स्थित अखिल चंदनवाड़ी गणेश उत्सव पंडाल में, जहाँ के बप्पा गोड़ गणपति बप्पा के नाम से भी जाने जाते हैं। तस्वीरों में देखें किस तरीके से बहुत ही ज्यादा विशाल, बहुत ज्यादा भव्य नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बप्पा की जो हाइट है वो तकरीबन 28 फीट है और केदारनाथ के अवतार में यहाँ पर स्थापित हुए हैं। डेकोरेशन चलचित्र देखने के बाद भी ये पता चल पा रहा है कि केदारनाथ की पूरी थीम रखी हुई है। साथ ही साथ आपको बताएं कि जब आप मुख्य द्वार से बप्पा की तरफ आगे बढ़ते हैं तो बाकी के भी जो 11 शिवलिंग हैं वो वहां पर स्थापित किए गए हैं, जिसमें ओंकारेश्वर, उज्जैन के महाकाल, काशी, नासिक के त्र्यंबकेश्वर जैसे नाम शामिल हैं।
0: अब चलिए आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम, जहां समुद्र तट पर गणपति विराट स्वरूप में विराजे हैं। इस प्रतिमा की ऊंचाई 63 फीट है। बताया जा रहा है कि ये बापा की सबसे ऊंची इको फ्रेंडली प्रतिमा है। गले में सजी है फूलों की सुंदर माला, माथे पर दमक रहा है तिलक, एक हाथ में धनुष और दूसरे हाथ से भक्तों को अभय का आशीर्वाद देते बापा। यहाँ से प्रतिमा ही नहीं बाप्पा के लिए 63 फीट ऊंचा भव्य पंडाल भी तैयार किया गया है। यानी जितनी ऊंची बाप्पा की प्रतिमा उतना ही विशाल उनका दरबार। इसे देखने और बाप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस विशाल प्रतिमा को कृष्णा जिले और आसपास के इलाकों के 1 लाख से ज्यादा घरों से जुटाई गई मिट्टी से तैयार किया गया है। बता दें कि 63 फीट ऊंची इको फ्रेंडली महागणपति प्रतिमा ने इंटरनेशनल अचीवर्स बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाई है। गणेश उत्सव के दौरान मुंबई में भटवाड़ी के राजा भी आस्थावानों को शुभाशीष दे रहे हैं। भटवाड़ी जा राजा की प्रतिमा को कागज से तैयार किया गया है। इस बार ये पंडाल अपनी बेहद निराली और तकनीक थीम को लेकर सुर्खियों में है। दरअसल इस बार भटवाड़ी चा गणेश पंडाल को AI थीम पर तैयार किया गया है।
1: खास बात यह है कि इस बार भटवाड़ी के राजा की जो थीम है वो AI पे रखी गई है। जैसे कि किस तरीके से AI की हेल्प से मिसाइल अपने आप में एक बहुत बड़ा काम कर रही है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने क्या कुछ कहा है, कैसे उन्हें लोग फॉलो कर रहे हैं, और इसके अलावा विज्ञान में AI कितने अंदर तक डीप तक जा चुकी है।
0: यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का देश की तरक्की में कितना योगदान है, इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये तमाम चीजें पंडाल में लगे पोस्टर, बैनर और LED पर दिखाए जा रहे विशेष वीडियो पर श्रद्धालुओं को दिखाया जा रहा है। चलिए चंद्रपुर, जहां बाप्पा का ये अद्भुत दरबार सजा है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में यहां के श्री सिद्धि विनायक गणेश मंडल ने सांवलिया सेठ की थीम पर ये गणेश पंडाल सजाया है। एक ही प्रतिमा में खाटू के श्याम बाबा और चित्तौड़ के सांवलिया सेठ साथ दर्शन दे रहे हैं। एक ही प्रतिमा में दोनों आराध्य देवों की छवियों का समावेश इसे बेहद खास बना रहा है। बड़ी संख्या में भक्त यहां पहुंच रहे हैं और अपनी अर्जियां लगा रहे हैं।
2: जो हारे के सहारे हैं उनके पास अपनी अर्जी लगाई है और मुझे यहां पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पूरा विश्वास है उन पे कि मेरी जो लगाई हुई अर्जी है वो पूरी होगी और इन्होंने इस बार यहां पे बहुत अच्छा सेटअप किया है।
3: अर्जी लगाई है, अच्छा लगता है, बाबा शाम पर्ची पूरी करेंगे हमारी, यही भावना से आए हैं।
0: बड़ी संख्या में भक्त अपनी मनोकामना लेकर बाप्पा के इस दरबार में पहुंच रहे हैं और लाल कपड़े में नारियल बांधकर मोर पंख के साथ अपनी अर्जी लगा रहे हैं। इस पंडाल में खूबसूरत रोशनी और सजावट के जरिए राजस्थान के प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर की बारीकियों को बेहद खूबसूरती से दर्शाया गया है और भक्त भी उसी भाव के साथ यहां दर्शन को पहुंच रहे हैं। चंद्रपुर में श्री कृष्ण का सांवलिया स्वरूप है तो वहीं मुंबई के पारसीवाड़ा में गणेश पंडाल को भगवान कृष्ण की दिव्य कथाओं यानी श्री कृष्ण लीला थीम पर तैयार किया गया है। पारसीवाड़ाचार राजा का पंडाल अपने 63वें साल में है। यहां बाप्पा का स्वरूप तो भव्य है ही, लेकिन अब की बार इस पंडाल को भी बेहद खास तरीके से सजाया गया है। कान्हा के जन्म से लेकर महाभारत तक के प्रसंग इस पंडाल में चारों ओर नजर आ रहे हैं।
1: गणपति उत्सव में डेकोरेशन किस तरह से बनाया जाता है, उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है और कितने महीने लगते हैं, कितने लोग लगते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये मैं किसी राजमहल की एंट्री गेट आपको नहीं दिखा रहा, बल्कि एक ऐसा गणेश उत्सव पंडाल दिखा रहा हूँ जो इस तरीके से सजाया गया है। श्रद्धालु इस रास्ते से होते हुए सीधे भीतर की तरफ चलते हैं। दीवारें देखें इस तरह से बनाई गई हैं जैसे पौराणिक कथाओं की गान गा रही हो, और यहाँ से लोग आते हुए सीधे सबसे पहले श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं जिनका बाल स्वरूप यहाँ पर झूले में रखा गया है। तो इसी से ये बात मालूम पड़ रही है कि कहीं न कहीं थीम भी इनके आसपास ही है। भीतर की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से एक भव्य पंडाल यहाँ पर बनाया गया है, और वाकई में महीनों मेहनत करने के बाद जो आर्टिस्ट हैं वो किस तरीके से रूप देते हैं एक पंडाल को, ये दिखाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। सबसे पहले तो आप देखें कि अच्छी खासी यहाँ पर जगह है और कितना ज्यादा मेहनत किया गया है। जहाँ भी आप देखें झूमर दिख रहा है और कुछ इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है, यानी कि श्रद्धालु जब यहाँ आते हैं तो आने के बाद बकायदा अच्छे दर्शन भी करते हैं। तमाम पदाधिकारी भी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं और अब सीधे गणपति बप्पा का दर्शन करें। पारसीवाड़ाचा महाराजा के नाम से मशहूर है। पास में ही सहार इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और उसके बगल का ही ये पंडाल है। हर साल इसी तरीके से बप्पा को यहाँ पर बनाया जाता है, कोई बदलाव नहीं लाया जाता है। बड़े अस्तीले से, बड़े प्यार से लोग यहाँ आते हैं और दर्शन करते हैं। पास में बहुत सारे यहाँ पर खिड़कियां के अनुसार पोस्टर एंड बैनर्स लगाए गए हैं जहां पर श्री कृष्ण की लीला दिखाई जाती है। थोड़ी ये तस्वीर देखें, ये भी एक बहुत बड़ी लीला है श्री कृष्ण जी की। और बचपन से जब वो जन्मे और जन्म से लेकर के इस युद्ध तक की जितनी भी कहानियां हैं वो सभी पोस्टर बैनर्स के जरिए श्रद्धालुओं तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है।
0: अब देखिए चंदरपुर में विराजे गजानन का अनोखा स्वरूप। एक हाथ में हल, दूसरे में बैलों की रस्सी, तन पर धोती कुर्ता और सिर पर गमछा, ये है विघ्नहर्ता का अन्नदाता अवतार, जिसे बनाया है चंदरपुर के युवा गणेश मंडल ने। ये मंडल हर साल अलग अलग सामाजिक और जन जागृति विषयों को गणेशो उत्सव की झांकियों के माध्यम से लोगों के सामने पेश करता है। इसी कड़ी में इस साल युवा गणेश मंडल ने किसान के रूप में बाप्पा की झांकी के जरिए अन्नदाता की मेहनत, संघर्ष और उसके दर्द को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, जिसे लोग खासा पसंद भी कर रहे हैं।
4: पुर के युवा गणेश मंडल में मौजूद है। यहाँ पर इस बार झांकी बनाई है, बेहद ही खास झांकी है। एक अलग थीम पर यहाँ पर झांकी बनाई गई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बाप्पा को किसान का रूप दिया गया है। किसान के रूप में बाप्पा यहाँ पर हल चलाते हुए नजर आ रहे हैं, खेती कर रहे हैं। यहाँ पर धान की खेती आपको नजर आएगी। बाप्पा हल जोत रहे हैं यहाँ पर जब अपने फसल के लिए, यहाँ पर वो बाप्पा मेहनत कर रहे हैं और दो यहाँ पर बैल भी आपको नजर आएंगे। मतलब पूरी जो यहाँ पर बाप्पा को किसान के रूप में दिखाने की कोशिश यहाँ पर मंडल की ओर से की गई है।
0: अब देखिए गणपति की वो झांकी जो अब से पहले आपने नहीं देखी होगी। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर 80 के दशक का ट्रेंड चल रहा है, सो इस गणेश पंडाल ने इसी थीम की झलक दिखाने की कोशिश की है। इस गणेश पंडाल में 80 के दशक के एक गांव की सुंदर तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई है। यहां गणपति दर्शन को आ रहे श्रद्धालुओं के दिलों में 80 के सादगी भरे दौर की यादें ताजा हो रही है। सिलबट्टे पर पिस्ता मसाला, कुएं से पानी भरती महिलाएं घर घर पहुंचा डाकिया, बायोस्कोप वाला ग्राम विद्यालय और पंचायत के दृश्यों को बापा के इस पंडाल में जीवंत किया गया है। ये वो दौर था जब गांवों में पेड़ के नीचे कुर्सी पर बैठकर मास्टर जी पढ़ाया करते थे और जब एक ही टीवी से पूरा मोहल्ला रामायण देखता था। जाहिर है इस पहल के जरिए आज की पीढ़ी को बीते वक्त की खुशनुमा यादों से जोड़ने की कोशिश की गई है। यहां आ रहे श्रद्धालु इसे काफी पसंद कर रहे हैं।
2: हमने 1980 के गणपति देखे, पुरानी यादें बहुत अच्छे से ताजा हुई और आज फिर वो 1980 के रील्स बनाने का ट्रेंड शुरू है सबका।
5: क्या क्या देखा आपने
2: या इसमें? यहाँ पे पुराना जो उनका बायोस्कोप से देखना, एक सरपंच के घर में रामायण चल रहा है, दैट इज एक ही टीवी होता था और सारा गांव बैठ के देखता था।
0: 80 के दशक का पंडाल खास है तो अकोला का ही ये हरा भरा पंडाल भी अनोखा है। यहाँ आस्था भक्ति के साथ ही प्रकृति की छवि को भी संजोया गया है। गजानन की प्रतिमा के इर्द गिर्द जंगल की सुंदर तस्वीर पेश की गई है। प्रकृति से सनातन संस्कृति का हमेशा से गहरा संबंध रहा है और यही इस हरे भरे पंडाल की थीम भी है। आज से नहीं सदियों से साधु संत प्रकृति को पूजते आए हैं। धर्म आध्यात्म के जरिए समाज को पर्यावरण के संरक्षण का महत्व भी बताते आए हैं। अकोला के विप्र युवा वाहिनी गणेश मंडल ने इस बार घटते जंगल और बढ़ते शहरीकरण को अपनी झांकी का विषय बनाया है। तो वही वारंगल के एक भक्त ने बापा को न्याय मूर्ति के रूप में दिखा दिया है। इस पंडाल में बापा का कोर्ट रूम सजा हुआ है, जहां बापा जज की कुर्सी पर विराजे हैं। काला कोट पहना है, लेकिन सिर पर मुकुट भी सजा है। सामने न्याय का तराजू है और बापा फैसला सुनाने के अंदाज में बैठे हैं। बड़ी संख्या में भक्त बापा के इस स्वरूप के दर्शन करने पहुंच रहे हैं।

0: लेकिन मुंबई के इस पंडाल का तो कहना ही क्या। सांता क्रूज के इस पंडाल में गणपति बाप्पा स्वयं अपने बाप्पा महादेव के रूप में विराजे हैं। जटाओं में गंगा, गले में नाग, हाथ में डमरू, बाघम्बर और त्रिशूल, अनोखा है गजानन का ये स्वरूप।
1: इस समय मैं मौजूद हूं मुंबई के सांताक्रूज इलाके में और यहां के सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल गौठन लेन बहुत ज़्यादा चर्चित है अपने बप्पा की सुंदरता के कारण। आप भी खुद करें दर्शन। वाकई में जैसा सुना था वैसा यहां पर पाया है। शिवजी के रूप में गणपति बप्पा यहां के दरबार में पधारे हुए हैं और इनका दर्शन करने के लिए तमाम श्रद्धालु आसपास के पहुँच रहे हैं। खास बात यह है कि मुंबई का वेस्टर्न लाइन का सांताक्रूज इलाके का जो लोकल रेलवे स्टेशन है ठीक उसके 500 मीटर की दूरी पे ही यहाँ पर शिवजी के रूप में गणपति बप्पा विराजमान हैं। थोड़ा उनका पंडाल भी देखिए कितनी खूबसूरती से इसे सजाया गया है। बाहर भी कुछ दृश्य हैं, तस्वीरें हैं। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि हम आकर दिखाएं। गणपति बप्पा तक हर कोई पहुँच नहीं पाता, इस वजह से यहाँ पर एक छोटे गणपति बप्पा को भी हमेशा विराजमान किया जाता है। हर कोई बप्पा को दूरदर्शन करने के बाद इनके पग छूता है और जो भी इन्हें चढ़ाना होता है, अर्पण करना होता है, वो चढ़ाते हैं।
0: वही महाराष्ट्र के ही अमरावती में भक्तों ने ड्राई फ्रूट से बाप्पा का स्वरूप तैयार किया है। 31 किलो अंजीर और मखाने से बाप्पा की ये 7 फीट ऊंची इको फ्रेंडली प्रतिमा बनाई गई है। अमरावती के जय हिंद गणेश उत्सव पंडाल में पर्यावरण संरक्षण और जल बचत का संदेश देने के लिए इस साल बाप्पा के इस स्वरूप का सृजन किया गया। इस अनूठे प्रयोग के जरिए जल है तो कल है का संदेश दिया जा रहा है। इसी बीच गुजरात के अमरेली में गणपति के धनपति रूप के दर्शन हो रहे हैं। यहां भक्तों ने बाप्पा को करीब 25 लाख रुपए और अमेरिकी डॉलर से सजा दिया है। 20, 50, 100, 200 और 500 रुपए के नोटों से बाप्पा का मुकुट, हार, हाथ और पैर सजाए गए हैं। खास बात ये है कि 20 साल से गणपति महोत्सव आयोजन कर रहे सद्भावना ग्रुप ने पहली बार डॉलर से भी बाप्पा का श्रृंगार किया है। बाप्पा के इस अनोखे स्वरूप के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बाप्पा का कुछ ऐसा ही स्वरूप तेलंगाना में भी नजर आ रहा है। तेलंगाना के पलवंचा शहर में 2 अलग अलग पंडालों में भगवान गणेश की मूर्तियों को कुल 2,90,00,000 रुपए के असली करेंसी नोटों से सजाया गया है, जिसमें 1,40,00,000 रुपए के नोटों से बाप्पा को सजाया गया है। वही पूरे पंडाल को सजाने के लिए 10, 20, 50, 100, 200, 500 के नोटों का इस्तेमाल किया गया है। इस भव्य सजावट के लिए स्थानीय व्यापारियों ने आर्थिक योगदान दिया और बैंक कर्मचारियों ने नए नोट उपलब्ध कराने में मदद की। बाप्पा का माइक्रो स्वरूप भी जरा देख लीजिए। विग्रहहरता भगवान गणेश की ये ऐसी अद्भुत प्रदर्शनी है जहां बाप्पा कई अलग अलग साइज और अलग अलग स्वरूप में मौजूद है। लेकिन बाप्पा के इन स्वरूपों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि गणेश जी की इन मूर्तियों का आकार बहुत ही छोटा है। नासिक के सुनार भगवान दास खरोटे ने अलग अलग साइज की 291 सूक्ष्म सोने की गणेश मूर्तियां बनाई है। इनमें सबसे सूक्ष्म 3 मिलीमीटर से लेकर 1 इंच साइज तक की गणेश मूर्ति शामिल है। यहाँ गायक, तबला वादक, हारमोनियम वादक और वीणा वादक जैसे अलग अलग रूपों में छोटी सोने की गणेश मूर्तियां भी मौजूद है। इसके अलावा अष्ट विनायक, हेरम गणेश, मखारा में गणेश, कंबोडिया और इंडोनेशिया की सोने की गणेश मूर्तियों की रेप्लिका भी आपको यहां दिख जाएंगे। साथ ही बाली, जावा, मंगोलिया, सुमात्रा जैसे अलग अलग देशों से अलग अलग रूपों और साइज में गणेश की छोटी सोने की मूर्तियां भी मौजूद है।
2: चलिए इसी के साथ जेएनडी स्पेशल की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी और पॉजिटिव खबरें जा रही हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

दिल्ली में गणपति विसर्जन के लिए सरकार की ओर से तैयारियां की गई हैं। विसर्जन के लिए 81 जगहों पर आर्टिफिशियल तालाब बनाए गए हैं। तालाबों के आसपास सुरक्षा लाइट्स और मेडिकल फैसिलिटी का भी इंतजाम किया गया है। यहां श्रद्धालु सुरक्षित और आसानी से विसर्जन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने धार्मिक आस्था और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए 110 खंडित मूर्ति संग्रह केंद्र भी बनाए हैं।

0: देश भर में गणेशोत्सव की धूम है। इस बीच बापा के भक्तों के लिए गुड न्यूज आई है। दिल्ली में गणपति विसर्जन के लिए सरकार ने विशेष इंतजाम किए हैं। चाहे गणेश उत्सव हो या दशहरा, हर उत्सव के बाद देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ पूजा सामग्रियों का विसर्जन एक बड़ी समस्या होती है। दिल्ली सरकार ने इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने की कोशिश की है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि आस्था और पर्यावरण संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है, इसमें नागरिकों की भागीदारी जरूरी है।
1: एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इतने प्रेम से बाबा को घर लाते हो, भगवान की पूजा करते हो, तो कभी भी खंडित तस्वीर को, मूर्ति को ऐसे छोड़ के अनादर करते हुए नहीं आना है, उसको भी स्थान देना है।
0: दिल्ली सरकार की पहल के तहत पुरानी खंडित मूर्तियों और पूजा सामग्री के सम्मानजनक निस्तारण के लिए 110 जगहों पर विशेष संग्रह केंद्र बनाए गए हैं। ये पहल यमुना को प्रदूषण से बचाने में भी मददगार साबित होगी।
2: इस वक्त हम मौजूद है रोहिणी के सेक्टर 15 में, ठीक विद्या भारती स्कूल के बाहर, जहां पर आपको ये केंद्र जो है वो नजर आ जाएगा, ताकि लोग जो है वो अपने घर का जितना भी पूजा सामग्री का सामान है वो यहाँ पर आके जो है वो सामान वो जो है यहाँ पर रख सके। आप देख सकते हैं, तस्वीरें भी पहले दिखाऊंगी कि किस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर नजर आने वाली है। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा नजर आएगा आपको कुछ इस तरीके के जो मूर्तियाँ, भगवान की मूर्तियों पर जो चुनरी चढ़ती है, जो दुपट्टे चढ़ते हैं, वो आपको सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ नजर आ जाएंगे। आपको इसमें सूखा नारियल जो है वो भी नजर आ जाएगा कि लोगों ने अब सूखे नारियल को जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है। इसके अलावा जो है आपको फूल जो है वो नजर आ जाएंगे, आपको मूर्तियाँ भी जो है इसमें नजर आ जाएगी। जितनी भी मंदिर की जो से जरूरत की जो चीजें होती है वो सभी चीजें जो है वो यहाँ नजर आने वाली है।
0: अक्सर पुरानी या खंडित मूर्तियों और पूजा पाठ से संबंधित सामग्री को लेकर धार्मिक भावनाओं के कारण पेड़ों के नीचे, पार्कों, सड़क किनारे या दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर रख देते हैं। इससे एक ओर धार्मिक आस्था जुड़ी होती है, तो वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता और पर्यावरण से जुड़ी चुनौती भी सामने आती है। ऐसे में दिल्ली के लोग सरकार की नई पहल का दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं।
3: बहुत बढ़िया सुविधा हो गई, नहीं तो ऐसे ही इधर उधर रखते हैं, कोई फायदा नहीं रहता ना, पाप ही चढ़ता है। अभी एक सुविधा हो गई, एक जगह बनी, वहाँ रख दिया, ना प्रदूषण हुआ ना कुछ हुआ। बहुत बढ़िया करा रेखा, अभी हम थैला भर के लाए थे, हमने अपना पूरा कर दिया विसर्जन, तो हमारे लिए तो बेस्ट है।
0: दिल्ली में गणपति मूर्तियों के विसर्जन के लिए 81 जगहों पर आर्टिफिशियल तालाब बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं से मूर्ति विसर्जन केवल कृत्रिम तालाबों में ही करने को कहा गया है। गणेश विसर्जन की तैयारियों में सुरक्षा, स्वच्छता, लाइट, चिकित्सा, आपातकालीन व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन और पर्यावरणीय सुरक्षा जैसे पहलुओं को भी शामिल किया गया है। सरकार ने यमुना और दूसरे जल स्रोतों में मूर्ति, फूल माला या पूजा सामग्री डालने से मना किया है। श्रद्धालुओं को पर्यावरण अनुकूल मूर्तियों को प्राथमिकता देने और POP और हानिकारक रसायनों से बनी प्रतिमाओं से बचने की सलाह दी गई है। दिल्ली से मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे,
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: दिव्य और भव्य होगा दीपोत्सव 2026। 30 लाख दीपों से जगमगाएगी अयोध्या। 2100 ड्रोन शो से बढ़ेगा दीपोत्सव का आकर्षण। गुजरात के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी में चल रहे भादरवी महामेले में उमड़ रहा है जनसमूह। 3 दिन में पहुंचे 15 लाख से ज्यादा भक्त। नैनीताल में फूलों की बारिश के बीच कैलाश को रवाना हुई मां नंदा सुनंदा, हजारों नम आंखों ने दी विदाई, उमड़ा आस्था का सैलाब। वामन द्वादश पर बद्रीनाथ में धूमधाम से निकली भगवान उद्धव जी की डोली, माता मूर्ति महोत्सव में उमड़ा भक्तों का सैलाब। नागपुर के गणेश टेकरी मंदिर में भगवान गणेश को चढ़ाया गया 1101 किलो का महालड्डू। 5 फीट ऊंचे और 4 फीट चौड़े लड्डू को 22 कारीगरों ने 6 दिन में तैयार किया। झांसी में शाही अंदाज में निकली बप्पा की प्रतिमा की विसर्जन यात्रा। महाराज के रूप में विराजमान हुए बप्पा, झूमते नजर आए भक्त।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं दमदार जोड़ीदार की। जंग के अभ्यास में ये जोड़ी है भारत और अमेरिका की, जिसके 1200 सैनिक इन दिनों पाकिस्तान की सरहद के करीब बीकानेर में युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। दोनों देशों के जवान युद्ध या मिशन के लिए एक दूसरे का रण कौशल लगातार देख रहे हैं और सीख रहे हैं। इस अभ्यास में अपाचे जैसे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स के साथ अभी भी अभ्यास किया जा रहा है और आपसी तालमेल के साथ आसमान में जमीन तक दुश्मन को मार गिराने की रणनीति बनाई गई। आज आपको औली और बीकानेर में चल रहे इस युद्धाभ्यास की हैरतअंगेज तस्वीरें दिखाएंगे, धनुष और पिनाका का भी दमखम दिखाएंगे और इसके बाद बात होगी तरंग शक्ति 2.0 की, जिसका जोधपुर में 26 सितंबर से आगाज होने जा रहा है और जिसमें पहली बार अमेरिका का F-35 भी शामिल होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सरहद के करीब युद्धाभ्यास कर रहे दमदार जोड़ीदारों से। आसमान में अपाची की दहाड़ और जमीन पर पिनाका से रॉकेट की बरसात, यकीनन राजस्थान में ऐसी तस्वीरें दुश्मन देश को डरा रही होंगी, पर ये तस्वीरें हैं भारत और अमेरिका के संयुक्त युद्धाभ्यास की। बीकानेर में दोनों देशों के सैनिकों ने मिलकर हवा और जमीन की ताकत और आपसी तालमेल को परखा। जहां अपाचे ने पिन पॉइंट फायरिंग से अपनी मारक क्षमता दिखाई, वहीं पर धनुष और पिनाका ने जमीनी ताकत का दमखम दिखाया। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में चल रहे इस अभ्यास में युद्ध की रणनीति, सर्विलांस और साझा कार्रवाई पर भी मंथन हुआ। रिपोर्ट देखिए।

0: से आंख मिलाते, अपनी शान बताते। जब परवाज भरता है, दिल दुश्मन का डरता है। हवा के पैरों पर पराक्रम का हस्ताक्षर है ये, अपाचे है ये। और इसकी ताकत की नुमाइश एक बार फिर हुई बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, जहां भारत और अमेरिका की फौज मिलकर युद्धाभ्यास कर रही है। देखिए हवा का टैंक कहा जाने वाला ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर कैसे पिन पॉइंट मार करता है। एक बार लक्ष्य तय हुआ तो बस समझिए कि दुश्मन गया। हेलीकॉप्टर से निकलती 30 mm गोलियों की रफ्तार देखिए और जमीन पर उनकी मार देखिए। गोलियों की आवाज से रेगिस्तान गूंज उठा और दूर कहीं लक्ष्य धुआं धुआं हो गया। युद्धाभ्यास 2026 में एविएशन की ताकत जोड़ते हुए भारतीय सेना के अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को शामिल किया गया। उसकी ताकत और कौशल को दोनों देशों के जवानों ने आजमाया और अपाचे ने अपनी खूबियां बता दी। करीब 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है इसकी और इसके नीचे लगी राइफल से एक बार में 30 mm की 1200 गोलियां भरी जा सकती हैं। फ्लाइंग रेंज करीब 550 किलोमीटर है और एक उड़ान में करीब 3 घंटे तक उड़ान भर सकता है अपाचे। कई तरह के मिसाइलों से लैस है ये हेलीकॉप्टर। दुनिया के सबसे एडवांस लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स में शुमार है और इसका युद्धाभ्यास में शामिल किया जाना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
1: पाकिस्तान की सीमा के नजदीक भारत और अमेरिका के सैनिक न सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमान में भी अपना रण कौशल दिखा रहे हैं। युद्धाभ्यास के दौरान टैक्टिकल ड्रिल्स के साथ साथ अब हवाई करतब भी देखने को मिल रहे हैं और साथ ही किस तरह से एक युद्ध में अपने एयर असेट्स का इस्तेमाल किया जाता है उस पर भी जोर दिया जा रहा है। और इसी कड़ी में भारतीय सेना ने अपने अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स के जरिए खास फायरिंग भी इस युद्धाभ्यास में की है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स जो भारत ने अमेरिका से ही लिए हैं, हाल ही में भारतीय सेना के एविएशन विंग का हिस्सा बने हैं और अब अमेरिका के सैनिक भारत में आकर इन एविएशन ड्रिल्स को देख रहे हैं और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि किस तरह से जमीन से लेकर आसमान तक एविएशन की बात हो या फिर तोप की बात हो, आर्टिलरी की बात हो, हर तरफ भारत का कौशल, भारत की स्किल और भारत के युद्ध में जो नई तकनीक है वो कैसे आगे बढ़ रही है और अमेरिका इससे सीख भी रहा है और इसे देख भी रहा है।
0: असल में अभ्यास के दौरान भारत और अमेरिका के सैनिकों ने एक मिशन की योजना बनाई और इसी के तहत जमीन पर मौजूद सैनिकों और हवा में उड़ान भर रहे अपाचे के बीच तालमेल बनाया गया। मकसद ये देखना था कि जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर और जमीनी सैनिक मिलकर कितनी तेजी से काम कर पाएंगे। इस तरह हवाई हमले और जमीनी कार्रवाई को साथ जोड़ने और साथ ही संपर्क बनाए रखने और टाइमिंग का अभ्यास किया गया। इस युद्धाभ्यास में भारतीय और अमेरिकी सैनिक एक दूसरे के रण कौशल को करीब से देख समझ रहे हैं। युद्ध के दौरान प्रक्रिया, संचार और तालमेल को बेहतर बनाया जा रहा है। जाहिर है कि इसमें सिर्फ जमीनी तैयारी नहीं बल्कि फोकस हवा और जमीन की ताकत के बीच तालमेल बनाने का है। और जहां तक बात जमीनी ताकत की है तो उन्हें इन धमाकों से समझा जा सकता है। जो M777 अल्ट्रा लाइट होवित्ज़र धनुष तो और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के हैं। अत्याधुनिक तकनीक वाले हथियार रणभूमि में दुश्मन के लिए काल हैं, जिनके सटीक इस्तेमाल का अभ्यास सरहद के पास किया गया। बड़ा की तेजी के साथ तोप के गोले डाले गए और जब फायरिंग हुई तो पूरा इलाका धमाकों से गूंज उठा। फायर! अब जरा पिनाका की ताकत भी देख लीजिए। कमांड मिलते ही इसकी मल्टी बैरल लॉन्चर से कई रॉकेट लक्ष्य की ओर लपके। बीकानेर के इस रेतीले इलाके में भारतीय और अमेरिकी सैनिकों ने मिलकर एयर डिफेंस तोपों और एम लीज प्रणालियों को भी परखा। इस दौरान फायरिंग की योजना बनाई गई और उसमें आपसी तालमेल भी परखा गया। लेकिन भारत अमेरिका युद्धाभ्यास में फोकस कई और चीजों पर भी है। युद्ध या मिशन के दौरान सर्विलांस की रणनीति क्या हो, टोही अभियानों की तैयारी कैसी की जाए और इसमें ड्रोन्स का बेहतर तालमेल कैसे हो, इन सभी जरूरी मुद्दों पर दोनों देशों के सैनिक मंथन कर रहे हैं। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में दोनों सेनाओं की ऑब्जर्वेशन पोस्ट टुकड़ियों ने भी साथ मिलकर काम किया। लक्ष्य की पहचान करने के साथ एक्शन की रणनीति तय हुई। ये तस्वीरें भारत और अमेरिकी सैनिकों की ताकत और कौशल की नुमाइश है। लेकिन भारत और पाकिस्तान की सरहद के करीब ये युद्धाभ्यास दुश्मन के लिए एक संदेश भी है। आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच ये 22वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसकी शुरुआत 15 सितंबर को हुई। इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के 600-600 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: क्वाड देशों में शामिल भारत और अमेरिका के बीच सैन्य साझेदारी बहुत मजबूत है और ये युद्धाभ्यास दोनों देशों के आपसी विश्वास की पहचान है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब अमेरिका और भारत ने अभ्यास के लिए दो अलग अलग इलाकों को चुना है, एक तरफ उत्तराखंड का औली और दूसरी तरफ राजस्थान का बीकानेर। भारत के नजरिए से अगर हम देखें तो ये उत्तरी और पश्चिमी मोर्चे पर एक साथ दुश्मनों से निपटने की तैयारी है। रिपोर्ट देखिए।

0: दो देश, दो सेनाएं, दो अलग युद्ध क्षेत्र। एक तरफ बर्फीले पहाड़ है, वीरों की दहाड़ है, दूसरी ओर तपता रेगिस्तान है, युद्ध घमासान है। भारतीय जाबाज अमेरिकी सेना के साथ 22वीं बार युद्धाभ्यास करने उतरे हैं। पहली बार दो अलग अलग भूभागों पर एक साथ। एक अभ्यास उत्तराखंड के औली में फॉरेन ट्रेनिंग नोड और राजस्थान की महाजन फायरिंग रेंज में एक साथ चल रहा है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य पहाड़ी और अर्ध पहाड़ी क्षेत्रों में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की संयुक्त क्षमता को बढ़ाना है। यह अभ्यास सिर्फ पारंपरिक प्रशिक्षण नहीं है, बल्कि इसमें दोनों सेनाओं के विशेषज्ञ मल्टी डोमेन वॉरफेयर यानी कई क्षेत्रों में एक साथ युद्ध की उभरती तकनीकों पर विचार साझा कर रहे हैं। ये पहला मौका है जब भारत का इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप पहली बार किसी विदेशी सेना के साथ संयुक्त अभ्यास में भाग ले रहा है। तो वहीं ये भी पहली बार हो रहा है जब अमेरिका ने अपनी 3 MDTF यानी थर्ड मल्टी डोमेन टास्क फोर्स को भारत के साथ इस साझा अभ्यास में हिस्सा लेने भेजा है। ये फोर्स अंतरिक्ष, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और लंबी दूरी की मिसाइलों को एक साथ नियंत्रित करती है। अभ्यास के पहले हफ्ते में अमेरिकी और भारतीय सैनिकों ने एक दूसरे के हथियारों, नाइट विजन उपकरणों और अनमैन्ड सिस्टम्स का अध्ययन किया। सैनिकों ने एक दूसरे के राइफल्स और हथियारों को चलाने की तकनीकों और सुरक्षा प्रोटोकॉल पर चर्चा की। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में अमेरिका के सबसे एडवांस्ड मोबाइल काउंटर ड्रोन सिस्टम MILDS को तैनात कर पहली बार भारतीय सैनिकों को इसके संचालन का लाइव प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा रैंपलिंग यानी हेलीकॉप्टरों और ऊंचाई वाले स्थानों से रस्सियों के सहारे नीचे उतरने का भी कड़ा अभ्यास इस एक हफ्ते की एक्टिविटीज में शामिल रहा। इसके अलावा दोनों सेनाओं ने संदिग्ध आतंकियों या दुश्मनों के ठिकानों को घेरने के लिए बिल्डिंग क्लीयरेंस और रोम इंटरवेंशन का संयुक्त अभ्यास किया। रैपलिंग और रोम इंटरवेंशन के अभ्यासों से इंडियन आर्मी के ट्रेन डॉग्स ने खास भूमिका निभाई। बता दें कि भारतीय सेना के 4 ट्रेन डॉग्स राइस, विक्टर, जैक और राउडी युद्धाभ्यास 2026 में भाग ले रहे हैं। इन चारों में राउडी और विक्टर रामपुर हाउंड है यानी भारत की अपनी स्वदेशी नस्ल, जैक बेल्जियन मेलिनोइस है और राइस लेब्राडोर रिटीवर। इन चारों की खूबियां अलग हैं, लेकिन मिशन एक, जवानों का साथ देना और खतरे को वक्त रहते पहचानना। क्योंकि जहां इंसान की नजरों की सीमा समाप्त होती है, इनकी सूंघने की ताकत कई बार छिपे खतरे तक पहुंचने में मदद करती है। यही वजह रही कि इन डॉग्स ने अमेरिकी सैनिकों के सामने रोम इंटरवेंशन और रैपलिंग में अपना दम दिखाया। खास तौर पर भारतीय नस्ल के रामपुर हाउंड, विक्टर और राउडी ने तो कमाल ही कर दिया। अभ्यास के दौरान इनकी फुर्ती, सूंघने की क्षमता और कठिन सामरिक परिस्थितियों में क्विक रिएक्शन को देखकर अमेरिकी सैनिक भी हैरान रह गए। ये ऑपरेशन अब तक इस युद्धाभ्यास की हाइलाइट्स में से एक रहा। आपको बता दें कि अपनी तमाम हाइलाइट्स और स्पष्ट उद्देश्यों से इतर इस युद्धाभ्यास को आयोजित करने के पीछे सबसे बड़े सामरिक और रणनीतिक संदेश है। उत्तराखंड का औली LSE यानी चीन सीमा से केवल 100 किलोमीटर की दूरी पर है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर अमेरिकी सैनिकों, विशेष रूप से अलास्का की 11वीं एयरबोर्न डिवीजन का भारतीय सेना के साथ अभ्यास करना ये दिखाता है कि दोनों सेनाएं अत्यधिक ठंड और पहाड़ी इलाकों में मिलकर चीन के खिलाफ मोर्चा संभाल सकती हैं। जबकि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज का इलाका पाकिस्तान सीमा के बेहद करीब है। यहाँ हिमार्स, पिनाका रॉकेट और अपाचे हेलीकॉप्टरों से की जा रही लाइव फायरिंग ये साफ संदेश देती है कि भारत अमेरिका का रक्षा सहयोग केवल समुद्री क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि ये खल सीमा पर पूरी तरह सक्रिय है। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और अब बात करते हैं तरंग शक्ति 2.0 की। जोधपुर का आसमान जल्द ही दुनिया के आधुनिक लड़ाकू विमानों की दहाड़ से गूंजने वाला है। भारतीय वायुसेना के बहुपक्षीय अभ्यास तरंग शक्ति 2.0 में 7 देशों की वायुसेना अपनी ताकत और तकनीक का प्रदर्शन करने जा रही हैं। लेकिन इस बार सबसे बड़ा आकर्षण अमेरिका का F-35 स्टेल्थ फाइटर होगा, जो भारत में पहली बार किसी सैन्य अभ्यास का हिस्सा बनने जा रहा है। राफेल, सुखोई, तेजस और F-16 जैसे फाइटर जेट्स भी इस हवाई शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा होने जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए।

0: आसमान में गरजते फाइटर जेट, रफ्तार से सहमी हवा, एक साथ देश और दुनिया के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान। जल्दी ही जोधपुर में होने जा रहा है ऐसा शक्ति प्रदर्शन जिस पर पूरी दुनिया की नजर होगी, क्योंकि पहली बार भारतीय सैन्य अभ्यास में उतरने जा रहा है अमेरिका का F-35 स्टिल्थ फाइटर। भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े बहुपक्षीय हवाई अभ्यासों में शामिल तरंग शक्ति 2.0 की तैयारियां पूरी हो चुकी है। 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक जोधपुर एयरबेस पर होने वाले इस अभ्यास में 7 देश अपने एयरक्राफ्ट के साथ उतरेंगे। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और UAE अपनी हवाई क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। वहीं 32 देश ऑब्जर्वर के तौर पर अभ्यास को देखेंगे, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा निगाहें अमेरिका के F-35 पर होंगी। पांचवी पीढ़ी का यह स्टेल्थ फाइटर पहली बार भारत में किसी सैन्य अभ्यास का हिस्सा बनेगा। अमेरिका 6 F-35 के साथ पहुंचेगा। इसके अलावा 2 KC-135 भी अमेरिकी दल में शामिल होंगे। F-35 इससे पहले एरो इंडिया 2025 में भारत आ चुका है, लेकिन तरंग शक्ति में इसकी मौजूदगी पहली बार होगी।
1: F-35 के साथ हम पहले एक्सरसाइज कर चुके हैं, इंटरनेशनल एक्सरसाइज में हमने पार्ट लिया है, और उसमें 2 या 3 एक्सरसाइज में जो मुझे याद पड़ता है हमने F-35 के साथ एक्सरसाइज की, इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर।
0: भारत भी अपना स्वदेशी 5th जनरेशन फाइटर विकसित कर रहा है और इसके साथ जरूरी सपोर्ट सिस्टम, कौशल और तकनीकी क्षमता तैयार करने की भी योजना है। ऐसे में अमेरिकी F-35 की भारत में मौजूदगी मायने रखती है।
2: One is that we are developing our own 5th generation aircraft, AMCA, and Indian Air Force has put all its weight and all its technical capability, technical know-how behind it. The second aspect is we should be able to somehow detect it, and that capability is also we are developing.
1: Well, I think that is more than sufficient to know at this stage.
0: तरंग शक्ति में सिर्फ विदेशी विमानों की ताकत नहीं दिखेगी, भारतीय वायुसेना भी अपने प्रमुख लड़ाकू प्लेटफॉर्म मैदान में उतारेगी। राफेल, सुखोई 30 MKI, तेजस, मिराज 2000, जगुआर और MiG-29 जैसे विमान इस हवाई अभ्यास का हिस्सा होंगे। फ्रांस 7 राफेल, 3 A400M और 2 MRTT के साथ पहुंचेगा। UAE 6 F-16 और 1 ग्लोबल 6000 लाएगा। जर्मनी के 2 A400M, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के C-130, जबकि श्रीलंका का किंग एयर 350 भी शामिल होगा। इस पूरे अभ्यास की एक खासियत इसका इंटर ऑपरेबिलिटी वाला कॉन्स्ट्रक्ट है, यानी अलग अलग देशों की वायुसेनाएं साझा अभियानों में एक दूसरे के साथ काम करने की क्षमता परखेंगी। भारतीय वायुसेना के मुताबिक 65 देशों को न्योता दिया गया था, जिनमें से भागीदारी और ऑब्जर्वर की भूमिका अभ्यास की जरूरत के मुताबिक तय की गई। इस दौरान मित्र देशों की तकनीक, रणनीति, संचालन अनुभव और अलग अलग क्षमताओं से सीखने का मौका मिलेगा।
1: 10 अक्टूबर को हम लोग डिस्टिंग्विश्ड विजिटर्स डे ऑर्गेनाइज करेंगे। अबाउट 10 चीफ्स और चीफ इक्विवेलेंट आर गोइंग टू टेक पार्ट एज पर द करेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू अस, and 31 other one level below will take part. We are doing a seminar here on 9th in Delhi only, and after that we are taking them to DV Day. It is called Distinguished Visitors Day. That will happen on 10th of October. So 10-11 chiefs I think will come. We will be able to confirm this when we are closer to the event.
0: जोधपुर में यह हवाई हलचल ऐसे वक्त होने जा रही है जब इसी एयरबेस पर भारत और जापान का वीर गार्जियन 2026 अभ्यास अभी खत्म हुआ है। 9 से 22 सितंबर तक चले इस अभ्यास में भारतीय राफेल, सुखोई 30 MKI और तेजस के साथ जापान के F2A ने हिस्सा लिया। अब उसी आसमान में बहुराष्ट्रीय उड़ानों का नया दौर शुरू होगा, जहां अलग अलग देशों के लड़ाकू विमान साझा मिशनों के जरिए अपनी क्षमता और तालमेल को परखेंगे। दरअसल तरंग शक्ति की शुरुआत 2024 में हुई थी। पहला संस्करण दो चरणों में सुलूर और जोधपुर में आयोजित किया गया था। सुलूर चरण में फ्रांस के राफेल, जर्मनी, स्पेन और ब्रिटेन के यूरोफाइटर टाइफून शामिल हुए थे। इसके बाद जोधपुर में ऑस्ट्रेलिया के EA-18G ग्रॉलर, ग्रीस और UAE के F-16 तथा अमेरिका के A-10 और F-16 जैसे विमान पहुंचे थे। अब इसमें तरंग शक्ति का दूसरा संस्करण पहले से कहीं ज्यादा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई मंच तैयार कर रहा है। एक तरफ पांचवी पीढ़ी का अमेरिकी F-35, दूसरी तरफ भारतीय राफेल, तेजस और सुखोई। जोधपुर का आसमान सिर्फ विमानों की उड़ान नहीं देखेगा, बल्कि अलग अलग वायु सेनाओं के साझा प्रशिक्षण, तालमेल और तकनीकी अनुभवों का गवाह बनेगा।
3: तरंग शक्ति 2026 यानी भारत की अपनी मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज शुरू हो रही है 26 सितंबर को। इसमें पूरी दुनिया की लगभग 40 वायुसेनाएं शामिल होंगी। 7 वायुसेनाएं जो अपने एयरक्राफ्ट लेकर, अपने फाइटर्स लेकर इस तरंग शक्ति का हिस्सा बनेगी। और अमेरिका का F-35 फाइटर पहली बार भारत की वायुसेना के साथ भारत में अपने युद्ध कौशल को दिखाएगा, और वो भी पाकिस्तान की सीमा के बेहद नजदीक। जोधपुर में शुरू होने वाली तरंग शक्ति में पूरी दुनिया के एयर पर्सनल होंगे और साथ ही वायुसेना प्रमुख भी इसका हिस्सा बनने वाले हैं। भारतीय वायुसेना लगातार अपने अलग अलग कौशल, अपने अलग अलग एयर टेक्निक्स और अपने ड्रिल्स को यहां पर साझा करेगी। साथ ही ये भी पैगाम देगी कि किस तरह से भारतीय वायुसेना लगातार दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वायुसेनाओं के साथ मिलकर इंटर ऑपरेबिलिटी की ट्रेनिंग कर रही है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान हो या फिर चीन, दोनों के लिए संदेश बिल्कुल साफ है कि भारत के साथ पूरी दुनिया की तमाम वायुसेनाएं मित्र सेनाओं की तरह खड़ी हैं। अमेरिका हो या फिर रूस, तमाम देश एक साथ मिलकर इस तरंग शक्ति का हिस्सा बनेंगे, और पाकिस्तान हो या चीन, दोनों के लिए ये एक कड़ा संदेश भी साबित होगा। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ शिवानी शर्मा, गुड न्यूज स्टूडियो के लिए दिल्ली से।
4: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज स्टूडियो के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। बात करेंगे दिल्ली सरकार की एक ऐसी पहल की जो आस्था का सम्मान करने के साथ पर्यावरण की स्वच्छता के लिए भी बेहतर है। आपने अक्सर कहीं खंडित मूर्तियां यूं ही पड़ी हुई देखी होंगी, जहां पूजा की बिखरी सामग्रियों पर भी आपकी नजर जरूर पड़ी होगी। लेकिन अब दिल्ली में जगह जगह ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे ऐसी तस्वीरें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। खंडित मूर्तियों और पूजा सामग्रियों को सम्मान देने के लिए विशिष्ट केंद्र बनाए गए हैं।

0: आस्था और भक्ति का निर्वाह हर कोई अपने अपने तरीके से करता है। कोई घर में पूजा पाठ करता है तो कोई मंदिर जाकर। इसी तरह गणेशों उत्सव से लेकर नवरात्र तक ऐसे कई विशेष धार्मिक अवसर होते हैं जिसमें पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ अल्प अवधि के लिए प्रतिमाएं स्थापित की जाती है। लोग पूरे विधि विधान के साथ उन मूर्तियों और पूजन सामग्रियों का विसर्जन भी करते हैं। इसके बाद भी जगह जगह पूजन सामग्री और खंडित मूर्तियां दिख जाती है। इसको लेकर दिल्ली सरकार ने अब एक ऐसी पहल की है जिससे त्योहार के समापन के बाद भी आस्था का सम्मान हो सके। दिल्ली में जगह जगह खंडित मूर्तियों और पूजा सामग्री के सम्मानजनक संग्रह के लिए केंद्र बनाए गए हैं, जहां लोग इनको लेकर पहुंच रहे हैं और वहां जमा कर रहे हैं।
1: बहुत बढ़िया सुविधा हो गई, नहीं तो ऐसे ही इधर उधर रखते हैं, कोई फायदा नहीं रहता ना, पाप ही चढ़ता है। अभी एक सुविधा हो गई, एक जगह बनी, वहाँ रख दिया, ना प्रदूषण हुआ ना कुछ हुआ। बहुत बढ़िया करा रेखा, अब हम थैला भर के लाए थे, हमने अपना पूरा कर दिया विसर्जन, तो हमारे लिए तो बेस्ट है।
2: 21st सेंचुरी में हमें थोड़ी अपनी थिंकिंग चेंज करनी चाहिए, गवर्नमेंट के साथ हमें स्टेप टू स्टेप से चलना चाहिए।
3: हमारी पूजनीय चीजें हैं और उनको फिर एक समय हमने उनको बहुत अच्छी तरह उनसे पूजा की और फिर आज इस कदर हम उन्हें छोड़ देते हैं कि भाई अब हमारे काम की नहीं रहे, अगर नहीं भी रहे तो उनका कम से कम सही तरीके से प्रवाहित हो जाए या जहां पर भी रखा जाए उनको ठीक तरीके से उनका विसर्जन हो जाए। ये वेरी अप्रिशिएटेड है दिल्ली सरकार की तरफ से, मच बेटर।
0: इन केंद्रों के होने से धार्मिक आस्था के सम्मान के साथ ही इससे जलवायु को साफ रखने में भी मदद मिलेगी।
4: देख सकते हैं तस्वीरें पहले दिखाऊंगी कि किस तरीके की चीजें आपको यहाँ पर नजर आने वाली है। अच्छा, जो सबसे ज्यादा नजर आएगा आपको कुछ इस तरीके के जो मूर्तियां भगवान की मूर्तियों पर जो चुनरी चढ़ती है, जो दुपट्टे चढ़ते हैं, वो आपको सबसे ज्यादा जो है वो यहाँ नजर आ जाएंगे। आपको इसमें सूखा नारियल जो है वो भी नजर आ जाएगा कि लोगों ने अब सूखे नारियल को जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है। इसके अलावा जो है आपको फूल जो है वो नजर आ जाएंगे, आपको मूर्तियां भी जो है इसमें नजर आ जाएगी। जितनी भी मंदिर की जो से जरूरत की जो चीजें

0: यहाँ डाल सकते हैं, ना कि पेड़ों के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे लोग जो है अक्सर रख देते हैं, पार्क में रख देते हैं, तो वो चीज ना हो, इस चीज का ध्यान में रखते हुए इस तरीके के सेंटर्स जो है वो दिल्ली में बनाए गए हैं।
1: इन केंद्रों में लाकर डाली गई खंडित मूर्तियां और पूजा सामग्रियों का बेहतर उपयोग किया जाएगा। सब सामान का वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल तरीके से निस्तारण और रिसाइकलिंग का काम किया जाएगा।
0: दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो इस तरीके के केंद्र बनाए गए, और वहीं एमसीडी आके ये सारा जितना भी कलेक्शन है वो लेकर जाएगी और उसके बाद इनको रिसाइकल भी जब किया जाएगा तो उसमें भी आस्था का जो है ध्यान रखा जाएगा। अगर हम मूर्तियों की बात करें तो उन मूर्तियों को रिसाइकल करके जो है ईंटें बनाई जाएगी, और उन ईंटों का इस्तेमाल, उन ब्रिक्स का इस्तेमाल जो है वो वापस से किसी धार्मिक स्थल के निर्माण कार्य में जो है किया जाएगा। फिर चाहे वो मंदिर की बात हो या कोई भी रिलीजियस कुछ चीज़ बन रही होगी तो उसमें उन ईंटों का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं अगर हम सूखे फूलों की बात करें तो उन सूखे फूलों का इस्तेमाल जो है अगरबत्ती, धूप बत्ती, इन सब चीजों को बनाने में जो है किया जाएगा। तो इस तरीके से वेस्टेज ना हो, किसी तरीके से आस्था का अपमान ना हो, उस चीज का ध्यान दिल्ली सरकार रख रही हो।
1: दिल्ली में जगह जगह ऐसे 110 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं जहां पूजन सामग्री और खंडित मूर्तियां लोग जमा कर सकते हैं। इससे ये सब सामान ना पेड़ों के नीचे लावारिस पड़े रहेंगे, ना पार्कों में दिखाई देंगे और ना ही यमुना में कचरा बढ़ेगा। साथ ही खंडित मूर्तियों और पूजन सामग्रियों का सम्मान भी हो सकेगा और पर्यावरण को इससे फायदा भी। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा।